0: क्वालिफिकेशंस पूरी है, और इनमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि कोई ऐसा एसेट वो नहीं कि हम ये गए कि पेपर आउट हो गया, सिफारिश चल गई, आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है, एक क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, वो क्वालिफाइंग मार्क्स आपने अचीव करना है, और उसके बाद आपका टेट क्वालिफाई हो जाता है, फिर आप वैकेंसीज के अकॉर्डिंगली अप्लाई करते रहते हैं। मार्क्स की वेटेज रहती है, आपके ट्वेल्थ में कितने मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन में कितने हैं। देखिए, अगर आप टीचिंग जॉब के लिए जा रहे हैं तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारा एजुकेशनल रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, पढ़ने में हम अच्छे हो, तभी आगे हम एक वी कैन बिकम ए गुड टीचर। तो ये तो सारा मैंने आपको स्कूल वहीं फिर हम में ऐसा नहीं कि हम स्कूल लेवल पे, हम कॉलेज लेवल पे भी जा सकते हैं एज ए टीचर। तो कॉलेज लेवल में जैसे हरियाणा में है या और स्टेट्स में है तो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज होती है, मतलब जो कॉलेज जो कैडर की वैकेंसीज आती है जिनको हम असिस्टेंट प्रोफेसर्स कहते हैं। और ऐसे ही जो यूनिवर्सिटीज है उसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट है, तो उनमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज आती है। तो स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल के टीचिंग में एंट्री में थोड़ा डिफरेंट है। कैसे? आप जैसे मैंने आपको बताया अभी स्कूल लेवल में अगर आपने टीजीटी या पीजीटी में आपने जाना है तो आपको बीएड करना मस्ट है। वही कॉलेज के लिए आपको बीएड करने की नीड नहीं है, आपने सिंपल मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद फिर आपने मास्टर डिग्री कर लिया, मास्टर डिग्री के जब आप फाइनल ईयर में होते हैं मास्टर डिग्री के तो आपको फिर नेट का पेपर क्वालिफाई करना रहता है, ठीक है, जो प्राइमरी आपका नेट का एग्जाम होता है। एनटीए कंडक्ट करा रहा है, पहले यूजीसी कराता था, उसके बाद सर कुछ साल सीबीएसई बोर्ड में कंडक्ट कराया, तो नाउ दिस नेट एग्जाम इज कंडक्टेड बाय एनटीए, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, जो नेट का एग्जाम है वो हमारे लिए मस्ट है, ठीक है। उसमें भी दो तरह के आपके नेट होते हैं, एक तो जो नेट के सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, ये तो आपका एनटीए कंडक्ट कराता है, और साइंस से रिलेटेड जिसमें आपका मैथमेटिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, वो सीएसआईआर कंडक्ट कराता है। तो इस तरह से दो आपके नेट के एग्जाम्स होते हैं। तो जिस भी स्ट्रीम के आप है, जिस भी स्ट्रीम में आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है उसी स्ट्रीम का आपको नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना रहता है। जो नेट में भी आपका एक जेआरएफ होता है जिसको हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं। जैसे आपने मास्टर डिग्री करने के बाद नेट का पेपर दिया, उसी नेट के एग्जाम में जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या है, 55% है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और जेआरएफ के लिए 30 ईयर्स की एज होती है। जेआरएफ का मतलब क्या है कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिलता है अराउंड 25,000 रुपीज पर मंथ का स्टाइफंड आपको मिलता है पीएचडी करने के लिए। तो इसमें क्या रहता है कि उसी नेट एग्जाम में कुछ टॉप के स्टूडेंट लिए जाते हैं, उनको जेआरएफ लगता है, और फिर वो जब स्टडी करते हैं तो उस स्टडी टाइम में उन्हें स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। अब नेट का पेपर जो है, एनटीए का जो नेट का पेपर है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो पेपर होते हैं इसमें। फर्स्ट पेपर जो है वो आपका कॉमन है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, उसमें जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एबिलिटी या कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम एनटीए पेपर वन कहते हैं, और सेकंड होता है एनटीए पेपर टू, वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिस सब्जेक्ट में आपने नेट क्वालिफाई करना है उसी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा। जैसे मैं पैटर्न बताऊं आपको, जो एनटीए का पैटर्न है, जैसे पेपर वन है, पेपर वन में 50 क्वेश्चंस आते हैं, पहले पैटर्न अलग था, पिछले कुछ टाइम से पैटर्न चेंज हुआ है। तो पेपर वन में 50 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के, और पेपर टू आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे सपोज आपने आपने एमए इकोनॉमिक्स किया हुआ है तो आप नेट इकोनॉमिक्स में पास करना चाह रहे हैं तो आपको फिर 100 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं जो इकोनॉमिक्स के होंगे आपके। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 3 आवर का आपका पेपर होता है जिसमें कोई ब्रेक आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक आपका स्कीम होती है जो एनटीए नेट का एग्जाम है, ठीक है। तो अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर कॉलेज वाइज वैकेंसीज निकलती है जैसे प्रोसेस मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर वो अपना अलग से पेपर कंडक्ट कराते हैं, उसमें जिस सब्जेक्ट की वैकेंसीज आई है आपने उसी सब्जेक्ट में अप्लाई किया है, और अगर आप डिपार्टमेंट वाइज वर्क करना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहां भी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है दैट इज द नेट, कि अगर आपका नेट क्वालिफाइड है तो आप वहां पर जॉब के लिए एंटाइटल है, वैकेंसीज निकलती हैं, इंटरव्यू कंडक्ट होता है, और इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यू कैन बी असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है हमारे कॉलेजेस में जाने के लिए कि नेट का पेपर आपको उसी सब्जेक्ट में जरूर क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप टीचर बन सकते हैं, मतलब स्कूल लेवल में थोड़ा ये डिफरेंस है कि वैकेंसी ज्यादा आती है। अगर हम कॉलेज लेवल की बात करें तो कॉलेज लेवल में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है कंपैरेटिवली कम है, बट फिर भी एडवांटेज क्या है कि अगर आप किसी भी लेवल पे एंटर करना चाहो, अगर स्टार्टिंग में सपोज आपने क्वालिफिकेशंस पूरी है बट हमें जॉब नहीं मिलता, बट इंडिया में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस काफी ज्यादा है। आप देखेंगे, चाहे आप बेटे किसी भी लेवल पे देखिए, चाहे आपके ग्रेजुएशन के अंदर है, चाहे मास्टर डिग्री के अंदर है, चाहे प्रोफेशनल कोर्सेज में है, चाहे हम स्कूल्स की बात करें, तो काफी ज्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है। तो फिर क्या रहता है कि आप अपनी कहीं ना कहीं जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार आपने अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दिया तो धीरे धीरे आप अप्लाई करते रहिए, और विद द पैसेज ऑफ टाइम कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है। बट अगर क्वालिफिकेशन पूरी है तो हाँ, अब सपोज आपने BEd नहीं कर रखा, अगर आपने BEd नहीं किया हुआ तो फिर दिक्कत है। तो क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करना सबसे पहला काम है, और एक बार आपकी क्वालिफिकेशन पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद फिर आप अपना टेस्ट पास करिए। तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, विद द पैसेज ऑफ टाइम जॉब्स लगती हैं, वैकेंसीज काफी ज्यादा आती हैं टीचिंग में, काफी वैकेंसीज आती हैं, तो उसमें जॉब लगने का स्कोप रहता है, ठीक है। तो इस तरह से बेटे ये हमारे सारे एग्जाम्स होते हैं जो टीचिंग से रिलेटेड है, राइट। तो ये बेटे दैट इज फ्रॉम माई साइड। अब आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं किसी भी टाइप से रिलेटेड, तो अब मैं आपकी क्वेरीज का आंसर करूंगा। मैंने अपनी ओर से एक बार आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया कि किस किस टाइप के एग्जाम्स है, किस किस टाइप की जॉब्स है, क्या रहता है इसके अंदर। हाँ, सैलरीज काफी अच्छी है, मतलब अगर हम आज के टाइम में गवर्नमेंट टीचर्स की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 40,000 प्लस स्टार्टिंग सैलरी है, चाहे आप एलिमेंट्री टीचर भी हैं, और उसके बाद में एवरी ईयर इंक्रीमेंट्स आर देयर। तो आपकी सैलरी मतलब 15 से 20 साल अगर आप गवर्नमेंट जॉब में एज ए टीचर रहते हैं तो 80,000 प्लस आपकी सैलरी कम से कम रहती है, और असिस्टेंट प्रोफेसर में तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 60-70,000 प्लस रहती है। तो सैलरीज अच्छी है, वर्कलोड कम है इंडिया में, ज्यादा पढ़ाने का इतना बड़ा प्रेशर नहीं होता है, बस एक बार एंटर करना इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए, उसके लिए आपको रेगुलर एफर्ट करना रहता है। तो अब आप कुछ भी पूछना चाहें तो हम आंसर करेंगे एक एक करके।
1: दिनेश जी, एक मेरे पास क्वेश्चन है, ये सभी के लिए शायद कॉमन होगा, ये शायद इन लोग के पास भी कुछ उनको आइडिया हो जाए। ये सीटीटी के बारे में जो आपने बताया है, जो ऑलरेडी आप प्राइमरी टीचर के लिए जो आप जो है 1 से 10th क्लास तक के आप जो अप्लाई करेंगे, उसको करने के बाद बहुत सारे होते हैं जो जो गवर्नमेंट का जो निकलता है स्कूल वाइज या फिर सेंट्रल स्कूल का या अदरवाइज लेकर के, प्राइवेट स्कूल वाले भी आजकल एंट्रेंस, इससे कोई एंट्रेंस का तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि काफी लोग पैटर्न भी स्टेट वाइज अपना रखते हैं कि चलो भाई
0: प्राइवेट स्कूल्स जो है वो कई बार एलिजिबिलिटी टेस्ट जरूर मांग लेते हैं कि आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, वो कई बार या आपसे बीएड मांग लेते हैं कि बीएड होना चाहिए आपका। अदरवाइज तो प्राइवेट स्कूल का तो सिंपल सा पैटर्न है कि वो तो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, उसमें तो वो तो उनके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको टीचर चाहिए होता है, तो उनका पैटर्न अलग है। ऐसे कोई हम नहीं कह सकते पर्टिकुलर टेस्ट आपको अपियर करना है फॉर द प्राइवेट स्कूल टीचर, उसके लिए ऐसे कुछ क्वालिफिकेशंस भी नहीं है।
1: नहीं है,
2: जैसे वो ये बता देते हैं कि पेपर है ये, अगर आप सीटेट हैं तो पेपर है और कुछ नहीं होते।
0: हाँ,
3: गुड आफ्टरनून सर, फरा बोल रही हूँ रामपुर से। सर मुझे ये पूछना था सीटेट या यूपीटेट में से हमें एक ही क्वालिफाई करना है या फिर दोनों क्वालिफाई करना है?
0: एक्चुअली क्या रहता है, देखिए जो सीटेट का एग्जाम है ना, वो आपका एक टाइप से जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, जैसे आपने दिल्ली की कोई वैकेंसी आई, ठीक है, कहीं भी वैकेंसी आएगी वो आपसे मतलब जो क्वालिफिकेशन एक्सपेक्ट करेगा वो सीटेट करेगा, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी स्कूल में वैकेंसी आएगी तो वहां पर आपको सीटेट पास करना पड़ेगा, बट जब स्टेट वाइज वैकेंसी आती है ना तो फिर वो अपने स्टेट का ही वो मांगते हैं, एग्जाम मांगते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी में अगर प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई है तो वहां पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन लिखेगा ना वहां पर वो यूपी टेट लिखेगा, तो फिर आपको यूपी का टीट वो करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपको टीचिंग में जाना है तो दोनों ही पास करना है आपको।
3: जैसे अभी हमने बीटीसी कर ली है तो सीटेट का भी एग्जाम दिया था तो अभी तीन नंबर से रह गए थे हम।
0: हाँ जी,
3: तो
0: हाँ जी,
3: पूछ रही हूँ कि सीटेट या यूपी टेट पे से अगर हमारा एक ही क्वालिफाई होता है तो क्या उसके बाद टेट फिर आएगा?
0: नहीं नहीं, ये क्या करते हैं, ये जो स्टेट वाइज वैकेंसीज निकालते हैं ना तो उसमें वो सीटेट को नहीं मानेंगे, वो अपना पेपर मानेंगे जो यूपी टेट का होगा, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं। बट ये है कि अगर आप जो सीटेट का क्वालिफाई करते हैं तो बाहर कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
3: अच्छा, यूपी में नहीं हो सकता ये? यूपी का ही
0: चल जाता है, मतलब क्या रहता है ना कि वो उसमें अब जैसे क्या है कि अगर आपकी पीजीटी की वो आएंगी, अगर आपकी पीजीटी की आती है वैकेंसी तो अप्लाई नहीं हो पाएगा, फिर पेपर वन है पेपर टू है, तो मतलब आपका चल जाता है पर वो उसमें लिखा होता है, मतलब जैसे जो फॉर्म निकलते हैं ना तो उसमें क्योंकि हाँ, देखिए क्या है कि इसका क्या इसका प्रोसीजर क्या होता है कि जो टेट का पेपर है वो ओनली एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जब आपकी वैकेंसी आती है ना तो उसमें फिर लिखा होता है भी आपने आपका या तो टेट क्वालिफाई हो या आपका सीटेट क्वालिफाई हो या उसके अलावा कोई और भी कोई एग्जाम अगर है तो वो लिखा हो तो वहां आपका चल जाता है।
3: अच्छा सर, जो सुपर टेट है यूपी टेट हमारा जैसे क्लियर हो गया, उसके बाद हमने सुपर टेट भी क्लियर कर लिया, तो उसके बाद भी हमारा इंटरव्यू या कोई एग्जाम वगैरह होता है या डायरेक्टली हम डाल सकते हैं फिर?
0: नहीं, उसमें ये क्या करते हैं, देखिए अभी जैसे पहले तो क्या होता था कि जो टेट क्वालिफाई होता था उसी के बेसिस पे होता था जॉब लग जाती थी
3: जी।
0: अभी उन्होंने क्या किया हुआ है कि अभी ये जैसे टेट को कर रखा है अलग, ये तो एक टाइप का ये हो गया कि आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, फिर जब वैकेंसीज निकालते हैं तो वैकेंसीज निकालेंगे तो उसमें ये लिखेंगे कि मिनिमम वही पर्सन अप्लाई कर सकता है जिसका टेट क्वालिफाई है, फिर वो अपना अलग से पेपर लेते हैं एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। जैसे हरियाणा में क्या है कि आपने एस्टेट क्वालिफाई कर लिया, एस्टेट पास करने से जॉब नहीं मिलेगी आपको, जब वैकेंसी आएगी वो फिर से पेपर लेंगे आपका। तो इस तरह से चलता है इसमें। एक ये क्वेश्चन है सीमा सिंह जैसे पूछ रहे हैं कि बीएड करने का क्या प्रोसेस, देखिए जो बीएड करने का प्रोसीजर है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड कर सकते हैं, डिस्टेंस से बीएड नहीं होती है पहली चीज, ओनली इग्नू ऑफर करता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, बट उसमें भी उसमें आप किसी ना किसी स्कूल में एज ए टीचर वर्क कर रहे हो तो उसमें जो लोग एज ए टीचर जॉब कर रहे होते हैं उनके लिए एक उनके लिए प्रोसेस है कि वो बीएड जो है डिस्टेंस से कर सकते हैं, बट इन जनरली जो बीएड है वो आपको एज ए रेगुलर कोर्स ही करना पड़ता है, तो आपने बीए बीकॉम बीएससी जो भी आपने किया है तो उसके बाद आपको टू ईयर का बीएड करना पड़ेगा। ये आपका जैसे सर मैंने डीएलडी किया है, टेट क्लियर है, इंटर कॉलेज जॉब्स का क्या स्कोप है, क्योंकि इंटर कॉलेज जैसे ये मेरे हिसाब से यूपी से बिलोंग करते हैं ना आप, यूपी में इंटर कॉलेज होता है हाँ, वैसे तो इन जनरली क्या होता है जैसे मैं अपनी हरियाणा या और जगह की बात करें तो वहां पर जो कॉलेज की वैकेंसी तो आपकी अलग से आती है। यूपी में क्या है कि इंटर कॉलेज मतलब जो ट्वेल्थ को करता है टीच, मतलब आपका 8 to 12 एक पीजीटी कहते हैं ना उसे हम बोलते हैं, तो उसमें तो आपको बीएड करनी पड़ेगी। देखिए क्या रहता है कि पीजीटी के लिए बीएड क्वालिफिकेशन आपकी मस्ट है पूरे इंडिया में, ठीक है, और अगर आपको एलिमेंट्री टीचर का करना है तो आपने जैसे डीएलडी किया हुआ है तो आप उसमें टाइटल है, तो आपको ये थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा। हाँ, सीमा सिंह आस्किंग वन हैज टू गो टू कॉलेज एवरी डे, देखिए नहीं उसमें क्या है कि बीएड में देखिए आपके दो तरह के कॉलेजेस है, एक जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है एक प्राइवेट कॉलेज है, तो प्राइवेट कॉलेजेस तो फीस ही चार्ज करते हैं बस, मतलब आपको कॉलेज जाने की नीड नहीं है, मैक्सिमम जो बीएड है वो आपकी इसी तरह से होती है, बट रेगुलर कोर्स है, मतलब उसके साथ आप कुछ और नहीं कर सकते, बीएड एक तरह का रेगुलर कोर्स है अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं तो आपको कॉलेज आने की उम्मीद नहीं है, एग्जाम्स होंगे बस आपके, ठीक है, बट उन दो सालों के अंदर अंदर आप उसके साथ कोई और डिग्री नहीं हो पाएगी आपकी, आप केवल बीएड ही करेंगे, क्योंकि काफी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो बीएड करवाते हैं, तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर सकते हैं, वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के साथ में एफिलिएट होगा। अकबर जी बोलते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में टीचिंग जॉब के लिए नेट की आवश्यकता होती है। देखिए क्या है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर वो पूरे स्केल की सैलरी देंगे तो नेट आपसे मांगेंगे जरूर, ठीक है। क्या होता है ना, प्राइवेट में भी मतलब जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो टू टाइप के टीचर रखती है, एक तो वो टीचर रखती है जो वो अपने रोल्स पे दिखाती है, मतलब जिनको एक नंबर में सैलरी पे दिखाती है, तो वहां तो नेट क्वालिफाइड होना कंपलसरी है, क्योंकि आप कॉलेज लेवल पे टीचर तभी बन सकते हो जब आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, तो कुछ टीचर्स को वो एडहॉक पे दिखाती है, तो वहां पर आपका चल जाता है, मतलब तो ये है कि स्टार्टिंग की जा सकती है, बाकी अगर आपको कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे टीचिंग करनी है तो नेट क्वालिफाई करना मस्ट है आपके लिए, उसके बिना आपको सैलरी कभी पूरी नहीं मिल पाती। सुनील जी पूछ रहे हैं एसटेट का सिलेबस क्या रहेगा, बीएड एसएसटी इंग्लिश से है, बीएड एसएसटी उसमें देखिए अगर आप टीजीटी का दे रहे हैं पेपर तो उनकी तो आपके टॉपिक वाइज आपको बुक्स मिल जाती है, उसमें जैसे जो टीजीटी का पेपर है हाँ उसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया भी, जैसे 150 नंबर का पेपर आता है तो 30 क्वेश्चंस तो आपके हरियाणा में जैसे मैथ्स रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के हो गए, 30 क्वेश्चन चाइल्ड पेडागोजी के हैं, और उसके बाद जो 30 क्वेश्चंस हैं वो आपके इंग्लिश और हिंदी के हो गए, और फिर बच्चे 60 क्वेश्चन आपके बचे, उन 60 क्वेश्चंस में आपका एसएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके टीजीटी में। जितने आस्किंग कॉलेज रेगुलर करना चाहिए वो नहीं, देखिए क्या क्या रहता है कि आप कॉलेज कैसे भी कर सकते हैं, आपने बीए चाहे कॉरेस्पॉन्डेंसी किया हुआ है चाहे आपने रेगुलर किया हुआ है वो मैटर नहीं करता, बट हाँ उसमें मार्क्स आपके मैटर करते हैं, क्योंकि जब भी वैकेंसीज आती है ना तो उसमें कुछ ना कुछ जो वेटेज है कुछ आपके मार्क्स को होता है वेटेज, तो आपने कहीं से कोर्स किया हो वो आपका चाहे कॉरेस्पॉन्डेंसी है चाहे आपका रेगुलर कोर्स है वो इक्वलेंट ही ग्राउंड पे होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता एज ए जॉब के लिए। देखिए कॉलेज रेगुलर करना ही बेनिफिशियल होता है, वो बिल्कुल ठीक बात है आपकी, मतलब जनरली आप बीए बीकॉम जो भी करिए मतलब आप हर कोर्स को रेगुलर से ही करिए तभी बात बन पाएगी, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस से एक तो ना तो मार्क्स आपके अच्छे आते पहली चीज और ना ही आपकी सब्जेक्ट में इनडेप्थनेस हो पाती है, तो ये तो एडवाइजेबल होता है कि करना तो रेगुलर ही चाहिए।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज हम स्मरण कर रहे हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण का।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जी। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जी। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जी।

झंझा सोई तूफान रुका, प्लावन जा रहा कगारों में, जीवित है सबका तेज किंतु अब भी तेरे हुंकारों में। सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां संबोधित हैं उस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक और राजनेता को, आधुनिक भारत के इतिहास में जिनकी उपस्थिति अविस्मरणीय है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन से लेकर स्वतंत्र भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वो महान राष्ट्रभक्त थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। राष्ट्र सदैव उनके जीवन के केंद्र में रहा। देश के तीन महत्वपूर्ण आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। आजादी के बाद 50 और 60 के दशक में भूदान आंदोलन में भाग लेकर उन्होंने बड़े पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन लाने की दिशा में योगदान किया और 70 के दशक में भ्रष्टाचार और अधिनायकवाद के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। तत्कालीन परिस्थितियों के विरुद्ध विपक्ष को एकजुट कर उन्होंने देश के नेतृत्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। संपूर्ण क्रांति का उनका दर्शन और आंदोलन भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव तो लाया ही, साथ ही देश के सामाजिक ताने बाने को बदलने में भी कारगर साबित हुआ। आजादी के बाद वो देश के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हो सकते थे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद के प्रस्ताव उनके समक्ष रखे भी गए, किंतु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। दरअसल जयप्रकाश नारायण हमेशा स्वयं को राज सत्ता से अलग रखकर लोक सत्ता को मजबूत करने में लगे रहे। वे राजनीति और राज सत्ता के ऊपर लोक नीति और लोक सत्ता का अंकुश रखने के पक्षधर थे, ताकि राज सत्ता को भ्रष्ट होने से बचाया जा सके। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर सन 1902 को बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा गांव में विजयदशमी के दिन हुआ था। उनके पिता का नाम हरसू दयाल और माता का नाम फूल रानी देवी था। मां की सादगी और निर्मलता तथा पिता की देशभक्ति और स्वतंत्र विचारधारा की गहरी छाप उन पर पड़ी। सन 1919 में मैट्रिक पास करने के बाद जयप्रकाश जी का नामांकन ISC में पटना कॉलेज में हुआ। ये वो समय था जब जलियांवाला बाग, रोलेट एक्ट, होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह जैसी घटनाओं से देश उद्वेलित था। इस वातावरण का गहरा प्रभाव जयप्रकाश जी पर पड़ा। पटना में ही उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद का असहयोग और अंग्रेजी शिक्षा के बहिष्कार पर भाषण सुना, जिसने उन्हें पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। सन 1920 में पटना में हुई गांधी जी की सभा का भी उन पर गहरा असर हुआ। स्वदेशी का प्रभाव ऐसा हुआ कि उन्होंने खादी पहनना शुरू कर दिया, चरखा चलाना भी सीख लिया। चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, तब जयप्रकाश नारायण के कई साथी वापस कॉलेज जाने लगे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों में वापस जाना उन्हें स्वीकार्य नहीं था। इसलिए जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया और ISC की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अनुग्रह नारायण सिंह, रामचरित्र सिंह, पांडे रघुनंदन, पांडे हरिनंदन और शंभु शरण वर्मा जैसे देशभक्त मित्रों के सानिध्य का भी

सन 1920 में जब जयप्रकाश नारायण 18 वर्ष के थे तब उनका विवाह प्रभा देवी के साथ संपन्न हुआ। बिहार विद्यापीठ से पढ़ाई करने के बाद सन 1922 में अपनी पत्नी प्रभा देवी को गांधी जी के साबरमती आश्रम में छोड़कर जयप्रकाश नारायण कैलिफोर्निया के बर्कले विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने चले गए। यहां अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उन्होंने खेतों, कंपनियों, होटलों में काम भी किया। इन सालों में उनके विचार और दृष्टिकोण में सबके लिए समान अधिकार की बात स्पष्ट रूप से अंकित हो चुकी थी। अमेरिका में रहते हुए ही उन्होंने बीए और एमए की डिग्री हासिल की, लेकिन माताजी की तबीयत खराब होने के कारण अपनी पीएचडी अधूरी छोड़कर सन 1929 में वो भारत वापस लौट आए। संपूर्ण जीवन देश को समर्पित करने का संकल्प अब उनके मन में था। इसी शुभ भावना के साथ उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और देश के स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय हो गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण सन 1932 में जयप्रकाश नारायण मद्रास में गिरफ्तार किए गए। ये उनकी पहली जेल यात्रा थी। यहां से वे मुंबई आर्थर रोड जेल और फिर नासिक जेल लाए गए। नासिक जेल में ही वो राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, मीनू मसानी और अच्युत पटवर्धन जैसे नेताओं के संपर्क में आए। सन 1939 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में उन्होंने आह्वान किया कि द्वितीय विश्व युद्ध का फायदा उठाते हुए भारत से अंग्रेजी सरकार को उखाड़कर फेंक दिया जाए। उनकी सघन सक्रियता को देखते हुए उन्हें 9 महीने कारावास की सजा हुई। अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हुए करो या मरो का नारा दिया। इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। 9 अगस्त की सुबह गांधी जी के साथ साथ सभी वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन का लगभग संपूर्ण नेतृत्व ही जेलों में डाल दिया गया। ऐसे समय में जयप्रकाश नारायण ने राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर इस आंदोलन को महत्वपूर्ण नेतृत्व दिया। हालांकि उन्हें भी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग सेंट्रल जेल में कैद कर दिया गया। लेकिन जयप्रकाश नारायण जानते थे कि जेल के बाहर रहकर ही इस आंदोलन को गति दी जा सकती है। इसलिए 8-9 नवंबर 1942 की रात दीपावली के त्योहार का फायदा उठाते हुए अपने 6 साथियों को लेकर वो फरार हो गए और उसके बाद भूमिगत रहकर आंदोलन को गति देते रहे। इस तरह भारत छोड़ो आंदोलन में वो एक नायक की तरह उभरे। अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने वाले को 5,000 रुपए के

इनाम की घोषणा की गई, जिसकी राशि बाद में बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई। अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध जयप्रकाश नारायण ने नेपाल में आजाद दस्ते का गठन किया। पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। इन परिस्थितियों में उनके नेपाल पहुंचने का किस्सा भी अत्यंत रोचक है। बंबई से मद्रास और फिर कलकत्ता होते हुए वो बिहार आए। यहां से सहरसा जिले को पार कर उन्हें नेपाल पहुंचना था। पुलिस को धोखा देने के लिए शादी के बाद दुल्हन को वापस घर लौटाने का नाटक रचा गया। हाथी पर सज धज कर बैठे जयप्रकाश जी आगे आगे चले और पीछे पीछे पालकी में चली अच्युत पटवर्धन की छोटी बहन विजया पटवर्धन। इस तरह सन 1943 में नेपाल में आजाद दस्ते का गठन हुआ। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो के शंखनाद की गूंज बढ़ती गई। कुछ महीनों बाद सितंबर 1943 में रेल यात्रा करते समय जयप्रकाश नारायण को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1945 में उन्हें लाहौर से आगरा जेल भेज दिया गया, जहां राम मनोहर लोहिया भी उनके साथ थे। स्वाधीनता आंदोलन की जानकारी प्राप्त करने के लिए जेल में उन्हें असहनीय यातनाएं दी गईं, लेकिन जयप्रकाश जी पहाड़ की तरह अटल रहे।

11 अप्रैल सन 1946 को 31 महीने के कारावास के बाद जयप्रकाश नारायण रिहा हुए। 15 अगस्त 1947 को देश में स्वर्णिम विहान जागा, भारत स्वाधीन हुआ। लेकिन आजादी के बाद उन्होंने कोई भी पद ग्रहण करने से इनकार कर दिया। दरअसल गांधी जी के बाद ऐसे आदर्श प्रस्तुत करने वालों में वो एकमात्र व्यक्ति थे। गरीबों के लिए उनकी प्रतिबद्धता कभी कम नहीं हुई और यही संकल्प उन्हें आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के करीब ले गया। विनोबा जी से उनकी पहली मुलाकात सन 1950 में हुई थी। विनोबा जी से मिलकर उन्होंने महसूस किया कि विनोबा जी अद्भुत प्रतिभा संपन्न मौलिक विचारक हैं और उनके व्यक्तित्व में दूसरों को अनुप्राणित करने की अनोखी शक्ति है। इस तरह जयप्रकाश जी के मन में ये विश्वास जागा कि सर्वोदय योजना के द्वारा ही गांधी जी के सपने को साकार किया जा सकता है। उन्होंने कहा भी था, आई सी सम लाइट हियर। इस तरह विनोबा जी से उनका आत्मीय जुड़ाव जीवन पर्यंत रहा। जयप्रकाश जी ने देश से कभी कुछ मांगा नहीं, सिर्फ दिया ही। इसीलिए देश स्वयं उनके नैतिक अधिकार को हमेशा मानता रहा। ये उनके व्यक्तित्व का ही प्रभाव था कि चंबल के लगभग 500 डाकुओं का हृदय परिवर्तन करने में वो सफल रहे और उनका आत्मसमर्पण करवाया। एक संत की तरह देश को सब कुछ सौंप कर वो राजनीति से संन्यास ले चुके थे। लेकिन 70 के दशक की शुरुआत में उनके जीवन का तीसरा चरण आरंभ हुआ। तत्कालीन परिस्थितियों से परेशान गुजरात के छात्रों ने उनसे नवनिर्माण आंदोलन के नेतृत्व का आग्रह किया। खराब स्वास्थ्य के बावजूद देश हित में जयप्रकाश जी फिर उठ खड़े हुए। 5 जून सन 1974 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। 5 लाख से भी अधिक लोग इस सभा में जुटे थे। जेपी की हुंकार पर नौजवानों का जत्था सड़कों पर निकल पड़ा। बिहार से उठी क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में प्रचंड अग्नि बनकर भड़क उठी। देश में आपातकाल लागू हो गया। जयप्रकाश नारायण सहित सैकड़ों नेता गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिए गए। इस आंदोलन का ही परिणाम था कि अंततः देश के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा में 7 क्रांतियां शामिल थीं: राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति। संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान ही जयप्रकाश नारायण का स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो गया। आपातकाल के दौरान उनकी तबीयत अचानक 24 अक्टूबर सन 1976 को बिगड़ गई और 12 नवंबर सन 1976 को उन्हें रिहा कर दिया गया। जांच करने पर मालूम हुआ कि उनकी किडनी खराब हो गई थी, जिसके बाद वो डायलिसिस पर ही रहे। 8 अक्टूबर सन 1979 को पटना में उन्होंने अंतिम सांस ली। देश में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर विनोबा जी ने अत्यंत विह्वल स्वर में कहा, लोगों ने उन्हें लोकनायक की उपाधि दी, परंतु उन्होंने कभी अपने को लोकनायक माना नहीं था, लोक सेवक ही माना। यदि वे चाहते तो प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति बन सकते थे, किंतु ऐसी कोई इच्छा उनके मन में कभी उत्पन्न नहीं हुई। वो लोगों के बीच रहकर ही आम लोगों की सेवा करते रहे। उनके निधन का समाचार सुनकर 36 देशों ने संवेदना संदेश भेजा और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी झंडा झुका दिया गया। उनकी देश सेवा के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र ने सन 1998 में उन्हें भारत रत्न से विभूषित कर अपना आभार व्यक्त किया। ऐसे निस्वार्थ कर्मयोगी लोकनायक जयप्रकाश नारायण को हमारा शत शत नमन।

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: Good evening, everyone. Welcome to today's episode of Nurturing Grassroot Leaders, Branding the Local Culture with Development. Today's guest will be Mrs. Sana from Barabanki, UP, who's here to share her story with us. As for a little background about her, she did her schooling in Barabanki but got married at a very early age, so had to wait for a while before continuing her studies. She did MA in English Literature and started teaching in Central Academy School. While working there, she and her husband got involved in an organization named ASI, which now goes under the name of Tanager. And while working in ASI, she was given a project regarding different farming communities. And through that, she got to know about Read India organization. She later joined Read India in March 2018 and is currently working as a center coordinator. Her current goal is to make sure that Read India is providing facilities and benefits to as many people as possible. This was just a little background about her, and she is going to explain that in much greater detail. So with that being said, I would like to request Smita ma'am to continue the program.
1: Thank you, Shashank. Thank you for the brief introduction about Sana. I welcome everybody, all our viewers, to another exciting episode of Nurturing Grassroot Leaders. Jaisa ki Shashank ne bataya, humare saath aaj Sana hai. So welcome, Sana. Welcome to our show. तो सना और देर ना करते हुए हम आपके बारे में और जानना चाहेंगे और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे. आप थोड़ा बताएंगे अपने बैकग्राउंड के बारे में. ब्रीफ में शशांक ने बताया, बट आप भी बताएं कि कहाँ पे आपका बर्थ हुआ, कहाँ पे आपने एजुकेशन कंप्लीट करी, फिर आपकी जैसे जर्नी आगे बढ़ी उसके बारे में आप बताना चाहेंगे.
2: गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. थैंक यू मुझे ये चांस देने के लिए कि मेरी जर्नी हम शेयर कर सकें रीड इंडिया के थ्रू. जितने भी लोग अब सुन रहे हैं, रीड इंडिया में के वजह से आज हम यहाँ तक लाइफ में पहुँच पाए हैं. आज मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं और मेरे नाम से जानते हैं. थैंक्स, वेरी थैंकफुल टू रीड इंडिया फॉर दिस. सो स्टार्टिंग माई जर्नी, मेरी जो बर्थ हुई थी वो मेरे नानी के घर में हुई थी, बरेली में. वो एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, यूपी में ही है, बट वो दैट इज नियर रामपुर. तो मेरी बर्थ बरेली में ही होती थी मेरे नानी के घर पे. उसके बाद जब वापस आए दादी के घर पे हम लोग, तो मेरी स्कूलिंग शुरू हुई बाराबंकी से. बाराबंकी से हम एट्थ में ही थे, तो सामने सर्कमस्टांसेस की वजह से थोड़ा सा, एज मेरे फादर फॉरेन में रहते थे, ही वॉज डूइंग हिज जॉब देयर, ही वॉज नॉट लिविंग विद अस. हम लोग अपने दादी के घर में रहते थे, बट पापा बाहर काम करते थे. तो ऐसे हमारी लाइफ शुरू हुई. बट जब हम एट क्लास में थे तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स घर में होने लगे जब हम एट क्लास में थे तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स घर में होने लगी थी मम्मी पापा का ये, तो थोड़ा बहुत इसकी वजह से. फिर जब मेरा नाइन्थ था, जब टेंथ में मेरे क्लासेस शुरू होने वाले थे, तो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे बाराबंकी छोड़कर अपने फादर के साथ शिफ्ट होना पड़ा, जिसकी वजह से मेरी स्कूलिंग एक रेगुलर CBSE स्कूल से होल्ड होकर के एक प्राइवेट टेंथ की मुझे ऑप्ट करना पड़ा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी CBSE रजिस्ट्रेशन होता है कुछ प्रोसेस, तो वो चल रहा था. तो टेंथ में हमको एफ ए करना पड़ा. फिर टेंथ में होते होते ही मेरी शादी फिक्स कर दी गई, और फिर ना चाहते हुए भी उस एज पर, एट द एज ऑफ 16 and a half, आई हैड टू गेट मैरिड ड्यू टू दैट. मेरी शादी हुई थी, बट एक विल पावर था कि नहीं, ऐसे तो नहीं बैठ सकते, मतलब दिस इज नॉट फॉर मी. तो मेरी शादी हुई टेंथ में. मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया टेंथ का एग्ज़ाम देने, वो मुझे लेके जाते थे. शादी के 3 महीने बाद ही मार्च, जनवरी में शादी हुई, मार्च में एग्ज़ाम्स आ गए. उन्होंने मुझे पूरा टाइम दिया कि मैं पढ़ें, अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, फिर वो मुझे एग्ज़ाम्स के लिए लेकर जाते. फिर मैंने उन्हें बोला कि नहीं, मुझे 12th भी करना है, तो उन्होंने इमिडिएटली हाँ कर दिया विदाउट एनी थिंग. इवन दो आई वॉज मीन लाइक मेरा बेबी था ऑलरेडी, अब्दुल्ला वॉज बॉर्न आफ्टर टेन, बट ही सेड अगर तुम्हें करना है तो यू कैन गो फर्दर. तो फिर उन्होंने मुझे 12th करने, फिर ग्रेजुएशन मैंने इस तरह पूरा किया. 12th के बाद एक्चुअली मेरी बेटी डॉटर भी, फिर मुझे 2 साल के लिए पढ़ाई अपनी रोकनी पड़ी, होल्ड कराना पड़ा, बिकॉज इट वॉज वेरी टफ फॉर मी टू स्टडी विद 3 of the kids और 2 twins के साथ, इट वॉज वेरी टफ. सो ऐसे 10th वर्क 12th मीटेड हुआ. उसके बाद हमारा फिर ग्रेजुएशन, फिर मैंने एम ए किया. इस सारे प्रोसेस के दौरान आई वॉज हैविंग माई फैमिली सपोर्ट अ लॉट. इंटर के बाद एमए जब फाइनल ईयर का रिजल्ट आया तो मुझे लगा कि अब क्या करना। तो फिर मैंने यही सोचा कि अब स्टडी को ब्रेक लगा देते हैं, बिकॉज आई मीन कि मुझे बाहर जाना चाहिए। घर में बैठकर हमने पढ़ाई तो कर ली, घर में बैठकर सब कुछ कर लिया, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आई एम मतलब मैं पूरा टाइम फ्री हूँ। देन आई स्टार्टेड मैंने सीरीज दी, मेरा शॉर्ट लिस्टिंग हुई, उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ। उन्होंने मुझे बोला कि आपने कहीं पर भी आप इतने बड़े स्कूल में आपने अप्लाई कर दिया सेंटर में, आपने ये भी नहीं सोचा कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने बोला मैम एक्सपीरियंस तो पढ़ाने से ही आएगा, कोई भी फ्रेशर कभी एक्सपीरियंस तो नहीं हो सकता, एंड एवरीबडी नीड अ चांस कि वो कुछ अपने आप को प्रूव करे। तो आप एक डेमो दे दो, उसके बाद हम देखते हैं। फिर मैंने उन्हें डेमो दिया तो थैंकफुली मेरा हो गया सिलेक्शन वहाँ पर। इस तरह हमने जॉब स्टार्ट कर दी। जॉब स्टार्ट करने के 3-4 साल के बाद ही मेरा रीड इंडिया के साथ कनेक्शन हुआ थ्रू ऑब्वियसली थ्रू मैनेजर और अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर इस तरह से हम रीड में जॉब स्टार्ट की। रीड में जॉब स्टार्ट करने का

0: सबसे फर्स्ट रीजन जो मेरा था कि शायद ये बहुत मुझे मतलब हमेशा से एक इनर फीलिंग आती थी कि मुझे सोशल वर्क करना चाहिए, सोशल वर्क करना चाहिए। सोशल वर्क करने की जो विल थी उससे ही हमको टीचिंग की तरफ अट्रैक्ट किया था। बिकॉज आप थोड़ा सा सोशलाइज हो जाते हो जब आप इतने सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हो, आप क्लासेस लेते हो, उनमें से कुछ हर बच्चे की एक अलग स्टोरी होती है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। मेरा रिसेस का टाइम भी मेरा क्लास में ही जाता था। हम कभी स्टाफ रूम में बैठ कर लंच नहीं करते थे, हम बच्चों के साथ क्लास में, इवन दो वो 10th 12th के सीनियर स्टूडेंट्स थे, बट मेरा लंच टाइम क्लास में ही होता था। तो बाकी टीचर ऑप्शन भी करते थे कि आपको स्टाफ रूम में आना चाहिए, मैंने बोला नहीं। मेरे एक वो है कि मेरा उनके साथ कुछ है इंट्रैक्शन क्योंकि वो मेरी क्लास है। तो इस तरह से चलता रहा। फिर जब रीड इंडिया के साथ हम कनेक्ट हुए तो रीड इंडिया में के लिए मैंने अपनी जॉब को इमीडिएटली, स्मिता मैम से मेरी पहली मुलाकात दिसंबर में हुई। स्मिता मैम जब पहली बार आई थी यहाँ पर जगह देखने के लिए, गीता मैम, स्मिता मैम एंड नाइट सर, तब भी हम जॉब पर थे, मेरी स्मिता मैम से फर्स्ट टाइम मुलाकात भी नहीं हुई थी। तब जब सेकेंड टाइम में मैम गीता मैम और नाइट सर आए तब हम घर पे थे, इट वॉज दिसंबर। तो जब मैं गीता मैम से मिली और मैंने उनकी बातें सुनना शुरू की, मैं शी वॉज लाइक मैंने ये स्वेटर पहना हुआ है, ये भी यहाँ के वीमेन से रिलीज किया है, हम लोग ऐसे काम करते हैं। तो एट द टाइम मतलब मुझे आई वॉज लाइक ब्लैंक, मैम कह रही है क्या ये रियलिटी है, ऐसा होता है जो ऐसा काम करते हैं? बिकॉज एक इमेज थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक इमेज थी। जब आप न्यूज देखते हो, आप आस पास का अपने माहौल देखते हो कि नहीं ऐसा नहीं होता, एनजीओ वाले ऐसा तो काम कर ही नहीं सकते, बस नाम का एनजीओ, मतलब दैट वॉज एन इमेज। अगर आप एक ऑर्डिनरी पर्सन से पूछो तो यही इमेज है एनजीओ की। आई वॉज लाइक दैट, मतलब आज शायद मुझे ये नहीं बोलना चाहिए बिकॉज आई एम वर्किंग इन एनजीओ टू, बट वो इमेज थी, रियलिटी यही थी मेरे लिए। तो मैम बोल रही थी और मैं सुन रही थी ऐसे बैठकर, मैम हम मैम सामने बैठे हुए थे, बट मैम बोल रही थी और मैं सोच रही थी अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है। देन मैम हमारा गुसाईगंज का जो सेंटर तब दिसंबर में ही खुला था, हमारे सेंटर के सीमा पर, तो मैम ने बोला कि आप आइए आप देखिए आगे सेंटर हमारा क्या है। फिर मैंने एक बार को इमीडिएटली बोला कि मना मत करिएगा, हम लोग जाएंगे क्योंकि मुझे देखना है क्या है, रियलिटी ऐसी है, मैम का सेंटर कहता है। एक बार ने को भी ये कहा कि हाँ अगर हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, जगह दे रहे हैं, तो चलो एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज दैट। जब हम लोगों ने स्टेप इन किया है, जब हमने स्टेप इन किया गोसाईगंज के सेंटर के अंदर, मैं से इट वॉज लाइक मतलब मैं देख रही थी ये स्कूल है कि ये स्किल सेट्स हैं, मतलब लाइब्रेरी भी है, उसमें कंप्यूटर्स भी रखे हुए हैं, मतलब लाइब्रेरी इट वॉज लाइक अ ड्रीम क्योंकि लाइब्रेरी तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी। जैसे लाइब्रेरी होती है हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे गांव में लाइब्रेरी है, हमारे शहर में लाइब्रेरी है। और आई वॉज लाइक कि यार लाइब्रेरी है यहाँ पे, इन्होंने कंप्यूटर्स भी रखे हुए हैं, इन्होंने मशीन भी लगाई, इन्होंने गाँव में ला के प्रोजेक्टर भी लगा रखा है। मीन्स ये सारी चीज़ें एक बंदे के माइंड को बहुत इम्पैक्ट करती है जिन्हें इसकी वैल्यू पता होती है। तो आई वॉज लाइक कि मतलब मैंने बहुत अच्छे से,
1: आप थोड़ा बताएंगे व्यूअर्स को, शायद आइडिया नहीं होगा कि ये जो गांव की आप बात कर रहे हैं गोसाईगंज बाराबंकी, इनकी लोकेशन के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दीजिए, बिकॉज ऑल ओवर द कंट्री और समटाइम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर व्यूइंग द प्रोग्राम। तो आप थोड़ा बताएंगे जो आप विलेज के, ताकि वो भी विजुअलाइजेशन कर सकें कि जिन गाँव की आप बात बता रहे हैं वो शहर से कितनी दूर है, वहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि कई बार सुनने वाला ये अंदाजा नहीं लगा पाता कि शायद एक कंप्यूटर को देखना, हाथ लगाना भी एक एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आप उसके बारे में भी दीजिए सना।
0: तो बाराबंकी जो सेंटर है यूपी में है, गोसाईगंज सेंटर भी यूपी में ही है, इंडिया में यूपी एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश, यूपी सिटी है लखनऊ, विच इज़ वेरी वेल नोन बाई एवरीबडी। लखनऊ के बाहर जब हम आते हैं तो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में ये सेंटर आता है, बाराबंकी सेंटर जो बड़ा गाँव में जिस पे अभी हम वर्क कर रहे हैं करेंटली। और गोसाईगंज सेंटर डिस्ट्रिक्ट में है, वो अदर रूट पर है, वो लखनऊ से अप्रॉक्स 20-20 किलोमीटर्स की रेंज में है। तो ये बड़ा गाँव सेंटर है जिसके पिक्चर्स अभी डिस्प्ले हो रहे हैं, ये वो सेंटर है, ये पूरी लोकेशन है सेंटर की। तो इस तरह से फिर हम जब बस्तिया गए, बस्तिया बस्तिया में मैंने देखा सारी चीजें, फिर मैंने वहाँ के लोगों से बात करना शुरू की कि ये सेंटर के बारे में आपको पता है, आप लोग यहाँ आए हैं इनॉग्रेशन में, आपको क्या लगता है सेंटर में क्या, क्योंकि मतलब मेरे अंदर क्वेश्चन पूछने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, तो यहाँ आया तो क्यों आया, उसे क्या बताया गया, वो क्यों आया, सेंटर कैसे ही सर्वाइव करेगा, लोगों को इम्पोर्टेंस पता है। तो उन्होंने कहा कि जी जी मैम यहाँ पे सब गए थे बताने के बारे में, हम लोगों को बताया गया सेंटर खुलने वाला है, तो हमने पूछा आप लोग आएंगे सेंटर, क्योंकि गांव में शायद आपने कभी देखा नहीं। बोले मैम यही तो बात है कि हमने तो कभी कंप्यूटर देखे ही नहीं, हमने तो कभी देखा ही नहीं कंप्यूटर होता कैसा है, खाली नाम ही सुने। बिकॉज गोसाईगंज जो सेंटर है ना बस्तिया, दैट इज वेरी फार फ्रॉम लखनऊ, और वो बहुत ज्यादा ही मतलब बैकवर्ड है, यू नो मतलब प्रॉपर विलेज, विच इज कॉल्ड अ प्रॉपर विलेज, दैट इज दैट प्रॉपर विलेज, मतलब जहाँ पे बच्चों को प्राइमरी स्कूल भी शायद वहाँ उनके घर से थोड़ी दूर पर ही होगा, उन्हें स्कूल भी जाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती। तो वो ये सेंटर तो उनके लिए वॉज लाइक अ चांस कि उन्हें लाइफ में कुछ अचीव होने वाला है, वो ऐसे सेंटर पे खुला हुआ था वो जगह। तो वहां से वो मुझे मतलब दिमाग में आ गया कि नहीं ये बेस्ट है जो बड़ागांव में होने वाला है, इट विल चेंज बड़ागांव, इट विल गिव अ ट्रांसफॉर्मेशन टू द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन बड़ागांव। सो वी वर लाइक ओके, मतलब मी एंड इवाल वर सो सो सैटिस्फाइड कि नहीं अब आप करते हैं, बस अब यही करना है। तो द वेरी नेक्स्ट डे से जाने के बाद मैंने जाके सबसे पहले अपना रेजिग्नेशन लिखा, मैंने कहा मुझे अब काम नहीं करना स्कूल में, मुझे अब यहाँ काम करना है। दैट वाज सो मतलब एक बार वो शायद पहले सोच तो लो, मैंने कहा नहीं मुझे अब यही करना है, मुझे वो जॉब देंगे नहीं देंगे वो तो बात की बात है, मतलब मुझे करना है ये।
1: हम व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये हमारे ये बाराबंकी सेंटर की है जिसकी बात सना कर रही है, जो हाँ जहाँ पे सना बेस्ड है। ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं सेटअप है पूरे सेंटर का, और जो विजिटर्स आए हैं ये कैलिसंस के ग्रुप के मेंबर्स हैं, और भी फॉरेनर्स भी विजिट करते हैं, लोकल टीम से भी बहुत लोग आते हैं। जो ये सेंटर है ये कैलिसंस नाम की एक कंपनी है जो मिंट फार्मर्स के साथ काम करती है, ये उनके सपोर्ट से ये सेंटर चल रहा है। करीबन 3 साल से ये सेंटर इस एरिया में चल रहा है, जिसको कि सना अपनी टीम के साथ और अपने टीम ऑफ वॉलंटियर्स टीम ऑफ स्टाफ के साथ मैनेज करती हैं, जिसकी स्टोरी सना बताई। तो सना हमने शुरू से ही देखा आपके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रोल उन्होंने प्ले किया, स्पेशली अर्ली मैरिज हुआ, अर्ली आपके बच्चे हो गए, देन इवन देन यू हैव नॉट गिवन अप। सो ये फीलिंग कैसी थी जब आपको, बिकॉज हमने देखा है स्पेशली इंडिया में सर्टन ग्रुप्स में सर्टन एरियाज में तो बिल्कुल इनकरेज ही नहीं करते, स्पेशली शादी के बाद तो ये एकदम ऐसे ड्रीम कम ट्रू हो गया जिस तरह का माहौल, जिस तरह का यू नो सपोर्ट आपको मिला है। सो यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट?
0: Yes, ma'am. Ma'am, being in a community, in a Muslim community is very tough to come out of the house. मतलब हमारे यहाँ का तो culture नहीं है वो कि हम घर से बाहर भी जाएं. But education changes everything. I believe in that. और ये क्योंकि जो लोग इसकी importance ज़्यादा जानते हैं, जिसे ना इकबाल को ये लगता था कि चलो कुछ तो अगर वो करना चाहिए तो करने देते हैं. और हमको ये था कि हमें करना है तो करना है, अगर कोई कुछ बोलता भी है कुछ रोक भी रहा है तो वो अपने रोक रहा है, एक दिन बोलेगा, दो दिन बोलेगा, तीन दिन बोलेगा, फिर खत्म हो जाएगा। और वो ही हुआ मैम, दो बार तीन बार सबने ऑब्जेक्शन किया, फिर सब सारे चुप हो गए मैम। और अब तो ये है मैम, लोग मेरा नाम लेके अपने घर में लोगों को मोटिवेट करते हैं कि सना मैम को देखो, सना मैम को देखो, कुछ सीख जाते हैं उनसे कैसे वो के साथ रहती है, कैसे वो सेंटर का काम करती है, वो घर का भी काम करती है, छोटे बच्चे को भी देखती हैं, बाहर के बच्चों के साथ भी वो ऐसे बिहेव करती है। तो मैम सुनने में खुद को भी अच्छा लगता है, वेरी ऑनेस्ट, खुद को भी सुनने में बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे लिए लोग ऐसी बात करने लगे हैं। ये सब कुछ पॉसिबल है तो सिर्फ रेड इंडिया की वजह से, रेड इंडिया नहीं होता तो डेफिनेटली मेरे बारे में कोई आज ऐसी बात ही नहीं कर रहा होता, क्योंकि लोग मुझे जानते ही नहीं कि हम कौन हैं।
1: ये पॉइंट हम इसीलिए लाना चाहते थे बिकॉज आज का जो हमारा टॉपिक है नर्चरिंग ग्रास रूट लीडर्स, तो आप जैसे लीडर्स जो हैं एक इमेज, पॉजिटिव इमेज बना रहे हैं कम्युनिटी में, जो कि चेंज एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो कैसी बहुत सारी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिलता है फैमिली से, तो ये मैसेज हम आपके माध्यम से ये भी देना चाहते हैं कि अगर फैमिली सपोर्टिव हो तो महिलाएं लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं, एंड आप उसका जीता जागता एक एग्जाम्पल हैं जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, आपके जैसे बहुत लोग होंगे। So that is what I wanted to bring to the audiences. Special mention to you and your family for this initiative जो आपने life changing अपने लिए और अपनी community के लिए लिया है, कि एक second नहीं लगाया और आपने कहा कि मैं अपना job resign कर रही हूँ और मैं रीड के साथ जुड़ के ये कार्यक्रम करना चाहती हूँ। So we congratulate you for this effort and we want to know more about your center now. बाराबंकी में आपका जो ये सेंटर है इसमें कौन कौन सी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, कैसे आप कम्युनिटी में जाते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं आपको कम्युनिटी में जाने में?
0: मैम कैलेसेंस जो हमारा प्रोजेक्ट है तो दिस इज बेसिकली फॉर मेन फार्मर्स, हम मेन फार्मर्स को उतना ही टारगेट करते हैं जितना हम बाकी कम्युनिटीज को करते हैं। तो मेन फार्मिंग की अगर हम बात करें तो मेन फार्मिंग कम्युनिटीज में हमें चैलेंज काम करने में जो हमारे साथ पहला चैलेंज है वो ये था कि वहाँ पर लोग बच्चों से मिंट की फार्मिंग कराते हैं क्योंकि वो उनका काम है, तो उन्हें सेंटर तक लाना वो अ बिग चैलेंज, क्योंकि उनको समझा के कन्विंस करना कि आप काम छोड़ कर आओ। तो कभी कभी जो हमारे सेंटर पे जो एक्टिविटीज चल रही थी स्टार्टिंग में, जब हमने 2018 में स्टार्ट किया था, तो हमारे पास बेसिक सेविंग, बेसिक कंप्यूटर कोर्स एंड ब्यूटी एंड वेलनेस कोर्स एंड लाइब्रेरी, हमारी चार कॉम्पोनेंट्स तब थे। अभी तो हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं टिल एवरीवन। सो जब हमारा स्टार्ट हुआ था तो हमें ज्यादा मेहनत तब नहीं करनी पड़ी 2018, बिकॉज नया नया सेंटर खुला था यहाँ पर और ऐसा कोई भी कोई ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रही थी जो जिससे इनको ये बेनिफिट मिलता। तो स्टार्टिंग में तो हमारे पास बहुत अच्छी फुटफॉल थी 2018, इट वॉज वेरी नाइस। हम लोगों को बहुत कम मोबिलाइजेशन के लिए जाना पड़ता था बिकॉज इतने सारे एडमिशन 6-7 महीने तो बिल्कुल नहीं करनी पड़ी, बट आफ्टर 7 मंथ्स आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये तो सिर्फ गांव के ही लोग गा रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा। और मैं क्योंकि एक कैलिसेंस उसका हमारा डोनर है तो वी शुड फोकस मोर ऑन मिंट फार्मिंग कम्युनिटी दैट दे शुड कम टू द सेंटर एंड लर्न समथिंग। तो हमने फिर हमने बासा एक पॉइंट है यहाँ पर 5 किलोमीटर यहाँ से दूर है जहाँ पर बहुत मतलब टोटल कम्युनिटी वहाँ पर फार्मिंग ही करती है और मिंट फार्मर्स ही हैं। तो हमारे एक SHGs के ग्रुप्स थे पहले, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो उन ग्रुप्स में जाकर वहाँ पर सारी फीमेल्स आती हैं, वो अपने सारी प्रॉब्लम्स शेयर करती हैं। उन ग्रुप्स के अंदर मैंने जाकर के मीटिंग्स लेना स्टार्ट किया, हमने उन लोगों से जाकर बात करना शुरू किया कि आप लोग क्यों अपने लड़कियों को बाहर नहीं निकालती हैं। तो वो कहती है मैडम हमारे बच्चों के पास टाइम नहीं है, वो स्कूल जाते हैं फिर वो खेत जाते हैं। तो मैंने कहा कभी ऐसा होता होगा कि वो स्कूल नहीं जाते होंगे, कभी ऐसा होता होगा कि आपका मिंट का सीजन 3 महीने ही रहता है, उसके बाद आप तो आप ही रहते हो, मतलब मार्च टू जून एक टाइम है, आप उस टाइम मत भेजो सेंटर पर, बट आप जब भेज सकते हैं जब आपके बच्चे फ्री रहते हैं आप उन्हें तब स्किल्स लर्न करने के लिए सेंटर में भेजिए, क्योंकि वो एक ऐसे स्किल्स आप सीख जाएंगे जो आपके लाइफ टाइम के लिए है। एक बार सेंटर विजिट कर लीजिए, आप देख पाएंगे कि सेंटर में क्या क्या है। लोगों को गांव से उनके घर से निकाल कर सेंटर लाना ही पहले हमारे लिए चैलेंज बना 7 महीने बाद जब वो लोग नहीं आ रहे थे, तो उन उसके लिए हम लोगों को सबसे बेस्ट ऑप्शन जो लग रहा था वो सेल्फ हेल्प ग्रुप लग रहे, क्योंकि आप पूरे गाँव में जाओगे आपको पूरा दिन लग जाएगा, बट एक ग्रुप जहाँ पर कम से कम 40-45 औरतें मौजूद हैं, मतलब उनकी प्रेजेंस है और वो हर मोमेंट एक अलग फैमिली से आ रही है। तो कहते हैं ना अगर आपने मदर को एजुकेट कर दिया तो पूरी फैमिली एजुकेट हो गई। तो हमने मदर्स को पकड़ा, मदर्स को बताया कि आपने ये करना है अपने बच्चों के साथ, तो ये मैम बच्चों को अकेला तो नहीं खेलेंगे, हमने कहा तो आप आइए आपको आपके लिए भी सेंटर है, सेंटर तो सबके लिए है, आप आइए आपको हम अडल्ट लिटरेसी की क्लासेस देंगे, आप आइए आपके हस्बैंड आएंगे हम उनको भी अडल्ट लिटरेसी क्लासेस देंगे, आप हमसे भी सिखाएंगे, आपके बच्चों को हम कंप्यूटर सिखाएंगे, आपके बच्चों को हम ट्यूशंस पढ़ाएंगे। इतना इतना बताने के बाद मैम जो स्टार्ट हुए हैं उस गांव के लोग आना, हम लोग को लग रहा था कि हम शायद कम मोबिलाइज करना चाहिए था तो हम उसको संभाल पाते, इतना स्टाफ होने के बाद भी हमारे लिए वो चैलेंज हो गया कि अभी नहीं कैसे संभालेंगे। फिर ये हो चीज़ होती रही, फिर हमारे यहाँ मैम एक मैम सीनियर मैम हमारी आती थी, उन्होंने बोला कि कम्युनिटी एक्टिविटीज़ करते हैं, फिर हम सब लोगों ने कम्युनिटी एक्टिविटीज स्टार्ट करी। हम लोग कम्युनिटीज में गेम्स लेकर जाते थे, कम्युनिटी के बच्चों के साथ वहीं पर गेम खेलते थे, उसके बाद जब हमारा गेम पूरा हो जाता था तो फिर हम अपनी मोबिलाइजेशन स्टार्ट करते थे, क्योंकि अगर हम मोबिलाइज करने जा रहे तो हम एक ही बंदे से बात कर पाते, उसमें क्या होता था गेम खेलना स्टार्ट किया आसपास वाले देख के इकट्ठे हो गए, सारे सोचते थे कि ये कर क्या रहे हैं ये लोग, कभी कभी म्यूजिक बजा देते थे लाउड, लोग घर से निकल के आ जाते थे। फिर मोबाइल लाइब्रेरी की एक्टिविटी हमने स्टार्ट करी, हम लोग वैन में सारी बुक्स स्पीकर्स लैपटॉप्स लेकर जाते थे कम्युनिटी में, वहाँ पर सारे बच्चों को इकट्ठा करना, मैम वहाँ पर बच्चे तो किनारे रह जाते थे और उनके पेरेंट्स बाहर निकल के आ जाते थे, अच्छा आपके पास ये भी बुक है, हमारे पास ब्रेल्स तक की डिमांड आई थी कि आप ब्रेल्स लेकर आइए मैम, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें ब्रेल्स की जरूरत थी, तो वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं हुआ दोबारा जाना क्योंकि कुछ टाइम की वजह से, फिर ये कोविड आ गया तो वो चीज़ थोड़ी सी बीच में रह गई, बट अब वो हम लोग प्लान करेंगे कि हम ड्रेस मंगा करके हमको जाके प्रोवाइड करें, एटलीस्ट उनकी भी तो विश है कि वो पढ़ें। अब वो नहीं पढ़ सकते नॉर्मल बुक्स, तो ऑफकोर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें वो प्रोवाइड करा सकें।
1: अभी हम ऑडियो बुक्स भी लेके आ रहे हैं, हमने टाइप किया है कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, स्पेशली फ्रॉम फॉर द कम्युनिटी हु आर नॉट एबल टू रीड, ये ऑडियो बुक्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं आपके सेंटर में, सो दैट जो नहीं पढ़ सकते किताबें वो ऑडियो बुक्स भी सुन सकें। वेरी वेरी वास्ट वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स आपके यहाँ पे चल रहे हैं सना। आपने मैंने ये देखा कि आपने हेल्थ के ऊपर और लाइफ स्किल्स के ऊपर भी काफ़ी काम किया है, स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड। थोड़ा आप बताना चाहेंगे कि विद स्पेसिफिक इश्यूज ऑफ हेल्थ एंड लाइफ स्किल्स आपने क्या काम किया?
0: यस मैम, तो हमने हेल्थ के सेशन हमारे यहाँ अप्रैल से जनवरी 2019 से स्टार्ट हुए थे, तो उसमें डॉक्टर निधि लाठी जो हमारी कंसल्टेंट है उन्होंने आकर हमारे सेंटर्स पर सेशंस लिए थे। सेंटर के जो बच्चे सेंटर पर मौजूद होते थे वो उन्हें कनेक्ट कर लेते थे अपनी फैमिलीज को ऑनलाइन, तभी भी वो रिकॉर्ड कर लेते थे सेशंस अपने फोन्स में हम लोगों, और वो जाकर अपनी मम्मी को बताते थे कि देखिए मैम ने बताया सब्जी ऐसे धो के बनाते हैं, हमने बताया है कि ऐसे वॉश करना है, खाना ढक के रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैम ने बहुत मेहनत करी इन बच्चों के साथ, मैम क्योंकि मैम डॉक्टर है तो जब वो बताती थी तो हम लोग जितना बताते थे उससे ज़्यादा उनके बताने से उन्हें समझ आता था कि ये उनको बताते थे बच्चों को ये डॉक्टर है, स्पेशली आपसे मिलने आए हैं, आपके लिए सेशन लेने आए हैं। तो सारे बच्चे मतलब एक मैम के एक सेशन में 20-25 ऐसे बेनिफिशियरी हो जाते थे। मतलब फिर उसके बाद मैम ने सेशन लिए, मैम ने हर टॉपिक पर सेशन लिया, उनकी मेंस्ट्रुएशन पर, उनकी फिजिकल फिटनेस पर, उनके हाइजीन पर, उनके न्यूट्रिशन पर। मैम ने 2-3 साल में मैम कॉन्टिन्यूसली सेशन ले रही थी और मैम के सेशन से काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ मैम बच्चों पर, स्पेशली जो गर्ल्स आती थी ऐसे ऐसे टॉपिक्स निकल कर आते थे निधि मैम के सामने कि मैम मुझे भूख भी नहीं लगती, तो मैम उनको बेस्ट सोल्यूशन बताती थी कि आप ऐसे खाओ, आपके टाइम मत बनाओ, आपको इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग खाना चाहिए, फिर आपको धीरे धीरे भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी। मैम से बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते थे, मैम उनकी आंसर्स करती थी, क्वेरीज उनकी मैम सारी चीज़ें वो करती थी जो वो बेस्ट अपना दे सकती थी। तो निधि मैम के सेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं हमारे सेंटर पर।
1: थैंक यू सना। जब हम आपके सेंटर पर आए तो हमने ये भी देखा कि बहुत ही खूबसूरत चिकनकारी का काम वहाँ पर चल रहा था, चिकनकारी जो क्राफ्ट लखनऊ का तो फेमस है ही और ये आपके एरिया तक भी काफ़ी स्प्रेड आउट है, सो उसके बारे में आप बताना चाहेंगे कि आपने लाइवलीहुड को कैसे प्रमोट किया? बिकॉज मिंट एक बहुत ही कैश क्रॉप की तरह लिमिटेड जो है लाइवलीहुड प्रोग्राम है, सो कैसे आपने और स्पेशली ड्यूरिंग कोविड कैसे अगर महिलाओं को हेल्प हुआ, एक एडिशनल स्किल थी उनके पास, सो क्या इस चीज़ से उनको थोड़ा बहुत मदद हुई स्पेशली ड्यूरिंग दिस टफ टाइम?
0: चिकनकारी हम लोगों ने स्टार्ट करा था जब हमारा रेस्टोरेंट सेटअप हुआ था, तो चिकनकारी में पहले लोगों को लग रहा था कि यहाँ बनाएंगे तो यहाँ पे कैसे दिखेगा क्योंकि लखनऊ के बहुत करीब है, तो फिर हम लोगों ने तो ये बोला कि आप सीख लो, आपको नहीं पता कि टाइम कैसा आएगा, आपका हमेशा आप खेती नहीं कर सकते। जैसे अभी मैं बाद में इसके बारे में बात करूंगी कि जब जो बारिश हो रही है इसके बारे में बाद में डिस्कस करूँ, तो मैंने उनको यही बोला था कि आप सीखो, आप पहले देखो चिकन क्या है, आप समझो चिकन का काम कैसे होता है, वो कहाँ सेल होगी नहीं होगी वो हमारी एडिट है, पूरी इंडिया देखेगा, वो हम देखेंगे कि हमें कैसे सेल आउट करता है, आप पहले काम सीखो। तो जो जितनी भी लड़कियां थी, जो बहुत सारे बच्चे मैम ऐसे भी थे जो कहते थे कि मैम हम खेती नहीं करना चाहते, बट हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर हम खेती ना करें तो हम क्या करें। तो मैंने बोला कि यही आंसर है आपके जवाब का कि आप स्किल सीखो, आप चिकनकारी का वर्क सीखो, आप हमारे प्रोडक्शन यूनिट में जो डिजाइनर कुर्ते बन रहे हैं आप उन कुर्तों को सीखो, आप स्टिचिंग सीखो, आप एडवांस स्टिचिंग सीखिए, और आप लिमिट मत रखिए कि अगर आपने सेविंग सीखा है तो आप कंप्यूटर नहीं सीख सकते, आप डेफिनेटली कंप्यूटर के कोर्सेज भी करिए, आप अलग अलग जगह पर वैकेंसी निकलती है, शायद आप हमारे से सीख कर आप कहीं पर काम करने लग जाओ, या चिकनकारी का वर्क ऐसा है हम आपको काम देते रहेंगे, आपको हम उसका पैसा भी देंगे, हम आपको पे करेंगे, आप जो भी पीसेस बनाओगे जितने बनाओगे हम उसके अकॉर्डिंग आपको पे करेंगे। तो वो लोग पीसेस बनाते थे, हमारे पास थोड़ा सा माल इकट्ठा हुआ, फिर सेलिंग का पॉइंट आया, तो जितने हमारे यहाँ अभी आपने पिक्चर्स डिस्प्ले करे हमारे इतने सारे विजिटर्स आते थे, तो हम लोग हर विजिटर के सामने मिंट चाहे हमारे कैलसेंस के डोनर्स आए या हमारे कोई भी विजिट सेंटर पर होती थी, हम सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले करते थे और वो उन्हें, और ऐसा मैम होता भी था कि वो जनरली विद अ गुड हार्ट को बाई भी करते थे उस चीज़ को। मैंने कितनी बार ये चीज़ रिपोर्ट भी करी है कि वो आते थे और वो हमारे प्रोडक्ट्स बाय करते थे। तो उससे उन लड़कियों के फेस पर जब वो प्रेजेंट होती थी, ये मैंने इन्होंने खरीद लिया, हमने कहा हाँ तुमने मेहनत करी है इसलिए इन्होंने खरीदा है, इनको ये बाहर भी मिल जाता, ये लखनऊ जाएंगे ये लखनऊ में ले सकते थे, ये दिल्ली जाएंगे दिल्ली में ले सकते थे, बट इन्होंने इसलिए खरीदा क्योंकि तुम लोगों ने मेहनत करी। मैम दैट वो वर्ड्स उन्हें इतना कॉन्फिडेंस देते थे, उनको मोटिवेशन मिल जाता था कि नहीं मैम आप सही कहती हैं, हम सीख ले हम सीखेंगे इसको।
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऐसी कोई स्टोरी जो आप इतने सारे बेनिफिशरीज के साथ काम करते हैं, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ आप काम कर रहे हैं, इतने सारे आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, ऐसी कोई एक दो लाइफ चेंजिंग स्टोरी या इंस्पायरिंग स्टोरीज जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं?
0: श्योर मैम, हम चिकन की स्टोरी पहले आपको बताते हैं। मैम हमारी जो ट्रेनर थी, ट्रेनर से स्टार्ट करते हैं, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी सेंटर पे ज्वाइन करने से 1 साल पहले। मैम मैंने 3 लोगों का इंटरव्यू लिया, बाद में उनको ही मैंने फाइनलाइज करा जस्ट बिकॉज उनकी क्राफ्ट बहुत अच्छी थी, और जब उनको मैंने सिलेक्ट करा मैम उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि उनके हस्बैंड नहीं है, बिकॉज शी सेड कि अगर मैम हम आपको ये पहले बता देते तो शायद आपको लगता कि नहीं इन्हें रख लेते, बट उनके अंदर वो चीज थी कि नहीं मुझे मेरे स्किल जॉब मिलनी चाहिए, मेरे रीजन के लिए जॉब नहीं मिलनी चाहिए, एंड दैट थॉट चेंज माई माइंड कि नहीं शी इज राइट, उनमें स्किल है। मैम जब फर्स्ट टाइम उन्होंने कुर्ता बनाया और जो मैंने मैम को दिया था गीता मैम को, एंड मैम शी वाज सो हैप्पी, सो हैप्पी कि मैम ये पहले ही मैम इतनी बड़ी, हम 2 कुर्ते देते सॉरी एक कुर्ता मैम आपको और एक गीता मैम को, तो मैम शी वाज लाइक ये दोनों मैम इतनी हाई मैम, इतनी हाई प्रोफाइल मैम है, ये हमारे लिए कुर्ते पहनेंगी। मैंने कहा डेफिनेटली पहनेंगी मैम, पहन कर आएंगे और आप देखोगे। तो मैम शी वाज लाइक मतलब उनकी कोई लिमिट नहीं थी खुशी की कि वो कैसे कितना खुश थी। फिर मैम उन्होंने यहाँ पर 1 साल 1.5 साल तक की जॉब की, जो कोविड में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई थी, बट उन्होंने यहाँ पर 1 साल जॉब किया, एंड मैम शी वॉज एबल टू फीड हर किड्स, उनकी 2 बेटियाँ हैं 1 बेटा है, मैम शी वॉज सो हैप्पी कि मैम आपने मुझे जॉब दिया, मैम मैं अपने बच्चों को सपोर्ट कर पा रही हूँ। दिस मैम हमारे यहाँ की सेकेंड स्टोरी है, एक सेकेंड स्टोरी है मैम जिसको हम लोगों ने महिपाल जी ने जिसकी स्टोरी कवर की थी, गायत्री पाल मैम उसके वो यहाँ पर सीलिंग पहले करने के लिए आई थी बेसिक सीलिंग का कोर्स। मैम उसने बेसिक सीलिंग में एडमिशन लिया, उसने बेसिक सीलिंग किया, फिर उसने कंप्यूटर्स देखे, बोला कि मैम मैं सीखूँ कैसे, मुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती। मैम मैंने खुद उसे 3 महीने बैठकर इंग्लिश पढ़ाई है और इतनी मेहनत से पढ़ाई है कि मैम उसने फिर कंप्यूटर कोर्स किया है, देन उसने एडवांस टीचिंग में एडमिशन लिया, फिर मैम उसने एडवांस टीचिंग सीखा, उसके बाद बोलते कि मैम मुझे मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे मशीन खरीदनी है। मैंने कहा ठीक है तुम मुझसे ले लो, तुम मशीन खरीद लो। तो बोलती मैम आप वापस ले लेंगी, मैंने कहा नहीं हम वापस ले लेंगे, ठीक है तुम जो पहले मशीन खरीद लो। फिर दूसरे दिन आके बोलती मैम थैंक यू बट मैंने मशीन ले ली है, एंड मैम एट दिस टाइम उसके पास इतने सारे ऑर्डर्स आते, पूरे गांव के मैम वो कपड़े बनाती है, एंड शी इज सो हैप्पी बिकॉज उसके फादर भी नहीं है, अभी जल्दी एफआईआर हो गए, तो शी इज सपोर्टिंग हर मदर, हर लिटिल ब्रदर एंड सिस्टर फॉर इन देयर एजुकेशन। तो मैम खुद को भी ये फील होता है कि रीड इंडिया के थ्रू हम लोग ये कर पा रहे हैं कि रीड इंडिया ने इतना अच्छे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रखे हैं कम्युनिटी के लिए कि जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत है। मैम ये इसे हम नहीं एनालाइज कर सकते पैसों के साथ, ये जो खुशी होती है हम यहाँ कभी एनालाइज नहीं कर पाएंगे पैसे के साथ, कि हम पैसे तो कोई भी दे सकता है मैम किसी को। मैम ये स्किल उनके साथ लाइफ टाइम है,
1: ये स्किल उनके पास हमेशा रहेगी लाइफ में, कभी भी कोई भी मुसीबत आए, जैसे कि आप बताना चाह रहे हैं कुछ बारिशों के बारे में, आई थिंक अभी जो रेन्स आ रही हैं उसके बारे में, चाहे कोविड हो चाहे ऐसा कोई।
0: मैम ये दोनों चीजों ने यहाँ की मतलब पूरी कम्युनिटी को हिला दिया था, पहले तो कोविड पूरा 20 जैसे गया मैम, सबके बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गए, सबके जो भी स्मॉल स्टार्टअप है वो खत्म हो गए, जो जो हालत मैम जो रेट फार्मर्स को यहाँ पर मिला है, मतलब उनको तो ये था कि फसल में ना ऐसे आग लगा देते हैं इसको बेचेंगे नहीं, हम इतना वो मायूस हो गए थे बिकॉज क्योंकि रेट ही नहीं आ रहा था। अब इतनी बुरी हालत चल रही है, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता था मैम, गवर्नमेंट के भी हाथ में नहीं थी वो चीज़, बिकॉज वो बिल्कुल हो गया था। और मैम कोविड खत्म हुआ फिर दूसरा वेव आया, सेकेंड वेव में मैम जो बचा था जिसके पास वो भी खत्म हो गया, उसके बाद से मैम ये रेगुलर रेन अभी हो रही है, आपको न्यूज में देखते होंगे यूपी में इतने जबरदस्त तरीके से अलर्ट्स जारी हो गए थे इतनी ज्यादा बारिश हुई मैम, जिसने जो क्रॉप लगाया था वो सब वेस्ट हो गया, पूरा पूरा पानी भर गया। और एक बार ही हो गया, दो बार ही गया मैम, कॉन्टिन्यूसली 15-15 दिन बारिश हुई, इतने दिन बारिश हुई। ये सारे स्टाफ और बच्चे सेंटर में कैसे आते थे मैम, हम लोग जानते, और उससे भी बढ़कर उनके सारे क्रॉप्स बर्बाद हो गए।
1: वेरी हार्टनिंग टू हियर दैट। इस दौरान में अगर किसी की भी कोई कला उनके काम आई है तो शायद जो हमारा मुद्दा है कि एक स्किल आपके पास होना चाहिए, चाहे आज आपको ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कभी ज़रूरत पड़ने पे वो काम आ सके, उनकी फैमिली के लिए, उनकी लाइफ को जारी रखने के लिए। तो वी होप कि हमारे सेंटर से जिन बच्चों ने या जिन महिलाओं ने कुछ सीखा है उसको वो यूज़ कर रहे हों।
0: यस मैम, मेरे पास
1: जी
0: मैम बच्चों के कॉल आने स्टार्ट हुए, बच्चे मिलने भी आए थे सेंटर पर कि मैम आप हमें कुछ काम दे दीजिए। तो मैंने बोला कि ठीक है हम आपको चिकन का देते हैं, आप चिकन का स्टॉक बनाकर आप हमें चिकन करके दो, उन कुत्तों पे हम उनका स्टॉक करेंगे, फिर हम उन्हें सेल आउट करके आपको हम आपके अमाउंट देते हैं, तो एटलीस्ट कुछ हेल्प आपकी हो जाएगी। मैंने उन्हें बोला देखो, इसीलिए मैंने बोला था कि चिकन सीख लो, शायद तुम्हें कल काम आए। उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि ये पैंडेमिक आएगा, फिर ये रेन आएगी, फिर पैंडेमिक सेकेंड वेव आएगा, थर्ड वेव आएगा। तो मैम ये सब चीज़ें वो खुद रियलाइज करने लगे कि स्किल सीखना कितना जरूरी है। फिर मैम वो बाकी अपने फैमिली वाले बच्चों को भी लेके आते कि मैम इनका भी एडमिशन कर लीजिए, आप इन्हें भी सिखाइए।
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मैं सभी को बताना चाहूंगी कि हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग वो ही कपड़ों को हम भी इनकरेज करते हैं कि इवन विद इन द रीड एंटायर टीम हम लोग चाहते हैं कि हमारे सेंटर्स में जो बन रहा है हम भी उसके क्या कहते हैं, वी आर एम्बेसडर्स ऑफ दोज प्रोडक्ट्स। तो हम बहुत खुश होते हैं अगर सेंटर से हमें कुछ ऐसा लेने को मिलता है। जिस चिकनकारी कुर्ते की सना बात कर रही थी, हमने उसे बहुत पहना है, आप प्लीज अपनी ट्रेनर को बता दीजिएगा। इनफैक्ट मैम जो है हमारी, वो तो कोशिश करती है कि जिस सेंटर पे जाएं वो जरूर वहां से एक कुर्ता स्टिच करवाएं, क्योंकि ये जो आपने बात कही थी ना कि जब उस औरत को लगता है कि उसके हाथ का बना हुआ कपड़ा कहीं बाहर जा रहा है और इतना अप्रिशिएट हो रहा है, उसकी सेल्फ एस्टीम जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है उसके, उसको हम किसी भी लीडरशिप सेशन और किसी भी मोटिवेशनल सेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। सो इनफैक्ट हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम इन प्रोडक्ट्स को अपने सर्कल में, अपने मार्केट में, जो हमारा नेटवर्क है, रीड का जो नेटवर्क है, उसमें प्रमोट करें, चाहे हमारी फैमिलीज हैं, चाहे हम लोग खुद हैं। सो प्लीज पास दिस मैसेज टू योर टीम ऑल्सो दैट आपके प्रोडक्ट्स काफ़ी जो हैं मतलब मार्केट में अप्रिशिएट होते हैं। सो कीप अप द गुड वर्क। And I think this is the perfect time to call our core mentor, Dr. Geeta Malhotra, because unhi ki ye vision hai jisko hum sab milke aage leke ja rahe hain. So I welcome ma'am to the show. Good evening, ma'am. We have Sana from Barabanki today.
2: Yeah, I have been listening the discussions. Sana, your answers were very, very encouraging. Good afternoon. And I highly appreciate your dedication and the commitment you have given to the Reed Community Library and Resource Center in Barabanki in Badagaon. Sana, because mujhe puri memories meri revive ho gayi hain jab se main Barabanki jana shuru kara tha aur जगह ढूंढनी शुरू करी थी सेंटर बनाने के लिए व्हेन वी इंटरैक्टेड विद कैलेसन्स टीम इन यूएस एंड देन वी थॉट दैट वी हैव टू स्टार्ट द वर्क देयर। जो सबसे पहली कंडीशन हमारी थी कि हम मिंट फार्मिंग कम्युनिटीज को अल्टरनेटिव लाइवलीहुड देंगे, बिकॉज तब हमें पता नहीं था कि पैंडेमिक आएगा या कुछ और चैलेंजेस आएंगे लाइफ में। So we started that we will give a second livelihood to the mint farming community, because mint is a seasonal crop, right? And I would like to know from you that how many mint farming communities you reached through your interventions and how many have been benefited from that.
0: Ma'am, we have, as per you know, ma'am, we have reached to till 25 to 30 villages and they have maximum population of mint farmers. So ma'am, if we calculate like this, that 80% of the population in each village is committed to the center, they are connected, they are coming to the center, they have learned the skills and they have moved out. Ma'am, there are many children in the middle class. I remember one boy was there. His name was Ram, I think. So he was from farming communities and he was working in the farms earlier. But when he came to the center and he said, ma'am, I have passed out my 12th. Now what should I do? So I asked him to learn computers because you're a boy, you can learn computer and do something. And you can search for a job also, but not only computer, but you should continue with your studies. So he asked me, ma'am, should I do graduation? So I said, yes, please go and get admission in graduation and come to the center. We will teach you computer, take English classes from here, take the books, use the library. Because, and when he came to the library, he was like, ma'am, itni sari kitabe hai yahan par, ma'am, aap ye bhi kitab hai, ma'am, ye bhi book hai, ma'am, agar main kuch mangaun to mil jayega. I was like, yes, please, aap order dijiye, hum ma'am ko list forward karte hain, ma'am, mujhe sari book provide karwa diye, ma'am, hamare demands par sari book India mein deta hai. Head office turant approve karta hai books ki jab bhi demand jaati hai. Aap please mujhe bataiye aapko kaun si books chahiye. So when he demanded, aur bahut sare bachchon ki demand thi, to book ke liye humne dala tha, fir approval ho ke ma'am books bhi aa gayi thi hamare paas. And then he was sitting in the library for 3 to 4 hours regularly. And after that, you won't believe, he was in second year only. And he got the job in Lucknow in Fern Mall. And he's earning 15 to 18,000 per month right now. And he was like, he came to me with a box, with a sweet box. And he was like, ma'am, this is because of your fault. I said, I didn't say this. Please say thanks to you. Ma'am, these are the stories which inspire me a lot.
2: No, Sana, this is your contribution. Teed India is just a facilitator because you are sitting there and you are in touch with the villages. I also wanted to know ki bada gaon mein to bahut sare log aate hain wahan pe. To aas paas ke kitne aur gaon hain jisse community itni door door se chalkar aati hai aapke center pe, aur koi aise public transport bhi nahi hai jahan tak mujhe knowledge hai. So I would also like to listen back to revive my memories about that.
0: Yes, ma'am. Today only I visited one place, Hasnapur, ma'am, and that, ma'am, I was tired by going by car. But ma'am, the children, the girls from that village is coming to the center on bicycles. Ma'am, I was so shocked ke, ma'am, aaj main soch rahi thi ki wo jab bacche aayenge to maine puchungi ki aap 25 kilometer cycle chalakar aate ho sirf center ke liye. To abhi to wo aaye bhi nahi, barish hone lagi, but ma'am, itne aise se villages hai. This is the latest decision I'm telling you ki ye 25 kilometer 30 kilometer ma'am 25 to 30 kilometer bahut tough hai cycle chalakar center tak aa pana. And ma'am, they are coming 5 kilometer, 10 kilometer, 12 kilometer. Ma'am, itne itne distances se ladkiyan aati hain. Aur ma'am, wo aake bas itna hi karti hain, ma'am, please hamara timing morning ke batches mein laga dijiye, hum evening mein jayenge to der ho jayegi hame. To ma'am, wo sare bachche ko hum log morning mein entertain karte hain, sorry, classes ki hum log morning mein hi lete hain.
2: Sana, ye baat sunke mujhe aise lag raha hai ki unke parents bhi kitne supportive hain, because they wo bhi allow karte hain ki hamari betiyan itni door cycle chala ke chali jaye, aur उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि एक सेफ स्पेस पे जा रहे हैं. और रास्ते में भी क्योंकि वो ग्रुप में आती है इकट्ठी, तो उनको कोई ऐसा चैलेंज फेस नहीं करना पड़ता. दैट इज द ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम योर साइड, बिकॉज यू मोटिवेट देम फॉर कंटिन्यूइंग देयर एजुकेशन एंड दे फाइंड दिस स्पेस सेफ, प्रोटेक्टेड. सपोर्ट इतना मिलता है, बुक्स उनको यहाँ से मिलती हैं, नॉलेज सपोर्ट मिलता है, आप उनके इश्यूज रिजॉल्व करती हैं. तो यही एक कम्युनिटी लाइब्रेरी का जो सर्विसेज हैं, यू आर प्रोवाइडिंग मोर देन व्हाट इज नीडेड एक्चुअली. सो दैट इज हाईली अप्रिशिएटेड. मैं और भी, मेरे मन में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पर मैं थोड़ा और भी आपसे जानना चाहूँगी कि एक तरफ तो आप कम्युनिटी को हैंडल करती हैं, जिनको समझाना, मोटिवेट करना, इनकरेज करना और फिर उनको टाइम भी देना, और दूसरी तरफ है आपके विजिटर्स जो नेशनल और इंटरनेशनल डोनर्स हैं और जो विजिटर्स हैं, क्योंकि कैलिसंस हैव द ऑफिस इन पुणे, दे कम टू यूपी क्वाइट ऑफन बिफोर कोविड. तो आप कैसे अपना दोनों तरफ बैलेंस बना के रखते?
0: Ma'am, sometimes so we have the information that they are coming, and sometimes they come like this only. So, ma'am, I'm very punctual. I'm regular in the office because I don't like taking leaves at all, and I don't allow the staff also to take leaves unnecessarily. So this is the thing, that when they come without any information, we all are

0: center, what services we are giving at the center, what are the facilities that are being offered to the students in the area. So this happens every time, and the visitors are very frequent in Badagaon center. So last year, like pandemic se to abhi tak isse do hi visits hui hain, but 2018 and 19 was full of visitors. Every month there is somebody has to come to the center, and we sometimes feel like surprise that they are saying they're sitting over here in the office, and we see somebody moving inside the office, and I was like, good afternoon sir, tum bhi aap kaam kar rahe ho to ekdam disturb mind mein, and everybody aage samne se khada ho jata hai. I was like, I take 2 minutes to think that who are they, and he's like, kabhi kabhi chehra hi nahi yaad aata ki kaun hai ye. So it happens sometimes with me.
1: And when you deal with the community, then you just simply motivate them, encourage them, listen to their issues, problems, and then you, you know, inspire them to come to the center regularly, right? So these yes, two ma'am. Things go parallel, right?
0: Exactly, ma'am. I remember one story.
1: Yeah, please continue.
0: Ma'am, I remember one story. There was one girl in my beauty section. She was a trainer in beauty and bar. So she was coming from like 7 to 8 kilometers far away. Ma'am, the one boy was there who was continuously usko pareshan karne ja raha tha morning mein aane ke time pe, morning sham ko jaane ke time pe. Then ma'am, she complained 2-3 times to me ki ma'am main nahi aaungi center, ma'am mujhe nahi sikhana, because abhi ghar mein pata chal jayega to ma'am bahut problem ho jayegi mere liye. And she was a trainer, so even though she was a student also, then I had to take care of it. Then ma'am, hamare paas ek prereq tha hamara jo hamare liye committee mein jaake session leta tha. I told her ki abhi ghar pe kuch mat bolo. Then I have told Deepak, aap jao aaj ma'am ko leke ghar बाइक से और आप देखो कि मैम को कौन परेशान कर रहा है. फिर मैम उन्होंने वो जाके घर पे छोड़ के आया, फिर उसने मुझे आकर बताया कि मैम ये है. फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला एक बार को कि आप जाइए, आप इनके घर में जाकर कंप्लेन करके आइए कि ये क्यों परेशान कर रहे हैं. मैम एक बार हिमसेल्फ वेंट टू फ्रेंड देयर, और उसके बाद ही रिजॉल्व दैट इशू. तो मैम ये सारे चैलेंजेस गाँव में बहुत आते, क्योंकि मैम बिल्कुल सन्नाटा होता है, एकदम रास्ता अंधेरा होता है, बाघ होती है, आसपास बहुत सारे फार्म होते हैं, बाघ होती है जिसमें रोड पे भी आपको ठीक से दिखाई नहीं देता, सारे पेड़ से इधर उधर से कवर होते. सो हम वी फेस दीज चैलेंजेस एवरी टाइम विद गर्ल्स विद बॉयज.
1: सना, मेजर ऑफ द पॉपुलेशन इन बाराबंकी एंड बड़ागाम आर मुस्लिम पॉपुलेशन, राइट? एंड मेनी गर्ल्स कम फ्रॉम दीज फैमिलीज टू योर सेंटर. Are there any stories of delayed age at marriage or continuing higher education, convincing their parents that they want to learn more from the REIT center and establish themselves, then they'll get married?
0: Yes, ma'am. And there was one girl, she was coming to the center from 2018 only. So in 2019, when she was about to get married, she came to me कि मैम मैंने तो पहले अपने मम्मी पापा को बोल दिया कि आप शादी तो मेरी कर रहे हो, बट मैं जब तक अपना अपना एडवांस टीचिंग का कोर्स सेंटर से मेरा पूरा भी हो जाएगा तब तक मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना वहाँ. तो मैम शी वॉज लाइक शी स्टेड हियर फॉर 6 months, शी लर्न कम्प्लीटेड हर कोर्स एंड देन शी वेंट बैक. मुस्लिम कम्युनिटीज में तो स्पेशली जैसे बच्चे 10th 12th की लड़कियाँ आ जाती है, पेरेंट्स स्टार्ट सर्चिंग फॉर देयर मैरिज. बट मैम अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन हैज ऑल्सो कम हियर बड़ागाम. आई हैव ऑल्सो अर्लियर डिस्कस दैट कि अभी तो पेरेंट्स काफ़ी अवेयर हो रहे हैं धीरे धीरे, बिकॉज दे सी ऑल अदर कम्युनिटीज की उनके घर में बच्चे पढ़ाई करते हैं, देन दे गेट मैरिड. यहाँ पर भी मैम लोगों का काफ़ी माइंड ट्रांसफॉर्म हुआ है. जितने मेरे कम्युनिटी विजिट्स, जितना मेरा पेरेंट्स के साथ इंट्रैक्शन हुआ है, हम सब लोगों ने उनको यही बोला है कि आप पहले अपने बच्चे को एटलीस्ट फिजिकली फिट हो जाने दीजिए, देन लेट हर गेट मैरिड. एजुकेशन तो बाद में आती है, आपको ये स्किल्स वो भी बाद में आता है, बट लेट हर गेट फिजिकली फिट टू गेट मैरिड. एटलीस्ट वो 18-19-20 साल की होनी चाहिए किसी की भी शादी करने के लिए. मतलब 20 इज वेरी यंग, इफ यू काउंट एज पर द करंट सिचुएशन 20 इज ऑल्सो वेरी यंग टू गेट मैरिड. सो दिस हैपेंस एवरी टाइम दैट वी हैव टू काउंसिल द पेरेंट्स, वी हैव टू काउंसिल द गर्ल्स, एंड दे कम एंड दे यू नो दे डिस्कस विद मी एवरीथिंग, स्पेशली द मुस्लिम कम्युनिटीज.
1: Very nice, very nice. It's very satisfying to know all these things, because it's not only about Muslim community or

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का।
1: ये वतन का राग।
0: महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और पत्रकार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अविस्मरणीय योगदान ने देश के स्वाधीनता संग्राम को एक निर्णायक दिशा दी थी। गरम दल के नेता रहे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने हुंकार भरते हुए कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और उनके इस उद्घोष ने भारतीय जनमानस को जगा कर रख दिया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई सन 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी के पास ग्राम चिखली में हुआ था। उनका पूरा नाम बलवंत गंगाधर तिलक था। उनके पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक एक शिक्षक और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही तिलक के पिता का निधन हो गया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बिना किसी व्यवधान के अपनी शिक्षा जारी रखी। पिता की मृत्यु के 4 महीने के अंदर ही उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली और डेक्कन कॉलेज पूना में दाखिला लिया। उन्होंने सन 1876 में बीए ऑनर्स की परीक्षा पास की और सन 1879 में मुंबई विश्वविद्यालय से एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। तिलक जी आरंभ से ही अन्याय के घोर विरोधी थे। कानून की पढ़ाई करते समय ही उनकी मित्रता गोपाल गणेश अगरकर से हुई। दोनों देश की स्थिति पर लंबे विचार विमर्श किया करते थे। मन में ये चिंता थी कि देशवासियों की सेवा की कौन सी सर्वोत्तम योजना बनाई जा सकती है, और अंततः दोनों ने ये संकल्प लिया कि वो कभी भी सरकारी नौकरी नहीं करेंगे तथा नई पीढ़ी को सस्ती और अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राइवेट हाई स्कूल और कॉलेज खोलेंगे। उनके सहपाठी दोनों की आदर्शवादी बातों का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन तिलक जी अंग्रेजी शिक्षा के घोर आलोचक थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली छात्रों के मन में भारतीय सभ्यता के प्रति हीन भावना पैदा करती है, उसका अनादर सिखाती है। इसी कारण उन्होंने आगे चलकर डेक्कन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की ताकि भारत में शिक्षा का स्तर सुधर सके। अपने पिता की ही तरह लोकमान्य गंगाधर तिलक ने भी पहले अध्यापन का कार्य आरंभ किया। कुछ समय उन्होंने स्कूल और कॉलेज में गणित पढ़ाया, लेकिन देश के हालात उन्हें बेचैन कर रहे थे। वो कराहती हुई जनता की पुकार सुन पा रहे थे। 19वीं सदी के आखिरी सालों में स्वदेशी का नारा लेकर बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के गांव-गांव घूमे। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि स्वराज का वक्त आ चुका है और हमें अपना सब कुछ इस हेतु झोंक देना चाहिए। महाराष्ट्र में गणपति बप्पा मौर्या की गूंज सन 1893 के पहले भी थी ही। गणेश जन्मोत्सव परंपरागत तरीके से घरों में मनाया जाता था, लेकिन इसे सामाजिक राजनीतिक एकता और जन जागरण का हथियार बनाया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती अब सार्वजनिक समारोह बन गए और राष्ट्रीय एकता का राग इस बहाने बह चला। यही एकता आगे चलकर गुलाम भारत की आजादी के संघर्ष में एक बेजोड़ हथियार साबित हुई।

ये वो वक्त था जब तिलक जी को लगता था कि भारतीयों पर हो रहे अत्याचार और उनके संघर्ष की कहानी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। तब लोकमान्य तिलक एक प्रखर पत्रकार के रूप में सामने आए। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना की जागृति के लिए मराठी में केसरी और इंग्लिश में द मराठा नाम से दो दैनिक समाचार पत्र शुरू किए, जो जनता में बहुत लोकप्रिय हुए। इन समाचार पत्रों के जरिए ब्रिटिश शासन की कटु आलोचना के लिए वो विख्यात हो गए। केसरी में छपने वाले उनके लेखों की वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन तिलक जी की आवाज बुलंद रही। सन 1896 में बंबई प्रेसिडेंसी को भयंकर अकाल का सामना करना पड़ा। तिलक जी पूरी तरह राहत कार्यों में जुट गए। उन्होंने बंबई सरकार से अकाल संहिता लागू करने का आग्रह किया। अकाल का प्रभाव कम करने के लिए उन्होंने सरकार को अनेक सुझाव भी दिए। पूना में उन्होंने बहुत सस्ती अनाज की दुकानें खोलकर अकाल के कारण होने वाले दंगों को रोका। तिलक जी ने प्लेग की बीमारी के दौरान देशवासियों की जो सेवा की, उसे भी भुलाया नहीं जा सकता। जैसे ही पूना में प्लेग के लक्षण प्रकट हुए, उन्होंने हिंदू प्लेग अस्पताल शुरू किया और कई दिनों तक इसके लिए धन जुटाने का कार्य किया। पूना के अधिकांश नेता उस दौरान शहर छोड़कर बाहर चले गए थे, लेकिन तिलक जी वहीं रहे। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया। वे खोजी दलों के साथ स्वयंसेवक के रूप में गए, अस्पताल का प्रबंध किया, शिविर में निःशुल्क रसोई की व्यवस्था की और जनता के सामने आ रही कठिनाइयों के बारे में सरकार को बताते रहे। सन 1890 में लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए थे, लेकिन इसके नरम दल के लिए तिलक जी के विचार ज्यादा ही उग्र थे। फलतः जल्दी ही कांग्रेस से उनका वैचारिक मतभेद सामने आया। गरम दल में लोकमान्य तिलक के साथ लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल शामिल हुए, जिन्हें हम आज भी लाल बाल और पाल की तिकड़ी के रूप में जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक के विरोध की गूंज अंग्रेजी हुक्मरानों को बेचैन कर रही थी। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जब सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की, तो तिलक जी ने इस विभाजन को रद्द करने की मांग का जोरदार समर्थन किया और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की वकालत की, जो जल्दी ही एक देशव्यापी आंदोलन बन गया। उनके द्वारा शुरू की गई राजनीतिक गतिविधियों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और सत्याग्रह को ही आगे चलकर गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक असहयोग आंदोलन के रूप में अपनाया। अपने पत्र केसरी में तिलक जी ने अंग्रेजों की नीतियों की पोल खोलते हुए एक लेख लिखा था, जिसका शीर्षक था देश का दुर्भाग्य। इसे पढ़कर अंग्रेजी हुकूमत जैसे तिलमिला उठी। उनको भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के अंतर्गत राजद्रोह के अभियोग में 27 जुलाई सन 1897 को गिरफ्तार कर लिया गया। तिलक जी एक अनुभवी वकील थे। उन्होंने अपने बचाव में जो ऐतिहासिक जिरह की, वो कई दिनों तक लगातार चली, लेकिन अंततः उन्हें 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई और बर्मा के मांडले जेल में बंद कर दिया गया।

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एक निर्भीक पत्रकार तो थे ही, साथ ही वो एक गंभीर चिंतक और लेखक भी थे। तिलक जी ने वेदों के काल निर्धारण से संबंधित अपने अनुसंधान के परिणाम स्वरूप वेदों की प्राचीनता पर एक निबंध लिखा, जो ज्योतिषीय गणित अवलोकन के प्रमाणों पर आधारित था। इस पूरे निबंध को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक की प्रशंसा यूरोप और अमेरिका के कई विद्वानों ने की और तिलक जी के निष्कर्षों को पूरी तरह से स्वीकार किया गया। उन्होंने कई किताबें लिखीं। उनके द्वारा लिखित पुस्तकें हैं द ओरियन, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष आदि। लेकिन श्रीमद भगवद गीता की व्याख्या को लेकर बर्मा के मांडले जेल में लिखी गई गीता रहस्य उनकी सर्वोत्कृष्ट कृति है, जिसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इसमें उन्होंने श्रीमद भगवद गीता के कर्म योग की वृहद व्याख्या की। उन्होंने इस ग्रंथ के माध्यम से बताया कि गीता चिंतन उन लोगों के लिए नहीं है जो स्वार्थपूर्ण सांसारिक जीवन बिताने के बाद खाली समय में बैठकर इसे पढ़ने लगते हैं। गीता रहस्य में ये दार्शनिकता निहित है कि हमें मुक्ति की ओर ध्यान रखते हुए भी सांसारिक कर्तव्य कैसे करने चाहिए। मांडले जेल से रिहा होने के बाद तिलक जी एक बार फिर से जुट गए स्वराज के अभियान में। अप्रैल सन 1916 में उन्होंने एनी बेसेंट की मदद से होम रूल लीग की स्थापना की। स्वराज के संघर्ष में ये एक अहम पड़ाव था। होम रूल आंदोलन के समय बाल गंगाधर तिलक को बहुत प्रसिद्धि मिली। इसी दौरान उनकी सार्वजनिक सेवाओं को देखते हुए लोग उन्हें लोकमान्य कहकर पुकारने लगे। तिलक जी लगातार जनता को एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार कर रहे थे। वो केंद्रीय असेंबली से लेकर क्षेत्रीय सरकारों तक भारतीयों की भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहते थे। फूट डालो और राज करो, अंग्रेजों की इस साजिश के खिलाफ तिलक जी ने भारतीय जनमानस में राष्ट्रीय एकता का मंत्र फूंका। लखनऊ समझौता, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक एकता के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया वो अविस्मरणीय है। भारतीय क्रांति के जनक कहे जाने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1 अगस्त सन 1920 को मुंबई में अंतिम सांस ली। तिलक जी को याद करते हुए महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। लेकिन सच तो ये है कि बाल गंगाधर तिलक प्रतीक हैं उस मानव गरिमा के, जहां स्वराज सबसे ऊपर है। उनके जीते जी तो देश आजाद नहीं हो सका, लेकिन अनगिनत भारतवासियों के मन में वो स्वराज की जिद बो गए थे और अंततः देश आजाद हुआ। नमन ऐसी महान विभूति को।

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हमने पहले स्लाइड्स में बात करी थी कि हम सबके गोल्स हम डिफाइन करते हैं। लीडर्स हमेशा अपने गोल्स डिफाइन करते हैं और उस पे बाय हुक एंड क्रूक, वेदर दे स्टैंड अलोन, वेदर दे हैव चैलेंजेस, वेदर दे हैव पीपल दोज हु आर नॉट सपोर्टिंग देम, दे वॉक थ्रू ऑल दीज थिंग्स। तो इसको क्या बोलते हैं? चेजिंग योर गोल्स। हम अपने गोल्स को चेज करते हैं कि हम कैसे उनको फुलफिल करें। तो जब हम अपने गोल्स चेज करते हैं, हमारे ड्रीम्स, हमारे एम्बिशंस, तो हमें डिसरिगार्ड द पीपल हु टेल यू इट कैन नॉट बी डन। जो लोग बोलते हैं कि ये तो हवा में बात है, ये हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं हो सकता, तो उन लोगों को डिसरिगार्ड ही कर देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो क्या होगा, अगर 10 में से 5 लोग बोल रहे हैं नहीं हो सकता, तो आपकी 50% एनर्जी तो उन्होंने लाइक वैनिश कर दी, बिकॉज यू ऑल्सो गेट कंफ्यूज वेदर वी आर एबल टू डू और नॉट, राइट? तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में सुनना नहीं चाहिए, और इसका यही मकसद है। डिसरिगार्ड मींस, मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल बायकॉट कर दो उनके साथ। डिसरिगार्ड मींस डोंट वेस्ट योर एनर्जीज, योर टाइम, योर पेशेंस टू लिसन टू देम, दोज हु आर सेइंग इट कैन नॉट बी डन, बिकॉज यू एज अ लीडर हैज सम मिशन, मीनिंगफुल काम करना है आपको। तो अगर आप मीनिंगफुल काम करने में कोई भी ऐसे बोल रहा है कि ये नहीं हो सकता, तो वो हमें नजरअंदाज कर देना, हमें सुनना ही नहीं है। टर्न अ डेफ ईयर टू क्रिटिक्स, राइट? बिकॉज क्रिटिसिज्म करना बहुत इजी है, पर साथ चल के काम करना बहुत टफ है। तो मैं ये भी हमेशा अपनी टीम को बोलती हूँ कि अगर कुछ नहीं हो रहा फील्ड पे, तो हमें एनालाइज करने की भी जरूरत है कि शायद वो कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और उनको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, राइट? सो व्हाट यू अचीव इन लाइफ विल बी लिमिटेड ओनली बाय योर एम्बिशंस। कुछ एम्बिशन होगी लाइफ में कुछ करने के लिए, विदाउट एम्बिशन तो लाइफ ही नहीं है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो जब हमें कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना है, तो हमारे एम्बिशंस तो है ही है, राइट? और अगर हम अपनी अचीवमेंट्स को कम करेंगे, तो हमारे एम्बिशंस भी लिमिटेड हो जाएंगे। और अगर हम अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर काम करते रहेंगे, और नेचुरली रिजल्ट आएगा। क्योंकि पिछली बार मैंने बोला था कि अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव सोच है, तो व्हेन वी लर्न हाउ टू गिव द रिटर्न विल बी डेफिनेटली देयर, राइट? तो ये वहां भी फिट इन होता है कि व्हाट यू अचीव इन लाइफ विल बी लिमिटेड ओनली बाय योर एम्बिशंस। गिव अप चेजिंग योर ड्रीम्स इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, बट गेटिंग टू योर गोल्स एंटेल्स हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और हमें अपने आप को ऐसे ट्यून करना है कि हम मेहनत करें। हम सब लोग मेहनत कर सकते हैं और कर भी रहे हैं और करेंगे भी, पर अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है, अपने आप को टाइम देना है, अपने घर को टाइम देना है, अपने काम को टाइम देना है, और हम कैसे हार्ड वर्क करें, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। मैनी गिव अप एट द थॉट लेवल, कि जब हम थॉट ही लेते हैं अपने माइंड में, हम सोचते ही हैं, तो हम कह देते हैं नहीं नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, इसको तो सोचना ही बेकार है, राइट? होता है ना ऐसे हमारे साथ? और बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं एक्शन लेवल पे। 3-4 दिन काम किया, 5 दिन किया, महीना किया, फिर वी गिव अप, नो आई एम नॉट फाइंडिंग एनी वैल्यू, एनी इंटरेस्ट, एनी थिंग इन इट, बिकॉज वी आर नॉट विजनरीज, राइट? दोज हु डिफाइन द गोल्स विद वर्ड्स, थॉट्स एंड एक्शन गो अहेड टू देयर लैडर अप। हम बोलते हैं, मतलब कि हम कमिट करते हैं, हम उसके ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं और अपनी सोच को एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, और हम साथ साथ सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं अपनी प्रोग्रेस की तरफ, तो हम
Somehow we are able to realize our dreams. Somehow we are able to, ambitiously do the things what we want to do. Do you all agree with me what I have said? Chasing your goals. बिल्कुल ये practical चीजें हैं. मैंने कोई theory नहीं लिखी है यहाँ पे. सारी ये practical day to day हमारी life में हमारे साथ ऐसे ही होता है. तो हम एक स्टोरी छोटी सी मैंने लिखी नहीं है प्रेजेंटेशन में. आई विल जस्ट नरेट अ स्टोरी टू यू. सब लोगों को पता है फ्रॉग उछलता है, छोटे छोटे स्टेप लेके उछलता है बहुत. एक बार एक बहुत सारे फ्रॉग्स इकट्ठे जमीन पे थे और अगर अपनी निगाहें ऊपर करके देख रहे थे कि बहुत बड़ा टीवी टावर है. एंड दे कलेक्टिवली डिसाइडेड कि आज हम टीवी टावर पे क्लाइंब करके चले जाते हैं. राइट तो चलना शुरू कर दिया उन्होंने ग्रुप में. थोड़े जो बहुत ज्यादा तेज छलांग मार सकते थे वो ज्यादा तेज आगे बढ़ गए, जो कम छलांग मार सकते थे वो पीछे पीछे थे. कुछ ने तो वहीं पे ग्राउंड पे ही छोड़ दिया और जोर जोर से आवाजें लगाने शुरू कर दी कि पागल हो, क्यों जा रहे हो, गिर जाओगे, इतनी ऊपर जा रहे हो, किसी के पैर के नीचे आ जाओगे, दब जाओगे, ऊपर पहुंच गए तो वापस कैसे आओगे, कोई आपको वहां से गिरा देगा. मतलब कि दे वर शाउटिंग इन देयर ओन लैंग्वेज. तो तीन चार ऐसे फ्रॉग्स थे जो आगे बढ़ गए और टीवी टावर तक पहुंच गए. एंड दे वर वेरी हैप्पी रीचिंग द टीवी टावर. ऊपर टॉप में पहुंच गए एंड दे सेड ओ गॉड इट्स अ ड्रीम फुलफिल्ड. और वहां से फिर नीचे आ गए क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी. वहां पे अपना झंडा लगा दिया उन्होंने कि हमने तो टीवी टावर के टॉप पे पहुंच गए. जब वापस आए तो नीचे जो फ्रॉग्स बैठे हुए थे उनकी वेट कर रहे थे, जो आधे रास्ते से वापस आ गए थे और जो गए ही नहीं थे, थॉट लेवल पे ही गिव अप कर दिया था, वो सारे बैठे और उन्होंने वो दो तीन जो फ्रॉग्स थे उनसे एक एक करके पूछा कि तुम लोग कैसे चले गए वहां पे. और जो भी हमने तो इतना शाउट किया था, मत जाओ, डर रहे थे हम लोग. तो जिसने टॉप पे पहुंच गया था ना, वो फ्रॉग कहता है कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं आप क्या कह रहे थे मुझे, क्योंकि मैं तो बह रहा था. वो फ्रॉग ही बह रहा था, उसने कुछ सुना ही नहीं. लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसने आसपास परवाह ही नहीं करी कि क्या हो रहा है, क्या शोर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा. बस उसके माइंड में तो एक ही था कि मुझे टीवी टावर पे जाना. तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसके. टर्न ए डेफ ईयर टू क्रिटिक्स. तुम सुनो ही नहीं कि लोग क्या बोल रहे हैं, कि तुम्हारा मिशन इतना क्लियर है, तुम्हारा तुम्हारा गोल इतना क्लियर है कि आपको वो कंबाइन करना है. बाकी के दो से पूछा कि तुम्हारा क्या था, मतलब कि तुम कैसे चले गए ऊपर. तो उसने बोला कि हमने ये जो डेफ फ्रॉग था उसको फॉलो किया, बिकॉज हम यही सोच के चल रहे थे कि अगर ये हमारा लीडर है, हमें रास्ता दिखा रहा है, तो हम तो इसके पीछे पीछे चलेंगे, तो हम तो पहुंच ही जाएंगे ऊपर. तो हमने तो क्रिटिसिज्म को बॉदर ही नहीं किया, रास्ते में हमने किसी की परवाह नहीं करी और हम इसके पीछे पीछे पीछे पीछे चल के ऊपर पहुंच गए इसके साथ. तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे. और फ्रॉग बहुत टिमिड होता है देखा जाए तो, बहुत छोटा सा होता है. तो वो क्या टीवी टावर पे चढ़ने का, तो वो उसने तो अपनी लाइफ में इमेजिन ही नहीं किया होगा कि कभी टीवी टावर पे मैं चढ़ जाऊंगा. पर उसका गोल बहुत क्लियर था, उसका माइंड में बहुत ही पावर थी कि उसको चढ़ना है. और दो लोग जो उसके साथ चढ़े वो उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे क्योंकि उनका ट्रस्ट फैक्टर था उसके ऊपर कि ये अगर चढ़ जाएगा तो हम भी चढ़ जाएंगे. तो ये इन नटशेल इस स्टोरी को आप प्लीज याद रखना और अपने गोल्स को कैसे चेस करना है वो इस स्टोरी के माध्यम से. बहुत इजी स्टोरी है और इस माध्यम से आप जरूर अपने गोल्स को चेस कर लोगे और पहुंच भी जाओगे. तो आई फाउंड दिस स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग. आई थॉट लेट मी शेयर विद यू. बहुत लंबी स्टोरी थी, मैंने तो उसका जिस्ट बताया आपको. तो आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम दीज स्मॉल स्मॉल स्टोरीज एंड अचीव आर बिग गोल्स.
नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स इन लाइफ्स फोकस ऑन गैप्स एंड रिजॉल्व. हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हर एक के काम में प्रॉब्लम्स है. वी ऑल फेस प्रॉब्लम्स इन लाइफ्स. वी एनकाउंटर हर्डल्स दैट सीम टू ब्लॉक आर प्रोग्रेस. बहुत सारे हर्डल्स आती हैं और हमारी जो अचीवमेंट है उसको वो ब्लॉक कर देती है. वी ऑलवेज डिस्कस एंड हाईलाइट द हर्डल्स एंड आर ऑब्सेस्ड बाय देम एंड फेल टू ऑब्जर्व द अपॉर्चुनिटीज दैट मे बी ओपनिंग अप इन फ्रंट ऑफ अस. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये जब मैं पढ़ रही हूँ तो सुबह मैं जब अपनी टीम के साथ बात कर रही थी तो ये बहुत फिट बैठती है वहां पे कि हम हाइलाइट्स करते हैं जो हर्डल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, और हम उस इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उसके साथ कि हम हमेशा फेलियर्स की ही बात करते हैं. पर उसमें से एक जो रे ऑफ होप है, जो एक सनशाइन की छोटी सी किरण है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं. और उसमें से जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, जो हमारे सामने आने वाली हैं, हम उसको बिल्कुल ही उस ब्राइटनेस से नहीं देखते जैसे मैं एक सन की रे की ब्राइटनेस की बात कर रही हूँ. तो अल्टीमेटली वही है चीज जो मैंने पहली स्लाइड्स में बोला था कि हम हमेशा क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं, हम अपनी परेशानियों को ज्यादा लेके बैठ जाते हैं, हम अपने सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं. और जो हमें अपॉर्चुनिटीज, कई बार ऐसे होता है कि हम 80% अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर जाते हैं और 20% में हम फिर नीचे डाउनफॉल आ जाता है. हम अपने आप को इतना स्ट्रांगली बना पाते कि हम 20% और मेहनत कर रहे हैं तो शायद हम आगे बढ़ जाएंगे. तो इस चीज का भी हर समय हमें ध्यान रखना चाहिए. मैं बहुत आई एम वेरी पॉजिटिव इन द सेंस कि आई एम वेरी आई नो एवरीथिंग कि चैलेंजेस क्या आते हैं, बट उन चैलेंजेस को लेके बैठे रहेंगे तो कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे. पर अगर हम अपॉर्चुनिटीज को भी देखेंगे कि क्या है, तो तभी आपको पता है ट्रेनिंग्स में हम बहुत सारे साइंटिफिक टूल्स भी यूज करते हैं, स्वॉट एनालिसिस दिस दैट, पर द मेजर स्वॉट एनालिसिस इज योर थॉट प्रोसेस विच इज द इनर वॉइस व्हाट इज टेलिंग यू राइट. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. वी फोकस ऑन प्रॉब्लम्स रादर देन द सॉल्यूशंस. The psychologists have proved that what your mind focuses on that tends to grow. Scientists ये भी कहते हैं कि हमारे ब्रेन में 80% जो नेगेटिविटी है वो इतनी हावी हो जाती है कि हमें पॉजिटिव सोचने ही नहीं देती. पर हमें अपने आप को, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ऐसा ट्यून करना है कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपॉर्चुनिटीज की तरफ बढ़ें. और अपॉर्चुनिटीज ऐसे डोर स्टेप पे तो बहुत ही कम आती हैं, अपॉर्चुनिटीज को भी चेज करना पड़ता है. और अपॉर्चुनिटीज को चेज हम तभी कर सकते हैं जब हम 100% कमिटेड हैं अपने गोल की तरफ कि हमें ये करना ही करना है. अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं. ये सारे जार्गन्स हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं ना कि हम एक अल्टरनेट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं. व्हाट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इज लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज. अगर एक रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता कहाँ खुल रहा है, तीसरा रास्ता हमें कहाँ लेके जाएगा, हम कैसे उस रास्ते पे चलें कि हम अपने जो पड़ाव है उनको पार कर लें. सो द प्रॉब्लम्स लुक बिगर, फोकस ऑन गैप्स एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स. द लास्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अगर गैप्स को एनालाइज कर लें और हम उसके ऊपर बातचीत करें अपनी टीम के साथ कि हम इन गैप्स को कैसे रिजॉल्व करें, तो हमारे प्रॉब्लम्स के बहुत सारे सॉल्यूशंस हम खुद ही निकाल सकते हैं और हमें किसी से मदद लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है. नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर्स आर विजन. ग्रेट लीडर्स हैव अ विजन. They can see into the future. They have a clear, exciting idea of where they are going and what they are trying to accomplish and are excellent at strategic planning. मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में पहली दो स्लाइड्स में बताया. ये डेफिनेशन है कि ग्रेट लीडर्स विजन होती है, हम बहुत देर से बात कर रहे हैं इसकी. They can see the future.
वो जो मैं रे ऑफ सनलाइट की बात कर रही हूँ, दे हैव अ वेरी क्लियर एक्साइटिंग आइडियाज, उनके आइडियाज बहुत क्लियर हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, एंड दे आर गोइंग वेयर दे आर गोइंग एंड वॉट दे आर ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश, वो उनको सब क्लियर है, एंड दे हैव वेरी एक्सेलेंट वेरी गुड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑल्सो. तो जो लीडर्स हैं उनमें ये सब हुनर है, और इन हुनर को शेप देके वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वही विजनरी कहलाते हैं. दूसरा क्या है, करेज. वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर इज करेज. अब वो फ्रॉग में तो करेज ही था जो नीचे से जमीन से खड्डे में से निकल के टीवी टॉवर पे क्लाइंब कर गया. हैविंग द क्वालिटी ऑफ करेज मीन्स दैट यू आर विलिंग टू टेक रिस्क इन द अचीवमेंट ऑफ योर गोल्स विद नो एश्योरेंस ऑफ सक्सेस. अब आज अगर मैं कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती हूँ, मैं प्रपोजल लिखती है, स्मिता हम शुरू करते हैं प्रोजेक्ट, मुझे ये तो नहीं पता कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, मैं बिल्कुल नहीं डिफाइन कर पाती हूँ. क्या मुझे पता था कोविड आ जाएगा जब हम प्रपोजल लिख रहे थे? पर हमने क्या किया, कोविड में हमने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, हम आईसीटी प्लेटफॉर्म पे आ गए और हम बेटर अचीव कर पाए क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन पे कनेक्ट कर लिया और हमारे कार्यक्रम कहीं पे भी रुके नहीं. तो करेज था कि हम कैसे करें. अभी बहुत सारे कॉरपोरेट ऑफिसेस हैं वो बंद पड़े हैं जो सितंबर 2020-21 में खुलेंगे, बट हम सेंटर्स भी खोल के बैठे हैं, हम ऑफिस भी खोल के बैठे हैं, हम ट्रैवल भी कर रहे हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग द रिस्क. वाई रिस्क? रिस्क इज नॉट ओनली फॉर माई ओन जॉब, रिस्क इज फॉर द वर्क द होल ऑल द सेंटर्स ऑफ रीड इंडिया इज डूइंग इन इंडिया. दे आर रीचिंग टू 400,000 प्लस पीपल. उनका क्या होगा, वो काम कहाँ जाएगा? वो गोल तो अचीव करना है हमें, तो वो कलेक्टिव गोल है जो हमें अचीव करना है, तो हम रिस्क भी ले रहे हैं, राइट? और मुझे एश्योरेंस नहीं है सक्सेस की. मुझे आज नहीं पता कि रीड इंडिया का अगले साल एनुअल टर्नओवर क्या होगा, बिकॉज बस हम मेहनत कर रहे हैं, हम प्रपोजल्स लिख रहे हैं, हम डोनर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, हम एग्जिस्टिंग डोनर्स इफ बेनिफिशरीज हैं इस लाइन पे, मैं उनको भी एजुकेट करना चाह रही हूँ इस लेवल पे कि हमारे जो डोनर्स हैं हमारे साथ पिछले 6-6 साल से काम कर रहे हैं, क्या है, ट्रस्ट है. क्या देखते हैं कि ग्राउंड पे हम अच्छा काम कर रहे हैं. क्यों हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि हम उनको फुल रिस्पेक्ट और बहुत डिग्निटी से हम उनके सामने बात करते हैं. फोर्थ पॉइंट क्या है कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं उनके सामने, जो रियलिटी है वही हम उनको बताते हैं कि ऐसे रियलिटीज हैं, ये चैलेंजेस हैं, हम इसको फेस कर रहे हैं. कोविड के दौरान हमने उनको बोला कि हम नहीं ट्रैवल कर पाएंगे, इट वॉज यूनिवर्सली नोन टू एवरीवन, बट हम आईटी प्लेटफॉर्म पे आ गए, आईटी प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है, इमीडिएट नीड्स क्या है, कम्युनिटी की मास्क चाहिए, खाना चाहिए, सैनिटाइजर्स चाहिए, इमीडिएटली दे शिफ्टेड टू ऑल दीज थिंग्स. किसने उनको बोला करने के लिए? हम ही ने बोला. तो ट्रस्ट फैक्टर इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने हम पे विश्वास किया. और कोई ऐसा डोनर नहीं है एक्सेप्ट वन और टू अमॉन्ग 13-14 डोनर्स जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कि किसी ने एक साल में ही हमारे साथ काम करके बंद कर दिया हो. दे ऑल आर कंटिन्यूइंग विद अस. सो बिकॉज देर इज नो सर्टेनिटी इन लाइफ और बिजनेस, एवरी कमिटमेंट यू मेक एंड एवरी एक्शन यू टेक एंटेल्स अ रिस्क ऑफ सम काइंड. हम कुछ भी करते हैं उसमें रिस्क तो है ही है, पर हम रिस्क को सोच के बैठे रहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे. हम करके उस रिस्क को कैसे मिटिगेट करेंगे, वो हमारा एक्शन है, राइट? तो जब हम कहते हैं वर्ड्स थॉट्स एंड एक्शन, तो जब हम एक्शन लेते हैं तो हम रिस्क को साथ में लेके चलते हैं, और रिस्क को मिटिगेट करना भी हमें सिचुएशंस सिखाती हैं, राइट? तो दिस इज वेरी गुड क्वालिटी ऑफ ए लीडर.
आप लोग सब ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, आपका रोजमर्रा का ये काम है कि आप क्या रिस्क आपके सामने आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और आपको नहीं पता. आपको पता था आपके स्कूल बंद हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं पता था. आपने जब स्कूल चलाए थे तो आपने हमें तो नहीं ये कमिटमेंट दी थी कि 1 साल के बाद हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे, क्योंकि हम बिजनेस की तो बात ही नहीं कर रहे थे. तो चैलेंजेस हमने भी समझे आपके, हमने कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट दी, बट विजन हमारी एक थी कि हम पूरे भारत में स्कूल चलाएंगे, हम पूरे भारत में लाइब्रेरीज बनाएंगे, हम पूरे भारत में औरतों को सक्षम करेंगे, हम पूरे भारत में आत्मनिर्भरता का नारा लगाएंगे कि हमने औरतों को सक्षम बनाया, वो अब अपना पैसा कमा रही है, चाहे 2,000 कमाए, चाहे 4,000 कमाए, चाहे 6,000 कमाए, राइट. और हमारी कोशिश हमेशा रहेगी उनको हम 2,000 से 6,000 तक लेके जाए, 6,000 से 12,000 तक लेके जाए, ये कोशिश हमने करनी करनी है. सेंटर्स को सेल्फ सस्टेन करना है, ये हमारा गोल है, हमारा मिशन है. हम कैसे करें उसको हमें करना है. जो मैं अभी ट्रूथफुलनेस की बात कर रही थी, इंटीग्रिटी में वही लिखा हुआ है, इंटीग्रिटी रिक्वायर्स दैट यू ऑलवेज टेल द ट्रूथ टू ऑल पीपल इन एवरी सिचुएशन. ट्रूथफुलनेस इज द फाउंडेशन क्वालिटी ऑफ द ट्रस्ट दैट इज नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस. कुछ भी हम कर रहे हैं तो हमारा ओपननेस ट्रस्ट फैक्टर इतना स्ट्रांग होना चाहिए हर एक सिचुएशन पे, क्योंकि हम मैं ये डेफिनेशंस क्यों शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि हम एक सोशल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें ट्रस्ट फैक्टर बहुत जरूरी है. इवन बिजनेस में भी बहुत जरूरी है. मैं ये नहीं कहूंगी कि बिजनेस में तुम झूठ बोल सकते हो, जितना तुम सच बोलोगे, जितने तुम ट्रांसपेरेंट रहोगे, उतना आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा. द बेस्ट क्वालिटीज अगेन अनदर इज ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिटी डज नॉट मीन दैट यू आर वीक और अनश्योर ऑफ योर सेल्फ, राइट. इट मीन्स दैट यू हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस टू रिकग्नाइज द वैल्यू ऑफ अदर्स विदाउट फीलिंग थ्रेटन्ड. समझ में आया सबको? मतलब कि अगर मैं बहुत ही हलीमी से बात करती हूँ, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ, बहुत प्यार से बात

पर्सनालिटी में लाना बहुत जरूरी है. दिस इज वन ऑफ द रेयरर एट्रीब्यूट्स और ट्रेट्स ऑफ गुड लीडर्स बिकॉज इट रिक्वायर्स कंटेनमेंट ऑफ वन्स ईगो. अपनी ईगो को हम पैरों में लेके चलते हैं, क्योंकि हम ईगो को अगर सिर पे लेके चलेंगे तो हमें हर एक की बात बुरी लगेगी, हमें हर एक का कमेंट बुरा लगेगा, हम क्रिटिसिज्म में चले जाएंगे, हम पॉजिटिव सोच को नेगेटिव में बदल देंगे. पर अगर हम अपनी ईगो को अपने शूज में डाल के रखेंगे तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, जो हमारी सोच है, वो इतनी क्लियर होगी और वो हमारे गोल के ऊपर फोकस करेगी विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट. राइट? इट मींस दैट यू आर विलिंग टू एडमिट यू कुड बी रॉन्ग, दैट यू रिकग्नाइज यू मे नॉट हैव द आंसर्स, बट इट मीन्स दैट यू गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू, विच मैनी पीपल स्ट्रगल टू डू. बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं कि ये फ्लैग तो हमारे कंधे पे ही लगना चाहिए. हम कभी भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते और हम अपनी गलतियां दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं कि ये अगर गलत हुआ तो उसकी वजह से हुआ. मैं तो ठीक था, बिल्कुल, मैं तो टीवी टावर पे चढ़ रहा था. अगर वो डेफ नहीं होता तो वो किसको ब्लेम करता? जो नीचे से शाउट कर रहे थे फ्रॉग्स, जो आधे रास्ते से उनको कह रहे थे वापस चलो वापस चलो, जो नीचे से कह रहे थे ये तो पागल है, इनका तो दिमाग खराब है, टीवी टावर पे चढ़ के क्या करेंगे. पर इसका ये मतलब नहीं था कि वो नहीं चढ़े. पर उसने क्रेडिट किसको दिया? जो दो लोग दूसरे थे, दो फ्रॉग्स दूसरे थे, उसने क्रेडिट किसको दिया? जो डेफ था उसने उसको दिया कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं श्योर. और जो दो वो थे उसने बोला हमारा लीडर चढ़ रहा था तो हम भी चढ़ गए. लीडर एक दूसरे को क्रेडिट देना भी एक बहुत बड़ी कला है कि अगर हम कुछ अचीव करते हैं तो टीम की वजह से अचीव करते हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर पाते हैं. तो क्रेडिट भी देना बहुत जरूरी है और ये अपनी पर्सनालिटी में आप इम्बाइब कर सकते हैं. ये जो तीन क्वालिटीज मैं ह्यूमिलिटी की बता रही हूँ ये बहुत लाइफ में पे करती हैं इन द लॉन्ग रन. इतनी ज्यादा पे करती है ना कि इसका इम्पैक्ट आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. राइट? और ये ऐसी क्वालिटीज हैं तीनों की वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आपकी पर्सनालिटी के साथ इतनी इम्बाइब हो जाती हैं कि आपकी पर्सनालिटी ही वही बन जाती है. तो अगर एक लीडर बनना है तो इसके ऊपर आप जरूर फोकस करिए और जो बाकी के तीन है ना, विजन, करेज और इंटेग्रिटी, ये अपने आप आ जाते हैं. बिकॉज इफ यू हैव दिस ह्यूमिलिटी एज योर पर्सनालिटी ट्रेट, देन द रिस्पॉन्स इज 100% श्योर. You will definitely get the response. उसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है. The best qualities में तीसरा आ रहा है ये strategic planning. Leaders have the ability to anticipate trends well in advance of their competitors. Competitors तो हर एक जगह पे ही होते हैं. NGOs मशरूम कर रही हैं इतनी, पर हम उनको threat ना मान के अगर हम उनके ट्रेंड्स को समझ लें कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या करें, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें तो ये बहुत अच्छी बात होती है. दे कॉन्टिन्यूअली आस्क बेस्ड ऑन व्हाट इज हैपनिंग टुडे, वेयर इज द मार्केट गोइंग, वेयर इज इट लाइकली टू बी इन 3 months, 6 months और 1 year और 2 years. दे डू दिस थ्रू थॉटफुल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. फॉर एग्जाम्पल, अब आप सब लोग प्रोडक्शन यूनिट्स भी चला रहे हैं और वोकेशनल सेंटर्स भी चला रहे हैं. अब आने वाले टाइम में जो एनजीओस पॉलिसी लेवल पे काम कर रही हैं उनको फंडिंग नहीं मिल रही है, बिकॉज सरकार कहती है हमें तो अभी मतलब कि ग्रास रूट्स में काम चाहिए. राइट? तो हम लोग क्या है, अगर हम अपने कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो हम एक बेटर स्टेक पे हैं कि हमारे फंड्स क्यों नहीं बंद हो रहे हैं, क्योंकि हम उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जिनको जरूरत है, जिनके साथ हमें अभी काम करना है, उनको सक्षम बनाना है. तो दैट्स वाई द डोनर्स, जब मैं कह रही हूँ कि वो हमें पिछले 5 साल से 6 साल से सपोर्ट करें, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम

0: ग्राउंड ग्राउंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, ग्राउंड पे काम कर रही है। और जब हम मैं बिजनेस की बात करती हूँ तो ये सोच आपको बनानी है जब आप अपने सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं कि मार्केट क्या मांग रही है, अगले 3 महीने में मार्केट क्या मांगेगी, अगले 6 महीने में मार्केट क्या मांगेगी और अगले 2 साल में क्या ट्रेंड्स होंगे। दे डू दिस थ्रू थॉटफुल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। और ये इतना बड़ा गैप है हमारे लीडर्स में जो हमारे सेंटर्स चला रहे हैं कि हम इस पे सोच नहीं बना रहे हैं, राइट? हम आज के बारे में सोचते हैं और 1 महीने के बारे में सोचते हैं, पर उसके बियॉन्ड हम सोच ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम इतने इंग्रॉस्ड हैं और सब चीजों में, हम ये सस्टेनिंग एंटरप्राइज को लेके फोकस नहीं हो पा रहे हैं। Because of increasing competitiveness, only the leaders and organizations that can accurately anticipate future markets can possibly survive. Only leaders with foresight can gain the first mover advantage. First mover advantage क्या होती है कि हम जितने लोग और भी काम कर रहे हैं उनसे हम आगे alone कैसे, सबसे आगे कैसे stand करें। तो ये जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अब मैं बात रीड इंडिया की नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, अब मैं आपके इंडिविजुअल सेंटर्स की बात कर रही हूँ, उसको मैं नाम दे रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे लेके जा सकते हैं? क्या आप लोग मुझे 1 पेज विजनरी नोट लिख के दे सकते हैं दैट you refine and make as your goal, which is very, very important when we are taking leadership trainings. This is the practical action which you can do for yourself, right? तो मैंने पिछली बार जब वो उनकी ट्रेनिंग हुई थी स्टोरी टेलिंग की सैटरडे को, तो मैंने बोला था कि आप अपने सेंटर्स के बारे में अपनी अपनी स्टोरी, जब से शुरू हुआ, कैसे हुआ, आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट कि आप जहां बैठे हो आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या विजनरी हो उसको कहाँ लेके जाना चाह सकते हो, क्या आप लिख के दे सकते हो मुझे? दैट विल बी अ ग्रेट ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, राइट? They focus on the strengths of the organization, on the things that the company does best in satisfying demanding customers in a competitive marketplace. आप किस पे फोकस कर रहे हो? अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास कंप्यूटर्स हैं, आप डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हो। जिनको कंप्यूटर्स नहीं आता, कभी आपने उनको बोला कि आगे आने वाले टाइम पे देखो कोविड ने ही हमें सिखा दिया कि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म आना चाहिए? जिनको नहीं आता, दे आर हाईली क्वालिफाइड बट दे आर अनएजुकेटेड। बिकॉज अगर कंप्यूटर यूज करना नहीं आता तो हम अपनी लाइफ को आगे कैसे चलाएंगे? मुझे पेटीएम नहीं आता था, मैंने पेटीएम सीखा। मुझे बैंकिंग ट्रांजेक्शन ऑनलाइन नहीं आती थी, मैंने बैंकिंग ट्रांजेक्शन सीखी। बिकॉज बैंक कह रहे थे कि 60+ के लोगों को हम बैंक आना अलाउ नहीं करेंगे, हम नहीं एनकरेज करते। तो टाइम ने मुझे सब कुछ सिखाया। इसी तरह से अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, हम एक पेपर पे लिखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम, हमारे कस्टमर्स कौन है, हमारे बेनिफिशियरीज, राइट? और हम उनको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं अपनी सर्विसेज से, हम कैसे इसको सेल्फ सस्टेन बना सकते हैं, दैट यू पीपल हैव टू टॉक एंड डिसाइड, राइट? Your ability as a leader to call the shots and make sure that everyone is focused and concentrated on the most valuable use of their time is essential to the excellent performance of the enterprise. मैंने जान के ये business language लिखी है यहाँ पे, because हमारा 1/3 focus organization का enterprise ही है। तो इसका ये भी मतलब है कि क्या हम अपना टाइम जो 8 घंटे 10 घंटे हम लगा रहे हैं वो हम फ्रूटफुली यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एवरी डे वेदर इट्स एडिंग वैल्यू टू माई ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, ये बहुत जल्दी आपके ऊपर भार आने वाला है। ये बहुत जल्दी अभी आप अपनी संस्था को चलाने के लिए आगे बढ़ेंगे और ये सारे पॉइंट्स आपको उस समय याद आएंगे कि गीता मैम ने ये सारे पॉइंट्स हमें बताए थे, राइट? द लास्ट पॉइंट इज कोऑपरेशन। गेन द कोऑपरेशन ऑफ अदर्स बाय मेकिंग ए कमिटमेंट टू गेट अलोंग वेल विद ईच की पर्सन एवरी सिंगल डे। रोज आप अपने कनेक्शंस, अपनी नेटवर्किंग, अपने स्टाफ का लाइक यू नो टीम वर्क को हमेशा ये सोचो कि हम कैसे रिफाइन करें इसको, हम कैसे इकट्ठे आगे बढ़ सकते हैं, किसमें क्या स्ट्रेंथ्स हैं। आपको मैं ये भी बोलूंगी कि आप ये एक एक्सरसाइज करो, मैं भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रीड में करूंगी कि हमारे जितना स्टाफ है, 5 है 6 है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच द ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन। सी दीज 5 जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव बीन गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। These 5 qualities I have the strength, I can contribute additionally. Do this exercise. This will really help you to do that, right? You always have a choice when it comes to a task. You can do it yourself or you can get someone else to do it for you. Which is it going to be? Ye exercise aapko bahut bahut help karegi. मैं दोबारा से ये पॉइंट्स पढ़ना चाहूंगी आपके सामने, बहुत इम्पोर्टेंट है। विजन, करेज, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, फोकस एंड कोऑपरेशन, ठीक है? आप इनको सेल्फ एनालिसिस भी करें और ये 7 पॉइंट टीम में बैठ के डिस्कस भी करें, और जो एक्शन पॉइंट्स मैंने बताया अगर आप उन पे फोकस करेंगे तो आई एम 100% श्योर यू कैन रीच द टीवी टावर, राइट? लीडरशिप स्टाइल, बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल हैं, बहुत सारे, बट मैं जो हमारे को सूट करता है वो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल, हम कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटीज, हम ऐसे ही थोड़ा लिख रहे हैं उसको। अभी हम डायरी प्रिंट करा रहे हैं आप सब लोगों के लिए, उसके ऊपर लिखा है 14 ईयर्स ऑफ सर्विस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटीज। झूठ तो नहीं लिख सकते ना, हम कर रहे हैं तभी तो हम लिख रहे हैं ना। इज ऑफन डिफाइंड एज ए सिंगल मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल। दिस स्टाइल वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड ड्यूरिंग द लेट 1970s एंड लेटर एक्सपेंडेड अपॉन बाय रिसर्चर बर्नार्ड एम बास। मैं क्यों ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो जार्गन्स हैं ये कहीं ना कहीं सच हुए हैं और तभी हम इनको आगे लेके चल रहे हैं और हम इस पे बात कर रहे हैं, ठीक है? दीज लीडर्स टेंड टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक एंड पैशनेट। दे आर नॉट ओनली कमिटेड टू हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल but also to helping group members fulfill their potential. ये sentence में मैंने summarize किया है जो last 7 points मैंने बताया है एक leader की qualities के बारे में। अब leader की qualities तो बता दी कि leader को करना क्या है। पहले तो हमने goals भी chase करे, फिर हमने अपने वो points भी यहाँ पे highlight करे best qualities के, फिर अभी हम कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बेस्ट है क्योंकि वो इमोशनली इंटेलिजेंट है। इमोशनली इंटेलिजेंट का मीन्स है कि मैं दूसरों के पर्सनालिटी की कदर करती हूँ, उनके थॉट्स की कदर करती हूँ, उनके जो वॉट एवर दे आर शेयरिंग और सेइंग और हेल्पिंग आई रिस्पेक्ट दैट। और ये एनर्जेटिक भी है और पैशनेट भी है, तो इन सबको कंबाइन करके हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं ये हमें बहुत ध्यान रखना है। रिसर्च शोज दैट दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप रिजल्ट्स इन हायर परफॉर्मेंस। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप हैं तो उसकी परफॉर्मेंस हमेशा हायर होगी एंड मोर इम्प्रूव्ड ग्रुप सेटिस्फेक्शन। आपको सेटिस्फेक्शन होगी कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपकी सोच के मुताबिक कर रहे हैं, हमारी सोच कॉमन है, हमारे हमारे थॉट्स कॉमन है और हमारे एक्शन भी कॉमन है। तो ये इस पे रिसर्च हो चुकी है कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल है ये हमेशा संस्था को आगे लेके जाता है, कभी भी संस्था को पीछे नहीं करता है, क्योंकि हम डिक्टेटर नहीं हैं। हम मींस रॉब से और दबाव से काम नहीं करा रहे हैं, हम लोगों को मोटिवेट करके काम करा रहे हैं, हम लोगों को इंस्पायर करके काम करा रहे हैं। तो यही एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाने का बेस्ट तरीका है। द लास्ट स्लाइड इज कि जब हम मोटिवेशन की बात करें, मैंने अभी मोटिवेशन वर्ड यूज करा था, तो मोटिवेशन है क्या चीज? हम बहुत वर्ड यूज करते हैं कि हम मोटिवेशन कर रहे हैं, हम मोटिवेट कर रहे हैं, पर उसको समझने की भी जरूरत है। मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, गाइड्स एंड मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स। इट इज व्हाट कॉजेस यू टू एक्ट। मोटिवेशन ये नहीं कि हमने दो बात कर दी तो मोटिवेट हो गए हम। हमें उसको एक्शन में कैसे लाना है, अपने बिहेवियर में कैसे लाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 3 पॉइंट्स हैं इसके, एक्टिवेशन, परसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी। हम मोटिवेट तो करके हम अगर चुप करके बैठ जाएंगे तो कोई भी मोटिवेट नहीं होगा। उसके साथ हम बोलते हैं ना कि हम हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। हैंड होल्डिंग का क्या मतलब है कि हम उनके साथ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन मतलब कि वी आर वॉकिंग विद देम, राइट, वी आर डूइंग वर्क विद देम। और परसिस्टेंस जो मैंने बोला था, परसिवेरेंस, एक स्लाइड में पिछले 3-4 सेशन में मैंने बात की थी परसिस्टेंस की, हम कितना उसको कंटिन्यूअसली करते हैं, चाहे फेलियर्स आए चाहे चैलेंजेस आए, और किस इंटेंसिटी के साथ करते हैं। अगर हम एक्टिवेशन, परसिस्टेंस और इंटेंसिटी को कंबाइन करके हम एक्शन ओरिएंटेड काम करते हैं, तो तभी हम कह सकते हैं कि हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, राइट। हर एक इंपॉर्टेंट वर्ड का पीछे मीनिंग होता है। बहुत सारे, मैं इधर एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हम ट्रेडमिल पे चढ़ते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, राइट, हम बटन दबाते हैं तो ट्रेडमिल चलता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक्टिवेट कर देते हैं ट्रेडमिल को, हम चल रहे हैं, हम 2 मिनट करते हैं, हम थक जाते हैं, हमारी बॉडी हमें बोलती है कि नहीं, अब हम नहीं और भाग सकते। वही मैं ब्रिगेडियर वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ कि पहले तो तुम अपनी लेग से भाग रहे थे, अब अपने माइंड से भागो। तो हम परसिस्ट करते हैं, हम घड़ी देखते हैं, अच्छा 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। जब हम 10 मिनट ट्रेडमिल पे भाग लेते हैं इंटेंसिटी के साथ, तो क्या हुआ, हमारा जो, हमारे पसीने भी छूटते हैं, हमारा वेट भी कम होता है, तो हम स्लोली अपने गोल पे पहुंच रहे हैं कि आज मुझे अगर 1 महीने में मुझे 10 किलो वेट कम करना है, तो मुझे ट्रेडमिल में 10 मिनट से कम नहीं भागना है, राइट। दैट इज मोटिवेशन, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। और जो जिम में कोच होता है वो आपको मोटिवेट कर रहा है, इंटेंसिटी आपकी वर्ड आ रहा है, आपको परसिस्टेंस की बात कर रहा है, आपको बोल रहे ट्रेडमिल पे भागो। बहुत सिंपल एग्जाम्पल से मैंने आपको ये चीज समझाई कि मोटिवेशन है क्या। हमारे यहाँ पे लड़कियां आती हैं सीखने के लिए और हम बीच में ही छोड़ देते हैं उनको, वो चली जाती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हम उनको मोटिवेट इन 3 पॉइंट से नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो ये बहुत जरूरी है। हेल्प इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ पीपल एज दे वर्क टुवर्ड्स गोल। एफिशिएंसी इम्प्रूव करने की जरूरत है। हेल्प पीपल टेक एक्शन, एनकरेज पीपल टू एंगेज इन हेल्थ ओरिएंटेड बिहेवियर्स। हेल्थ ओरिएंटेड बिहेवियर्स मतलब कि अगर तबीयत ही खराब हो गई तो वो सेंटर में तो आएगी नहीं, राइट। हेल्प पीपल अवॉइड अनहेल्थी एंड माल एडेप्टिव बिहेवियर्स। ये दूसरा रिस्क मैं बात कर रही हूँ कि जो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस हैं उसको रोकने की जरूरत है, राइट। बहुत जरूरत है रोकने की, क्योंकि हम, हमारा माइंड इतना नेगेटिव भागता है कि हम छोटी छोटी बात पे दूसरों के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं, हमें विश्वास ही नहीं बैठता। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, पर इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अगर हम ट्रांसपेरेंट हैं, है ना, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रस्टवर्दी हैं, जो मैंने पीछे क्वालिटीज बताई हैं, अगर उसको हम मद्देनजर रखेंगे तो हम एक दूसरे पे डाउट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट चल रहा है यहाँ पे. हेल्प पीपल फील मोर इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइव्स, बहुत इस पे हम बात कर चुके हैं, 10 स्केल फॉर्मूला ही इस पे है. इम्प्रूव ओवरऑल वेलबींग एंड हैप्पीनेस. तो ये मैं आप सबको समझाना चाह रही थी थोड़ा, क्योंकि मेरी 7 प्रेजेंटेशंस थोड़ी लाइट थी, ये थोड़ी सी मैंने टफ की है. बिकॉज किस लिए टफ की है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए. एक लीडरशिप को करना क्या है, एक लीडर में क्या क्या होना चाहिए. अगर मैं इसको रिट्रेट करूं, आप प्रेजेंटेशन स्टाइल देखेंगे कि मैंने गोल्स की पहले बात की, फिर मैंने एक लाइट सी स्टोरी सुना दी, फिर उसके बाद मैंने बोला कि हम नेगेटिव ना सोचें, हम प्रॉब्लम्स को ना फोकस करें, हम उसमें जो एक सूर्य की किरण आ रही है उसकी तरफ देखें और आगे बढ़ें. फिर मैंने बेस्ट क्वालिटीज क्या है लीडरशिप की, उस पे मैंने 7 क्वालिटीज की बात की, विजनरी, करेज, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, देन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, फोकस एंड कोऑपरेशन. ये एक संस्था के करेक्टरिस्टिक्स भी हैं. ये 7 करेक्टरिस्टिक्स इतने इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इसको एक को भी इग्नोर कर देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन नीचे चली जाएगी, वो ग्रो ही नहीं कर पाएगी. फिर उसके बाद मैंने लीडरशिप स्टाइल की बात करी कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होता है. इमोशनली इंटेलिजेंट, वो वीक नहीं होता है, पर लोग उसको वीक समझते हैं, पर उसमें इतनी पावर होती है कि वो कैसे सबको अपने पैशन के साथ जोड़ के रखे, राइट. और लास्ट है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, पर मोटिवेशन का मतलब क्या है. आप हमेशा कहते हो कि हम अपनी कम्युनिटी को बहुत मोटिवेट करते हैं, पर अब आप इन 3 पॉइंट्स के साथ मोटिवेट करके देखना रिजल्ट में क्या चेंज आता है. एक्शन, परसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी, राइट. इन तीनों के अगर मीनिंग चाहिए, एक्शन मतलब कि हम काम करें, परसिस्टेंस मतलब कि हम अपना उसको लगातार करें, और इंटेंसिटी की हम अपनी पूरी एनर्जीज उस काम में लगा दें और उसको फेलियर नहीं होने दें. दैट इज द आउटकम ऑफ मोटिवेशन. दैट्स ऑल. आज मैंने बहुत बोला है, 4 बजने वाले हैं. तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ इसको. ठीक है, 5 मिनट हैं
1: यस
0: हमारे पास.
1: मैम,
0: हाँ, और ये स्लाइड्स रो हमेशा हर सेशन के बाद आपके पास आती हैं. मैं आप सबको एनकरेज करूंगी कि इस स्लाइड्स को पढ़ के आप अपनी एक डायरी लिखनी शुरू कर दें कि हर पॉइंट में आप कैसे अपनी लाइफ में उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप उसको कैसे इम्बाइब कर रहे हैं अपने एक्शन लेने के लिए, आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे चेंज कर रहे हैं इन पॉइंट्स के अलावा. अगर ये आप होमवर्क करेंगे तो इट विल हेल्प यू सो मच, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, राइट. आप प्लीज ये करिए, आपका जरूर 10 मिनट रात को ज्यादा जाएगा इस पे. पर अगर 8 स्लाइड्स है, 8 स्लाइड्स के ऊपर आप हर पॉइंट पे एक एक लाइन भी लिख लेंगे या एक स्लाइड के ऊपर एक पॉइंट लिखेंगे तो आपकी डायरी में 10 पॉइंट आ जाएंगे लिखने के लिए. आपका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, आपकी सोच बढ़ेगी, आपका विजन स्ट्रांग होएगी और आप एनकरेज्ड फील करेंगे और आप बहुत वेल डिफाइंड अपने अपने शार्प कर लेंगे अपने विजन को, और एक्शन उसी तरीके से लेंगे. ये मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज के. आप करके देखिए, ये सारे मैनेजमेंट के लेसन्स हैं जो मैं बहुत मेहनत करके इसको आपके मतलब कि लाइक आई ब्रिंग दैट इन टू ए डिस्कशन लेवल, कि कहाँ मैं ये लीडरशिप आपको समझा सकती हूँ. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. जस्ट 5 मिनट्स फॉर एनी क्वेश्चन आंसर्स, आई एम ओपन फॉर दैट.
2: ये आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। ब्लेम करके ही हम अपने अपने अच्छे अच्छे काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ फेलियर कहीं हो किसी बात में तो दूसरे को ब्लेम कर जाते हैं हम लोग।
0: हाँ
2: तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग यू टोल्ड अस कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए एंड हर चीज में वी शुड ऑलवेज टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस, पर्सनल लाइफ में भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी.
0: बिल्कुल,
2: हमेशा
0: पता
2: कोई
0: है
2: चीज हो जाती है, घट
0: इसको
2: जाती है.
0: बहुत बहुत मायने रखता है ये पर्सनल लाइफ में, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमें ना सुनने की क्षमता होनी चाहिए। हम ना सुनने
2: मैम
0: की अपनी जो स्किल है ना, उसको हम हमेशा बहुत कम टाइम देते हैं। हम हमेशा अपने बोलने की स्किल को ज्यादा टाइम देते हैं। ये ह्यूमन
2: जी,
0: बिहेवियर है, टेंडेंसी है। वेरी नाइस, कंटिन्यू।
2: यस मैम. हाँ जी, हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे तो और हम डिमोरलाइज हो जाते हैं उन्हीं प्रॉब्लम्स को रिपीटेडली व्हेन वी टॉक अबाउट, तो लगता है तो गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे ठीक होगा. तो हो चुका, वो तो घट गया, उसको तो अब असाइड करके, तो उसके बाद फैमिली में भी बैठे हुए हैं या अपने स्टाफ के साथ भी आप बैठे हुए हैं, सबके व्यूज लेके फटाफट फटाफट आप सॉल्यूशंस के बारे में बात करो, फिर वो प्रॉब्लम फिर छोटी लगने लग जाती है. तो ये आपने बहुत ही सुंदर पॉइंट बताया कि रे ऑफ आप देखिए हर चीज में, पूरा डार्क नहीं होता कभी भी, कहीं ना कहीं एक सनशाइन होती है एंड वी शुड चेज दैट एंड वी शुड फॉलो दैट, और हमेशा सॉल्यूशंस के बारे में बात, प्रॉब्लम्स को फटाफट रिजॉल्व करें. यही आप बता रहे थे, दिस वाज वेरी नाइस मैम,
0: नाइसली समराइज
2: थैंक यू सो
0: किया।
2: मच.
0: थैंक यू सो मच फॉर समराइजिंग दिस, वेरी वेल। एनीबडी एल्स? थैंक यू सीमा, आपने तो बड़ी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर दी। मुझे लग रहा था कि मैं ही बोलती जा रही हूँ, पर आपने समराइज करके तो बहुत उसको इजी बना दिया।
2: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच.
1: गुड इवनिंग मैम, अकबर बोल रहा हूँ रामपुर से. जी मैम, जैसे सीमा मैम ने बोला और आपके हमने ट्रेनिंग में ये सुना भी था, आपने बहुत पहले ही बोला था कि प्रॉब्लम्स को एक क्रिएटिव माइंड के थ्रू आप सॉल्व करते हैं. आपकी एक आदत है कि आप उस प्रॉब्लम को लेके बैठते नहीं है और उसको आप क्रिएटिव माइंड के थ्रू, अभी लास्ट स्मिता मैम ने भी हमें फ्राइडे में बताया था लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग में, आपका ये एग्जाम्पल देके, और मैंने उसको ना एक ग्रेस्ट कर लिया इस पॉइंट को, और उस पॉइंट पे अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ. 3-4 दिन से मैं इस पे बहुत फोकस करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ. मेरे सामने जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं पहले क्या होता था कि जो प्रॉब्लम आती थी अगर उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता था तो मैं हार मान के बैठ जाता था, और एक टेंशन दिमाग को होती थी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन सा लगता था कि यार अब क्या होगा, कैसे होगा. बट जब मैंने इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, मतलब जैसे सीमा मैम ने बोला कि प्रॉब्लम्स को हम असाइड कर दें और उसके सॉल्यूशंस के ऊपर बात करें, तो अब सेम वही मैं करना स्टार्ट करा है, तो इतना मतलब लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल ही जाता है जब उसके ऊपर दिमाग लगाओ और उस पे करते रहो फोकस, कि कुछ तो आएगा हल, कुछ तो आएगा. वो अल्टीमेटली आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, भले से थोड़ा सा ही आए लेकिन आता है. उससे मुझे बहुत फायदा हुआ, रियली थैंक यू मैम. आपने मतलब इतने अच्छे से उसको समझाया था कि वो दिमाग में एकदम बैठ गया है.
0: नहीं, बहुत अच्छी बात है। और ये अगर हम सोचते ही रहेंगे प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, तो हमारे कंधे के ऊपर जो बैग है ना, वो इतना भर जाएगा कि एक दिन वो इतना भारी हो जाएगा कि हमें दबा देगा वो। पर अगर हम हर प्रॉब्लम का सलूशन लेके वो बैग हम खाली करते रहेंगे, तो वी विल फील लाइट, हमारा ब्रेन लाइट फील करेगा और हम कुछ नया सोच पाएंगे करने के लिए। तो जो अपने कंधे के ऊपर बैग लेके हम चलते हैं ना, उसको बस ये याद रखिए कि हमें लाइट ही रखना है। देयर एंड देन यू फाइंड अ सोल्यूशन एंड स्टार्ट एक्शन ऑन दैट, राइट?
1: बिल्कुल. और एक चीज और, कि हम कभी भी, मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं बहुत आगे तक की सोचता हूँ कि यार कल क्या होगा, अगर मैं ऐसा एक्शन करूंगा तो इसमें फिर क्या होगा, आगे वाले नतीजे क्या रहेंगे. तो उसको लेके क्या होता था, एक स्टेप फॉरवर्ड होने के बजाय और बैकवर्ड हो जाता था. लेकिन अब मैंने ये सोचा है कि नहीं, जो होगा उसके लिए भी कोई ना कोई नया सॉल्यूशन निकाला ही जाएगा, अभी फिलहाल जो है उसको पूरा करो.
0: बिल्कुल, मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि जब हम प्रपोजल लिखते हैं तो हमें नहीं पता सक्सेस क्या होगी। हम तो
1: जी
0: डोनर को ये थोड़ा कर देते हैं कि हम 1 साल के बाद जी हम ये 100% करके दिखा देंगे आपको। हम प्रपोज करते हैं कि हम कोशिश करेंगे करने की, राइट?
1: यस
0: तो हमेशा जो एक्शन है उसको हम अगर सीधे रास्ते पे रखें या सीधी सोच के साथ रखें तो रिजल्ट्स तो आएंगे ही आएंगे. ठीक है,
1: यस मैम,
0: थैंक यू सो मच. और मैं इनकरेज करूंगी अगर किसी के कोई और भी डाउट्स रहते हैं तो दे आर वेलकम टू राइट बैक टू मी, राइट? बिकॉज लीडर्स तो आपको बनना ही बनना है, राइट? ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू.

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज सुनिए हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम की अमर गाथा।

0: आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।
1: ये वतन का
2: जब हम अपनी जमीन अपने रहने के स्थान से प्रेम करते हैं तो एक साथ उसके पेड़ पहाड़ नदियों से उसकी अतुलित खनिज संपदा से प्रेम करते हैं। जब हम अपनी जमीन से प्रेम करते हैं तो उसके इतिहास वर्तमान और भविष्य से प्रेम करते हैं, उसकी संस्कृति बोली भाषा से, उसकी आस्थाओं उसके अंतर्मन से प्रेम करते हैं और इसी प्रेम से भरकर हम अपनी जन्मभूमि को मां कहकर पुकार उठते हैं। अपनी जन्मभूमि के प्रति कृतज्ञता और प्रेम से जन्मा ऐसा ही संबोधन है भारत माता। वो भूमि जिसकी माटी में हम जन्मे खेले बड़े हुए, वो भूमि जिससे उत्पन्न फल फूल अनाज और नदियों के पानी ने अपने आंचल में जीवन की संभावनाओं को बनाए रखा, पीढ़ियों को सदियों से पाला पोसा है, उसे मां कहकर पुकार उठना कितना स्वाभाविक था। विश्व मानचित्र पर भारत एक भौगोलिक इकाई, एक भूखंड की तरह दिखाई देता है, लेकिन हमारे भाव पटल पर हमारी आस्था ने जो चित्र उकेरा वो एक मां का ही चित्र था। इसीलिए सहज रूप से हमने अपनी जन्मभूमि को मातृभूमि कहा। अपनी जन्मभूमि को माता सा मान देना हमारी संस्कृति रही है। अथर्ववेद में कहा गया है, माता भूमि ही पुत्रों हम पृथ्व्याः, अर्थात ये भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं। रामायण में भी कहा गया, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जननी और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। इसी भाव भूमि पर खड़े होकर अपनी जन्मभूमि, अपने देश की आन बान और शान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अनगिनत लोग हुए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत माता की छवि बनी। सन 1873 में सबसे पहले किरण चंद्र बंदोपाध्याय का नाटक भारत माता खेला गया। इसी प्रवाह में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने उस अमर गीत की रचना की जिसे मंत्र की तरह जपते हुए अनगिनत क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे को चूमा। उस काल में वंदे मातरम से अधिक प्रेरक कोई दूसरा शब्द नहीं था और आज वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। कम ही कविताओं के भाग्य में ऐसी ख्याति और ऐसा यश होता है जैसा वंदे मातरम के हिस्से रहा। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अधिकतर राष्ट्रगीत उस देश के संघर्ष काल में ही जन्मे। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन या स्पेन, इन सबके राष्ट्रगीत विद्रोह के समय की देन हैं। कहीं ये देश के ध्वज के संदर्भ में हैं, तो कहीं इनमें शस्त्र उठाने का आह्वान है। इसी कड़ी में हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम जैसे हमारे राष्ट्रभाव की काव्य अभिव्यक्ति है, जिसे गाते हुए सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम मलयज शीतलाम के नैसर्गिक बिंब हमारी आंखों के सामने उभरने लगते हैं और अपनी जीवनदायिनी मातृभूमि के समक्ष हम नतमस्तक होने लगते हैं। अपनी रचना के इतने बरस बाद भी वंदे मातरम जन मन को उसी तरह से छूता है। यही कारण है कि सन 2002 में बीबीसी के एक सर्वेक्षण में वंदे मातरम को 195 देशों के 7000 गानों के बीच विश्व का दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय गीत माना गया। वंदे मातरम जैसे हमारे राष्ट्र प्रेम की आत्मिक अभिव्यक्ति है।

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के मन में भारत भूमि के गौरव को गाने की उत्कंठा यूं ही नहीं जागी, बल्कि एक पराधीन राष्ट्र की छटपटाहट ने वंदे मातरम के भाव को उनके भीतर जागृत किया। हुआ यूं कि सन 1870-80 के दशक में ब्रिटिश शासकों ने सरकारी समारोहों में गॉड सेव द क्वीन गीत को गाना अनिवार्य कर दिया। ब्रिटिश सत्ता के इस आदेश ने बंकिम बाबू को भीतर तक आंदोलित कर दिया और मातृभूमि के प्रति उनका प्रेम वंदे मातरम के रूप में अभिव्यक्त हुआ। माना जाता है कि गॉड सेव द क्वीन के विकल्प के तौर पर ही उन्होंने वंदे मातरम गीत की रचना की थी। 7 नवंबर सन 1876 रविवार का वो दिन था, कार्तिक मास की 9वीं तिथि, जब बंगाल के कांतलपाड़ा गांव में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कलम से इस अमर गीत ने जन्म लिया। इस गीत से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी है। उन दिनों बंकिम बाबू बंग दर्शन के संपादक थे। पत्रिका का साहित्य कंपोज हो रहा था, कुछ साहित्य कम पड़ गया। पत्रिका के सहायक संपादक श्री रामचंद्र बंदोपाध्याय बंकिम बाबू के घर आए तो उनकी निगाह वंदे मातरम गीत पर पड़ी। कागज उठाकर उन्होंने कहा, अभी तो मैं इसी से काम चला लेता हूं। उस समय इस गीत के 2 ही पद रचे गए थे जो संस्कृत में थे। इस कारण रामचंद्र के मन में ये आशंका थी कि ये गीत लोगों की जुबान पर आसानी से नहीं चढ़ सकेगा। लेकिन बंकिम बाबू उस समय इस गीत को प्रकाशित करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने रामचंद्र बंदोपाध्याय से कहा, आज इस गीत का मतलब लोग नहीं समझ सकेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये गीत सुनकर संपूर्ण देश निद्रा से जाग उठेगा और सदियों तक ये गीत गाया जाता रहेगा। और आने वाले समय ने देखा कि बंकिम बाबू का कथन अक्षरशः सत्य साबित हुआ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1773 के सन्यासी विद्रोह पर केंद्रित उपन्यास आनंद मठ की रचना की और इस उपन्यास में 2 और बांग्ला पदों के साथ वंदे मातरम गीत को शामिल किया। फिर क्या था, वंदे मातरम के 2 शब्दों ने इतिहास रच दिया। इन 2 शब्दों ने भारतवासियों के भीतर देशभक्ति के प्राण फूंक दिए। सन 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम गीत को संगीतबद्ध करके गाया।

सन 1901 में कोलकाता में ही हुए एक अन्य अधिवेशन में चरणदास सेन ने इसे दोबारा गाया। फिर सन 1905 के बनारस अधिवेशन में सरला देवी चौधरानी ने इसे अपना स्वर दिया। 7 अगस्त सन 1905 को बंग भंग का विरोध करने जुटी भीड़ के बीच किसी ने अचानक ऊंचे स्वर में वंदे मातरम का उद्घोष किया और फिर जैसे चमत्कार घट गया, सहस्रों कंठों ने समवेत स्वर में दोहराया वंदे मातरम और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को उसका प्रयाण गीत मिल गया। बंग भंग आंदोलन में जमीन से लेकर आसमान तक वंदे मातरम का ही जयघोष था। अरविंद घोष ने लिखा है कि सन 1906 में किसी भी अधिवेशन, जुलूस या सार्वजनिक स्थल पर वंदे मातरम को गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन इन आदेशों की अवज्ञा करते हुए पूरा जुलूस वंदे मातरम का बैच लगाकर इकट्ठा हुआ। 6 अगस्त सन 1906 को अरविंद घोष कलकत्ता आए और वंदे मातरम नाम से एक अंग्रेजी दैनिक ही निकालना शुरू कर दिया। भगिनी निवेदिता ने प्रतिबंधों के बावजूद गर्ल्स स्कूलों में वंदे मातरम को दैनिक प्रार्थनाओं में शामिल किया, तो उधर तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती ने इसे तमिल में गाया। इस तरह देश भर में वंदे मातरम गूंज उठा एक अमर क्रांति गीत बनकर।

वंदे मातरम देश भर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का युद्ध घोष बन गया था। ये देश को राष्ट्र धर्म सिखाने वाला गीत साबित हुआ। सन 1905 में गांधी जी ने लिखा, आज लाखों लोग एक बात के लिए एकत्र होकर वंदे मातरम गाते हैं। मेरे विचार से इसने हमारे राष्ट्रीय गीत का दर्जा हासिल कर लिया है। अपने देश की मां के रूप में स्तुति अनेक देशों ने की है। मॉरिशस का राष्ट्रगीत है ग्लोरी टू द मदरलैंड। इजिप्ट के राष्ट्रगीतों में तो इजिप्ट ओ मदर ऑफ ऑल लैंड्स कहा गया है, तो उधर अजरबैजान का गीत है ओ माय डियर मदर अजरबैजान। लेकिन वंदे मातरम किसी चमत्कार की तरह भारत की आत्मा में समाहित हो गया। इसकी जड़ें भारत के जनमन में कहीं गहरे बैठ गईं। हम जानते ही हैं कि सन 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड में आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रीय झंडा भीकाजी कामा द्वारा फहराया गया था। इस झंडे के मध्य में देवनागरी में अंकित था वंदे मातरम। पूरे स्वाधीनता संग्राम में वंदे मातरम गीत भारतीयों की एकीकृत आवाज बन गया था। प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, मदनलाल ढींगरा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और सूर्यसेन जैसे अनगिनत क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम का उद्घोष किया और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। शहीद भगत सिंह जब अपने पिता को पत्र लिखते तो अभिवादन में वंदे मातरम लिखते। सन 1909 में प्रकाशित विजया नामक तमिल पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर देवनागरी में वंदे मातरम लिखा हुआ था। लाला लाजपत राय ने भी लाहौर से जिस जर्नल का प्रकाशन शुरू किया था उसका नाम वंदे मातरम ही रखा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने भी इस गीत को अंगीकृत किया और सिंगापुर रेडियो स्टेशन से इसका प्रसारण किया जाता था। आनंद मठ और वंदे मातरम गीत दोनों ही प्रतिबंधित हुए, लेकिन वंदे मातरम की प्रतिकंपनकारी ऊर्जा को अंग्रेज रोक नहीं सके। वंदे मातरम भारतीय स्वाधीनता संग्राम का केंद्रीय स्वर बनकर उभरा, जिसकी हुंकार ने ब्रिटिश सत्ता की नींव हिला कर रख दी। और जब देश आजाद हुआ तो 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में संविधान सभा की पहली बैठक का प्रारंभ वंदे मातरम के साथ ही हुआ। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में इस गीत की ऐतिहासिक भूमिका को देखते हुए संविधान सभा में 24 जनवरी सन 1950 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाने संबंधी वक्तव्य पढ़ा, जिसे सहर्ष स्वीकार किया गया। वंदे मातरम एक ऐतिहासिक अमर क्रांति गीत, जिसे गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, वीडी पलुस्कर, दक्षिणा रंजन सेन, दिलीप कुमार राय, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जैसे लोगों ने काफी, खंबावती, बिलावल, बागेश्वरी और झिंझोटी जैसे रागों में गाया। बड़ी भीड़ भी इस गीत को एक साथ गा सकती है, ये मास्टर कृष्ण राव ने पुणे में 50,000 लोगों से इसे गवाकर सिद्ध कर दिया। आज भी देश में आकाशवाणी की सभा प्रतिदिन वंदे मातरम के अभिवादन और इसके गायन से आरंभ होती है। सुविख्यात कलाकार हों या आम जन, वंदे मातरम को सभी उसी आदर, प्रेम और गौरव के साथ गाते गुनगुनाते हैं। सच तो ये है कि जिन ज्योतिर्कणों से इस गीत का भाषिक रसायन तैयार हुआ है, वो अनंत काल तक हमारी राष्ट्र चेतना को जगाए रखेगा। आइए गर्व के साथ हम भी दोहराएं, वंदे मातरम।

0: आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।
1: ये वतन का राग।
2: वैसे तो आप जान ही गए होंगे हम जेवर से आए हैं। मेरा नाम प्रिया है और मैं बस थोड़ी सी दो तीन लाइन बोलूंगी कि पहले मैं इसी सेंटर में स्टूडेंट थी और अब मैं पार्लर की ट्रेनर हूँ और पार्लर की जॉब करने के साथ साथ मैं घर पे भी पार्लर का काम करती हूँ। इसीलिए मैं सभी को, इन सभी टीम को मतलब धन्यवाद बोलना चाहूंगी। इनकी वजह से मेरी इनकम डबल हो चुकी है और शादी के बाद कहते हैं सरनेम बदल जाता है। मुझे हस्बैंड के नाम से जाना जाता था लेकिन अब मुझे देख के सब ये बोलते हैं वो देखो प्रिया के हस्बैंड जा रहे हैं। तो थैंक यू।
3: रीड इंडिया माने रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, ग्रामीण शिक्षा एवं विकास। हमारा काम तो लाइब्रेरीज बनाना है और आज के समय में जो चर्चा हो रही है, लाइब्रेरीज खाली किताब पढ़ने के लिए नहीं है। लाइब्रेरीज एक ऐसी जगह है जहां हम बहुत कुछ अपने लिए भी कर सकते हैं और समुदाय के लिए भी कर सकते हैं। माने पढ़ें तो हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, हम बड़ों को भी पढ़ाएं, हम छोटे बच्चों के साथ भी एक्टिविटीज करें कि किताब क्या चीज है और किताब उनके जीवन में क्या महत्व रखती है। पर ड्यूरिंग द जर्नी इस समय के साथ साथ हमने ये सोचा कि हमें महिलाओं के लिए भी कुछ कार्यक्रम करने चाहिए। अगर महिला अपने आप को निखार सकती है, अपने आप को सक्षम बना सकती है और जिम्मेदारी अपने शोल्डर्स पे ले सकती है कि अपने बच्चों का विकास कैसे करना है, वो भी रीड इंडिया अपने कम्युनिटी लाइब्रेरीज और रिसोर्स सेंटर्स में करती है। हमने औरतों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए, जैसे सिलाई सिखाना, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देना और भी बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो हम अपने सेंटर्स में करते हैं। पर उसका जो आउटकम है, जो हम समझ रहे हैं कि एक महिला इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपने परिवार की भी सोच बदल सके, अपनी भी सोच बदल सके और अपने बच्चों को एक मकाम तक लेके जा सके। इसी दौरान हमने पिछले 3 सालों में उनको बहुत सारी ऐसी स्किल्स दी जिससे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं और हम उनको रेगुलरली ट्रेस भी करते हैं, ट्रेस इन द सेंस कि हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही हैं, अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकती हैं। और इसी दौरान हमने ये सोचा कि हम क्यों इतने बड़े बड़े BBA और MBA की बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम इन महिलाओं को बोलें कि ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो। तो रीड इंडिया ने क्या किया, अपने प्रपोजल में ये सारे एपिसोड्स लिख दिए।

आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने परिवार को आगे लेके जाती है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है। तो श्रोताओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें, रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकते हैं रीड इंडिया के सेंटर पे आके अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।
1: ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी कूड़ा पीछे भी, दाएं भी कूड़ा बाएं भी।

0: नहीं, गली में कूड़ा है, पार्कों में कचरा, दुनिया हमारी अब स्वर्ग नहीं। ए भाई
1: जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चों की बीमारियों का कारण आपके मोहल्ले का कूड़ा भी हो सकता है? पर यह कूड़ा आता कहाँ से है? अरे जनाब, आप ही के तो घर से। आपने कूड़े को निकाला, भरा और फेंक दिया, और बदले में आपको क्या मिला? बदबूदार नालियाँ, मक्खियाँ जो लाती हैं बीमारियाँ। आपका बच्चा घर से बाहर जाए और बीमारियाँ घर लाए।
2: तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें आप क्या कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं कूड़े का विभाजन। कूड़े को दो तरह के थैले में बांट लें। एक में गीला कूड़ा, जैसे कि फल व सब्जियों के छिलके, बचा खाना, और दूसरे थैले में सूखा कूड़ा, जैसे कि पेपर और प्लास्टिक डाल दें।
1: सरकार ने आपके मोहल्ले में दो प्रकार के कूड़ेदान रखे हैं, हरा गीले कूड़े के लिए और नीला सूखे कूड़े के लिए। यदि आप कूड़ा अलग अलग करके इसमें डाल देते हैं तो गीले कूड़े में खाद बनाई जा सकती है और सूखे कूड़े को तैयार कर दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है।
2: इससे दूर रहेंगी बीमारियां और सुंदर होगा वातावरण। तो अब जब आपका बच्चा घर से बाहर जाए तो बीमारी घर में लेकर ना आए।
1: याद रखिए,
3: कूड़ा निवारण स्वस्थ जिंदगी।

0: प्रयासों की बुनाई सम्मान की कमाई। खेमराज सुंदरियाल, पद्मश्री 2026। हजारों की उम्मीद और उनकी जीविका के मार्गदर्शक हैं खेमराज सुंदरियाल, जिन्हें सब स्नेहवश गुरुजी कहते हैं। खेमराज जी का जन्म 1943 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। आर्थिक अभाव के कारण उन्होंने बचपन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया।
1: मैं जब पढ़ रहा था तो एक दिन संत कबीर जी के बारे में जाना, उनका बड़ा नाम है और हम जितनी किताबें पढ़ते हैं उनके, तो मैं तो उन्हीं के जैसा काम सीखूंगा। मैंने ठान लिया कि मैं बुनकर बनूंगा।
0: हैंडलूम टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा करने के बाद खेमराज सुंदरियाल जी की काम की तलाश ने उन्हें यह बता दिया कि रोजगार के लिए उन्हें दिल्ली जाना ही होगा। लेकिन खेमराज जी के पास पौड़ी से दिल्ली आने तक के पैसे नहीं थे। तभी एक दिन उनके चचेरे भाई को चोट लग गई और उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाना पड़ा। उनकी देखभाल के लिए इन्हें

0: साथ भेजा गया और यही सफर खेमराज जी को पहली बार दिल्ली ले आया। दिल्ली क्लॉथ मिल में काम करने के बाद खेमराज सुंदरियाल बुनकर सहायता केंद्र में कार्यरत हो गए। 9 से 10 साल गुजर गए। काशी के बुनकर सेवा केंद्र में खेमराज जी की मुलाकात एक टेक्सटाइल आर्टिस्ट एसवी निकम जी से हुई। उन्होंने इनकी प्रतिभा को पहचान कर इन्हें केंद्र से लौटने के बाद आर्टिस्ट लोगों के लिए टैपेस्ट्री बनाने की सलाह दी।
1: उन्होंने मुझे 175 रुपए दिए लूम खरीदने के लिए।
0: इसी दौरान खेमराज सुंदरियाल बुनकर सेवा केंद्र की पानीपत शाखा में आ गए और जल्द ही देश के कई सुप्रसिद्ध कलाकारों के लिए टैपेस्ट्री बुनने लगे। जिस लड़के के पास पौड़ी से दिल्ली आने तक के पैसे नहीं थे, उनका काम उन्हें देश विदेश ले गया। जामदानी तकनीक पर खेमराज जी की पकड़ देखते ही बनती थी और साथ ही उन्होंने हत्ता तकनीक और पॉलिएस्टर की बुनाई भी शुरू कर दी। अपनी इसी लगन से उन्होंने पानीपत की दरी और खेस को एक बार फिर से प्रसिद्ध कर दिया। रिटायर होने के बाद खेमराज जी ने विष्णु हैंडलूम कोऑपरेटिव शुरू किया, जिसमें वो अब तक 10,000 से ज्यादा युवाओं को काम सिखा चुके हैं। भारत के कई प्रख्यात संस्थानों के छात्र भी खेमराज जी से बुनाई की कला सीखने आते हैं।
1: इस कला ने मुझे मान सम्मान और पहचान दिलाई। अब लगता है मैंने इस कला को नहीं, इस कला ने मुझे अपना है।
0: खेमराज सुंदरियाल, पद्मश्री 2026। कोटि कोटि नमस्कार।

0: गुड आफ्टरनून,
1: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून। काफी हम लोग बात कर चुके हैं लाइफ स्किल्स के ऊपर, और कुछ सेशंस आई बिलीव आप लोग खुद कर रहे हैं, खुद से बना के, या कुछ सेशंस जो हम लोगों ने दिए हैं उनको भी आप शायद यूज करते होंगे। क्योंकि ये नॉन यूनिक है, और ज्यादातर हम चाहते हैं कि जितने लोगों के साथ आप ये कुछ शेयर कर सकें, उनकी सॉफ्ट स्किल्स बिल्डअप हो सकें। इंटरनेट से भी वीडियोस आप ऐड कर सकते हैं सेशंस को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। आज का सेशन थोड़ा डिफरेंट है। एक मेजर लाइफ स्किल जो हमें एज ए इंडिविजुअल भी आनी चाहिए और एज अ यू नो फैमिली पर्सन भी आनी चाहिए, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर हम मनी को लेके हम सबको कुछ ना कुछ इश्यूज रहते ही हैं, चैलेंजेस रहते ही हैं। चाहे आज हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम आज अर्न कर रहे हैं, चाहे हम हाउसवाइफ हैं, चाहे हम स्मॉल एंटरप्रेन्योर हैं। सो वी थॉट दैट इट कुड बी इम्पोर्टेंट टू हैव अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू अ लाइफ स्किल, बिकॉज ज्यादातर स्कूल्स में, कॉलेजेस में इस पे बात होती है, लेकिन ये लाइफ स्किल ऐसी है जो जब हम लाइफ में जब इस इसके अंदर उतरते हैं तभी वो धीरे धीरे करके बिल्डअप होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें प्रॉबेबली हैं जो अगर हम शुरू से ही अपने दिमाग में रखें तो हम एक बेटर फंड मैनेजर या बजट मैनेजर या इंडिविजुअल जो अकाउंट की जो हमारी अपनी वेल्थ मैनेजमेंट है उसको हम बेटर कर सकते हैं। सो टेकिंग दैट आई कैन शेयर सम स्लाइड्स। यहाँ पे मैंने अपनी जो एक फोटो है वो लिखी, एक लगाई हुई है, बट आई बिलीव जब आप ये सेशन अपने बेनिफिशियरीज के साथ करेंगे, उसमें बच्चे भी होंगे, उसमें औरतें भी होंगी, उसमें यूथ भी हो सकता है, उसमें हो सकता है बुजुर्ग भी होंगे। सो सबसे पहले हमें ये जरूरत है उस चीज की मैपिंग की कि मुझे एज एन इंडिविजुअल मनी चाहिए क्यों। सो कैन एनीबडी टेल कि मनी हमें लाइफ में चाहिए क्यों होता है? पहले जब रुपए नहीं आए थे तभी भी तो जिंदगियां चलती थी ना, बार्टर सिस्टम से चलती थी, या फिर उसके अलग तरीके होते थे। अब क्योंकि मनी है, करेंसी आई है, तो ये, और अब हम क्रिप्टो करेंसी में जा रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सैलरीज बैंक में क्रेडिट होती है, हम मनी को फिजिकल फॉर्म में तो देख ही नहीं पाते, वो आती है ईएमआई में चली जाती है, पेमेंट्स में चली जाती है, स्कूल फीस में चली जाती है। सो एज एन इंडिविजुअल मनी हमें चाहिए क्यों, कोई बता सकते हैं? एज एन इंडिविजुअल इसमें कुछ सही कोई गलत नहीं है, हमारी जिंदगी में मनी हमें क्यों चाहिए? इफ समबडी कैन यू नो डिफाइन दैट।
1: हेलो मैम, इट्स संगीता फ्रॉम बायरेड्डीपल्ली।
0: हेलो जी,
1: एक बेहतर जिंदगी के लिए चाहिए मैम,
0: मनी हमें बेहतर जिंदगी के लिए चाहिए। वेरी गुड।
1: अच्छे से कंफर्टेबल
0: मैं
1: लाइफ
0: सत्यम
1: के
0: फतेहपुर
1: लिए।
0: जी। मैम, मनी की हमें आवश्यकता, मैम, हमारी बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए भी बहुत जरूरी थी आज के टाइम में, क्योंकि एक तौर पर ये एसेट के तौर पर इसे आइडेंटिटी दी गई है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। सो बेसिक नेसेसिटी यानी कि खाना, कपड़े हो गए, हमारी एजुकेशन हो गई। एजुकेशन तो राइट टू एजुकेशन के अंदर फ्री है, लेकिन फिर भी हमें क्वालिटी एजुकेशन के लिए काफी मनी चाहिए होता है। डू वी अग्री ऑन दैट?
0: यस मैम।
1: तो एनीथिंग एल्स? एक तो बेहतर लाइफ के लिए हमें चाहिए, बेसिक लाइफ के लिए चाहिए, जो कि अभी हमारे दोस्त ने हमें बताया, संगीता जी ने बताया कि बेटर लाइफ के लिए चाहिए, और किस चीज के लिए मनी चाहिए हमें?
0: मिस प्रिया वर्मा, बाराबंकी सेंटर। मैम, जो हमारी दैनिक आवश्यकताएं होती हैं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, उसके लिए
1: हाँ
0: हमें
1: जी,
0: मनी की नीड होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हमारे फतेहपुर सेंटर से किसी ने बताया था शायद कि बेसिक नीड्स, और आप भी वही बोल रहे हैं, दैनिक दैनिक नीड्स जो हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनके लिए हमें चाहिए पैसा, चाहिए यानी कि पेट भरा होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए, बेसिक जो हमारी नीड्स हैं उसके लिए हमें मनी चाहिए होता है। ये दो चीजों के अलावा किसी और चीज के लिए हमें मनी चाहिए होता है? आप अपनी जिंदगी में किसी और चीज के लिए पैसा चाहते हैं? दैनिक नीड में क्या हमारे और कुछ जरूरतें आती हैं, या ऐसी कोई चीज जिसके लिए आपको मनी चाहिए होता है?
0: इसमें हमारा
1: हेल्थ
0: स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुई।
1: हेल्थ के लिए चाहिए। वेरी गुड।
0: एक्चुअली मैम,
1: एजुकेशन
0: इनफैक्ट हर एक चीज के लिए हमें मनी चाहिए ही है एट प्रेजेंट।
2: सब कुछ के लिए,
1: पता
2: इवन
1: नहीं,
2: पानी भी अभी तो पैसे से ही है, सब कुछ के लिए.
1: तो वो तो बेसिक नीड्स में कवर हो जाता है ना, पानी हो गया, रोटी कपड़ा मकान हो गया.
2: एग्जैक्टली यस
1: मैम
2: मैम.
1: जी बताएं.
2: मैम
1: जी
2: फतेहपुर
1: मैम
2: मैम, हमें मैम मनी की आवश्यकता मैम, कोई स्टार्टअप करने के लिए भी पड़ती है, जैसे हम एंटरप्रेन्योर
1: बिल्कुल
2: के लिए करने के लिए
1: बिल्कुल. तो हमें बेसिक से उठ के अगर हमें कोई रोजगार शुरू करना है, बहुत ही अच्छा. थैंक यू सो मच. मैं इसी तरह के इनपुट्स की कोशिश कर रही थी.
2: मैम
1: जी बताइए.
2: फार्मिंग के
1: फार्मिंग
2: लिए भी चाहिए होती है. मैंने हमारे
1: के लिए, बिजनेस के लिए चाहिए, ठीक है. और
2: कपड़े
1: बताएंगे क्या आपको, अगर अच्छा फोन चाहिए उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं. यहाँ तो सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम मनी खर्च किन किन चीजों पे करते हैं आजकल. हम एक्सपेंसिव कपड़ों पे खर्च करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अलग अलग जगह पे घूमने जाएं, उसके लिए हमें मनी चाहिए होता है. हम चाहते हैं कि कभी कभी की अच्छी अच्छी जगह पे खाना खाने जाएं, करीबन मतलब कभी कभी तो हम जाएं अच्छी जगह पे, कोई हमें बहुत फैंसी सा रेस्टोरेंट पसंद है, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे पास मनी हो. क्या ऐसा होता है हमारे साथ?
3: यस मैम, पर्सनल ग्रूमिंग पर भी मैम इस टाइम पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है, क्योंकि जो बहुत जरूरी है आपको प्रेजेंटेबल लगना जब आप बाहर जा रहे हो, तो इन सब चीजों पे काफी एक्सपेंसेस आते हैं.
1: बिल्कुल. तो ये जो सना ने बोला, ये बहुत हटके है हमारी बेसिक जरूरतों से. बेसिक जरूरतें यानी कि हमारा रोटी कपड़ा मकान हो गया, एजुकेशन हो गई, इसके लिए तो हमें ये तो हमारी बेसिक नीड्स में आ जाता है. जो सना ने बोला या जो फतेहपुर से बोला था अभी किसी ने, कि हमें एंटरप्राइज शुरू करने के लिए, अपना बिजनेस या लघु उद्योग शुरू करने के लिए सीड मनी चाहिए होता है. यानी कि हमें अपना कुछ ऐसा पैसा चाहिए जो हम अपना उद्योग शुरू कर सकें या अपना बिजनेस शुरू कर सकें. और बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जो कि सना ने बोली है, कि आजकल हम बेसिक से उठ के अपनी एक इमेज मैनेजमेंट, जिसको कह सकते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं तो हमें क्या लगता है कि हमें अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करना चाहिए, उसके लिए भी हम काफी पैसे खर्च करते हैं एज एन इंडिविजुअल. हो सकता है सभी नहीं करते हो, बट बहुत आजकल ये जो सोशल मीडिया की वजह से ना, हमें ये बहुत लगता है कि अच्छा ऐसे कपड़े होने चाहिए, ऐसा मेकअप होना चाहिए, इस तरह का फोन होना चाहिए, इस तरह के कपड़े, इस तरह की जगहों पे मुझे जाके फोटोज लेना है. तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक बेसिक जरूरत नहीं है, लेकिन आज के दौरान में ये एक फैशन या फिर एक ऐसी जरूरत बन गई है जो कि हमारी शायद इमेज मैनेजमेंट, जिसको हम कह सकते हैं कि हम चाहते हैं हमारी इमेज ऐसी हो, तो हम उस इमेज मैनेजमेंट के लिए भी बहुत पैसा खर्च करते हैं. उसकी जरूरत है नहीं है वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, उसमें सही या गलत कुछ भी नहीं हो सकता या है. तो अब जब हम मनी की बात करते हैं ना, तो अभी देखिए सबने अलग अलग जवाब दिए, तो मनी की वैल्यू मेरे लिए कुछ और हो सकती है, सना के लिए कुछ और हो सकती है, संगीता जी के लिए कुछ और हो सकती है, हमारे जो और दोस्त जुड़े हैं सभी के लिए मनी की जो वैल्यू है वो अलग अलग हो सकती है. आज मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरी जरूरत हो सकता है कुछ और होगी, आज मैं हाउसवाइफ हूँ या मैं एज ए मदर हूँ तो मेरी जरूरत कुछ और हो सकती है. तो मनी की जो नीड है वो समय समय पर चेंज होती है, और अमाउंट ऑफ मनी क्या चाहिए वो भी चेंज होता है. तो जब हम अपने बेनिफिशरीज के साथ मनी की बात करेंगे, ये बहुत जरूरी है कि हर इंडिविजुअल इसकी विशेषता अपने हिसाब से डिफाइन करे, और इसमें कोई सही या कुछ गलत नहीं है. बिकॉज किसी के पास थोड़ा है तो उसमें भी शायद वो खुश है या ना खुश है, किसी के पास बहुत है तो उसमें भी वो खुश या ना खुश हो सकता है. सो मनी इज टू बी डिफाइंड फॉर योर सेल्फ, द नीड ऑफ दैट मनी इज ऑल्सो टू बी डिफाइंड फॉर योर सेल्फ, योर फैमिली, योर चिल्ड्रन, योर फ्यूचर, यू नो पेरेंट्स, और योर फ्यूचर एंड द फ्यूचर ऑफ योर नियर एंड डियर वंस. एवरीबडी अग्रीज, या इसमें किसी की कोई और सोच है या कोई और हेल्प करना चाहता है इसको डिफाइन करने के लिए? तो पहले तो हमें इम्पोर्टेंस ऑफ मनी समझना है. यहाँ पे थोड़े बच्चे भी हैं, ये प्रिया वर्मा के जो सेंटर से हैं,
3: मैम 12 उनकी सेंटर.
1: बाराबंकी से हैं. ओके फाइन. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एटलीस्ट दिस एज ग्रुप टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी. ये टीओटी सेशन ज्यादा है, सो आई बिलीव जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं वो इस बात को समझ पाएंगे, और अगर इन बच्चों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम उस पर आज बात कर सकते हैं, या फिर आपके सेशंस के दौरान भी आप इन चीजों को एड्रेस कर सकते हैं. सो जैसे अगर हम अपना एक मंथली बजट बनाएंगे, मनी मैनेजमेंट की बात हम ये कर रहे हैं कि ठीक है, एज ए स्टूडेंट मुझे क्या मैनेज करना है, कितना मुझे बजट चाहिए एज ए हाउसवाइफ मुझे क्या चाहिए, एज ए एंटरप्रेन्योर अगर हम अपना कोई उद्योग शुरू करना चाह रहे हैं तो मुझे किस तरह का बजट चाहिए, वो बजट बनाना बहुत जरूरी होता है। तो हम जब एक महीने का भी बजट बनाएंगे ना, तो मोटा मोटा हमें पता चलेगा कि हमारा मेजर खर्चा वो किस चीज के लिए रहा है। कभी किसी ने बजट बनाया यहाँ पे अपने, जेन्युइनली बताना कि किसी ने भी बजट बनाया है अपने घर का या फिर बिजनेस का या फिर सेंटर का, तो आप बनाते ही होंगे, सेंटर का बजट बनाया है। कभी किसी ने ये सोचने की कोशिश करी है कि मेरी जो सैलरी आती है या मेरी जो इनकम आती है वो जाती कहाँ। जब जब मैं 10 साल पहले काम कर रही थी या कर रहा था, तो शुरुआत में जो मेरी इनकम थी मुझे वो भी कम लगती थी, आज भी जो इनकम है वो भी कम लगती है, आगे आने वाले मुझे जो चीजें हैं उनके लिए भी जरूरतें कम पड़ रही हैं। कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ? बनाया है किसी ने बजट अपने घर का या अपना खुद का? एज ए स्टूडेंट आपने कभी बनाया है कि ठीक है मुझे
2: यस
1: अपनी
2: मैम
1: हायर एजुकेशन के लिए? कोई कोई एग्जाम्पल आप शेयर करना चाहते हैं
2: जी मैम
1: बताएं।
2: मैम क्योंकि मैम कभी कभी मैम ऐसा होता कि मैम हम जो बनाते अचानक से कोई जरूरत पड़े, जैसे मैम कॉलेज की फीस हो गई, सेमेस्टर वही पड़ जाती है, जिम की फीस अलग जाती है, ये सब मैंने बना कर रखा है, और तो कभी कभी अचानक भी ज्यादा पैसों की जरूरत लग जाती है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: तो
1: सही,
2: थोड़ा मैनेजमेंट करना।
1: बिल्कुल सही। हम पूरा बजट बनाते हैं, कभी कभी ऐसी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं जो हमने शायद प्लान भी नहीं करी होगी। तो बहुत जरूरी है पहले तो अपनी नीड्स को समझना। नीड्स हो गई जो बेसिक हमारी जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, कितना कितना बजट की जरूरत है, पहले तो हमें वो समझना है अपनी लाइफ में, अपने इंडिविजुअल लाइफ में। और फिर दूसरी आ गई वॉन्ट्स, जिसकी वॉन्ट्स मतलब जिसकी हमारी जरूरत नहीं है, उसके बिना भी हम जी सकते हैं, लेकिन एक अच्छा लाइफ स्टाइल, एक अच्छा आउटलुक मेंटेन करने के लिए हमें वो चीजें चाहिए। मुझे अच्छा फोन चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा जगह पे खाना खाना चाहती हूँ। खाना तो मैं बेसिक भी खा सकती हूँ, घर पे बना हुआ, खुद का बनाया हुआ, मम्मी के हाथ का बनाया हुआ, या बहन के या भाई के हाथ का, किसी के भी हाथ का बनाया हुआ खाना मैं खा के खुश रह सकती हूँ। लेकिन मुझे चाहिए कि मैं एक रेस्टोरेंट में जाऊँ, वहां जाके अच्छे कपड़े पहनूं और फिर वहां जाके अच्छा सा खाना खाऊं और टाइम स्पेंड करूं, थोड़ी सेल्फीज लूं, वो सेल्फीज को मैं पोस्ट करूं, तो वो हो गई मेरी वॉन्ट। तो ये नहीं कहना है कि नीड्स और वॉन्ट्स जो है वो दो अलग अलग चीजें हैं। नीड्स मतलब अगर मेरी जरूरतें पूरी हैं तो मैं जी सकती हूँ, मैं वॉन्ट्स पे तब जाती हूँ जब मेरी नीड्स पूरी हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जरूरतों को कम करके अपनी वॉन्ट्स को पूरा करूं। जब हम वो करना शुरू करते हैं तब हमारा बजट जो है वो हिल जाता है कि भाई बेसिक नीड, राशन तो घर में आया नहीं महीने का, लेकिन हमने जाके बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा लिया और एक ही बारी में 10,000 रुपए खर्च हो गए, तो अब राशन तो आएगा नहीं क्योंकि वो हमने पैसा खर्च कर दिया। तो एक दिन तो मैंने अच्छी जगह पे खा लिया, मेरे पास फोटोज भी आ गई, मैंने उसको पोस्ट भी कर दिया, मेरे पास 10,000 लाइक्स भी आ गए, बट क्या वो मेरी जरूरत थी या नहीं थी, ये आप इंडिविजुअली डिफाइन करेंगे अपने लिए। इसमें अगेन कुछ सही या कुछ गलत नहीं है, आपकी जिंदगी का क्या नजरिया है आपकी जिंदगी के लिए वो यू कैन ओनली डिफाइन, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल टू अंडरस्टैंड। ये बहुत जरूरी है एक लाइफ स्किल होना कि पैसे की अहमियत आज समझिए, कल बेहतर, आज और बेहतर कल के लिए। चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम अभी नया नया जॉब शुरू किया है, या चाहे हम एक लघु उद्योग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, चाहे हम हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, काम भी कर रहे हैं और एक हायर एजुकेशन भी करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं अपनी कुछ बिजनेस यहाँ पे कर रही हूँ और थोड़े टाइम में मैं ये चाहती हूँ कि मेरा पर्सनल ग्रोथ हो और मैं कुछ आगे जाके एडवांस कोर्सेज करूँ, तो मुझे उसके लिए भी सेविंग्स करनी है। तो बहुत जरूरी है हम एक बजट बनाएं। कुछ लोग मंथली बनाते हैं, कुछ लोग 2-3 महीने का बना सकते हैं, कुछ लोग साल का बना सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट डू मेक अ बजट एंड डू ट्राई एंड ट्रैक कि जो बजट आपने बनाया एट द एंड ऑफ द मंथ आप कहाँ पे थे, तब आप अपने आप को पहचान पाएंगे। कभी कभी हम क्या कहते हैं, इम्पल्स इम्पल्स खर्चे भी कर देते हैं, कभी कभी इमरजेंसी खर्चे हो जाते हैं। जैसे अभी हमारे पास जो हमारे फ्रेंड फतेहपुर से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि कभी कभी वो कोशिश करते हैं कि इन इन चीजों पे खर्चा करें, बट ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है या ऐसी कोई फीस आ जाती है जो उन्होंने शायद प्लान नहीं करी थी और इमिजिएटली उनको पे करना पड़ा, तो उस चीज में उनका बजट हिल जाता है। जब आप ये 3, 4, 5, 6 बारी करेंगे ना, तो आप खुद इफेक्टिवली अपना बजट, जो मंथली बजट्स हैं या जो साल के या 6 महीने के आपका जो एक प्लान है बजट को लेके, वो आप अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे, और जो भी मनी आपके पास है उसको आप एक बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे किसी के पास सैलरी आती है, मान लीजिए जो काम कर रहे हैं, जब सैलरी आती है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? कोई एग्जाम्पल्स दे सकते हैं?
2: मैम, सबसे
1: हेलो
2: पहले
1: मैम,
2: जो
1: नमस्ते
2: जी
1: जी।
4: गजराज बोल रहा मैम, वाराणसी।
1: हाँ जी, गजराज सर।
4: वैसे मैम, अभी जो सेशन चल रहा बड़ा अच्छा, अभी तक किसी अभी तक जो योजना है बजट को लेकर, पारिवारिक खर्चों को लेकर किसी मैं मेरी बताऊं तो मैंने अभी फोकस नहीं किया। बाकी ये आज का सेशन से आगे के लिए काफी कुछ सीखने को मिलेगा, और जिनके साथ हम काम करेंगे उनको भी ये समझाने की जरूरत है मैम। अब जो
1: जी
4: आज अभी आप पूछ रहे हो कि क्योंकि जैसे जो सैलरी मिलती है, तो सबसे पहले तो जो राशन पर खर्चा कितना होता है, राशन पर खर्च होता है नंबर एक, तो 1 महीने में जितना भी जो अपन को जरूरत
1: बिल्कुल
4: होती
1: बिल्कुल,
4: है,
1: पेट
4: और
1: भरना
4: दूसरा
1: सबके लिए
4: पानी और
1: जरूरी।
4: बिजली,
1: ठीक है, पानी हो गया और बिजली हो गया।
4: बिजली और फिर एजुकेशन बच्चों के उस पर, क्योंकि ये तो मनुष्य की जो अति जरूरत चीज है। जब तक राशन नहीं होगा, जब तक उसका जीवन नहीं चलेगा, तो
1: बिल्कुल बिल्कुल
4: ये है मैम। इसलिए सबसे पहले राशन, यानी कि 1 महीने का कितना खर्च, तो जो सैलरी मिलती है वो उस पर नॉन तेल की जो भी है जरूरतों पर चला जाता है मैम।
1: बिल्कुल
4: दूसरा
1: सर।
4: फिर फोकस करते हैं कि क्योंकि बिजली नहीं है तो भी अंधेरा है, तो वो बिजली का बिल जो भी चुकाना होता है, पानी पर खर्च है, फिर उसके बाद में बच्चों के एजुकेशन पर मिनिमम जो भी जितना बचता है वो धीरे धीरे ऐसे मतलब इस खर्चे होते चले जाते हैं मैम।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। और कोई बताना चाहेगा? थैंक यू गजराज सर। गजराज सर ने बहुत सिंपल और सरल तरीके में बताया कि सबसे पहले तो जरूरतों को हम पूरा करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जैसे सैलरी आती है या जिनका कोई बिजनेस है, कुछ मनी आती है, तो महीने में सबसे पहले वो अपना राशन पूरा कर लेते हैं कि ठीक
4: जी
1: है, पूरा राशन, पूरे परिवार का पेट भरा होना चाहिए, तो हमने उसको राशन पूरा कर दिया। उसके बाद बिजली पानी होना चाहिए, हमारे ऑब्वियसली घरों में बिजली पानी का खर्चा है, वो खर्चे पूरे हो जाते हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन, तो ये तीनों चीजें पूरी हो जाती हैं। हमारा हर मंथ मंथ दर मंथ ऐसे चलता रहता है, महीने दर महीने, महीने दर साल बिल्कुल इन जरूरतों को हम पूरा करते रहते हैं। कोई और एग्जाम्पल शेयर करना चाहेगा इसके बाद? इसके साथ साथ किसी का कोई अलग नजरिया है, कुछ कोई अलग तरीके से अगर अपनी सैलरी को मैनेज करते हैं, कोई शेयर करेंगे?
2: मैम, हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं पहले हम उनको पूरा कर लेते हैं, जो फिर मनी बचती है उसको हम अपने पास सेविंग्स रखते हैं, क्योंकि वो जो आगे मनी आएगी वो आगे भी काम कभी आ सकती।
1: वेरी गुड। सो पहले हम बेसिक्स पूरा कर लेते हैं और जो बचा हुआ मनी है उसको सेविंग्स में रख लेते हैं। तो सेविंग्स में आप क्या सेविंग बैंक अकाउंट खोलते हैं, उसमें रखते हैं, या कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं?
2: सेविंग अकाउंट में
1: सेविंग अकाउंट में रखते हैं, भाई कभी भी जरूरत पड़े तो हम उस सेविंग अकाउंट में से वो मनी निकाल सकते हैं। सेविंग अकाउंट पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है, कुछ 3% के करीब हमें सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट भी मिलता है। तो जो जो सैलरी हमारी आई उसमें हमने बेसिक खर्चे निकाल दिए, और जो बचा हुआ पैसा है वो हमारा सेविंग में पड़ा रहा। बहुत ही बढ़िया आई। और कोई कुछ बताना चाहेगा? थैंक यू।
3: मैम, सबसे पहले प्रायोरिटी सैलरी आने के बाद होती है कि फीस जमा करनी है बच्चों की।
1: बिल्कुल
3: मैम, वो एक प्रायोरिटी है जो करना ही करना है, उसके अलावा जो ईएमआई है वो पे करना है। प्लस मैम, 5% मेरी सैलरी का हम एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे रख देते हैं, क्योंकि बच्चों का स्कूल है, कभी भी कोई फंक्शन हो गया स्कूल में या किसी भी चीज के लिए जरूरत पड़ गई, या बच्चों की कोई हेल्थ का इश्यू हो गया, तो वो अर्जेंट नीड के लिए वो पैसे सेव करके रखने पड़ते हैं, 5% ऑफ द सैलरी,
1: इमरजेंसी, आप उसको
3: इमरजेंसी के
1: इमरजेंसी
3: लिए।
1: फंड कह सकते। तो ठीक है, अब हमारे पास एक तीसरा पहलू आ गया जो सना ने बोला। अभी तक हमारे पास सिर्फ दो पहलू थे, कि पहले हम अपनी बेसिक नीड्स जो है, रोटी कपड़ा मकान, उसके उसके ऊपर करते हैं। दूसरा था एजुकेशन, अभी तीसरा आ गया इमरजेंसी फंड, यानी कि एजुकेशन से बच्चों से रिलेटेड, क्योंकि सना एक यंग कपल है, तो वो अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई कुछ भी खर्चा आए तो बच्चों के लिए एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो अब हमारे पास मोटे मोटे तीन पहलू आ गए, पहला रोटी कपड़ा मकान, दूसरा हमारी एजुकेशन, तीसरा इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड हेल्थ के लिए भी हो सकता है, एजुकेशन के लिए भी हो सकता है, कुछ भी। एक हमने इमरजेंसी फंड के लिए खुद से, वो कह रही है कि हमने बाय डिफॉल्ट 5% अपनी इनकम का, सेविंग्स का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक इमरजेंसी फंड में उसको रख देते हैं 5%। बहुत ही बढ़िया। और कोई कुछ, किसी और का कोई और तरीका है अपनी सैलरी को मैनेज करने का, कुछ अलग, इससे कुछ अलग, अगर इसके कुछ एडिशन में अगर कोई कुछ बताना चाहता है, कुछ भी सही या गलत नहीं है, हम कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपके तरीके से, जैसे मैं कभी इमरजेंसी फंड में शायद नहीं करती हूँ, लेकिन आज सना की बात सुन के शायद मैं आज से 2%, 1%, 3%, 5% इमरजेंसी फंड में हो सकता है रखना शुरू कर दूं। कोई कुछ और करता है अलग सा, ऐसा कोई डब्बे के नीचे छुपाता है पैसे हस्बैंड से, आटे के अंदर, चावल के अंदर, ऐसा नहीं करते? प्लीज,
3: ऑल द लेडीज मैम,
1: ऑल द लेडीज डू दैट। सो उसको, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको उसको भी हम एक सेविंग के तौर में, मतलब हमने कहीं बैंक में नहीं रखा, उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, लेकिन एज ए वो भी एक इमरजेंसी फंड ही है, लेकिन वो हमने एज ए सेविंग की तरीके से उसको अपने बचत की तरीके से रखा। यानी कि हो सकता है हमने घर की इनकम के लिए 100 रुपया निकाला हो सैलरी में से, लेकिन हमने घर को इतने अच्छे तरीके से चलाया कि 80 रुपये में उस महीने के खर्चे हो गए, और जो 20 रुपये बचे उसको हमने एक बचत के तौर पे रख दिया। यानी कि बजट बनाया और उसको भी बचत के तौर पे रख दिया। ये हम सब करते हैं, खासकर लेडीज करती हैं, शायद जेंट्स नहीं करते हो, या करते हो, या इससे भी इफेक्टिवली करते हो, तो ये भी एक सेविंग्स का तरीका है।
4: चंद्र प्रकाश बोल रहा हूँ।
1: जी सर,
4: मैं तो खुद तो मेरी बचत करता ही हूँ, पर लेकिन जो मेरे व्यूवर स्टाफ है जो भी साथ काम के, सबको 20% राशि की आरडी का पोस्ट ऑफिस में आरडी करवा रखी मैंने सबकी।
1: वेरी गुड। सो पोस्ट ऑफिस में जो कि सेफ भी माना जाता है, अच्छा इंटरेस्ट भी मिलता है उसके ऊपर, और एक कंपल्सिव सेविंग भी हो जाती है,
4: स्वीपर
1: दैट
4: से लगे,
1: इज अनदर।
4: स्वीपर करता है उसकी भी मैंने उसके हिसाब से आरडी करा रखी है। भी बारे महिला है उनकी भी आरडी करा रखी है। तो सबकी जितना पैसा आता है एजेंट वही बुला लेता हूँ सेंटर पे, सबको जमा करवा देता हूँ। तो उनके लास्ट में 100 रुपये में उनको 6,500 करीब मिलेंगे उनको 5 साल में। तो एक उनकी सबकी सेफ बचत आदत पड़ गई, सबकी बचत होने की।
1: तो छोटी छोटी बजट से आपने देखा किस तरीके से स्मॉल सेविंग्स कैन यील्ड टू अ बिग अमाउंट। एक 5 साल के, हमें सोचने में लगता है कि 5 साल बहुत दूर है, लेकिन वो छोटी छोटी छोटी छोटी सेविंग्स करते करते लमसम मनी हमको एंड में मिल जाता है। थैंक
3: मैम
1: यू
3: कैन
1: चंद्र
3: आई
1: प्रकाश
3: से
1: जी।
3: समथिंग मैम?
1: जी जी मैम, बिल्कुल।
3: मैम आई डोंट नो इफ आई कैन से लाइक दिस, आई सेव एवरी मंथ सम मनी टू गिफ्ट माय डॉटर एवरी ईयर समथिंग इन गोल्ड मैम, सो एवरी मंथ आई सेव।
1: तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप एक अलग से फंड क्रिएट करते हैं, बिकॉज आपकी प्रायोरिटी वो है कि यू हैव टू गिव समथिंग टू योर डॉटर, राइट? अभी आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो शायद आप प्रोबेबली उस एज में पहुंच गए हैं, उस स्टेज में पहुंच गए हैं आपकी लाइफ में जहां पे बेसिक नीड्स के बियॉन्ड, क्योंकि आपके बच्चों की एजुकेशन पूरी हो चुकी है, यू हैव मेड कमिटमेंट्स टू देयर यू नो मैरिज एंड अदर अदर थिंग्स दैट यू हैव, यू माइट हैव सेविंग्स फॉर योर हेल्थ एंड एमरजेंसी। तो आपको लगा कि आपको एक ऐसा फंड क्रिएट करना है जो कि लमसम हो एंड यू कैन गिफ्ट टू योर डॉटर एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये जो हम गोल की बात कर रहे थे कि आपको मनी क्यों चाहिए, ये आपको खुद को डिफाइन करना एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उसका। शायद मेरी जिंदगी में अभी वो नीड नहीं है क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, जैसे सना ने बोला उनके बच्चे छोटे हैं, तो हमारी नीड्स अभी इस वक्त है उनके एजुकेशन को लेके, फ्यूचर को लेके। बट शायद जो हमसे थोड़े बड़े हैं, जो हमसे थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, उनकी नीड बदल गई है क्योंकि उनको एक अलग लेवल की जरूरत है। सो आई थिंक, थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग, इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल जो मैं कहना चाह रही थी कि नीड हम सबकी मनी को लेके हर वक्त अलग होती है और वो नीड बदलती रहती है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दैट नीड एंड वर्क योर बजट अकॉर्डिंग टू योर नीड। एज ए स्टूडेंट हमारी नीड अलग हो सकती है, हमें उसे पहचान के अपना डिफाइन करना है कि मुझे लाइफ में कितना मनी चाहिए अपनी स्टूडेंट या अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। जब वो हो जाता है, हमें कितना बजट चाहिए अपने घर
3: हेलो,
1: परिवार को चलाने के लिए। हाँ जी,
3: नमस्ते मैम, कैसे
1: नमस्ते जी,
3: हो मैम?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
5: ठीक है मैम, हम भी और आपको देख के और ज्यादा ठीक हो गए।
1: अल्लाह, हम भी आपको देख के खुश हो गए। और आप
5: अच्छा
1: बोल रहे हैं ये
5: बोलिए।
1: सबसे अच्छी बात है जी।
5: मैं मसून सेंटर से बोल रही हूँ। हाँ जी, मोबिलाइजेशन का काम करती हूँ मैम, शोभा नाम है मेरा।
1: जी,
5: मैम
1: बताइए
5: हमने
1: शोभा
5: जो
1: जी,
5: हमारी
1: कहाँ
5: सैलरी मिलती है ना, हम उसमें से अपने पैसे निकाल के हम बचत जमा करते हैं। मैम
1: पे करते हैं आप बचत जमा?
5: हमने 10 महिलाओं का ग्रुप बना रखा है।
1: अच्छा ठीक है,
5: 10 महिलाओं का ग्रुप बना के हम उसमें से 200 रुपये पर मंथ निकाल के अपनी बचत जमा करते हैं, सेव करते हैं।
1: तो फिर वो आपको मिलता कैसे है, वापस कैसे मिलता है?
5: मैम वो पैसा हमको, जैसे हमें कभी कोई इमरजेंसी आ जाए, घर में जरूरत पड़ती हो, तो हम एक प्रस्ताव बनाते हैं मिलके 10 लेडीज इकट्ठा होके, तो उसमें से जिसको जितनी जरूरत होती है उसमें से पैसे निकालते हैं और अपना काम चलाते हैं हम। और फिर
1: वेरी
5: वो
1: गुड।
5: 200 रुपये बचत तो हमेशा ही जमा होती है, लेकिन पर उसकी किस्त बन जाती है।
1: वेरी
5: 1% का
1: गुड।
5: ब्याज है, 1% का ब्याज है मैम इसमें।
1: 1% का ब्याज। तो
5: हाँ
1: आपने
5: जी
1: ये एक लोकल लेवल पे जो सेविंग स्कीम है अपनी महिलाओं के साथ, एक महिला ग्रुप के साथ वो शुरू किया है, राइट?
5: हाँ जी
1: तो ये जो है ये आपको एट ए टाइम ऑफ जो इमरजेंसी है या ऐसी कोई बेसिक जरूरत है जो यकायक आ जाती है, उसके लिए आप उसको, इस फंड को यूज कर लेते हैं, राइट?
5: हाँ जी
1: बहुत बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये आपने दिया। तो जब हम अपने बेनिफिशरीज के साथ बात करेंगे, जैसे चंद्र प्रकाश जी ने भी बताया कि हर किसी को ये जो स्किल है एज ए लाइफ स्किल आना बहुत जरूरी है, स्पेशली आने वाली जेनरेशन को, क्योंकि आने वाला जो टाइम है ना वो इससे भी ज्यादा जो है स्ट्रेसफुल होने वाला है इमेज मैनेजमेंट के ऊपर,
5: जी
1: कि अच्छा मुझे किस तरीके से अपने आप को दुनिया को दिखाना है। उस चीज में कहीं ना कहीं हम अपनी बेसिक जरूरतों को काट के हम अपनी इमेज मैनेजमेंट में लग जाते हैं, और हम फिर क्रेडिट कार्ड्स पे या फिर लोन्स लेके या फिर ऐसे एक विशेष सर्कल में फंसते चले जाते हैं जहां पे हम कितना ही कमा ले हमको वो कम ही पड़ता है। सो इट इज वेरी वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मनी को मैनेज करना सीखें अपने लेवल पे। हम किस लेवल पे हैं आज, लेवल एज इन हम स्टूडेंट हैं, हमारी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, हमारे घर में बुजुर्ग पेरेंट्स हैं जिनकी हो सकता है हेल्थ कंडीशन ऐसी हो कि हमें उनके लिए भी
5: जी
1: सेविंग्स करना है। तो समय समय पे ये चीजें चेंज होती हैं और उस समय के अनुसार हमें अपना घर परिवार बजट मैनेज करना सीखना है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल जो कि हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को समझना हमसे भी शायद ज्यादा जरूरी रहेगा। जैसे कि चंद्र प्रकाश जी ने बताया, अभी हमें सुन से जो एग्जाम्पल मिला है, सना ने जो बताया एंड शैलजा मैम ने बताया, स्टार्ट स्मॉल। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम 10,000 रुपए की एफडी करें या 50,000 की एफडी करें या बहुत बड़े म्यूचुअल फंड में, आजकल हम देखेंगे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सही है, बहुत बहुत आसान है, ऐसे करके एड्स आती हैं। अगर इस समय पे हमें वो बड़ी चीजें नहीं समझ में आ रही या हम नहीं कर पा रहे, इट डज नॉट मैटर। हमारी पहले की जो पीढ़ी थी, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी दादी या उनकी जो मदर थी, उनको उनकी कहानियां सुनेंगे तो ये होगा कि अच्छा उन्होंने अपनी जो मंथली उनके पैसे आते थे उनको मिलते थे हाथ में, उस टाइम पे तो लेडीज अर्न नहीं करती थी ना ज्यादा, उनको जो भी उनके हस्बैंड्स ने दिया या कुछ दिया वो घर के खर्चों में से बचत करके साल 2 साल 10 साल में इतने पैसे इकट्ठे कर लेती थी कि कभी कभी उनको खुद नहीं रियलाइज होता था कि इतने पैसे उनके पास पड़े हुए हैं। कहने का मतलब है कि स्टार्ट स्मॉल। आज आप छोटा भी अगर सेविंग कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स भी हैं आजकल गवर्नमेंट के अंदर, हम स्कीम्स के ऊपर बात नहीं कर रहे, आज हम एटीट्यूड के ऊपर बात कर रहे हैं, पैसे को लेके जो एटीट्यूड है हमारा, उस लाइफ स्किल की बात कर रहे हैं। लेकिन उसकी बात करते करते भी हमें इतने सारे एग्जाम्पल्स मिल गए हैं कि कुछ जो अभी फतेहपुर से थे उन्होंने बताया कि वो सेविंग बैंक में रखते हैं, सना ने बताया वो इमरजेंसी फंड में रखते हैं, शैलजा मैम, संगीता हमारे साथ और चंद्र प्रकाश जी जो और 2-3 लोगों ने बताया कि वो अलग अलग तरीके के कुछ उन्होंने नॉन फॉर्मल या फिर फॉर्मल जो सेविंग स्कीम्स हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस हो गई, प्रोविडेंट फंड है, आजकल तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो हम छोटे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। छोटा लेवल एज इन अगर आज हम 100 रुपये भी बचा सकते हैं, 200 रुपये भी बचा सकते हैं, तो 5 साल 10 साल के बाद हमें वो मल्टीप्लायर इफेक्ट देता है। कई स्कीम्स ऐसी होती हैं, कई इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट भी देते हैं। वो एक कॉम्प्लेक्स स्कीम्स हैं, उनको अगर अभी हम नहीं भी समझ पा रहे हैं तो हम सिंपल सेविंग, जो सिंपल सेविंग स्कीम्स हैं उनके, उनको समझ के उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें क्यों करेंगे? क्योंकि उसमें रिस्क कम है और अगर जब हमें इमरजेंसी में जरूरत हो तो हम वो फंड निकाल सकते हैं। लेकिन आदत सेविंग्स की होनी चाहिए। सेविंग्स की आदत ऐसे पड़ सकती है कि हम कंपल्सरीली कुछ परसेंट, 1%, 2%, 5%, 10% अपनी सेविंग्स का, अपने इनकम का सेविंग्स में रखें ही रखें। उस एटीट्यूड को बनाने की आज हम कोशिश कर रहे हैं, उस एटीट्यूड पे बात करने की आज कोशिश कर रहे हैं। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो करीबन मतलब एक ऐसी एज पार कर चुके हैं जहां पे उनको सेविंग्स की आदत लग गई है। बट ये सेशन हम अपने बेनिफिशियरी के साथ करेंगे जो 15 से लेके हो सकता है 30 तक की एज में होंगे। वो एज ग्रुप जो है ना वो बहुत वनरेबल है। मैं अपने बेटे को भी देखती हूँ, उनके जो फ्रेंड्स हैं उनके भी जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स स्पेंडिंग, ठीक है अर्बन है, यहाँ पे एक्सपोजर ज्यादा है, बट ये एक्सपोजर हर जगह पे है क्योंकि जो फोन के जरिए से मीडिया है ना वो सब तरीके से फैला हुआ है। तो ये चीज जो मनी को लेके हमारा एटीट्यूड है ना कंजम्पशन का, मतलब आज अगर हमारे पास पैसा है तो हम उसे कंज्यूम करके खुश हो जाएं, कहीं ना कहीं वो हैबिट आ रही है। कुछ हमारी जनरेशन में भी है, कुछ हमारी आने वाली जनरेशन में भी है। हमारे से पहले वाले जनरेशन तो पूरा ही बचत की तरफ चलते थे, कभी कोई नीड उन्होंने पूरी करी ही नहीं। एक नई शर्ट लेने के लिए भी मुझे लगता है वो 100 बार 10 बार सोचते थे, इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स। मतलब बहुत ही सेविंग्स की तरफ वो उनका रुझाव अलग ही लेवल का था। जब हमारी जनरेशन आई तो हमने एक मिक्स्ड, कुछ हम कंज्यूम करते हैं, कुछ हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं और कुछ हम सेविंग्स करते हैं। तो अगेन सही या गलत कुछ भी नहीं है। द आइडिया इज टू आइडेंटिफाई योर नीड्स एंड वॉन्ट्स। पहले नीड्स को पूरा करके हम कुछ सेव करेंगे इमरजेंसी के लिए या ऐसी कोई प्लानिंग के लिए, जरूरी नहीं है इमरजेंसी के लिए हम सेव करेंगे। अगर मेरा शौक है कि मुझे आज से 20 साल के बाद मुझे किसी बाहरी देश में घूमने जाना है तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते। छोटा छोटा छोटा छोटा इन्वेस्ट करें, कहीं स्मॉल स्मॉल सेविंग्स करें, 5 साल 10 साल के बाद एक फंड ऐसा आ जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, हो सकता है आपका यही ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि शारजा मैम ने बोला, उनका एक ऑब्जेक्टिव है, वो एक गिफ्ट करना चाहती हैं हर साल के एंड पे अपनी डॉटर को। सो आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका फंड है, आप उसे मैनेज करेंगे, बट तभी कर पाएंगे अगर आप अपने फंड को तरीके से समझ पाए, अपनी नीड्स और वॉन्ट्स को दो मोटे मोटे भागों में बांट पाए। कभी कभी ना हम किसी चीज को देखते हैं और हमारे पास पैसा है, हमारे पास सेविंग्स भी है, कभी कभी लगता है हमें ना ये चीज खरीद लेनी चाहिए। तो जब मैं ये सेशन बना रही थी, बहुत प्यारी सी 30-day rule मेरे सामने आई। सो आई वॉन्ट टू शेयर विद यू, हो सकता है किसी को ये हेल्पफुल हो। तो ये रूल ये कहता है कि अगर मेरी बेसिक नीड्स पूरी हो गई, मेरा खाना पानी बिजली, मेरी एजुकेशन भी हो गई, बच्चों की एजुकेशन भी हो गई, अब मेरा दिल कर रहा है कि एक बड़ी सी कोई चीज लेने का। मान लीजिए मोबाइल फोन है, बहुत अच्छा सा नया मोबाइल फोन आया मार्केट में और मुझे वो लेना है, या एक बहुत सुंदर सी साड़ी आई है वो लेनी है, या एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट खुला है, सब उसमें जा रहे हैं, मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही हैं, मुझे भी उसमें जाना है, लेकिन वो बहुत खर्चा हो जाएगा उसमें। जितनी मेरी सेविंग्स है करीबन उसकी आधी जो सेविंग्स है वो निकल जाएगी। तो ये 30-day rule ये कहता है, बचत का ये रूल है कि आप जो ये डिसीजन लेना चाहते हैं ना 30 दिन के लिए रुक जाइए। 30 दिन आज आप डिसाइड कर लीजिए कि हाँ ये चीज मेरे को लेनी है, वो पैसा आप अलग से 30 दिन के लिए डाल दीजिए, किसी एक FD में डाल दीजिए, तो 30 दिन की FD भी आती है आजकल। 30 दिन के बाद आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं, आप सिर्फ उसका ध्यान नहीं करेंगे। आपको ये पता है कि 30th day ही मैं उसके बारे में सोचूंगा। तो 30-day rule ये कहता है कि अगर 30 दिन के बाद भी आपकी वो जरूरत उतनी ही प्रोमिनेंट है तब तो आप उस चीज में इन्वेस्ट करिए। अगर आपके 30 दिन के बाद वो जो जरूरत है वो कम हो जाती है, या आपको नहीं लगता कि ठीक है ये तो वेस्ट हो सकता है, इसे बोलते हैं इम्पल्सिव परचेज। इम्पल्सिव मतलब मुझे मेरी जो आज की सोच है या आज के इमोशंस है ना, कभी कभी हम उससे बहुत बड़ा खर्चा कर देते हैं जो आगे जाके हमें अफसोस होता है कि अरे इसकी शायद इतनी जरूरत नहीं थी। इसके बारे में, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, आई वॉन्टेड टू लीव दिस विद यू, बट अगर आप चाहें तो बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज हैं इसके बारे में, ऑनलाइन स्टोरीज है 30 डे सेविंग्स रूल के बारे में। आप चाहें तो ये स्टोरीज आप देख सकते हैं अपने बेनिफिशरीज के साथ, जब आप ये सेशन करेंगे यू कैन शेयर दो स्टोरीज। एंड मुझे लगता है ये वाकई, मैंने खुद भी कभी ऐसा प्रैक्टिस नहीं किया, तो ये बहुत आई थिंक प्यारा रूल है कि अगर कोई चीज हमें आज लग रहा है कि मुझे वो खरीद लेनी चाहिए या मुझे उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए, मुझे घूमने चले जाना चाहिए इस जगह पे, तो मुझे जाना ही जाना है, सारे लोग जा रहे हैं, 30 दिन के बाद भी अगर आपका दिल, आपका मन, आपकी जरूरत अभी भी वैसी ही है, ये हम इम्पल्सिव परचेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ की हमारी सेविंग्स जो है वो खर्च हो जाती है, कभी कभी हमारा बजट पूरा हिल जाता है, उस चीज के बारे में हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। किसी के कोई एग्जाम्पल्स, कभी किसी ने ऐसा किया हो, कोई बहुत जरूरत की चीज लग रही हो और उसको 5 दिन के लिए रख दिया कि नहीं अच्छा 5 दिन के बाद सोचूंगी या सोचूंगा, ऐसा हुआ कभी किसी के साथ? नेक्स्ट टाइम लेट्स ऑल ट्राई, अगर ऐसा होता है, अगर हमें लगता है तो वी कैन ट्राई दिस एंड दिस माइट हेल्प अस बिल्ड आवर सेविंग्स अलॉट, और हम उस मनी को हो सकता है किसी और अच्छी चीज पे खर्च करने के लिए बचा लें। सो दिस इज वन टेक्निक। दूसरा एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आया कि जो हमारी इनकम है उसको हम खर्च करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका जो ट्रेडिशनल तरीका है कि जैसे ही हमारी सेविंग्स आती है हम अपने बेसिक खर्चों में उसे खर्च कर देते हैं और जो बचा हुआ है उसको सेविंग्स में डाल देते हैं। ये एक ट्रेडिशनल वे है अपनी बजट मैनेजमेंट का। एक प्रोग्रेसिव वे और एक ऑल्टरनेट वे ये है कि जैसे ही हमारी इनकम हमारे पास आती है हम कंपल्सरीली सबसे पहले बजट में डालें उसको, और जो बचा हुआ पैसा है उससे हम खर्चे पूरे करें। तो ये अब अलग अलग लोगों के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं इसके बारे में, बट जो सेविंग्स करने का तरीका है वो उल्टा होना चाहिए। पहले हम अपने 100 रुपए में से 5 रुपए, 10 रुपए, जो जितना भी मेरा जितने भी मुझे लगता है कि मैं सेव करना चाहती हूँ या चाहता हूँ पर मंथ, वो एंड में नहीं करेंगे, वो सबसे पहले करेंगे। जिसका एग्जाम्पल सना ने भी हमें दिया कि इनकम आते ही हम सबसे पहले अपना बचत का जो पोर्शन है उसको अलग कर लेंगे और खर्चे बाद में करेंगे। दैट इज अनदर वे ऑफ यूजिंग आवर मंथली बजट, या हमारे साल दर साल का जो हमारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। देयर वाज अनदर रूल कि ये 50-30-20 का रूल है। इसके अलावा मुझे 70-20-10 का भी रूल मिला है। इसका कहने का मतलब वही है कि किस चीज पे हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग हो सकता है। तो 50% जो है हमारी बेसिक नीड्स के लिए हम हमेशा उसको रखें, यानी कि रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन, हेल्थ हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इन सब चीजों पे आप समय समय पे अपना जो है एक्सपेंसेस, जो भी आपकी सालाना इनकम है उसका 50% आप खर्च करते हैं। हम सब खर्च करते हैं, 20% सेविंग कर सकते हैं, 10% सेविंग कर सकते हैं, 5% सेविंग कर सकते हैं, और कुछ आप देखिए हर वक्त सेविंग करते रहेंगे इतना तो कोई हम साधु का जीवन नहीं जी रहा, कोई भी नहीं जी रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हर वक्त सेविंग मोड में ही रहना है। हमें कुछ अपने शौक भी पूरे करने हैं, हमें कुछ अपने इच्छाएं भी पूरी करनी है उस मनी के लिए, क्योंकि हर कोई इंसान चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ समय समय पे अपने आप को, अपनी फैमिली को, या अपने जो हमारे नियर एंड डियर वंस हैं उनको मैं कुछ अलग रिवॉर्ड सा दूं। वो आती है वॉन्ट्स में, वो आती है हमारी लग्जरी में। हो सकता है कुछ लोग दिवाली पे नए कपड़े खरीदते हैं, कुछ लोग ईद पे नए कपड़े खरीदते हैं, हो सकता है कुछ लोग मंथली बोलते हो कि ठीक है मुझे कुछ ना कुछ बचत करके अपने लिए या अपने बच्चों के लिए नया खरीदना ही है। तो उसके लिए भी आप पहले से प्लानिंग करके चलें। जब आप प्लानिंग करके चलेंगे तो आप इफेक्टिवली यूज करेंगे, इम्पल्सिवली नहीं यूज करेंगे। इम्पल्सिव में फिर हमारा 30 डे रूल आ जाएगा कि अगर इम्पल्स बाय है तो 30 दिन के लिए मैं रुक जाऊं, 15 दिन के लिए मैं रुक जाऊं, अगर 15 दिन के बाद भी मुझे वो जरूरत लगती है तो हम वो चीज को परचेज कर सकते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, अगेन आई वुड से कि हम हो सकता है कर रहे हों इसको, लेकिन ये सेशंस हमने अपने बेनिफिशरीज के लिए भी बनाए हैं जिसमें कि बच्चे भी हैं, यूथ भी है, शायद उन्होंने अभी कमाना शुरू नहीं किया, लेकिन 20-25 साल की उम्र में जो कमाने लगेंगे, अगर पहले से ही शुरू से ही वो आदत डल जाए कि हाँ हमें बचत करते हुए चलना है, तो आप ये सोचिए जब 20 साल में सेविंग्स करना शुरू कर देगा, जब तक कि वो 50 साल का या 60 साल का हो जाएगा, कितनी सारी सेविंग्स उनके पास इकट्ठी हो जाएंगी। सो दिस इज अ हैबिट मैनेजमेंट, दिस इज अ बिहेवियर मैनेजमेंट जो कि हमें खुद से अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना है। सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट सेशन, आई थॉट कि दिस इज वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल जिसके बारे में हमने फॉर्मली कभी बात नहीं करी है। सो दिस इज समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू शेयर, जस्ट स्टॉप शेयर। ऑल राइट, सो दिस इज अ वेरी स्मॉल सेशन ऑन फाइनेंस मैनेजमेंट। कुछ टिप्स थी, कुछ टेक्निक्स थी, दिस यू कैन शेयर विद द बेनिफिशरी, स्पेशली जैसे कि चंद्र प्रकाश जी ने बोला, वो उन्होंने आदत डलवाई है ना कि सिर्फ अपने बेनिफिश ना कि खुद को बल्कि अपने स्टाफ को भी, इंक्लूडिंग एवरीबडी, जितने लोग उनके साथ जुड़े हैं सेंटर पे। सेविंग्स की अहमियत उन्होंने वहां पे हाईलाइट करी है। आई वुड से सेविंग्स जो है हम छोटे से शुरू कर सकते हैं, जितना जल्दी शुरू करें, जितना इनफॉर्मल करें फॉर्मल करें। इनफॉर्मल मतलब हम सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रखें, एफडी में उसको रखें, या फॉर्मल तरीके से किसी इन्वेस्टमेंट में रखें। अगर किसी इन्वेस्टमेंट में रख रहे हैं तो पूरी जानकारी के साथ आप अपना फंड इन्वेस्ट करिए, पूरी समझ बूझ के साथ करिए, क्योंकि वो आपका हार्ड अर्न्ड मनी है। किसी के बहकावे में आके या किसी के कहने के ऊपर किसी गलत स्कीम में मत उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं अच्छा 30% का इंटरेस्ट मिलेगा, इतना हमें रिटर्न मिलेगा, उसके धोखे में आके गलत जगह पे इन्वेस्ट करने से अच्छा है हम कम इन्वेस्ट करें, कम इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करें, लेकिन जो हमारे को समझ में आता है उस चीज पे हम इन्वेस्टमेंट करके चलें। और जितना हम प्लानिंग से चलेंगे उतना हम लोन्स की तरफ कम हमारा रुझान रहेगा, जितना लोन्स की तरफ कम रुझान रहेगा उतना हम इंटरेस्ट कम पे करेंगे, और उतनी हम मनी सेव्ड इज मनी अर्न, कभी हमने सुना है। तो जितना हम सेविंग्स और जितना हम अपने से सक्षम होके चलेंगे उतना हमारा आगे आने वाला वक्त सही तरीके से गुजरेगा। सो दिस वाज सम टिप्स, सम सेशन ऑन दैट। कोई कुछ इसमें ऐड करना चाहता है, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, दे आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ कमेंट्स हैं, वी कैन टेक दैट आल्सो।
5: Ma'am, it was such a wonderful session, ma'am, and most needed of the hour, ma'am. We can really, as you suggested, we'll really take it to the beneficiaries also.
1: यस, क्योंकि मैम सभी लोग काम इसीलिए करते हैं कि अपना फ्यूचर ब्राइट करके चल सके, खुद का फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर, अपनी फैमिली का, कोई इमरजेंसी हो तो हमेशा पैसे को लेके हर किसी का चैलेंज ही रहता है, चाहे कम है चाहे ज्यादा है, हमेशा चैलेंज ही रहता है। सो दिस इज वन थिंग जिसमें हम कितनी ही बात कर लें वो बात कम ही, मतलब उसमें कोई श्योर शॉर्ट तरीका नहीं है, लेकिन हम जितना आपस में शेयर कर सकते हैं तरीके, उससे हमें कुछ ना कुछ टिप्स ऐसी मिलेंगी शायद कि हम बेटर फंड मैनेज कर सकें अपने खुद के, अपने परिवार के। एंड दिस शुड बी अ हैबिट, मोर मोर ऑफ अ हैबिट टू मैनेज, टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज आवर नीड्स, बिकॉज आजकल काफी इम्पल्स परचेजेस बहुत ज्यादा हो रही हैं, स्पेशली यूथ यूथ को लेके ये कंसर्न है, काफी पेरेंट्स का, जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनका भी ये कंसर्न रहता है, हमारा खुद का ये कंसर्न रहता है कि आगे जो बच्चे हैं वो बहुत मनी की जो रियल वैल्यू है उसको समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, उस पर काफी डिबेट चलता है। तो दिस इज अ बिहेवियर चेंज वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट मनी फॉर अस, फॉर एज ए इंडिविजुअल। थैंक यू मैम, मैं बहुत बोल चुकी हूँ, अभी कोई और बोलना चाह रहा है? एनीबडी वॉन्ट्स टू एड प्लीज डू दैट।
3: गुड आफ्टरनून मैम।
1: गुड आफ्टरनून अर्चना जी।
6: जी मैम, अभी आपने बात करी, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे सेंटर पे मेकअप आर्टिस्ट की ट्रेनिंग हुई थी, तो उसमें से 3 बच्चे बहुत ही अच्छी तरह, उसमें उनको पहले से भी आता था कुछ, और फिर उन्होंने ट्रेनिंग ली तो उनको बहुत अच्छे से आ गया। तो अभी तो जो बात हुई कि घर में हम किस तरह से मैनेज करते हैं, सबका अपना अपना नीड है, बेसिक नीड के अलावा भी बहुत सारे नीड होते हैं, फिर बहुत सारे वे हैं जहाँ पे वो सेविंग कर सकते हैं, करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत अच्छा है लगा, और ये सुन के कि हमारे पास नए आइडियाज भी आए। और मैम, वो आपने अभी बात करी थी, तो हम मेट्रो सिटी का तो नहीं पता, लेकिन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें मैं उनकी बात बता रही हूँ, फिर मैं अपनी बेनिफिशरीज की बात बताऊंगी कि उन्होंने क्या किया है। तो मैम, मेरी सोसाइटी में मैंने अपने भी बात जो की हुई थी उससे ही है कि पहले के जो हमारे जो पहले के जनरेशन के थे, पिछले जनरेशन के, वो अपनी सारी नीड को किल करके, मतलब जो जो बहुत जरूरी है सर्वाइव करना, खाना पीना ये सब, यहाँ तक कि मैंने देखा वो कपड़े भी नहीं पहनते थे, अपने सारे नीड को किल करके और पैसे जमा करते थे।
0: बिल्कुल
6: फिर जो हमारा जनरेशन है, उन्होंने देखा क्या, अरे वो तो सारे कुछ भी नहीं करते थे और फिर ऐसे ही चले गए दुनिया से। नहीं, हम लोग को ना अपना भी करना चाहिए और सेविंग भी करना चाहिए, यानी हम खाएंगे पियेंगे अच्छे से रहेंगे और थोड़ा सा सेविंग भी करेंगे।
0: बिल्कुल
6: तो हमें लगता है अभी का जो जनरेशन है, ये दोनों चीज और इंजॉय भी कर रहे हैं ठीक ठाक। मैं मैम मिडिल क्लास, और मतलब मैं जो कम्युनिटी में रहती हूँ उसकी बात कर रही हूँ, और दूसरे जगह मुझे उतना नहीं पता, लेकिन कहीं कहीं से मैथ्स तो करता ही होगा, तो उसने करी। अब जो हमारा अगला जनरेशन आने वाला है, उनको तो मनी वैल्यू पता ही नहीं है, वो जो भी अर्न करेंगे वो सारा का सारा खर्च करेंगे जैसे दिख रहा है। तो मैम, हमें मुझे लगता है कि हम अपने बच्चों को और जो भी हमारे आसपास जुड़े हैं उनको ये सिखाना चाहिए कि वैल्यू क्या होती है, मनी वैल्यू। इसके लिए तो हमको घर से लेकर के और जहां भी हम काम करते हैं वहां तो दिखाना पड़ेगा ना कि मैम, मतलब ऐसे ही हम कहीं भी किसी भी चीज के लिए एक बार मन किया खरीद लिए, तो हमको जो खुद
0: बिल्कुल
6: वैल्यू नहीं है तो वो बच्चे क्या सीखेंगे। वो तो मेरी मेरी सिंगल चाइल्ड है, तो वो तो यही समझेंगी ना, मम्मी को जब जरूरत होता है तब खरीद लेती है, तो मेरे भी पास ही आ जाएगा, क्योंकि पैसा इसके पास है तभी तो आ रहा है। जब हम अपने
0: बिल्कुल
6: ऊपर नहीं कमांड करेंगे तो बच्चे तो यही सीखेंगे कि अच्छा, मम्मी ने 20,000 का फोन लिया, ठीक है मैं भी जब कभी बोलूंगी मुझे तो 10,000 का आ जाएगा। तो मैं बच्चों के लिए भी ये करती हूँ कि मैं अपने मेरी सिंगल चार्ज है, फिर भी देर करती हूँ थोड़ा सा कि देखो अच्छा ठीक है आ रहा है, आ जाएगा 1-2 महीने में आ जाएगा या 15 दिन में, बहुत ज्यादा नीड है, एजुकेशन से जुड़ी है तो कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ इंजॉय करने की चीज है तो आ जाएगा। तो ये हुई, तो मैम सबके अपने अपने वो नीड है और अपने अपने तरीके हैं, तो सब करते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि मैं करती हूँ वो करते हैं एक ही पर्टिकुलर, सभी आजकल करते हैं सेविंग, जो अपना स्टेज वो पार कर चुके हैं 25 वाला, क्योंकि 25 तक तो सब। हाँ हाँ जी मैम, तो मैंने बेनिफिशरीज को मैम देखा, वो मैं कर रही हूँ, और मैं सभी से, आपसे भी मैम गुजारिश करती हूँ कि यदि कोई बहुत अच्छा टिप हो तो वो आप जरूर शेयर कीजिएगा। तो बेनिफिशरीज ने तो हमारे यहाँ क्या हुआ, मैंने वो एसटीएस पे शेयर किया हुआ था, जो हम 4 जन, जिसमें से 3 बच्चे बेनिफिशरीज और एक मैं हूँ, 4 का ग्रुप बनाई और फिर हमने प्लान किया और हमने अपना पार्लर खोल लिया।
0: अरे वाह,
6: हाँ हाँ मैम, तो पार्लर में खोल लिया। अब इसका ये आया कि भाई सेटअप तो मेरे पास पहले से, जो सेंटर का ये दिया हुआ है, तो सेटअप सारा मेरे पास पहले से था, उसमें कुछ प्रोडक्ट लाने थे और जैसे बोर्ड बनाना, कुछ बेसिक जो होता है थ्रेडिंग वगैरह के लिए, फेशियल के लिए, वो सारे प्रोडक्ट लाने थे, और फिर थोड़ा सा वो एडवर्टाइज के लिए कुछ पैसे खर्च करने थे। तो हम लोगों ने प्लान किया कि घर से यदि लाओगी तो बेनिफिशरीज के तो गार्जियन पूछेंगे कि भाई तुम क्या कर रही हो, ये वो सब कुछ तो है, हमारे यहाँ रूम है, इलेक्ट्रिसिटी है और बच्चे भी आ रहे हैं। तो हम लोग ये काम करते हैं, कुछ पैसे हम लोग अपने में जितना भी सेविंग है 500 या 1,000, उसमें मैं भी पार्टिसिपेट की हूँ मैम, तो हम लोग ले आते हैं। इसके बाद हमारा जो पैसा आएगा, तो उसमें से एक बेनिफिशियरी जो ग्रेजुएट है वो बोली कि हमारे पास जो कमाई के कुछ पैसे आएंगे, जैसे कि अभी दिवाली छठ चल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो आएंगे ही हमारे पार्लर में, क्योंकि अभी उतना ज्यादा मैम प्रचार नहीं हुआ है, बहुत कम लोगों तक पहुंचा है कि पार्लर खुल गया है। तो उस पैसे से हम और प्रोडक्ट जो भी मतलब जरूरी है थोड़ा बड़ा करेंगे उसको, फिर हम पैसे शुरू करेंगे अपने पास रखना। तो मुझे आइडिया ये अच्छा लगा मैम, और इस छठ में मुझे लगता है उन लोगों ने 500 कुछ अर्न किया है, और उससे वो सामान ही लाई है, कभी फेशियल का कुछ, तो मैनिक्योर का, पेडिक्योर का कुछ प्रोडक्ट्स सभी। तो मुझे लगा कि वो ग्रेजुएट बच्ची है, गांव की है, लेकिन फिर भी इतना मतलब कि सोच रही है, तो मुझे अच्छा लगा कि आजकल के बच्चे भी थोड़ा सा ये ध्यान दे रहे हैं कि मुझे अभी उसमें से खर्च नहीं करना है, अभी मुझे अपना वो पार्लर सेट करना है।
1: वेरी नाइस अर्चना जी, थैंक यू सो मच. एग्जैक्टली जो मैंने कोशिश कर रही थी, मुझे लगा कि मैं जो बोल रही हूँ शायद मैं सही से नहीं समझा पा रही, लेकिन आपकी इनपुट से मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया कि यही बात हम लोग करना चाह रहे हैं कि जनरेशन दर जनरेशन एक तो नीड्स और वांट्स बदलती जा रही हैं, और जब हम खुद पे नहीं कंट्रोल कर पाते हैं कभी कभी खर्चा करने के लिए, तो हम अपने बच्चों को कैसे बोल सकते हैं, या अपने जो हम जो जो हमें अपना एज ए मॉडल देखते हैं, या जो हमें सोचते हैं कि ठीक है अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी फिर ऐसा ही करना है, चाहे वो बेनिफिशरीज हो गए, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे आप सेंटर में अगर एक लीडर के आप सभी लीडर हैं अपने अपने सेंटर्स के, तो चाहे आप सेंटर पे एज ए लीडर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं. सो वेरी ब्यूटिफुली शेयर्ड एग्जाम्पल की किस तरीके से हम एक तो खुद को एज ए रिप्रेजेंटेटिव मान के हम खुद से अपनी मनी मनी मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से करें, और दूसरा जो आपने एग्जाम्पल दिया कि छोटे से ग्रुप ने कैसे एक फंड क्रिएट किया आपस में मिलके और एक छोटा सेंटर शुरू किया, लेकिन आइडिया है कि उसको धीरे धीरे करके उसी फंड से कैसे हम बड़ा करेंगे. दैट इज अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ यू नो बजट मैनेजमेंट. घर का भी आपने बता दिया और अपने एंटरप्राइज का भी बता दिया. थैंक यू अर्चना जी.
6: थैंक यू मैम, थैंक यू. और मैम प्लीज सजेस्ट कीजिएगा आप इसमें कि बच्चे कर रहे हैं इससे भी कोई अच्छा होगा कि हम कैसे उसको आगे ले जा सकते हैं, तो मैम इसके लिए बहुत ये रहेगा.
1: ठीक है जी, ठीक है, विल टॉक सेपरेटली फॉर दैट.
6: थैंक यू मैम.
1: थैंक यू. ओके, सो आई होप दिस सेशन वॉज अ लिटिल हेल्पफुल टू समबडी. हो सकता है शायद किसी ने कुछ सीख के इससे कुछ अपने आज से या पहले से कर रहे हो तो उसको रीइंस्टेट करें और उसको अपने बिहेवियर में लेके आए. एंड आई होप यू शेयर दिस सेशन विद योर बेनिफिशरीज, स्पेशली टू द यूथ, क्योंकि जैसे अर्चना जी ने कहा जो 25 साल से ऊपर है उनको तो कहीं ना कहीं हैबिट लग गई है, लेकिन ये हैबिट हमें शुरू से ही अपने, मैं सेविंग्स की बात नहीं कर रही, मैं आइडेंटिफिकेशन और उसमें फर्क की बात कर रही हूँ कि हमारी जरूरतें क्या हैं और हमारी इच्छाएं क्या हैं. इन दोनों चीजों में, जरूरतों में और इच्छाओं में फर्क करना बहुत जरूरी है, और अपने लेवल को पहचानते हुए, लेवल एज इन अपने सिचुएशन को एज ए स्टूडेंट, अपने सिचुएशन एज अ होम मेकर या एज अ एंटरप्रेन्योर या फार्मिंग को लेके जो हमारी जरूरत है उसको पहचानते हुए अपने बजट्स को कैसे मैनेज करना है, इसके ऊपर हमने आज बात करी है. सो थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इट एट शॉर्ट नोटिस. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई होप दिस इज हेल्पफुल. बाय बाय. थैंक यू.
6: वेरी हेल्पफुल मैम, थैंक यू सो मच.
7: थैंक यू मैम.
3: थैंक यू मैम.
1: थैंक यू.

जन्मे नायक जदुनाथ सिंह 1941 में भारतीय सेना की राजपूत रेजिमेंट में भर्ती हुए। जनवरी 1948 में कबायली आक्रमण के समय इन्होंने नौशेरा इलाके में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया। लड़ते लड़ते इनकी टुकड़ी के सिपाही कम होते गए, पर हौसले बुलंद थे। फिर एक वक्त ऐसा आया जब जदुनाथ सिंह ने अकेले ही स्टेन गन लेकर मोर्चा संभाला और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ मिलकर इन्होंने भारत की जीत सुनिश्चित तो की, पर अपनी शहादत देकर। मरणोपरांत नायक जदुनाथ सिंह को सेना के सबसे बड़े सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया।

भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी का करो या मरो आह्वान और देश भर से अनगिनत आजादी के मतवाले बलिदान की राह पर चल पड़े। उन्हीं में से एक वीरांगना थी कनकलता बरुआ। असम के गोहपुर में जन्मी कनकलता के मन में क्रांति का अंकुर महज 7 वर्ष की उम्र में ही फूट चुका था, जब कनकलता ने पास के गांव में हुई एक क्रांतिकारी सभा में हिस्सा लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तेजपुर में मृत्यु वाहिनी दल के गठन के दौरान कनकलता दल की सक्रिय सदस्य बन गईं। आंदोलन के समर्थन के लिए मृत्यु वाहिनी ने गोहपुर पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निर्णय लिया और 20 सितंबर 1942 को हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लिए कनकलता जुलूस के साथ आगे बढ़ने लगी। पुलिस की चेतावनी से बेपरवाह निर्भीक कनकलता के नेतृत्व में जुलूस आगे बढ़ता रहा। जुलूस को रोकने के लिए पुलिस ने गोली चला दी। गोली लगते ही कनकलता गिर पड़ी और आखिरकार हाथ में तिरंगा और दिल में आजाद राष्ट्र का सपना लिए ये महान स्वाधीनता सेनानी हमेशा के लिए पंचतत्व में लीन हो गई।

0: Nangi Karibialo, catching honey paddy deal. Little sing sound not toy, ding long long.
1: पर्वतों की गान कोकिला श्रीमती कोकिला लेक देवी पद्मश्री 2026 कार्बी अंगलोंग असम का एक सुंदर गांव जहां रहता है कार्बी समुदाय और कोकिला लेक देवी। घुमंतू कलाकारों के परिवार में जन्मी कोकिला को कार्बी संगीत न सिर्फ विरासत में मिला बल्कि उन्होंने उसे जिया। बचपन से ही उनकी असाधारण प्रतिभा झलकने लगी थी। संगीत के इस स्वरूप से गहरे जुड़ाव ने उन्हें महसूस कराया कि ये विरासत संकट में है। कार्बी संगीत केवल बुजुर्गों तक सीमित था।
2: उन दिनों कार्बी गीत तो थे पर लोगों को उन्हें पेश करने का ज्यादा मौका नहीं मिलता था।
1: बाधाएं अनेक थी, लगातार निर्धनता की छाया थी और परंपरा ने महिलाओं को सार्वजनिक मंचों से दूर रखा। वर्षों तक कोकिला पृष्ठभूमि में रही, लुप्त होती कला की मौन प्रहरी बनकर, किंतु उनकी आवाज एक दायरे में नहीं बंध सकती थी। बंधन तोड़कर उन्होंने चर्च में अपना मंच पाया, समविचारी लोगों को साथ लिया और महिलाओं को साहस देकर अपने साथ जोड़ा। वे दुर्गम इलाकों में घूमी, बुजुर्गों से मिलकर लुप्त होती कला का दस्तावेजीकरण किया।
2: आप गीत के बोल लिखिए, उन्हें धुन में डालिए, हम हर संभव मदद करते थे और अपने सांगरी म्यूजिक सोसाइटी के माध्यम से हमने इन गीतों को पेश किया।
1: स्थानीय आकाशवाणी केंद्र के प्रसारणों से लेकर अपने पहले कैसेट कांदोन के साहस भरे निर्माण तक उन्होंने

0: कार्बी आत्मा को राष्ट्रीय ताने बाने में पिरोना शुरू किया। महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब जुबिन गर्ग के साथ उन्होंने अपनी कला प्रदर्शित की। आधुनिक ऊर्जा के साथ प्राचीन मंत्रों को पेश करके नई पीढ़ी को आकर्षित किया। 50 वर्ष, 300 गीत, उन्होंने कार्बी संगीत को पहाड़ियों से निकालकर लोगों के हृदय तक पहुंचाया। आज पोकिला कार्बी संगीत की कुल माता है, लेखक, मार्गदर्शक और प्रस्तुति द्वारा अतीत सहेज कर सुनिश्चित कर रही है कि कार्बी आंगलोंग की महिलाएं अपना भविष्य स्वयं स्वरबद्ध करें।
1: मुझे आशा है कि हमारा कार्बी आंगलोंग और प्रगति करेगा। कार्बी आंगलोंग की महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे बढ़े, यही मेरा सपना है।
0: श्रीमती पोकिला लेखदीपी, पद्मश्री 2026, कोटि कोटि नमन।
2: सुर्खियों में
3: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के कार्यान्वयन से ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
4: विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीवी जी रामजी अधिनियम 2025 1 जुलाई 2026 यानी आज से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हो रहा है। ये अधिनियम ग्रामीण रोजगार, आजीविका सुरक्षा और गांव के सतत विकास को नई मजबूती देगा। पुराने मनरेगा से किस तरह यह अलग है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी और 2047 के विकसित भारत के लिए क्या इसकी भूमिका होने वाली है, इन्हीं सब विषयों पर आज हम सुर्खियों में कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
5: नमस्कार मनोज जी, धन्यवाद।
4: सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि आज से जो एक नया अधिनियम अस्तित्व में आ रहा है वह किस रूप में पुराने का स्थान लेगा और नया बदलाव कहां कहां किस स्तर पर दिखेगा।
5: सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं उसके हिसाब से जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी उसमें बदलाव की जरूरत थी। वो योजना 2006 में लागू की गई थी और आज हम लोग 2026 में हैं
4: जी,
5: तो लगभग 19-20 साल का समय बीत चुका है और इन दो दशकों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में काफी कुछ बदलाव हुआ है। आमतौर पर मनरेगा को रोजगार मुहैया कराने की एक योजना बताई गई, लेकिन क्या रोजगार मुहैया कराना ही काफी है या हमें उससे आगे भी बढ़ना है। आप ये ध्यान में रखिए कि जब आप कहते हैं कि 1,00,000 रूपये, 95,000 करोड़ रूपये, 80,000 करोड़ रूपये आप किसी योजना के तहत खर्च करते हैं, तो क्या केवल ये आप सुनिश्चित करें कि 100 दिन के लिए किसी परिवार में किसी व्यक्ति को रोजगार मिल जाए, या फिर जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं उसका किस तरीके से आउटपुट आता है, यानी कि उसका असर किस तरीके से दिखता है। तो ये जो नई योजना वीवी जी रामजी है इसका मूल मकसद यह है कि रोजगार के साथ साथ लंबे समय के लिए जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बुनियादी जरूरतें हैं उसको पूरी की जाए। अब अगर मैं इसमें कहूं कि जो प्रमुख बदलाव हैं, तो पांच अगर मैं प्रमुख बदलाव की बात करूं तो सबसे पहला जो बड़ा बदलाव यह है कि जो गारंटी थी वो पहले 100 दिन की थी, अब वो 125 दिनों की है
4: जी।
5: दूसरा क्या है कि ग्रामीण स्तर की योजना, जैसे एक गांव की जरूरत क्या है, अभी के देश में 6,00,000-7,00,000 जितने भी गांव हैं हमारे, हर गांव की अपनी एक भौगोलिक परिस्थिति है, उन भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से वहां पर बुनियादी सुविधाएं किस तरीके से विकसित की जानी है, उसकी मैपिंग कैसे की जाए, वो मैपिंग करने के बाद उस आधार पर उनके लिए जिसे कहा जाए कि ग्राम विशेष के लिए क्या कुछ संभव हो सकता है, ये इसका दूसरा मकसद है। तीसरे की बात करूं तो तकनीक इसमें बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसे अगर आप तीन चीजों पर ध्यान रखिए कि एक है कि सैटेलाइट के जरिए एक गांव की एक छवि आपके सामने आ गई, उस छवि के जरिए ये पता चल गया कि इस गांव की बुनियादी जरूरतें क्या हैं, इसमें क्या कुछ कमी है और इसमें और जो है उसमें किस तरीके से सुधार की जरूरत है। मसलन आप सड़क देख लीजिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, आपने सड़क बनवा दी, क्या सड़क बनने के बाद उसमें और ज्यादा बदलाव की जरूरत है, उसमें रखरखाव में किस तरीके से सुधार की जरूरत है, वहां पर कितने हमें रोजगार मुहैया कराने की जरूरत होगी, उन सड़क बनने से आसपास के इलाकों में किस तरीके से बदलाव हुआ, ये सारी चीजें आपके पास एक सैटेलाइट इमेज के जरिए जो है आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा उसी तरफ आप देखें कि जीआईएस मैपिंग में भी वही चीज होता है कि आपको पता चल जाएगा कि उस क्षेत्र विशेष में क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है। तो ये जो तकनीक के जरिए है, तकनीक के जरिए आप ग्राम विशेष की जरूरतों को पूरा करने में आप कामयाब हो पाएंगे, ये तीसरा बड़ा बदलाव है। मैं दो और बदलाव की बात कर दूं उसके बाद आपसे अगला प्रश्न लेता हूं। दूसरा यह है कि जो हमारी परिसंपत्ति बने, जो असेट क्रिएशन हो, वो एक लंबे समय के लिए हो। ऐसा ना हो कि आपने एक जैसे एक घर बना दिया और आपने गांव खत्म कर लिया, बल्कि एक सड़क बने, वहां पर बांध बने, वहां पर जो है जो कुछ भी सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं विकसित की गई, उसका और ज्यादा विस्तार हो, तो जिसको हम लोग कहते हैं कि ड्यूरेबल असेट का, स्थायी जो परिसंपत्ति है उसका निर्माण हो। और पांचवी जो बात है कि बहुत सारी योजनाएं हैं ग्रामीण स्तर पर, हम देखते हैं कि वो अलग अलग टुकड़ों में चलाई जाती हैं। उसका असर क्या होता है कि आपने सड़क बनाने के लिए एक योजना बनाई, ग्राम उद्योग के लिए आपने एक अलग योजना बनाई, तो दोनों के बीच में कोई समन्वय है कि नहीं, कि जहां पर ग्राम उद्योग विकसित हो रहा है वहां पर सड़क का पूरी तरह से निर्माण हुआ है कि नहीं। तो ये जो कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स इसको कहते हैं कि यानी कि सभी योजनाएं एक दूसरे के साथ हाथ मिला करके काम करें, ये पांच खास बातें हैं जो वीवीजी राम जी को एक नए स्वरूप देती है और जो कि आज से लागू हो।
2: यहाँ पर आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि तकनीक के माध्यम से केंद्रित होकर काम बेहतर तरीके से होगा। यहाँ पर अहम सवाल ये है कि तकनीक के माध्यम से नियंत्रण ऊपर से नीचे की ओर होगा या गांवों की जो आवश्यकता है उन्हें ध्यान में रखकर ग्राम पंचायत या जो स्थानीय अधिकारी या स्थानीय जो हमारे लोक निकाय हैं उनके माध्यम से वो काम चयनित होंगे।
5: इसके लिए आप अगर 2015 में जब नीति आयोग का गठन किया गया था उसके गठन के समय में एक बड़ी खास बात कही गई थी। उसके गठन में कहा गया था कि हम जो योजनाएं बनाते हैं दिल्ली से बनाते हैं और गांव पे जाकर के थोप देते हैं, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच, उसकी जगह पे हमको बॉटम अप अप्रोच करना है, यानी कि निचले स्तर का जो ग्राम पंचायत की व्यवस्था है या जो स्थानीय अधिकारी हैं वो बताएं कि हमारी जरूरत क्या है। अब यहां पर आपके पास तकनीक मददगार है, आपने सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए आपने पता करने की कोशिश की, आपने जियो स्पेशल के जरिए पता करने की कोशिश की। एक और महत्वपूर्ण बात लैंड रिकॉर्ड, आप जैसे आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपको सड़क बनानी है, आपको जमीन की जरूरत है, अब वो जमीन का खसरा और वो सब जो हम लोग ग्रामीण परिवेश में जिसका काफी महत्व होता है वो हमारे पास किस तरीके से उपलब्ध है। तो आज भी अगर हम कहें कि अगर वो केवल कागजों में है और उसका पूरा रजिस्टर है तो दिल्ली में बैठे हुए किसी व्यक्ति के लिए एक योजना बनाना हो तो उस रिकॉर्ड के जरिए संभव नहीं हो पाएगा। तो वहां पर आपके पास एक तकनीक के जरिए जो आपका डिजिटाइज रिकॉर्ड है वो मदद करेगा। तो ये जो पूरी व्यवस्था है आप इसमें ये समझ लीजिए कि जो निचले स्तर पे जो कुछ भी काम चल रहा है, जो अधिकारी हैं, जो निकाय हैं, स्थानीय निकाय हैं, उनका इनपुट्स भी है और उस इनपुट को तकनीक के साथ जोड़ करके आप एक विस्तृत जिसको कहते हैं ना डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप तैयार करते हैं और फिर उस गांव के लिए जो है वो गांव के समूह के लिए जो है वो आप कुछ काम करते हैं।
2: यहां पर आपने पहले ही जानकारी दी कि 100 दिन से बढ़ के 125 दिन हो गया, इससे जो मजदूर हैं या गांव में रहने वाले जो लोग हैं जो इस काम के लिए सामान्यतः अपने आप को उपलब्ध कराते हैं उनकी माली हालत में क्या बदलाव आएगा?
5: दो तीन चीजें हैं। एक तो आप अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि मिनिमम वेज न्यूनतम जो मजदूरी है जिसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी की गई है उसके मुताबिक मनरेगा में जो मिनिमम वेज था न्यूनतम मजदूरी थी वो 298.80 रूपये थी, अब वो 327.40 रूपये है। अब ये जो बढ़ोतरी आप देख रहे हैं लगभग 25-30 रुपए का और राज्य वर अगर स्तर पे आप देखें तो जैसे मैं कुछ राज्यों का एक जिक्र करूंगा आपके सामने तो जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो न्यूनतम मजदूरी है वो लगभग 380 रुपए का 379 रुपए है अगर बिल्कुल मैं सटीक आंकड़े लेकर के चलूं। बिहार की बात करूं तो 300 रुपए का है, फिर पंजाब की बात करूं तो वहां 300 रुपए का है, तेलंगाना की बात करूं तो 305 रुपए का है, कर्नाटका की बात करूं तो 382 रुपए का है, तमिलनाडु में 345 रुपए है, आंध्र प्रदेश में 375 है। तो आप अगर उच्चतम दर देखेंगे मजदूरी की तो वो 450 रुपए का बनता है और न्यूनतम जो है वो 300 रुपए का बनता है और औसत जैसा मैंने आपको बताया 327 रुपए के करीब में बनता है। तो जब मजदूरी बढ़ती है उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उसका असर देखने को मिलता है। क्योंकि आज के दिन में अगर हमारी 65% आबादी, दो तिहाई आबादी गांव में रहती है, 50% के करीब श्रम शक्ति गांव में रहती है, अगर इनके पास, इनके हाथ में अतिरिक्त संसाधन आते हैं तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। और
2: कई बार होता है कि योजनाएं नहीं है ये कहकर उन्हें काम नहीं दिया जाता और कागज पर वो दिखता रहता है कि काम चल रहा है, उससे निपटने के लिए यानी जो एक बैठा हुआ वहां उपलब्ध मजदूर है उसे काम नहीं मिल रहा, दिन उसके बढ़ गए लेकिन उसे अंततः भुगतान मिला या नहीं मिला वो समझ नहीं पाया, वहां चेक एंड बैलेंस किस रूप में हो।
5: यहीं पे तकनीकी बहुत बड़ी भूमिका है कि आप कहते हो कि हमें सड़क की जरूरत यहां पे है कि नहीं, हमारे लिए यहां पे विद्यालय के भवन बनाने की जरूरत है कि नहीं। अब आपने कहा कि यहां पे जरूरत नहीं है, फिर भी वहां पर जो निर्माण कार्य के एवज में पैसे का भुगतान किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो गलत होता है और उसमें आपके संसाधनों का दुरुपयोग होता है। अब यहां पर तकनीक के जरिए, जियोस्पेटिकल के जरिए और आपके सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए आपको पता है कि इस इलाके में इस तरह के काम की जरूरत है। आपका डुप्लीकेशन जो है, दोहरावपन जो होता था कि एक ही काम को आप बार बार करें, जब भवन बन गया तो आप दोबारा भवन नहीं बनाएंगे ना, आप किसी दूसरी जगह पे बनाएंगे। तो चेक एंड बैलेंस करने में आज के दिन में आपकी सबसे बड़ी भूमिका आपकी तकनीक की है और जहां पर आपके उपग्रह मौजूद हैं जो कि बिल्कुल छोटे से छोटे तस्वीर भी जो है वो आपके सामने रख सकते हैं तो वो काफी मददगार होगा। दूसरा, जो पैसे का भुगतान है, जो मजदूरी का भुगतान है, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए होता है। तो डीबीटी के जरिए ट्रांसफर होने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो लाभार्थी है उसी के खाते में वो पैसा जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई उसके बाद से लेकर के 2014 से लेकर के आज हम 2026 में 53-54 करोड़ जो हमारे खाते बन चुके हैं, खाते खुल चुके हैं, अब उन खातों में इस पैसे का भुगतान होगा। तो यानी कि जो बिचौलिया होता था वो उसकी स्थिति नहीं रहेगी और लाभार्थी को मिलेगा। तो एक तरफ आपने ये सुनिश्चित किया कि वाकई में वहां पर निर्माण कार्य की जरूरत है, वाकई में वहां पर काम की जरूरत है, उसी हिसाब से आपने मजदूरी दी। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप किसी एक जगह पर बैठे और आपने कहा नहीं जी यहां पर हमें 100 लोगों की जरूरत है, लेकिन तकनीक हमें यह बता रहा है कि नहीं यहां पर तो 50 आदमी से काम हो सकता है क्योंकि उतना बड़ा दायरा नहीं है। तो आपके लिए एक चेक एंड बैलेंस हो गया। दूसरा ये हो गया कि काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कितने समय में पूरा हुआ, उसके ऊपर आप नजर रखेंगे। तीसरा ये हुआ कि जो काम हो गया है दोबारा क्या उसी की बात, क्या कोई वही प्रस्ताव तो नहीं आया, तो वो भी आपके लिए जानना संभव होगा। और चौथी बात है कि पैसा उसी को मिले जिसने काम किया है, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए वो संभव होगा, जो जैम ट्रिनिटी हम लोग कहते हैं, जनधन आधार और मोबाइल के जरिए। तो ये मेरे हिसाब से कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जो कि इस योजना को और बेहतर बनाएंगे।
2: यहां पर एक और महत्वपूर्ण सवाल उभर के आता है कि जो मजदूर हैं, पुराना उनका कार्ड बना हुआ है, अब नई व्यवस्था में नया कार्ड उनका बनेगा, तो ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है उसमें उनके लिए क्या प्रावधान है?
5: मुझे लगता है कि अब के समय में उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपने पुराने कार्ड को देखें, पुराने कार्ड में कई बार ये भी बात आती थी कि एक ही जगह पर दोहराव की स्थिति हो गई, केवाईसी वो नहीं होता था। अब केवाईसी के लिए आपके पास आधार एक बड़ा माध्यम है, आधार के जरिए आप उसकी पहचान भी कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला है नए कार्ड को बनने में या नई व्यवस्था को पूरी तरह से अमल करने में। और देखिए, ये कानून तो पिछले वर्ष पारित हुआ था, अब जाकर के उसको अमल किया गया है, तो इतना विश्वास किया जा सकता है कि ये जो बीच का समय था, इस बीच के समय में वो बुनियादी व्यवस्था बेहतर की गई है। और एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में अगर बीवीजी राम जी के लिए लगभग 95,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, तो मनरेगा के लिए भी 30,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था, ताकि जो पुराने कोई भी मामले हैं वहां पर भुगतान में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर जिसने उस पर काम किया है या जो अभी तक काम कर रहे हैं या जहां पर अभी इसको लागू पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है, उसके लिए भी एक, जिसको कहते हैं ना, ट्रांजिशनरी अरेंजमेंट जो है, जो परिवर्तन की जो बात है, वो उपलब्ध है। और मुझे उम्मीद है कि शायद वो इसको लागू करने में उसको दिक्कत नहीं होगी।
2: कुल मिलाकर यदि हम एक दो पंक्ति में समझना चाहें कि यह बदलाव किस रूप में नए भारत के निर्माण में सहायक होगा, उसे कम से कम शब्दों में किस तरह हम व्याख्यायित कर सकते हैं?
5: ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बदलते स्वरूप के हिसाब से नई योजना का खाका है, और मुझे लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए समय के हिसाब से। अगर आप बदलाव नहीं करते हैं तो आप काफी पीछे रह जाते हैं।
2: हम पीछे न रहें और प्रगति के पथ पर लगातार बढ़ते रहें, इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और आप सभी श्रोताओं की ओर से शिशिर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
5: जी धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन से ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नम्बर है 9289094044।
6: सुर्खियों में
7: वो खिलाड़ी जिसने जानवरों की भलाई की राह चुनी, डॉक्टर पुण्यमूर्ति नटेशन, पद्मश्री 2026। तंजावुर जिले के एक सुंदर गांव बल्लम में 1960 के दशक में एक युवा लड़का किसान परिवार में पला बढ़ा। उसे खेल बहुत पसंद थे। उसका सपना एथलेटिक्स और हॉकी का स्टार खिलाड़ी बनना था। वो अपने परिवार में कॉलेज जाने वाले पहले व्यक्ति थे। वो अपने दादा के बहुत प्रिय थे।
8: कॉलेज की पढ़ाई के लिए जब मैं अपने दादाजी के पास आशीर्वाद लेने गया तो उन्होंने कहा, कुछ ऐसा सीखो जो किसानों के काम आए। वह मेरी जिंदगी का निर्णायक मोड़ था। तब मैं सिर्फ BSc एग्रीकल्चर के बारे में जानता था। मुझे वेटनरी साइंस की जानकारी नहीं थी। मेरे दोस्त और सहपाठी वीर पांडियन ने मुझे वेटनरी साइंस से परिचित कराया।
7: युवा पुण्यमूर्ति 70 के दशक के मध्य में मद्रास वेटनरी कॉलेज पहुँचे। वो न केवल पढ़ाई में होशियार थे बल्कि वो लगातार 2 साल तक कॉलेज एथलेटिक्स चैंपियन भी रहे। कुछ वर्षों बाद वे इरोड के कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हुए। वहीं एक घटना ने उनकी सोच को नई दिशा दी।
8: मैं इरोड में एक युगल द्वारा चलाए जा रहे पोल्ट्री फार्म पर गया। मुर्गियां स्वस्थ दिख रही थी, अच्छा खा रही थी, फिर भी अंडे नहीं दे पा रही थी। रिकॉर्ड से पता चला कि उन्हें कॉक्सिडियोसिस यानी परजीवी रोग के लिए सल्फानामाइड दवा 10 हफ्ते तक दी गई थी। इसका दीर्घकालीन असर उनके प्रजनन पर पड़ा और वे अंडे नहीं दे पाए। अगर हमें भविष्य के लिए एंटीबायोटिक्स बचानी है तो उनका समझदारी से उपयोग करना चाहिए या फिर उनके विकल्प खोजने होंगे। मुझे ये एहसास हुआ।
7: पौधों के औषधीय गुणों की मदद से डॉक्टर पुण्यमूर्ति ने पशु रोगों के उपचार और रोकथाम में औषधीय पौधों का उपयोग किया। इस प्रकार उन्होंने एथनो वेटरिनरी को विकसित और प्रमाणित किया, प्राकृतिक तत्वों पर आधारित पशु चिकित्सा पद्धति।
8: पशुपालकों के लिए मास्टाइटिस एक गंभीर बीमारी है। इसके उपचार के लिए 1 चम्मच एलोवेरा, 2 मुट्ठी हल्दी और थोड़ा सा चूना मिलाकर दवाओं के बिना सफल उपचार किया जा सकता है। ये पारंपरिक सिद्ध आधारित इलाज के असर को दिखाता है।
7: उनके इलाज से लाखों गायों और किसानों को फायदा हुआ। उन्होंने जानवरों की 34 बीमारियों के लिए 5 आसान इलाज विकसित किए।
8: एक जिम्मेदार पशु चिकित्सक के रूप में जितना जरूरी स्वस्थ दूध, अंडे और मांस मुहैया कराना है, उतना ही जरूरी गायों का स्वस्थ गोबर और मूत्र भी है, ताकि मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहे। भविष्य के लिए एंटीबायोटिक्स को बचाए रखना भी जरूरी है, जो हम एथनोवेटनरी चिकित्सा के जरिए कर रहे हैं।
7: डॉक्टर पुण्यमूर्ति की सभी खोजें सबके लिए निशुल्क है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने उनके काम को लाखों किसान तक पहुँचाया, जिससे उन्हें बहुत फायदा मिला।
8: मैं दिल से खिलाड़ी हूँ, इसलिए अपने काम से पूरा प्यार करता हूँ।
7: डॉक्टर पुण्यमूर्ति नटेशन, पद्मश्री 2026।

0: सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, परीक्षा संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के ठोस कदमों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज पाठक और आज इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। ध्यान देने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट कहा कि इन परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं और आने वाले दिनों में इसे अमली ढांचा पहनाने के लिए विधि सम्मत उपाय भी किए जाएंगे। यानी संभव है आने वाले दिनों में हम एक नया कानून इसकी शुचिता बनाए रखने के लिए अस्तित्व में आता हुआ दिखें। इस विषय पर चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में राजनीतिक मामलों की वरिष्ठ विश्लेषक अदिति टंडन जी को। अदिति जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि जो राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाएं हुआ करती हैं उसमें कई में हमने देखा कि कुछ लापरवाहियां रही या उचित कदमों में कहीं तालमेल का अभाव दिखा और प्रश्न पत्र लीक हो गए, इसका अंजाम अच्छा नहीं निकला और अंततः सरकार ने कड़े कदम उठाने के आश्वासन दिए हैं। किन रूप में देख रही इन्हें?
3: देखिए, जैसा कि आपने कहा खुद ही अपने रिमार्क्स में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस हैं और इवन राज्य के स्तर पर जो एग्जामिनेशंस हैं, ऐसा नहीं है कि वो आज के लीक हो रहे हैं। सिस्टम में लीकेज ऑफ एग्जामिनेशन पेपर्स होते रहे हैं, बहुत सारे हुए हैं, हर स्तर पर, राज्य के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर हुए हैं और सिस्टम्स को इम्प्रूव करने की जो कवायद है वो रही है, बहुत सालों से चल रही है। मैं खुद ही बहुत पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री पर लिखा करती थी, तब से ये कोशिश चल रही है। मुझे आज भी याद है कि AIEEE का एग्जाम लीक हुआ था 2011 में, जिसके बाद सबसे पहले एक संजीदा मसौदा तैयार करने की बात हुई थी कि किस तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को फूल प्रूफ बना सकते हैं। तो ये जो चैलेंज है मनोज जी, हर सरकार के टाइम पर आया है और हर सरकार ने अपने तरीके से इसको प्लग करने की कोशिश की है, पर हम सब जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड माफिया है जो इससे लाभान्वित होता है और इंडिविजुअल्स हैं जो बहुत वेल एंट्रेंच हो चुके हैं सिस्टम में। जो लोग एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं, पेपर लीक के डायनामिक्स को समझते हैं, वो ये जानते हैं कि ये कोई मामूली अपराध नहीं है, इसके जो तार हैं बहुत दूर तक जुड़े हुए हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण घटना जो कल मैंने देखी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 ऑफिशियल्स को सैक किया गया है और ये भी वक्तव्य आया है सरकारी सोर्सेस के हवाले से कि उनमें से बहुत लोगों पे अब मुकदमा भी चलने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो लेटेस्ट नीट यूजी जो मेडिकल अंडर ग्रेजुएट MBBS एग्जाम का पेपर लीक हुआ था, May 3 को पेपर कैंसिल हुआ था, उसमें ऑब्वियस सी बात है कि ना सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स इन्वॉल्व हैं, अंदर के भी लोग कुछ इन्वॉल्व हैं। तो उसके लिए एक इस सिस्टम में ट्रस्ट को रीबिल्ड करने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम कल उठाया गया है। और आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री ने दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें अपने वक्तव्य में कही हैं सिस्टम को फूल प्रूफ बनाने के लिए। एक तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ऐसा नहीं कि देश में है नहीं, लेकिन जो प्रधानमंत्री का मतलब है वो ये है कि डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे जो सिर्फ इस लॉ के तहत जो केसेस दर्ज होंगे उनको डे टू डे बेसिस पर सुनने के बाद 3 महीने में उनका ट्रायल खत्म करेंगे, चार्जशीट फाइल होने के बाद। और हम और आप आज बात कर रहे हैं, बल्कि कुछ ही घंटों पहले जो बिल का मसौदा है, जो बिल प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था अपने वक्तव्य में परसों रात को जब उन्होंने एक वीडियो सेल्फी बना के देश के युवाओं से संपर्क करने की कोशिश की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम कैबिनेट में एक बिल लेके आने वाले हैं, जो पुराना बिल 2024 में सरकार ने पास किया है उसी को इम्प्रूव किया गया है और उसमें स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस किए गए हैं। और जो महत्वपूर्ण बात उसमें ऐड की गई है वो ये की गई है कि स्टैट्यूटरी बैकिंग दी जाएगी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को, जो प्रधानमंत्री ने घोषित किया परसों रात को अपने संदेश में, और कल कैबिनेट ने उसको पास कर दिया। आज बिल का मसौदा भी हम सबके सामने आ गया है और पार्लियामेंट में ये बिल मंडे को पेश भी होने जा रहा है।
2: यहाँ पर थोड़ा हम श्रोताओं के हित में समझना चाहेंगे कि ये जो मसौदा बिल आया है उसमें क्या सब बातें रखी गई हैं और कैसे ये आने वाले दिनों में सुधार के कारक बनकर सामने आएंगे।
3: इस बिल का जो नाम है वो है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। मैंने जैसे कहा कि ये नया बिल नहीं है, 2024 का बिल है, उसमें संशोधन लाएगी सरकार। संशोधन के माध्यम से नई पनिशमेंट्स घोषित करेगी और जो नए मसौदा तैयार किया है उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग देगी। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है, वो ये है कि पनिशमेंट बढ़ा दी गई है। जो पुराना बिल था 2024 का, उसमें ये कहा गया था कि जब कोई इंडिविजुअल पेपर लीक के मामले में लिप्त पाया जाएगा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी 3 से 5 वर्ष की, और उस पे जो फाइन होगा वो 10 लाख का होगा। अब उसको बदल के कहा गया है कि मिनिमम पनिशमेंट 5 साल की होगी और जो फाइन होगा वो 10 लाख का होगा। अब उसको बदल के कहा गया है कि मिनिमम पनिशमेंट 5 साल की होगी और जो फाइन होगा वो 10 लाख से बढ़कर 1 करोड़ तक ले गए हैं। और सिमिलरली अगर यही क्राइम ऑर्गेनाइज तरीके से कोई कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड नेक्सस इन्वॉल्व है, तो उसके लिए सजा के प्रावधान और भी कड़े किए गए हैं। उस केस में कहा गया है कि मिनिमम पनिशमेंट अब

0: मानव सेवा से राष्ट्रोत्थान के नायक श्री ब्रजलाल भट्ट, पद्मश्री 2026। दुनिया इसे धरती का स्वर्ग कहती है, लेकिन इस स्वर्ग ने अपनों को दूर जाते देखा। साल 1990 एक अनिश्चितता का दौर था, जब अपने ही घर छूट रहे थे, तब ब्रजलाल भट्ट ने इसके विपरीत जाने का साहस दिखाया।
1: मेरे दिल में एक ही बात आई कि मुझे कश्मीर नहीं छोड़ना है। हमारा लक्ष्य एक ही है, मानव सेवा से राष्ट्र उत्थान,
2: मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग।
0: इसकी नींव उनके बचपन में ही पड़ गई थी। अनंतनाग के एक बड़े संयुक्त परिवार में पले बड़े भट्ट साहब की सुबह इंद्रनाग चश्मे, गुरुद्वारा, देवी बल मंदिर और ऋषि साहब की जियारत से होकर गुजरती थी। यही गंगा जमुनी तहजीब आगे जाकर उनके जीवन का सबसे बड़ा मिशन बन गई। वे पिछले 55 वर्षों से नागदंडी के श्री रामकृष्ण महासम्मेलन आश्रम और विवेकानंद केंद्र के सानिध्य में सनातन धर्म के मूल मंत्र मानव सेवा और वैश्विक भाईचारे का प्रसार कर रहे हैं। 1996-97 के कठिन दौर में भट्ट साहब के नेतृत्व नागदंडी आश्रम ने माता खीर भवानी में भंडारा शुरू करने की ठानी।
1: शुरू में भंडारे में माता खीर भवानी मुश्किल से 400-500 लोग थे, पर बिना किसी परवाह के हम बस आगे बढ़ते गए और मेरी अर्धांगिनी हर मोड़ पर मेरे साथ खड़ी रही।
0: उनके उस निडर पहेल का रंग आज साफ नजर आता है। 2024-25 में उसी भंडारे की पंगत में 35,000 से अधिक लोगों ने भोजन किया। समाज को जोड़ने के साथ साथ अमेरिका से हॉर्टिकल्चर की उच्च शिक्षा प्राप्त भट्ट साहब ने कश्मीर की बंजर और वीरान जमीनों को भी संवारा। वैज्ञानिक सोच से सेब और अखरोट के लहलहाते बाग खड़े किए, कोल्ड चेन और नई पैकेजिंग से गांव वालों को आत्मनिर्भर बनाया, युवाओं को योग शिक्षा शिविर, संस्कार वर्ग और युवा सम्मेलन द्वारा सही दिशा दिखाई ताकि उनके हाथों में कलम हो। अब वे नागदंडी आश्रम का विस्तार कर रहे हैं ताकि एक साथ 400 लोग वहां ठहर सके। आज कश्मीर का युवा जान चुका है कि असली ताकत आपसी भाईचारे में है। सम्मान और पुरस्कार तो बस एक पड़ाव है, उनकी असली वसीयत वो बीज है जो उन्होंने यहाँ के दिलों में बोए हैं।
1: जब हमारे युवाओं का जोश और माता पिता का होश एक साथ आएगा, तभी हमारा कश्मीर फिर से एक खूबसूरत गुलदस्ता बनकर महकेगा।
0: उनकी ये यात्रा अब एक महायात्रा बन चुकी है जो सदैव चलती रहेगी। श्री ब्रजलाल भट्ट, पद्मश्री 2026।

0: Sergio Me.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए सेमीकंडक्टर और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आईटी एवं प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ सुबिमल भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्र।
2: नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में आज हम चर्चा करेंगे उस क्षेत्र की जो आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक प्रगति, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करने वाला है, सेमीकंडक्टर और उभरती प्रौद्योगिकियां। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा देश में एक नई सेमीकंडक्टर इकाई के उद्घाटन के बाद ये विषय एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईटी और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट सुबिमल भट्टाचार्य जी। सुर्खियों में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार
2: सुबिमल जी, हमारे कई श्रोताओं के मन में ये सवाल होगा कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और आज की डिजिटल दुनिया में इनका इतना महत्व क्यों है।
3: देखिए, सेमीकंडक्टर एक ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो सिलिकॉन के माध्यम से बनाया जाता है और इसमें कई बिलियन ट्रांजिस्टर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी और कंप्यूटेशनल इंस्ट्रक्शन जो दिया जाता है उसको एग्जीक्यूट करता है। और ये आज के डेट में एक एसेंशियल ड्राइवर बन गए कि स्मार्टफोन से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आप देख रहे हैं जिस तरीका से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आगे आ रहा है, तो हर काम में आज में ये चिप्स की महत्व इतने बढ़ गए हैं, इसीलिए इनकी इम्पोर्टेंस हर क्षेत्र में बढ़ गए हैं। और इसके जो बेस होते हैं ये होते हैं कि ये सिलिकॉन की एकदम पतला सा स्लाइसेस होते हैं जिसको वेफर्स कहा जाता है, और ये स्लाइस ये प्यूरिफाइड क्वार्ट्ज से बनता है और इसके बाद फैब्रिकेशन के माध्यम से ये जितने जो ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं इनके जो सर्किट्स होते हैं उसको रेगुलरली एच किया जाता है ये इसी वेफर के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट के माध्यम से, जिस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोलिथोग्राफी। और हम सोच सकते हैं कि ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स है वो फ्लैट है, लेकिन एक कॉमन चिप जो हमारे सामने होते हैं जो एक मिलीमीटर थिकनेस जिसके होते हैं इसमें करीब 30 माइक्रोस्कोपिक लेयर्स कंपोनेंट्स होते हैं, तो जितने दिखने में छोटा सा और आसान सा लगता है उसका अंदर में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी होते हैं। और इसी से हर तरीका की आज के डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्मार्टफोन्स, आपकी डिफेंस की इक्विपमेंट्स और हमारे घर की किचन के भी इक्विपमेंट्स को ये चिप्स के माध्यम से हम इंस्ट्रक्शंस और कमांड देते हैं और इससे काम करते हैं वो।
2: जी, हाल ही में प्रधानमंत्री ने देश में एक नई सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। उसकी परिकल्पना से निर्माण तक की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
4: 20 साल पहले, शायद उससे भी पहले, मैंने गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए सारी योजना बनाई। गांधीनगर और प्रांतिज के पास 350-400 एकड़ जमीन तय कर ली, कुछ कंपनियों से बातचीत भी की और बात आगे नहीं चली। आज जब मैं इसे देखता हूं तो मेरा 20-22 साल पुराना जो सपना उस समय नहीं हो पाया, लेकिन जब हो रहा है तो सर्वाधिक खुशी मैं अपने भीतर से अनुभव कर रहा हूं।
2: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में कई देशों से साझेदारी भी हो रही है।
4: सीजी सेमी का ये प्लांट भारत, जापान और थाईलैंड के हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स के साझा प्रयासों का भी प्रतीक है। ये केवल एक बिजनेस वेंचर नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, भरोसे और साझेदारी का ऐसा मॉडल है जो भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी को नई गति देने वाला है। बीते 2.25 सालों में आप सभी ने स्क्रैच से स्केल तक इस पूरी फैसिलिटी को आकार दिया है। हम इसके कॉमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी, और मुझे बताया गया आप सभी यहीं नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है।
2: सुबिमल जी, पीएम ने अभी जिस साझेदारी की बात की है, कुछ देशों के नाम लिए उन्होंने, उससे सेमी कंडक्टर्स के क्षेत्र में भारत को किस तरह का लाभ होगा उस साझेदारी से?
3: देखिए, प्रधानमंत्री का जो दूरदर्शिता है, इसीलिए उन्होंने उसी समय 20 साल पहले ये सोचा था कि किस तरीके से ये चिप्स की महत्व रहेगा, और आज जब देश में इनकी सरकार ने 12 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे रखे हैं, जिसमें से 3 ऑलरेडी कमर्शियल प्रोडक्शन में है, उसमें सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि कई सारे कंपनीज कई सारे देशों से इसमें जुड़े हुए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया था कि भारत, जापान, थाईलैंड ये सीजी सेमी की प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, तो अभी जापान के प्रधानमंत्री हमारे देश में आए थे, उसमें सबसे बड़ा एक पहलू था कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हम आगे किस तरीके से कोऑपरेशन बढ़ाएं। तो मैं समझता हूं कि ये जो साझेदारी है, ये अलग अलग कंपनीज के अलग अलग देशों की, इससे जो एक कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशन होते हैं, देखिए हम थे तो काफी देर से शुरू किए हैं, लेकिन इसके प्रोसेस में जितने सारे चीज है, जैसे लिथोग्राफी, इसके साथ सारे केमिकल्स होते हैं जिसमें से ये चिप्स की फैब्रिकेशन होते हैं, और इसके बाद जो पैकेजिंग होते हैं उसमें और किसी कंपनी की और किसी देश की कैपेबिलिटीज होते हैं, तो ये जो होल ऑफ द सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग इको सिस्टम की जो प्रयास है, उसमें हमें ऑपरेशन की माध्यम से चलना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के जितने सारे देश इसमें लगे हुए हमारे साथ ऑपरेशन कर रहे हैं। कुछ महीना पहले आपने देखा था कि नेदरलैंड्स की कंपनी ASML, जिनके पास सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है ये चिप्स बनाने के लिए, उन्होंने भी टाटा के साथ एग्रीमेंट की कि ये हमारे साथ इंडिया में अपने टेक्नोलॉजी देंगे, तो मुझे लगता है कि यही माध्यम से ये कोऑपरेशन जो है, ये साझेदारी, ये कई सारे देशों का बीच में भारत के साथ चलेगा, और ये जो एक ग्लोबल ऑर्डर बन रहा है कि आप किस तरीके से ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को सस्टेन करे, और उसको सिक्योरिटी की तरफ से भी अगर देखा जाए, उसके क्रिटिकलिटी की तरफ से भी देखा जाए, तो ये पार्टनरशिप में भारत एक देश बन रहा है पूरे दुनिया के सामने कि हम भी इस पूरे इकोसिस्टम में जुड़ गए।
2: प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि सेमीकंडक्टर का उत्पादन हमारे देश को कैसे विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ले जा रहा है।
4: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे, हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े, और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। साथियों, 2024 में इस प्लांट का शिलान्यास करने का अवसर मुझे मिला था। 2025 के अगस्त महीने में यहाँ टेस्टिंग चिप्स का काम शुरू हुआ और आज इस प्लांट का उद्घाटन हो गया है।
2: सुबिमल जी, क्या लगता है जिस दिशा में देश बढ़ रहा है, नई इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, और अभी भी इस दिशा में काफी कुछ किया जाना बाकी है, इस परिवर्तन के लिए देश को किन नीतिगत और संस्थागत प्रयासों की आवश्यकता होगी?
3: देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बड़े कम समय में भारत ये जो सेमीकंडक्टर की वैल्यू चेन होते हैं एडवांस फैब्रिकेशन की तरह, उसमें इन्होंने कामयाबी हासिल की है। जैसे कि अब हम इस वक्त सीजी सेमी ओसेट की बात कर रहा है सनाट गुजरात में, जो प्रधानमंत्री जी ने कल इनोग्रेट किया, लेकिन इसके अलावा एक टाटा का प्लांट भी ओसेट की आसाम की जगीरोड में, इसमें भी काम हो रहा है, और इस साल के अंत तक इसका भी चिप प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। तो ये जो अक्रॉस द कंट्री जिस अप्रोच से ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को दिशा दिया गया है, इसमें से सबसे बड़ी बात है कि पॉलिसी और फंडिंग की तरफ से भी काफी अच्छा स्केलिंग अप हुआ है। अभी जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 बताया गया था कुछ महीना पहले, और जिसमें से हमारी जो 2026-27 की बजट में 8,000 करोड़ रुपया की बात आई थी ये सेमीकंडक्टर मिशन के लिए, तो ये मुझे लगता है कि पॉलिसी की सपोर्ट, जितने सेमीकंडक्टर सेटअप्स आए उसमें और पॉलिसी सपोर्ट किस तरीके से सरकार की तरफ से दिया जाए, और फंडिंग अवेलेबल रहे चाहे सरकार की तरफ से या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, बहुत सारे संस्था इस और बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी आज ये सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अपने आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे जो लगता है कि ये जो इकोसिस्टम जो शुरुआत में एक क्रिएशन की तरफ थे, आज वो कंसोलिडेशन और ग्लोबल इंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है, जिसमें से ये आईएसएम 2.0 का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन का आपके महत्व दिया गया है, जिसमें वो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स, केमिकल्स और रॉ मटेरियल्स के ऊपर भी, प्लस एक सोवरेन चिप आईपी की जो प्रयास हो रही है, मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। डिजाइन टैलेंट हमारे देश में है, अब कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स की तरह और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लिंक्स, ये सरकार की तरफ से स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज बताए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज जो चिप्स में काम कर रहे हैं ग्लोबली, उनकी R&D सेंटर्स हमारे देश में, जैसे इंटेल, क्वालकॉम और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, और इस सब को देखते हुए नीति आयोग के जो 10 साल के एक रोड मैप रखा गया है, ये 120 से 150 बिलियन डॉलर सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन हमारा 2035 होना चाहिए, तो इसमें मुझे लगता है कि जो पॉलिसी सपोर्ट जिस दिशा में जा रहा है और प्रधानमंत्री का खुद का इस क्षेत्र के ऊपर नजर है, और इसके साथ साथ जो फंडिंग अवेलेबिलिटी हो रहा है, ये पूरे वैल्यू चेन में मुझे लग रहा है कि हम इसमें कामयाबी ले सकते हैं। तो ये सस्टेन तरीका से ये सपोर्ट दोनों क्षेत्रों में रहना चाहिए।
2: जी, आपने जैसे बताया कि ये चिप डिजाइन में भारतीय प्रतिभाएं काफी समय से जानी जाती हैं, विख्यात हैं, और अब इसके निर्माण में भी कदम बढ़ाने से हमारे ग्लोबल वैल्यू चेन में हमें कोई स्थान मिल सकता है। अगर आगे हम देखें, तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है भारत में।
3: या जरूर, सबसे बड़ी बात है कि हमें हमेशा कहा गया है कि आप इस क्षेत्र में बहुत देर से आए, लेकिन अगर देर से भी आए, लेकिन स्टेडीली जितने प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमने हाथ दिए है, जिस तरीके से इसको डिफ्यूजन की तरह सारे देश में लेके गए, और जो डिजाइन की तरफ में जो हमारा एक प्रयास रहा है, अगर आप देखें तो सरकार की तरफ से भी एक गोल दिया गया है कि 100 से ज्यादा एडवांस डिजाइन आईपीस इस देश में अगले कुछ साल में करना है। तो मुझे लगता है ये जो AI इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, ये जो डेटा सेंटर्स की बात हो रही है, जिस तरीके से हम क्लाइमेट कंट्रोल की तरफ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं, सिलिकॉन कार्बाइड पावर चिप्स और क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च जापान और EU के साथ हम बात कर रहे हैं, तो ये सारे क्षेत्र में बहुत मैं समझता हूँ कि चेंजेस आएंगे बड़े कम समय में, क्योंकि इस पर फोकस तरीके से देखा जा रहा है। तो अभी बात रह जाती है कि हमारे जो स्किलिंग है इस देश में, और हम किस तरीके से ज्यादा वो ट्रेन मैन पावर उसी स्किल सेट के हिसाब से हम प्रयास करें, और उसमें भी कई सारे संस्था आज कोशिश कर रहा है कि हम अपने जो यंग फोर्स है, जो अपनी हो सकता है पढ़ाई दूसरा क्षेत्र में कराए, लेकिन इसमें जो स्किलिंग की जो रिक्वायरमेंट है उसमें इनको दे, और वो भी एम्प्लॉयबल रहे ये सारे प्रयास में। तो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच और होल ऑफ द इंडस्ट्री अप्रोच और होल ऑफ द सेक्टर अप्रोच से जो किया जा रहा है, मुझे लगता है कि हमारी एक अर्ली स्टेज एफोर्ट बहुत अच्छे रहे, और उससे कंसोलिडेट करते करते आके हम इस क्षेत्र में अपना नेसेसिटी के अलावा भी ग्लोबली हम एक सिक्योर सप्लायर भी चिप्स के लिए बन सकता है।
2: जी, वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, यदि हम सेमीकंडक्टर और उभरती प्रौद्योगिकियों में निरंतर निवेश और नवाचार करते रहेंगे, सुविमल जी, सेमीकंडक्टर क्षेत्र की चुनौतियों और संभावनाओं को सरल और सारगर्भित ढंग से आपने समझाया, अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे सेमीकंडक्टर और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे IT एवं प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ सुबिमल भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्र। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
0: सुर्खियों में

0: परिवर्तन की शांत लहर, श्री मोहन नागर, पद्मश्री 2026। कुछ लोग बदलाव की बातें करते हैं और कुछ लोग बदलाव लाते हैं। मध्य प्रदेश के श्री मोहन नागर जी को प्रकृति और पानी से प्रेम संस्कार में मिले थे।
1: हमने अपने काम की शुरुआत शिक्षा के माध्यम से की। भारत भारती के माध्यम से 500 गांवों में एकल विद्यालय प्रारंभ किए।
0: पर असल समस्या और थी।
2: जमीन बेकार हो गई थी, खेती बंद हो गई, लोग गांव छोड़ रहे थे।
1: पदयात्रा के समय अध्ययन किया तो ध्यान में आया कि दिवाली के समय पानी की बहुत समस्या हो जाती है और लोग पलायन कर जाते हैं। पर्याप्त बारिश होने के बाद भी कुएं, बावड़ी, तालाब और स्टार्ट डैम की कमी के कारण अधिकांश पानी बह जाता था।
0: श्री मोहन नागर जी ने नदी नालों में बहते पानी को रोकने का एक अनोखा रास्ता निकाला।
1: हमने सीमेंट की खाली बोरियों में रेत भर के नदी नालों में बोरी बंधान बनाए, जिसके कारण पानी की समस्या कम हुई और पलायन बंद हुआ।
0: इसके बाद बारी थी जमीन के जल स्तर को बढ़ाने की।
1: हमने गंगा अवतरण अभियान के माध्यम से जन भागीदारी से सोना घाटी की पहाड़ी पर 8,000 कंटू टेंच बनाए और 32,000 पौधे लगा करके ताप्ती उपन उगाए, जिसके कारण उस क्षेत्र का भूजल स्तर बढ़ गया। लैंड माफिया, रेत माफिया, इसका हमको विरोध का सामना करना पड़ा। हमने अपने काम को नहीं रोका, हमने लोगों का विश्वास जीता और धीरे धीरे जो हमारे विरोधी थे वो भी हमारे सहयोगी बन गए।
0: प्रकृति और पानी बचा के मोहन जी ने वर्तमान बचाया और अब उनका लक्ष्य था एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना।
1: भारत भारती विद्यालय के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा देकर आने वाले कल के लिए एक संस्कारी, प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता वाले युवा तैयार करते हैं। हमने बाचा गांव को ग्रामवासियों के सहयोग से एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया है। बाचा गांव शांति, प्रगति और समृद्धि का प्रतीक बन गया है।
0: लेकिन अनगिनत बदलाव लाने वाले श्री मोहन नागर जी की एक चीज कभी नहीं बदली, उनके परिवार का अटूट भरोसा। मोहन जी को कई सम्मान मिले, पर उनका असली सम्मान तो भरे हुए तालाब

नंबर पर आता है। बाजरा खरीफ की फसल में आता है जो जून जुलाई में बोया जाता है तथा सितंबर अक्टूबर में काटकर तैयार कर लिया जाता है। सर्दियों में बाजरे का सेवन लाभदायक है। बाजरे में सोडियम, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है तथा पेट दर्द, गैस जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। बाजरे में मौजूद आयरन खून की कमी को भी दूर करता है।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन की।
1: ये वतन का राग।
0: एक छोटा सा मंत्र मैं आपको देता हूँ, इसे आप अपने हृदय में अंकित कर लें और अपनी हर सांस में उसे अभिव्यक्त करें। ये मंत्र है, करो या मरो। अपने इस प्रयास में हम या तो स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे या फिर जान दे देंगे। इस वक्तव्य के साथ 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आर पार की उस लड़ाई का उद्घोष किया, जिसे आज हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये गांधी जी की एक शस्त्रविहीन युद्ध की अद्भुत खुली घोषणा थी। इसके साथ ही 9 अगस्त 1942 को पूरे देश में आरंभ हो गई ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध वो निर्णायक लड़ाई, जिसने अंग्रेजों को इस देश से खदेड़कर अपनी आजादी का सूर्य गढ़ा। द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों को पराधीन भारत ने एक अवसर की तरह देखा और ब्रिटिश साम्राज्य के समक्ष पूर्ण स्वराज की मांग पुरजोर तरीके से रखी। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र हारने लगे थे और ब्रिटेन पर दबाव बन रहा था कि वो भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करे। इसी उद्देश्य से स्टेफर्ड क्रिप्स 23 मार्च 1942 को भारत की किस्मत का पुलिंदा अपनी अटैची में लिए दिल्ली पहुंचे, लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग पर भारत के समक्ष जो प्रस्ताव उन्होंने रखे वो बेहद निराशाजनक थे। इस प्रस्ताव के सबसे आपत्तिजनक बिंदु ये थे कि ब्रिटिश सत्ता भारत की सुरक्षा अपने हाथों में रखना चाहती थी और गवर्नर जनरल के वीटो के अधिकार को भी वो बनाए रखने के पक्ष में थी। इसके साथ ही भारतीय एकता की जमीन में फूट डालते हुए ये प्रावधान दे रही थी कि भारत के जो प्रांत संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें भारतीय संघ के समान ही पूर्ण स्वराज का दर्जा प्रदान किया जाएगा। अंग्रेजों की इस कुटिलता से भारत की आशाओं को गहरा धक्का पहुंचा और भारतीय प्रतिनिधियों ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। गांधी जी ने कहा कि ये प्रस्ताव एक दिवालिया होने वाले बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। इसी पृष्ठभूमि पर आंदोलन की रणनीति तैयार हुई और 14 जुलाई 1942 को वर्धा अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इस आंदोलन के लिए 9 अगस्त की तारीख चुनी गई, जिसे देश भर में प्रतिवर्ष काकोरी कांड स्मृति दिवस के रूप में मनाने की परंपरा सरदार भगत सिंह ने शुरू की थी। 1925 की 9 अगस्त ही वो तारीख थी जब ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलटने के लिए पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के 10 वीर क्रांतिकारियों ने काकोरी कांड को अंजाम दिया था। इसी ऐतिहासिक तारीख

9 अगस्त को एक बार फिर महासमर का शंखनाद होना था। 8 अगस्त 1942 को रात 10 बजे गांधी जी ने बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में अंग्रेजों को बलपूर्वक चेतावनी दी कि या तो इच्छापूर्वक भारत का शासन भारतवासियों के हाथों में सौंपकर यहां से चले जाओ, अन्यथा तुम्हें संपूर्ण भारत की उभरती हुई शक्ति का सामना करना पड़ेगा। इस तरह ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध भारतीयों की एक खुली लड़ाई की रणभेरी बज उठी।

8 अगस्त की बंबई की हलचलों को लेकर सरकार अत्यधिक चौकन्नी थी। ब्रिटिश सत्ता ने रात 12 बजे ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर अलग अलग जेलों में डाल दिया। गिरफ्तारी से कुछ पहले ही सारे शहर के टेलीफोन तार काट दिए गए ताकि हंगामा न हो। गांधी जी के साथ भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को यरवदा पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में और अन्य नेताओं को अहमदनगर के किले में नजरबंद कर दिया गया। 8 अगस्त को ही ये घोषणा हो चुकी थी कि 9 अगस्त को सुबह ग्वालिया टैंक के मैदान में राष्ट्रीय झंडे को सलामी दी जाएगी। सुबह उठते ही जब जनता ने नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार सुना तो सभी लोग ग्वालिया टैंक मैदान की ओर चल पड़े। वहां पहुंचे तो मालूम हुआ कि सारे मैदान पर पुलिस ने कब्जा कर लिया है। पुलिस की परवाह न करते हुए जनता निर्भय और निसंकोच सभा स्थल में एकत्रित हो गई। सभी मुख्य नेताओं के जेल चले जाने के बाद नेतृत्व के अभाव में लोगों के बीच से ही नेतृत्व उभरा। एक मोटर आई जिसमें भूला भाई देसाई के सुपुत्र सवार थे। उन्होंने आते ही राष्ट्रीय झंडा अपने हाथ में ले लिया। इस पर एक यूरोपियन सार्जेंट ने आगे बढ़कर ऊंचे स्वर में कहा, इस मैदान पर अब पुलिस और मिलिट्री का कब्जा है, तुम सब यहाँ से हट जाओ वरना आंसू गैस का प्रयोग किया जाएगा। समारोह की संचालिका थी अरुणा आसफ अली। उन्होंने छोटे लड़के लड़कियों को वहां से दूर हटा दिया और स्वयं भाषण देना प्रारंभ किया। इस पर पुलिस के सिपाही आंसू गैस के थैले लेकर सभा स्थल पर पहुंच गए। तमाम विरोध और अफरा तफरी के बीच अरुणा आसफ अली ने ग्वालिया टैंक मैदान में झंडा फहराकर आंदोलन की शुरुआत कर दी, जिसने देशवासियों के मन को उत्साह से भर दिया। जनता को नेताओं की ओर से पहले ही समझाइश दी गई थी कि आंसू गैस छोड़ने पर जमीन पर लेट जाना चाहिए। लोगों ने वैसा ही किया। 2 मिनट तक सभी नीचे लेटे रहे, परंतु जैसे ही उठकर खड़े हुए आंसू गैस फिर छोड़ दी गई। लोग फिर से लेट गए, तब पुलिस ने सबको लाठियों से मारना शुरू कर दिया। बहुत से लोग घायल हुए। दिन के 10 बजते-बजते सारा बंबई शहर खुले विद्रोह का अखाड़ा बन चुका था। जनता इस अत्याचार से विक्षुब्ध हो गई। लोगों ने सरकारी संपत्तियों पर हमला किया, रेलवे पटरियों को उखाड़ दिया, डाक और तार व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया और सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराने लगे। देश की जनता ब्रिटिश सत्ता के आक्रमण का उत्तर देने के लिए मैदान में उतर आई थी, क्योंकि करो या मरो का संदेश देश के कोने कोने में गूंज उठा था। जन मन में प्रतिरोध इतना तेज था कि देश के कई भाग, जैसे संयुक्त प्रांत में बलिया, बंगाल में तामलुक, महाराष्ट्र में सतारा, कर्नाटक में धारवाड़ और उड़ीसा में तालचेर और बालासोर में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। पहली अस्थायी सरकार बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी। सतारा में विद्रोह का नेतृत्व वाई वी चौहान और नाना पाटिल ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की चिंगारी जो बंबई से उठी तो पूरे देश में फैल गई। सारा देश एक धधकता हुआ ज्वालामुखी बन गया।

अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये ललकार जैसे धरती से उठकर आसमान तक पहुंच रही थी। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने तैयार किया था, जिन्होंने बंबई के मेयर के रूप में भी काम किया। ये वही यूसुफ मेहर अली हैं जिन्होंने साइमन गो बैक के नारे को भी गढ़ा था। इस अगस्त क्रांति में अनगिनत नेता जेल की सलाखों के पीछे थे और जो बाहर थे वो भूमिगत रहते हुए इसे गति दे रहे थे। जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, एस एम जोशी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे कई नेता लगभग पूरे आंदोलन के दौरान भूमिगत रहते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों को हवा देते रहे। सन 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ, उस समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल में नजरबंद थे। जब सरकार की ओर से हिंसक कार्रवाई शुरू हुई तब जयप्रकाश जी से सहा नहीं गया और 11 नवंबर 1942 को दीपावली की अंधेरी रात में 5 अन्य सहयोगियों के साथ वो जेल की दीवार फांदकर भाग निकले। बाहर पहले से ही मोटर की व्यवस्था थी। पहले मोटर से और फिर पैदल रांची गया होते हुए बंबई पहुंचकर वो आंदोलन में जुट गए। 1943 के मई महीने में नेपाल की तराई में राष्ट्रीय सेना तैयार करते हुए वो और उनके कई साथी गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिए गए। परंतु वहां भी वो देर तक नहीं टिके। योजना अनुसार रात के समय बहुत से नवयुवकों ने जेल पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया, जेल का फाटक तोड़ डाला और जयप्रकाश जी अपने सहयोगियों के साथ बाहर निकल गए। उस समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी उनके साथ थे। इस प्रकार 2 वर्ष तक लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने सरकार की सारी शक्ति को अंगूठा दिखाकर इस क्रांति का अभूतपूर्व संचालन किया। इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी भी बहुत महत्वपूर्ण रही। ब्रिटिश सरकार ने भूमिगत अरुणा आसफ अली को पकड़वाने वाले को 5,000 रूपये का इनाम देने की घोषणा कर रखी थी। उधर उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने सहयोगियों के साथ 14 अगस्त 1942 को एक खुफिया रेडियो प्रारंभ किया था। ये रेडियो लगभग हर दिन अपनी जगह बदलता था ताकि अंग्रेज अधिकारी उसे पकड़ न सकें। 3 महीने तक प्रसारण के बाद अंततः अंग्रेज सरकार ने उषा मेहता और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। लाखों युवाओं ने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। 1942 के अंत तक लगभग 60,000 से अधिक लोग जेल में डाल दिए गए और कई हजार लोग मारे गए। बंगाल के तामलुक में 73 वर्षीय मातंगनी हाजरा, असम के गोहपुर में 17 वर्षीय कनकलता बरुआ, बिहार के पटना में 7 युवा छात्र, ऐसे हजारों लोग प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से मारे गए। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन से संबंधित समाचारों को प्रकाशित करने पर पाबंदी लगा दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन सन 1857 के बाद दूसरा सबसे बड़ा जन आंदोलन साबित हुआ। 1943 के अंत तक इस आंदोलन ने भारत को संगठित कर दिया था और अंततः ब्रिटिश सरकार ने संकेत दे दिया कि सत्ता का हस्तांतरण कर अब उसे भारतीयों के हाथ में सौंपा जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसी खुली लड़ाई थी जिसके बाद भारतीयों ने पहली बार स्वाधीनता की आहट को महसूस किया था। इस आंदोलन ने अंततः भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया।

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिव शेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

नमस्कार सभी को, मेरा नाम शशि है और मैं रीड इंडिया से पिछले 9 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं एक विद्यार्थी के रूप में रीड इंडिया में आई और मैंने देखा घर पे, जैसे मैंने बात की कि मुझे भी कोई कोर्स करना है तो फैमिली ने काफी मेरे को रोका और बोला कि नहीं, बच्चे पालो, बच्चे संभालो और घर का खाना बनाओ, यही काम होता है लेडीजों का। मैं वजीराबाद गांव से बिलोंग करती हूँ तो वजीराबाद गांव में थोड़ा घूंघट प्रथा बहुत ज्यादा है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया कि मुझे एडमिशन कराना है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि पहले मैं जाके देखता हूँ कि माहौल कैसा है। और वो आए और उन्होंने विजिट किया सेंटर को, तो उन्होंने मेरे को परमिशन दे दी और बोले कि मैं पापा को मम्मी को मैं मनाऊंगा, तुम जाओ। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल था। बट उसी दौरान जब मैं कोर्स कर रही थी, मैंने पहले बेसिक कोर्स किया, फिर उसके बाद मैंने अपना एडवांस कोर्स किया। लेकिन एडवांस कोर्स करते करते मेरे हस्बैंड की हालत बहुत खराब हुई और कंडीशन यहां तक आ गई कि डॉक्टर्स ने बोल दिया कि आपके हस्बैंड शायद ना बचे। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने अपना हाथ मेरे हाथ में रख के बोला कि आगे तुझे बच्चों को तुझे संभालना है। वो टाइम मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल था। मैंने अपने आप को संभाला, मैंने बात की मैं संभालूंगी, बच्चों को भी संभालूंगी, बट आप अपनी हिम्मत मत छोड़िए। उसी दौरान मेरा बेटा 11th में था और हालात इस कदर आ गए कि मैं उस टाइम पे अपने हस्बैंड का सपोर्ट करूं, बच्चों को पढ़ाऊं या मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं पा रही थी। उस टाइम मैं बिल्कुल एकदम से टूट गई थी। बट मैंने रीड इंडिया में मैम से बात की और अपनी जॉब के लिए मैम से पूछा तो मेरे को जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली। उसी दौरान फिर मेरे बेटे ने मेरे को बोला कि मैम, वो मम्मी हमारा तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा अगर हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई तो। उस दौरान एक माँ के लिए मरने की नौबत आ गई थी क्योंकि बच्चे की एजुकेशन मैं पूरी नहीं करवा पा रही थी। लेकिन मैंने रीड इंडिया में ज्वाइन किया और आज मेरा बेटा पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है और MNC कंपनी में आज वो जॉब कर रहा है। और उसी दौरान मेरे बड़े बेटे को भी ऑफर मिला और उसने भी आज MNC ज्वाइन कर ली है और उसकी भी एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी है। थैंक यू फॉर इंडिया, थैंक यू गीता मैम, थैंक यू सो मच मैम।

0: मैं या तो तिरंगे को लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपटा हुआ आऊंगा, पर मैं आऊंगा जरूर। इन बातों को सच किया करगिल युद्ध के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा ने। देश की सरहदों की रक्षा करने वाले और अपनी जान कुर्बान करने वाले कुछ अलग ही मिट्टी के बने होते हैं, ऐसे ही सपूत थे विक्रम बत्रा। पूरे परिवार में दूर दूर तक कोई सेना में नहीं था, पर अपने इरादों की बदौलत उन्होंने वर्दी चुनी। 1996 में भारतीय सेना एकेडमी देहरादून में प्रवेश लिया और 1997 में 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने सैनिक जीवन में कमांडो ट्रेनिंग भी ली थी। 1999 में हुए करगिल युद्ध में उनकी टुकड़ी को श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट 5140 को पाक सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी मिली, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। शानदार जज्बे ने विक्रम बत्रा को शेरशाह बना दिया। इसके बाद उनका अभियान 4875 चोटी को कब्जे में लेने का था। मिशन पूरा होने को था, तभी एक विस्फोटक से अपने साथी को बचाने के लिए वो आगे बढ़े और एक गोली शेर के सीने में लगी, पर जख्मी शेर ने हार नहीं मानी और एक एक दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया। पॉइंट 4875 पर तिरंगा लहराया, पर उस पल को जीने के लिए वहां विक्रम बत्रा नहीं थे। इस अभियान में वो शहीद हो गए और उनके इस पराक्रम के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: गिरधारी लाल बत्रा, फादर ऑफ लेट कैप्टन विक्रम बत्रा, रिसीविंग परमवीर चक्र।
2: डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद, एक उपचारक जिसने पुनर्जीवित किया एक खत्म होती विरासत को, हिमालय की खामोशी में 2500 साल पुरानी उपचार परंपरा दम तोड़ रही थी। सोवा रिग्पा, नाड़ी देखकर बीमारी समझना, दुर्लभ जड़ी बूटियों से इलाज करना। डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद मानते थे कि कुछ विरासतों को बचाना बेहद जरूरी है। सोवा रिग्पा को बचाने का उनका सफर बड़ी ही कम उम्र में शुरू हुआ। वो अक्सर अपने पिता को दवाइयां बनाते और लोगों का इलाज करते हुए देखा करते थे। उन्होंने सोवा रिग्पा को नहीं चुना, सोवा रिग्पा ने उन्हें चुना। शुरुआत में वो इसे सीखना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें समझाया। डॉक्टर ग्योरमेद ने अपना जीवन इस चिकित्सा पद्धति को बचाने में समर्पित किया। उन्होंने सोवा रिग्पा पर कई किताबें भी लिखी, लेकिन परंपरा को बचाना आसान नहीं होता।
3: शुरुआत में इस सिस्टम को दोबारा खड़ा करना बहुत मुश्किल था। अपने ही लोगों को समझाना कि ये भारत की विरासत है, काफी घुटन भरा था। छात्रों के लिए सोवा रिग्पा आखिरी विकल्प होता था। हमारी परंपरा दम तोड़ रही थी।
2: डॉक्टर ग्योरमेद ने कई सोवा रिग्पा चिकित्सकों को एक साथ लाया, अनेक सम्मेलन आयोजित किए और पुराने ग्रंथों को इकट्ठा किया। उनकी पहल पर माननीय प्रधानमंत्री के सहयोग से लेह में राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान की स्थापना हुई। पर संघर्ष यही खत्म नहीं हुआ।
3: 2014 में मुझे भारत में चीनी दूतावास से एक प्रेस रिलीज मिली, जिसमें लिखा था कि वो इस चिकित्सा पद्धति को यूनेस्को में अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में दर्ज कराएंगे।
2: डॉक्टर ग्योरमेद ने सभी संबंधित दस्तावेज इकट्ठा किए, फाइल बनाई और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़े। इस लंबे सफर में कई लोगों ने डॉक्टर ग्योरमेद का साथ दिया।
3: मेरे परिवार ने बहुत त्याग किया है। 25 सालों में मैंने शायद ही कभी छुट्टी ली होगी। जब मेरे पिता स्वस्थ थे, वो मुझसे कहते थे, मेडिसिन बुद्धा तुम्हारे साथ है, अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो तो एक दिन जरूर सफल होगे।
2: आज एक नई पीढ़ी इस प्राचीन ज्ञान की ओर लौट रही है। डॉक्टर ग्योरमेद की अथक मेहनत से सोवा रिगपा सिर्फ बचा ही नहीं, उसे मिली एक नई जिंदगी। एक उपचारक के बेटे से भारत में सोवा रिगपा सूत्रधार तक का सफर वाकई प्रेरणादायक है। डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद, पद्मश्री 2026। कोटि कोटि नमस्कार।
4: डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
5: एलोवेरा, जिसे हम घृत कुमारी भी कहते हैं, इसकी खेती आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित हो रही है क्योंकि इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसके गुणों की अब पहचान हो गई है, जिसके चलते अब इसकी मांग में लगातार हम बढ़ोतरी होते हुए देख रहे हैं, जिसका फायदा हमारे किसान भी उठा रहे हैं इसकी खेती को अपनाकर। जी हाँ, अगर आप भी करना चाहते हैं एलोवेरा की खेती, तो क्या है इसका सही तरीका, आइए आपको बताएं विज्ञान और किसान सेगमेंट के माध्यम से।
6: एलोवेरा को ग्वार पाठा भी कहते हैं। इसे सिंचित या फिर असिंचित दोनों अवस्थाओं में उगाया जा सकता है। इसका जेल यानी लसलसा गुदा ही काम का है। इसी से जूस और दूसरे उत्पादन बनते हैं। समय पर सिंचाई करेंगे तो ज्यादा जेल मिलेगा। एलोवेरा को बरसात में लगाया जाता है और इसके कंदों को ही बोया जाता है। पौधों और कतारों के बीच एक एक मीटर का फासला रखते हैं। इस तरह एक हेक्टेयर में करीब 40,000 पौधे रोपे जा सकते हैं। कमाल की बात यह है कि एक बार बुआई के बाद 4-5 साल तक पत्तियां मिलती रहती हैं। सुरेंद्र काकड़े महाराष्ट्र में सतारा जिले के रहने वाले हैं और मैकेनिकल इंजीनियर हैं। पढ़ाई के बाद उन्होंने कंसल्टेंसी एजेंसी खोली, लेकिन बाद में एलोवेरा के गुणों से प्रभावित होकर खेती में आ गए। सुरेंद्र ने ऐसे ही खेती नहीं शुरू की, बल्कि पहले पूरी रिसर्च की और जब पूरा कारोबार समझने के बाद ही काम शुरू किया। बाद में उन्होंने प्रसंस्करण भी शुरू किया। हालांकि शुरू के 6 महीने उन्हें खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी, और ऐसा ही हुआ। आज उनकी एक प्रोसेसिंग यूनिट है। इसमें वो अपनी फसल का तो प्रसंस्करण कर ही रहे हैं, दूसरे किसानों से भी एलोवेरा खरीद कर नए नए उत्पाद बना रहे हैं। प्रसंस्करण के दौरान सबसे पहले पोटेशियम में डालकर गर्म पानी से धोते हैं, फिर टुकड़े करेंगे, टुकड़ों को गर्म पानी में डालते हैं और कुछ समय बाद उनसे जेल निकालते हैं। जूस निकालने के लिए जेल को ब्लेंडिंग मशीन में डालेंगे, फिर जूस को 70 डिग्री तापमान पर गर्म करेंगे। छानने के बाद इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे और ठंडा करने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। इस तरह से ये उत्पाद बनकर तैयार हो जाता है। अब इसका इस्तेमाल सौंदर्य और दवा बनाने में किया जाएगा। सिर्फ फसल उगा लेना और प्रसंस्करण के जरिए उत्पाद तैयार कर लेना ही काफी नहीं था, बल्कि ज्यादा कमाई के लिए अच्छी मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है। सुरेंद्र काकड़े ने हर पहलू का बारीकी से जायजा लिया और बेहतर मार्केटिंग से कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। फसल लगाने के बाद किसान आमतौर पर एक बार कटाई कर लेते हैं और बात खत्म, लेकिन एलोवेरा को अगर एक बार लगा लिया तो साल भर फसल मिलेगी और हर महीने कमाई होगी।

वतन करा के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना जरूरी है, ये अमर शब्द हमें याद दिलाते हैं 8 अप्रैल 1929 की। ये उस दस्तावेज का हिस्सा है जिसकी प्रतियां भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भारतीय पार्लियामेंट में फेंकी थी। भगत सिंह के लिए प्रेरणा स्रोत बने ये शब्द दरअसल फ्रांसीसी क्रांति के शहीद वेला के उद्गार थे। सरदार भगत सिंह द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज में लिखा गया था कि ये शब्द हमारे काम के औचित्य के साक्षी हैं। बड़े बड़े साम्राज्य नष्ट हो गए पर विचार आज भी जीवित हैं। फ्रांस से ब्रूवां और रूस से जार चले गए, अगर कोई विजयी हुआ तो वो थे क्रांतिकारी। क्रांति की देवी के अभिषेक के लिए कुछ लोगों को बलिदान देना होगा, तभी ये देवी आजादी का वरदान देगी और आदमियों के द्वारा आदमियों का शोषण रुक पाएगा।

0: वतन का राग।
1: मंगल पांडे के इरादों को जानकर उनकी पलटन के नायक ने उनसे कहा था, ऐसा ना हो मंगल कि इतिहास के पृष्ठों पर तुम्हारी ये वीरता तुम्हारी भूल लिखी जाए। तब मंगल पांडे ने जवाब दिया था कि लोग इसे भूल कहें या क्रांति का मूल, मैं तो अपने जीवन के फूल को स्वतंत्रता की देवी के चरणों में उत्सर्ग कर चुका हूं। मेरा विश्वास है कि यदि इस जन्म में अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका तो दूसरे जन्म में अवश्य ही अपने देश की स्वतंत्र भूमि पर मेरी अंतिम सांस बलिदान होगी। क्रांति के संघर्ष में मंगल पांडे की पत्नी भारती जनसाधारण की टोलियों को हथियार पहुंचाने का काम करती थी। प्रणय की वेदी पर प्राणों का बलिदान चढ़ाकर देश की आजादी के लिए लड़ने वाली एक बहादुर महिला थी वो।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन करा। संगीतकार थे उमेश वीनस, मॉरिस लाजरस और तापसी नागराज। आलेख और उद्घोषणा सुधा अनुपम, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में जो आपने गीत सुने उन्हें हमने लिया था है अब तो कुछ सुखन

റീഡ് ഇന്ത്യ മാനെ റൂറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഗ്രാമീൺ ശിക്ഷ എവം വികാസ് ഹമാരാ കാം തോ ലൈബ്രറീസ് ബനാന ഹൈ ഓർ ആജ് കേ സമയ മേ ജോ ചർച്ച ഹോ രഹി ഹൈ ലൈബ്രറീസ് ഖാലി കിതാബ് പഢ്നേ കേ ലിയേ നഹീ ഹൈ ലൈബ്രറീസ് ഏക് ഐസീ ജഗഹ ഹൈ ജഹാൻ ഹം ബഹുത് കുഛ് അപ്നേ ലിയേ ഭീ കർ സക്തേ ഹൈ ഓർ സമുദായ കേ ലിയേ ഭീ കർ സക്തേ ഹൈ മാനെ പഢേ തോ ഹം അപ്നേ ബച്ചോ കോ ഭീ പഢായേ ഹം ബഡോ കോ ഭീ പഢായേ ഹം ഛോട്ടേ ബച്ചോ കേ സാഥ് ഭീ ആക്ടിവിറ്റീസ് കരേ കി കിതാബ് ക്യാ ചീസ് ഹൈ ഓർ കിതാബ് ഉൻകേ ജീവൻ മേ ക്യാ മഹത്വ രഖ്തീ ഹൈ പർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ജർണി ഇസ് സമയ കേ സാഥ് സാഥ് ഹംനേ യേ സോചാ കി ഹമേ മഹിലാഓ കേ ലിയേ ഭീ കുഛ കാര്യക്രമ കർനേ ചാഹിയേ അഗർ മഹില അപ്നേ ആപ് കോ നിഖാർ സക്തീ ഹൈ അപ്നേ ആപ് കോ സക്ഷം ബനാ സക്തീ ഹൈ ഓർ ജിമ്മേദാരി അപ്നേ ഷോൾഡർസ് പേ ലേ സക്തീ ഹൈ കി അപ്നേ ബച്ചോ കാ വികാസ് കൈസേ കർനാ ഹൈ വോ ഭീ റീഡ് ഇന്ത്യ അപ്നേ കമ്യൂണിറ്റി ലൈബ്രറീസ് ഓർ റിസോർസ് സെന്റർസ് മേ കർതീ ഹൈ ഹംനേ ഔരതോ കേ ലിയേ ബഹുത് ഹീ അച്ഛേ അച്ഛേ കാര്യക്രമ കിയേ ജൈസേ സിലായി സിഖാനാ ബ്യൂട്ടി പാർലർ കി ട്രേനിംഗ് ദേനാ ഓർ ഭീ ബഹുത് സാരി ഐസീ ട്രേനിംഗ്സ് ഹൈ ജോ ഹം അപ്നേ സെന്റർസ് മേ കർതേ ഹൈ പർ ഉസ്കാ जो आउटकम है जो हम समझ रहे हैं कि एक महिला इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपने परिवार की भी सोच बदल सके अपनी भी सोच बदल सके और अपने बच्चों को एक मकाम तक लेके जा सके। इसी दौरान हमने पिछले 3 सालों में उनको बहुत सारी ऐसी स्किल्स दी जिससे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं और हम उनको रेगुलरली ट्रेस भी करते हैं ट्रेस इन द सेंस कि हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही हैं अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकती हैं और इसी दौरान हमने ये सोचा कि हम क्यों इतने बड़े बड़े बीबीए और एमबीए की बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम इन महिलाओं को बोलें कि ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो। तो रीट इंडिया ने क्या किया, अपने प्रपोजल में ये सारे एपिसोड्स लिख दिए। मैं इनको एपिसोड्स ही कहूंगी, मॉड्यूल्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एपिसोड्स उनके जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं, उनको एक उद्योग क्या है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं और उद्योग करने के लिए उनको क्या क्या सीखना है वो भी ट्रेनिंग्स हम देने के लिए तैयार हैं। और हम महिलाओं को बोलते हैं, यंग लड़कियों को बोलते हैं जो बीए कर चुकी हैं या 12वीं पास कर चुकी हैं, वो अपना नाम आके रीड इंडिया की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लिखवाएं और हम बिल्कुल तैयार हैं उनको इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने परिवार को आगे लेके जाती है अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है। तो श्रोताओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें, रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकते हैं रीड इंडिया के सेंटर पे आके अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: नमस्कार। आज हम मेवात की बात करने जा रहे हैं और मेवात में जो रीड इंडिया का प्रयोग है उसका बात करने जा रहे हैं। और बात करने के लिए हमारे साथ हैं रीड इंडिया की कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर गीता मल्होत्रा जी। फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेवात। मेवात इज ए लोकेलिटी वेयर मेवातीज मोस्टली मुस्लिम्स आर लिविंग। This locality is just 35 kilometers away from Gurgaon, the mega city, and 50 kilometers away from Delhi, in the most developed, growing industrial state of Haryana. And if you go to that state, people are in a pathetic conditions. Most of the truck drivers, the maximum truck drivers that we have, are from Mewat. The rate of illiteracy is very high. Women are not allowed to go to the school and do the proper schooling. The situation of male literacy is also not very prominent. There is a complete sense of ignorance. People don't know how to do, what to do. And there is an inherent history of Mewat. They were the warriors. They fought against the Mughals. And Mughals didn't take care of them. They thought that they are the warriors, they are the looters, they are the nefarious people, they are not the good people, so they were always sidelined by the Mughals. Then came the British. They were the real freedom fighters. You can find many villages in Mewat where in one mound 30-35 men were buried because they were the freedom fighters. In 1857 and also in the later phase of Indian freedom movement, if the Mewat is being properly studied, explored, if the historians are taking interest into it, then you will realize the role of Mewat in the freedom struggles. There are many people in Mewat who often call me and say, Misra Sahab, बहुत सारी चीजें खत्म हो रही है, आप उनके बारे में कुछ कर लो, गीता मैम कुछ कर ले, नहीं तो सारे चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर आप क्या करोगे। एंड बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस वी डू व्हाट एवर मैक्सिमम वी कैन डू इन दैट मेवात। रीड इंडिया अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ डॉक्टर गीता मल्होत्रा इंटर्ड into that locality where women were not even allowed to talk with the women. The every person outsider was kind of alien for them. They were not allowed, even the male were not allowed to have, you know, proper interactions with them. And with this situation, Dr. Gita Malhotra with her team went there, and they have two things to convince them. Culture matters, number one, and understand that, respect that nativity, the native cultures. With these two things, they motivated the people. They said, we are not outsiders. They ate together. They talked together. They could somehow manage to convince them that we are not alien. We are an insiders. We have come here with the message to improve your lifestyle, the way you want to improve yourself. And that was the power of Dr. Gita Malhotra and the entire team of Reed India and the Reed Global. They changed the world. How do they change the world? That is also a very interesting, Dr. Gita ji will tell you. But I must tell you, after 1 year and so, they happily agreed to donate the land, and they themselves constructed the library. Reed India paid the cost of the library, not the land. And some of them also contributed significantly, nominal, but that contribution was significant. And then the library was made, women started reading. Now the women which were motivated by Read India, they are the representatives of the Gram Panchayat, and they are powerful women. And the new beginning was made, and prevalence of Read India can easily be found in the locality of Mewat. Mewat is now divided into two districts. Initially, it was a Mewat district. That was Firozpur, Jhirka, Nuh, Tavru, Punahana, Hathin, and Nagina. Now, the Hathin part is in Palwal district and remaining is in the Mewat district. So before I go to invite Dr. Geeta Malhotra ji to talk about her experience and the experience of Read India, her innovations and everything that she did. Now, without any delay, I would request Dr. Geeta Malhotra, the country director of Read India, the visionary, the leader, the master. She is a proper leader who works 24/7. And this is, remember one thing, I am not exaggerating. I have been feeling her commitment. I am the witness from last 12 years, what she has been doing and how she has been motivating, energizing, emotionally evaporating the people who have been working with her. So, Geeta ji, aapka bahut bahut swagat hai. Humne chaha tha ki log jo hai, wo dekh le ki aap kaise karti hai. Aapka presence, I have seen people is teaching their vision, decision and future. I have seen women reading and writing. I have seen women, you know, using the library. I have seen people using the computer. I have seen women reading. So, you know, this is a new discovery that you have created. Please.
1: Thank you. Thank you, Dr. Mishra, for such a elaborate description, which I don't need at all. But I'm so thankful to you for giving this gesture to me. You know that I am very simple, very introvert person, but I do believe in doing. I do believe in action. That's what you have narrated. Thank you so much. मेरा जो सोच है आप मुझे अपने 5 मिनट की एक्सप्लेनेशन में 2012 में ले गए मुझे 2012 में जब मैं रीड ग्लोबल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और रीड ग्लोबल के साथ बात कर रही थी 2012-14 कुछ ऐसे ही है मुझे पक्का याद नहीं है बट हाँ 7 साल पहले की बात है मुझसे टीना शाबिका हमारी उस समय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी शी वॉज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दैट टाइम एंड द ईयर शी ज्वाइंट शी केम टू चाइसा विलेज टू डू द स्टोन लिंग सेरेमनी ऑफ द कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर शी केम इन मे इट वॉज वेरी हॉट एंड आई टुक हर टू चाइसा फॉर स्टोन लिंग सेरेमनी But before stone laying ceremony, she asked me that Geeta, one of my very close friend settled in Singapore would like to dedicate one of the library in her mother's name. Her mother was live. She's live now also. But she said, "Ki I would like to build a community library, but let me know the area, the geography, who need the most." That time back home, I was interacting with Mewat people, the stakeholders there. And Asif Ali, who was the sarpanch that time, came to my house in Gurgaon and said that Geeta ji, we need the most. Hamari community ko bahut zarurat hai. Agar aap wahan aake study karein, जो डॉक्टर मिश्रा ने स्टडी करी तो आपको पता चलेगा कि कितनी जरूरत है तो आई वॉज कन्विंस्ड आई विजिटेड द एरिया आई सैट विद हिम आई सैट विद अदर मेवाती स्टेक होल्डर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज हाउस द लैंड आई वॉज द ओनली वुमेन ऑल वर मैन बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट that I have to come back again in this area. I have to work in that area. Mujhe wahi kaam karna hai. Mujhe unhi logon ke saath kaam karna hai. Because one thing which I experienced, because I am a great observer for culture and attitude of the people, they gave me lot of respect. Lot of respect. First time, the woman came in one room, they gathered. They did not come out where I was sitting with the stakeholders. They told me later on that the women are waiting inside the room. When I went inside, there were more than 100 women sitting in just in each other's on each other's lap, and they welcomed me. They said, "Hum aapko dil se swagat karte hain aur aapka bahut bahut welcome hai. Aap hamare liye, hamare bachiyon ke liye, hamare bachchon ke liye, hamare samuday ke liye kuch kariye." That changed my mind 100%. I said, whatever challenging it would be, but I have selected a community. Next very day, I called my executive director in US and said, I have found a community where I would like to set up a community library and resource center. Then I started working there. And that Singapore friend of my executive director committed that she will come on the inauguration of the building, which was great, great emotional attachment with the building, which I'm going to show you the inauguration also. Then we did the stone laying ceremony. Asif Ali had a house on the main road of Hathin block in Chansa village. He said, ma'am, the whole land, whole building is for you. You decide what you want to take. Then I said, okay, main road part I will not take because the children will come. It will be risky for them to cross the road and come through the main road because it was part of the highway. I said, give me the backyard. And he divided completely half of his land. उन्होंने वो प्रोग्राम देख भी रहे होंगे जरूरी, मैंने उनको लिंक भेजा है. एंड ही वो इतने जेनरस थे, मैं ये एक्नॉलेजमेंट हिंदी में बोलना चाह रही हूँ उनके लिए. वो इतने जेनरस थे, उन्होंने अपने प्लॉट की जो लंबाई थी उसको बिल्कुल आधा करके उसमें दीवार बना दी और बोला, ये पीछे वाला लैंड आपका, आप जो मर्जी करिए, आप बिल्डिंग आप सेंटर बनाइए, मेरी 100% सपोर्ट आपके साथ है. तो दैट वाज द कमिटमेंट ही गेव मी एंड आई वाज सो कॉन्फिडेंट एंड वी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन एरिया. मैं मिस्टर आर एस दलाल का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी इस फोरम पे, क्योंकि ही वॉज द वन हु एनकरेज्ड. ही इज द रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर ऑफ हरियाणा. व्हेन बिफोर द बिल्डिंग वॉज यू नो इनॉग्रेटेड, आई वेंट टू हिम एंड आई सेड, सर आपके एरिया में हमने एक कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर बनाया है और मैं आपको इन्वाइट करने आई हूँ कि आप उस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करिए. एंड ही वेलकम दिस अपॉर्चुनिटी और उन्होंने बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया और दैट वॉज द जर्नी वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड दैट वॉज ग्रेट ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड फॉर अस बिकॉज एट द बैक ऑफ अस उनका हाथ था, उनका आशीर्वाद था, उनकी सपोर्ट थी और आज तक हर रोज जो एक मैसेज वो नहीं भेज लेते हमें एनकरेजमेंट का, वो आराम से नहीं बैठते हैं. तो मैं उनकी एसोसिएशन को यहाँ पे एक्नॉलेज करना चाहती हूँ. और उन्होंने खाली हथीन ब्लॉक में हमारे सेंटर को इनॉग्रेट नहीं किया, हरियाणा में हमने जितने भी सेंटर बनाए हैं उन्होंने उनको इनॉग्रेट किया है, क्योंकि वो दिल से बोलते हैं, दिल से वो रीड को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ग्रास रूट्स की के साथ जुड़ी हुई एक संस्था है जो काम करती है और लोगों को साथ लेके चलती है, लोगों के दिलों तक पहुंचती है अपने कार्यक्रम से, ये वो बहुत अच्छे से जान गए हैं. तो डॉक्टर मिश्रा, अलोंग विद यू आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज Mr. R. S. Dalal on this platform because he supported us a lot and till today he is supporting us. So aapne launch
0: mein he's a bubbling star, he's a bubbling star and energized, you know, he's an energizer. his emotional ichha. He makes you work and work for the community. That is the power that we have learned from him. He has donated his entire haveli for the Eid activities. You know.
1: तो झज्जर उन्होंने कैसे हमें अपनी पूरी हवेली दे दी कि गीता जी एक सेक्टर मेरी कम्युनिटी के लिए भी बना दीजिए. तो दैट इज जेस्टर ही एक्सटेंडेड टू अस एंड टिल नाउ ही इज वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग दैट झज्जर विलेज, मेहंदीपुर विलेज, दबोदा विलेज अ ब्यूटिफुल विलेज वेयर वन कैन गो एंड इवन यू नो स्पेंड डेज टुगेदर. The community is so, you know, welcoming, and the plants, the gardens he has created there, it's worth visiting that place also. So, main yahan pe ye bhi kehna chahungi ki Read India ke jitne bhi center hain, wo community tourism ko bhi support kar, because home stays are welcomed there by the communities, and we always make it a point that people come there and होम स्टे तो है ही है, पर जो खाना वो लोग हमें परोसते हैं, जो खाना हमें वो खिलाते हैं घर में बिठा के, घर में फ्रेश खाना कुक करके, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी वेलकमिंग आई शुड से दैट. और आसिफ अली जी के घर में तो मैंने कम से कम 100 बार ही खाना खाया होगा. उनके घर में उनकी वाइफ को मैं नहीं मिल पाती थी, पर उनके ड्राइंग रूम में बैठ के खाना जरूर खाती थी, इतना तो मैं कह सकती. और मैं वेजिटेरियन थी, और उनके घर में तो नॉन वेज इट्स अ कल्चर देयर, आई शुड से दैट इट्स अ पार्ट ऑफ द कल्चर. बट व्हेन आई यूज्ड टू गो विद माय टीम, स्मिता राय, नाहिद जुबेर एंड अदर्स, ही मेड इट अ पॉइंट कि दो डिशेस तो वेजिटेरियन होनी ही है, क्योंकि स्मिता और मैं दोनों ही वेजिटेरियन थे. तो ये हमारी बिगनिंग थी मेवात में चाइसा के सेंटर के साथ. और अभी डॉक्टर मिश्रा, यू कैन से समथिंग अबाउट द बेसलाइन.
0: जब आपने मुझे बोला कि डॉक्टर मिश्रा हमें मेवात में काम करना है, तो मेरी एक आईएएस फ्रेंड हुआ करती थी डॉक्टर निरुपमा, अनुपमा. तो जो डॉक्टर अनुपमा थी, शी वाज एन आईएएस ऑफिसर और शी वाज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ मेवात डेवलपमेंट एजेंसी, व्हाट यू कॉल इट, एमडीए. और उस समय बाद में जो भारत के उपराष्ट्रपति बने अंसारी साहब, उनकी पत्नी भी मेवात में कुछ काम करना चाह रही थी. सी ऑल्सो टोल्ड मी डॉक्टर मिश्रा, लेट अस गो टू मेवात एंड डू समथिंग देयर. मैं दोनों के साथ मेवात गया और मैं आपको और अपने दर्शकों को बहुत ही विनम्रता और निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक कहना चाहता हूं कि मुझे हिम्मत नहीं हुआ मेवात में काम करने का. लेकिन जब डॉक्टर गीता जी हमको बोली कि डॉक्टर मिश्रा हमें मेवात में काम करना है, तो पता नहीं मुझे कहाँ से एनर्जी मिली और मैंने कहा कि मैम लेट अस वर्क देयर. और हम वहां गए. जब हम वहां गए तो मैं एक महिला से मिला और वो महिला अनाज को हिला रही थी. उस महिला के साथ उसके 17 बच्चे थे, जो फोटोग्राफ मेरे पास है. तो और And she was expecting one more baby. उसके बाद मैंने देखा वहां का सिचुएशन, वहां की गंदगी देखी, वहां का बहुत सारे चीजों को हमने देखा. Then I realized कि ये एरिया है जहां पर काम करने की जरूरत है. हमने उनके नमाज में भाग लिया, उनसे दोस्ती की और हम वहां पे काम करने लगे. शुरू में थोड़ा सा हुआ, लेकिन बाद में वो हमें इतने प्यार करने लगे, खास करके अशरफ जी, आसिफ जी और सारे लोग, पूरे गांव के लोग, महिलाओं को, वहां के लोगों को, वहां के बच्चों को, स्कूल के शिक्षकों को, उनको लगा कि ये लोग अपने लोग हैं. और हमने उनकी सारी जानकारी ली. वहां पे हर एक घर में 2-4 भैंस है और एक जो दूध वाला होता है जिसको दूधिया कहते हैं, उनसे भी उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था. उनके दूध को बहुत ही थ्रो अवे प्राइसेस में खरीदते थे. हमने सारा रिपोर्ट इसमें क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है. उसके बाद जो गीता जी ने कहा कि एक प्रपोजल आया, और वो प्रपोजल 2011 में ही आ गया था मैं, और 12 में वो बन गया था. तो वो प्रपोजल आया और गीता जी वर्क डे एंड नाइट. वो एक विजन ही कह सकता है कि अगर कोई दूसरा कंट्री डायरेक्टर होता तो रोड के साइड का ही जगह ले लेता, लेकिन गीता जी एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि ये इन्होंने कहा कि हमें रोड के साइड का जमीन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? मदर वॉज हिडन इन साइड हर एंड द मदर से लुक, बच्चे एक्सीडेंट में कुछ हो सकता है, बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो पीछे का वहां भी रास्ता है, पक्की रास्ता हो गया है लिया और वहां पे काम शुरू करने लगे। बाद में धीरे धीरे लोगों का सपोर्ट मिला और लोगों ने यह महसूस किया कि रीड जो है ये रीड कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, कोई धर्मांतरण की संस्था नहीं है, कोई पॉकेट की संस्था नहीं है, यह कमिटमेंट की संस्था है। इस संस्था में ज्यादातर महिलाएं हैं जो बहुत मातृस्नेह के भाव से काम करना चाहती हैं। और वैसा ही जिस तरह से ये कहने की तो जरूरत है कि गीता जी ने बहुत ही मातृभाव से अपनत्व को लगाते हुए वहां पर काम करना शुरू किया, लेकिन उनका जो रिस्पॉन्स था उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। और उससे हमें ये लगता है कि इफ यू वर्क ऑनेस्टली नो मैटर, आप दुनिया के किसी भाग में काम करें, लोग आपको उसी समर्पण से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको गिव बैक आपको मिलेगा, आपको रिटर्न मिलेगा। वो जो कंसेप्ट था वो गजब कंसेप्ट था और वो आपने देखा।
1: ओवर टू स्मिता। थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर मिश्रा। As rightly said, it's a very, very rich culture in this community, very, very warm, welcoming community. As shared in the PPT, there are many, many programs that we have done in partnership with this community. We've done the setting up of community library and resource center. There are many, many women who've been trained on livelihood skills. Then we've had trainings on as advanced computer skilling. This was done through Adobe IT skilling program for youth. Then since past 4 or 5 years, we have been doing Skills to Succeed program in this area and skilling women on enhancing their livelihood skills. We are having programs for mother and girl child literacy in this community. So each, have one mother and her girl child get coming to the center and walking towards a more literate future. So this is beautiful Mewat for us. As far as culture is concerned, they have very beautiful crafts such as they make changeris, the baskets made out of moonj grass. This grass is eco-friendly and it helps in keeping. They normally use it to store food. Like, we have covered more than 12 villages as Kamlesh is rightly.
2: Thank you, Smita. जैसा कि स्मिता ने कहा, लिटरेसी से लेके बच्चों की पढ़ाई से लेके महिलाओं की पढ़ाई तक हमने काम किया, महिलाओं को हमने सक्षम बनाया, उनकी जो कल्चरल स्किल्स थी उसको एनहांस किया। और कल्चरल स्किल्स को एनहांस करने के लिए अब रीड तो बहुत छोटी सी संस्था है, तो हमने सृष्टि स्कूल ऑफ डिजाइन से ग्रेजुएट्स मंगवाए जो डिजाइनिंग ग्रेजुएट्स थे और उन्होंने मेवात में लाइब्रेरी में रह के रात को वहीं बिस्तर बिछा के सोना और महिलाओं के साथ चर्चा करनी और महिलाओं के जो हुनर था, जो छिपा हुआ हुनर था, उसको उभारा और उन्होंने इतने सुंदर प्रोडक्ट्स बनाए जो दरी था और तापर से उन्होंने बास्केट्स और बहुत सारे हमारे गिफ्ट आइटम्स बनाए जो हमने कॉर्पोरेट्स को गिफ्ट दिए, बिकॉज हमें फंड रेज भी करना था और मेवात के लिए फंडिंग लेना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। पर मैं उन डोनर्स का भी शुक्रगुजार करती हूँ जिन्होंने हमारे कॉन्ट्रीब्यूशंस को, हमारे कमिटमेंट को रिकग्नाइज किया, और सीरीज ऑफ डोनर्स आए जिन्होंने हमें अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं मेवात में काम करने के लिए। तो ये एक मैं ये भी शेयर करना चाहूंगी, बिकॉज वर्क स्पीक्स वॉल्यूम। जब हमने काम किया, डोनर्स ने अप्रिशिएट किया और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर एक साल का एमओयू साइन होता है और कुछ ऐसे डोनर्स हैं जो हमारे साथ पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं उस एरिया में. बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं मेवात में. मैं सबका बहुत ही मतलब कि आई नो देम वेरी वेल. दे आर डूइंग एंड आई एम अप्रिशिएबल ऑफ देयर वर्क ऑल्सो. बट एट द सेम टाइम गोइंग टू द ग्रास रूट्स, कैचिंग देयर कल्चर, अंडरस्टैंडिंग देयर एटीट्यूड्स एंड ब्रिंगिंग वैल्यू टू देयर लाइफ्स वॉज वॉट रीड हैज डन. दीज आर द 3 मेजर अचीवमेंट्स वी हैव डन इन दिस एरिया. Dr. Mishra, would you like to add something here, what I have said?
0: Without any political motive, you know, yes. Reed has gone there as an organization to work without any political motivation, without any political inclination, without any interest. The only interest was to see that people are raising their social economic status, their livelihood, they are well-respected people, well-educated people, well-cultured people, their culture globally is restored. So these the women are well-respected. There is a continuous harmony, you know, visible harmony between men and women, between husband and wife. So these are the things that are clearly visible, tangibly see. People can go and view. You know, that is the USP of working Reed in the Mewat, you know, area. That is really very, very great.
2: Memory goes back when we saw power to hai nahi, to computer kaise seekhenge bachche?
0: Yes.
2: For power, how they will read the books. Then we requested Bill and Melinda Gates Foundation. They gave us a special grant to put solar panels in the areas where we are facing problems with regard to the power. So you could see in the film also, we put solar panels on top of the building so that 24/7 there is a power in the library and there is no power cuts and the children can come, enjoy it there, talk to each other, learn from each other, study the books, and 50% of the books are their own language. Because we did not want to put the book they cannot touch, they cannot read.
3: बिगावली की रहने वाली हूँ और ताराक्षर में मैं जुड़ी हुई हूँ. मेरे को पढ़ने लिखने में बड़ा मन लग रहा है, अच्छा लगता है. ऐसा है कि हमारे पास में ताराक्षर का अध्यक्ष लेके आए थे सुनील कुमार, तो इन्होंने कहा कि आप पढ़ाई कर लो. हमने कहा ऐसे बुढ़ापे में क्या कौन पढ़ावेगो, कौन पढ़ पावेगो. उसने कहा नहीं जी, कोशिश करके देखो एक बार. तो हमने कोशिश करी तो हमको अच्छा लग रहा है पढ़ने में लिखने में, हमारा मन भी लग रहा है. फिर वो हम तो हर जगह पे कर लेंगे, कोई हिसाब है, किताब है, घर का धंधा है, घर के बच्चे है, घर की पढ़ाई है, काम है, कोई भी सब में काम आती है पढ़ाई मतलब. ठीक है क्या ना, हर चीज में आती है. अब छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, उनको भी बैठा के पढ़ा सकते हैं. बच्चे ये है हर को इसे ही पढ़ो, ये पढ़ो, ये करो, वो करो.
4: पहले भैया हमने इसलिए पढ़ा, मान पढ़ते तो हमने आवाज कही भैया हम पढ़ लिख जाएंगे तो हम बैंक में भी काम करते हैं, चाहे घर पे करते हैं, आदमी का नाम भी लिखने सीख जाते हैं, अपनों भी सीख जाते हैं. बैंक में जाते अपने पैसा निकाले तो अपने हिसाब करे आते हैं बैंक में जाके. इसीलिए हम भैया के पास पढ़े थे, यही बारे हम अनपढ़ते भैया पढ़ा देंगे तब इससे सीख जाएंगे.
3: मेरा नाम गजनान और हमारे ये भैया आए पढ़ाने के सुखवीर सिंह, और इनने पढ़ाई पूछी कि तुम पढ़ सको. एक बार आए, दो बार आए, तीसरा के हम बोले अब तो हम पढ़ेंगे. जब ये भैया पढ़ाने लगे यहाँ स्कूल यहाँ खोल दियो तो आगे पढ़ाने.
5: आपको क्या फायदा हुआ इससे?
3: अब हम सीखने लग गए, जो भी हम पे आ गए देख देख के चैट में कुछ पहले हम पे आ गई ना हो कुछ तो हम नाम भी लिख लें. अब हम अपने काम कर ही ले जाइए भैया बताओ.
6: सर्वे और पढ़ना चाहते अपने बच्चे ने पढ़ा ले, घर का काम कर ले, कोई काम काज आ जाए उसे कर ले, और सेंटर आ जाए कोई काम आ जाए. इसलिए मेरा सीख लूंगी कुछ
3: तो कुछ काम कर बैठूंगी मैं, परेशान आदमी आंगनबाड़ी लग जाए या कुछ सिलाई में लग जाए, कुछ भी काम जो तुम खिलाओगे वो हम करने तो जाए।
7: पढ़ाने आवे हम लोग हम ना पढ़े पर दो बार आए तीन बार आए हम बोले हम पढ़ेंगे, हमको पहले कुछ नहीं आवे हम नाम भी लिख लें और जो काम दे पूरा काम कर ले।
8: हम पता एन आर भी ना आवे और तो एन आर भी सीख लें। अरे बेचारा आया पढ़ने सुखवीर कह लगो न भाई लाली पढ़ लियो माता जी पढ़ लियो, हम बोले हम ना पढ़े हम अब बुढ़ाते में कहा पढ़ेंगे। तो बेचार कई बार आयो फिर हम पढ़ने लग गए कई सीखो हमने पढ़ना, हम पे एन आर भी ना आवे अब या भी सीख गए नाम भी सीख गए अपनो।
9: मेरा नाम अंता है, आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं ताराक्षर में पढ़ती हूँ। पहले इन लोगों ने आकर हमारे गांव में सर्विस करी थी, हमने जानी क्यों कर रहे हैं, और जब हमारे सब आई थी तो पढ़ाई करने के लिए, पहले हम पढ़ाई नहीं जानते थे और अब इससे पढ़ते नहीं पढ़ना सीखे हैं और इससे पढ़ने से हमें बहुत कुछ आने लगा है। और हमारे गाँव के अंदर तीन ताराक्षर एक ज्ञान चौपाली खुली हुई है और हम बचत पढ़ते हैं सभी और उसके बारे में भी जानते हैं, पहले जानते नहीं है।
10: मेरा नाम भगवती है, मैं स्वामी के रहने वाली, मुंह पे कुछ भी नहीं आता है, मैं अक्षर समाज जान गई नाम नाम हाँ अक्षर जान गई मैं अक्षर समझ गई नाम लिख लेती हूँ।
11: मेरा नाम रजनी है, मैं स्वामी के रहने वाली हूँ, मैं पहले से कुछ नहीं जानती थी और यहाँ पे बैठ के बहुत कुछ पढ़ चुकी हूँ और बहुत कुछ जान सकती हूँ।
12: मेरा नाम आशा है, मैं स्वामी के योगे में रहने वाली हूँ, मुझे तारा अक्षर से जुड़कर बहुत अच्छा लगा। हमने हम पर पहले अपने साइन भी करने नहीं आते थे, हम पर साइन कर सकते हैं, अक्षरन की पहचान कर सकते हैं।
13: मेरा नाम सरस्वती है, गाँव मोहल्ले में तारा अक्षर का स्कूल खुला है, ये लोग आए तो कहने लगे हम पढ़ाएंगे, हमें ये लोगों की बात समझ में आई और पढ़ाई लिखना शुरू कर दिया। ये इनसे पढ़ के हमें बहुत नॉलेज मिली और बहुत ही ज्ञान प्राप्त हुआ, हम कुछ भी नहीं जानते थे और ये गांव के अंदर जो समूह खुली रहती है उनके बारे में भी कुछ नहीं जानते, बैंक में जाते थे पैसे भरना निकालना कुछ नहीं जानते थे, अब हम खूब पैसे भी निकाल लेते हैं फार्म वार्म भर देते हैं। पढ़ाई से ये फायदा है कि अपने बच्चे जहाँ भी कहीं पढ़ने जाते पहले कुछ नहीं जानते, उसकी किताब कॉपी वगैरह देख सकते हैं क्या लिखा है, कहीं हम भी काम करते हैं तो हमारे लिए पैसे वैसे मिलते हैं तो हमें पता नहीं लगता था कितने दे रहे हैं कितने नहीं दे रहे हैं, तो अब हम उसे पढ़ के बता सकते हैं।
14: अपना नाम कांति,
15: कौन से गाँव से? यहाँ
14: छाए से।
15: तो आपको पहले और अब में क्या फर्क नजर आ रहा
14: है? इतना फर्क है, पहले 100-200 रुपया का हिसाब लगा सके, अब हम 500 रुपए तक हिसाब लगा लें। पढ़ाई इतने जब थोड़ी बहुत पढ़े अब थोड़ी बहुत अक्षर मिला के मात्रा मिला के सब कुछ अब हम कर लें, मात्रा लगा दें डंडा लगा दें।
16: मेरा नाम मीना है, छाए से रहने वाली हूँ, पहले कुछ ना बनाओ अब हम लिखनो पढ़ना थोड़ा बहुत आने लगो हिसाब जोड़, जैसे 100-200 रुपया आए 500 है उन्हें भी जोड़ सके।
17: मेरा नाम बबीता जी है, छाए से रहने वाली हूँ, पहले कुछ नहीं आता था अब बहुत कुछ सीख गई, बहुत अच्छा लगा पढ़े के, इन्होंने नीतू जी ने बहुत अच्छा सिखाया हमें लोग किसी के बात अच्छा पढ़ाने खनवाए वो।
18: हम तारा सर में ट्रेनिंग ली थी हमने, जो कि मतलब अनपढ़ लोगों को पढ़ाना जन अक्षर होते हैं, अब वो पढ़ लिख थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जान गई है और अपना नाम लिखना सीख गई है, अपने गाँव का नाम कहीं भी आ जा सकती है, हिसाब किताब लगा लेती है। इस प्रोग्राम से जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है इनको भी और हमको भी।
19: तो सबसे पहले हमने औरतों को मोटिवेट किया पढ़ने के क्या क्या फायदे होते हैं, उनको मैंने फिर क्लास में बुलाया, बिगाड़ी में मेरी ड्यूटी है वहाँ पे, मैं 3 बैच चलाता हूँ, वहाँ पर 10-10 महिला आती है, प्रत्येक बैच में 10 महिला होती है, बहुत ही अच्छी तरह के वो पढ़ रही है और उनसे मैं बातें करता हूँ, अगर किसी कोई प्रॉब्लम होती है मैं उनके घर जा करके, अगर कोई मना करता है तो उनके घर जा करके परिवार वालों से मिलता हूँ और उनसे समझाता हूँ पढ़ाई के फायदे क्या होते हैं, तो वो भी क्लास में आ जाती है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, हम तो बहुत खुश हैं इसमें आकर।
20: ताराक्षर जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा कार्यक्रम, क्योंकि हम इसमें जो निरक्षर महिलाएं हैं उसको साक्षर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम अभी है अम्बेवात इलाके के 3 गाँव में चला हुआ है, छायशा बिघावली और स्वामी का, इसमें लगभग 90-100 महिलाएं इसका लाभ उठा रही है इस कार्यक्रम का, और ये तीनों गाँवों में कार्यक्रम चल रहा है, प्रत्येक गाँव में 3 बैचेस चलते हैं, इसे कुल मिला के 9 बैचेस चलते हैं और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। पहले जो महिलाएं बोल नहीं पाती थी किसी के सामने, आज अब वो महिलाएं बोलने लगी हैं, और अपने आप पे आत्मनिर्भर हो गई हैं और वो किसी के सामने भी खुलकर उनको जवाब देने लगी, अच्छे से बोलने लगी हैं। और वो पहले उनपे कुछ भी नहीं, लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था, अब वो क्या नाम है पढ़ने लगी हैं, लिखने लगी हैं, अपना खुद का नाम लिख सकती है, पति का नाम, अपने बच्चे का नाम और अखबार भी पढ़ने लगी हैं। इस कार्यक्रम से महिलाएं बहुत ज्यादा खुश हैं और हम सभी खुश हैं कि ये कार्यक्रम हमारे इस पिछड़े इलाके मेवात में चलाया जा रहा है।
1: मैं पूरे अपने गांव की औरतों से, बड़े बूढ़ों से ये एक मैसेज देना चाहता हूं, जो भी ये स्कीम है, जो भी संस्थाएं यहां आ रही हैं, वो हमारे गांव के विकास के लिए, हमारे गांव के हित में, हमारे गांव को अच्छा समझ के इस गांव में वो काम कर रही हैं। इसमें हर एक जन जन को इसमें जुड़ना चाहिए और इनका सहयोग करना चाहिए। मैं गीता मल्होत्रा जी का और मैडम मई जी का तहदिल से, अपने गांव की तरफ से, अपने तीनों चारों गांव की तरफ से बहुत बहुत दिल से, तहदिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उनका एहसान मंद हूं कि इन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमारे गांव और हमारे अड़ोस पड़ोस को चुना।

0: Wonderful, wonderful. So much to be shown. We have so much of content to be shown to the audience, but the time is so short that we have to move further also. इसके अलावा आप कमेंट्स में भी पढ़ रहे हैं कि मेरी टीम लिखती जा रही है कि हमने क्या क्या और काम किए. तारा अक्षर के अलावा हमने स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एक कार्यक्रम किया यहाँ पे मैजिक बस के साथ मिलके, क्योंकि हमें उनके एटीट्यूड को बदलना था कि हमें लाइफ स्किल्स सिखाने थे. अगर हम लाइफ स्किल्स की बात करें तो वो डायरेक्टली ट्रेनिंग लेने नहीं आते थे. हमने स्पोर्ट्स के माध्यम से यूथ को लाइफ स्किल्स सिखाए कि कैसे एक लड़की लड़के की इज्जत करती है और लड़का लड़के की इज्जत करता है, कैसे फैमिली में हम एक एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं. तो ये हमने स्पोर्ट्स के माध्यम से अपनी कम्युनिटी को सिखाया था. और इन सब कार्यक्रम को बंद करने का दिल नहीं करता है क्योंकि बहुत बहुत जरूरत है. मैं कहती हूँ जितनी भी पॉपुलेशन है मेवात की, उन सबको इन सब प्रोग्राम्स की बहुत बहुत जरूरत है. इसके आगे की जर्नी में हमने औरतों को स्पिनिंग सिखाई, धागा लेके कैसे धागा बुनते हैं ये उनको सिखाया, चरखा कैसे चलाते हैं, उस धागे से कपड़ा कैसे बनता है, उस कपड़े की सिलाई कैसे करते हैं, ये पूरी जर्नी हमने कंप्लीट करी. यहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे करते हैं, यही सोच के सब कुछ किया कि कभी औरत को काम करने की जरूरत पड़े तो वो अपने हुनर को निखार सके और अपने हुनर को पहचान सके और अपने बुरे टाइम पे इस हुनर को यूज करके अपनी आमदनी को इंक्रीज कर सके. यही हमारा सोच थी और कंट्रीब्यूशन था. अभी हम छायसा से आगे तारू में जाएंगे. तारू में हमने एक और सेंटर लॉन्च किया था तो हमें Amazon ने सपोर्ट किया था. आई वुड लाइक टू शो दैट फिल्म डॉक्टर मिश्रा, रीड इन तारो.
1: इस फिल्म के में जो अभी हमने दिखाया उसके बारे में एक चीज मैं गीता मैम ये कहना चाह रहा हूं कि जो परिवर्तन आपने देखा वो तो हुआ. सबसे बड़ी बात है कि जो समाज को ये भी, जिस महिलाओं को ये भी नहीं मालूम था कि हम अपने पैसे को कैसे रखें, क्या करें, कहाँ रखें, उनको न्यूमरेसी लिटरेसी का ज्ञान हो गया. इतना ही नहीं, आपने देखा होगा उनके कपड़े साफ हो गए, उनमें हाइजीन का सेंस आया, उनमें हेल्थ और क्लीनिनेस के प्रति एक बहुत बड़ी जवाबदेही का है ना निर्माण हुआ. तो ये जो छोटे छोटे विजिबल चेंज है, वो कहते हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये चेंज अगर आप डे वन से उस दिन तक को देखें तो महिलाओं में जो स्वच्छता, निर्मलता, लिटरेसी न्यूमरेसी, काउंटिंग करना, ये सब चीज में, और एकाएक सारे महिलाओं के चेहरे पे एक गजब ही नैसर्गिक हंसी, उल्लास का भाव था जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है.
2: Partnered with Read India in 2015 to set up Amazon Care Community Outreach Centers in Taulu in the villages Chamwar, Dingaveri and Gujarat. Through these centers, we are covering 5 villages, including Ihalgarh and Sheikhpura. The center focuses on education, women empowerment and livelihood, skill development and entrepreneurship, and health awareness and advocacy. We do focus on education by designing programs on improving reading and writing habits of children, starting in government schools, training Anganwadi teachers on teaching small children through playful activities and the same activities are repeated at the Reed Center. We have a library with more than 1,000 books where children, youth and other community members come and have access to books for reading and reference. We conduct classes to enable youth for competitive examination and do career counseling. Solar panels for regular and uninterrupted supply of power. We have special workshops with women on women empowerment and provide them a safe space to learn, teaching and feeding to start with and enable them to learn how they can start their small enterprise and also collectively join the group for working together to reach center. We have also designed the programs to make them learn financial and adult literacy. Women have started moving out from their villages to other REIT centers and also to other organizations to learn from other women how they are involved in these programs and enhance their networks. Job-oriented workshops are organized for youth, girls and boys, to focus on their future careers and learn specific skills for suitable jobs. Farmers' meetings are conducted on a regular basis with planned visits to other parts of Haryana, including meeting with government officials so that they themselves realize where they are and where they have to reach in relation to profit making, agribusiness they can do. Health intervention is the important component. We do regular workshops on best practices and also partner with other organizations to organize health camps. Audio workshops are being organized at the center to enable youth with one voice modulation, and exposure visits are done at community radio stations. Various visuals are displayed at the centers, Anganwaris and the villages to constantly remind the villagers about best practices. Women and men are understanding the gaps in their lives and uniting together for the progress of their villages, and also focusing on their children's growth by creating positive environment at the REIT centers and at their homes. REIT India and Amazon Care work closely with local government, completing the collective efforts. Within 1 year, this partnership was extended to another village, Tamaspur in Sonipat. The center is repeating the same activities through effective community mobilization, effective involvement of the school teachers and other stakeholders.
3: एक दिन ज्योति ने बताया कि यहाँ सिलाई सेंटर गांव में आया हुआ है जो रीड इंडिया एंड अमेजोन मिलकर चला रहे हैं, तो मैंने आके देखा कि यहाँ सिलाई हो रही है और सिलाई का काम ज्योति सिखाएगी। तब मैंने ज्योति से बात की कि मुझे भी सिलाई सीखनी है। तब ज्योति ने सिलाई सिखाई मुझे, तो मैंने 3 महीने तक सीखी और फिर मैंने देखा कि यहाँ पे कार्यशाला भी होती है, जो फार्मर भी की भी मीटिंग्स हुई, हेल्थ वर्कशॉप भी हुए और पढ़ाई के बारे में बताया, आगे कैसे बढ़ते हैं, सरकारी नौकरियों के बारे में भी बताया। तब मैंने 10वीं के ओपन पेपर फॉर्म भरे और अपनी पढ़ाई चालू की फिर से, और फिर आगे मैं पढ़ना चाहती हूँ।
4: मैंने सिलाई सीखना मुझे बहुत फायदा हुआ और मैंने देखा कि मैं अपने भी कपड़े सिल सकती हूँ और दूसरों के भी, और इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है।
5: मैं रीड अमेजोन सेंटर में लाइब्रेरी कम कंप्यूटर की जॉब कर रहा हूँ। मेरे को इस बात की खुशी है कि मैं यहाँ बच्चों को सिखा पा रहा हूँ और उनके साथ कुछ सीख भी पा रहा हूँ। यहाँ पे रीड की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम कार्यशाला की जाती है, जैसे इस्लामी सर ने कैरियर गाइडेंस के बारे में बताया, उस प्रोग्राम से बच्चों ने कुछ सीखा और साथ में मैंने भी बहुत कुछ सीखा है।
6: रीड इंडिया अमेजोन तरफ से जो सेंटर चल रहा है, इसमें मैं जो छोटे बच्चों का ECD का सेक्शन है वो देती हूँ। यहाँ सेंटर पे नई नई एक्टिविटी होती है, जैसे हेल्थ की भी हुई है या लोगों के बारे में भी होती है, तो उसमें भी क्योंकि मैंने खुद ही बी अगर के बी एड कही हुई है तो उससे मेरे को भी बेनिफिट मिल रहा है कि यहाँ को क्या करती कोई ट्रेन मीटिंग हो रही है तो उसमें मैं भाग ले रही हूँ, तो उससे मेरे को भी कुछ बेनिफिट मिलेगा।
7: मैंने परंतु करने के बाद JBT किया है और सरकारी नौकरी के लिए स्टेट हरियाणा का एक टेस्ट होता है, वो क्लियर करना जरूरी है। वो क्लियर करने के लिए किताबों की आवश्यकता थी। मैंने रीड इंडिया एंड अमेजोन की सामुदायिक लाइब्रेरी है, वहां से मैंने मुबारक सर से संपर्क कर 2 बुक्स प्राप्त की और वहां 2 बुक्स लेकर मैंने उनकी पढ़ाई की और टेस्ट आने पर मैंने टेस्ट दिया, जिससे मेरा पहली बार में टेस्ट क्लियर हो गया।
8: यहाँ पे पहले मैंने सिलाई सीखी थी, उसके बाद मैं कंप्यूटर के फिर बच्चों को सिखाते, जिस तरह से सिखाने में मुझे भी बहुत फायदा हुआ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा है उसे सिखाते सिखाते, बहुत अच्छा है वैसे यहाँ पे सब चीज, क्योंकि यहाँ पे सिलाई सेंटर कंप्यूटर का भी है, लाइब्रेरी भी है, ECD का भी है, यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीजें सुधार की गई है। मैं अकेडमी भी जाती हूँ और रीड एंड राइटिंग का कोर्स चल रहा है, बच्चों को कराती हूँ और इससे इधर मीटिंग होती है, इससे किसानों की मीटिंग होती है, इधर डॉक्टर आते हैं और इधर हमने सिलाई भी सीखी है, इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। मैं रीड इंडिया अमेजोन को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ।
9: रीड इंडिया अमेजोन सेंटर में सिलाई सिखाती हूँ, अब तक मैं 10 लड़कियों को सिलाई सिखा चुकी हूँ, जो कि वो अपना काम आराम से कर लेती है और घर में दिन महीने में 2-4 हजार रुपए भी कमा लेती है, अब उनको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो हर कार्य को अच्छे से कर लेती है।
10: मेरा नाम राम बाबू, आपकी लाभ में पढ़ता हूँ, अब मैं जब छुट्टी हो जाए सेंटर में आता हूँ, बुक पढ़ता हूँ, फिर खिलौना से खेलता हूँ, फिर कंप्यूटर पे बैठ जाता हूँ।
11: पहले ये सिलाई सेंटर यही नहीं था, तो अब इसके आने से हमारी जितनी लड़कियाँ हैं औरत है जो यहाँ पे सब सिलाई सीखने के लिए आ जाती है, इससे काफी सुविधा है क्योंकि हमें बाहर नहीं जाना पड़ता, यही कपड़े सी जाते हैं तो अपना काम हल हो जाता है, पैसे की भी बचत है।

0: ओजेर के पास कुछ इनपुट्स आए थे, उन इनपुट्स के बेसिस पे हमने जब काउंट किया तो स्टेज फियर या फिर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही कॉमन इश्यू निकल के आया था, जिसपे कि सभी लोगों को लगा कि एक सेशन होना चाहिए। तो ये जो सीरीज में हमारा ये सेशन है, नया सेशन है आज, और दिस इज फोकस्ड ऑन स्टेज फियर एंड फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। किसी को पता है ये किसी के साथ होता है, स्टेज फियर या पब्लिक स्पीकिंग का? मतलब किसी के सामने अगर बात करनी है, एक जन या दो जन से ज्यादा अगर लोग हैं और बात करनी है, खड़े होके बात करनी है, किसी को लाइफ में कभी घबराहट हुई है? किसी ने कोशिश करी है स्टेज पे बोलने की, या फिर जब शुरू में स्टेज में क्लास में बोलते थे, स्कूल में करते थे?
1: मेरा नाम फातिमा है। मुझसे बात नहीं होती है, घबराहट होती है सबके सामने बात करने में,
0: तो अभी तो
1: बात
0: आप
1: करनी
0: इतने अच्छे से
1: पड़ती
0: बात कर रहे हो, घबराहट क्यों होती है फातिमा जी?
1: है। स्टेज पे जाकर मुझसे बात नहीं हो पाती है।
0: स्टेज पे जाके बात नहीं हो पाती, ठीक है? अभी हम ये आप मानते हैं कि स्टेज पे जाके बात करने में घबराहट होती है, लेकिन अभी देखो आपको मिला के शायद 51 लोग आपको सुन रहे हैं, 51 people are listening to you। अभी क्यों घबराहट नहीं हो रही है आपको?
1: वो तो रही थी अभी, लेकिन
0: हो
1: अब आपसे
0: रही
1: बात
0: थी?
1: हुई तो कम हो गई।
0: अच्छा, घबराहट हो रही थी, फिर भी हिम्मत करा आपने और आप आगे आई और आपने उसको ओवरकम किया और फिर भी
1: जी
0: अपनी बात कहने की कोशिश करी। तो क्या फरा मैम ने इनकरेज किया आपको? क्या उन्होंने कहा कि यू नो यू कैन टॉक, ऐसा नहीं है कि तुम भी अपनी बात आगे रख सकती हो? तो अगर कोई हमें इनकरेज करे या अगर हम थोड़ा सा उस पर काम करें, तो शायद धीरे धीरे करके हम उस स्टेज फियर या लोगों के सामने बात करने का जो फियर होता है उसको ओवरकम कर सकते हैं। क्या हम सभी ये बात मानते हैं? अगर
1: जी
0: हम
1: मैम,
0: मानते हैं तो हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे।
1: जी मैम, मुझे फराही मैम ने कहा था आपको घबराहट होती है, आप मैम को बोलिए, वो आपको सोल्यूशन बताएंगी।
0: देखिए, सॉल्यूशन किसी के पास नहीं होता, लेकिन टिप्स और टेक्निक्स होती हैं जिसके ऊपर हमें खुद काम करना पड़ेगा। ऐसा कोई गोली नहीं है कि मैं आपको बोलूं आप इसकी दो डोज सुबह ले लीजिएगा, दो डोज शाम को ले लीजिएगा, तो आपका जो पब्लिक स्पीकिंग का फियर है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी टिप्स हैं और आपको खुद पे अपनी मेहनत करना होगा, जिससे कि ये कोशिश करके धीरे धीरे हो सकता है ये फियर कम हो जाए। आप इतने अच्छे से बात करती हैं, आपकी आवाज इतनी अच्छी है, आप जब बात करती हैं तो आपकी आंखों में एक चमक रहती है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको खुल के बात करना चाहिए। और कोई है हमारे साथ जिसको डर लगता
1: जी
0: है स्टेज फियर? कभी अभी नहीं, हो सकता है पहले लगता हो। मुझे बहुत डर लगता था, स्टेज फियर बहुत ज्यादा था एकदम। मैं किसी के सामने तो शायद बिल्कुल ही नहीं बोल पाती थी, स्कूल से ही ऐसी ऐसा फियर था। इवन रीड में आके भी बहुत फियर था, वो तो मैम ने इनकरेज किया लगातार कि नहीं तुम लोग कर सकते हो, यू कैन डू। तो अगर कोई इनकरेज करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है, हम खुद पे काम करते हैं, तो वो काम आसान होता है धीरे धीरे। क्या कोई और कुछ कहना चाहता है? किसी और को ये फियर है या हम ये टॉपिक पे नहीं बात करना चाहते? गुड
1: मैम,
0: आफ्टरनून।
1: आविदा रामपुर कलर से। जी
0: अच्छा आबिदा जी,
1: मैम, जैसे आपने अभी बोला कि सेम यही मेरे साथ होता था कि जब मैंने न्यू न्यू रीड ज्वाइन किया था, उस टाइम में लड़कियों तक से बात नहीं कर पाती थी। बहुत घबराहट फील होती थी कि मैं लड़कियों से अपनी बात समझा पाऊंगी या नहीं। लेकिन जब मैं रीड के साथ लगातार जुड़ी रही, बात करती रही, लाइफ स्किल्स के सेशन लेती रही, तो मेरे अंदर काफी घबराहट दूर हुई। और फिर अकबर सर ने काफी मुझे इंकरेज किया, बताया कि आबिदा आपके अंदर इतनी स्किल्स है और आप क्यों नहीं बताते हो, क्यों नहीं बोलते हो। तो फिर मैंने कोशिश की और आज मैं अच्छे से बात कर पाती हूँ आपसे।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपने कहा आपको ये फीडबैक मिला और आपने उस पर कोशिश करी। अच्छा, आपको ये पता है कि सभी से मैं बात कर रही हूँ कि ये जो स्टेज फियर है या फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है रिसर्च का। और एक स्टडी हुई थी फॉरेन कंट्री में, इंडिया से बाहर ये स्टडी हुई थी, शायद इंडिया में भी हुई हो। ये 75% लोगों में रहता है किसी ना किसी लेवल पे, यानी कि 100 में से 75 लोग ऐसे होंगे। कुछ लोग पैदा होते हैं और उनको कॉन्फिडेंट होता है, वो शुरू से ही बहुत आउटस्पोकन होते हैं, उनको कोई झिझक नहीं होती अपनी बात रखने में, वो एक कैटेगरी है। बट उसके अलावा 75% लोग हैं, अगर 100 लोगों में गिनती करेंगे, उनको किसी ना किसी लेवल पे स्टेज फियर जरूर होता है। और इसका एक साइंटिफिक नाम है, कोई मुझे बता सकता है बिना गूगल करे कि उसका नाम क्या है? किसी को पता है? इस फियर का नाम है ग्लॉसोफोबिया। ग्लॉसो फोबिया, यानी कि ये आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ आपको ही है या सिर्फ गिने चुने लोगों को ही है। इसको एक साइंटिफिक नाम भी दिया गया है, इसका नाम है ग्लॉसोफोबिया। अगर आप सर्च करेंगे तो ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। ये बहुत ही कॉमन एंजाइटी है या फियर है ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। अच्छा, इसमें क्या होता है जब आप स्टेज पे जाते हैं, कोई बता सकता है क्या होता है? अगर आपको स्टेज पे भेज दिया गया है, माइक दे दिया गया है, तो क्या फियर होता है? क्यों आपको लग रहा है कि आपको स्टेज फियर है? क्या ऐसी चीजें होती हैं? हाथ कांपने लगते हैं, सांसें भारी होने लगती हैं, लोगों से आई कांटेक्ट करने में मुश्किल होता है, जो बोलना चाहते हैं वो भूल जाते हैं, ऐसा होता है किसी के साथ?
1: जी मैम, अर्चना बोल रही हूँ
0: हाँ जी,
1: मैम। एक्चुअली वो क्या होता है, पैर एकदम से कांपने लगता है, और हम जो बोल रहे होते हैं ना, तो बस पता नहीं लाइन गैप होने लगता है, उसके वर्ड जो है हम भूलने लगते हैं, पीच का लेवल हाई हो जाता है, और अजीब बहुत ही नर्वस फील होने लगता है।
0: वेरी गुड अर्चना, वेरी गुड, एग्जैक्टली ऐसा।
1: अभी अभी मैं आपको इवन मैं अभी आपको बोल रही हूँ तो मुझे गूज बम्स हो रहे हैं कि मैं, यदि आप सामने रहते तो शायद मैं नहीं इतना भूल पाती।
0: अच्छा, बिल्कुल, ये बिल्कुल यही बात होती है कि जब हम किसी से बात करने जाते हैं तो हमें लगता है कि मुंह सूख रहा है और क्या बोलना चाह रहे हैं ना, जो बोलना चाह रहे थे वो भूल गए हैं हम। अच्छा, बात जो है आधी ही बीच में रह जाती है और हम उस पॉइंट से कहीं और डाइग्रेस हो जाते हैं, ऐसा होता है। फिर हाथ एकदम कांपते हैं, पैर एकदम ठंडे ठंडे होने लगते हैं कि आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है, किसी से आंख मिलाते हुए डर लगता है। अच्छा, भी ऐसा होता है कि ये टीचर ना मुझसे क्वेश्चन ना पूछे, मैं पीछे बैठ के आराम से, मतलब मुझे बस आई कांटेक्ट नहीं करना, जैसे ही आई कांटेक्ट होगा तो टीचर मुझसे क्वेश्चन पूछ लेगी। ये भी एंजाइटी हुई है किसी को? ये भी पार्ट ऑफ ग्लॉसोफोबिया ही है। तो हमें ये स्टेज फियर होता क्यों है, या पब्लिक स्पीकिंग में जो ये फियर होता है हमें क्यों होता है? ज्यादातर अगर मोटे मोटे उसको भागों में बांटा जाए तो हमें ये लगता है कि जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन, जो हमारा फर्स्ट या सेकंड सेशन था लाइफ स्किल्स का, कम्युनिकेशन स्किल, वो हमारी वीक है। यानी कि हम बोलते हुए घबराते हैं, या हमें बोलने में कौन से शब्दों को इस्तेमाल करना है उसमें हम घबराते हैं, हमारी प्रैक्टिस नहीं है बोलने के लिए, तो हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि जो बात हम रखना चाह रहे हैं दूसरे के सामने वो दूसरे के इंटरेस्ट की है, वो दूसरे को, हम ये जजमेंटल होना शुरू कर देते हैं कि क्या पता उसको मेरी बात पसंद नहीं आए, क्या पता वो मुझे जज जज करना शुरू कर दे, और इस चीज से घबरा के हम एंग्शियस हो जाते हैं, और फिर जो है हम शब्द भूलने लगते हैं और हमें लगता है कि शायद जो मैं बोल रहा हूँ या मैं बोल रही हूँ ये दूसरे के सामने मैं बोलने की काबिल नहीं हूँ, सक्षम नहीं हूँ। ये भी हो सकता है कि शुरुआत में या बचपन में हमने कभी कोशिश करी हो और मजाक बना दिया गया हो, हमारा हमारी बात का मजाक बना दिया हो, तो वो दिमाग में ना कहीं सबकॉन्शियस में यहाँ पे पीछे फिट हो जाता है कि अगर मैं बात करूंगा या बात करूंगी लोगों के सामने तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो पुराने बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से भी कभी कभी हमें वो स्टेज फियर पैदा होने लगता है। शुरुआत में हो सकता है ना हो, लेकिन आप कभी स्टेज पे गए अपनी असेंबली में, या अगर आप ट्रेनर हैं, आप ट्रेनिंग करते हुए कुछ ऐसा बैड एक्सपीरियंस हुआ है, या आपको माइक दिया है स्टेज पे कुछ बोलने के लिए और आपके साथ कुछ आप नहीं बोल पाए, तो वो भी हमारा कॉन्फिडेंस और कम कर देता है। ऐसा होता है किसी के साथ या हुआ है किसी के साथ? मुझे लग रहा है आप लोग बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, शायद इसी वजह से ऐसे एक्सपीरियंस नहीं हुए हैं आपके साथ। और किसी वजह से स्टेज फियर आपको लगता है होता है बच्चों में, हम में, या फिर इन जनरल पब्लिक में स्टेज फियर होता है? किसी के पास कोई इनपुट है? क्योंकि यही 5 रीजंस नहीं है, इसमें बहुत सारे और भी रीजंस हैं। कई बार हमें बोलने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिया जाता जब हम छोटे होते हैं, या हमारे घर में, या हमारे स्कूल में अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो सबको तो कॉमन नहीं दिया जाता ना, जो वॉलेंटियर करेगा, हाँ बेटा तुम बोलो असेंबली में, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग में शुरुआत से छोटे से ही शुरू होती होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये जो फियर ऑफ टॉकिंग इन पब्लिक है ये और बढ़ता जाता है कम होने की बजाय, अगर हम इस पे काम नहीं करें या हम प्रैक्टिस नहीं करें। क्या सब मानते हैं इस चीज को?
1: नमस्ते नमस्ते मैम।
0: नमस्ते ईशा जी।
1: मैम कभी कभी ऐसा होता है कि हम बच्चों को खड़ा करते हैं जैसे प्रेयर वगैरह में, कुछ बोलने के लिए असेंबली में, कि कुछ पोयम सुनाओ, तो
2: बच्चों को आने के बावजूद भी वो नहीं बोल पाते, अपने घर पे तो सुना देते हैं लेकिन हम लोगों को नहीं सुना पाते, क्योंकि उनमें एक डर सा पैदा होता है कि हम सबके सामने बोलेंगे तो हमसे बोला नहीं जाएगा, या मैम से डर लग रहा है, इस चक्कर में बच्चे बोल ही नहीं पाते, एक फियर सा रहता है हर समय।
0: तो वो फियर ऑफ जजमेंट है, यानी कि दूसरों का ओपिनियन जो है, जो नेगेटिव ओपिनियन है, उसको हम पहले से ही सोच लेते हैं हम बोलेंगे और लोग हमें नेगेटिव जज करेंगे, है ना। फियर ऑफ जजमेंट जो होता है दूसरे लोगों के ओपिनियन, नेगेटिव ओपिनियन को हम ज्यादा बढ़ावा देते हैं, बल्कि जो हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस है, आप कह रहे हो कि बच्चे को पोयम आती भी है तभी भी वो सुनाने में झिझकता है, क्यों? क्योंकि वो जब आसपास के बच्चों को देखता है या दूसरे टीचर्स खड़े हैं या और पेरेंट्स खड़े हैं असेंबली में, तो उसको लगता है कि ये मेरे अंदर जो है मेरे को जज करेंगे, और अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो वो मुझे हंसेंगे या मेरा मजाक उड़ाएंगे या कुछ करेंगे। इसे कहते हैं फियर ऑफ जजमेंट। अभी तो आप बच्चे की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं ना, ये फियर ऑफ जजमेंट मतलब दूसरों की ओपिनियन की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती रहती है, और हम अपनी कॉन्फिडेंस पे काम नहीं करते, हम ये सोचते हैं कि हम बोले ही नहीं ताकि हमें जज ही ना किया जाए। क्या ऐसा होता है? जब हम बोलेंगे तो हमें जज कौन करेगा? नहीं, बात सही है। जब हम हाथ ही नहीं खड़ा करेंगे आंसर देने के लिए तो हमें कोई जज ही नहीं करेगा। तो हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की बजाय वो फियर को और बढ़ावा देते हैं। बट हमारा मकसद यही है कि जब हमारे यहाँ से जो बच्चे जा रहे हैं या जो हमारे यहाँ से महिलाएं आगे काम करने जा रही हैं, एटलीस्ट वो अपनी बात को कह सकें। पब्लिक स्पीकिंग मतलब अगर 10 लोग भी खड़े हैं, जरूरी नहीं है कि पूरी रैली हो या पूरा ऑडिटोरियम भरा हो, उन लोगों के सामने ही बात करनी है। अगर 10 लोग भी खड़े हैं और अपनी बात को अगर हम सही से नहीं रख पा रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं फेयर है, मतलब हम कहीं ना कहीं उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है। इस फियर को कम कौन करेगा? अगर ये हमारे अंदर है तो हमको ही इस पे काम करना पड़ेगा, राइट? इसके लिए हम कुछ टिप्स और टेक्निक्स कर सकते हैं कि पहले तो हम इसकी बहुत ज्यादा ये ना करें कि हम जो दूसरे हमें देख रहे हैं या जो दूसरों का ओपिनियन है वो वही सच है। हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे पैदा होगा? पहले तो ये है कि जो टॉपिक पे आपको बात करनी है, मान लीजिए कोई टॉपिक अगर ऐसा है जिसपे कि आपको पता है आपको बोलना है, तो आप उस टॉपिक पे अच्छे से रिसर्च करके जाइए। अगर आपको पता है आपने क्या बोलना है, अगर 10 पॉइंट्स आपने बनाए हुए हैं, तो आपको पता है कि एक एक मिनट आप इन 10 पॉइंट्स पे बोलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन करना है ऑडियंस से, तो क्वेश्चन करेंगे और आपका स्पीच खत्म हो जाएगा। अगर डिबेट है या अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे आपको अपनी व्यू पॉइंट देने हैं, तो आप उस टॉपिक को अच्छे से रिसर्च करके जाइए। जब आपको पता है आपने क्या बोलना है, तो आप स्टैमर नहीं करेंगे, यानी कि सोचेंगे नहीं। ऐसा होता है ना, हम बात बात करते करते ऊपर देखने लगते हैं, फिर हमें याद नहीं आता, फिर हम करते हैं ये सब चीजें भी हम अवॉइड करेंगे, कर सकते हैं अगर हम अपने टॉपिक, जैसे मुझे आज आपके साथ ये वाला टॉपिक पे बात करना था, तो मैं 2 दिन से रिसर्च कर रही थी इस टॉपिक के ऊपर, और इस टॉपिक के ऊपर मेरे को लगा कि हम एक बिगनर्स लेवल के लिए कितने पॉइंट्स हम कवर कर सकते हैं। अब एक दिन के अंदर किसी का कॉन्फिडेंस तो बिल्ड नहीं हो सकता कि वो स्टेज पे जाके और पूरा अपना स्पीच दे दें, लेकिन कुछ ऐसी टिप्स छोड़ सकते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स छोड़ सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस छोड़ सकते हैं। तो मैंने अपने टॉपिक पे रिसर्च करी, अब मुझे पता है, और फिर मैंने प्रैक्टिस करी कि अच्छा इस पॉइंट पे मुझे क्या बोलना है, अगले पॉइंट पे मुझे कौन सा एग्जाम्पल देना है। तो इससे क्या है, आपको भी आसानी है और मैं टाइम भी वेस्ट नहीं कर रही, और मुझे कॉन्फिडेंस भी है कि मैंने क्या बोलना है आपके साथ। तो फर्स्ट इज कि आप अपने टॉपिक पे रिसर्च करेंगे। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है और आपको इम्प्रॉम्प्टो नहीं, पहले से पता है आपका टॉपिक, तो आप उस पर रिसर्च करके जा सकते हैं, ठीक है। जब आप बात कर रहे हैं, अपने पॉइंट्स को सिंपल रखिए, बहुत बड़े बड़े शब्द और बहुत सारा डेटा मत यूज करिए, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े शब्द और डेटा हमें कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। जब आप अच्छे स्पीकर बन जाएंगे, तब आप कोशिश करके उसको अपने टॉक में इंक्लूड कर सकते हैं। बट अगर आप शुरुआत में पब्लिक स्पीकिंग पे या स्टेज पे बोलने पे काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी जो आपकी बात आप रखना चाह रहे हैं उनको छोटे छोटे सरल सेंटेंसेस में तोड़ के आगे बोलने की कोशिश करें। अगर आप अपनी जो बात कहना चाह रहे हैं उसको आपने लिख लिया छोटे छोटे शब्दों में, उसको छोटे छोटे सेंटेंसेस में तोड़ दिया, तो अब आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? मैंने पहले भी कहा था कि शीशे के सामने प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि शीशे में आप देख पाते हैं कि आप कैसे लग रहे हैं। आजकल तो आप मोबाइल में भी अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो, और देख सकते हैं कि जब मैं अपनी बात कह रही हूँ स्टेज पे या पब्लिक स्पीकिंग में, कुछ मेरे को किसी बात पे चर्चा करनी है तो मैं कैसा लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ। और हो सकता है मैं हाथ ज्यादा मूव कर रही हूँ, मेरी आदत है मैं हाथ काफी मूव करती हूँ, तो क्या वो अच्छा लग रहा है, क्या वो बुरा लग रहा है। कई लोग होते हैं वो ऐसे पेन को भी, पेंसिल को भी ना ऐसे ऐसे करते हैं या ऐसे ऐसे भी करते हैं, इवन स्टेज पे भी, या माइक पकड़ा है तो माइक को ऐसे ऐसे कर लेंगे, तो माइक पे आप जो बोल रहे हैं ना वो लॉस्ट हो जाता है। जब आपने माइक छोड़ा तो माइक इधर उधर करा, क्योंकि हाथ का मूवमेंट का आदत होता है, तो वो माइक से जो आप कहना चाह रहे हैं वो लॉस्ट हो जाएगी आवाज। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी किसी भी चीज को आप माइक बना लीजिए, इसको माइक बना लिया, अब मैं शीशे के बात करना है। तो पहला हो गया कि हमने अपने पॉइंट्स बना लिए कि जिस टॉपिक पे मुझे बात करनी है, वो टॉपिक कि मैंने अच्छे से डेटा बनाया, उसको सिंपल पॉइंट्स में लिखा, बहुत बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो शब्द बोलने में ना टंग ट्विस्ट हो जाती है, जब आप बहुत लोगों के सामने है, जबान सूख रही है और आप में थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो बड़ा शब्द आया तो आप डर गए, अरे बाप रे मैं इसको कैसे बोलूंगा या बोलूंगी, तो उसको सरल रखिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने शब्दों को आराम से बोलिए, बहुत जल्दीबाजी में बोलने से भी फंबल हो जाता है। फंबल पता है क्या होता है, मतलब जो कहना चाह रहे हैं वो शब्द ठीक से बन के बाहर नहीं आता, फंबल हो जाता है। अगर आप किसी स्टेज पे पहुंच बोलने वाले हैं ना, तो कोशिश करिए कि वेन्यू, वेन्यू मतलब जहां पे आपने बोलना है, स्कूल का वेन्यू है या कोई इंटरव्यू है, इंटरव्यू में पहले से पहुंच जाइए ताकि आप एनवायरमेंट को पहले से देख लें। अच्छा जगह कैसी, कई बार क्या होता है जगह इतनी इंटिमिडेटिंग, इंटिमिडेटिंग मतलब वो प्रभावित कर लेती है आपकी सोच को, और आपको जो है आप जो कहना चाह रहे हैं उसको आप नहीं कह पाते ठीक तरीके से, क्योंकि आप इंटिमिडेट हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं उस एनवायरमेंट से। बट अगर आप पहले से ही वहां पहुंच जाएं, 5-7 मिनट पहले पहुंच जाएं, वहां बैठ जाएं, बैठ के आप देखें अच्छा अच्छा यहाँ से लाइट आ रही है, तो यहाँ से मेरे को यहाँ पे खड़े होके बोलना है, ये 10 लोग हो सकता है सामने, अगर 10 चेयर्स पड़ी हैं तो अच्छा ये 10 लोग यहाँ से देखेंगे, तो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बन जाता है। क्या आप मानते हैं इस चीज को कि अगर पहले से ही आप चले जाते हैं कहीं किसी जगह पे और फिर धीरे धीरे 1 घंटा पहले ही पहुंच जाइए, कहने का मतलब है कि अगर आपको बात करनी है या कुछ बोलना है तो इमीडिएटली, कभी कभी हम एंटर करते हैं किसी रूम में ना तो वो रूम के एनवायरनमेंट से भी हम कंफर्टेबल नहीं होते, तो जाकर आप चाहें तो अपने वेन्यू पे पहले से पहुंच जाइए, उसके साथ आप एक अपना रिश्ता बना लीजिए कि हाँ मेरे को पता है कि ये इस तरह से दिखाई देता है और इस तरीके से लाइटिंग है और यहाँ पे खड़े होके मुझे बोलना होगा और ये मेरा टॉपिक है, इसको मैंने प्रिपेयर करा है, प्रैक्टिस करा है। अपनी सांस, ब्रीदिंग को हमने पुराने कई सेशंस में, मेंटल हेल्थ के सेशंस में, इवन जो योगा का सेशन था उसमें ब्रीदिंग के ऊपर बात करी, क्योंकि ब्रीदिंग से जो हमारी नेगेटिव एनर्जी है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो कई हद तक कम हो जाता है। अगर आपको किसी टॉपिक पे बोलने को बोला जा रहा है और आपको घबराहट हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम ब्रीदिंग पे भी काम कर सकते हैं, यानी कि लंबी सांस ली, लंबी सांस छोड़ी, इससे क्या होगा कुछ हद तक हमारी जो एंजाइटी है वो कम हो सकती है। हमने प्रिपेयर तो पहले ही कर लिया, हमारे पास हमारे पॉइंट्स भी हैं बोलने के लिए, हमने प्रैक्टिस भी कर ली शीशे के सामने, हमने ये भी देख लिया कि वेन्यू कैसा है, मैं कहाँ जाके बोलना है मुझे, या बोलना किस जगह पे खड़े होके बोलना है। और अब अगर घबराहट कम करनी है तो हम आंखें बंद करके या वैसे डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, इससे भी कई हद तक हमारा जो है मेंटल स्टेबिलिटी आ जाती है। कभी कभी हाथ ठंडे हो जाते हैं तो आप हाथ को भी ऐसे रब कर सकते हैं। जब आपका शरीर कंफर्टेबल होगा ना तो आपका जो घबराहट है कई हद तक कम हो जाएगा। समझ आ रही है सभी को?
3: यस मित्र जी,
4: जी मैम,
5: यस मैम,
0: लग रहा है कि कुछ हेल्पफुल है ये टिप्स?
3: यस मैम,
4: काफी है मैम.
0: अच्छा, आपने देखा होगा बड़े बड़े स्पीकर्स जो होते हैं, जो काफी इनफैक्ट अच्छे स्पीकर्स होते हैं, वो कभी कभी ना अगर उनको काफी डेटा देना है या कोई फैक्ट्स फैक्ट्स मतलब जो सत्य है उसको कोट करना है, तो वो क्यू कार्ड, छोटे क्यू कार्ड्स देखे आपने? छोटे क्यू कार्ड्स होते हैं, मतलब पेपर को छोटा छोटा काट के वो अपने हाथ में रखते हैं. कभी देखा है आपने कोई स्पीकर्स हैं या फिर जो जो मास्टर ऑफ सेरेमनी यानी कि जो होस्ट कर रहे हैं वो अपने हाथ में क्यू कार्ड्स रखते हैं? किसी ने देखा है क्यू कार्ड? क्या होता है क्यू कार्ड?
4: नहीं, देखा नहीं कभी.
0: क्यू कार्ड क्या होता है? छोटा कार्ड होता है, उसपे आप जो बोलने वाले हैं उसके मेन मेन पॉइंट्स लिखे होते हैं. मान लीजिए आज मुझे लाइफ स्किल्स पे बोलना है, तो लाइफ स्किल्स पे मुझे कौन सा टॉपिक कवर करना है? पब्लिक स्पीकिंग. तो पब्लिक स्पीकिंग पे मुझे कौन से टॉपिक कवर करने? पब्लिक स्पीकिंग क्यों होता है? पब्लिक स्पीकिंग के लिए हम कौन से टिप्स एंड टेक्निक्स कर सकते हैं? पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना है, फियर ऑफ पीपल जजिंग यू, फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हमने अभी पढ़ा था ना, ग्लॉसोफोबिया. ग्लॉसोफोबिया बोलते हैं इसको, है ना? तो ये चीजों को हम क्यू कार्ड पे लिख सकते हैं. प्रेजेंटेशन हो सकता है हर किसी के पास वो ना हो. आप जहाँ पे बोलने जा रहे हैं हो सकता है वहां पे पीपीटी ना हो. अगर मेरे पास पीपीटी नहीं होती तो मैं छोटे छोटे क्यू कार्ड माने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पे अपने की पॉइंट्स को छोटे शब्दों में और जो मैं कहना चाह रही हूँ उसके अलग अलग पॉइंट्स बना के मैं छोटे छोटे पांच या छह क्यू कार्ड्स रख लेती ताकि जो पॉइंट मैं बोलना चाह रही हूँ वो मिस ना हो जाए. आप अपने जैसे अगर सेशन ट्रेनर्स हैं जो हमारे, वो ट्रेनर्स अपने सेशन को प्लान करते हैं, सेशन को प्लान करते हुए वो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं. आज मुझे ब्लाउज बनाना सिखाना है तो मैं कटिंग सिखाऊंगी, मैं उसकी ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी और मैं उसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी, फिर उसको मेजर कैसे करना है और अलग अलग ब्लाउज कैसे बनाना है. ये पांच पॉइंट लिखते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं, उसी को अगर हम एक छोटे कागज पे लिख रहे हैं तो उसे क्यू कार्ड बोलते हैं. क्यू कार्ड मतलब अगर मैं पॉइंट भूल रही हूँ तो वो मुझे क्यू कार्ड एक क्यू एक एक आइडिया दे देगा कि अच्छा मुझे इस पॉइंट पे भी बात करनी थी, कहीं मैं भूल ना जाऊं. समझ में आया? अदरवाइज मैं एग्जाम्पल्स या फोटोग्राफ्स के थ्रू और भी बता सकती हूँ. किसी को समझ में आया क्या? कोई बता सकते हैं क्यू कार्ड्स क्या होते हैं? कभी किसी ने यूज करा है क्यू कार्ड अपने ट्रेनिंग सेशन में? हमारे साथ बहुत सारी टीचर्स जुड़ी हुई हैं, क्या टीचर्स ने यूज किया है क्यू कार्ड कभी?
4: हेलो जी मैम, सुमन
0: जी. सुमन जी,
4: हाँ जी मैम. जैसे अगर हमें कहीं पे बोलना होता है तो पहले मैं क्यू कार्ड का मतलब तो मुझे खैर आज ही पता लगा है, हाँ जी, पर मैं अपने नोट्स हमेशा लिख लेती हूँ कि मुझे क्या क्या बोलना है वहां पे, ये मैं हमेशा करती हूँ उस चीज के लिए, हाँ जी. और बोलते हुए थोड़ा सा मुझे लगता है मैं ना बीच बीच में रुक जाती हूँ कभी कभी, हाँ जी.
0: कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस से होता है. जितना ज्यादा आप खुल के कोशिश करेंगे वो रुकना पॉज इज नॉट अ नेगेटिव थिंग. अगर आप अपनी बात कह रहे हैं और अननेसेसरी पॉज नहीं है, एक पॉज दिया है आपने अपने थॉट्स को कलेक्ट करने के लिए, तो वो गलत नहीं माना जाता. वो माना जाता है कि आप अपनी सोच को 2 सेकंड दे रहे हैं और उसको रिकलेक्ट करके फिर से उस मुद्दे पे आ रहे हैं, है ना? और क्यू कार्ड मतलब वो आपको इशारा देता है. क्यू का मतलब होता है इशारा देना कि अच्छा ये टॉपिक था, इस पे ये वाला पॉइंट भी आपको बोलना था. तो अगर आपके टॉपिक पे 6 पॉइंट्स हैं तो आप हर एक पॉइंट को अलग अलग क्यू कार्ड पे लिख सकते हैं बड़ा बड़ा, ताकि आपको मेहनत ना लगे उसको पढ़ने में, क्योंकि इतने सारे 50 लोग आपको घूर रहे हैं और ऐसे सबकी आंखें ऐसे हो रही कि अच्छा ये क्या बोलने वाला है, आगे क्या बोलेगा या बोलेगी, तो घबराहट हो जाती है. अगर बड़ा बड़ा लिखा हो कि अच्छा अब मुझे ये बोलना है, तो वो आपका जो अगर ध्यान भटक रहा है या कॉन्फिडेंस कम हो रहा है ना, तो योर कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ये तो मैंने रिहर्सल करी थी, इसके तो मैंने बात करी थी, तो मैंने प्रैक्टिस
4: की,
0: तो मैं ये बात कह सकती हूँ. तो वो क्यू, क्यू का मतलब इशारा करना कि अच्छा ये जो है आप ये वाला पॉइंट भूल रहे हैं और ये भी आपको बोलना.
4: जी मैम, इसीलिए मैं लिख लेती हूँ हमेशा.
0: हाँ एब्सोल्युटली, हाँ आप लिख भी सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है. अगर प्रेजेंटेशन नहीं है तो जरूर लिख लीजिए या क्यू कार्ड्स का यूज करिए. क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है आपको सारी बात कवर करने में और सारे की पॉइंट्स कवर करने में. अगर प्रेजेंटेशन है भी तभी भी आप लिख के जाएगा, बिकॉज बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में भी ऐसा होता है कि आपने प्रेजेंटेशन बनाई, मेहनत करके 2-3 दिन लगा के प्रेजेंटेशन बनाई, प्रैक्टिस भी करी, और जब प्रेजेंटेशन को लगाया तो टेक्नोलॉजी ने धोखा दे दिया, वो प्रेजेंटेशन चली ही नहीं या कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो फिर आप घबराने लग जाएंगे, अरे अब मैं क्या बोलूं, मुझे तो पता ही नहीं है मुझे क्या बोलना है, मेरे तो पॉइंट्स ही लॉस्ट हो गए. तो अगर आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है या आपके पास ऐसे छोटे छोटे कार्ड है, क्योंकि बड़ा सा पर्चा लाएंगे ना तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में कि अच्छा ये तो लिख के लाए हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट टू बिकम अ बेटर स्पीकर या टू बिकम अ मतलब अच्छा और अच्छा स्पीकर बनने के लिए आप क्यू कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख के भी ला सकते हैं, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं.
4: थैंक यू मैम.
0: और कोई कुछ शेयर करना चाहता है एक्सपीरियंस?
5: जी एक बार मेरे साथ क्या हुआ, हम लोग का यहाँ पे 26 जनवरी का फंक्शन था हमारे सेंटर पे, तो मैंने कोई स्पीच प्रिपेयर नहीं करी थी, बट मेरे स्टाफ ने और गांव वाले सब इकट्ठे थे, देयर वाज ऑलमोस्ट 800-1000 पीपल वर देयर, और चेयर सब भर गई, लोग खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इधर, तो मेरे को एकदम से माइक पकड़ा दिया गया. And I was so confident, I was about to speak, तभी मैंने देखा मेरे जो जेठ हैं वो सामने खड़े हैं, उनको देख के मैं एकदम घबरा गई, पता नहीं मुझे क्या हुआ, क्योंकि वो बहुत खिंचाई करते हैं, वो ना बहुत मजाक बनाते हैं चीजों को लेकर,
0: fear of judgment.
5: राइट राइट. तो मैंने एकदम से इमेजिन किया वो सामने है ही नहीं. Absolutely. और मैंने उनको बिल्कुल नजरअंदाज करके आई स्पोक सो वेल, सारी चीजें मैंने उसमें कलेक्ट करी और पूरा सबको डिटेल में बताया कि हु वी आर, व्हाट वी आर डूइंग हियर, सब कुछ सबको बताया. दैट वाज रियली वेरी नाइस, बट वो एक मिनट के लिए तो मैं घबरा गई थी. तो फिर मैंने वही अपनी चीज मैंने सोचा वो है ही नहीं सामने,
0: है ही नहीं बिल्कुल. जो चीज आपको घबराहट दे रही है, यहाँ पे सीमा जी के साथ क्या हुआ, उनको वो फियर ऑफ जजमेंट आ गया कि तो मेरी फैमिली है, अच्छा ये मेरी खिंचाई करेंगे बाद में जाके. लेकिन अब इतनी बड़ी ऑडियंस थी, 800,000 लोग थे, उनको भी लगा कि भाई वो इम्पोर्टेंट है या मेरा कॉन्फिडेंस, जो मेरी नॉलेज है, जो मैं दिन रात काम करती हूँ, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. डेफिनेटली वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपकी फैमिली है, लेकिन उस वक्त वो क्या कर रहे थे, वो नेगेटिव फियर आपने पैदा कर रहे थे. उन्होंने कुछ नहीं किया, आपके ही दिमाग ने आपको बोला कि सीमा देखो हो सकता है वो कल को तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, बट यू हैड दैट कॉन्फिडेंस, आपने वो कॉन्फिडेंस था जिसने उसको ओवर पावर किया. करेक्ट? एब्सोल्युटली करेक्ट. दिस इज व्हाट द स्टेज फियर इज, कि दूसरे के जजमेंट को लेके हम इतना बड़ा अपने दिमाग में एक हवा बना लेते हैं कि हम अपना जो बात कहना चाह रहे हैं उसको भूल जाते हैं. दूसरी बात ये भी होती है कि हमें पता ही नहीं हमें क्या कहना, तो नेचुरली स्टेज फियर होगा ही. अगर हमें पता ही नहीं हमें बोलना क्या है तो स्टेज फियर आ ही जाता है. तो इस पे पैनिक नहीं करें, इस पे वर्क करें. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू वर्क ऑन इट स्लोली, स्टेप बाय स्टेप. कुछ टिप्स जो हमने अभी शेयर करी हैं उसको फॉलो करें. जब आप कहीं बोलने जा रहे हैं उससे पहले आप प्रैक्टिस कर सकते हैं शीशे के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने. कोशिश करिए कि छोटे ग्रुप से स्टार्ट करिए. अगर आप न्यू स्पीकर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो छोटे ग्रुप से स्टार्ट करिए. और ये मत सोचिए कि आपका दूसरे लोग कितना हंसेंगे या कुछ. जो आप कहना चाह रहे हैं प्रिपेयर इट वेल एंड ट्राई एंड डिलीवर इट. और फीडबैक आप ले सकते हैं, फीडबैक से डरिए मत, फीडबैक पे काम करना सीखिए. अगर आपके दोस्त ने या आपके फैमिली में किसी ने बताया है कि आप बात करते हुए ऐसे, ये कुछ भी पॉइंट्स आपको अगर बताए हैं तो आप उस पर काम कर सकते हैं, उससे घबराना नहीं है. सो स्टार्ट विथ स्मॉल ऑडियंसेस, टेक पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक लीजिए और उस पर काम करिए. बहुत हद तक अगर आप दूसरे लोगों को बोलते हुए सुनते हैं तो हम जरूर सीखते हैं, क्योंकि हम जो सीखते हैं ना वो हमारी एक इंद्री है बोलने वाली, बट और जो बाकी की इंद्रियां हैं जब हम सुनते हैं तो वो भी हमारे काम में आती हैं. आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं. तो हम जब दूसरे लोगों को, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं ना, उससे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है. आप किसी को हिंदी में बोलते हुए सुन सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हुए सुन सकते हैं. आप देख सकते हैं कि उनका टॉकिंग स्टाइल क्या है और एक अपना टॉकिंग स्टाइल डिवेलप कर सकते हैं. तो अगर आपको फियर ऑफ टॉकिंग इन पब्लिक है तो आप जरूर जो मोटिवेशनल वीडियोज हैं, फ्री वीडियोज हैं ऑनलाइन, उनको देखिए, उससे काफी हद तक आपको टिप्स मिलेंगी कि आपको किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगती है, जब आप कहीं पे बोलने जा रहे हैं, आप अपने आप को कंफर्टेबली ड्रेस करिए। अगर आपका ड्रेसअप कंफर्टेबल नहीं है ना, अगर आप उस ड्रेसअप में कंफर्टेबल नहीं है, आप कभी भी अच्छी बात नहीं रख पाएंगे। आप हमेशा कॉन्शियस रहेंगे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसी दिख रही हूँ। दैट डजंट मीन कि बहुत मेकअप करके या बहुत डेकअप होके जाइए। अगर आप प्रोफेशनली बोल रहे हैं, तो हमने आई थिंक फिफ्थ या सिक्स सेशन में टिप्स थी कि हाउ टू ड्रेस अप प्रोफेशनली। प्रोफेशनली ड्रेस अप होके जाइए और अवॉइड करिए ऐसी चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। बड़ी बड़ी बालियां, चूड़ियां जब आप पहनेंगे ना, तो वो डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। आई एम नॉट सेइंग डोंट डू दिस, आई एम सेइंग कि अगर वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या आपको लग रहा है वो आपको स्पीकिंग में या जो स्टेज शो है उसमें प्रॉब्लम देगा, तो आप अपना कंफर्ट पहले देखिए कि मैं किस चीज में कंफर्टेबल हूँ। ऐसा भी नहीं कि चप्पल में चले जाए, प्रोफेशनल ड्रेसअप में जाएंगे लेकिन एक कंफर्टेबल चीज में जाएंगे। कोई बहुत टाइट कपड़े, बहुत ऐसे कपड़े जो पब्लिकली हम नहीं पहनने चाहिए या एक प्रोफेशनली नहीं पहनने चाहिए, वो अवॉइड करने चाहिए। जब आप कहीं बोलने जा रहे हैं, तो खाना अच्छे से खा के जाइए, क्योंकि अगर आपका शरीर जो है वो कंफर्टेबल होगा, अगर उसे भूख लग रही है या आपने बहुत सारा चाय कॉफी पी लिया है और एसिडिटी हो रहा है, तो जब आप कंफर्टेबल फिजिकली नहीं है तो आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे पब्लिक स्पीकिंग के लिए। एम आई राइट? अगर आप बहुत सारा खाना खा लेंगे तो क्या होगा, नींद आने लग जाएगी, हमारी एनर्जी खुद ही कम हो जाएगी। अगर हमारी एनर्जी कम हो गई तो हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो उतने अच्छे से हम नहीं कह पाएंगे। खाना खाइए, हल्का खाना खाइए। अगर आप एक लार्ज गैदरिंग को एड्रेस कर रहे हैं या अगर आपको पता है कि आप में नेगेटिव एनर्जी आ सकती है, आलस आ सकता है, उबासी आ सकती है, अब आप स्टेज पे बात करें और बीच में ऐसा हो जाए तो कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। नहीं तो कोशिश करिए कि बहुत हैवी ऑयली खाना ना खाएं। अगर आप नेक्स्ट स्पीकर हैं या आप आपका जल्दी ही बारी आने वाला है, लेकिन भूखे भी मत रहिए। पेट में गुड़गुड़ हो रही होगी तो वैसे ही हाथ पांव सब ठंडे हो जाएंगे, बिल्कुल हम बोल नहीं पाएंगे। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, प्रैक्टिस वेल, दैट इज द ओनली, मैंने पहले भी बताई, कोई गोली नहीं है कि दो डोज सुबह लीजिए, दो डोज शाम को लीजिए और अच्छे पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे। नहीं, हमें खुद पे काम करना होगा। टिप्स हमने शेयर करी, इन टिप्स पे काम करेंगे डेफिनेटली, मैं बता रही हूँ कि ये प्रैक्टिस से ही बेटर हो सकता है। अपने टॉपिक पे रिसर्च करेंगे तो ही आप अच्छे से बात कर सकते हैं। कभी कभी जो अच्छे स्पीकर होते हैं ना, वो ऑडियंस के साथ एंगेज करते हैं, मतलब जैसे हम कोशिश करते हैं आप लोगों से बात करने की, ताकि ऐसा ना हो कि ये बोरिंग हो जाए। हो सकता है आपके ऑडियंस आपसे एंगेज नहीं करना चाहते, तो उसमें आपकी कोई कमी नहीं है। हो सकता है टॉपिक उनका इंटरेस्ट का ना हो, हो सकता है उनको समझ नहीं आ रहा या उनके दिमाग में क्या बातें चल रही हैं वो उस वक्त इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके साथ इंटरेक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो घबराइए मत, अगर आप अपने कोई क्वेश्चन पूछते हैं और कोई आंसर नहीं आता है तो घबराइए मत, स्टिल ट्राई एंड एंगेज विद योर ऑडियंस। सो उससे क्या होगा, आपको एक इंटरेक्टिव सेशन करने में आसानी होगी और कंफर्टेबल एनवायरमेंट होगा। बट ये सब चीजें तब पॉसिबल नहीं है अगर आपको एक टॉपिक पे बोलने को बोला जाए। ये तभी पॉसिबल है अगर आप ट्रेनिंग में हैं या आप टीचर हैं, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है। बट अगर आपको एक लेक्चर, मतलब एक टॉपिक पे बोलना है, डिबेट है, या फिर किसी टॉपिक पे आपको सिर्फ बोल के जाना है, तब आप एंगेज नहीं कर सकते। वो तो सिर्फ ऑडियंसेस को सुनना है और वो दैट इज अबाउट इट। तो अपने जो ऑडियंस है ना, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि आप जो अपनी बात कहना जा रहे हैं वो किसके लिए कह रहे हैं। जैसे अभी मुझे पता था कि ये हमारे लाइफ स्किल का जो सेशन है वो किस एज ग्रुप के लिए है, तो जो हमने अपने सेशंस प्रिपेयर करे और जो इसका नंबर ऑफ स्लाइड्स रखा वो इसी हिसाब से रखा कि हम इसको एक घंटे में खत्म भी कर ले, ये सरल भाषा में भी हो, इसमें जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स, वो कवर हो जाएं। बहुत इसमें पता है लोगों ने बहुत रिसर्च करी है पब्लिक स्पीकिंग पे, इसके बहुत सारे टूल्स एंड टिप्स हैं। अगर हम इसी एक फर्स्ट सेशन में ही वो सारी चीजें करेंगे ना, तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो हमारे ऑडियंस कौन है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी हमें हेल्प करता है हमारे टॉपिक पे प्रिपेयर करने के लिए। मेरी आदत है जैसे कि अगर मैं ट्रेनिंग सेशन में हूँ तो मैं लोगों के बीच बीच में जाके भी क्वेश्चन पूछती हूँ. अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आपके आसपास 10-15 लोग 25 लोग बैठे हैं और आप कंफर्टेबल हैं लोगों के बीच में जाके बोलने का, तो वो भी एक सही तरीका है. अगर आप कंफर्टेबल हैं एक पोजीशन पे खड़े होके बोलने का, वो भी कंफर्टेबल है. इसमें कोई सही या गलत नहीं है. बट आप ये देखिए कि अगर आप ज्यादा मूव अराउंड कर रहे हैं तो कहीं वो डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा. कभी हॉल इतना बड़ा होता है कि पीछे के लोग क्या सुन पा रहे हैं नहीं सुन पा रहे हैं, या अगर आप स्टेज पे होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता. तो जैसे मैंने कहा, आप अपना एक तरीका अपना सकते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग के टाइम आपको किस तरीके का तरीका अपनाना है. एक जगह पे खड़े होकर बोलना आपके लिए कंफर्टेबल है. अगर आप ट्रेनिंग सेशन में हैं तो एंगेज कर रहे हैं अपने ऑडियंसेस के साथ, तो आप थोड़ा बहुत चल के भी जा सकते हैं उनके पास, उनको माइक दे सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनको एंगेज कर सकते हैं. जैसे कि अभी सीमा जी ने कहा कि उनको आई कॉन्टेक्ट में प्रॉब्लम आया कि उनके जो फैमिली मेंबर थे वो आए और उनसे वो आई कॉन्टेक्ट करा जब उन्होंने, तो उन्हें लगा कि मैं सब कुछ भूल रही हूँ. अगर आई कॉन्टैक्ट मतलब दूसरे की आंखों में डायरेक्टली देखने से आपको डर लगता है और आप शुरुआत में काम करना चाहते हैं पब्लिक स्पीकिंग में, तो ज्यादा देर तक किसी एक आई कॉन्टैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं. जैसे कि अगर आप किसी को लगातार देखते रहते हैं ना, तो थोड़ी घबराहट होने लगती है, अब ये क्या सोच रहा है मेरे बारे में, अब ये मेरे बारे में कुछ तो गलत ही सोच रहा है, वो इतना ब्लैंक फेस, कभी कोई कुछ बोल रहा होता है और हम लोग ऐसे देख रहे होते हैं, होता है ऐसा, तो हमें लगता है अब ये पता नहीं क्या सोच रहा है. अगर ऐसा है तो आई कॉन्टैक्ट मोर देन 5 सेकेंड्स आप अवॉइड कर सकते हैं. आपके सामने अगर ऑडियंस है तो आप एक तरफ, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, चौथी तरफ, फिर आप अवॉइड करके जब आप पे कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप आई कॉन्टैक्ट करिए, उनके साथ इंटरेक्ट करिए. ये धीरे धीरे ही बिल्ट हो सकता है. कभी कभी बहुत अच्छे स्पीकर्स जो होते हैं ना, वो कोई शेरो शायरी या कोई कोट, जैसे बड़े बड़े लोगों ने जो कोट बोला है उससे या तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं या अपने टॉपिक को एंड करते हैं. तो अगर आप में कॉन्फिडेंट है, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि पहले के 30 सेकेंड बहुत जरूरी है कि आप क्या बोलने वाले हैं, और आखिरी के जो 2 मिनट है वो बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके से उसको एंड कर रहे हैं. बीच का भी जरूरी है, बट अगर आपने पहले के 30 सेकेंड या 1 मिनट में अपने ऑडियंसेस को अच्छे से इंगेज करा है, तो ज्यादातर आपका जो स्टेज फियर है वो कंट्रोल में रहेगा. खत्म तो नहीं होता, किसी का भी खत्म नहीं होता, कंट्रोल में होता है, उसको हम मैनेज करना सीख सकते हैं. अगर आप चाहते हैं शेरो शायरी, लेकिन टॉपिक से हटके नहीं, कि टॉपिक तो कुछ और है और आप प्यार मोहब्बत पे शेरो शायरी करें, ऐसा भी मत करिएगा. एजुकेशन का टॉपिक है तो एजुकेशन पे बात करिए, स्किलिंग का टॉपिक है तो स्किलिंग पे बात, ये बात नहीं करेंगे कि वो आज ये हो गया था आज वो हो गया, ऐसे कहानी नहीं डालेंगे, नहीं तो लगेगा कि हम बेफालतू में ऐसे ही बोल रहे हैं खाली बोलने के लिए. पता चल जाता है कि हमने फिर प्रैक्टिस नहीं करी है, खाली हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं बस ऐसे, तो वो भी मत करिएगा. बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, जैसे महात्मा गांधी की कोट है, और नॉट मतलब पॉलिटिकल नहीं हो लेकिन मोटिवेशनल हो, ऐसे लोगों की कोट्स भी बोल सकते हैं, लेकिन वो कोट को सही तरीके से बोलना, एग्जैक्टली जैसे उन्होंने बोला है वैसे ही बोलना, अपने शब्द उसमें मिक्स ना करना, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा. ओके हाँ, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि कई बार क्या होता है कि टेक्नोलॉजी हमें धोखा दे देती है. हमने पीपीटी भी बना लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन टेक्नोलॉजी ने धोखा दे दिया और जो हम कहने आए थे, हमने पीछे पीपीटी देखी, पीपीटी तो चल ही नहीं रही और हम ब्लैंक, अब मैं क्या बोलूं. तो उसके लिए हम कुछ चीजें, कुछ चिट्स होते हैं ना, उसी को क्यू कार्ड बोलते हैं, क्योंकि हमने लिख के रखा हुआ है. अगर टेक्नोलॉजी नहीं भी चली तो मेरे पास मेरे जो पॉइंट्स हैं वो मैंने लिखे हुए हैं कि मुझे इन पॉइंट्स पे बात करनी है. तो दिस वाज द फर्स्ट सेशन ऑन स्टेज फियर, पब्लिक स्पीकिंग. कुछ टिप्स थी, कुछ टेक्निक्स थी जो मैंने करीबन 2 दिन लगाए इसको क्रिएट करने में. आई होप दिस इज हेल्पफुल. ये प्रैक्टिस से ही जाएगा. और ये समझना कि सिर्फ मुझे स्टेज फियर है ऐसा गलत है. 75-80% लोगों को ये फियर रहता है और वो उस पे काम करते हैं और उसको अपने कॉन्फिडेंस में बदल के लाते हैं. तो डोंट थिंक दैट यू आर अलोन. ये सब में होता है, हर लेवल पे होता है, लेकिन हम जितना बात करते हैं दूसरे से ये फियर कम हो जाता है या मैनेज हो जाता है और हमें कॉन्फिडेंस आता है. आई होप दिस इज हेल्पफुल. मेरे पास कोई शेरोशायरी नहीं है और कोई कोट नहीं है ये बंद करने के लिए सेशन को, बट एनी क्वेश्चन, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, मोस्ट वेलकम. एंड प्लीज आप ये सेशन बच्चों के साथ करिए, बेनिफिशियरीज के साथ करिए, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल, आई होप सो.
6: नमस्ते मैम, फ्रॉम बायरेडीपल्ली.
0: यस यस अंकल.
6: हाँ मैम, मुझे भी बहुत स्टेज फियर था मैम, अभी भी है, पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है. और आपका लाइफ स्किल्स के लिए पहले जो मैंने सेशन अटेंड किया था मैम, मुझे आई कॉन्टेक्ट बहुत प्रॉब्लम है मैम, ये आदत ही नहीं थी. अभी मैं थोड़ा बहुत कर रही हूँ, इम्प्रूव कर रही हूँ अपने आप को. रियली वेरी हेल्पफुल मैम, थैंक यू सो मच.
0: मोस्ट वेलकम संगीता जी. दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन, कि हम आपस में बातचीत करके हम ये महसूस कर सकें कि ये कॉमन इश्यूज हैं, कॉमन चैलेंजेस हैं. और ये इसलिए है कि कहीं हम जब बचपन में थे तो छोटे होते हुए हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उतनी अपनी बात को कहने के लिए, या हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हमें जजमेंटल बना दिया हमें कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या हमें उस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं है जिस टॉपिक पे बोलने को बोला गया है. इन तीन या चार मोटे मोटे वजहों से ही हमें स्टेज फियर आता है हमारे दिमाग में. पर बहुत सारी ऐसी वजह हो सकती है, जरूरी नहीं है, बट दिस इज द मोस्ट कॉमनली स्टेटेड सिंड्रम्स और कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्टेज फियर. सुनीता जी कुछ कहना चाह रही हैं?
7: गुड आफ्टरनून मैम, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ. मुझे याद आया अभी जब भी हमारे 2018 में आपके साथ ही इनोग्रेशन था हमारे स्कूल का, दैट वाज द फर्स्ट टाइम टू होल्ड द माइक इन माय हैंड एंड आई एम वेरी नर्वस एट दैट टाइम एंड यू आर विद मी एट दैट टाइम. आई रिमेम्बर दैट, सो दैट आई एम फेंट बट आई कैन से देन यू हेल्प मी सो मच. Even speak your name, your family, about all that. And after that day, ma'am, I am very confident to handle a mic in any place.
0: कई बार ऐसा होता है कि ना माइक हमने पहली बार लाइफ में पकड़ा होता है. ऐसा होता है, जब मैंने पहली बार माइक अपने हाथ में पकड़ा मुझे लगा ये क्या है. और ऐसा बहुत बार होता है कि हम जब फर्स्ट टाइम माइक पकड़ते हैं तो हमें लगता है ये आवाज हमारी अपनी ही है, क्योंकि हमें आदत नहीं है सुनने की अपनी आवाज को. तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो आपने फर्स्ट टाइम जब बोला तो वो एक फियर था, लेकिन वहां से आज आप इस स्टेज पे आ गई हैं कि खुद ही पेरेंट मीटिंग करती हैं, खुद ही बात करते हैं बच्चों की बात पेरेंट्स से, तो वो एक पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट ही है. आप इतनी अच्छे बड़े फोरम पे बात कर रहे हैं, सो डेफिनेटली आपने काफी वर्क किया है. रेखा ने कुछ कमेंट दिया है, तो रेखा जी ने बताया कि है स्टेज फियर है, जैसे मैंने बताया सभी को ही होता है तो उनको भी है. वो अपनी बात, हमने अभी कुछ सेमिनार किया था, वो कह रही कि वो अपनी बात रखना चाहती थी लेकिन वो इसी फियर की वजह से वो अपनी बात नहीं कह पाई. तो रेखा क्यों डर लगता है आपको माइक पकड़ने से या इस चीज से कि लोगों के सामने बोलना, क्यों डर लगता है?
8: मैम वैसे लोगों के सामने बोलने से डर नहीं लगता क्योंकि जब मोबिलाइजेशन करने जाते हैं तो हम लोगों से बातें करते हैं, बट पता नहीं वो फर्स्ट टाइम था मेरा तो बस थोड़ा सा नर्वस हो गई. मैंने जैसे आपने बोला अपने पॉइंट लिखो तो मैंने अपने पॉइंट भी लिखे थे, बट मैं सामने जाके और बोल नहीं पाई.
0: मैं आपको एक मतलब पर्सनल टास्क दे सकती हूँ कि अब आप जाओगे ना, ये जो पॉइंट्स आपने लिखे थे प्लीज इसका वीडियो बनाओ या फिर मिरर के सामने जाके इसको प्रैक्टिस करो और देखो कि रेखा कैसी लगती है. क्योंकि मैंने आपको बोलते हुए देखा है रेखा, आप साफ बोलती हो, आप सरल शब्दों का इस्तेमाल करती हो और जितनी बात कहनी है उतनी ही बात कहती हो, तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं. सो यू ट्राई एंड नेक्स्ट टाइम वेन एवर हम कोई ऐसा सेशन कर रहे हैं, आई विल मेक श्योर दैट यू आर देयर टू टॉक नाउ. डोंट बी वरीड, कोई वरी करने की जरूरत नहीं है. वहां सभी लोग अपने थे और वहां पे कोई भी आपको जज नहीं करने वाला था, और अगर जज कर भी रहा था तो वो उस इंसान के अंदर की भावनाएं हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए बिकॉज वो आपके रिलेशन में नहीं है. उनकी जजमेंट का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता. रेखा तो वैसे ही रहेगी, यस मैम वैसे ही चलेगी।
8: हाँ जी मैम, इस बात का डर लगता है पता नहीं मेरी बात कुछ वैल्यूएबल है भी कि नहीं।
0: एग्जैक्टली
8: मेरे पॉइंट पे वो हंसेंगे किसने क्या बोल दिया, बस थोड़ा सा ये माइंड में चीज आती है तो अपनी बातें नहीं रख पाती।
0: जो आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ना वो उस दूसरे के पास नहीं है, जो आपके चैलेंजेस थे या जो पॉइंट्स आपके पास थे रेखा, वो आपके ग्राउंड चैलेंजेस थे, उसको शेयर करने के लिए दूसरा बंदा जज ही नहीं कर सकता सही से, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि जो आप कह रहे हो कि वो सही है कि गलत है। फॉर एग्जाम्पल जो और लोग थे जिन्होंने शेयर, जैसे फरा थी उन्होंने शेयर करा, सीमा जी ने शेयर करा था, उनकी जो बातें हैं वो उनको पता है कि उनकी कम्युनिटी में क्या चैलेंजेस हैं, तो आप जज भी कर लोगे तो क्या कर लोगे, सही और गलत तो है ही नहीं उसमें कुछ भी, है कि नहीं।
8: हाँ जी मैम,
0: तो वो कॉन्फिडेंस रखो कि जो आप कहना चाह रहे हो वो वैल्यूएबल है, लेकिन वो तभी हो सकता है अगर आप पहले से अपने पॉइंट्स लिख के रखोगे और आपको उसमें वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो बात मैं कहना चाह रही हूँ, छोट दो ही लाइनें बोलो, जरूरी नहीं है कि 10 लाइनें बोलोगे तभी इफेक्टिव होगा, अपनी बात को 2 लाइनों में करो, देखना धीरे धीरे करके वो 2 लाइनें 4 लाइनें 6 लाइनें और फिर बोलना पड़ेगा रेखा चुप कर जाओ बस करो और मत बोलो, ऐसा भी सिचुएशन आएगा। सो अभी आप बोले इतने सारे लोगों के बीच में बोले, कोई आपको झिझक नहीं थी, तो आई कॉन्टेक्ट से डरना नहीं है, आई कॉन्टेक्ट से अगर आपको डर लगता है तो अपनी आईज को आप 5-7 सेकंड के बाद मूव आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर 1-to-1 डिस्कशन हो रही है तो आई कॉन्टेक्ट बहुत जरूरी है। ये बातें हमने इंटरव्यू स्किल्स में करी थी कि अगर इंटरव्यू स्किल्स चल रही है और सामने बैठ के कोई बात कर रहा है तो आई कॉन्टेक्ट बहुत जरूरी है। बट पब्लिक स्पीकिंग में क्या है ना, आप मूव आउट मूव इन कर सकते हो, अगर कोई कोई इंसान आपको लग रहा है कि अजीब से एक्सप्रेशन दे रहा है या बोरिंग उसको लग रहा है उसकी तरफ देखो ही मत, नहीं देखोगे ना तो वो कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा, उसकी तरफ देखो जो आपकी बात को समझ रहा है। कुछ लोग होते हैं करते हैं उनको देखे कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, तो उनकी तरफ देखो, ये धीरे धीरे करके आप में आ जाएगा।
2: गुड इवनिंग मैम, नहीं बोल देती हूँ, कोई नहीं बोल रहा है तो
0: गुड इवनिंग
2: तो स्टेज पे जाते हुए तो मुझे भी बहुत डर लगता था, अब नहीं लगता है। फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी स्टेज पे तो ऐसे दिल हो रहा था बहुत दगदग, और जो अपनी बात में कहना चाह रही थी वो भी नहीं कह पा रही थी कि मैं कुछ कहूंगी, मतलब इतना डर लगता था कि स्टेज पे जाके जो बात कहनी थी वो सब भूल जाया करती थी। बट अब जब मैं स्टेज पे जाती हूँ तो बहुत कॉन्फिडेंस होता है अपने आप में कि मैं वहां जाके अपनी बात भी रख लेती हूँ और बहुत अच्छे से लोगों को शायद समझा भी पाती हूँ।
0: एब्सोल्युटली फरा, तो आपने उसके ऊपर काम किया, ऐसा नहीं था कि एक ही दिन में वो हुआ। वही बात हमें अपने बेनिफिशियरी से भी बतानी, घबराओ मत, दूसरे के जजमेंट से डरो मत, जो बात तुम कहना चाह रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, कॉन्फिडेंस रखो और इधर उधर की बात मत। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा बोलने लग जाओगे और दूसरे टॉपिक को मिक्स कर दोगे तो नेचुरली यू नो इट विल बी नॉट अ गुड साइन ऑफ अ गुड स्पीकर। तो इसलिए क्योंकि आप पॉइंट्स लिख लेते हो, आपको क्या बातें करनी है आपके दिमाग में रहती है या नोट्स में रहती है, इससे आप अच्छा बोल पाते हैं। सेम
5: आई थिंक शायरी भी करती है
0: परा शायरी,
5: अब तो परा शायरी की शायरी से बंद करके अपना टॉपिक क्लोज करती है।
0: क्योंकि उनको ये था कि उनको अपने ऑडियंसेस को एंगेज करना है
2: जी।
0: और उनकी जो
2: जो सुन भी नहीं रहा है ना मुझे, मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है तो वो मेरी तरफ देखे कम से कम शायरी पसंद करके देखे।
0: Absolutely. किसी को अगर एक बात कहने में जो उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो हो सकता है शायरी में इंटरेस्ट हो। कई लोग गाना भी गाते हैं, मैंने ये देखा है कि शायरी के साथ वो स्टेज पे आएंगे तो मैं गाने के साथ शुरुआत करता हूँ।
2: ऐसे भी मिला था मैम हमें रमाडा में ही मिला था, फर्स्ट अवार्ड मैम ने दिया था तो वहां पर मैंने गाने से एंड किया था अपना। मैंने सोचा शायद लोग कहेंगे फरा हर बार स्टोरी ले आती है और वही स्टोरी सब कुछ, शायद कुछ लोगों को बुरा बोरिंग लगता हो, तो मैंने कहा क्यों नहीं थोड़ा सा कुछ हो जाए, तो वहां मैंने एंडिंग जो की थी वो गाने पे की थी।
0: क्या आपने प्रिपेयर किया था उसके लिए पहले से?
2: हाँ मैम मैंने प्रिपेयर किया था।
0: क्या आपने पहले अपनी दोस्त के सामने या मम्मा के सामने या भाई के सामने कभी किसी या शीशे के सामने उसको कोशिश करी
2: भाई के सामने तो नहीं, लेकिन एक दिन पहले जब हमारा दूसरे दिन को वो अवार्ड फंक्शन था तो एक दिन पहले स्वाति और ईशा मैम मेरे रूम में थी तो मैंने उनको गा गा के सुनाया था, मतलब पहले सर्च किया फिर मैंने उन्हें गा गा के सुनाया तो थोड़ा डर लगा, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने उन्हें सुनाया तो उन्हें भी अच्छा लगा तो फिर वो मैंने जाकर।
0: अगर मुझे कोई बोल दे कि गाने के लिए स्टेज पे, तो मैं तो भाग जाऊंगी वहां से. तो इट्स अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि आप कितने कंफर्टेबल हैं. आप जिस चीज में कंफर्टेबल हैं उस पे प्रैक्टिस करिए और उस पे काम करिए, तो जरूर अच्छा स्पीकर बनेंगे और स्टेज फियर जो है उसको आप मैनेज कर पाएंगे, जैसे कि अभी हमने परा के एग्जाम्पल में देखा.
2: वही है ना कि एक बार गलत होगा, दो बार होगा, तीसरा आके हम लोग ठीक हो जाएगा. हमें नहीं देखना चाहिए लोग क्या सोचेंगे क्या कहेंगे. कहीं ना कहीं उनको इतना मतलब वो कर दो कि वो मजबूर हो जाए सुनने में कि हाँ भाई कोई बंदा बोल रहा है.
0: Absolutely, absolutely. I like that. दयाराम जी, आपने भी बताया था कि आपको मुश्किल होती थी पहले बोलने में और अभी.
9: जी मैम, जैसे ट्रेनिंग में कहा था वैसे कि जैसे प्रार्थना सत्र में जब हमारा नंबर आता था तो हम भाग जाया करते थे और घंटे लेट आया करते थे. बोलने में झिझक थी और लोगों के सामने, जैसे स्कूल में तो बहुत सारे लड़के या लड़कियां होती थी, तो कुछ फ्रेंड्स भी होते थे क्लास के, तो वो के बाद में मजाक उड़ाते थे, तो ऐसे तो झिझक रहती थी. लेकिन जैसे काम किया है तो किया, जैसे कम्युनिटी में जाते हैं और महिला पुरुष रहते हैं अक्सर, शायद सभी बड़े रहते हैं, तो जैसे हम करते गए तो हमारा कॉन्फिडेंस वो भी जो कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता गया. तो कोई भी जब मैं कंप्यूटर क्लास जा तो उसमें 11th और 12th लड़कियां हैं.
0: अच्छा.
9: वो करीब 17 या 18 से ऊपर, तो कभी कभी मुझे डर लगता है कि मैं कुछ गलत ना बताऊं, लेकिन नहीं, मेरे ऊपर मुझे विश्वास रहता कि जो मैं बताऊंगा. लेकिन उससे पहले क्या, मैं यहाँ पे भी प्रिपेयर होता हूँ कि हाँ मुझे ये आज बताना, इसलिए शायद वो भी कुछ बातें पे.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. प्रिपेयर अगर आप करके जा रहे हैं तो जरूर आप अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे. तो मैंने भी बताया जैसे कि जरूर आप अपने टॉपिक पे काम करिए अगर आपको टॉपिक पहले से पता है. अगर एकदम से किसी टॉपिक पे बोलने के लिए बोला गया है तो घबराहट हो सकती है, लेकिन आप 2 मिनट लगा के अपना ख्याल तैयार कर सकते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हैं और फिर आप अपनी बात कहें. अगर किसी और को कोई शेयर नहीं करना तो वी कैन क्लोज दिस सेशन. आई होप इट इज ऑफ एनी यूज. अगर छोटा सा भी इसमें एक टिप भी अगर ऐसी थी जो आपके लिए हेल्पफुल थी, सो इट्स माय वर्क डन. सो प्लीज ये शेयर करिएगा और अपनी कम्युनिटीज के साथ प्रैक्टिस करिएगा शीशे के सामने. मुझे वीडियोस भेज सकते हैं, मैम को भेज सकते हैं फीडबैक के लिए, शिवम सर को भेज सकते हैं कि हम कैसा बोल रहे हैं, अगर किसी को सपोर्ट चाहिए.
10: बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा इतना सम्मान किया. मैंने आपको तब सुनाया था कि इतना सारा नेशनल अवार्ड मिला है. मेरा फादर 90 इयर्स ओल्ड है और ब्लाइंड है. इतना सारा नेशनल अवार्ड मिला तो जो नेशनल अवार्ड हमको जो मिला था ना, उनको सबको बुलाया, बिठाया और बात किया कि नेशनल अवार्ड इतना सारा लेकर क्या करोगे. तो हम तो सब चुप हो गए कि क्या करेंगे, तो मतलब क्या है. तो बोले और कुछ नहीं करना है, लेकिन आपके पास जो स्किल है वो बांटो, अब सबको बांटो, सबको दो वो स्किल, दूसरों को सिखाओ. तो योगानुयोग मैडम से भी मुलाकात हो गई और ये मौका मिल गया, अब ये बांटना है बस. धन्यवाद.
11: इनको ना एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं इटली से, जर्मनी से. ही कांट स्पीक इंग्लिश, वो समझ नहीं सकते हिंदी, तो वो कहते हैं मैं उनको अपनी ही किसी लैंग्वेज में ऑर्डर ले लेता हूँ और सप्लाई कर देता हूँ और कम्युनिकेट.
10: हमारा एक मिशन है, हमारा फैमिली का एक मिशन है, F2F, फार्मर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फाइबर, फाइबर से फैब्रिक, फैब्रिक से फैशन, फैशन से फॉरन.
12: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है. तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम। सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
13: हेलो, मेरा नाम नीलम है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं घर में रहती हूँ। मुझे

0: जा सकती हूँ, अब मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। और सबसे बड़ी बात जो रीट इंडिया से जुड़ने के बाद मेरे साथ हुई है वो ये कि मैं घर में रह के डिप्रेशन में रहने लग गई थी, अब मैं फ्री माइंड हो गई हूँ, मैं मतलब आज़ाद होकर सोच सकती हूँ और थोड़ा मेरा दिमाग भी मतलब सही रहने लग गया है। पहले मैं बहुत परेशान रहती थी घर में रह के, मैं बाहर भी कहीं नहीं जाती थी और घर में रह के यही रहने लग गया था, बस डिप्रेशन नहीं रहने लग गया था, अब यहाँ आके मैं बिल्कुल ठीक रहने लग गई हूँ। हाँ, मैं हाउसवाइफ के लिए ये कहना चाहूँगी कि आप लोग बाहर आइए, आपको नहीं सीखना नहीं है वो ठीक है, बट आप आइए, सीखने के बहाने से ही आइए ताकि आप मतलब मेंटली तौर पर सही रह सकें और आपको एक दूसरे से बात करके कुछ नया पता लगे, मतलब किसी चीज़ की नॉलेज ना हो तो कुछ अच्छा ही पता लगे अपने परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, उनकी परवरिश के बारे में, बहुत कुछ आप यहाँ आके जान सकते हैं। थैंक यू रेड इंडिया।
1: Hello everyone, my name is Lancy and I passed 10th class. Then I think to join Read India Academy to improve my condition. मैंने अकेडमी ज्वाइन की रीड इंडिया और उसमें हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ TEG, टेक्नोलॉजी एम्पावरिंग गर्ल्स। ये एक कोर्स है जो वुमेन और गर्ल्स के लिए है, ये वुमेन और गर्ल्स की बैड कंडीशन को इम्प्रूव करता है। जैसे पहले घरों में महिलाएं निकलती नहीं थी और कोई निकलने नहीं देता था, भाई और उनके पिता, लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज ये प्रोग्राम चला है तो इसके लिए सब यहाँ पे वुमेन और गर्ल्स आती हैं, कंप्यूटर कोर्स करती हैं और सिलाई करती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती हैं जिनसे वो इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं और आगे भी ये प्रोग्राम चल रहा है। मैंने ये कंप्यूटर कोर्स किया है 21 डेज का भी और मैं बेसिक कंप्यूटर भी कर रही हूँ और मैंने इंटरनेट के थ्रू मेलिंग सीखी है, वेबसाइट से लिंक बनाना सीखा है और मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखी है। पहले मतलब मुझे कुछ नहीं करना आता था, मुझे किस सबकी ज़रूरत होती थी, लेकिन आज कल मैं खुद कर रही हूँ ये सब और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होती, बस मैं बहुत इंडिपेंडेंट फील करती हूँ। थैंक यू रीड इंडिया एकेडमी।
2: गुड आफ्टरनून, माई नेम इज़ तनु तनवर, आई पास 10th क्लास एंड आई ज्वाइन रीड इंडिया अकेडमी इन शाहबाद मोहम्मदपुर। दिस इज़ ओनली वन अकेडमी हु टीच अस कंप्यूटर। दिस अकेडमी हेल्प्स टू बी अ वुमेन इंडिपेंडेंट। रीड इंडिया स्टार्ट्स टैग प्रोग्राम फॉर गर्ल्स एंड वुमेन्स ओनली टू इम्प्रूव द बैड कंडीशन फॉर वुमेन्स एंड इट हेल्प्स अस इन फॉर्म फिलिंग एंड ऑल्सो वी हेल्प्स आर पेरेंट्स, देन वी ऑल्सो रिजर्व टिकट्स। थैंक यू।
3: I am Shweta. I study in IGNOU University और I done NPTT course for Polytechnic Institute, रजौरी गार्डन। और हमारे जो यहाँ पे शाहबाद में ये है ना NGO, मैं यहाँ से क्लासेस ले रही हूँ टैग की, तो इससे मेरे को काफ़ी चेंजेस आए हैं और थोड़ा सा लगा के भाई यहाँ पे आके हाँ बाकी को भी करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और काफ़ी हेल्प है, मतलब टीचर्स अच्छे से समझाते हैं, कोई दबाव नहीं, किसी का कोई प्रेशर नहीं है। और दूसरा फिर इससे ये है कि नॉलेज बढ़ती है यहाँ पे आके एक दूसरे को, मतलब हम जाके जैसे हम आ रहे हैं किसी को बता रहे हैं डिटेल दे रहे हैं तो इससे काफ़ी चेंजेस आते हैं, मतलब किसी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक तो पास में है और ऊपर से यहाँ पे कोई ऐसे प्रेशर वाली बात नहीं, जैसे कोई मतलब फोर्स कर रहा है किसी चीज़ के लिए, कोई बता नहीं रहा, इसमें ये होता है। और मतलब होना चाहिए कि हर घर से कोई एक भी आए ना, तो ये नहीं मतलब कि सिर्फ घर में या एक फैमिली में, इसमें पूरे एरिया में चेंजेस आ सकते हैं अगर हम लाना चाहें तो। और उसके बाद जैसे होती है ना फैमिली टाइम से पहले मतलब लड़कियों को मतलब घर बिठा लेते हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल कंडीशन लगा लो, कुछ भी हो, जिससे लड़कियां घर बैठ जाती हैं, पढ़ाई कर नहीं पाती, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है इससे, इस लाइन में आने से, क्योंकि इनमें मतलब इतना कोई ज़्यादा हाई फाई फीस वगैरह भी नहीं लगती कि जिससे भाई कोई अफोर्ड नहीं कर पाए, इसमें नॉर्मली होता है। फाइनली मतलब ये कि जैसे नॉर्मली फैमिली होती है वो भी कर सकती है और जो मतलब बिल्कुल लो होती हैं वो भी कर सकती हैं। और जैसे मतलब भाई होती हैं कुछ फैमिली जो लड़कियों को सपोर्ट नहीं करती, सिर्फ लड़कों को करती हैं कि भाई लड़के ही आगे बढ़ सकते हैं, लड़कियां नहीं बढ़ सकती, और शादी वादी कर देते हैं, उनकी पढ़ाना नहीं चाहते उनको आगे, तो उनके लिए भी मतलब है कि भाई वो कर सकती हैं आके, तो उनको लगेगा, खुद ही लगेगा, मतलब चेंजेस आ जाते हैं। और इससे मतलब इतना कुछ सिखाते हैं हमें यहाँ पे ये कि मतलब हमें खुद लगता है कि हम अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग वर्क में।

और हमें ऑनलाइन शॉपिंग करना या ऑनलाइन मतलब कुछ भी वर्क है वो हम कर सकते हैं। तो इससे हमें हमारे लाइफ में भी चेंजेस आते हैं और घर वालों के में भी आते हैं, और इससे ये आगे हमारा जो फ्यूचर होता है ना वो सेव हो जाता है, क्योंकि अगर हम आज अपने पैरों पर खड़े तो तभी तो अपने बच्चों को हम बना सकते हैं मतलब इंडिपेंडेंट। अगर बच्चों को कुछ सिखाना तो उसके लिए पहले खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, इससे बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले हमें कुछ जानकारी होगी, हमें कुछ डिटेल्स होंगी, तभी हम किसी के सामने मतलब रख सकते हैं। एक शादी करना और मतलब लाइफ को घर में दबा के रखना, ख़त्म कर देना, सब कुछ नहीं होता आज के टाइम में। मतलब जितना बढ़ो आगे उतना कम है, और हर किसी को बढ़ना चाहिए, किसी एक को नहीं, हर किसी को, जहाँ से जैसी हेल्प मिलती है जो मिलती है वो करनी चाहिए। इसमें कोई वो नहीं है कि सिर्फ यही कर सकता है, यही बोल सकता है, मैं नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। सबको है मतलब एक फ्रीडम होती है अपने आप में, लाइफ अपनी है, किसी का प्रेशर नहीं होता कोई के, मतलब हम किसी के प्रेशर में आके अपनी लाइफ ख़राब कर दें या मतलब बोल लें नहीं, कुछ नहीं करें, आगे नहीं बढ़े। एक दो बार मतलब होता है भाई, डर होता है एक, लेकिन बार बार निकलने से ना सब डर खत्म होने लग जाता है धीरे धीरे, क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है ख़त्म करने से ख़त्म होएगा, ऐसे डरने से तो डर बढ़ता ही है, कोई मतलब दूसरा उसको ख़त्म नहीं कर सकता आके। अब हम हैं जैसे कुछ होती हैं लड़कियाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की को फ्रीडम होता है, फैमिली का सपोर्ट होता है, जैसे कि मैं हूँ, मेरे सिर्फ पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट किया है, बाकी फैमिली वाले नहीं चाहते थे कि मतलब मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि सबको ये था ट्वेल्थ कर लिया पास आउट हो गया स्कूल शादी कर दो ये वो, लेकिन मेरे पेरेंट्स शुरू से वर्किंग है तो वो चाहते हैं, उनको पता है पैसे की कीमत क्या है, तो वो चाहते हैं मतलब तो बच्चे कुछ अच्छा करें ताकि उनको इस लाइन में ना जाना पड़े और वो अपने पैरों पर खड़े हो, मतलब अच्छे से अच्छा काम करें और दुनिया में मतलब उनकी एक अलग पहचान हो। तो इसलिए उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मतलब मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया और आज मैं यहाँ हूँ। और एक शादी की तो एक लास्ट में एक वो होता है कि भाई अब तो करनी है, वो तो एक लास्ट मोमेंट होता है कि अब तो भाई स्टेप लेना ही है, उससे पहले ना सिर्फ स्टडी के बारे में सोचना चाहिए कैसे लाइफ को इंडिपेंडेंट बनाया जाए। ज़रूरी नहीं होता कि मतलब घर वालों ने बोल दिया आप सुन के बैठ गए, चलो भाई कोई नहीं, उनको समझाना चाहिए अपने तरीके से, ऐसे भी नहीं कि लड़ लो ये कर दो वो कर दो, नहीं, प्यार से समझाओ, पढ़ाई की इंपॉर्टेंस बताओ, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या दुनिया में क्या हो रहा है, कितनी इंपॉर्टेंस है। और वैसे भी आजकल तो हर कोई लड़का भी अच्छा नहीं मिलता, हर कोई फैमिली भी अच्छी नहीं मिलती, वो तो किस्मत की बात है, सुख दुख तो किस्मत का होता है। तो इसलिए हमें जितना हो सके ना अपने पैरों पर खड़ा होकर इंडिपेंडेंट होकर मतलब सोचना चाहिए, लास्ट एक मोमेंट होता है जो स्टेप लेना है, उससे पहले अपनी लाइफ बनाओ, जो करना है वो करो, बाकी करो सिर्फ ऐसा ही कि घर वालों को भी अच्छा लगे और खुद का भी एक स्टैंड और दुनिया में अपनी पहचान हो।

0: अभिदा और फरा, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम पे जिसका नाम है नीडल एंड थ्रेड, और जिससे आप रोजाना काम करती हैं। और आपको ये भी पता है और हम सबको पता है कि नीडल और थ्रेड के बिना हमारा गुजारा भी नहीं है, बिकॉज सबको कपड़े सिलवाने हैं, पहनने हैं, और बहुत सारी औरतें जो हैं, जो रीड के साथ जुड़ी हैं या वैसे भी काम करती हैं, उनको स्टिचिंग करके जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो यू कैन नॉट इमेजिन दैट। और अभी प्रोफेशनल कोर्सेज भी बहुत सारे हैं, यूनिवर्सिटी में भी हैं, इंस्टीट्यूशंस में भी हैं अपैरल डिज़ाइनिंग के। और जैसे अबीदा ने भी छोटा कोर्स किया है अपैरल डिज़ाइनिंग पे, और आज की जो चर्चा है हम इसी पे बेस करेंगे। और अबिदा और फरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अबिदा, शशांक ने आपके बारे में इंट्रोडक्शन दी है, और आपने अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए बहुत सारी मेहनत करी है, बचपन से मेहनत करी है। आप अपना गांव छोड़ के दिल्ली में भी आई रहने के लिए, पढ़ने के लिए, और फिर वापस जाके जब आपके मन में जुनून था कुछ करने का तो आपने उसको पूरा कर दिखाया। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि जुनून अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है, और ज़िंदगी बहुत लंबी है, और अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करने की आप इच्छा भी रखती हैं, और उसके उसको पूरा करने के लिए आप में दृढ़ विश्वास भी है। तो चलो हम बातचीत शुरू करते हैं। अबिदा, आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं, थोड़ी जानकारी दें, और फिर हम आगे इस चर्चा को लेकर जाएंगे। अबिदा प्लीज।
1: गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम आबिदा है और मैं रामपुर शहर के छोटे से मोहल्ले कलघर के रहने वाली हूँ। मैम, यहाँ का माहौल हमारे यहाँ मतलब ऐसा है कि लड़कियों को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। शुरू से ही हम अपने आसपास का माहौल यही देखते आए हैं, अपने घर का भी, कि हमारे भाइयों को एजुकेशन दी जाती थी और अच्छे से वो लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम लड़कियों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। जैसे मैं अपनी बड़ी बहनों को देखती थी, वो घर का काम काज कर रही हैं और सिर्फ घर तक ही सीमित रहती थी, किचन तक, घर तक उनकी लाइफ रहती थी। लेकिन मेरे अंदर बचपन से ही एक जुनून था कि मुझे अपनी लाइफ को चेंज करनी है। मुझे लड़कों से लड़कियों को क्यों अलग समझा जाता है, मुझे वो सोच हटानी है लोगों की, और मुझे भी पढ़ना है, आगे कुछ बढ़ना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, लड़कियों का नाम रोशन करना है। ये सारी इच्छाएं मेरे अंदर बचपन से ही रहती थी। मैंने अपने घर वालों को बहुत सपोर्ट किया कि मुझे आप पढ़ने दें, तो घर वाले ने यही कहा कि नहीं, आप लोग, आप जैसे लड़कियां यहाँ घर में रहती हैं, आप भी ऐसे रहिए और घर का काम काज सीखिए। हालांकि मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत चाहत थी कुछ बनने की। तो मैंने अपने घर वालों को कन्विंस किया, उन्होंने मेरा एडमिशन एक गवर्नमेंट स्कूल में कराया, कवरलगा स्कूल, वहां से मैंने 8th क्लास पास की। फिर उसके बाद वहाँ रामपुर में कारोबार नहीं है, बहुत प्रॉब्लम थी घर के, खुद के पापा एक जॉब करते थे छोटी सी, और बस उसी से हमारा गुजर बसर काफी मुश्किल से होता था। तो इसी वजह से काम के लिए हम लोग दिल्ली चले गए, हमारे भाई ने वहाँ काम शुरू किया। मैंने अपने घर वालों को कोर्स किया बहुत ज्यादा कि मुझे आगे पढ़ने दें, कुछ बनने दें, ताकि मैं भी अपने भाइयों के साथ सपोर्ट करूँ घर का। तो मेरे घर वालों ने मेरी हेल्प की और मुझे आगे पढ़ने दिया। मैंने मदरसा जामिया से अपनी एजुकेशन आगे की, और जिसमें मैंने बीए फाइनल किया, और अरबिक साइड से, अरबी लैंग्वेज सीखी उस साइड से मैंने किया। लेकिन फिर भी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मेरे अंदर एक सोच रहती थी कि मैं किस तरह आगे बढ़ूं, किस तरह अपने पैर पर खड़ी हूँ, किस तरह लड़कियों का नाम रोशन करूँ। ये सारी सोच मेरे अंदर हर टाइम रहती थी, लेकिन किस तरह, ये सवाल मेरे अंदर रहता था, बार बार ये सवाल मेरे अंदर उठता था कि मैं किस तरह अपने पैर पर खड़ी हूँ। उसके बाद फिर इसके दौरान मेरी एक फ्रेंड के थ्रू मैंने एक सिलाई सेंटर ज्वाइन किया, और मैंने वहां से स्टिचिंग कोर्स किया, काफी अच्छे से कोर्स किया, काफी मेहनत से, मन से, क्योंकि वो कोर्स सीखने के लिए मैंने, ये नहीं कि मैं शौक में कर रही हूँ, मुझे कुछ बनना है, आगे कुछ बनना है, कि सिलाई के करियर ही बनना है, लेकिन मुझे कुछ बनना है, ये सोचकर मैंने सेंटर ज्वाइन किया। और काफी मेहनत से, लगन से, जो लड़कियां मुझसे पहले की थी वहां पर, उनको भी पीछे छोड़ा मैंने, और इतनी मेहनत से मैंने वहां से कोर्स किया, और मुझे कहते बहुत खुशी है कि मैं वहाँ पहुंच आई। बहुत अच्छे से मुझे उन लोगों ने प्रेजेंट भी दिया, काफी लोग आए थे, उन्होंने मुझे सराहा, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर दी, लेकिन घर से सपोर्ट नहीं मिला जॉब का। उसी दौरान मेरी दोनों सिस्टर की शादी हो गई, और शादी के बाद फिर घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे पर आ गई। घर घर वालों ने जॉब के लिए नहीं मुझे सहारा दिया, उसके बाद फिर हम लोग रामपुर यहाँ आ गए, अब लोग हम शिफ्ट हो गए रामपुर। वहाँ उसी दौरान मेरे पापा काफी बीमार रहने लगे, उनको हार्ट की प्रॉब्लम रहने लगी, उससे पापा का काम छूट गया। और उसी सिलसिले में फिर मैं काफी टेंशन में रहने लगी कि मैं क्या करूँ आगे। बस अभी मुझे री नौकर अकबर सर आए जहाँ और हमारा हॉल पसंद किया और रीड इंडिया ने मुझे ऑफर जॉब की, तो मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया। और सबसे बड़ी सपोर्ट मेरी भाइयों ने की, क्योंकि यहाँ इस हॉल में वो लोग हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे और मुझे चाहिए था हॉल, तो मेरे भाइयों ने अपना काम रोककर हॉल दिया मुझे, तो मैंने रीड इंडिया सेंटर चलाया। और मेरा ये सेंटर काफी अच्छे से चलाया। इस सेंटर में आने से पहले मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, और काफी दिक्कत मुझे थी और लड़कियों से अच्छे से बोल नहीं पाती थी और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। वो कॉन्फिडेंस मुझे सिखाने के साथ आया, मैंने जितना लड़कियों को सिखाया उतनी मेरी खुद की स्किल्स डेवलपमेंट होने लगी और मुझे लड़कियों से बात करने का तरीका आने लगा। और सिखाने के साथ साथ लड़कियां मेरी काफी मेरी इज्जत करने लगी, मेरी वैल्यूज बढ़ी। मोहल्ले में मुझे कोई नहीं जानता था, मोहल्ले में मुझे काफी जान मेरी जान पहचान बढ़ गई और लोग मुझे जानने लगे। और मैंने 3 साल से सेंटर चला रही हूँ, जिसमें मैंने 400 तक लड़कियों को सिखा दिया है और 400 घरों तक मेरी पहचान बढ़ गई। और इन 400 घरों तक मेरी पहचान बढ़ी है और वो 400 लड़कियां और 400 लड़कियों को लेकर आई थी। हमारे यहाँ का अभी माहौल वही है कि लड़कियों को निकलने नहीं देते, लड़कियों को आगे कुछ बढ़ने नहीं देते। लेकिन मैंने लड़कियों के घरों पे गई, उनके पेरेंट्स से बात की कि आप लोग अपनी लड़कियों को यहाँ भेजें और हमारे सेंटर भेजें, उनको कुछ सिखाएं। तो उन लोगों ने मेरी बात एग्री किया और मेरे बाद में लड़कियों को भेजा और यहाँ पर लड़कियों ने आकर सीखना शुरू किया, जिससे काफी इंप्रूवमेंट आया। हमारे मोहल्ले में भी काफी लड़कियां ऐसी थी जो घरों से निकलना नहीं जानती थी, जिनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, बात करने का तरीका नहीं आता था, वो सब उन्होंने सेंटर से ही सीखा। और यहाँ से उन्होंने रहने के बाद कमाना शुरू किया और अपने पैरों पर खड़ी हुई है। उन लोगों ने अपने फैमिली को सपोर्ट भी किया, काफी लड़कियां ऐसी हैं जो अच्छे से कमा रही, कमा भी रही।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फरा आपके साथ बैठी है फरा, और आप तो रीट से बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं, जब आप बहुत छोटी थी तब से ही रीट से जुड़ी हैं। और ये स्टोरी जो अबिदा अपनी बता रही है, आपके क्या विचार हैं इस स्टोरी पे? और आपने अबिदा को अपने सेंटर में जोड़ा, कलघर में इन्हीं के घर में आपने सेंटर बनाया सी। जब आपके दिल में जुनून होता है तो नेचर भी आपको सपोर्ट करती है उसी काम को करने के लिए। अब जब
1: जी मैम,
0: पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे किसी भी रीजन से, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली ये बात बोल रही हूँ और मैं उनकी बहुत इज्जत भी करती हूँ, कि ये होता है कि लड़कियों को बाहर भेजने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है पेरेंट्स को, तो वो कॉन्फिडेंस पेरेंट्स में भी टाइम से आता है, एकदम शुरू से नहीं आता। और जब मैं अमिता की स्टोरी सुन रही हूँ तो मुझे फरा की स्टोरी भी याद आ रही है सामने। तो फरा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी अबिदा की स्टोरी में, क्योंकि आप इसको 2019 से देख रही हैं।
1: जी मैम, मैं ऐड करना चाहूंगी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रीड इंडिया रामपुर सेंटर से फरहा। आबिदा की स्टोरी में मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि आबिदा बहुत ही अच्छी और मेहनती लड़की है, जिनको मैं पहले दिन मिली थी और आज मिल रही हूँ। बहुत बड़ा फर्क है उनके अंदर। जैसे मेरी जर्नी थी रीट में, मैं यहाँ थी और अब यहाँ आ गई हूँ रीट से जुड़ने के बाद, ऐसे ही आबिदा ऐसी थी और आज यहाँ आ गई है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज वो लाइव आप सबके सामने अपनी स्टोरी शेयर कर रही है। जो कुछ मतलब जब हम फर्स्ट डे आए थे तो कुछ बता भी नहीं पा रही थी, तो जब मेरी इनसे फर्स्ट डे मुलाकात हुई थी तो ये नकाब में और बुरके वगैरह में थी घर में ही, और ऐसे ही मतलब रहती थी। तो मैंने इनसे पूछा कि, इन्होंने हमसे बोला कि हम यहाँ पर, हमारा ये थोड़ा सा घर का हिस्सा है और यहाँ पर हम ऐसे से कोई कुछ चलाना चाहते हैं। तो हमने बोला यहाँ पर लड़कियां वगैरह कैसी हैं और लड़कियां आ जाएंगी यहाँ तक, क्या घर में से पेरेंट्स निकलने देंगे, क्या आपके अंदर वो जज्बा है कि आप सिखा पाएंगी, लड़कियों से जुड़ पाएंगी और या लड़कियों से बातचीत कर पाएंगी। तो उन्होंने अपना पूरा कॉन्फिडेंस दिया हमें कि हाँ हम करेंगे। मतलब इन्होंने मना नहीं करा, इनके पेरेंट्स मना कर रहे थे कि कोई
2: कोई जॉब नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम करेंगे, तो मुझे लगा कि हाँ भाई फरह के जैसी भी कोई और है करने के लिए जज्बा रखती है, तो वहीं से इन्होंने स्टार्ट करा और हमसे हामी भरी करने के लिए, तो हमें लगा कि हमारा यहाँ पर सेंटर चल सकता है रीड इंडिया का, और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो आबिदा के जैसी बाहर निकल के कुछ कर सकती हैं। तो जब हमने इनसे बात करी और इन्होंने मोबिलाइजेशन करा, तो जब भी हमारे पास 100-150 लड़कियां आई बाहर निकल के, और इन्होंने घर घर में जाके मोबिलाइजेशन करा, पेरेंट्स को समझाया, क्योंकि यहाँ पर ऐसे पेरेंट्स हैं, मुस्लिम इलाका है, जो घर से बिल्कुल लड़कियां नहीं निकल पाती है, तो इन्होंने घर घर जाके, हमने इन्हें 1 हफ्ते का टाइम भी दिया कि आप जाइए और हमें बताइए कि आप कर सकती हैं, तो इन्होंने हमें 150 लड़कियां ला के दी। और जब हमने उन लड़कियों से मुलाकात की, तो वो फर्स्ट टाइम अपने घर से निकल के किसी सेंटर पे आई थी। उन्होंने हमें बताया कि मैम हम फर्स्ट टाइम अपने घर से निकले हैं, हमें फर्स्ट टाइम इजाजत मिली है, क्योंकि सिर्फ हम पढ़ाई के लिए जाते हैं और या फिर हम अपने घर पे रहते हैं, पढ़ाई के लिए भी हम अपने भाई या फादर के साथ जाते हैं, एग्जाम वगैरह देते हैं, तो वो बाहर खड़े होते हैं और फिर हम देकर उन्हीं के साथ आ जाते हैं वापस। लेकिन ये एक पहला सेंटर है जो हमारे घर के करीब समझिए, या फिर एक टीचर के अंदर, टीचर ने उनको किस तरीके से उनके पेरेंट्स को समझाया, वो एक विश्वास समझिए जो हमारे पेरेंट्स ने हमें यहाँ तक भेज दिया। तो हमें बहुत खुशी हुई, और मुझे ये भी खुशी हुई कि आबिदा उन लड़कियों को घर से निकाल के लाई, इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया, आगे बढ़ने का जुनून आया कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ, और इतनी लड़कियों के पास ये पहुंची और उनको समझाने में कामयाब रही। लड़कियां यहाँ धीरे धीरे आई, और लड़कियां आज इतनी है कि 400 से लेके 500 लड़कियां तक आबिदा को जानती हैं, और उनके घर वाले कभी भी किसी टाइम भी यहाँ भेज देते हैं, उनको कोई भी चिंता नहीं है, उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर आते हैं, और हम लोगों ने पेरेंट्स से भी बात की है कि आप अपनी लड़कियों को बाहर तो कहीं जाने देते हो, लेकिन हमारे सेंटर तक आप भेज रहे हो, क्या आपको हमारे सेंटर में ऐसी कौन सी अच्छी चीज लग रही है? तो उन्होंने यही हमसे बोला है कि आपके सेंटर के अंदर एक तो लड़की कुछ सीखने आती है, कुछ सीख के जाती है, और दूसरा ये एक विश्वास और एक लड़की के लिए सेफ्टी वाला सेंटर है, जो हमें लगता है कि हमारी लड़की वहां जाके बिल्कुल सेफ है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो हमें बहुत खुशी हुई। कभी कभी लड़कियां ये भी होती है कि घर से पूरे दिन के लिए भी कही जाती है कि मम्मी हम वहां पूरे दिन रहेंगे, हमें मतलब कोई काम करना है, स्विमिंग का कोई काम है, या फिर प्रोडक्शन में कुछ करना है, या फिर कोई डिजाइनिंग सूट सिलना है, तो उनके पेरेंट्स वो भी अलाउ कर देते हैं, जब उनके पेरेंट्स का फोन आता है तब वो दिन भर में जाती है। तो यहाँ तक लड़कियों के अंदर फर्क आया, और वो फर्क लाने के लिए आबिदा ने बहुत कोशिश की है, और बहुत अच्छा कनेक्ट करती है लड़कियों से, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी जैसी और लड़कियां बन रही है, फरा से आबिदा, आबिदा से और 150-150 से 400 लड़कियां बन जाए, और ऐसे ही हमारा सोशल वर्क कामयाब रहे हमेशा, और हम ज्यादा से ज्यादा लड़कियों, औरतों और लड़कों तक पहुंचे, और रीड का नाम बहुत रोशन। तो मैम ये आबिदा की जो अंदर की कॉन्फिडेंस था वो निकल के आया।
0: वेरी गुड फरा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी कि रीड का मॉडल ही ऐसे है। रीड का मॉडल ये है कि हम गांव में जाके कैसे गांव की लड़कियों के साथ मिलके काम करें जो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, और उन्हीं के एरिया में हम ऐसे सेंटर खोलें जहाँ पे लड़कियाँ बड़े कॉन्फिडेंस से आ सकें और अपने हम उम्र की लड़कियों से बहुत कुछ सीख सकें, और अपने परिवार को भी सपोर्ट करें, अपनी लाइफ में भी चेंज लेके आएं, और अपने आने वाले ज़िंदगी की सोच भी उनकी क्लियर बन जानी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है फरा, और मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी कहना चाहूँगी। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मेरी ये सोच नहीं है कि हम घर से लड़के घर की रजामंदी ना होने की वजह से, या हम अपनी जिद से कुछ करें। जैसे फरा की स्टोरी थी कि फरा ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, अपने गांव में ही सेंटर था और उस गांव के सेंटर में काम करके अपनी जिंदगी में बदलाव लाई, अपनी सोच में बदलाव लाई, अपने पेरेंट्स की सोच में बदलाव लाई, अपने पैरों पे खड़ी हुई। ऐसे अबिदा ने भी किया। अबिदा बिल्कुल अपने पेरेंट्स की बात मानती थी, कोई जिद नहीं थी कि मुझे घर से बाहर जाना है, पर ऐसे सरकमस्टांसिस में रीड का मॉडल उनके लाइफ के साथ इतना अच्छा तालमेल बिठाया उसने कि उसने अपने घर में ही जगह दी, और अपने घर में ही उसने सिलाई मशीन रखने के लिए इजाजत मांगी अपने पेरेंट्स से, और देखिए उसके ब्रदर ने कितना सपोर्ट किया कि अपना काम बंद करके उसने अपनी बहन को जगह दी। क्योंकि उसकी भी यही सोच थी कि आज अगर मैं अपनी बहन को सपोर्ट करूंगा तो मेरी बहन बहुत आगे बढ़ जाएगी और उसके दिल की जो ख्वाहिश है उसको मैं प्रोत्साहित करूंगा कुछ करने के लिए। तो ये खाली अबिदा का रोल नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अबिदा के पेरेंट्स का, अबिदा के भाई का, फरा एज एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ हर एंड ऑल्सो फरा पेरेंट्स और आसपास का माहौल जो पॉजिटिव बना, ये सब चीजें बहुत रोल प्ले करती हैं। तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी इस सोच को समझने के लिए, इस सोच को आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि जब हम अपनी सेल्फ ग्रोथ की बात करते हैं, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, तो महिला को अपने दायरे में ही रह के अपने परिवार की सहमति से कैसे अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना, ये बहुत बड़ी बात है और इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम सबका सलाम है, बिकॉज ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत टफनेस अपनी लाइफ में, बहुत हार्ड वर्क अपनी लाइफ में करके, बहुत चैलेंजेस को फेस करके आता है और हम जब आगे बढ़ते हैं और जो इसकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है वो हम किसी और चीज से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो फरा और अबिदा, आपका जो जर्नी रही, जो दोनों ने जर्नी पार करी है, इस जर्नी को सलाम, और आपने जो लोगों को कन्विंस करा और जो लोगों को प्रोत्साहित करा आज के दिन में 400 लड़कियों को सिलाई सिखाना और उनके घर में इनकम ऐड करना, ये बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है, इसको आप छोटा मत समझिए। आपने जो अपनी लाइफ में किया है इसका बहुत सारे लोगों पे, बहुत सारी लड़कियां जो आपसे डायरेक्ट जुड़ी हैं, उनका पेरेंट का फैमिली जो उनके माँ बाप हैं, उनके बहन भाई हैं, और जब उनकी शादी के बाद ससुराल गए हैं और उनके माँ बाप, उनके हस्बैंड, उनकी पूरी फैमिली पे इसका क्या असर पड़ता है आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से रियलाइज़ करती हूँ, तभी रीड गांव गांव में जाके, गांव गांव में लोगों से बात करके, गांव में ऐसी लड़कियों को तराशते हैं जिनमें हुनर है पर वो कुछ कर नहीं सकती हैं। और आज हमारे सामने इस प्रोग्राम में दो लड़कियां बैठी हैं, फरा और अबिदा, जिनके अंदर एक टैलेंट छुपा हुआ था, उसके ऊपर धूल थी, हमने खाली उस धूल को हटाया है और आज ये ब्राइट स्टार बनके हमारे सामने बैठी हैं। थैंक यू अबिदा सो मच फॉर शेयरिंग योर, इस ये स्क्रीन पे शेयर करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए और मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ। अभी मुझे ये बताइए कि जो लड़कियां आपके पास सिलाई सीखने आती हैं, उनकी जिंदगी में कैसे बदलाव आया?
1: मैं ऐसा है जैसे यहाँ हमारी लड़कियां कुछ ज्यादातर ऐसी हैं जिनके फैमिली सपोर्ट ज्यादा नहीं था उनका, लेकिन हमने उनके घर बात की, उनके पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने यहाँ भेजा। उनकी माली हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी, मजदूरी करती है काफी लड़कियों के वालिद, उनके पापा, तो लड़कियों को हमने वो हुनर दिया और स्किल्स दी उनको इतनी कि उन्होंने यहाँ सीखने के दौरान ही सिलाई करना शुरू कर दी। उन्होंने अपने खुद के कपड़े सीकर और अपने पैसे बचाए और फिर उसके साथ साथ उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता चला गया और उन्होंने बाहर की सिलाइयां भी लेना शुरू कर दी और जिससे उन्होंने घर में अच्छा सपोर्ट किया उन लड़कियों ने। और अपने पेरेंट जो उनको इजाजत नहीं देते थे, वो खुद उनकी अम्मियों ने आकर मुझसे बात की और शुक्रिया अदा किया कि आपने हमारी बेटियों को इस लायक बनाया है कि आज हमारी बेटियां इस लायक हैं कि अर्निंग कर रही हैं, अपना खर्च भी उठा रही हैं और अपने घर का खर्च भी उठा रही हैं। कुछ लड़कियां ऐसी थी जिनकी पढ़ाई भी रुक गई थी, घर की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि उनकी पढ़ाई रुक गई थी और उन्होंने इतना कमाने लगी है वो लड़कियां कि उन्होंने अपनी पढ़ाई भी दोबारा स्टार्ट कर दी है और कुछ लड़कियों ने ट्यूशन वगैरह भी लगा ली है अपनी। और कितनी लड़कियां ऐसी हैं कि मेरे पास एक दो लड़कियां ऐसी हैं जिनकी डिवोर्स हो चुकी है और वो अपने घर में थी, अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करती थी, लेकिन यहाँ सिलाई सीखने के बाद वो खुशी से ये बात कहती हैं कि अब हम किसी पर डिपेंड नहीं है और हम अपना खर्च अपने बच्चों का खर्च खुद उठा रहे हैं।
0: बहुत बढ़िया, आपने तीन पहलू यहाँ पे हमारे सामने शेयर कर रहे हैं। एक तो लड़कियों ने सिलाई सीख के अपने पेरेंट्स की जो फैमिली की इनकम थी उसमें योगदान दिया। दूसरा उन्होंने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करी, ये बहुत बड़ा स्टेप है अपनी लाइफ में। फरा ने तो करा ही है, पर और भी ऐसी लड़कियों ने करा जिन्होंने अपनी पढ़ाई आगे करी, अपनी पढ़ाई को सपोर्ट किया, सेल्फ सपोर्ट किया। और तीसरा जिनका डिवोर्स हो गया वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो गई। तो ये तीन मेजर लाइफ चेंजर्स जो हैं, जो आए उनके लाइफ में, इसका श्रेय आपको जाता है जो आपने बहुत सहनशीलता से, बहुत समझदारी से और बिना इसकी शोर मचाए, शोर मचाए मतलब कि किसी को कानों कान खबर नहीं हो रही है इस चीज की, तभी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि गांवों में कैसे बदलाव आ रहा है। ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए बात, क्योंकि हम कोई मीडिया में स्टोरी नहीं देते हैं, हम कोई इसको शो ऑफ नहीं करते हैं, बट जो रियलिस्टिक चेंज आ रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बातों से सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए, बिकॉज यू आर द चेंज मेकर। हम कहते हैं ना कि हमने सोशल कैपिटल बिल्ड करा, हमने सोशल गेन्स की बात की, हमने देखा कि कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। ये तीनों का श्रेय आपने इतनी सरलता से किया और अपनी इतनी समझबूझ और मेहनत से किया, मैं इसका भी आपको सल्यूट करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से काम किया। फरा, ये हम किन इनके एरिया की बात कर रहे हैं, आपका सिमिलर स्टोरी पटवाई में भी है, राइट? तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे। पटवाई में ये तीनों चीजें जो मैंने बात की है, सोशल गेन्स मतलब कि समाज में उनको कैसे इज्जत मिली, कैसे उनकी इज्जत बढ़ी परिवार में, समाज में, और कैसे उनको धन का भी लाभ हुआ फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और जो लड़कियां बहुत ही डिफिकल्ट सरकमस्टांसेस में थी वो उन्होंने उन सरकमस्टांसेस को रिजॉल्व करा, उस कठिन समय से बाहर आई। तो फरा, आपके यहाँ पे भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होंगी, क्या हमें सुना सकती हैं ऐसी स्टोरी आप?
2: जी मैम, बिल्कुल सुना सकती हूँ। पटवाई तो हमारा सेंटर अभी 6-5 ईयर्स हो गए चलते हुए, और उसमें लगभग 1,000-1,200 लड़कियों ने वहाँ पर सीखा है, स्विमिंग, ब्यूटी और कंप्यूटर है और लाइब्रेरी भी है। तो कुछ लड़कियों की मैं स्टोरी बताऊंगी कि जैसे अभी हमारे पास लॉकडाउन में क्या हुआ कि कुछ बच्चे जूम ऐप के जरिए पढ़ नहीं पा रहे थे और मतलब पैसों से भी परेशान थे। तो अभी हमें दीदी दिया ने ऑनलाइन सेलिंग की एक ट्रेनिंग दी थी, सोशल मीडिया मार्केटिंग की और साइबर सेफ्टी की। तो वही ट्रेनिंग हमने ऑनलाइन के जरिए लड़कियों को दी, कंप्यूटर की लड़कियां हैं, स्विमिंग की लड़कियां हैं, ब्यूटी की लड़कियां हैं, क्योंकि साइबर सेफ्टी से भी बचना जरूरी है और ऑनलाइन सेलिंग तो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि घर पे रह के कोई भी लड़की कुछ भी अर्निंग कर सकती है। तो जब ये हमें ट्रेनिंग मिली तो हमें बहुत खुशी हुई और हमें लगा कि ऑनलाइन के जरिए भी हम लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं। अभी लॉकडाउन में कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, कोई नहीं जा पा रहा है, तो फर्स्ट लॉकडाउन जो लगा उसके बाद हमारे सेंटर खुले, उसमें हमने वो ट्रेनिंग दी। सेकेंड लॉकडाउन बाद में लगा था, तो कुछ लड़कियों को हमने जूम ऐप की ट्रेनिंग दी। जिस तरीके से हमारी रीड में ट्रेनिंग होती थी कि मीटिंग्स होती थी, वो लड़कियां वहां पर आके कंप्यूटर भी सीखती थी और वो देखती थी कि मैम आप ये ट्रेनिंग लेते हैं, ये ऑनलाइन आप फेस टू फेस कैसे बात करते हैं, कैसे ट्रेनिंग लेते हैं। तो हमने ऑनलाइन सेलिंग में ही उनको एक ये ट्रेनिंग दी कि किस तरीके से हम अपनी जीमेल आईडी बनाएं, उसके बाद हमारे पास अगर टच फोन है एंड्रॉइड का तो हम किस तरीके से जूम ऐप के जरिए बच्चों को भी क्लासेस दे सकते हैं जो हमारे स्प्रिंग बूट स्कूल में चल रहा है, और किस तरीके से हम खुद भी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लड़कियां बहुत खुश हुई, क्योंकि कुछ लड़कियों की पढ़ाई बीच में ही रुक गई थी, वो नहीं पढ़ पा रही थी, वो अपने बुक से या फिर जो भी कॉपियां पहले की थी उससे पढ़ाई कर रही थी। जूम ऐप के बारे में उन लोगों को नहीं पता था। जब उनको इस जूम ऐप के बारे में पता चला तो धीरे धीरे हमने उनके घरों से उनके फोन मंगाए, मतलब पापा के या भाई के जो भी घर में फोन रहते थे, उनके पास तो नहीं थे, लेकिन हमने कहा कि आप 2 या 3 दिन के लिए हमारे सेंटर पे फोन लेकर आओ, हम वो जूम ऐप आपको डाउनलोड करके देंगे, आपको पूरी मीटिंग बताएंगे किस तरीके से लेंगी आप, और इससे आप अर्न भी कर सकते हो घर पर बैठ के। जो भी बच्चों की क्लासेस छूट रही है वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, जो आपकी क्लास छूट रही है वो भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो सारी ही लड़कियां अपने फादर, अपने भाई, अपनी मदर का फोन लेकर हमारे सेंटर पे आ गई। जब दूसरे दिन आई तो हमें लगा कि काफी इच्छुक हैं लड़कियां ये करने में, तो हमने उनकी सभी की जीमेल आईडी बनवाई और जूम ऐप के द्वारा ट्रेनिंग उनको बताया कि किस तरीके से हम लेते हैं। तो लड़कियां काफी खुश हुई। 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने एक बच्चों का ग्रुप बना लिया, 5-5 बच्चों का, और उनको फीस रख दी 100 रुपए कि हम आपको ये ऑनलाइन क्लासेस देंगे। गांव की लड़कियां जो मतलब बच्चे जो थे सिर्फ फेस टू फेस पढ़ते थे, उनको ऑनलाइन का पता भी नहीं था, लेकिन जब उन्होंने हमारे वहां से जूम ऐप की ट्रेनिंग ली तो उन्होंने देखा कि स्प्रिंगवुड स्कूल की भी क्लासेस ली जाती है, क्योंकि मैं उन्हीं के सामने देती थी वो क्लासेस। तो उन्होंने 100-100 रुपए बच्चों से कहा कि आप फीस दो और हम आपके ऑनलाइन के जरिए आपकी पढ़ाई करेंगे। कोरोना के टाइम आप कहीं जा नहीं पा रहे हो, आपकी पढ़ाई बीच में रुकी हुई है। तो जब उन्होंने अपने गांव में एक एक देश बनाया, हर लड़की ने 5-5, 4-4 लड़कियों बच्चों का या 2-2 बच्चों का, वो 200 भी कमा रही हूँ तो उनके लिए बहुत है, वो फर्स्ट टाइम था उनका, वो बेच बनाया और उन्होंने उससे स्टार्टिंग कर दी। जब जूम ऐप से स्टार्टिंग कर दी तो जब वो अगले मंथ हमारे वहां आई ये सारी चीजें सीखकर क्लासे लेके, तो बहुत खुश होकर आई और बोली मैम हमने तो अपनी क्लासेस इस पे स्टार्ट कर दी जूम ऐप के जरिए और हम बच्चों की क्लास ले रहे हैं, इस पे अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे लॉकडाउन में हमारी पढ़ाई छूट गई थी वो भी हमारी कंटिन्यू रहती है, लिंक भेज देती है मैम, और हम बच्चों की भी इसमें ट्यूशन जारी रखे हुए हैं, जिससे हमें 200, 300 या 500 के लगभग हम बच्चों को क्लास दे देते हैं। अब हमने उनको इसके साथ साथ ऑनलाइन सेलिंग के बारे में बताया कि आपके अंदर कोई भी हुनर है आप वो भी कर सकते हो। जैसे आप फेसबुक पे अगर आपके अंदर स्विंग का बहुत अच्छा आपको प्रोडक्ट बनाना आता है, वो सूट बना के आप सिर्फ अपने घर में टांगोगे तो आपके मोहल्ले वाले देखेंगे या आपके घर वाले देखेंगे या 1-2 गांव के लोग और आ जाएंगे वो चीज देखने के लिए। लेकिन आप इसी चीज को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे भी डालोगे तो पूरी दुनिया के लोग देखेंगे। अब आप व्हाट्सएप पे आप चैटिंग करते हो अपने रिश्तेदारों को, तो चैटिंग करते हो, हमने उन्हें बताया, बात करते हो, फेसबुक से अपने दोस्तों को बात करते हो, तो आप बात करते करते आप उसको अपना प्रोडक्ट भी भेजो कि हम तो ये बहुत अच्छी कुर्ती बनानी आती है या हमें सूट आता है, आप हमारे सूट भी देखो। वो अपने आगे और दोस्तों को भेजेगा, वो दोस्त उसके आगे को भेजेगा, तो इससे आपकी अर्निंग भी शुरू होगी और अपना काम आप स्टार्ट कर सकोगे। तो कुछ लड़कियों ने ये करना भी स्टार्ट किया था, लेकिन उनको पैसे लेन देन में भी थोड़ी ज्यादा वो आई थी कि दिक्कत की कैसे, क्योंकि उन्हें गूगल पे का पता नहीं था। तो हमने धीरे धीरे उन्हें गूगल पे के बारे में बताया। अधिकतर लड़कियां जो पटवाई में हैं वो इतनी मतलब मेहनती हैं, एक जो हमारे यहाँ ये जो चुन्नी होती है माता की, वो चुन्नी बनने के लिए आती है, तो वो जो 1 रुपया 1.5 रुपया, तो दिन भर में लड़कियां 10 या 15 या 20 वो चुन्नियां निकाल लेती है उससे। तो एक लड़कियों ने ग्रुप बनाया और वो उन चुन्नी वाले अंकल से रामपुर में आई, बात करके गई और हम मेरे साथ ही गई, मतलब हमें किसी ने बताया था कि वो चुन्नी वहां वहां से लेनी है, तो हमने लड़कियों का ग्रुप बनाया कि ये काम स्टार्ट करके देखते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, आप घर भी ले जाना और सेंटर पे भी करेंगे। तो लड़कियों ने जब ग्रुप बनाया और हम लोग सब बस से रामपुर आए, रामपुर से हमने उन भैया से बात करी उस चुन्नी के लिए, तो उन्होंने बोला आप जितनी सिलवा सकते हो सिलवाओ और हमारे यहाँ से ये चुन्नी ले जाओ। तो उन्होंने हमें 500 चुन्नियां दी, वो 500 चुन्नियां लड़कियां हमारे पास बहुत थी और हमने आपस में 20-20-30 चुन्नी बांट दी। लड़कियों ने एक हफ्ते के अंदर अंदर वो चुन्नियां तैयार भी कर दी मैम, और आज ये कंडीशन है लड़कियां खुद जाके वो चुन्नियां ला रही हैं माता रानी की, खुद सिलती हैं, खुद उनको देती हैं, और उससे जो भी अर्निंग होती है उनकी 1000-1500 ज्यादा तो नहीं हो पाती है, उससे वो अपनी कमाई कर रही है। तो पटवाई सेंटर में लड़कियों के आने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो बात करने का तरीका, जब वो आती है तो उनके अंदर कुछ भी नहीं, उन्हें ये भी नहीं होता हमें बस सिलाई सीखनी है, हम पूछते हैं आप आगे क्या करना चाहती हो, मैम सिलाई सीखना है, उसके बाद हम अपने घर में करेंगे। उसके बाद मतलब मैंने उनसे पूछते पूछते हम लोग फिर जाते हैं आगे क्या सोचा है लाइफ में, तो वो कुछ नहीं बता पाती है, फिर हमें उन्हें बीच बीच में ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जैसे लाइफ स्किल है, लीडरशिप की है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की है, आर्ट थेरेपी की है, तो हम उनको वो उनकी जो अंदर का जज्बा है ना वो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और वो निकल के भी आता है। आज भी 1000 है हमारे वहां जो सीखी हुई है, 1000 में से हम सीना चौड़ा करके और मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि 300 लड़कियां आगे बढ़ गई हैं, 500 लड़कियां आगे बढ़ गई हैं, 300 ऐसी हैं जो मार्केट से भी काम लाके चाहे छोटा सा ही कर रही है वो कर रही है, और 500 ऐसी हैं जो अपने घर बैठ के ही सिलाई कर रही है, बट कुछ ना कुछ कर रही है, उनके अंदर जज्बा निकल के आया है कुछ करने का।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फरा, आपकी आपकी स्टोरी सुन के और आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के मुझे ऐसे लगता है कि आप इतनी खुश होती हैं उसका आउटकम बयान करके कि आपकी मेहनत कैसे रंग ला रही है। और अभिदा, आपने जो 400 लड़कियों को और उससे भी ज़्यादा लड़कियों को सिलाई सिखाई है, तो वो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं क्योंकि उनके जो फैमिली है उनको घर से बाहर तो जाने नहीं देती है, तो सीखने के बाद जो फरा ने बताया है वो आपके एरिया में भी अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, लड़कियां बहुत आगे बढ़ सकती हैं, आपने डिजाइन्स को प्रमोट कर सकती हैं। तो क्या अभी ऐसी कुछ शुरुआत हुई है या नहीं हुई?
1: जी मैम, हमारे सेंटर में 10-12 लड़कियों ने ग्रुप कराया था जिसमें हमने प्रोडक्शन तैयार किए थे। लड़कियों ने आपस में ये ग्रुप बनाकर उसमें पैसे जमा किए और फैब्रिक लेकर आए, लेस वगैरह लेकर आए और मैंने उनकी हेल्प की डिजाइन करने में। लड़कियों ने कुर्तियां डिजाइन की, प्लाजो और दुपट्टे वगैरह डिजाइन किए, तो उन्होंने ऑनलाइन के जरिए अपने प्रोडक्ट सेल भी किए हैं काफी लड़कियों ने और अभी कर भी रही है। उनको काफी अर्निंग भी हुई अच्छे से और लड़कियों को कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा। तो एक दो लड़कियां ऐसी थी जिनकी शादी फिक्स हो गई थी और वो करना नहीं चाहती थी। उन्होंने मुझसे बात की कि मैम हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उनके पेरेंट्स से बात की, जब आपके बच्चों ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग ली है, सिलाई के साथ साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, तो आप घर से नहीं निकलने दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर के अंदर ही अपनी लड़कियों को सपोर्ट कीजिए। तो घर वालों ने उनको सपोर्ट किया, लड़कियों ने बस हफ्ते में एक दो बार मेरे पास आ जाया करती थी ताकि मैं उनके हेल्प कर दूं। उन्होंने घर से ही काफी प्रोडक्ट बनाए और सेल करे और अभी भी लड़कियां कर रही हैं, काफी लड़कियां कर रही हैं।
0: वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और मैं फरा को बोलूंगी कि अबिदा के साथ मिलके यहाँ भी ग्रुप्स बनाए और लड़कियों को ऑनलाइन सेलिंग की ट्रेनिंग दे, बिकॉज ये हमारा कोर है। और इसलिए मैं बोलूँगी कि रीड इंडिया का मॉडल ऐसे ही है कि हर लड़की को सक्षम बनाना, हर लड़की को बताना कि वो अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो सकती है, और होलिस्टिक डेवलपमेंट। जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसकी एजुकेशन में कैसे वो आगे बढ़ सकती है, अपने हुनर को कैसे आगे लेके जा सकती है, अपनी इज्जत कैसे कमा सकती है समाज में, फैमिली में, और सोशल मीडिया अब हमारे लिए एक कंपल्शन बन गई है, बिकॉज कोविड ने हमें सोशल मीडिया के बारे में भी कंपेल कर दिया है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं और लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, और इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बोलूँगी कि हम बहुत सारे ऐसे ग्रुप बनाएं और उनको हम सपोर्ट करें काम करने के लिए, और हम एक इतना बड़ा कलेक्टिव एंटरप्राइज खड़ा कर दें रामपुर एरिया में कि सब लड़कियां मिलके इसको आगे लेके जाएं। और रीड इंडिया की गुड विशेस भी हैं, और रीड इंडिया अभी कंटिन्यू कर रहा है प्रोग्राम, और इस थोड़ी सी ड्यूरेशन के अंतर्गत मिलके हम कैसे एक बड़ा उद्योग शुरू कर सकते हैं, ये आप अपनी सोच बनाइए और बहुत सारी लड़कियों को उसके साथ जोड़िए, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा और आपके अंदर जो जज्बा है वो जज्बा भी आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा। मैं अभी थोड़ा सा टॉपिक ट्विस्ट कर रही हूँ, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं सिलाई की और कैसे हम अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं या कुछ, क्या कभी आपको ऐसे लगा है कि अच्छे डिज़ाइंस की कमी है और आप हमें बताएं? और दूसरा मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि किस तरह के वहाँ पे डिमांड आती है ड्रेसेस की या कुर्तीज की, या किस तरह के कपड़े वहाँ पे लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उस तरीके की सिलाई आना भी बहुत ज़रूरी है। और क्या वो जो डिमांड है अबिदा और फर्रा उसको पूरा कर पा रहे हैं या उनको कोई चैलेंजेस फेस होते हैं?
2: यहाँ पर जो डिमांड है मैम, ज्यादातर प्लाजो कुर्ती की ज्यादातर डिमांड आती है लड़कियों के लिए, और गरारों की कि पार्टी वियर में अगर वो जाती हैं तो वो गरारे बहुत ज्यादा चल रहे हैं यहाँ पर, और अगर वो सिंपल घर में भी पहनते हैं तो प्लाजो और गरारे बहुत यहाँ पर चल रहे हैं। बट हमारे वहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ टीचर बहुत ही मतलब अच्छी हैं और इनको सारी ही चीजें आती हैं। हमें कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मार्केट से कुछ स्विंग करवाना हो या फिर कोई स्विंग के लिए यहाँ पर लेकर भी आता है तो हमें वापस भेजना हो, क्योंकि हमारी जो टेलर हैं और जो भी हमारी आबिदा स्विंग टीचर हैं बहुत अच्छे से उनको मैनेज करती हैं, और पटवाई में भी फातिमा है, और जो चीज़ उन्हें नहीं आती है वो उसकी ट्रेनिंग लेने की भी कोशिश करती हैं। जैसे यूट्यूब पे हमारा बहुत अच्छा है कि हम कभी भी यूट्यूब पे कुछ भी डाल के देख सकते हैं। हमने इन्हें यही बताया है कि कभी भी उस चीज के लिए ना नहीं करो, अगर हमारे यहाँ कोई गेस्ट आया है या फिर कोई भी चीज स्विंग के लिए आया है या फिर कोई सिलवाने के लिए आया तो उसको ना नहीं करना है, चाहे भले ही आपको नहीं आता हो तो उसकी ट्रेनिंग लो, उससे मतलब सोचो कि हमें कैसे करना है। आज आप एक को मना करोगे कल फिर दो नहीं आएंगे, तीन नहीं आएंगे, इससे हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो चाहे आप उसकी ट्रेनिंग लो या आगे बढ़ो या फिर आपके अंदर जो भी कमी उसको पूरा करो, हमारे वहाँ जो भी आए गेस्ट तो उसको मना नहीं करो, जाना नहीं चाहिए यहाँ से।
0: बहुत बढ़िया फरा, आपने बताया कि ये भी एक नेटवर्क बनाने का टेक्निक है कि किसी को मना नहीं करना है, और हमारा इसी तरीके से नेटवर्क भी बढ़ता है। अभी तक आपने लड़कियों को क्या क्या सिखाया है, थोड़ा उसके बारे में भी बताएंगे?
1: पहले मैं शुरुआत बेबी क्रॉप से करवाती हूँ। बेबी क्रॉप वगैरह अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं, फिर उसके बाद कुर्ती सलवार और डिजाइनिंग, फिर उसके बाद डिजाइनिंग नेट वगैरह, ये काफी पसंद है। यहाँ पर काफी डिमांड आती है इस चीज की। लड़कियाँ बस यही कहती है, मैम हमें सिलाई के बाद अच्छे से हमें नेक डिजाइन सिखाइए। नेक डिजाइन लड़कियों को काफी पसंद आते हैं, और ब्लाउज पेटीकोट फरारे और पटियाला सलवार, ट्यूलिप सलवार, धोती सलवार, और यही सारा कुछ साड़ी में फॉल लगाना, ब्लाउज वगैरह करना और लहंगा और शादियों के गरारे और चुनिया तैयार करना, ये सब हम सिखाते हैं।
0: वेरी नाइस। तो आपने पूरा ही एक कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं जो नहीं सिखाई, मेरा ये कहने का मतलब है,
1: जी
0: और
1: जी
0: बहुत अच्छे से सिखाई है। और क्या हम जरी जरदोजी को और सिलाई को मिक्स करके बना सकते हैं कुछ ऐसे ड्रेसेस, या आप ऑलरेडी बना रही हैं?
2: जैसे अभी जरी वर्क के हमने कुशन्स कवर बनाए थे, तो स्विंग इन लोगों ने ही की थी। और अभी जैसे कुर्तियां मैंने भेजी थी ऑफिस में, तो जो मैंने जरी वर्क का करवाया तो स्विंग इन्होंने की। बट ये हो जाता है कि हम लोग यहाँ से जरी वर्क करवा रहे हैं और ये लोग हमें स्विंग करके देते हैं।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो एक तालमेल बैठता है। जरी वर्क जो है, आप तो शादी के लहंगे से लेके बहुत भारी दुपट्टे से लेके एक नेक लाइन पे भी जरी करते हैं, ये जो आर्ट है ये बहुत कमाल का है, और इसको भी हम सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि जो लहंगे, जहाँ तक मुझे पता है, जो भी करोल बाग में या चांदनी चौक में लहंगे मिलते हैं, वो सारे ज्यादातर रामपुर से भी बनकर आते हैं, और लड़कियां बहुत इसमें अपना कौशल दिखाती हैं कि कैसे अच्छे बना सकते हैं। और जो दुपट्टे बनाती हैं आप, जाल वाले दुपट्टे या बॉर्डर वाले दुपट्टे, या अलग से बॉर्डर भी डिजाइन कर देती हैं, और ऐसे गले में भी काट देती हैं डिजाइन थोड़ा सा करके, तो ये जो हुनर है इसको बहुत आगे जाने की जरूरत है। और कैसे हम इसको आगे लेके जाएं, ये एक टीम वर्क होता है। जैसे अबिदा है, फरा है, अकबर है, और भी बहुत सारा एक टीम है आपके पास, इसको आप आगे ले जाने की प्लानिंग करें, सोचें कैसे करेंगे, तो फिर पीछे मुड़ के देखने की कभी भी आपको अपनी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये काम तो कभी भी बंद होने वाला नहीं है। अभी ये हमारा पुश्तों से चलता आ रहा है, आज आप कर रही हैं, और आगे भी इसको ले जाने वाले बहुत आपको मिल जाएंगे। तो इसको आप बनाए रखिए, आगे लेके जाइए। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रीड मॉडल का एक कंपोनेंट है, वो एजुकेशन। अभी अबिदा ने भी बोला, फरा ने भी बोला, अबिदा ने भी अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करी, फरा ने भी कंटिन्यू करी, ये हमें पता। और आपने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी दिए कि लड़कियां अपनी फीस खुद भर के अपनी एजुकेशन को आगे लेके जा रही हैं। पर एक बात का ध्यान आप रख भी रही हैं और आगे भी रखेंगी कि जितनी भी लड़कियां यहाँ पे आके स्किल्स की ट्रेनिंग लेती हैं, वो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगी और अपने बच्चों की पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि आने वाले समय में एजुकेशन की डिग्री तो चाहिए चाहिए, पर डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल लिटरेसी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिसको कंप्यूटर या लैपटॉप या फोन, एंड्रॉयड फोन चलाना नहीं आता है, वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम पे पिछड़ जाएगा। और उसकी भी हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपके यहाँ पे कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि उस ट्रेनिंग में कितने लोगों का इंटरेस्ट है, रुझान है, और कैसे हम इसको स्केल कर सकते हैं इस ट्रेनिंग।
2: ऑनलाइन वाली ट्रेनिंग को ना मैम,
0: ऑनलाइन ट्रेनिंग को, टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर सीखना, लैपटॉप में सीखना, काम करना, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना, और आगे बिजनेस को भी लेके जाना, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो एक टूल है, और उस टूल को हम कैसे यूज करें जिससे हम अपनी बात भी रख सके, जैसे ऑडियो विजुअल की ट्रेनिंग है, लैपटॉप को यूज कर सके आगे एजुकेशन और ट्रेनिंग करने के लिए, कैसे सोशल मीडिया को यूज कर सके फोन के द्वारा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इन सब चीजों का और आपके हुनर का तालमेल बैठना आने वाले समय में बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता था कोविड आ जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। और जो 2 साल हम पीछे रह गए हैं, उस 2 साल की जो टाइम है उसको भी पूरा करने की बहुत जरूरत है, तो डबल मेहनत करने की जरूरत है। तो वो मैं जानना
2: टेक्नोलॉजी
0: चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी में कितना रुझान है लोगों का।
2: में मैम ज्यादातर रुझाव नहीं दिखा पाती हैं लड़कियां, उनको बहुत समझाना पड़ता है। ज्यादातर वो सोचती हैं कि हमें सुइंग आ जाए तो हम अपने घर पे बैठ के सिलाई करते रहें, जो भी हमें 100-200 रुपए घर के आस पड़ोस के कपड़े आ जाएं या फिर थोड़े से गांव के दूर के आ जाएं, हम यहीं पर करते रहें। बट जब उनसे बात करते हैं कि हम इस चीज से बहुत आगे तक जा सकते हैं, आप ये सूट सिल के आपके घर में ही मतलब 2-3 लोगों को अर्न कर सकती हो, यही आप अगर टेक्नोलॉजी के जरिए बेचेंगी तो दिन में 10 सूट, 15 सूट, 20 सूट, 50 सूट, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी तो 100 सूट भी बेच सकती हैं। तो हमें उन्हें बहुत ज्यादा समझाना पड़ता है और उनसे कहना पड़ता है कि इसमें ज्यादा रुचि मतलब अपनी लगाइए। और जैसे ही अभी लॉकडाउन में सारी चीजें आप लोग फ्लिपकार्ट से मंगा रहे थे, हमें उनसे ये भी बताना पड़ता है, हम किसी दुकान पे भी नहीं जा पा रहे थे कोई भी चीज लेने के लिए, तो हमें क्या याद आ रहा था, सिर्फ ऑनलाइन की हर चीज याद आ रही थी कि हमारे पास क्रीम नहीं है तो हम ऑनलाइन पे कर दें, या फिर हमारे फोन में बैलेंस खत्म हो गया तो हम ऑनलाइन पे करेंगे, या फिर हमें घर पे कोई भी खान पीने की चीज चाहिए तो हम ऑनलाइन मंगाएंगे। तो हर चीज का जरिया कहाँ था, ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन वाले ये सोचते कि हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे तो हमारे पास कोई जरिया नहीं रहता और वो ऑनलाइन जो हम मंगा रहे थे वो भी नहीं मंगा पाते। तो हम हर लड़की को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर इतना अच्छा हुनर है, इतना अच्छा काम है, तो आप बस सिर्फ इसको आगे बढ़ाइए, अपने चाहे फोन से बढ़ाइए, कंप्यूटर है यहाँ पर रीड इंडिया ने इतने सारे कंप्यूटर लैपटॉप दे रखे हैं, आपको सिखाया भी है कि किस तरीके से हम सेलिंग कर रहे हैं, हम सब आपके साथ भी हैं। तो बस हमें बहुत ज्यादा उन्हें यही समझाना पड़ता है कि इसमें आइए, वो ऑनलाइन पे आने में बहुत ज्यादा घबराते हैं, आते हैं बहुत कम रुचि दिखाते हैं।
0: पर फरा, अगर हम अगले 6 महीने इसके ऊपर फोकस करें और मेहनत करें, और मुझे लगता है कि जब आपने इतने पड़ाव पार कर लिए, और ये पड़ाव कोई आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप जरूर कर पाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। अभिदा, थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचती हैं, कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। फरा का फ्यूचर तो हमें पता है कि फरा अब पीछे मुड़ के नहीं देखेगी, फरा के प्लान्स, फरा के थॉट्स बहुत क्लियर हैं। और आज मेरे को ये कहते हुए भी खुशी होती है कि फरा हमसे भी आगे निकल गई है, और फरा इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस देती हूँ। और अमिता, आपके क्या प्लान्स हैं?
1: मेरे प्लान यही है कि मैं आगे और आगे बढ़ूं। अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो हूँ रीट के जरिए हूँ और मैं रीट के साथ ही जुड़ा रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि रीट इंडिया जैसे मेरा परिवार है, मुझे सपोर्ट किया है हर तरीके से, ऐसे ही मुझे रीट इंडिया हमेशा सपोर्ट करे और मैं रीट इंडिया के साथ ही जुड़ा रहना चाहती हूँ। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। मेरी शादी फिक्स हो गई थी लेकिन मैंने खुद से फैसला किया घर वालों से कि मुझे अभी शादी नहीं करना है, मुझे अभी आगे और बहुत कुछ करना है और अपना नाम की तरीके से रोशन करना है। जैसे मुझे मेरा यहाँ मोहल्ला और पड़ोस जानता है, मैं चाहती हूँ कि पूरा शहर मुझे अच्छे से जाने, और मैं यही चाहती हूँ कि मैं आगे बुलंदियों तक पहुंचूँ और रीड इंडिया का नाम रोशन करूँ और अपने ख्वाब पूरे करूँ, अपने और अपने घर वालों।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अबिदा, मैं थोड़ा सा इधर अगर बात करूं तो यूएन ने कुछ गोल्स डिफाइन करे हुए हैं जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब ये है कि हम इस तरीके से आगे बढ़े कि हमारे प्रोग्राम्स सस्टेन हो जाएं। जैसे एजुकेशन है, आप एजुकेशन पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट है, आप तो रोल मॉडल हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। जब लाइवलीहुड की बात करते हैं तो लाइवलीहुड आप बहुत आगे लेके जा चुकी हैं। देखिए, अगर हम गांव की स्थिति को गांव से ही कंपेयर करें तो आप एक बहुत अच्छे मकाम पे पहुंच चुके हैं। कभी भी आंकड़ों को अर्बन और रूरल से जब हम कंपेयर करते हैं, वो रिसर्च के लिए होता है कि कैसे हम और डेवलप कर सकते हैं, बट अगर हम गांव के आंकड़े गांव के लेवल तक ही एनालाइज करें, तो अगर आप 3,000 या 5,000 या 10,000 कमा रहे हैं तो बहुत बढ़िया कमाई है। इसको आप कभी भी शहर की कमाई के साथ कंपेयर नहीं करिएगा, नहीं तो आपके माइंड में हमेशा यही रहेगा कि हम कुछ भी नहीं हैं। आप बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ कर रही हैं और आगे बहुत कुछ करने का जज्बा भी रखती हैं। और जो मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, आप नोइंगली अननोइंगली उनको ग्रास रूट्स पे इस तरीके से एड्रेस कर रहे हैं कि डेवलपमेंट है जो वो रूट से हो रही है, और जब रूट मजबूत होती है तो उसको कोई भी उखाड़ के फेंक नहीं सकता उस पेड़ को, और उस पेड़ पे फल लगने ही लगने हैं, और उस फलों का जो जो उसका फायदा है वो बहुत सारे लोग जो जिसको हम समाज कहते हैं, जिसको हम सोसाइटी कहते हैं, वो उनसे कलेक्टिव फायदा उठाते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और आपको सैल्यूट भी करूंगी कि आपने अपनी लाइफ में जिस तरीके से मेहनत की, जैसे मेहनत करके अपने सरकमस्टांसेस से आप बाहर आए, ऐसे आगे चल के बहुत सारी औरतों को सिखाएं और बहुत सारी औरतों को अपने साथ जोड़ें, उनके बच्चों को पढ़ाएं, उनको बताएं कि आने वाले टाइम पे एजुकेशन भी बहुत बहुत ज़रूरी है। जो चैलेंजेस आपने अपनी लाइफ में फेस करे हैं, आने वाली जनरेशन उन चैलेंजेस को फेस नहीं करे। तो इसी मैसेज से मैं इस कार्यक्रम को कंक्लूड करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
3: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
4: हेलो, मेरा नाम रजनेश देवी है और मैं सावाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ और मैं यहाँ की सरकारी डिस्पेंसरी में आशा वर्कर का काम करती हूँ। मुझे ये काम करके बहुत अच्छा लगता और इस काम से अलावा अब मैं थोड़ा अपना टाइम बचा के मैं अभी इसमें रीड इंडिया में आती हूँ। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और मुझे यहाँ सीखने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा और हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करता है। यहाँ पे लाइब्रेरी है, कंप्यूटर क्लासेस लगती है, सिलाई सेंटर है और यहाँ पे पार्लर का काम भी सिखाया जाता है, जो कि बहुत ईमानदारी से और लगन से सिखाया जाता है। यहाँ का स्टाफ हमें सिखाने में हमारी बहुत मदद करता है और मैं थोड़ा बहुत समय निकलता है तो मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं अपने एरिया में काम करती हूँ। मुझे वो काम करके बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं कुछ नहीं करती थी, घर में ही बस बच्चों के साथ रहना, अपना करना, लेकिन अब मैं जब से मैं डिस्पेंसरी में जाती हूँ वहाँ पे मैं लोगों की मदद भी करती हूँ और हमें वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और हम सीखते हैं और हम फील्ड में उसको बताते हैं, जिससे कि प्रेग्नेंट लेडीज है जो हॉस्पिटल में रूटीन चेकअप नहीं कराती है, हमारी मदद से वो लेडीज हॉस्पिटल में जाती हैं और अपना रूटीन चेकअप कराती हैं। बच्चों को इम्यूनाइजेशन कराते हैं हम 0 से 5 साल तक के बच्चों को, क्योंकि एक भी बच्चा टीके से छूटना नहीं चाहिए। और इसके अलावा हम फैमिली प्लानिंग पर भी ध्यान देते हैं, जिनकी फैमिली कम्प्लीट हो चुकी है उनके लिए हम NSV जो कि पुरुष नसबंदी है, इसमें बिना चीरे बिना टाके के नसबंदी होती है जिसे गवर्नमेंट उसको 1100 रुपए प्रोत्साहन राशि देती है, और महिला के लिए नलबंदी है जिसमें गवर्नमेंट उसको 250 रुपए देती है। ये एक दूरबीन द्वारा किया जाता है, एक टाका आता है, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है और महिला अपना आराम से रहती है। जिनकी फैमिली कम्प्लीट हो चुकी है वो ये है कि बार बार अबॉर्शन ना कराए, अपना ये मेथड अपनाए और अपने सुखी जीवन, कहते हैं ना छोटा परिवार सुखी परिवार। और पहले हम करते नहीं थे तो हमें भी अजीब सा लगता था, लेकिन जैसे जैसे हमने सीखा है हमें बहुत अच्छा फील होता है और हम दूसरों की मदद करते हैं तो इसमें हमें अपने ऊपर भी गर्व होता है कि हम भी कुछ लायक हैं। जब उस टाइम पे जब हम पहली बार घर से बाहर निकले थे तो हमें डर सा लगता था कि हम कैसे पब्लिक से बोलेंगे, कैसे बातें करेंगे। हमें ऐसा डर लगता था, क्या पता ये बंदा हमको क्या कह दे, क्या पता ये बंदा हमको क्या कह दे, ये डर था। लेकिन अब जैसे जैसे हमें, मुझे यहाँ पे 6 साल हो गए काम करते करते, अब मुझे किसी से कोई भय नहीं है। मैं अपनी बात रख सकती हूँ और दूसरों की बात भी मैं पूछ सकती हूँ, उनको पूछती हूँ, अपना बताती हूँ, तो उससे लोगों को मेरे पर विश्वास है और मुझे अब लोगों के ऊपर विश्वास हुआ है, तो मैं बेहिचक घर से बाहर जा सकती हूँ। इसमें मेरे हस्बैंड मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं, मेरा साथ देते हैं। हम अगर कोई मदद कर रहे हैं तो दिन में भी कर रहे हैं तो ठीक है, अगर रात है तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ मेरी मदद करते हैं। इससे महिलाओं को भी फायदा होता है और हमें भी ये महसूस होता है कि हम भी किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। पहले जब हम नहीं करते थे तो हमें ऐसा लगता था क्या है, अब ऐसा है कि थोड़ा मैं भी कमाती हूँ, थोड़ा मेरे हस्बैंड भी कमाते हैं, तो मुझे खर्चने में कोई दिक्कत नहीं आती है। मैं अपने फैसले अपने आप भी ले सकती हूँ और मैं महिला को ये ही समझाती हूँ कि वो भी अपने पैरों पे खड़ी होए और अपने लिए लड़े, अपने लिए तो कम से कम लड़े ही कि क्या अच्छा है क्या बुरा, उसमें ये होना चाहिए।
5: मेरा नाम कार्तिक है, मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। मैं शहबाद मोहम्मदपुर के रीड इंडिया लाइब्रेरी में आता हूँ। मैं आपके सामने पोएम प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सीखो फूलों से नित हंसना, सीखो भोरों से नित गाना, दिनकर की किरणों से सीखो जगना और जगाना, चिड़ियाओं से हंसकर सीखो।
3: सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

सकती है। पर ड्यूरिंग द जर्नी इस समय के साथ साथ हमने ये सोचा कि हमें महिलाओं के लिए भी कुछ कार्यक्रम करने चाहिए। अगर महिला अपने आप को निखार सकती है, अपने आप को सक्षम बना सकती है और जिम्मेदारी अपने शोल्डर्स पे ले सकती है कि अपने बच्चों का विकास कैसे करना है, वो भी रीड इंडिया अपने कम्युनिटी लाइब्रेरीज और रिसोर्स सेंटर्स में करती है। हमने औरतों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए, जैसे सिलाई सिखाना, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देना और भी बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो हम अपने सेंटर्स में करते हैं। पर उसका जो आउटकम है, जो हम समझ रहे हैं कि एक महिला इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपने परिवार की भी सोच बदल सके, अपनी भी सोच बदल सके और अपने बच्चों को एक मकाम तक लेके जा सके। इसी दौरान हमने पिछले तीन और अपने बच्चों को एक मकाम तक लेके जा सके इसी दौरान हमने पिछले तीन सालों में उनको बहुत सारी ऐसी स्किल्स दी जिससे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं, और हम उनको रेगुलरली ट्रेस भी करते हैं, ट्रेस इन द सेंस कि हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही हैं, अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकती हैं। और इसी दौरान हमने ये सोचा कि हम क्यों इतने बड़े बड़े बीबीए और एमबीए की बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम इन महिलाओं को बोलें कि ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो। तो रीड इंडिया ने क्या किया, अपने प्रपोजल में ये सारे एपिसोड्स लिख दिए। मैं इनको एपिसोड्स ही कहूंगी, मॉड्यूल्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एपिसोड्स उनके जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं, उनको एक उद्योग क्या है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं और उद्योग करने के लिए उनको क्या क्या सीखना है वो भी ट्रेनिंग्स हम देने के लिए तैयार हैं। और हम महिलाओं को बोलते हैं, यंग लड़कियों को बोलते हैं जो बीए कर चुकी हैं या 12वीं पास कर चुकी हैं, वो अपना नाम आके रीड इंडिया की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लिखवाएं और हम बिल्कुल तैयार हैं उनको इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने परिवार को आगे लेके जाती है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है। तो श्रोताओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें, रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकते हैं रीड इंडिया के सेंटर पे आके अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद।

0: कैसे हैं सभी लोग?
1: गुड मैम, गुड
0: गुड
1: है मैम।
0: आफ्टरनून
1: गुड मैम, बहुत गर्मी के बाद बहुत अच्छी बारिश हो रही है। ठीक
0: और सब कैसे हैं? ठीक
1: है मैम। गुड
0: है। कोई और कैसे हैं?
1: आफ्टरनून मैम, सब ठीक है? आप कैसी हैं मैम? गुड
0: सब ठीक है जी। और कैसे हैं सब?
2: आफ्टरनून मैम, हम
1: मैम
2: अच्छे
1: अच्छे, गुड
2: हैं। अच्छे हैं। और
1: मैम
2: कैसे हैं?
1: अच्छे हैं। आपको देख के थोड़ी एनर्जी फील होने लगी अब।
0: एनर्जी है। और कैसे हैं सब? ठीक
1: ठीक है मैम, ठीक
0: हैं। और कैसे हैं सब? क्या इमोशन है
1: है
0: इस वक्त?
1: मैम, बहुत बढ़िया।
0: बढ़िया है। और कैसे हैं?
1: मैम को आज सबकी वॉइस सुननी
0: मुझे ये जानना है सब हैं कैसे। अभी तक मुझे ये पता है कि पांच छह लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं। ठीक
1: मैम। सब कुछ ठीक है, बट मौसम खराब है तो गला खराब हो जाता है मैम
0: है,
1: सबका।
0: लेकिन गला खराब है, थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन वैसे ठीक है ना?
1: मैम
0: आपको सिर्फ सुनना है, ज्यादा बोलना तो है ही नहीं, तो कम से कम वीडियो ऑन कर सकते हैं, है ना? कैसे हैं? मेरे को अभी भी जवाब नहीं मिला है। सिर्फ ठीक है, अच्छे हैं, चार पांच लोगों ने बोला है यहाँ पे, तो 30 से ज्यादा लोग हैं। कुछ तो और महसूस कर रहे होंगे, कुछ कोई तो होगा जो अच्छा नहीं फील कर रहा है कि सब अच्छे हैं।
1: सब अच्छे हैं मैम। हाँ
0: सब अच्छे हैं। यहाँ कुछ प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, स्वर्णा जी आपके साथ, मेरे ख्याल से आपका ही आंखें दिख रही हैं शायद, है ना?

0: बच्चे कैसे हैं आप लोग? सांगले,
1: अच्छे
0: सांगले का
1: मराठी
0: क्या
1: में
0: मतलब?
1: बात करते मैम वो
0: हाँ, तो सांगले का क्या मतलब होता है? अच्छे
1: अच्छे हम सब
0: हैं, सब अच्छे हैं। और कैसे हैं? अरे,
1: बोला
0: आपके पीछे मुझे
1: अच्छे
0: है तो सब अच्छे हैं, ठीक है। अच्छे के अलावा और किसी को नहीं पता कि वो कैसे हैं, उनका फीलिंग कैसा है, आज मन में क्या है। जब हम किसी से मिलते हैं, पूछते हैं अच्छा और कैसे हो, तो हम बोलते हैं सब ठीक है, या फिर जैसा ऋतु जी ने बताया सब ठीक है लेकिन मौसम खराब है तो थोड़ी तकलीफ हो रही है, देर से पहुंचे कि जहां पहुंचना था, खांसी जुकाम हो गया। बट हम कैसे फील कर रहे हैं ज्यादातर हमें पता ही नहीं होता, या तो अच्छे हम बोलते हैं कि हम अच्छा ही फील कर रहे हैं, है ना। अभी ये सवाल मैंने कम से कम 15 से 20 बार ही पूछा और सिर्फ यही जवाब मिला कि हम अच्छे हैं। सब मानते हैं यही जवाब मिला हमको, यस।
2: यस मैम
1: यस मैम
0: तो
1: यस
0: आज
1: मैम
0: इसी चीज पे बात करेंगे जिस पे मैम ने कल छोड़ा था। मैम ने कल अपने सेशन में 10 E's की बात करी थी। जो लोग इस सेशन में थे कल, हम वहीं से आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैम ने बताया था कि हम किसी चीज को अधूरा नहीं छोड़ना चाहेंगे। इन डेप्थ हम जानना चाहेंगे हर एक चीज का मतलब क्या है हमारी जिंदगी से। ये जो सेशंस हैं इसमें हम कुछ सिखा नहीं रहे, कुछ सीख नहीं रहे, बस कोशिश ये है कि अपने आप को थोड़ा बेहतर हम पहचान सके और थोड़ी जो हमारी शक्तियां हैं, जो स्किल्स हैं, जो स्ट्रेंथ्स हैं, हम उसको और पॉलिश कर सकें, ताकि हम एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बन सके, सोशली, इमोशनली एंड प्रोफेशनली। क्योंकि सभी यहाँ पे जो हमारे साथ जुड़े हैं वो कुछ ना कुछ आगे जिंदगी में या तो कुछ कर रहे हैं या तो कुछ करना चाहते हैं। जो कर रहे हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं और जो कुछ करना चाहते हैं वो अपनी राह ढूंढ रहे हैं। सही बात है या कोई और भी जुड़े हैं किसी और रीजन से? सही
2: सही बात है मैम बिल्कुल
0: बात। चुप तो रह नहीं सकते ना, मैं 5 बार बार पूछती रहूंगी ताकि खुद देखूं सो तो नहीं गया कोई, है ना। तो आज का हमारा ये 40-45 मिनट होंगे, हम उस चीज पे बात करेंगे जो पहला ई था। पहला ई क्या था? किसी ने सुना था ना कल, सबने 10 E नोट किए होंगे। पहला ई क्या था बता सकता है कोई?
1: एम्पावर
0: पावर ऑफ वॉट?
2: मैम इमोशनल स्ट्रेंथ
0: एब्सोल्युटली, मैं तब से यही बात कर रही हूँ कि इमोशनल स्ट्रेंथ हमारी क्या है, हम कैसा फील करते हैं, हमारी जिंदगी में इमोशंस क्या रोल फील करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं। हम सुबह उठने से लेके जब तक सोने जाते हैं और सोने के बाद भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि हमारे सपनों में भी हमारे इमोशंस प्ले करते हैं, हाँ कि ना। अगर आप उदास हैं, अगर आप दुखी हैं और उस फॉर्म में हम सो जाते हैं, तो हमारे सपने भी हमें उसी तरीके के आते हैं। ऐसा होता है क्या कभी? अगर हम खुश हैं, हमारा दिन अच्छा बीता है, हमने जो चाहा था हमें मिला है, या जो हम अचीव करना चाहते थे, अच्छा सा परिवार भी सुखी है, तो हम अच्छी नींद अगर सोते हैं तो हमें सपने भी अच्छे आते हैं, ऐसा होता है। तो इसका ये मतलब है कि इमोशंस का रोल हमारी जिंदगी में सबसे बढ़ के है। जितना जरूरी खाना पीना, अपने कपड़े, हमारे रहन सहन, हमें अपने फिजिकल नीड्स, जो हमारी फिजिकल नीड्स हैं उनको पहचानना है, उतना ही या शायद कभी कभी उनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमें हमारी इमोशनल नीड्स को पहचानना। मुझे कोई बता सकता है कि कितने इमोशंस हैं ह्यूमन, एक इंसान में कितने इमोशंस हैं? आपको क्या पता है इस बारे में? कोई गूगल नहीं करेगा इस वक्त? ये नहीं कि जो लोग स्क्रीन पे नहीं है आप गूगल करना शुरू करें, गूगल में सबसे पहले सबसे ऊपर आ जाएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप सच्चे हैं तो प्लीज गूगल मत करिए, क्योंकि सबकी स्क्रीन ऑन नहीं है। आप, ये कोई टेस्ट नहीं है, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलने, बस आप अपनी समझ से, जितना हम पढ़े हैं, कोई यहाँ पे 20 साल का है, कोई 25, कोई 30, कोई 40, कोई 50 साल का है, इन 50, 20, 30 सालों में आपने कितने इमोशंस महसूस करे होंगे, कोई भी बोल सकता है। और जो नहीं बोल रहे मैं इनकरेज करूंगी वो भी बोले, क्योंकि यहाँ कोई गलत और सही जवाब नहीं है। कितने
1: मैम बहुत सारे इमोशंस होते हैं लाइक खुशी
0: होते
1: हो
0: हैं? 5, 6। खुशी होती है, और बताइए। हेलो,
1: हम जैसा फील कर होते हैं वैसा इमोशनल हो जाते हैं हम
0: जैसे कि दुखी हो गए, खुश हो
1: जैसे
0: गया, गुस्सा
1: मैम
0: हो
1: गुस्सा आ
0: गया,
1: जाते हैं कभी कभी अंदर से
0: 5,
1: नाराजगी होती है बोल नहीं पाते हैं तो
0: छ,
1: वो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कभी कभी
0: सात,
1: कभी
0: खुश,
1: देखिए भी होता है
0: 8, 8 इमोशंस हो गए। तो बिल्कुल ठीक, 7 या 8 कोर इमोशंस होते हैं जो हमारी जिंदगी में हमें रूल करते हैं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ, मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन भी बनाई है, होस्ट को रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज मुझे अलाउ करेंगे स्क्रीन शेयर करने के लिए। आई रिक्वेस्ट द होस्ट टू अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन प्लीज। तो अब कायदे से तो मुझे गुस्सा आना चाहिए ना, क्योंकि मेरी स्क्रीन ही नहीं अलाउ हो रही आज शेयर करने के लिए, है ना। मेरा इमोशन इस वक्त क्या होना चाहिए, मेरे को घबराहट हो जानी चाहिए, मैंने इतनी मेहनत करके प्रेजेंटेशन बनाई और होस्ट मुझे अलाउ नहीं कर रहे स्क्रीन शेयर करने को, या मेरे को घबराहट हो जानी चाहिए कि अब मैं आगे क्या बोलूंगी, मैंने तो स्क्रीन से देख के ही पढ़ना था और अब तो मेरे को डर लग रहा है क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं मैं आगे क्या बोलूंगी, लेकिन मैं फोन करके स्क्रीन शेयर के लिए बोलती हूँ। सो राहुल ने मुझे अलाउ करा है स्क्रीन शेयर करने के, आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं,
2: यस मैम,
1: फुल
2: यस
0: स्क्रीन
2: मैम,
0: दिख रहा है। सो आज हम पहले ई पे बात करेंगे, जो मैम ने बताया था, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको कि हम ई क्यू भी बोलते हैं, जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है। ये एक प्रॉपर स्टडी है साइकोलॉजी में, इमोशनल क्वोशेंट इसको बोलते हैं, लेकिन हम इस पे बहुत ही बेसिक लेवल पे बातचीत करने जा रहे हैं। ये कोई साइकोलॉजी का सेशन नहीं है, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट प्रैक्टिकली इस चीज के क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, हम इस पे आपस में बात करेंगे। मैं कुछ आपको सिखा नहीं सकती क्योंकि आपके इमोशंस आपके हैं, मेरे इमोशंस मेरे हैं, बट मैं ये बता सकती हूँ कि इमोशंस का रोल क्या है और इसको पहचानना और इसको मैनेज करना। हम इमोशंस चेंज तो कर नहीं सकते, गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, लेकिन गुस्से में क्या मैं किसी को थप्पड़ मार रही हूँ, क्या मैं किसी पे चीख चिल्ला के बात कर रही हूँ, या मैं समझ बूझ के, समझ से सिचुएशन को हैंडल करके बातचीत कर रहे हैं। और हर बार ही जरूरी नहीं है कि एक ही रिएक्शन होता है, हर एक सिचुएशन में हमारे इमोशन अलग होते हैं। तो हम बोलते हैं कि अच्छा, हम ये सेशंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई हमारे एक ख्वाब है, हमारा एक गोल है लाइफ में, उसको हमें अटेन करना है, बट उस गोल को अचीव कैसे करना है। तो हमने सोचा चलो हम वो ईज की बात कर रहे हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस से बात करते हैं। जैसा कि सना ने बताया, हमारे कुछ 8 या 9 जो कोर इमोशंस हैं वो हमारी लाइफ में रोल प्ले करते हैं, जिसमें कि हो गया हैप्पी हूँ, सैड हूँ, वरिड हूँ, नर्वस हूँ, गुस्से में आ गई मैं। ये सारे इंग्लिश के, मैंने जो यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये कुछ 12-14 अलग अलग इमोशंस हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन इसके हमारे को हर भाषा में कोई ना कोई इसका एक वर्ड जरूर मिल जाएगा। तो हम आमतौर पे, हमें लगता है कि हमारे करीबन 12 या 13 अलग अलग इमोशंस होते हैं जो हमारी लाइफ, कुछ इमोशंस नेगेटिव होते हैं और कुछ इमोशंस पॉजिटिव होते हैं। दोनों ही हमारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बिहेवियर को दर्शाते हैं। अगर मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसको कहते हैं ना, अरे इसको तो बहुत जल्दी गुस्सा आता है, इससे ज्यादा बात मत करो, ये तो एकदम बिगड़ जाएगा या बिगड़ जाएगी, इससे ज्यादा ज्यादा इससे कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या होता है, वो हमारा बिहेवियर हो गया है। क्योंकि जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो हमारे बिहेवियर को बहुत उस पे हमारे हमारे जो एक्शन है उसको हमारे को गाइड करता है। कुछ लोग होते हैं इसे कितना भी बात कर लो ना, इसे गुस्सा नहीं आता। अब ये तो कहना गलत है कि गुस्से वाला इंसान ठीक नहीं है और जो प्यार से बात कर रहा है वो ही ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना। हो सकता है जो गुस्से वाला इंसान है वो ज्यादा समझदारी की बात कर रहा हो, लेकिन उसका बताने का तरीका ऐसा है कि वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने इमोशंस को 2 भागों में बांटा है, आमतौर पे नेगेटिव इमोशंस और पॉजिटिव इमोशंस बोला जाता है। नेगेटिव इमोशंस में गुस्सा आ गया, शर्मिंदा हूँ, उदास हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे नफरत है किसी से, मुझे अफसोस है, इन सब शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव इमोशन में मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अपने ऊपर, मुझे प्राइड है, यानी कि मुझे गुरूर है अपने काम पे, मुझे गर्व है अपने काम पे, मुझे आशा है, होप है, खुशी है, जॉय है, लव है, ये हमारे अच्छे इमोशंस होते हैं। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका यहाँ मैंने नाम दिया है, रॉबर्ट, इन्होंने जब स्टडी किया, ये साइकोलॉजिस्ट, माननीय साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, इन्होंने ये प्रूफ किया अपनी थ्योरी से कि जो ये 7 या 8 इमोशंस होते हैं, ये करीबन 34,000 इमोशंस ह्यूमन बीइंग में कॉम्बिनेशन में पैदा कर सकते हैं। हमें ये सब जानने की जरूरत इस वक्त पे नहीं है, हम कोई स्टडी नहीं कर रहे, हम कोई एनालिसिस नहीं कर रहे, बट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इमोशंस का इतना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी जिंदगी में, हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हमारे एक्शंस इन्हीं से दर्शाए जाते हैं। इसलिए हमें इनको मैनेज करना आना बहुत जरूरी है। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं आपको बताऊंगी और आप अपने इमोशंस मैनेज करना शुरू करोगे, लेकिन हम सबको ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि मेरा प्राइम इमोशन क्या है। कोई भी चीज अगर खराब होती है दिन भर में, तो क्या मुझे गुस्सा आ जाता है, क्या मैं उदास रहती हूँ, या मैं उसको कोशिश करती हूँ कि मैं उसका सॉल्यूशन निकाल सकूँ उस सिचुएशन के, मैं कोशिश करके उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले जा सकूँ। मकसद यही है कि हम अपने इमोशंस को पहचाने। इसको हम इमोशनल क्वोशेंट कहते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में या फॉर्मल लैंग्वेज में। लेकिन जब हम उठते हैं, उठने से सोने तक, सोने के बाद भी हम इसी 34,000 के जो चक्र है इसमें फंसे रहते हैं। कोई कुछ ऐड करना चाहता है या किसी को कुछ लग रहा है कि गलत है या सही है? हम 1 मिनट के लिए रुक सकते हैं। जब नेगेटिव इमोशंस होते हैं तो उसकी फीलिंग कैसी होती है? हम इरिटेटेड रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है, नर्वसनेस होती है हमें, जैसे एग्जाम देने जाना है और नेगेटिव इमोशन है, डर है हमारे अंदर। तो डर से क्या होगा? वरी होगी, नर्वसनेस होगी। तो क्या कोई फायदा होगा हमें एग्जाम देने में? नहीं। लेकिन अगर हम तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, हमने बार बार अपना रिविजन किया है, तो उस नेगेटिव इमोशन को हम पॉजिटिव में कैसे बदल सकते हैं? वरी को हम कॉन्फिडेंस में लेके आ सकते हैं। हम वरी जो है हमारी, उसको बदल के हम कॉन्फिडेंस में डाल सकते हैं। क्यों? हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं, पहले से तैयारी करो, आखिरी मोमेंट पे कुछ मत छोड़ो, लिखित में प्रैक्टिस करो, बार बार उसका रिविजन करो, ताकि जो डर है, जो नर्वसनेस है, वो हमारा एक्शन क्या होगा कि हम आधा पेपर भूल जाएंगे, पेपर देख के डर जाएंगे, हमें समझ नहीं आएगा आंसर क्या लिखना है, हो सकता है गलत मलत लिखा है। लेकिन अगर हमने उस नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव में अपने एक्शन से बदला हो, तो हम कॉन्फिडेंट होंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ गया कि मान लीजिए उसकी तैयारी हमने नहीं करी, तो भी चैप्टर्स तो हमने सारे पढ़े हैं, तो अपनी समझ बूझ से हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ना कि रिएक्ट करेंगे। घर से निकलने से पहले किसी ने कुछ बोल दिया तो उस पे भी हम नाराज हो जाते हैं, कभी कभी हमारे मन मुताबिक बात नहीं होती, पूरा दिन खराब हो जाता है। या रास्ते में जा रहे हैं, आजकल बारिश का मौसम है, गाड़ी तेज निकली, कपड़े खराब हो गए, कीचड़ कीचड़ हो गया, गुस्सा आ गया, बस इतना अच्छे से मैं बन ठन के जा रही थी और सारा खराब हो गया। मेरी तो मीटिंग थी, मेरा मेरा तो अच्छा काम होने जा रहा था, बट मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो हो गया, ये तो सिचुएशन सामने आ गई। अब ये मेरे ऊपर है, मैं अपना इमोशन कैसे संभालूंगी? गाड़ी वाला तो निकल गया, हो सकता है उसकी भी कोई इमरजेंसी हो। तो हम एम्पैथी में बदल सकते हैं अपने इमोशन को, क्योंकि भाई अब तो ये हो गया ना, अब मैं इसका क्या कर सकती हूँ? अब अगर मेरे को अच्छे मीटिंग में जाना है तो मुझे सॉल्यूशन निकालना है ना उसका। हो सकता है मैं रुक के धो लूँ उसको, मेरे चलते चलते तक शायद वो सूख जाए, लेकिन उससे जो मैंने अपना इम्पोर्टेंट काम करना है उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसको हम इमोशनल क्वोशन बोलेंगे कि सिचुएशन आने के बावजूद हम उसको मैनेज कर पाए। ये कोई गुट्टी नहीं है कि हमने घोली, पानी में डाली और पी गए, ये प्रैक्टिस से आता है, बार बार प्रैक्टिस से ही आएगा। और अगर हम चाहेंगे तभी ये होगा, अगर हमें लगेगा कि इसके कोई फायदे हैं हमारी जिंदगी में, अगर हमें लगेगा कि नहीं, जैसे हम हैं हम वैसे ही ठीक है, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। जैसे हम आज तक रिएक्ट करते आए हैं ऐसे भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लीडरशिप के सेशंस ले रहे हैं और अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस को वैल्यू दे रहे हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना बहुत जरूरी है और उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम को ना समझ के, प्रॉब्लम को पर्सनलाइज ना करके, सिचुएशनलाइज करके हमें उसके कैसे आंसर्स ढूंढने चाहिए। कई बार बहुत गुस्सा आता है तो हम कहते हैं कि अच्छा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। किसी ने तेरे नाम पिक्चर देखी होगी तो देखा होगा ना, सलमान खान उसमें वो 10 तक गिनती करता है, किसी ने देखी है वो मूवी? उसमें, उस पिक्चर में सलमान खान को बहुत गुस्सा आता है, वो मार मारता रहता है सबको, लेकिन बाद में शायद जो हीरोइन होती है वो बोलती है कि तुम 10 तक गिनती करो तो शायद तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा। देखिए किसी ने ये मूवी, या मैं ही सबसे पुरानी हूँ यहाँ पे? देखिए
1: मैंने देखी है मैम,
2: सबने देखी है। तो वो क्यों करता है? उसको
1: मैम
0: उसने एक मैनेजमेंट टेक्निक बना ली कि मेरे को गुस्सा आता है तो मैं गुस्से में रिएक्ट कर जाता हूँ, तो रिएक्ट ना करके मैं कैसे उसे कंट्रोल करूँ और उसको मैं पॉजिटिव, मैंने ये एज ए एग्जाम्पल ही दिया है, लेकिन ये कोई सिंगल तरीका नहीं है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। हमारी लाइब्रेरी में भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो इमोशनल क्वोशेंट के ऊपर हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, जिनको कि लगता है उनकी जिंदगी में नेगेटिव इमोशन बहुत ज्यादा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जाएं और कुछ कुछ स्पीकर्स हैं या कुछ कुछ किताबें ऐसी हैं, आप पढ़ने की कोशिश करिए उनको, वो आपको शायद एक बेहतर सोशली एंड पर्सनली वो आपको हेल्प करेगा। और जहां तक लीडरशिप की बात हो रही है, ये बहुत जरूरी है। आपने मैम को कभी रेयरली गुस्से में देखा होगा, आपने हमेशा देखा है कि वो कितनी बारीकी से इमोशंस को, सिचुएशंस को सिचुएशन पे रखती हैं, पर्सनलाइज नहीं करती। ये बहुत मेहनत से आता है, बहुत एक्सपीरियंस से आता है, ओवरनाइट नहीं आ सकता, बट एज ए लीडर ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें गोल पे फोकस करना है, इमोशन पे नहीं। मेरे को कैसे बोल दिया इसने, अरे मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मुझे बोल कैसे दिया इसने। बट वो आप उसे पर्सनलाइज ना लीजिए। अगर कोई फीडबैक दे रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट करिए, अपनी गलतियां, अपनी वीकनेस को पहचानिए एज ए लीडर और उस पे वर्क करिए। अगेन आई वुड से इट इज अप टू अस कि हम इसकी वैल्यू पहचानना चाहते हैं कि नहीं पहचानना चाहते। इस स्लाइड में हम ये बोल रहे हैं, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है, इसके ऊपर हम कई चीजें बात कर चुके हैं। कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि नेगेटिव इमोशंस खराब होते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने ऐसा भी स्टडी किया है कि जरूरी नहीं है हर बार और हर नेगेटिव इमोशंस हमारे लिए नेगेटिव ही रिजल्ट लेके आए। कभी कभी आपने सुना होगा ये इंसान ना स्ट्रेस में बड़ा अच्छा काम करता है, ऐसे सुना है किसी ने कि भाई इसको जब बिल्कुल सर पे आ जाती है ना, तब इसकी, ये किसी की नहीं सुनता, ये देखना बहुत अच्छा काम करता है, तब क्योंकि उनको मैनेज करना आ गया है ये आर्ट कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं। पूरा दिन कुछ, कई हमारी फ्रेंड ऐसी होती थी कुछ नहीं पढ़ती थी, सारा साल ऐसे ही इधर उधर डोलती रहती थी, लेकिन जब एग्जाम का प्रेशर आता था तो दिन रात पढ़ाई करके, क्योंकि उनको डर था कि मैं पीछे ना रह जाऊं, तो उस डर को उन्होंने पॉजिटिव इमोशन बनाया और दिन रात पढ़ाई करके अच्छे रिजल्ट लेके पास हो गए, है ना। और कुछ लोग हैं पॉजिटिव चीज को भी नेगेटिव बना लेते हैं, हाय मतलब प्रैक्टिस करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि डर आ गया है कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इसी को बैलेंस करने की जो कला है उसको इमोशनल क्वोशेंट हम कहते हैं। तो हमें हर बार नहीं सोचना कि हमें पॉजिटिव ही रहना है, कई बार ही नेगेटिव इमोशंस बहुत जरूरी होते हैं लाइफ में हमें सीख देने के लिए, ये समझाने के लिए कि शायद हम कहीं गलत जा रहे हैं, शायद हमें जरूरत है अपने कोर्स करेक्शन की। कभी कभी फेलियर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब फेलियर ही नहीं है तो हमें ये पता ही नहीं है कि हम राह पे, किसी राह पे चल भी रहे हैं कि नहीं, ऐसे अंधाधुंध चले जा रहे हैं, एक रैट रेस में सब सब चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं। तो हमने EQ समझा, इमोशनल क्वोशेंट समझा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो जो पजल है जो हम 10 E's की बात कर रहे हैं, वो हमें हेल्प करेगा हमारा गोल डिफाइन करने में, हमारी लाइफ के गोल्स क्या हैं। तो इमोशनल क्वोशेंट को अब हम लिंक करेंगे कि हम गोल्स कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमने बात करी कि यहाँ सभी लोग किसी ना किसी गोल से या किसी ड्रीम को अचीव करने के लिए ही यहाँ पे जुड़े हैं। किसी को 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, किसी को ग्रेजुएशन करना है, किसी को कोई स्पेसिफिक कोर्स करना है, नर्सिंग का करना है, पार्लर का करना है, स्टिचिंग का करना है, कोई एम्ब्रॉयडरी करके कुछ करना चाहता है, सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ क्या है वो भी तो हमें डिफाइन करना है ना। लेकिन अगर हम नेगेटिव इमोशंस में घिरे रहेंगे, मेरे घर में तो बहुत परेशानी है, मेरे को तो निकलने नहीं दिया जाता, मेरे पास तो वक्त नहीं है, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, अरे जाके भी मुझे काम करना पड़ता है, मुश्किल से 1 घंटा निकालती हूँ, अगर हम इन सब चीजों में फंसे रहेंगे तो हम लाइफ में गोल ही सेट नहीं कर पाएंगे, और अगर गोल ही सेट नहीं होगा तो हम उस राह पे चलेंगे कैसे। किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ सजेशन, कोई पॉइंट शेयर करना चाहता है? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हम अपना गोल डिफाइन कर कैसे सकते हैं। ये 10 क्वेश्चन है, ये स्लाइड हम आपसे शेयर कर देंगे। अगर हम इन 10 क्वेश्चन के आंसर करने शुरू करें तो हो सकता है हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं ये हम खुद से पहचान पाए। ये मैं आपके लिए नहीं कर सकती, आप किसी और के लिए नहीं कर सकते, आप अपने बच्चों के लिए भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं ये वो ही डिफाइन करे, तभी वो लाइफ में खुश रहेंगे, सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि गोल उनका होना चाहिए। हम गाइड कर सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं उस राह पे चलने के लिए, लेकिन इन क्वेश्चंस का आंसर तो हमें ही पता है ना, क्योंकि हम सच्चाई से आंसर देंगे इन इन सब क्वेश्चंस का। मैं लाइफ में क्या करना चाहती हूँ, तो मुझे खुश क्या करता है, किसी को सिलाई खुशी देती है। अभी हम पीछे किसी कुछ बच्चों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला मुझे, मैं सीख तो सुइंग रही हूँ लेकिन मुझे बनना पार्लर का काम करने में बहुत मजा आता है, तो मैं स्विंग सीख के पार्लर भी करूंगी। ठीक है, आप स्विंग सीख लो, बट वो बहुत क्लियर थी कि मुझे ब्यूटी का काम करने में बहुत मजा आता है, बट हो सकता है उनके परिवार वाले इस वक्त अलाउ ना कर रहे हो या सीट खाली ना हो ब्यूटी एंड वेलनेस में, तो इसलिए उन्होंने अभी अपना ब्यूटी का बाद में रखा। तो उनको बहुत क्लियर था कि उनको मजा किस चीज में आता है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मैं अपनी स्ट्रेंथ को एडवांटेजेस में कैसे बदल सकती हूँ, मुझे अपना गोल अचीव करने के लिए फाइनेंसेस क्या क्या चाहिए होंगे, और इन फाइनेंसेस को मैं अरेंज कैसे कर सकती हूँ। क्या कभी कभी हमारा गोल ऐसा होता है कि हमें लगता है ये फुलफिल नहीं हो सकता, कि मैं डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहती हूँ लेकिन वो तो महंगी होती है, मैं पायलट बनना चाहती हूँ लेकिन वो तो बहुत महंगी होती है। उसको आप पहले डिफाइन करेंगे, तभी तो आप पहले पहचानेंगे, तभी तो आप उसको ब्रेक डाउन करके उस लेवल तक लेके आएंगे कि उसे पूरा किया जाए। तो पहला ऑब्जेक्टिव है उसको पहचानना कि वो ऐसा काम क्या है जो आप रोज उठ के करीबन 30, 40, 50 साल तक आगे करना चाहते हैं। जो बच्चे आज 20 साल के हैं वो कम से कम 60 साल तक काम करेंगे, तो 20 से 60 साल की जो जर्नी, यानी कि 40 साल अगर आपको काम करना है, मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ, आजकल तो 80, 90 साल के भी जो हमारे मेंटर्स हैं वो भी हमें गाइड करते हैं अभी तक, तो आप सोचिए काम करने की तो कोई उम्र ही नहीं होती। तो अगर आपको 40, 50, 60 साल तक आगे काम करना है, तो ऐसा क्या काम है कि रोज सुबह उठेंगे तो उतने ही खुशी से आगे बढ़ेंगे, चैलेंजेस रोज आएंगे, ऐसा नहीं है कि मेरी मर्जी का काम होगा तो चैलेंज नहीं आएगा, चैलेंज तो रोज आएंगे, क्योंकि चैलेंज के बिना तो आई थिंक लाइफ का सर्कल पूरा नहीं है, लेकिन उन चैलेंजेस को हम तभी एंजॉय करेंगे अगर काम हमारी पसंद का है। अगर आज वो काम हम नहीं कर सकते, तो मैं उनकी तरफ आगे कैसे बढ़ सकती हूँ, उनको भी हमें छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना है। बट ज्यादातर लोग जो है ना, फियर ऑफ फेलियर, यानी कि मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगी, अगर मैं सिलाई सीखने गई और मेरी सिलाई सबसे अच्छी नहीं हुई तो शायद मेरे पास कोई ग्राहक नहीं आएगा, अगर मैंने अचार बनाना सीखा और मेरे अचार खराब हो गए तो हो सकता है मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, हो सकता है मैंने बिजनेस करना शुरू किया और मेरे पास कोई ऑर्डर ही नहीं आया तो मेरे पैसे तो खराब हो जाएंगे, तो मैं नहीं करूंगी। ये जो फियर ऑफ फेलियर है ये हमें आगे बढ़ने से हमेशा रोकता है, और फियर ऑफ फेलियर हम सब में ही है। ये लाइफ स्किल के सेशन देने से पहले मेरे अंदर फियर ऑफ फेलियर था, अगर लोगों को मेरे सेशन में नींद आने लग गई तो मैं क्या करूंगी, अगर उनको मेरे सेशन अच्छे नहीं लगे, अगर मेरी बातें समझ नहीं आई, अगर वो सिर्फ स्क्रीन ऑन करके बैठे रहे और मेरी बात का कोई मतलब नहीं समझे तो मुझे कैसे लगेगा। तो ये फियर ऑफ फेलियर था मेरे अंदर, पर मैंने अपना काम पूरी जस्टिफिकेशन से किया, जो टॉपिक था उसे समझा, उसमें जितनी मेरी समझ थी उसके सारे जो पॉइंट्स थे मैंने लिखे, हो सकता है एक बच्चे को भी या एक बेनिफिशियरी को भी उससे फायदा हो जाए, तो वो जो फियर ऑफ फेलियर है ना मेरे, उससे मैं मोटिवेट हुई कि चलो एक शायद मेरी 4-5 घंटे की मेहनत से हो सकता है एक इंसान को कुछ मोटिवेशन मिल जाए और वो अपने इमोशंस को पॉजिटिव की तरफ मोड़ना चाहे और हो सकता है वो अपना गोल डिफाइन करने में सक्षम हो सके। तो इसलिए फिर वो फियर ऑफ फेलियर को मैंने कन्वर्ट किया कि नहीं, मुझे ये काम करना है तो मुझे अच्छे से करना है, फियर ऑफ फेलियर से उसको बांध के नहीं रहना। बट हम सभी आगे बढ़ने से डरते हैं, कुछ नया काम करने को बोलो तो हमें डर लगता है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, हमारे ऊपर हमारे लिए ओपिनियन बनाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है हमारे लिए वो बहुत जरूरी है। सो नेवर बी शाय, नेवर बी अफ्रेड, मतलब कभी डरिए मत कि हम हार जाएंगे, हमें हमें लोग हंसेंगे, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं, फेल होंगे ही होंगे। आप कितनी बड़ी कंपनी के लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी, हमारी लाइब्रेरी में इतनी बायोग्राफीज हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ होगा बड़ी सी बड़ी कंपनी उठा लीजिए जिसके जो बायोग्राफी है उसमें ये नहीं लिखा होगा, ये ऑटोबायोग्राफी में, कि मैं कभी फेल ही नहीं हुआ या मैं कभी फेल ही नहीं हुई। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कभी फेल नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ कदम तो गलत हुए ही होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़े बन गए और एक छोटी सी गलती से भी वापस नीचे आ गए। ऐसे बहुत किताबें हमने पढ़ी हैं कि कैसे बड़े बड़े एम्पायर्स जो हैं वो नीचे आ गए। तो फेलियर तो पार्ट ऑफ सक्सेस है ही। अगर आप सक्सेस का कर्व पढ़ेंगे तो सक्सेस में फेलियर कहीं ना कहीं तो आएगा, लेकिन क्या हम उससे डर के रुक जाएं? ये आपकी मर्जी है, अगर आपको डर के रुकना है तो आप डर के रुकिए, बट अगर आपने हमारे सेशन ज्वाइन किया है तो हम कभी भी नहीं कहेंगे कि आप फियर ऑफ फेलियर से रुक जाएं, थम जाएं। कोशिश करिए उसको आइडेंटिफाई करें, उन जो फेलियर्स हो सकते हैं पहले से उसकी तैयारी करके हम चले आगे। रास्ते में अगर रुकावटें आएंगी तो उसको मैनेज करना हमें सीखना है। आप जो भी अकम्प्लिश करना चाहते हैं, मैम ने भी सबको बताया, एक डायरी जरूर मेंटेन करिए। जैसे कि इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, हम उसको छोटे छोटे स्टेप्स में अगर तोड़ेंगे, यानी कि हमें एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उस बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर मैं ये कह रही हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर मैं अपनी बुटीक खोल लूंगी, तो उसको मुझे ये स्टेप्स में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बुटीक खोलूंगी तो आज से 3 महीने तक तो पहले मैं बेसिक स्टिचिंग सीखूंगी। बेसिक स्टिचिंग सीखने के बाद मुझे 10 या 15 लोगों के फ्री में बनाने पड़ेंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरी क्वालिटी ठीक है कि नहीं ठीक है। हो सकता है मुझे पैसे मिले उस चीज के, हो सकता है मुझे मेरे मुंह पे आके फेंक दे कि ये क्या क्वालिटी तुमने दिया है। क्या मैं रुक जाऊंगी तब? ये आपकी मर्जी है। अगर आप सीख के आप बोलेंगे अच्छा ठीक है मैं दोबारा ठीक करके देती हूँ, मैं इसके कोई पैसे भी नहीं दूंगी, ये आपके ऊपर है, मैं ये नहीं कह रही आप ऐसा ही करिए। लेकिन अपने लक्ष्य को ब्रेक करिए कि अगर 1 साल में बुटीक खोलना है तो पहले 3 साल में मेरे को बेसिक स्टिचिंग सीखनी है। अब मैं बेसिक स्टिचिंग पे करके सीख रही हूँ कि रीड के सेंटर पे जाके सीख रही हूँ, जहाँ पे मैं सेफ भी हूँ, मुझे अच्छे टीचर मिले हैं। बेसिक के बाद मैंने 3 मंथ्स का एडवांस स्टिचिंग लिया, उसके बाद मैंने छोटा बुटीक खोला, और उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके बड़ा बुटीक खोला। 1 साल में नहीं खोल पाई, हो सकता है 1.5 साल में खोला। अपने गोल को रीएडजस्ट करिए। तो मेरा मतलब यह है कि अपने गोल को पहले डिफाइन करिए और उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़िए, और हमेशा उसे रिविजिट करिए कि जो मैं करना चाहती थी वो मैं कर पाई कि नहीं कर पाई। जहां फेलियर हुआ उस फेलियर को एक्सेप्ट करिए, आइडेंटिफाई करिए, उसे कुछ सीखिए। एवरी टाइम वी हैव समथिंग टू लर्न फ्रॉम आवर फेलियर, फ्रॉम द ऑब्स्टेकल्स, फ्रॉम द रोड ब्लॉक्स। जो भी बीच में रोड ब्लॉक्स आए हैं, अनहैप्पी सिचुएशंस आई हैं, कोविड आ गया, कोई प्रॉब्लम और आ गई, तो उसको आइडेंटिफाई करते हुए हमें उसको पॉजिटिव में ही बदलना है। यही एक रास्ता है आगे बढ़ने का, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे हम सॉफ्ट स्किल की बात करें, बार बार इमोशन आ जाते हैं कि हमें घबराना नहीं है, उनको नेगेटिव इमोशंस में नहीं बदलना है। सॉरी मैंने टाइम भी नहीं देखा। यहाँ पे कुछ किताबें हैं, जरूरी नहीं है ये सारी किताबें हमारे लाइब्रेरी में हो, लेकिन इसके कई कई जो एक्सर्ट्स हैं, यानी कि जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बाकी किस लैंग्वेजेस में है मैं रिसर्च कर सकती हूँ अगर किसी को इंटरेस्ट है तो। और ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मैं ये बताना चाह रही हूँ ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो हम चाहें तो उनको पढ़ के हम और अच्छे से अपना गोल डिफाइन करके आगे खुद से बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। लाइफ इज टू शॉर्ट नॉट टू फॉलो योर ड्रीम्स, दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव, कि अपना गोल आइडेंटिफाई करिए और अपने पॉजिटिव इमोशंस को पहचानिए। नेगेटिव इमोशंस को हम किस तरीके से पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, दैट इज अनदर थिंग। सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन सेशन ऑन द 10 ईज। जो पहला ई था हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस का, आज हमने वो कवर किया है। अगले सेशन में मैम का लीडरशिप का सेशन होगा, 2nd ई पे हम उसके बाद बात करेंगे, राइट? अब इसके साथ कोई अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता है या कोई गोल या अब जिसने डायरी रखनी शुरू करी है कोई फीडबैक देना चाहता है? बिकॉज क्या है ना, हम सुन के बंद कर देंगे ये जूम सेशन और कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जहां थे वहीं पे ही रहेंगे। इसलिए वी शुड बी encouraging each other to interact. So I am stopping now and I encourage everybody, आपके साथ beneficiaries भी अगर हैं तो उनको भी encourage करिए कि कुछ इस इन सेशन से अगर समझ में आया या कुछ सीखा, और मुझे भी फीडबैक दीजिए कि अगर ये सेशन बहुत वर्बोस था, यानी कि वर्ड्स बहुत ज्यादा थे, तो मैं इसे और कम और सरल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी।
1: हेलो मैम, इट्स संगीता फ्रॉम बाइरेडीपल्ली.
0: हेलो संगीता जी।
1: यस मैम, जो आपने अभी इमोशंस के बारे में बताया, आई डोंट रिमेम्बर, कोविड टाइम पे मैंने एक चैप्टर था घृणा का महत्व, हिंदी में किसी बच्चे को एक्सप्लेन करना था. दैट वाज अ डिग्री स्टूडेंट, मुझे याद नहीं है. बट वो इमोशंस जो हमारा हेट्रेड इमोशंस है, जैसे आप एक्सप्लेन कर रही थी, उसको बहुत डिटेलली उस चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि जब तक हम घृणा नहीं करेंगे तो जो बुराई है उसके प्रति लोगों का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, नहीं तो उससे डर के, अरे लोग क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे, इससे डर के गलत काम नहीं करेंगे. वो पूरा बहुत अच्छे से था, तो आप जब समझा रहे थे तो वो चैप्टर में रिकॉल कर रही थी मैम.
0: एब्सोल्युटली राइट। हम कभी कभी इतना डर जाते हैं नेगेटिव इमोशन से ना। जब मैंने पूछा, मैं 100% ये श्योर हूँ कि आज जो 60 लोग हमारे साथ जुड़े हैं सभी अच्छा नहीं फील कर रहे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हमें परेशान कर रहा होगा, कोई ना कोई ऐसी परेशानी। सबको ये टाइम सूट करता है ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि सभी लोग अपना वक्त निकाल के एग्जैक्टली 3 बजे आ गए और वो अच्छा भी फील कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन हम नहीं बोला नहीं, क्योंकि हम डरते हैं कि हम कुछ नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव ही सोचा जाएगा। भाई मेरे को नहीं, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैंने सुबह खाना नहीं खाया वक्त से, मेरा सिर में दर्द हो रहा है, मेरा नहीं मन है सेशन अटेंड करने का, मेरा नहीं मन है वीडियो पे आने का, मेरा नहीं मन है कुछ बोलने का। तो वो हमारा मन है, हम उसको नहीं चेंज कर सकते। मैं आपकी जिंदगी में आके उसको चेंज नहीं कर सकती, लेकिन ये हम पे है कि हम उसे मैनेज कैसे करेंगे। ये हम पे है कि दिन भर में जो हमारे सामने आता है हम उसे एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में कुछ बदलाव करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, ये सब हमारे हाथ में, क्योंकि ये हमारी लाइफ है।
1: नाउ फॉर दिस आंसर मैम, कि आप कैसी हैं? मैं खुश हूँ मैम.
0: आप खुश हैं? अच्छा, वेरी गुड। और आप खुश हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, बिकॉज पॉजिटिव इमोशन से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो बिहेवियर है, मतलब इमोशन से हमारे एक्शन होते हैं। मैं जब ये सेशन बना रही थी तो मैंने कई वीडियोस और कई साइकोलॉजिस्ट थी जो थ्योरीज थी उनको पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को ना हल्के में नहीं लेना चाहिए, और ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और मेरे ब्रदर ने तो इस सब्जेक्ट पे पीएचडी, डबल पीएचडी करी है ह्यूमन साइकोलॉजी पे, तो वो अभी भी पढ़ रहा है, उसको करीबन 12 साल हो गए हैं ये सब्जेक्ट पढ़ते हुए, और अभी भी वो पढ़ रहा है, प्रैक्टिस भी कर रहा है और पढ़ भी रहा है। तो हम आधे घंटे के सेशन में तो इस चीज पे बात भी नहीं कर सकते, और मैं तो इस चीज पे बोल भी नहीं सकती क्योंकि मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है। तो जब हम इन इन चीजों पे मैं पढ़ रही थी तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई कि जो पॉजिटिव इमोशन है, इमोशन जो बना है ना, ये एक फ्रेंच वर्ड का डेराइवेटिव है। इंग्लिश का जो वर्ड है इमोशन, ये एक फ्रेंच वर्ड का डेरिवेटिव है। इमोशन यानी कि जो हम फील कर रहे हैं उससे हमारा मोशन होगा, उससे हमारा रिस्पॉन्स होगा। जो हमारा इमोशन है उससे हम रिस्पॉन्ड करेंगे। हम खुश हैं तो सब खुश हो जाएगा, हमारे आसपास के लोग खुश होंगे, हम खुशियां फैलाएंगे। अगर हम उदास हैं, गुस्सा है, अब ये इमोशन भी जरूरी तो है हमारे लिए, ये हमारी लाइफ से कोई ले नहीं सकता। तो अगर मैं चिड़चिड़े मूड में हूँ तो अगर कोई बच्चा आके, मेरा बेटा आके मुझे हग भी कर रहा है, पीछे डर, मेरे को नहीं करना, मेरा मूड नहीं आता, तो उस बेचारे की क्या गलती है? दिन तो मेरा खराब गया है और चिड़चिड़ी तो मैं हूँ, इमोशन तो मेरा खराब था, मैंने अपना खराब इमोशन उसको भी पास ऑन कर। ऐसा ही सेम रिलेशनशिप इश्यूज जो है वो इमोशन से ही पैदा होते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप बने ही इमोशन पे हैं। चाहे वो प्रोफेशनल इमोशन है, सोशल इमोशन है, फैमिली इमोशन है, घर के हैं, हस्बैंड वाइफ, सास बहू, मदर डॉटर, मदर सन, जितने हैं रिलेशनशिप वो इमोशन पे ही बने। तो इसकी अहमियत तो हम हटा नहीं सकते, इसको हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। आपके लिए मैं नहीं मैनेज कर सकती, आप मेरे लिए नहीं मैनेज कर सकते, अपने अपने पहचान के और अपने अपने मैनेज करने। मैंने बहुत बोल लिया, अब आप लोग प्लीज कुछ शेयर करिए। हेलो
1: हेलो मैम, गुड आफ्टरनून.
0: स्वाति जी, वेरी गुड आफ्टरनून, आप कैसे हैं?
1: मैं बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे?
0: मैं अच्छी हूँ, मुझे खुशी हो रही है। इतना सारा इंफॉर्मेशन जो मैंने इकट्ठा किया था पिछले 1.5 दिन में, मैंने सारा शेयर कर दिया। कुछ कुछ चीजें बच गई हैं, मैंने बहुत सारा पढ़ा था लेकिन फिर भी काफी कुछ शेयर कर दिया, तो मुझे अच्छा लग रहा है।
1: यस मैम, काफी टाइम ना, मतलब कुछ चीजों पे ऐसी धूल सी जम जाती है, तो वो सेशन के जरिए आगे चल के आता है हमारे सामने और फिर से लगता है कि नहीं, हमें ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। और काफी टाइम पे तो मैम ऐसे होता है कि निगेटिव जो चीजें हमारे साथ घटती है सुबह से लेकर शाम तक, वो ज्यादा टाइम तक हमारे माइंड में घूमती रहती है, और जो कुछ अच्छी बातें होती है ना, तो वो बहुत कम टाइम के लिए रहती है। तो ऐसा आप बताइए कि हम निगेटिव चीजों के जल्दी से भूल जाए।
0: ये जब मैं रिसर्च कर रही थी इस टॉपिक पे, ये सबसे पहले उठ के आ रहा था कि नेगेटिव इमोशंस जो है ना, वो सबसे ज्यादा भारी हो जाते हैं। हो सकता है नेगेटिव इमोशन एक होगा, वो इमोशन या सिचुएशन हुई, मान लीजिए लड़ाई हो गई सुबह सुबह किसी से, तो वो हमारा इमोशन नेगेटिव हो गया, या कोई बीमार हो गया घर में तो नेगेटिव इमोशन हो गया हमारा। अब वो नेगेटिव इमोशन पूरा दिन हमारे साथ रहता है, पूरा दिन, पूरे दिन में चाहे 100 से भी ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस आए हों, लेकिन जो उसका भार है, जो उसका बोझ है यहाँ पीछे दिमाग में, वो घर कर जाता है, उसको हम जाने ही नहीं दे सकते। अब ये डॉक्टर्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने नेगेटिव इमोशन पे बहुत ज्यादा स्टडी करी है। इस पे आप काउंसलर्स जो होते हैं, जो आपने सुना होगा कि काउंसलिंग के लिए जाना पड़ता है, हमारे यहाँ तो इंडिया में मेंटल इलनेस को तो मतलब इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसकी इसके बारे में ज्यादा बात भी नहीं करी जाती, लेकिन बाहरी देशों में ये एक कॉमन टॉपिक है। अगर मुझे डिप्रेशन है, या मुझे दुख है, या मैं नेगेटिव इमोशन से घिरे रहती हूँ, तो हम वो लोग डरते नहीं है अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में, या फिर ऐसे एक्सपर्ट्स के पास जाने में जिनसे वो अपनी बात कर सके। एक एक घंटे का सेशन होता है और वो उनसे बात करते हैं। हम यहाँ पे अपनी सहेलियों से बात करके मन हल्का कर लेते हैं, ऐसा होता है। एक सहेली सबकी होती है जिससे इतना पूरे दिन की भड़ास निकाल दो, ऐसा ऐसा ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, अब ठीक लग रहा है, अब मुझे ठीक लग रहा है, अब ठीक। तो ये एक्चुअली हम रियलाइज नहीं करते, ये हमारा नेगेटिव इमोशन मैनेजमेंट का तरीका बन गया है। कुछ कुछ लोग होते हैं अपनी मदर से बात करके बहुत खुश होते हैं, या कुछ अपनी डॉटर से, क्योंकि वो एक ऐसा बॉन्ड है कि कोई चेंज नहीं कर सकता, तो हम किसी से बात कर लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मैंने कई कई लोगों को देखा है कि वो भगवान की मूर्ति से बात करते हैं, कि भाई हम किसी से नहीं बात कर सकते, कभी कभी ना भगवान के पास बैठ के वो अपने मन की पूरी बात कह देते हैं कि अब मैंने आपको बता दिया, अब आप देखो कि क्या हो सकता है। वो और कुछ नहीं है, वो अपने दिल की जो बातें हैं वो बाहर निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे मतलब उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ ये चीजें मुझे तकलीफ दे रही है। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो बोझ कम होने लगता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कई बार कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। वो एक सिचुएशन प्रॉब्लम है, ये क्या मैं उसे सॉल्व नहीं कर सकती? अगर मैं उसे नहीं सॉल्व कर सकती तो वैसे भी दुखी होने का मेरा कोई रीजन ही नहीं। अगर मैं उसे सॉल्व कर सकती हूँ तो मुझे ये देखना है कि परेशान होने की बजाय मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उसे सॉल्व कर सकूं। कुछ लोग डायरी मेंटेन करते हैं अपने दिन भर की, जो भी दिन भर की परेशानियां हैं, अच्छी चीजें, उसमें जरूर लिखते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो सीक्रेट डायरी मेंटेन करते हैं, वो किसी को भी पता नहीं होता, सीक्रेट डायरी होती है, आज के दिन की ये 4 बातें हैं वो उसमें मैंने लिख दी, और मेरी सीक्रेट डायरी सिर्फ मेरे पास रहेगी। ये भी एक तरीका होता है कुछ लोगों का। अब ये तरीका आपका क्या है, ये तो आप ही को ढूंढना पड़ेगा, राइट? लेकिन नेगेटिव इमोशन को अपने ऊपर हावी होने देना एक वक्त से ज्यादा, वो आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ चारों को खराब कर सकता है। फिजिकल हेल्थ कैसे? आप परेशान रहेंगे, डायबिटीज का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, सिर में दर्द, चक्कर आना, डिप्रेशन होना। फिजिकल कैसे? भूख नहीं लगेगी आपको, गुस्से में है, परेशान है, डिप्रेशन में है, तो फिजिकल हेल्थ वैसे ही खराब हो जाएगी। इमोशनल हेल्थ कैसे? सब आप दुखी हैं, आपके बच्चे दुखी रहेंगे, आप चिड़चिड़े रहेंगे, आपके हस्बैंड, आपकी मदर सब आपसे थोड़ा थोड़ा थोड़ा दुखी, क्या तो दुखी रहती है, पता नहीं क्या है, बोलती भी नहीं है क्या प्रॉब्लम है ना। प्रोफेशनल कैसे? आप अपने काम पे ही ध्यान नहीं दे पाएंगे, अब आपके इमोशंस तो कोई मैनेज नहीं कर सकता, लेकिन उसे आइडेंटिटी, उसको पहले अपनाना बहुत जरूरी है कि, और ये मानना बहुत जरूरी है कि सिर्फ मैं ही ऐसी नहीं हूँ शायद, कि जिसको इतनी बड़ी दिक्कत है, और भी लोग हैं दुनिया में जो शायद इससे भी बड़ी बड़ी दिक्कतों से, इसमें अमीर गरीब का कोई वो नहीं है। हो सकता है बहुत अमीर लोग हैं, पैसा भरपूर है, फिर भी नेगेटिव इमोशन बहुत सारे हैं। और एक इंसान है जो अपना काम करता है, सिंपल लिविंग है, रोजी रोटी है, घर परिवार है, और आप देखेंगे वो इतना खुश है, इतना खुश है कि पूछिए ही मत। वो कोई मेटीरियलिस्टिक चीजों से खुशी नहीं कभी कभी भी बनती होती। नेगेटिव पॉजिटिव इमोशंस सारे हमारे अंदर हैं, कितनी तवज्जो हमें किसको कब किस वक्त पे देनी है, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल भी, जैसा कि संगीता जी ने भी कहा कि जो नेगेटिव इमोशन है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, टू कम बैक टू से कि पॉजिटिव इमोशन की महत्व क्या है हमारी लाइफ में, उनसे दोस्ती करने के लिए नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होना भी बहुत जरूरी है।
1: एंड वन मोर थिंग मैम, मेरे साथ तो ऐसे होता है मोस्टली, आई थिंक सबके साथ, जब हम हमारे नेगेटिव इमोशंस की वजह से जब दुख है किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो कम हो जाता है, एंड हैप्पीनेस वो डबल हो जाती है व्हेन आई शेयर विद समबडी एल्स.
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये फॉर्मूला भी है कहीं पे, मैंने ये भी पढ़ा था, ऐसा हैप्पीनेस का फॉर्मूला एंड जो नेगेटिव एंगर का जो फॉर्मूला है, बिल्कुल आपने जो बोला ऐसा है, एक उन्होंने डिराइव करके लिखा हुआ। मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ साइकोलॉजी में कि वो फॉर्मूला डिराइव कर दू, लेकिन आई रेड अबाउट इट।
1: यस मैम, जब गुस्सा होता है बर्स्ट हो जाता है तो वो अपने आप कम हो जाता है, और दुख रहते हैं किसी से बोल के रो देते हैं तो भी वो इमोशन बस कम हो जाता है, और हैप्पीनेस किसी से
0: लेकिन
1: भी कितना भी शेयर करो डबल ट्रिपल होता जाता है.
0: हमें ये ध्यान रखना है कि गुस्से में हम गुस्सा कर किस पे रहे हैं, कहीं गुस्से में हम ऐसा गुस्सा किसी पे ना कर दें कि जो हमारा पूरा रिलेशनशिप उससे खराब है। उसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। उस पॉइंट पे, उस ट्रिगर पॉइंट पे हमारा रिएक्शन क्या है, हमारा रिएक्शन यानी कि हमारा एक्शन क्या है, उसको पहला ई जो मैम ने कल बताया था, ई क्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वोशंट, उस बैलेंस को, कि नेगेटिव इमोशन पॉजिटिव इमोशन का जो वो बैलेंस है, कहाँ भाई नेगेटिव इमोशन कहीं ना कहीं तो निकलेगा, या तो मैं रो के निकालूंगी, गुस्सा करके निकालूंगी, भड़कूंगी किसी पे, या लिख के, या किसी को बोल के, या किसी और तरीके से नेगेटिव इमोशन तो निकलेगा ही निकलेगा। नहीं निकलेगा तो वो प्रेशर कुकर हो जाएगा, फट जाएगा किसी दिन, तो उसको निकलना भी जरूरी है। बट उसको मैनेज कैसे करेंगे, और मैनेज करने का तरीका हम सबका अपना है, और उसका रिएक्शन का एक्शन भी हमारा अपना है, और उसका रिजल्ट भी हमारा अपना है, राइट? बट इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमारे को गोल डिफाइन करने के लिए अपने आप को पॉजिटिव की तरफ कैसे लेके जाना है। तो आज हमने दो चीजों को रिलेट करा है, हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लेक्स हो, हम दोनों चीजों को अलग अलग भी समझ सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस और गोल सेटिंग, कि हमें लाइफ में गोल कैसे सेट करना चाहिए।
2: हेलो मैम. मैम
0: हाँ जी ज्योत्सना जी,
2: मुझे भी आज ये फील हुआ है कि मैं भी अपना जो नेगेटिव इमोशन है वो मतलब कैसे यूटिलाइज करती थी. आज तक पहले मुझे आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, जैसे मैं मुझे कभी बहुत ज्यादा किसी से लड़ाई हुई, गुस्सा हुआ तो मैं बहुत ज्यादा काम करती थी, जितने मेरे पेंडिंग्स काम होते थे मैं सारे कंप्लीट कर देती थी उस दिन, जबकि मैं वैसे भी बहुत अच्छा करती थी ऐसा नहीं है, लेकिन जिस दिन मेरे किसी से गुस्सा हो गया या किसी से फाइट हो गई या कोई बात हुई तो मैंने उस दिन सारे पेंडिंग काम कंप्लीट कर दिए. तो मुझे आज पहली बार ये आइडेंटिफाई हुआ है कि जब मैं गुस्से में आती थी तो मैं ज्यादा काम करती थी, तो अब मुझे ये चीज और याद है, अंडरस्टैंड हो रहा है कि मुझे अपने नेगेटिव इमोशन को और कैसे बैलेंस करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है. यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं मैम जो लोग बहुत डरते हैं कुछ भी मतलब करने से पहले, करना चाहते हैं प्रैक्टिस करते हैं और करने के बाद उन्हें ये डर लगता है कि हम कर नहीं पाएंगे. वैसे तो ये डर सबके अंदर होता है,
0: हम सब
2: लेकिन सबके अंदर होता है वन टू ऑल, अपने अपने लेवल पे मैम सबके अंदर होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को फिर हम धीरे धीरे धीरे धीरे पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं. पर ठीक है, आज हमें और गाइडेंस मिली है कि वो अपना स्ट्रेस कैसे निकाल सकते हैं, कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, कैसे गाइड कर सकते हैं. थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपका सेशन. थैंक्स
0: मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी मदर जब गुस्से में आती थी तो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, तो जिस दिन उसका खाना बहुत अच्छा बना होता था ना, तो हम उसको कहते हैं आज मम्मा गुस्से में थी क्या। ऐसा बहुत होता है कि हम अपने नेगेटिव इमोशंस को भी पॉजिटिव में चेंज कर पाते, हमें पता नहीं होता लेकिन हम वो कर सकते हैं।
2: जी
0: हाँ जी तुषार, आप बोलना चाह रहे हैं?
3: मैम. 1 साल पहले आप हमारा जो कारेगांव का सेंटर था पुणे में, वहाँ आप मैम आई थी, तब आपसे जो बात हुई थी मैम, उससे जो पॉजिटिव वाइब्स हमें मिले थे, वो आज भी हमें काम करने के लिए इनकरेज कर रहे हैं। हर हमारा जो सेंटर है सर मैम, यहाँ पर इंडस्ट्री लेबर और माइन वर्कर्स के बच्चे यहाँ आते हैं। तो उन बच्चों में जो पुअर बैकग्राउंड होते हैं, उनका कोई भी एजुकेशन की वैल्यू नहीं होती उनके घर वालों को, तो यहाँ पर काम करने पर जो बच्चे आते हैं, तो उनको नहीं क्या पुराने जमाने में जो टीचर थे, हाथ में लाठी लेकर बड़ा बड़ा चश्मा पहनते थे और गुस्से से बोलते थे, ऐसा ऐसा कंसेप्ट उनके दिमाग में बैठ गया था। लेकिन जब से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर ट्रेड के साथ, तो जो तारे जमीन पर में जो आमिर खान सर ने जो कैरेक्टर प्ले किया था, कि ऐसा भी टीचर होता है जो बच्चों के साथ उनका उनके जैसा रहकर काम करता है, और जो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो डरते हैं सभी चीजों से, नई चीजें करने में, तो उनके साथ वैसा रहकर इनकरेज करके उनके अंदर भी जो क्वालिटी होती है वो बाहर निकालने का काम आपके जो सेशंस होते हैं मैम, उससे हमें इनकरेजमेंट होता है, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच मैम, आप जो मोटिवेट करती है हमें और गाइडेड करती है, इसलिए।
0: थैंक यू तुषार। हमने ये देखा है कई बार बच्चे डरते हैं साइकिल चलाने से क्योंकि मैं गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी, लेकिन पेरेंट्स जो है वो छोड़ तो नहीं देते ना, वो फिर भी इनकरेज करते, नहीं आप साइकिल चलाओ, गिरोगे तो क्या हुआ, कोई वहां पे कुछ बांध देता, कपड़ा बांध देता, अच्छा घुटने नहीं छिलेंगे, कभी हेलमेट पहना देते, अच्छा चोट नहीं लगेगी, तो हम उसको मैनेज करने का तरीका, लेकिन हम रुक तो नहीं जाते ना, तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम फियर ऑफ फेलियर नहीं लेके आएंगे, फेल तो होना ही है, लेकिन फियर ऑफ पहले से ही क्यों मान ले कि हम फेल होंगे। अभी पीछे कोई बातचीत चल रही थी तो हमने ये सुना था कि हम एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं क्योंकि अर्थ की जो रेडिएशन है वो खींच रही है हमको अपनी तरफ, ग्रेविटी खींचती है ना, तभी तो हम उड़ते नहीं रहते, हम अर्थ से चिपक के रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, तो हम एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और जो हम सोचते हैं पावर ऑफ माइंड, वो बात कभी कभी सच हो जाती है। हम कहते हैं ना कि हम आज ये सोच ही रहे थे, अरे और को हो ही गया, क्यों, क्योंकि ये साइकोलॉजी में या कई कई किताबों में आप देखो कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि जो हम सोचते हैं वो हम खींचते हैं अपनी तरफ, वो रेडिएशंस हमारी तरफ आती हैं और हम उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तभी तो हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, पहले ही सोच लेंगे कि मैं फेल हो जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, तो वैसे ही नहीं कर पाओगे आप तो, है ना, आप मैं कोई भी नहीं कर पाएगा। मुझे इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता था, मैम ने मुझे बताया कि हम इस तरीके से करते हैं, हमने कल पढ़ाई करी, थोड़ा सा तो कुछ मैं निकाल के ला पाई, मैं नहीं कह रही कि मैं एक्सपर्ट हो गई इस टॉपिक में, बट मुझे भी नहीं पता था कि 34,000 इमोशंस होते हैं हमारे अंदर, मुझे लगता था गुस्सा, हंसी, खुशी, यही 4, 5, 8, 10 इमोशन होते हैं, पर सोचो मुझे भी कुछ पता चला, मैं अब और पढ़ूंगी इस बारे में, हो सकता है मैं भी जान पाऊं कि मैं हमेशा हंसती तो नहीं रहती, गुस्सा मुझे भी आता है, लड़ती मैं भी हूँ, बट इन चीजों का हमारी जिंदगी पे क्या असर हो रहा है वो चीज समझना बहुत जरूरी। तो आज पहला ई हम समझ के गए हैं, और अगर आप चाहें तो आज से लेके अगले सेशन तक आप ये लिख सकते हैं कि हर दिन के एंड सुबह आप कैसा फील करते थे और शाम को आप कैसा फील करते थे, जरूरी नहीं है इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं हम लिखते हैं, हम भी देखेंगे 34,000 इमोशन होते कैसे हैं, है ना। सो थैंक यू एवरीबॉडी मेरी बहुत सारी बातें सुनने के लिए, आई विश यू अ वेरी गुड वीकेंड, और आप एंजॉय करिए, अच्छा काम करिए, अपने सपनों को बड़ा करिए, ये सेशन जितने लोगों से शेयर कर सकते हैं करिए। हाँ
1: मैम, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ 2 मिनट।
0: जी, हाँ जी, बिल्कुल बोलिए सुमन जी।
1: जी मैम, सबसे पहले तो थैंक यू रीड इंडिया का और आप सबका, क्योंकि जो रीड से जुड़ जाता है तो मुझे नहीं लगता वो उसमें नेगेटिविटी इतनी रहती है, और हर वक्त रीड कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हम लोगों के साथ तैयार खड़ा रहता है, और इतना कुछ सिखाया कि कभी कुछ उदासी हो जाती है, कुछ नेगेटिविटी होती है हमारे साथ, तो हम उसको पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं। और मेरी जो सबसे बड़ी, मुझे नहीं पता ये क्या है, कि जब मैं कभी उदास होती हूँ, कभी नेगेटिविटी मेरे अंदर आती है, तो मुझे लगता है कि मुझे किसी की हेल्प करनी चाहिए, जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उनके ऊपर अगर मैं थोड़ा सा ध्यान देती हूँ, तो उस चीज में मुझे हैप्पीनेस दिखाई देने लग जाती है अपनी आप ऑटोमेटिक ही। और ये सब शायद मैंने रीड से ही सीखा है और आप लोगों से सीखा है। थैंक यू मैम इसके लिए।
0: थैंक यू सुमन जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। चलिए अब वक्त हो गया, आप लोगों को भी इम्पोर्टेंट काम करने होंगे, तो अब हम सेशन क्लोज कर रहे हैं, ठीक है? बाय टू एवरीबॉडी।

0: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: मेरा नाम कमला है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर की एक आशा हूँ जो कि यहाँ पर सेंटर पर पार्लर सीखने आती हूँ। और यहाँ का सेंटर बहुत ही अच्छा है, मेरे को यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर सिलाई, पार्लर का और कंप्यूटर क्लासेस होती हैं। हमारे बच्चों को गांव से बाहर जाना नहीं पड़ता सीखने के लिए, गांव की महिलाएं भी यहां पर आकर सीख सकती हैं, जिससे कि हमें यहां पर बहुत मदद मिलती है। और यह सेंटर बहुत अच्छा है, यहां का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। मैं यहां गांव शाहबाद मोहम्मदपुर में आशा वर्कर का काम भी करती हूँ। हमारा फील्ड का काम है जिसमें कि हम हर घर के 0 से 5 साल के बच्चों को टीके लगवाते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन की हम बहुत मदद करते हैं और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हमारे यहाँ पर सरकारी डिस्पेंसरी में जननी सुरक्षा योजना भी है, जिसमें गर्भवती औरत को डिलीवरी के बाद 600 रुपए हमारे यहाँ से दिए जाते हैं और आंगनबाड़ी से 5,000 रुपए पहली डिलीवरी पर उस प्रेग्नेंट लेडीज को मिलते हैं। उसमें हम उन लेडीजों की बहुत मदद करते हैं। और हमारी डिस्पेंसरी में यहाँ पर फैमिली प्लानिंग की भी सारी सुविधाएं हैं, जैसे कोपर्टी, मल्टीलोड और पुरुष नसबंदी और महिला नलबंदी। उसमें महिला के ऑपरेशन पर सरकारी हॉस्पिटल से 250 रुपए दिए जाएंगे और पुरुष नसबंदी पर 1100 रुपए मिलते हैं। मल्टीलोड और कोपर्टी यहाँ पर फ्री में लगाई जाती है, कोई पैसा नहीं लिया जाता। मैं यहाँ पर सेंटर पर आती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड मुझको ये काम सीखने में या बाहर का काम करने में बहुत कोऑपरेट करते हैं और मेरे बच्चे भी मेरा बहुत सहयोग करते हैं। मेरे हस्बैंड कभी किसी काम को सीखने के लिए या बाहर जाने के लिए कभी मना नहीं करते, वे हमेशा मेरा साथ देते हैं।

डाइवर्सिटी को तो रखना ही पड़ेगा यार, मगर एक रोल होगा जिसमें हम कोशिश एटलीस्ट करेंगे कि बच्चों को इस तरह का एजुकेशन मिले जो माँ के थ्रू मिले, बड़ी बहन के थ्रू मिले। सबसे अनुभव एक माई पर्सनल एग्जाम्पल है, आई हैव इन आईसीएम शांति केतन द अवार्ड ऑफ पीस सेट अप बाय रविन्द्रनाथ टैगोर एंड देयर वी हैव ह्यूज आदिवासी पॉपुलेशन। सो अ वुमन हू वर्क्स फॉर मी इन माई हाउस, when she came to my house, this is one of the things she asked me. She said, आप हमको अंग्रेजी पढ़ा दीजिएगा। हम हमारे बेटा, बड़ा बेटा को तो मैं पढ़ा नहीं सकू, छोटा बेटा 2 साल का है, उसको मैं पढ़ाना चाहती हूँ। ऐसे दो थे चौथी शरण की गई हमारे घर। ये मान है, कम्युनिटी की तरफ से मान है, so we have to cater to that. Then of course we have been very lucky, we have been almost that huge group of corporate sector people with us, they help us with whatever we are, we think of doing, and we are bahut aabadi hain unke paas. CSR jab se hua hai 2014 से, तब से हमारे वी हैव नॉट लुक्ड बैक एक्चुअली। हमारे पास और लोग आते हैं एज गीता वेरी राइटिंग पॉइंट, काम हमारा वैसा है, जमा था सर ऊंचा पर खड़े हैं अभी का और 7 सेंटर्स कोई मजाक नहीं। और ज्योग्राफीज देखना होगा हमको, सिचुएशंस देखना होगा, और कम्युनिटी क्या चाहती वो देखना होगा, क्योंकि हर कम्युनिटी का अलग मांग है, हर कम्युनिटी का सोच अलग है, हर कम्युनिटी का कल्चरल बैकग्राउंड अलग है। जैसे हम शांति निकेतन में वी हैव अ सेंटर शुरू वहां का गांव के वहां का आसपास का, व्हाट वी सी व्हाट एवर प्रोजेक्ट कम फ्रॉम ये व्हाट एवर वी आर आस्किंग फॉर, बट देर आर अदर थिंग्स विच द कम्युनिटी वॉन्ट्स। वहां पर एक तो बंगाली को तो गाना चाहिए, सो वी हैव टू टीच म्यूजिक टू द चिल्ड्रेन आफ्टर 5 o'clock एंड देन वी हैव टू टीच देम डांस, फिर कराते जिम्मेदार थी सेफ्टी को वुमेन एंड चिल्ड्रेन। सो दिस आर ये मांग है वहां, तो वो हम लोग को फुलफिल करना पड़ता है। तो इसी तरह से हर सेंटर का अलग मांग है, अलग चेहरा, अलग 5,80,000 पीपल इंडिविजुअल्स वी हैव कैटर, दैट्स लाइब्रेरी का जहां तक काम है, प्रोग्राम्स तो आईसीटी है और बहुत मजा आता है देखने में, जो लड़कियां एकदम गांव से है, आदिवासी है, वो आज टीसीएस में काम कर रही हैं हमारे पास, जो आईसीटी प्रोग्राम के बाद उस तरह की लड़कियां भी हैं, बड़ा अच्छा लगता है देखने में। सो यू नो द थिंग इज दैट दे हेल्प द वेलनेस प्रोग्राम, दैट्स अनदर मेजर थिंग वॉट वी नीड, वी हैव टू हेल्प एट अवेयरनेस प्रोग्राम्स फॉर यंग वुमेन हु कैन हेल्प ओल्ड पीपल। नाउ एवरी होम हैज एल्डरली पर्सन्स एंड वी नीड एल्डरली नीड केयर, आई एम माइसेल्फ अ वेरी ओल्ड पर्सन, आई नीड केयर। सो व्हाट थिंग इज दैट चिल्ड्रन आर अब्रॉड, आस पास कोई नहीं रहता है, अकेले रहते हैं, वो देखता है। सो दिस हेल्थ प्रोग्राम पीपल टू गेट ट्रेन बाई टू मिनिस्टर प्रोग्राम
please people. That's a necessity. Absolutely a necessity. In cater to that, I think we should have more health programs in more all the centers, more of health programs. And the AIDS, I'm hung up a little bit on the AIDS number. I was quite taken aback when I read part of it. That children can't read, children can't do maths. Then, what are the libraries for? Why don't we have reading tests? Why don't we have workshops where they will write? Then, another problem that I have is reading. Children have to be given books, and there must be storytelling hours in the schools. That's absolutely a must. Because usi se shuru hota hai padhne ki mansha. Usi se shuru hota hai that whether, why don't I pick up a book? I've heard the story. Why don't I pick up the book and read a little bit and see the pictures? And picture books. Khub sare picture books. Rakho. Aur khub bache khush honge. Educational toys rakho, ye rakho. And you know, the ECDs will be not just learning centers. They will be happy centers. And that's what we need for children these days. Because most children have two parents working. ये अर्बन एरियाज का मामला नहीं है ये सारे हिंदुस्तान का मामला है बिकॉज रूरल एरिया मदर एंड फादर दोनों काम करने जाते हैं तो उनके बच्चे जो होते हैं अगर इस तरह के सेंटर में आ सकते हैं दे कैन रियली एंजॉय देयर लाइफ और भाई बहन भी कम होते हैं आजकल अकेले बच्चा बेचारा घर में करेगा क्या So, you know, you give them that kind of time, you give them that, those kind of tools. AI is a big thing now. Have AIs for one or two, some of these days. Well, there will be better nannies than in anybody else. They are tools after all. They are nothing more than tools. Usko leke sar pe nachne wali baat kuch nahi hai. Who helpful to me, Sahabat. Because they are not humans. Critical thinking jo hai, wo hami ko karna hai. Wo nahi karenge. Isiliye, ask them to become nannies. And help those children have fun. So, some of these things have to be innovated for the next few years. I think, I have seen some of these centers, and most of them are very nice. The first one was in Uran. The first center in India was in Uran, West Bengal, near Diamond Harbor. It's a beautiful campus. I would really ask many of you, if you are visiting West Bengal, to go and see the library. It's called Oceanic Library. It's a beautiful library. And so I think it was started in 2007. And we have another one in West Bengal, in Shantiniketan. And there are so many, like in Haryana, there are so many. And people have given havelis de dete hain, log. Ghar de dete hain. Zameen de dete hain. Sab kuch de dete hain. Gijwar hai. What a beautiful library. What a beautiful building. Ye sab हमने इतने साल में किया है और बढ़ाएं और हरे फूले यही मैं कहूंगी और गीता जी जिंदाबाद सीता जी जिंदाबाद और सबको जितने टीम पूरा टीम हमारा जो है व्हाट अ वंडरफुल टीम आई एम सो हैप्पी टू बी विद देम स्टिल आई होप टू बी विद देम फॉर अ फ्यू मोर इयर्स इंशाल्लाह और सो दैट्स व्हाट इट इज And I wish the summit a great success. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती अंशी देवजी भाई को, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भुज से, और वो किस तरीके से इस ब्यूटीफुल कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं और एनहांस कर रहे हैं। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम।
1: धन्यवाद, नमस्ते। मैं गुजरात से आया हूं, कच्छ भुज से। मेरा नाम देवजी भाई है। एक्चुअली मैं विविंग का काम करता हूं और 1997 में मेरे को नेशनल अवार्ड मिला है और 2016 में मेरे को संत कबीर अवार्ड मिला है। मेरे साथ मेरी वाइफ है, उनका नाम माया बेन है और उनको भी 2006 में नेशनल अवार्ड मिला है। मेरे फादर को 2005 में शिल्प गुरु अवार्ड मिला है। मेरे सन को 2014 में नेशनल अवार्ड मिला है। हम चार भाई है, चारों को नेशनल अवार्ड मिला है और चारों को जो औरत है उन सबको नेशनल अवार्ड मिला है। तो ये नेशनल अवार्ड की गिनना करने के लिए मैं नहीं बैठा हूं, लेकिन जो अच्छा काम करता है उनका अच्छा पुरस्कार मिलता है। मैं जब सुबह आया तो मेरे को पता नहीं था ये स्टेज पर सब जो बैठे हैं वो स्टेज छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो स्टेज छोड़ के हमको स्टेज पर बिठाया है वो रीड इंडिया का काम है। तो हमको जो स्टेज मिला है वो दूसरे के लिए भी हम खाली करें और इतना अच्छा काम करें कि दूसरा लोग भी इधर बैठ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कच्छ में बारिश का बहुत कम आना होता है या तो फिर ज्यादा आ जाता है, तो ज्यादातर नुकसान ही नुकसान रहता है खेती वालों को। तो इसी सिलसिले में बहुत सारी कलाएं हैं जो हमारे कच्छ में लोग करते हैं, उसमें वीविंग है, टाई डाई है, ब्लॉक प्रिंट है, एम्ब्रॉयडरी है, लेदर वर्क है। ये सब कलाएं हैं जिसकी वजह से सबको रोजी रोटी मिलती है और बहुत अच्छा कारीगर है। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं उस गांव में मैंने जो गिना, इतना हमको नेशनल अवार्ड मिला, इतना नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन 2000 की बस्ती है हमारे गांव का और 45 नेशनल अवार्ड है। तो कहने का मतलब है इतना अच्छा काम कर लेते हैं लोग कि उनको मार्केट ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता है, मार्केट खुद इनके घर तक आती है। तो जो जैसे हमारे गांव की बात किया वो तो विविंग का है, लेकिन और गांव में भी बहुत सारे नेशनल अवार्ड है और वो भी एम्ब्रॉयडरी में है, लेदर वर्क में है, ब्लॉक प्रिंट में है, टाई डाई में है। लेकिन जो हमारा जो कच्छ का जो मेन सेंटर है वो भुज है। तो भुज के सिटी के अगल बगल में जो लोग रहते हैं उनको सबको अच्छा काम मिल जाता है, अच्छी इनकम हो जाती है, लेकिन भुज के बाहर जो रहते हैं, जो सिटी के बाहर रहते हैं, जो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर जो रहते हैं उनको काम मिलना मुश्किल होता है। या तो फिर हमारे जैसे जो ट्रेडर रहता है वो उनसे काम करवाता है और कम पैसों में उनसे काम लेता है और ज्यादा पैसा खुद कमाता है। तो जब रेल इंडिया से मैं जुड़ा तो मेरे को पता नहीं था कि रेल इंडिया का इतना बड़ा काम होगा। पहले मेरे को फोन आया कि आपको मिलने के लिए हम आते हैं। मैंने बोला इतना नेशनल अवार्ड मिला है, हर कोई मिलने के लिए आता रहता है, तो मैंने बोला आप भी आ जाओ। तो बोला नहीं, आपको यहाँ 2-3 दिन रहना है। तब मैंने पूछा कि 2-3 दिन रहना है तो क्या सब्जेक्ट क्या है? तो उसने बोला सब्जेक्ट कुछ नहीं, आपको मिलना है। मैंने बोला आ जाओ। तो सब मेरा काम दिखाया। मैं एक हॉस्टल चलाता हूँ स्टूडेंट के लिए, जिसमें जो मैं बात कर रहा हूँ 50-100 किलोमीटर के अंतर में जो गांव है उसी के बच्चे लोग यहाँ रहते हैं पढ़ने के लिए। तो वो मैं गीता मैडम को बताया और बोला कि यहाँ सब लड़के लोग पढ़ने के लिए आते हैं, तो उसने बोला यहाँ लाइब्रेरी खोलना है हमको। तो मैंने तुरंत तो कमरा दिखाया कि इधर खोलो, तो अच्छी बात है। लेकिन इतना बड़ा काम होगा वो भी तभी भी मेरे को पता नहीं था। फिर मेरे को बोला कि ऐसा कोई ट्रेनिंग हमको चालू करना है, जो कारीगर लोग हैं उनको जिसको स्किल है जिसमें उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो मैंने सोचा कि यहाँ तो कारीगर लोग जो गांव में जो कारीगर लोग रहते हैं ना, वो उसके घर में ही कारीगरी रहती है, उनको सब पता रहता है कैसे एम्ब्रॉयडरी करना है, कैसे वीविंग करना है। क्योंकि हमारा जब बच्चा पैदा होता है तो हमारा वीविंग का कपड़ा रहता है उसमें ही लपेटा जाता है, तो उनको पहले से पता है ये वीविंग का कैसे बनता है। तो फिर मेरे को आइडिया आया कि ये जो गांव में जो लोग रहते हैं उनको मार्केट तक कैसे ले जाना। काम तो सबको आता है लेकिन वो अपने अपने कपड़े के हिसाब से सब काम करते हैं। तो मैंने उनको सबको बताया कि ऐसा है, मार्केट में क्या चलता है, कौन सा कलर चलेगा, कौन सा डिजाइन चलेगा, क्या करने से हमको मार्केट में एंट्री मिलेगी, वो हमको करना चाहिए। तो इसी सिलसिले में बहुत गांव में मैडम को भी ले गया था एक बार, बहुत गांव में ऐसी औरतें हैं जो जिसको काम की जरूरत थी, तो उसी औरतों को मैंने समझाया। लेकिन दिक्कत ये थी कि उन औरतों का जो मर्द लोग थे वो उनको बताया था कि किसी को आधार कार्ड नहीं देने का, वो सब अपने नाम से लोन ले लेगा। तो उनको सबको बताया कि आधार कार्ड दो तो मैं उधर आपका रजिस्ट्रेशन कराऊं, तो बोले नहीं आधार कार्ड तो नहीं देंगे हम, क्योंकि वो तो आप लोन ले लेंगे या और कुछ कर लेंगे तो भी हम क्या करेंगे। तो बोले आप पहले ऐसे करो, क्लास चालू करो, आधार कार्ड बाद में देना। तो क्लास चालू किया, फिर 15 दिन एक महीना बाद बोला कि अब तो भरोसा है आपको, ये आपका क्लास चालू हो गया है, आपको काम मिल रहा है, आपको धागा ये सब मटेरियल से वो मिल रहा है, तो ठीक है आप तो ले जाओ बोले। तो तब मेरे को ये मिला। तो बहुत लोगों को फायदा हुआ है। और एक गांव ऐसा है जिस गांव में जालिया लोग रहते हैं, वो तो बहुत पीने में 24 घंटा पीता है वो, तो औरत लोग हैं वो उनके पास पैसा नहीं रहता है घर चलाने के लिए भी। तो उस गांव में मैं गया, किसी ने बताया कि उस गांव में काम की बहुत जरूरत है और उधर आप जाओ। तो मैं उस गांव में गया, तो उधर सब औरत लोगों को पहले से बताया था कि इतने बजे मैं आऊंगा, आप सब इकट्ठे हो जाना। तो वो सब इकट्ठे हो गए थे, मैं गया और मेरे साथ एक लेडीज भी थी, क्योंकि लेडीजों के बीच जाना है तो कोई चाहिए साथ में, तो लेडीज भी थी। तो सबको बिठा के ये बात कर रहा था कि हमको काम मिले तो कैसे मिले, हम क्या करेंगे तो हमको काम मिलेगा। ये बात चल रही थी तो वो जो इस घर का मालिक था वो पी कर आया। उसने बोला कि क्यों ये औरतों के बीच आप बैठे हो, कहां से आए हो, क्या काम करते हो, पैसा सब हमारा आप खा जाते हो। फिर मेरे हाथ में बैनर था रेड इंडिया का, तो वो खोल के दिखाया कि देखो ये एक एनजीओ है, उनसे हमको हमको काम मिलेगा, ये गाइड मिलेगी। तो उसने खोल के देखा तो बैनर तो इंग्लिश में था, वो पढ़ नहीं पाया। तो बोले ओ ये तो पार्क की कंपनी लगती है कोई। मैंने बोला हाँ पार्क की कंपनी है। फिर उसने वहां से भगाया, बोले मैं दो को मारूंगा आपको, आप चले जाओ यहां से। तो ऐसे गांव में हम कैसे काम कर पाएंगे ये भी सोचने की है, क्योंकि उस गांव के जो सब उनका घर ये सब देखा ना, तो ऐसा लगता है कि उनको खाना मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा, ये भी एक क्वेश्चन है। लेकिन जो रेड इंडिया का जो प्रयास है वो बहुत ही बढ़िया है, और साहब ने बताया हर घर दस्तक हर हाथ पुस्तक। तो सेम थॉट्स मेरे को आया था कि लाइब्रेरी तक कोई पढ़ने के लिए नहीं जाता क्योंकि किसी को फुर्सत नहीं है, जाएगा ही नहीं, क्यों जाएगा। तो मैंने सोचा था कि जैसे सब्जी बेचने वाला जो जाता है सब्जी बेचने के लिए, ऐसे हफ्ते में एक बार गाड़ी निकालना, गांव में घुमाना, उसमें बच्चों लोगों को जो कहानियां जो पसंद है ऐसी पुस्तकें ही रखना, और घर घर सबको कहना कि जिसको पढ़ना है वो ले जाओ। और वो दूसरे हफ्ते जब जाएगा तो पढ़ ले गया होता, उनके मम्मी को भी सुनाएगा, पापा को भी सुनाएगा, लाता लो, तब उनको पता चलेगा कि पढ़ने में तो ये बहुत ज्ञान मिलता है, सारा कुछ जानने को मिलता है। तो दूसरे हफ्ते जाएगा तो वो पुस्तक जमा कराएगा, दूसरा पुस्तक ले जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग है, मेरे ख्याल से कि हमको जो आदमी है उनको आदमी बनाने का है। जो आदमी आदमी बनेगा तो जो मैडम ने कहा जो पॉल्यूशन का जो हमारा काम है वो कुछ कंट्रोल में आएगा, क्योंकि बात समझ में नहीं आती ना क्या करना चाहिए। तो जिसको जितना काम हम करेंगे उतना काम कैसे फायदे में हम जाएंगे वो हमको थोड़ा सोचना चाहिए। तो मेरे को बोलना तो नहीं आता है, लेकिन जो कारीगर लोग है मैंने उनको ये ट्रेनिंग दी है। अभी 8,000-6,000 मैडम को ट्रेनिंग दी है, उसमें से 200-250 लेडीज लोग ऐसा है जिसको काम मिलता रहता है रेगुलर, और सबको काम मिलता रहेगा। और दूसरा मेरा ऐसा है कि जो जिसको ट्रेनिंग मिल जाती है उनको मार्केट में जाके उस दुकानदार से मिलवा देता हूं कि ये कारीगर है इनको जितना काम चाहिए उतना आपको देगा, तो ये भी बेनिफिट है उनको, क्योंकि दूसरी मार्केट ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, आप सबने मेरे को सुना, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
0: थैंक यू देव जी भाई जी, आप जैसे पार्टनर्स की वजह से ही हमारा मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो पा रहा है। थैंक यू फॉर बीइंग आवर पार्टनर एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी कि हम आपकी और हमारे मिशन में कामयाब हो।

0: और ये भी वक्तव्य आया है सरकारी सोर्सेस के हवाले से कि उनमें से बहुत लोगों पे अब मुकदमा भी चलने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो लेटेस्ट नीट यूजी जो मेडिकल अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस एग्जाम का पेपर लीक हुआ था, मई 3 को पेपर कैंसिल हुआ था, उसमें ऑब्वियस सी बात है कि ना सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स इन्वॉल्व हैं, अंदर के भी लोग कुछ इन्वॉल्व हैं। तो उसके लिए एक इस सिस्टम में ट्रस्ट को रीबिल्ड करने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम कल उठाया गया है। और आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री ने दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें अपने वक्तव्य में कही हैं सिस्टम को फूल प्रूफ बनाने के लिए। एक तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ऐसा नहीं कि देश में है नहीं, लेकिन जो प्रधानमंत्री का मतलब है वो ये है कि डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे जो सिर्फ इस लॉ के तहत जो केसेस दर्ज होंगे उनको डे टू डे बेसिस पर सुनने के बाद 3 महीने में उनका ट्रायल खत्म करेंगे चार्जशीट फाइल होने के बाद। और हम और आप आज बात कर रहे हैं, बल्कि कुछ ही घंटों पहले जो बिल का मसौदा है, जो बिल प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था अपने वक्तव्य में परसों रात को जब उन्होंने एक वीडियो सेल्फी बनाकर देश के युवाओं से संपर्क करने की कोशिश की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम कैबिनेट में एक बिल लेके आने वाले हैं, जो पुराना बिल 2024 में सरकार ने पास किया है उसी को इम्प्रूव किया गया है और उसमें स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस किए गए हैं। और जो महत्वपूर्ण बात उसमें ऐड की गई है वो ये की गई है कि स्टैट्यूटरी बैकिंग दी जाएगी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को, जो प्रधानमंत्री ने घोषित किया परसों रात को अपने संदेश में, और कल कैबिनेट ने उसको पास कर दिया। आज बिल का मसौदा भी हम सबके सामने आ गया है और पार्लियामेंट में ये बिल मंडे को पेश भी होने जा रहा है।
1: यहाँ पर थोड़ा हम श्रोताओं के हित में समझना चाहेंगे कि ये जो मसौदा बिल आया है उसमें क्या सब बातें रखी गई हैं और कैसे ये आने वाले दिनों में सुधार के कारक बनकर सामने आएंगे।
0: इस बिल का जो नाम है वो है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। मैंने जैसे कहा कि ये नया बिल नहीं है, 2024 का बिल है, उसमें संशोधन लाएगी सरकार। संशोधन के माध्यम से नई पनिशमेंट्स घोषित करेगी और जो नए मसौदा तैयार किया है उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग देगी। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है, वो ये है कि पनिशमेंट बढ़ा दी गई है। जो पुराना बिल था 2024 का, उसमें ये कहा गया था कि जब कोई इंडिविजुअल पेपर लीक के मामले में लिप्त पाया जाएगा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी 3 से 5 वर्ष की और उस पे जो फाइन होगा वो 10 लाख का होगा। अब उसको बदल के कहा गया है कि मिनिमम पनिशमेंट 5 साल की होगी और जो फाइन होगा वो 10 लाख से बढ़कर 1 करोड़ तक ले गए हैं। और सिमिलरली अगर यही क्राइम ऑर्गेनाइज तरीके से कोई कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड नेक्सस इन्वॉल्व है, तो उसके लिए सजा के प्रावधान और भी कड़े किए गए हैं। उस केस में कहा गया है कि मिनिमम पनिशमेंट अब 7 साल होगी और मैक्सिमम जो फाइन होगा वो 10 करोड़ होगा। तो ये मेन इस बिल की प्रावधान है। ये तो हो गया कि आपने पनिशमेंट बढ़ा दी, लेकिन सिर्फ पनिशमेंट बढ़ाने से कुछ नहीं होता। हमें पता है कि केसेस लंबित रहते हैं लंबे लंबे समय तक। उसको ठीक करने के लिए इस बिल में एक इम्पॉर्टेंट प्रावधान जो मुझे लगता है वो ये है कि तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज को ये पावर्स दे दी गई हैं कि वो किसी भी कोर्ट ऑफ सेशंस को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट घोषित कर सकते हैं इस कानून के तहत दर्ज मामलों को निपटाने के लिए। और ये भी कहा गया है कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स इन मामलों में होंगी वो हर दिन होंगी, डे टू डे बेसिस पर चलेगा ट्रायल, और ट्रायल 3 महीने में कंप्लीट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है, उन्होंने ये भी कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एम्पावर कर दिया गया है कि जब जब ऐसा कोई बड़ा मामला आए नजर में तो इमीडिएटली स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करके उस एसटीएफ को ये मैंडेट होगा कि आपने 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है। अभी क्या हो रहा है ना, सिस्टम में मिसट्रस्ट इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि लंबित बहुत हैं केस। आप कानून लाकर सिस्टम को परिवर्तित नहीं कर सकते, आपको कानून को अमली जामा पहनाने के लिए जो सिस्टम्स चाहिए वो भी क्रिएट करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से बड़ा चैलेंज जो सरकार के सामने आएगा वो फाइनेंसिस का आएगा।
1: अच्छी बात कही है कि पिछले कानून से किस तरह ये कानून बदला हुआ होगा, अधिक सख्त होगा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि एक मामला शुरू हुआ और आमतौर पर ये मामले दम तोड़ देते जब पुख्ता सबूत नहीं रखे जाते, वहां पर कैसे कह लें कि उस प्रक्रिया का ध्यान रखा जाएगा, यानी अदालतें बन गई। जैसे अभी यदि हाल का एक मामला लें तो उसमें जिस व्यक्ति को आरोपी ठहराया गया उसके विरुद्ध फिलहाल कोई सबूत नहीं मिलने से वह छूट गया, तो वहां पर क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए?
0: इसमें मुझे लगता है कि प्रोसिक्यूशन की बहुत बड़ी भूमिका है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो अपॉइंट होता है ऐसे केसेस में वो कितना लायक है, वो कितने अच्छी तरीके से आर्ग्यू कर सकता है मैटर, और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो कितनी क्विकली फॉरेंसिक एविडेंस गैदर कर सकता है।

0: सकती है, कितनी जल्दी डिजिटल इम्प्रिंट्स को देख सकती है, क्योंकि लीकेजेस तो अब डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सारा का सारा एग्जाम ऑनलाइन है, तो उससे क्या है, साइबर सिक्योरिटी चैलेंज है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को यह सोचना होगा कि जो स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया जाएगा ऐसे क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसमें आपको एक्सपर्ट्स भी कोऑप्ट करने पड़ेंगे। अब ये जो वक्त है, ये जो जमाना है, उसमें कन्वेंशनल पुलिसिंग मेथड से आप क्रिमिनल गैंग्स को नहीं हैंडल कर सकते, आपको बहुत हाई लेवल की एक्सपर्टीज हर सेक्टर में चाहिए।
1: यहाँ पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस दिशा में एनटीए क्या कर रही है और किस रूप में अपने आप को पेशेवर बनाने के लिए पेशेवर लोगों की सलाह लेने की योजना बना रही है।
0: इनफैक्ट परसों हमने देखा कि सरकार ने एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से नए पोस्ट्स घोषित किए हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में। उन्होंने ये कहा है कि नियुक्ति के लिए अब 4 जनरल मैनेजर्स बुलाए जाएंगे। अभी क्या है, अभी जो स्ट्रक्चर है बहुत सेंट्रलाइज्ड है, जैसे सबसे ऊपर एक चेयरमैन है, उसके नीचे सीईओ है, तो लेकिन अब डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है। इसके साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के जो प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों को भी भर्ती में शामिल किया जाएगा, उनकी भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। एनटीए ने एक बयान में ये भी कहा है कि ये उपाय एजेंसी के जो संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा है उसके लिए हेल्प करेंगे।
1: यदि श्रोताओं, कुल मिलाकर सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है कि हमारी जो राष्ट्रीय परीक्षाएं हैं या राज्य स्तर की परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित की जाए और इसके लिए जिस तरह तकनीक बदल रही है, तकनीक हावी हो रही है, उसके निदान के लिए जो हमारा वैधानिक ढांचा है उसमें वैसे ही दक्ष पेशेवरों की नियुक्ति की जाए। यहां पर अदिति जी, आपने कहा कि इसे वैधानिक स्वरूप दिया जाएगा, ढांचा तैयार किया जाएगा, किस रूप में परिवर्तन होता देख रही हैं आप वहां उस स्तर पर?
0: देखिए, परिवर्तन कितना हो पाएगा वो वक्त बताएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव सिग्नल इस वक्त है वो ये है कि परिवर्तन की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये जो लड़ाई है मनोज जी, ये बहुत लंबी है, और ये जो पेपर लीक का मामला है, ये सिर्फ पेपर लीक का मामला चीटिंग से लिंक करके नहीं आप देख सकते। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट्स के माइंड पे, बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट होता है। आप सब जानते हैं कि मिडिल क्लासेस बच्चा पैदा होते ही पैसा जमा करना शुरू कर देती हैं कि देश में अच्छे एजुकेशन में या अच्छे कॉलेज में अगर बच्चे की भर्ती करानी है तो उसे अच्छे स्कूल में भेजना है, उसकी एक कॉस्ट है, अच्छी कोचिंग दिलानी है, वो कितनी एक्सपेंसिव है हम सब जानते हैं। उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि बच्चे को सीट मिलेगी। यही वजह होती है कि बच्चों की इमोशनल और साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी पर ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स फीड करते हैं।
1: थोड़ा इसे और विस्तार देकर बताएं कि सिस्टम में बदलाव किस तरह का और उसका इम्प्लीमेंटेशन किस रूप में?
0: मेरा जो व्यक्तिगत मानना है वो ये है कि एग्जामिनेशन सिस्टम तब फूल प्रूफ हो सकता है जब उसमें ग्रेडिंग हो। ये प्रामाणिक है। आप देखिए कौन कौन से एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हमारे देश में हैं, जिनमें या तो आप बिल्कुल नहीं सुनेंगे कि लीक हुए हैं या बहुत नेग्लिजिबल हुए हैं। जैसे आप यूपीएससी का एग्जाम देखिए, वो कभी क्यों नहीं लीक होता?
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: आप उस मसौदे को समझिए,
1: आर्म फोर्स हैं, उनके
0: आर्म फोर्सेस के लीक नहीं होते। आप और भी समझिए, जब से आपने आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को ग्रेडेड बना दिया है, जैसे पहले क्या होता था कि एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता था, AIEEE। मुझे आज भी याद है 2011 में एक बहुत बड़ा पेपर लीक हुआ था जिससे बहुत सारे बच्चे बहुत त्रस्त हुए थे। उसके बाद ये सिस्टम शुरू हुआ कि किस तरीके से एग्जामिनेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए। आप जानते हैं पहले JEE मेन कंडक्ट होता है, उसमें एक पर्टिकुलर लेवल के बच्चे जो टॉप 25% आते हैं उनको मौका मिलता है IIT में जाने का। उससे होता क्या है, जब आप ग्रेडेड एग्जामिनेशन सिस्टम बनाते हैं कॉम्पिटिशन के लेवल पे, आप डिसइंसेंटिवाइज करते हैं कि बच्चे पैसा देके पेपर खरीदें। क्यों? क्योंकि पहले लेवल पर आप निकल जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। जब कोई गारंटी नहीं है तो कोई इंसेंटिव नहीं है पैसा देने का, तो आप डिमांड और सप्लाई के साइकिल को तोड़ सकते हैं ग्रेडेड सिस्टम में। सिमिलरली यूपीएससी में 3 लेवल्स हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि प्रिलिमिनरीज होते हैं, उसके बाद मेन्स होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है। किस किस लेवल पर कोई लीकेज के लिए पैसे देगा? सो ये एक सिंपल, इजीली डूएबल एक फॉर्मूला है। जो AIPMT का एग्जाम भी पहले ग्रेडेड होता था, उस वक्त लीकेजेस मुझे लगता है कम होते थे। जब से आपने सिंगल एग्जाम बनाया है, ये जो नीट UG है, आपने जब से इसको सिंगल एग्जाम बनाया, 22 लाख बच्चे बैठते हैं। 500 सिटीज में होता है, जिसको कहते हैं बहुत बड़े स्केल पर ये एग्जाम होता है। 22 लाख बच्चों को एक साथ टेस्ट करना और उनको एक ही विंडो में MBBS की सीट देना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर हम ग्रेडेड एग्जाम करेंगे नीट यूजी को, जैसा कि पहले होता था दो लेवल्स पर, पहले स्क्रीनिंग और फिर सिलेक्शन, तो शायद ये लीकेजेस का इंटेंसिटी कम होगा। ये प्रामाणिकता से मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है।
1: अच्छा, कुछ राज्यों की ओर से इस नीट परीक्षा प्रणाली को ही लेकर विरोध जताए जा रहे हैं, उस दिशा में कुछ सुधार की या एक रूपता लाने की कोई भूमिका बनती नजर आ रही है आपको?
0: बिल्कुल, देखिए तमिलनाडु ने शुरुआत से नीट यूजी का विरोध किया है। उनका ये कहना था कि 12वीं कक्षा के एग्जामिनेशन के बेसिस पे हमारी स्टेट में एक MBBS की एडमिशन होती थी और वो चलती रहनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन मॉडल स्टडी करेंगे उसमें JEE मेन और JEE एडवांस्ड का मॉड्यूल बहुत अच्छा है। IITs के टॉप डायरेक्टर्स ने मिलकर उसे बनाया है, उसमें बहुत लेवल हुई थी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की, और उसमें 12वीं के रिजल्ट्स का भी एक पोर्शन काउंट होता है। फिर वही मैं कहूंगी कि नीट यूजी बहुत बार लीक हुआ है, 3 बार तो रिसेंट हिस्ट्री में हुआ है। तमाम मॉडल्स को स्टडी करने के बाद आप ये भी देखिए कि क्या कहीं नीट यूजी के स्ट्रक्चर को ही चेंज करने की जरूरत तो नहीं है।
1: यानी श्रोताओं, एक आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता परीक्षा प्रणाली को है ऐसा लग रहा। बस यहीं पर हम श्रोताओं आपकी ओर से अदिति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे परीक्षा संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के ठोस कदमों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: सुर्खियों में

0: हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, यू आर ऑल वेलकम इन टुडे सेशन। तो आज का जो सेशन है, मतलब अभी हमारा 12th नंबर सेशन था। जैसे देखिए, अभी तक के सेशंस में हम करियर से रिलेटेड काफी कोर्सेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कई स्ट्रीम्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। और मेरे हिसाब से कई स्ट्रीम्स आपको ऐसी नई भी पता चली होंगी अभी, जो शायद पहले आपको नहीं पता हो, या कई स्ट्रीम्स के बारे में आपको ज्यादा जानकारी मिली होगी, जो हो सकता है आपको आगे अपना करियर बनाने में काफी हेल्पफुल रहे। आज के सेशन में हम जो बात करेंगे कि 10th के बाद जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जिसे हम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कहते हैं, उनमें क्या क्या स्कोप रहता है, किस किस टाइप के डिप्लोमाज होते हैं। आप सब जानते हैं, आप जहां भी रहते हैं, जिस भी एरिया में आप हैं, तो आपके आसपास में काफी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं जो डिप्लोमा ऑफर करते हैं 10th क्लास के बाद में। ये जो 10th क्लास के बाद में डिप्लोमा होता है, आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होता है और इक्वलेंट टू 12th माना जाता है। मतलब आप देखेंगे कहीं भी 12th के बेस पे कोई भी वैकेंसी निकलती है, कुछ भी एडमिशन अगर 12th के बेस पे है तो वहां लिखा होता है क्लास 12th और 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। तो ये जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है, आपका एक तरह से 12th के इक्वलेंट होता है। तो जो लोग 10th के बाद, मतलब एक तरह से ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें किस स्ट्रीम में जाना है, या वो आगे कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल क्या लें, तो वो क्या करते हैं कि 10th के बाद वो डिप्लोमा में एडमिशन ले लेते हैं जो 3 ईयर का रहता है, विच इज इक्वलेंट टू क्लास 12th। अब डिप्लोमा की जो फिलोसफी थी, ये एक तरह से वोकेशनल कोर्सेज का कॉन्सेप्ट था, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपको कुछ टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड की जाए, जिस भी स्ट्रीम में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपने उस फील्ड में डिप्लोमा किया और उसके बाद आप लोअर लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली देखा गया है कि आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको जो जॉब मिलती है वो हम ये कह सकते हैं, जैसे ए टू डी क्लास में अगर हम जॉब्स को डिवाइड करें तो सी कैटेगरी की जॉब्स आपको मिलती हैं, और वहीं अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आपकी जॉब जो है वो आपकी बी कैटेगरी की हो जाती है। जैसे आप किसी भी फैक्ट्री में देखिए, वर्कशॉप में, या इतनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, आज मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर भी कहां कहां वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है। आप इंटरनेट पे सर्च करके देखिए, आज ही मैं सर्च कर रहा था इंटरनेट के ऊपर कि डिप्लोमाज, मतलब वैकेंसीज आफ्टर डिप्लोमा, तो मतलब थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज आर देयर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में निकलती हैं, या प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट फैक्ट्रीज, आप देखेंगे एनसीआर एरिया के अंदर, गुड़गांव के अंदर इतनी सारी वर्कशॉप्स है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, तो वहां पर डिप्लोमाज की जॉब काफी निकलती है, ठीक है। थोड़ा सा लाइन हार्डवर्किंग होता है आपको, मतलब बिल्कुल लोअर लेवल से स्टार्ट करना रहता है और धीरे धीरे धीरे धीरे आपका लेवल इंप्रूव होता है इन टर्म्स ऑफ सैलरी। तो ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव रहेगा वोकेशनल कोर्सेज के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट विद इट। थोड़ा ये समझें कि वोकेशनल कोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं, थोड़ा सा उसकी थ्योरी के बारे में बताऊंगा आपको पहले, फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं 10th के बाद। मैंने आपको पहले ही बताया कि 10th के बाद कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पेरेंटल, जो हमारे फैमिली जो है, वो ज्यादा फाइनेंशियली हमें सपोर्ट नहीं कर सकते। तो उनका कहना ये होता है भी 2-3 सालों में आप कोई ऐसा टेक्निकल कोर्स कर लीजिए, जिसके बाद उसको यूज करके आप अपना कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट कर सकते हैं, या कहीं पर आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे पेरेंट्स का एक एम सा होता है कि 2-3 साल कुछ आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर दी और उसके बाद फिर आप अपना कुछ काम करना स्टार्ट कर सकें। तो वोकेशनल कोर्सेज एक तरह से करियर स्टार्ट करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इट इज अर्ली बिगनिंग, ठीक है। मतलब वही अगर हम पहले 12th करें, फिर हम बीटेक करें 4 साल की, और फिर उसके बाद एमटेक करें, तो वो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। वही डिप्लोमा कोर्सेज में हमें बहुत जल्दी, मतलब 3 साल का डिप्लोमा आपने किया और उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर में। काफी गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफी वैकेंसीज आती हैं डिप्लोमाज की, गवर्नमेंट पीएसयूज में भी काफी वैकेंसीज आती हैं। आप उसके बाद इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, वो भी मैं बात करूंगा आज के इस सेशन में कि उसका क्या प्रोसीजर रहता है। तो वोकेशनल कोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज ना स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं। आपने एक तरह से हैंडीक्राफ्ट में डिप्लोमा करना है, ब्यूटिशियन में डिप्लोमा करना है, ठीक है, इस तरह से, मतलब बहुत स्ट्रीम है। अभी हम जनरली जो मानते हैं कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, ये 5-6 स्ट्रीम की हम बात करते हैं, बट अगर आप इनडेप्थ में जाओगे तो वोकेशनल कोर्सेज में काफी ज्यादा स्ट्रीम्स अवेलेबल होती हैं। कई जो गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर स्ट्रीम ही बहुत कम होती है, पर वो तो जैसे भी आप जहां भी अप्लाई करेंगे बाकी काफी ज्यादा स्ट्रीम्स होती हैं वोकेशनल कोर्सेज के अंदर, और उसमें आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि 3 ईयर स्पेंड करने के बाद में आप कहीं ना कहीं अपना वर्क करने की स्टेज में आए, आप अपना करियर स्टार्ट कर पाए डिप्लोमा करने के बाद में। तो जैसे पॉलिटेक्निक्स को हम कहते हैं बेसिकली दैट इज वोकेशनल कोर्स, तो पहली चीज की 10th क्लास के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं और ये इक्वलेंट टू 12th क्लास होता है, तो इसका मतलब 3 साल में आपकी 12th भी हो जाती है और प्लस में आपका टेक्निकल एजुकेशन भी आप सीख जाते हैं जिस स्ट्रीम में आप अपना काम करना चाहें। इसके कई सारे किन किन स्ट्रीम में ये रहता है आप देखेंगे, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, हेल्थ केयर में, ऑटोमोबाइल्स में, एनिमेशन में, फैशन एंड टेक्सटाइल में, मतलब इतनी स्ट्रीम्स हैं वोकेशनल कोर्सेज के अंदर। यस, स्टिचिंग में है, ब्यूटी कल्चर में है, तो ये सारी ट्रेनिंग जो है ना वोकेशनल में आती है। आप देखते हैं जैसे रीड के ऊपर भी एक तरह से हम ये कहेंगे, जैसे आप स्टिचिंग, जैसे बहुत आप में से लेडीज ऐसी हैं जो स्टिचिंग का कोर्स करती हैं, एक टाइप से जो ब्यूटिशियन का लेवल करती हैं, तो वही चीज आप ऐसे मतलब जो यहाँ रहता है वो इसे इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, मतलब उसका आपने सीखा और उसको आपने डायरेक्ट फिर इम्प्लीमेंट किया, अपना काम स्टार्ट किया। एक होता है कि 10th के बाद आपने फॉर्मली कोर्स में एडमिशन लिया, 2 या 3 साल का आपने कोर्स किया, ठीक है। तो ये मतलब इतनी सारी स्ट्रीम्स हैं कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना करियर चूज कर सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा जो लोग पॉलिटेक्निक में जाने से जो बचते हैं, या जी हम ये कहें कि काफी लोग ऐसे भी हैं आपको मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि पॉलिटेक्निक के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी कम होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज तो है बट आपको मतलब कुछ साल मेहनत करनी रहती है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे लेवल से एंट्री नहीं होती, एक तरह से बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से आप किसी इंडस्ट्री में एंटर करते हैं और धीरे धीरे 2-5 साल मेहनत करने के बाद में फिर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाते हैं, एक हैंडसम सी सैलरी आपकी हो जाती है, बट स्टार्टिंग में आपको 2-4 साल हार्डवर्क करना रहता है क्योंकि एज भी आपकी कम है ना। अभी 10th के बाद आपने 3 साल का डिप्लोमा किया, मतलब 20-21 साल के आसपास आपकी एज है, तो 20-21 ईयर्स के अंदर आपने अपना जॉब स्टार्ट किया और 4-5 सालों में आप जब आपकी एज 25 ईयर्स तक होती है तो आप एक ठीक ठाक सैलरी पे पहुंच जाते हैं, अगर आपने स्टार्टिंग आपकी ठीक ठाक हो गई है तो, राइट। तो ये एक सारे एडवांटेजेस हैं डिप्लोमा कोर्सेज के। अब देखिए किन किन फील्ड्स में है, थोड़ा मैं टाइम जो है वो इस बात पे स्पेंड करूंगा कि किन किन फील्ड्स में है। थोड़ा सा डिप्लोमा की दिक्कत क्या है कि जैसे आप कोई हरियाणा से बिलोंग करता है, कोई आप में से उत्तराखंड से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, तो हमारे आसपास जो डिप्लोमा कॉलेजेस है, जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं, कुछ कॉलेजेस में उतने कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, एक स्पेसिफिक से कोर्स अवेलेबल है। एक बहुत बड़ी हमारे कॉलेजेस की प्रॉब्लम क्या रहती है कि कॉलेजेस में प्लेसमेंट की फैसिलिटी ज्यादा नहीं होती, मतलब जितने डिप्लोमा कॉलेजेस हैं वहां प्लेसमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। अगर उस चीज को थोड़ा एक तरह से ध्यान दिया जाए तो बच्चों की अगर वहीं से ही प्लेसमेंट होनी स्टार्ट हो जाए तो डिप्लोमा कोर्सेज भी काफी मार्केट में वेटेज ले के आ सकते हैं। तो जैसे पहले हम बात करेंगे कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्सेज, ठीक है, ये भी आपके डिप्लोमा के अंदर आते हैं, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। ये बेसिकली होटल से डील करते हैं या ऐसा इंडस्ट्री जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, इसमें आपका डिप्लोमा होता है फूड एंड बेवरेज सर्विस के अंदर। अब ये फूड एंड बेवरेज सर्विस जो है, जैसे जितनी भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स है, जैसे जो कोल्ड ड्रिंक जिसे हम कहते हैं, कोका कोला है, कोक है, तो आप अगर यहां से डिप्लोमा करते हैं तो उसमें जॉब आपको मिल जाती है एज ए फूड एनालिस्ट की, ठीक है, इस तरह की जॉब्स रहती हैं। डिप्लोमा इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी होता है, जैसे आप सोच के देखिए गुड़गावा में या एनसीआर के अंदर अगर आप बेकरी का प्रोडक्ट जो बनाना सीखना चाहते हैं तो उसकी क्लासेज के काफी ज्यादा फीस चार्ज की जाती है प्राइवेट के अंदर, ठीक है, मतलब आपको बेकरी और जो कन्फेक्शनरी की आइटम्स होती है काफी ज्यादा हैवी फीस चार्ज की जाती है सिखाने के लिए, केक बनाना सिखाना और प्रोफेशनली काम करना। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का बेकरी के अंदर तो उसके बाद आप अपनी बेकरी ओपन कर सकते हैं, और स्मॉल स्केल पे आप देखिए आज के टाइम के अंदर जो बेकरीज हैं बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट से, देखिए ये वो चीजें हैं बेसिकली जो वोकेशनल कोर्सेज का कॉन्सेप्ट ही यही था कि आप लो इन्वेस्टमेंट से अपना काम स्टार्ट कर सके, ठीक है। जैसे अगर आपने बेकरी में कोर्स किया हुआ है तो आप बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से अपनी बेकरी ओपन कर सकते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, राइट। डिप्लोमा 3 साल का होता है, जितने भी डिप्लोमा होते हैं ना, देखिए 10th क्लास के बाद में जो डिप्लोमा कोर्सेज है वो सभी 3 साल के होते हैं, ठीक है, कि जो डिप्लोमा होल्डर है वो 12th के इक्वलेंट है, तो 3 साल का डिप्लोमा रहता है। क्वेश्चन था जैसे मैंने आंसर किया उसका, हाँ जी मैं बात कर रहा था बेटे बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का, तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए आज के समय में केक्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा हो चुकी है, मेरे हिसाब से कोई विरला ही घर ऐसा होगा जिसमें बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाता है बिना केक, ठीक है, छोटे छोटे बच्चा, ठीक है, तो वो मतलब अगर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है या फैमिली में कोई भी फंक्शन है, एनिवर्सरी है किसी की, तो केक तो बहुत छोटा, मतलब केक तो एक आप मान के चलिए असेंशियल आइटम है, ठीक है। आप अपने आसपास में भी देखेंगे काफी बेकरीज होती हैं, तो अगर आपने प्रोफेशनली तरीके से कोर्स किया हुआ है तो आप उसको काम कर सकते हैं। डिप्लोमा की एज लिमिट जो है वो मतलब 22 से 23 साल तक है, मतलब जैसे आपकी 10th जो है ना 17 ईयर में हो जाती है, ऑलमोस्ट 17 नहीं तो 18 में हो जाती है, तो उसके बाद 4-5 साल तक आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। गैप ईयर के लिए आपको सर्टिफिकेट देना होता है, एक एफिडेविट आपको देना होता है कि ये जो गैप आपका है इसमें आपने कुछ किया है। ऐसे ही फूड प्रोडक्शन में क्राफ्ट कोर्स है, आप देखिए रीड के सेंटर्स पे भी कई सेंटर्स पे ऐसी एक्टिविटी की गई है, जैसे जहां पर फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड, फूड मतलब एक तो हम खाना बनाते हैं एट अवर होम, ठीक है, एक हम प्रोफेशनल कुकिंग करते हैं, प्रोफेशनल कुकिंग मतलब हमें 50 लोगों का खाना बनाना है, 100 लोगों का खाना बनाना है। मैंने देखा है पीछे कई सेंटर्स के ऊपर, जैसे आपका एक तरह का जो कुमासपुर सेंटर है, कई सेंटर्स में इस तरह की ट्रेनिंग भी हुई है। तो जो डिप्लोमा की एज जो है वो आपकी मिनिमम 17 है, मैक्सिमम जैसे मैंने आपको बताया 4 से 5 साल है, बट भाईपाल जी ने आंसर किया है कि 24 साल तक आप डिप्लोमा कर सकते हैं, तो 17 से 24 साल तक एज है इसमें, ठीक है। फिर डिप्लोमा इन कुकरी है, हाउस कीपिंग है, रेस्टोरेंट एंड काउंटर सर्विस है, होटल रिसेप्शन है, हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशन मैनेजमेंट है। आप देखिए जैसे अगर आपको होटल इंडस्ट्री में काम करना है तो उसमें एक ऑप्शन तो क्या रहता है कि 12th के बाद आप होटल मैनेजमेंट करिए, कोर्स करिए, ठीक है, वो आपका 3 साल का कोर्स रहता है BSc इन होटल मैनेजमेंट। उनका भी हम एक अलग से क्लास लेंगे कि जिसमें मैं होटल मैनेजमेंट फैशन डिजाइनिंग का भी हमने एक अलग से सेशन प्लान किया हुआ है। तो एक तरीका तो क्या रहता है कि पहले आपने 12th किया और 12th के बाद में आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, 3 साल का आपका कोर्स रहता है, BSc इन होटल मैनेजमेंट होती है। सेकेंड ऑप्शन क्या रहता है कि आपने डिप्लोमा किया 3 साल का 10th के बाद ही, और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के किसी भी कोर्स में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो वो करने के बाद आप उस इंडस्ट्री में काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए आपके आसपास में इतने होटल्स ओपन होते हैं, काफी रेस्टोरेंट्स हैं, तो उन रेस्टोरेंट्स में जो लोग काम करते हैं, पहले तो क्या होता था कि जो एक तरह से जो वेटर है या जो कुक है वो कोई भी एरा गेरा रख लिया जाता था, बट आज के समय में आप देखेंगे जैसे ही होटल का लेवल ज्यादा बढ़ता जाता है तो दे ऑल्सो नीड सम प्रोफेशनल पीपल, ऐसा लोग, ऐसे लोग जिनको उसके बारे में पता हो। तो एक ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का भी स्कोप है और इसमें भी सोचा जा सकता है डिप्लोमा करने का अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इसके बाद सेकेंड आता है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मतलब जो हमारे एक तरह से जो टेक्निकल हम कहें जिसको, कि ज्यादातर बच्चे जिस लाइन में जाके डिप्लोमा करते हैं, मैक्सिमम आप देखेंगे जब जहां भी हम वोकेशनल या वोकेशनल कोर्सेज या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की बात करेंगे तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा करते हैं, ठीक है, जिसमें आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप होता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जॉब जल्दी मिल जाती है। आप देखेंगे इंडिया में इतनी कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ट्रक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, जहां पर आपको अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको मतलब जॉब मिल जाती है इजिली, स्टार्टिंग लेवल से आपकी एंट्री होती है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, फिर आप धीरे धीरे अपना करियर बना सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होता है, सिविल इंजीनियरिंग में होता है, सिविल इंजीनियरिंग में तो गवर्नमेंट जॉब्स भी काफी निकलती हैं अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो, रेलवेज में पीछे हमने बात किया था, जैसे रेलवेज में तो डिप्लोमाज की वैकेंसी ज्यादा आती है, जैसे आपको ध्यान हो मैंने अभी पीछे एक सेशन लिया था कि जॉब अपॉर्चुनिटीज इन रेलवे भी, जो हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है उसमें अगर आपको नौकरी चाहिए तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। तो रेलवे में जो भी हमारी टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है, उन टेक्निकल पोस्ट में काफी पोस्ट ऐसी हैं जो डायरेक्ट आपसे डिप्लोमा मांगती है। तो उसमें अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, मतलब ये सारी स्ट्रीम्स हैं, इनमें इंजीनियरिंग भी होती है, इन सब में आप बीटेक भी कर सकते हैं। पर अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है इसके अंदर तीन तीन साल का, अब तेरी समस्या थोड़ी ये रहती है, मैं आपको बताऊं एक्चुअल रूट कोज क्या है, दिक्कत कहां पर है। दिक्कत सारी यहां पर है कि हमारे इंडिया में वोकेशनल कोर्सेज या हम डिप्लोमाज को कहें, इनको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता, ठीक है। उसके पीछे कारण क्या है कि इतना सीरियसली नहीं लेते, जो कॉलेज में टीचर्स हैं वो भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, और दूसरा बच्चे भी नॉन सीरियस एटीट्यूड इसमें रखते हैं। अगर आप किसी अच्छे पॉलिटेक्निक से तीन साल का डिप्लोमा करते हैं, थ्री ईयर बहुत बड़ा टाइम होता है, तो जिस भी फील्ड में आप डिप्लोमा करेंगे उस फील्ड में आपको एक अच्छा नॉलेज हो जाता है, अच्छा अवेयर हो जाते हैं उस फील्ड से रिलेटेड, आपको उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल नॉलेज काम करने में चाहिए उतना टेक्निकल नॉलेज आपको मिल जाता है। आप देखेंगे, जैसे मैं आप एक चीज और ऐड करूं यहां पर, काफी बच्चे ऐसे हैं जो दे गो फॉर आईटीआई, वो क्या करते हैं आईटीआई भी करते हैं, ठीक है। अब वही चीज देखिए, जो आईटीआई है वो डिप्लोमा से भी लो लेवल में काउंट किया जाता है, मतलब ये तीन आपकी लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर जैसे सबसे लो लेवल पे अगर हम बात करें तो आईटीआई आता है, सेकेंड लेवल पे आपके डिप्लोमाज होते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमाज होते हैं, और थर्ड लेवल पे आपका बीटेक होता है। तो एक तरह से ये तीनों ही टेक्निकल एजुकेशन की लेयर्स हैं, राइट। तो आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से जो भी करना चाहें, ठीक है, वो आप उसमें कर सकते हैं, राइट। तो जैसे इसमें ये सारी फील्ड्स में आप अपना डिप्लोमा कर सकते हैं कि जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, और उसके बाद अगर आप उसी में अपना करियर बनाना चाहें आगे फर्दर, आप उसमें इंजीनियरिंग करना चाहें तो फिर अपना इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताऊं स्टेट वाइज, जैसे हरियाणा की हम बात करें चाहे हम यूपी की बात करें, तो आपका जो बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, या टाउन एंड प्लानिंग का डिपार्टमेंट है, या काफी डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर डिप्लोमा होल्डर की वैकेंसीज आती है। आपका जो बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट है वहां पर डिप्लोमा होल्डर्स की, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल्स में किया हुआ है, उनकी काफी वैकेंसी आती है। आपके जो एक तरह से टाउन प्लानिंग है उनमें सिविल इंजीनियरिंग की काफी वैकेंसीज आती हैं अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि आपने किस स्ट्रीम में डिप्लोमा किया है। लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण देखो जनरली क्या होता है, मैंने देखा बहुत बच्चों से मिलते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया और बाद में दे से भी डिप्लोमा करने का कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। वो क्या होता है कि वो बाहर जॉब से अप्लाई नहीं कर पाते ज्यादा, मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि कहाँ वैकेंसी निकली हुई है, कॉलेज उसमें सपोर्ट नहीं करता प्लेसमेंट के अंदर, तो जिस कारण फिर वो दे फील कि डिप्लोमा का कोई ज्यादा यूज नहीं हुआ। बट काफी बच्चे ऐसे भी हैं एनसीआर एरिया में स्पेशली, जो डिप्लोमा करने के बाद में एक ठीक ठाक कंपनी में जिनकी सेटलमेंट हो जाती है और एक अच्छा लेवल पे धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ और भी काफी फील्ड्स हैं जिसमें डिप्लोमा होता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म में है, इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड पर्सनल दैट इज प्रेजेंटेशन स्किल्स में, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में, फैशन डिजाइनिंग है, हेयर एंड स्किन केयर में। आप देखते हैं आजकल वीएलसीसी का नाम आप सबको पता ही होगा, वीएलसीसी एक तरह से आपका जो ब्यूटिशियन से रिलेटेड कोर्सेज कराते हैं, ठीक है, या उसमें आपका हेयर या जो स्किन केयर के कोर्सेज रहते हैं, तो वो एक तरह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, बट वहीं गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये इनसे रिलेटेड डिप्लोमाज होते हैं। ब्यूटिशियन का डिप्लोमा है, इवेंट मैनेजमेंट है, ऑफिस मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, कॉस्मेटिक एंड लाइफ प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, कैटरिंग मैनेजमेंट है। तो मतलब इट्स अ वेरी वाइड एरिया, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा स्कोप है, काफी ज्यादा इसमें स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, ज्यादा स्ट्रीम्स हैं, इसलिए आप अपना फ्यूचर बिल्डअप कर सकते हैं अगर आपने किसी भी कोर्स में डिप्लोमा किया है। बट स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर, क्योंकि इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता, इमीडिएट बहुत अच्छी जॉब्स नहीं है डिप्लोमा में। डिप्लोमा करने के बाद कुछ टाइम आपको मेहनत करनी रहती है, तभी आप अच्छी जॉब ले सकते हैं। अब क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। देखो डिप्लोमा तो आपने कर लिया, डिप्लोमा करने के बाद क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। जैसे मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको देता हूँ, वेब डेवलपर का आप काम कर सकते हैं। वेब डेवलपर मतलब जो एक टाइप से जो आप लोगों की जो वेबसाइट्स होते हैं जो डेवलप करते हैं, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया हुआ है और उसके बाद आपने किसी प्राइवेट कॉलेज से साल डेढ़ साल का कोई कोर्स भी किया है थोड़ा लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, तो वेब एज ए डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। साइट्स जो बनती हैं वो आप बना सकते हैं बना। जो डेटा एनालिस्ट का काम होता है, ब्यूटिशियन का आप अपना काम कर सकते हैं। आप देखो मैं काफी रीड के कई सेंटर्स पे मैं एज ए लास्ट ईयर मैंने कई सेंटर्स आपके देखे जहां पर क्या होता है कि एक टाइप से ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया जाता है, ठीक है। और ब्यूटिशियन का कोर्स में भी आपके लेवल्स हैं लेवल वन लेवल टू, और जब आप एडवांस कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद मोटिवेट किया जाता है फीमेल्स को कि आप अपना ब्यूटी पार्लर खोलें। कई जगह पर मैंने देखा है कि काफी सक्सेसफुल ब्यूटी पार्लर भी है। मैं जैसे रामपुर की बात करूंगा, रामपुर में मैं गया था पीछे हो गया मुझे साल सवा साल, तो वहां पर जैसे भी हमने जैसे विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे काम किया था, तो वहां पर काफी एग्जांपल्स ऐसे थे जिन्होंने रीड के सेंटर के थ्रू ब्यूटिशियन का कोर्स किया और ब्यूटिशियन का कोर्स करने के बाद फिर उन्होंने अपना जो पार्लर ओपन किया और काफी पार्लर उसमें ऐसे हैं जो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक टाइप से जो कुमासपुर में भी ऐसा चल रहा था आपका माने, मतलब काफी सेंटर्स पे ये कोर्सेज चलते हैं। तो मतलब वही चीज है कि वहां पर हम जो इनफॉर्मल कोर्स आपको दे रहे हैं, वही अगर आपने 10th के बाद एक 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो एक तरह को हम कह सकते हैं ये फॉर्मल एजुकेशन है आपकी, तो ये चीजें आप सारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये आजकल जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये भी एक बहुत फ्यूचर का एक तरह से हम ये कह सकते हैं द करियर। SEO बेसिकली क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि आप देखते हैं आजकल लोग YouTube के थ्रू Facebook के थ्रू अपने चैनल्स बनाते हैं या काफी एक्टिविटी करते हैं ताकि उनको वहां से इनकम आनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो लोग साइट्स बनाते हैं और ये चाहते हैं कि जब सर्च किया जाए तो उनका साइट सबसे ऊपर आए, उनका नाम सबसे ऊपर आए। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, इसका एक कोर्स होता है। अगर आपने ये किया हुआ है SEO का कोर्स किया हुआ है तो फिर आप एज ए SEO पर्सन काम कर सकते हैं कंपनीज के लिए। हेयर ड्रेसर का भी काम रहता है, आपका ग्राफिक डिजाइनर है, सोशल मीडिया मैनेजर है, शेफ है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, मतलब इट्स अ वेरी वाइड स्ट्रीम। मैं आपको बताऊं जो अगर हम कई और कंट्रीज को कंपेयर करें, USA की बात करें, UK की बात करें, तो वहां पे अर्ली एज से ही टेक्निकल एजुकेशन पे ज्यादा जोर दिया जाता है, जबकि हमारे इंडिया में अलग है। हमारे इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन का भी ज्यादा रोल नहीं है, अभी इतना ज्यादा मतलब क्रेज नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काम किया गया है, थोड़ा सा उसमें कहा गया है कि वोकेशनल कोर्सेज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ एकेडमिक कोर्सेज, क्योंकि वोकेशनल कोर्सेज के बाद आप बहुत जल्दी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपना कुछ काम कर सकते हैं। आप देखते हैं सुनते भी होंगे कि जो मोदी जी जितनी बार भी स्पीच देते हैं, कई मैक्सिमम टाइम चाहे वो अपने मन की बात में दे चाहे कहीं भी दे, तो उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा रहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जाए। मतलब हम ये ना माने कि सरकार हमें जॉब देगी, हम खुद ही अपने एंड के ऊपर जॉब क्रिएशन की बात करें, ठीक है। मतलब अभी हमारे यहाँ ट्रेंड थोड़ा रिवर्स है, हम चाहते हैं कि हमने एजुकेशन कंप्लीट किया, अपना कोर्स कर लिया, अब कोर्स करने के बाद में अब जो गवर्नमेंट है वो हमें जॉब देते, एक तरह से ये हमारी एक तरह से हम कह सकते हैं कि दैट इज साइकोलॉजी, हमारा सोच ये है। जबकि गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, तो हमें खुद कुछ भी कोर्स कोई भी टेक्निकल स्किल लेने के बाद में हमें अपने लेवल पे मेहनत करनी चाहिए और खुद भी हम अपने पैरों पे खड़ा हों, और उसके साथ साथ हमने कुछ लोगों को अपने साथ में एम्प्लॉय भी करा, उनको भी हमने जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी। तो ये एक तरह से मतलब ये सारी करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है जो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप एक तरह से अपना काम कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आपको किसी की नौकरी करने की नीड नहीं है, आप थोड़ी सी मेहनत करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो डिप्लोमा के बाद एक ये काम हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो आपका डेवलपमेंट है वो काफी उसको हेल्प मिलती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट जॉब्स है, ऐसा नहीं कि मतलब प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं, एक तरह से काफी गवर्नमेंट जॉब्स भी निकलती हैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, ठीक है। मैंने पिछले जैसे अभी अक्टूबर और सितंबर की मैंने काफी जॉब्स निकाल के यहां शो करता हूं किन किन कंपनीज में, किन किन ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिलती है जो गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है। देखिए आप सब जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है, मतलब एक तरह से जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं जिसमें सेल या आपकी स्टील की कंपनी है, भेल है, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, बेल है, गेल है, IOCL है, मतलब पेट्रोलियम कंपनीज है, HPCL है, ONGC को तो सब जानते ही है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है, तो मतलब ये सारी जो है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, ठीक है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके इंडिया में कई कई जगह पर काफी बड़े बड़े प्लांट हैं, ठीक है। अब उन प्लांट्स में क्योंकि जब टेक्निकल काम होगा तो टेक्निकल लोग चाहिए काम करने के लिए, और टेक्निकल लोग जो काम करने के लिए चाहिए होते हैं उसमें प्राइमरी दो तरह के टेक्निकल लोग चाहिए होते हैं। पहले तो वो जो हायर क्वालिफिकेशन के हैं, हायर क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है, जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, ठीक है। सेकंड जो एक तरह से जो मिडिल लेवल जो एम्प्लॉयज होते हैं वो चाहिए होते हैं, जिसमें डिप्लोमा होल्डर्स को काफी एक तरह से उनकी डिमांड रहती है, तो इसमें डिप्लोमा होल्डर्स को जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी मिलती है या टेक्नीशियन की वैकेंसी मिलती है। अब देखिए कहीं भी JEE की वैकेंसी निकलती है ना जूनियर इंजीनियर की, क्योंकि जो डिप्लोमा होल्डर एक तरह से जूनियर इंजीनियर ही है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जहां भी JEE की वैकेंसी निकलती है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है, वो बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होती है, तो वहां पर आप कर सकते हैं। हाँ सर, जो बीटेक में हाँ उनको अगर उसमें जाना है तो फिर गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये आपने सही यहां बताया, मैं भी इसको बाद में पूरे उसमें डिस्कस करूंगा एक तरह से कि अगर जो बीटेक वालों को अगर इनमें जाना है, इन PSU में जाना है तो गेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही जा सकते हैं, पर डिप्लोमा होल्डर्स में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज डिप्लोमा करने के बाद ही उन्हें मिल जाती है। देखिए ये स्ट्रीम्स है सारी, एग्रीकल्चर में भी डिप्लोमा होता है, ऑटोमोबाइल्स है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, तो ये अलग अलग वैकेंसीज के स्ट्रीम्स है। होटल मैनेजमेंट में है, मैरीन इंजीनियरिंग में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में है, तो मतलब ये इतनी स्ट्रीम्स में इतने अगर आपने इन स्ट्रीम्स में डिप्लोमा किया हुआ है तो इनकी वैकेंसीज आती रहती हैं टाइम टू टाइम। ये मैंने कुछ पिछले कुछ टाइम की वैकेंसीज का मैं एक चेक कर रहा था, अभी इसमें हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी आएंगी, राइट। तो ये सभी वैकेंसीज जो है वो अलग अलग कंपनीज में है, जैसे ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे CMPDI है, ये अभी 29 सितंबर को वैकेंसी निकली है इसके अंदर, CMPDI, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये इसलिए आपको मैं यहां बता रहा हूं कि इसमें जो वैकेंसीज आती है ना अलग अलग पूरे इंडिया में PSU फैली हुई है, आप देखेंगे हमारे इंडिया में काफी बहुत बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, पर इसमें थोड़ा ये रहता है कि या तो हमारा घर ऐसी जगह पे हो जो मतलब जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि जॉब तो वहां मिलेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, आप में से जो लोग रामपुर के पास हैं, उत्तराखंड से जैसे हैं, तो आप जैसे उत्तराखंड से हल्द्वानी की तरफ जाएंगे तो वहां पर अब काफी बड़ा इंडस्ट्रियल वो है, मतलब एक तरह से जो लाल कुआं है, पंत नजर है, वो जो बेल्ट है, तो वहां काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई हुई है, मतलब वहां जॉब इजिली मिल जाती है। हाँ, दैट इज द रुद्रपुर। और वहीं अगर आप इधर आए अपना NCR एरिया में आते हैं, अगर आप गुड़गावा की बात करते हैं तो जैसे आपका मानेसर है, तो यहाँ पर काफी इंडस्ट्रीज है, तो बहुत इजीली डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब्स मिल जाती है। या फिर अलग अलग प्लेसेस पर, जैसे कुछ स्टेट वाइज भी वैकेंसी निकलती हैं, जैसे देखो आप इसमें देखेंगे जो सेकंड पोस्ट है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 1661 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज आई है, ठीक है, जो फ्रेशर्स के लिए है, जिसमें फिक्स किया होता है कि आपका ऑफिस एंड मैनेजमेंट में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मतलब वैकेंसीज काफी होती हैं, थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए, आपके पास में लिंक्स के सोर्सेज होने चाहिए भी, कहां से आपको पता चल पाए कि किस किस फील्ड की वैकेंसी कहां से आई हुई है। आजकल तो इंटरनेट के थ्रू आप घर बैठे ही पता कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज और ऐड करूं कि आप में से जो लोग ऑलरेडी डिप्लोमा होल्डर है या कोई आगे डिप्लोमा करने की अभी सोच रहा है, तो टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ जो भी आपने 3 साल का जिस भी स्ट्रीम में आपने डिप्लोमा किया, तो टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ आप थोड़ा सा एजुकेशन अपने आप को इंटरनेट नो हाउ जिसे हम कहते हैं, कि अभी अगर हम इंटरनेट नो हाउ की बात करें तो हमें सभी को फेसबुक यूट्यूब तो सबको पता है, सभी लोग उसे यूज भी करते हैं, ठीक है, पर हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गूगल अलर्ट यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको जॉब्स के बारे में पता करना है, वैसे तो काफी एक तरह से साइट्स भी है जो आपको एक टाइप से जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स निकलती हैं वो आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर भी अगर आपको एक स्पेसिफिक जॉब चाहिए, जैसे आपने डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा होल्डर से रिलेटेड आपको जॉब्स के बारे में पता करना है, तो आपने गूगल अलर्ट के अंदर जॉब्स आफ्टर डिप्लोमा डाल दिया, तो उसमें क्या रहता है कि एवरी डे पूरे इंडिया के अंदर किसी भी पेपर में, किसी भी वेबसाइट के ऊपर, गूगल पे किसी वेबसाइट के ऊपर अगर डिप्लोमा के बाद की जॉब निकली है ना, तो उसका एक तरह से आपको लिंक मिल जाता है, तो वहां से आप सर्च आउट कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि वैकेंसीज काफी ज्यादा है। बस ये है कि थोड़ा सा एरिया फर्क पड़ जाता है कि आप अगर एनसीआर में रह रहे हैं और आपकी जॉब निकली है वो आपकी बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, कहीं महाराष्ट्र में है, तो हम अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज हम अगर डिप्लोमा होल्डर्स की बात करें तो 12th, 10th के बाद में 3 साल कोर्स करने के बाद जॉब लेना कोई ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है, और एक तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैकेंसीज रहती है। पर एक प्रॉब्लम और भी है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो वैकेंसीज है उसके बाद एग्जाम होता है आपका, एग्जाम मतलब दे टेक द टेस्ट, और टेस्ट में जो आता है वो बेसिकली क्या रहता है कि एक तो आपका जो भी जिस फील्ड में आपने डिप्लोमा किया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस भी फील्ड में आपने डिप्लोमा किया हुआ है उस फील्ड के बारे में नॉलेज आपको अच्छी हो, आपने अच्छी ढंग से पढ़ाई कर रखी हो, और उसके साथ साथ जो सेकेंड पेपर आपका रहता है उसमें जनरल रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जो बेसिक आपके सब्जेक्ट होते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो वो भी आपको थोड़ा बहुत तैयार करना रहता है जो आपको हेल्प करते हैं जॉब लेने के लिए। ये और भी ये आप देखेंगे सभी अक्टूबर मंथ की वैकेंसीज है, आप देखिए ये 7th अक्टूबर, 6th अक्टूबर, 5 अक्टूबर, मतलब ये सारी वैकेंसीज जो है ये बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, ठीक है, कहीं पर 500 वैकेंसीज है, कहीं 42 है, कहीं 21 है, कहीं 36 है, राइट, किसी में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, कोई फ्रेशर के लिए है, ठीक है। और जनरली आप देखेंगे जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस मैंने लिखी हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपकी PSU या गवर्नमेंट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन, मैंने किसी प्राइवेट का नाम नहीं लिखा है इसके अंदर, ये बताने के लिए आपको कि गवर्नमेंट में भी डिप्लोमाज की काफी ज्यादा वैकेंसी आती है, बशर्ते अगर हम उसमें थोड़ा सा अवेयर हो उनके बारे में, ठीक है, और अवेयर होने के साथ साथ हम अप्लाई भी करें, क्योंकि बहुत बच्चों की प्रॉब्लम क्या रहती है कि वो अप्लाई नहीं करते जॉब्स के लिए। आप मतलब मैं हम कई बच्चों को जानते हैं कि उनका एम तो है भी मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बट तो उनसे पूछे अगर भाई कहाँ का फॉर्म अप्लाई किया, कहता जी मैंने तो कभी फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया, फिर फॉर्म अप्लाई करता है तो वो तैयारी नहीं करता, तो मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि अवेयरनेस होना भी, एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्म भी, उसके बाद प्रिपरेशन करना भी, मतलब एवरीथिंग प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। अब ये तो मैंने आपके ऑलमोस्ट सारी बातें आपको समझा दी कि क्या क्या डिप्लोमा में रहता है, और कुछ चीजें और भी हैं भी, जैसे जो अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो उसमें आप प्रोफेशनल स्किल साथ साथ सीख जाते हैं, ठीक है भाई, आपने जो टेक्निकल जो भी आपने ट्रेनिंग किया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया, ठीक है, और वो टेक्निकल स्किल आपने सीख लिया तो जॉब लेने में आसानी रहती है। स्किल्ड एम्प्लॉयज की डिमांड हमेशा से रही है इंडिया में स्पेशली, और आप देखेंगे भी आने वाले टाइम में तो स्कोप और ज्यादा बढ़ेगा। जैसे आपने सुना होगा अभी कोविड के बाद में, जैसे कोरोना का अटैक हुआ कोविड-19 के बाद में, वर्ल्ड वाइड चाइना को माना गया भी इसके पीछे, जो एक तरह से चाइना वाज रेस्पॉन्सिबल, और स्टार्टिंग में तो यू हैव हर्ड इनटू द न्यूज, जैसे काफी वर्ल्ड में काफी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम चाइना में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वहां से हम अपनी इंडस्ट्रीज को चेंज करेंगे, ठीक है, जैसे जिसमें जापान था, यूएसए था, फ्रांस था, तो वो मतलब वो चाइना से दे आर नॉट हैप्पी विद चाइना, ठीक है। अब देखिए वहां से इंडस्ट्री अगर निकल के इंडिया में आती है, आप देखेंगे इंडिया ने उसमें फिर काफी इनिशिएटिव लिया और एक तरह से ऑफर भी किया भी आप इंडस्ट्रीज इंडिया में लगाइए, यहाँ पर आपको ये टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा, ये बेनिफिट दिया जाएगा, तो ये काफी ज्यादा बातें चल रही हैं। तो अगर इतनी इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी तो आप सोच के देखिए उनमें काम करने वाले लोग भी तो चाहिए ना, और काम करने वाले लोग जो होते हैं वो ज्यादातर टेक्निकल लोगों की डिमांड होती है, और टेक्निकल लोगों में तो फिर जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वही आपके सामने रहते हैं, ठीक है। तो ये एक हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में अच्छा साइन है कि अगर जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी, जितना प्रोडक्शन एक्टिविटी यहां पर होगा उतना ही डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब मिलेगी, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं। दूसरा एक बहुत बड़ी बात और भी है कि जैसे आपके मेट्रो कॉरपोरेशन है, मैं आपको बताता हूं, जो डीएमआरसी है, जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, हजारों लोग ऐसे हैं, हजारों एम्प्लॉयज ऐसे हैं डीएमआरसी के अंदर जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे काम करते हैं डीएमआरसी में, और उसके लिए अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ओनली उसके अंदर क्या कहा गया है कि आपने डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में 10th के बाद, काफी वैकेंसीज निकलती है। आप तो देखो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सैचुरेशन आ चुका है क्योंकि डीएमआरसी ऑलरेडी काफी रिक्रूटमेंट कर चुका है, बट स्टार्टिंग में जब नया नया ये कॉरपोरेशन आपका बना था उसमें जब नई नई वैकेंसीज निकलनी स्टार्ट हुई थी तो बहुत बच्चे ऐसे थे जो डीएमआरसी के अंदर लग गए जिन्होंने थोड़ा बहुत मेहनत किया था और डिप्लोमाज किए हुए थे, और ऐसी अब हर स्टेट में आगे जो मेट्रो एक्सपेंड हो रही है तो जितनी ज्यादा एक्सपेंड होगी उतना ही जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं लोगों के लिए। फिर एक और बहुत बड़ी चीज है कि डिप्लोमा करने के बाद अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहें तो उसमें भी आपको लेटरल एंट्री मिल जाती है, ठीक है जी। मतलब क्या है कि देखो वैसे तो बीटेक आपकी 4 साल की होती है, ठीक है, अगर आप 12th के बाद करते हैं तो अगर आपने 12th 10th के बाद डिप्लोमा किया है 3 साल का तो उसमें भी आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, तो 1 साल आपका बच जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो इक्वलेंटी हो जाता है, किसी बच्चे ने 10th क्लास के बाद में पहले डिप्लोमा किया फिर उसने बीटेक में एडमिशन लिया, या आपने पहले 12th किया फिर आपने बीटेक में एडमिशन लिया, तो टोटल टाइम स्पेंडिंग जो है वो ऑलमोस्ट इक्वली रहेगी आपकी, वो आपका 1 साल वेस्ट नहीं जाएगा, उसमें एडजस्ट हो जाएगा। हर स्टेट इस तरह का लेटरल एंट्री का अपना अलग अलग एग्जाम लेता है, जैसे हरियाणा के जो बच्चे हैं वो लीड का एग्जाम देते हैं, LEET, लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता है आपका, लीड का पेपर होता है, हर स्टेट का एग्जाम होता है, उसमें जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं तो वो अपना एक टाइप से जो लेटरल एंट्री का एग्जाम लेते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर क्या होता है कि आपको वो पेपर पास करना होता है डिप्लोमा के बाद में, और फिर आपका डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा स्कोप हो जाता है भी, आपको टेक्निकल नॉलेज भी आपने सीखा 3 साल के अंदर, अगर आपका उस फील्ड में करियर बनाने का इंटरेस्ट है, हाई से हम लीड कहते हैं लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट, तो अगर आप उस फील्ड में आगे फ्यूचर में और टेक्निकल नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप उसी फील्ड के अंदर बीटेक कर सकते हैं, और आपका कोई ईयर भी वेस्ट नहीं होगा, तो सेम उसमें आप अपनी इंजीनियरिंग करके अपना करियर आगे लेके जा सकते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले डिप्लोमा करते हैं फिर 2 साल जॉब करते हैं, ठीक है, उसके बाद दे टेक एडमिशन इन द बीटेक, राइट। तो ये एक अच्छी आपके लिए वो हो जाता है भी, आपकी हायर क्वालिफिकेशन भी हो गया और आपको इंडस्ट्री के बारे में पता भी चला, आपने इंडस्ट्री में काम भी किया, टेक्निकल एक्सपीरियंस भी आपका हुआ, तो ये भी एक स्कोप रहता है। और हर स्टेट में पेपर होता है, मैंने तो हरियाणा का आपको बताया जैसे लीट का पेपर है, ऐसे ही DTE केरला के अंदर होता है, वो मतलब एग्जाम का नाम अलग अलग है, बाकी पेपर जो है एग्जाम जो है वो हर स्टेट में होता है लेटरल एंट्री के लिए, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं लेटरल एंट्री की स्कीम के अंदर, ठीक है। तो ये आज का हमारा सेशन था, मैंने काफी चीजें आपको बताई इससे रिलेटेड, या एक दो चीजें मैं और भी ऐड करूंगा कि जैसे मैं PSU की बात कर रहा था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, जिसमें आपको मैंने ONGC गेल इन सब के बारे में बताया। देखिए उनमें क्या होता है ONGC में गेल में कि अगर आपको वैसे जॉब लेनी है इंजीनियर की तो बीटेक आप करते हैं, तो बीटेक के बाद फिर आपको गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना रहता है, ठीक है, और वही अगर आपको जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी अप्लाई करनी है तो जूनियर इंजीनियर की काफी वैकेंसीज निकलती हैं, जिसमें आपको एक आपके फील्ड से रिलेटेड, टेक्निकल नो हाउ से रिलेटेड आपने एग्जाम देना है, और उसके बाद फिर आपको अपना जो थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग का पेपर रहता है तो वो आप उसे दे सकते हैं। तो स्कोप इज वेरी वाइड, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड वाइड कंपेयर करते हैं तो डिप्लोमा कोर्सेज को काफी वेटेज दिया जाता है। और मैं एक चीज और यहां पर ऐड करूं कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप बाहर भी जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो उन लोगों की है जो टेक्निकल काम कर सके, मतलब टेक्निकल मतलब जिसको हम लोअर टेक्निकल कहते हैं, जैसे आप अपने यहाँ पर जो फिल्टर का काम होता है, ठीक है, मतलब ऐसे काम, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में वहां के जो लोग हैं वो मतलब दे यू कैन से दैट दे हैव सो मच मनी, या हम ये कह सकते हैं कि वो छोटे काम नहीं करते। जबकि इंडिया से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है किसी भी फील्ड के अंदर तो आप फॉरेन में जाके भी अपना एक ऐसे करियर स्टार्ट कर सकते हैं उसमें, और आपको वहां पे जॉब्स मिल जाती है, ठीक है। तो मतलब स्कोप इज वाइड, थोड़ा सा पॉजिटिव लेके आपने इस चीज को करना है, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको अपनी ओर से बताया है। इसके अंदर एक चीज और ऐड करूं, जैसे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होता है, अब फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो लोग डिप्लोमा करते हैं तो उसका भी काफी स्कोप है। अब देखिए आज इतनी इंडस्ट्रीज ओपन हो चुकी है फूड जो फूड से एसोसिएटेड है, तो मतलब स्कोप काफी रहता है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके आपको इसमें काम करने की जरूरत रहती है, ठीक है। तो दिस इज फ्रॉम माई साइड, बाकी आपकी कोई क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे।
1: हाँ दिनेश जी, इसमें है ना दो तीन पॉइंट ऐड था। टेंथ के पास, टेंथ पास करके जैसे कि फुटवेयर टेक्नोलॉजी जैसे कि आगरा में है, टेंथ पास
0: जी जी सर जी बिल्कुल सर।
1: और आप जिस तरह ज्वेलरी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जैसे पुणे में है, आपको ऑलरेडी चेन्नई में भी है, जैसे ज्वेलरी पर भी आपको डिप्लोमा करना चाहता है उसका भी है। प्लस सबसे बड़ी बात है, शायद किसी को पता हो या नहीं भी हो, जो हमारे पूरे भारत वर्ष में जो है टेंथ पास करके फाइव इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स होती है, वो जो टेंथ पास करके भी लड़के अप्लाई करते हैं प्लस टू करके भी, जैसे इंडो डेनिश टूल रूम और इंडो जर्मन टूल रूम, इंडिया और डेनमार्क के कोलेब्रेशन से कॉलेज बनी हुई है, जमशेदपुर में है, और एक है इंडो जर्मन टूल रूम, इंडिया और जर्मनी के कोलेब्रेशन से कॉलेज बनी हुई है, वो है इंदौर में। ये दोनों टेंथ पास करके, प्लस टू पास आउट करके, टेंथ पास करके जाएंगे तो फाइव इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है, प्लस टू करके जाएंगे तो फोर इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसके लिमिटेड सीट होते हैं। तो ये लोग अप्रैल में भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका मेन एग्जाम होता है और जुलाई से सेशन स्टार्ट होता है।
0: तो मतलब ये सारा बात यह है कि वोकेशनल कोर्सेज में स्कोप काफी है, ठीक है, वो एक स्कोप है। और मतलब इसमें आप ये कह सकते हैं कि बहुत छोटी एज में आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब अपना आपने जॉब स्टार्ट कर दिया और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे उसमें यू कैन गेट प्रमोशंस, और अगर आप अपना भी काम करना चाहें तो इसमें लो इन्वेस्टमेंट पे अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये काफी वाइड एरिया होता है।
1: गोल्फ कंट्री में भी सर, आपने बताया भी है, जैसे साउथ अफ्रीका हुआ, गोल्फ कंट्री में भी काफी डिमांड होती है डिप्लोमा के।
0: गोल्फ कंट्री में बहुत डिमांड,
1: बहुत बहुत सर। मेरा है कि वो स्टेट वाइज जो एनटीपीसी है, जैसे कि स्टेट वाइज जहाँ पे इनकी ये मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस होती है, इंटरनल वो लोग शायद आईटीआई वालों को या अदरवाइज लेकर के डिप्लोमा वाले को भी वो लोग हायर करते हैं क्या, जैसे जैसे उनका ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम नहीं होकर जो कंडक्ट जो जहाँ पे इनकी ऑफिस है, जैसे कि चित्रकूट में उसका एनटीपीसी का है, फिर उसके बाद यहाँ दादरी में एनटीपीसी, तो ये लोग इंटरनल भी शायद निकालते हैं।
0: क्या है सर कि वैसे तो जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसमें एनटीपीसी भी है, नेशनल थर्मल पावर है, तो इनका तो प्रोसेस ये होता है सर कि ये अपनी दो तरह की जॉब्स निकालते हैं, एक तो सर जो परमानेंट बेसिस पे निकालते हैं और सेकंड वो जो एडहॉक बेसिस पे लगाते हैं। जो तो एडहॉक बेसिस पे लगाते हैं वो तो ये इंटरनल सोर्सेज से या कहीं से भी कर लेते हैं, बट जो परमानेंट पोस्ट निकालेंगे ना, परमानेंट पोस्ट में तो इनको नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है और उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। मतलब जो एक तरह से जो परमानेंट पोस्ट रहती है वहां तो एक प्रॉपर प्रोसेस से ही वो काम चलता है, उसका टेस्ट भी लेते हैं ये लोग, सारी चीजें करते हैं। हाँ ये है कि कई बार कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो आपकी एडहॉक इन नेचर होती है, एक साल की, दो साल की, या जो टेम्परेरी पोस्ट होती है, तो वहां तो ये इंटरनल सोर्सेज से कहीं से भी कुछ ना कुछ कर जाते हैं, बट एक्चुअल जो आपके परमानेंट जॉब्स हैं जिसको हम जूनियर इंजीनियर की जॉब कहते हैं इसके अंदर, तो वो तो एक प्रॉपर प्रोसेस से निकालते हैं।
1: बहुत सारा स्कोप है टेंथ पास करने के बाद, आईटीआई करने के बाद या पॉलिटेक्निक, बहुत सारे स्कोप है। थैंक यू दिनेश जी।

0: डॉक्टर बॉबी, जैसे कि हम टीबी के बारे में बात कर रहे हैं, तो टीबी के बारे में हमें बताएं कि ये क्या कैसी बीमारी है।
1: टीबी एक इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब संक्रामक रोग जो कि हवा से एक बैक्टीरिया द्वारा होता है और खांसी और हवा से बैक्टीरिया फैल के एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में चले जाता है। इसलिए टीबी एक काफी खतरनाक बीमारियों में जाना जाता है, क्योंकि एक टीबी का पेशेंट अगर एक घर में हो तो बाकी के जो सदस्य घर में रह रहे हैं, या अगर वो कहीं काम करने जा रहा है, जो बाकी के मेंबर्स हैं उसके ऑफिस में आसपास, उनको भी टीबी होने का खतरा होता है। इसी वजह से टीबी काफी तेजी से जो है हमारी सोसाइटी में फैलने का डर रहता है।
0: तो टीबी का रोकथाम किस प्रकार से की जा सकती है?
1: टीबी की रोकथाम के जो उपाय हैं उसमें सबसे पहला है जल्दी से जल्दी टीबी का डायग्नोसिस करना। किसी भी व्यक्ति को अगर खांसी 3 हफ्ते से ज्यादा चलती है, या बुखार रह रहा है साथ में खांसी है, या खांसी के संग बलगम में खून आने लगा है, तो ऐसे व्यक्ति को टीबी होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं और ऐसे व्यक्ति की तुरंत जांच शुरू कर देनी चाहिए। जांच की सुविधाएं हमारे कम्युनिटी में डॉट सेंटर में टीबी सेंटर्स में उपलब्ध हैं। ये सारी सुविधाएं मुफ्त हैं। इन सुविधाओं में बलगम की जांच ये सबसे पहले की जाती है। मरीज को 3 दिन तक सुबह का बलगम लाने को कहा जाता है, उसको उसकी डब्बी दी जाती है, डब्बी में वो बलगम लेके आता है और उस बलगम की जांच के द्वारा हमें पता चलता है कि इस मरीज को कहीं टीबी का रोग तो नहीं हो गया।
0: अगर किसी को टीबी हो गई हो तो उसका देखभाल और इलाज किस तरह से किया जा सकता है?
1: टीबी एक पूरी तरह से ठीक होने वाला रोग है, परंतु टीबी का जो इलाज है वो अन्य इन्फेक्शंस की तरह छोटा नहीं है। अन्य इन्फेक्शंस का इलाज 7 से 14 दिन 20 दिन तक चल के होता है, परंतु टीबी के मरीज का इलाज कम से कम 6 महीने डॉक्टरी निगरानी में करना बहुत जरूरी है। इसका पूरा इलाज सरकार द्वारा फ्री किया जाता है डॉट सुविधा के तहत, जिसमें पेशेंट को अपनी निगरानी में दवा खिलाई जाती है। टीबी के मरीज को अगर अच्छी तरह से खुराक दी जाए, टीबी के मरीज को एक बंद कमरे में ना रखा जाए, सैर पे भेजा जाए और खुराक में हाई प्रोटीन दिया जाए, तो टीबी तकरीबन सभी केस 95% केस पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और एक बार पूरा इलाज देने के बाद उनको दोबारा इलाज की जरूरत नहीं पड़ती।
0: टीबी का इलाज क्या बहुत महंगा है?
1: टीबी का इलाज महंगा नहीं है, बल्कि सरकारी संस्थानों में जो डॉट सेंटर है वहाँ टीबी का इलाज मुफ्त में किया जाता है, पेशेंट से कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, तो एक तरीके से फ्री भी है। अगर प्राइवेटली भी

0: बोला जाता है कि हर दिन 5,000 लोगों को टीबी का डायग्नोसिस किया जाता है देश भर में। तकरीबन 1,000 लोग एवरी डे उनका ध्यान तो जाता है टीबी की वजह से, मतलब दो व्यक्ति हर तीसरे मिनट टीबी के रोग के कारण मारे जा रहे हैं। तो इतना ज्यादा टीबी फैला हुआ है, तो दवाइयों की उपलब्धता की समस्या नहीं है। समस्या ये है कि मरीज कई बार ये दवाई समझता है कि मुझे इन्फेक्शन थी, 1-2 महीने में मुझे आराम आ गया, मुझे आगे दवा की जरूरत नहीं है, वो दवाई बंद कर देता है। और बंद करने की वजह से इन्फेक्शन 3-4 महीने में दोबारा लौट के अधिक मात्रा में और खतरनाक रूप से सामने आ जाता है। टीबी की इस समय सबसे ज्यादा समस्या है कि हमारे को कम्युनिटी तक ये अवेयरनेस पहुंचाएं कि टीबी का इलाज कम से कम 6 महीने करें और लग के करें, ये कम्प्लीटली क्योरेबल इन्फेक्शन है।
1: डॉक्टर साहब, किस किस तरह की टीबी होती है और उनके इलाज में क्या कोई खास डिफरेंस है क्या?
0: ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। टीबी छाती की, चेस्ट की ही नहीं होती, पल्मोनरी टीबी जिसे हम बोलते हैं, चेस्ट की टीबी जो खांसी से फैलती है, वो टीबी के मरीज अगर हम 100 देखेंगे तो 80 लोगों को छाती की ही टीबी होती है, परंतु 20 लोगों को छाती के बाहर की टीबी भी होती है। टीबी शरीर के किसी भी अंग को, हड्डी, लिम्फ नोड, लिवर, इंटेस्टाइन, किसी भी अंग को प्रभावित करके वहां रोग पैदा कर सकती है। उसका इलाज तकरीबन सेम दवाइयों द्वारा किया जाता है। जो इलाज की ड्यूरेशन है, जो इलाज का समय है, वो डॉक्टर डिसाइड कर लेते हैं कि ये इलाज 6 महीने चाहिए, 9 महीने चाहिए या 1 साल का चाहिए, परंतु दवाइयां सेम रहती हैं। और डॉट्स के तहत ज्यादातर एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का भी अच्छा इलाज होता है।
1: डॉक्टर साहब, हर साल 24 मार्च को, यानी कि 24 मार्च को टीबी डे मनाया जाता है। इस दिन को सुनिश्चित करने की क्या जरूरत थी और इसका क्या उद्देश्य है?
0: टीबी के लिए भी एक दिन साल में हम लोग को सुनिश्चित करना पड़ा, क्योंकि हमारे देश में या ग्लोबली टीबी की रोग एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। विश्व भर में 8.8 मिलियन टीबी के केसेस हैं और हमारे देश में 1/5 जो केसेस हैं वो हमारे देश से हैं। तो एक दिन निश्चित करके इस दिन द्वारा हम आपको मीडिया द्वारा, गेट टुगेदर्स द्वारा, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स के द्वारा मिलकर डॉक्टर लोग अगर सब जगह ये अपने विचारों को फैलाएं कि टीबी एक कम्प्लीटली क्योरेबल डिजीज है, ये इन्फेक्शियस डिजीज है जिसका इलाज कराना पेशेंट के लिए जरूरी नहीं है, पूरी परिवार के लिए जरूरी है, नहीं तो ये परिवार में हर व्यक्ति को हो सकती है। इस अवेयरनेस को फैलाने के लिए जो दिन है ये सुनिश्चित किया गया है, जिसमें सब लोग जो है इस अवेयरनेस को स्प्रेड करें और जो रिजल्ट हमने पूरे साल मेहनत करके एक्वायर किए हैं उनको भी एनालाइज कर सकें।
1: इस दिशा में सरकार की तरफ से क्या प्रयास रहे हैं और ये प्रयास कहाँ तक सफल हो रहे हैं?
0: सरकार की तरफ से बहुत अच्छे डॉट सेंटर पूरी दिल्ली में बनाए गए हैं और उस सेंटर में ट्रीटमेंट मुफ्त उपलब्ध है, डायग्नोसिस की सारी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं और पेशेंट्स को वहां पर अंडर सुपरविजन दवाई दी जाती है। इन प्रोग्राम्स के द्वारा दिल्ली में टीबी के पेशेंट्स को बहुत राहत मिली है और जितनी मेरी समझ है ये पॉजिटिव इफेक्ट है हमारी कम्युनिटी में।
1: डॉक्टर साहब, जैसे आप कह रहे थे कि जब किसी व्यक्ति को टीबी होता है तो उसके परिवार वालों को भी ये होता है कि इन्फेक्शस हो सकता है। पहले तो ऐसे होता था कि टीबी सैनिटोरियम्स में छोड़े जाते थे ये लोग और इनके साथ एक छुआछूत का जैसे बर्ताव किया जाता था। तो अब आपका क्या एडवाइस रहेगा कि कैसे इनका इलाज करना चाहिए परिवार वालों को?
0: जब तक टीबी के रोग का ये नहीं मालूम चला कि ये एक इन्फेक्शन है, जब तक इसके दवाइयाँ 1940 तक नहीं आई दुनिया में, इसकी ट्रीटमेंट नहीं बनी, तब तक टीबी से तकरीबन 100% लोग जो है वो मर जाते थे। मगर इफेक्टिव ट्रीटमेंट के साथ ये ट्रीटमेंट 100% सक्सेसफुल हो गया, अच्छी से अच्छी सेफ दवाइयाँ आ गई। जब तक पूरा इलाज नहीं था तब तक सेनेटोरियम का इलाज किया जाता था ताकि आसपास के लोगों को बीमारी ना फैले और मरीज को ताजी हवा में, पहाड़ में अच्छी तरह से खुराक दी जाए और धीरे धीरे वो नेचुरली अगर हील हो सकता है तो हो जाए, अदरवाइज कम से कम वो पूरे शहर में बीमारी ना फैलाए। परंतु टीबी के अच्छे इफेक्टिव ट्रीटमेंट की डिस्कवरी के बाद इस तरह के सैनिटोरियम ट्रीटमेंट बंद हो गए, तकरीबन सारे सैनिटोरियम बंद हो गए हैं और घर पे रह के आप डोमिसिलरी ट्रीटमेंट जिसे हम बोलते हैं आप अच्छी से करवा सकते हैं। इस इलाज से तकरीबन 100% लोग ठीक हो जाते हैं। टीबी के पेशेंट के संग

0: करने से टीबी होने का खतरा होता है, परंतु जैसे ही आप इलाज शुरू करते हैं 7 से 10 दिन में पेशेंट टोटली नॉन इन्फेक्शियस, मतलब बिल्कुल सेफ हो जाता है, आपको बीमारी नहीं दे सकता। 7 से 10 दिन में जो टीबी के कीटाणु हैं वो इतने क्षीण हो जाते हैं कि वो आपको बीमारी नहीं दे पाते हैं। टीबी के पेशेंट के संग रहने से, खाना खाने से कोई भी टीबी नहीं फैलती है। सिर्फ आपको एक प्रिकॉशन लेनी होगी कि वो जो अपनी स्पूटम या थूक है उसको किसी कंटेनर में जिसमें एंटीसेप्टिक है उसमें डिस्पोज करे, घर में इधर उधर ना फेंके, और अपनी बलगम से बने जो क्लोथ्स होते हैं, जो रुमाल है या कोई तौलिया है, उसको भी अच्छी तरह से गर्म पानी में धोए। तो टीबी के पेशेंट्स को घर पे डोमिसिलरी ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा इलाज हो सकता है।
1: वैसे कहा जाता है कि टीबी एक गरीब तबके के समाज के लोगों को ज्यादा असर करता है, क्या ये सही है?
0: टीबी सोसाइटी के हर प्रकार के आदमी को इफेक्ट करता है, इसमें गरीब और अमीर का फर्क नहीं है। आपको अपनी हाइजीन लेवल को मेंटेन रखना है। अगर आप स्वस्थ वातावरण में, ताजी हवा में रहते हैं, अपनी खुराक का पूरा ध्यान रखते हैं, अपने शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको मेंटेन रखते हैं, तो टीबी आपको होने के चांसेस कम है। तो इसमें ऐसी कोई लाइन नहीं है कि गरीब को होगा टीबी, जिसके पास अमीर है या पैसे वाले हैं। हर प्रकार के पेशेंट को, इट्स इन्फेक्शन, किसी को भी हो सकती है।
1: डॉक्टर बॉबी, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: सब बहनों भाइयों को यही एडवाइस करूंगा कि अगर किसी को भी 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो तो तुरंत डॉट केंद्र में जाके अपना जांच करवाएं। जांच करने के बाद अगर टीबी निकलती है तो मेडिकल अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट करके अपना कोर्स कंप्लीट करें। ये कंप्लीटली क्योरेबल डिजीज है, तो इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपना हिम्मत मत हारें और पूरा डट के इलाज करवाएं।

रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: वेलकम फ्रेंड्स, जीते रहो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अरे बबलू, ये क्या कर रहे हो?
1: खुजला रहा हूँ, और क्या, तुम्हें तो दिखता रहेगा फिर भी पूछोगी।
0: नहीं नहाओगे तो ऐसे ही होगा, ये सब गंदगी का नतीजा है।
1: तुम्हें तो मौका चाहिए बस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पैर में ये छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं, पर इसे कोई परवाह ही नहीं। जस्सी,
0: तो तुम खुजा के उसे और क्यों बढ़ा रहे हो? और तुम्हारे नाखून, देखो अपने नेल्स। दोस्तों, आप ये गलती कतई मत कीजिएगा। अगर दाने निकल रहे हों और दाने वाली जगह पर त्वचा लाल भी हो, तो प्लीज उसे नाखून से मत खुजाइएगा इस बुद्धू की तरह, बीमारी और बढ़ जाती है।
1: तुम इतना पैरानोइड क्यों हो रही हो? छोटा सा तो है, मैं तो बस चिढ़ा रहा था।
0: मैं जानती हूं तुम क्या कर रहे हो, और हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हम त्वचा की बीमारी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। दोस्तों, ऐसा करना उचित नहीं है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील स्थान है।
2: हम एक दिन में न जाने कितने ही सेंसेशंस महसूस करते हैं। इन सेंसेशंस के महसूस होने में त्वचा का अहम रोल है। त्वचा हमारे शरीर का बहुत संवेदनशील अंग है। जाहिर है, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारी त्वचा हमेशा एक्सपोज रहती है। वातावरण में ऐसी कई चीजें हैं जो हमारी त्वचा को प्रभावित कर सकती हैं, जिनसे त्वचा की बीमारियां हो सकती हैं।
3: हमारी त्वचा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है प्रदूषण से। प्रदूषण और हार्मफुल केमिकल से स्किन रैशेस, डर्मेटाइटिस जैसी त्वचा की परेशानियां हो सकती हैं। और अगर इतना काफी नहीं था तो परेशान करने के लिए मौजूद हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पूरा पारिवारिक समूह। जीवाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई भी त्वचा की बीमारियों की एक अहम वजह है। इनसे एक्ने, रिंगवर्म इन्फेक्शन और हर्पिस जैसी त्वचा की बीमारियां होती हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है अपनी स्किन का ध्यान रखा जाए। वैसे कुदरत ने भी कुछ हद तक त्वचा का ख्याल रखा है। त्वचा पर मौजूद बाल बाहरी तत्वों से इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं और शरीर का सही तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। हमारी त्वचा स्वेट ग्लैंड्स के जरिए भी बॉडी टेम्परेचर नियंत्रित करती है। ज्यादा तापमान, शारीरिक परिश्रम और स्ट्रेस की स्थिति में ये स्वेट ग्लैंड्स पसीने का उत्पादन करते हैं। ये पसीना त्वचा में मौजूद पोर्स यानी रोम छिद्रों से बाहर निकलकर जब इवेपोरेट यानी वाष्पित होता है तो शरीर को ठंडक पहुंचती है। जाहिर है, पसीना पसीना होना महज एक मुहावरा ही नहीं बल्कि हमारे शरीर की जरूरत भी है। ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स के अलावा त्वचा में करोड़ों की संख्या में अन्य स्किन सेल्स भी मौजूद रहते हैं। ये सभी त्वचा की तीन अलग लेयर्स में बटे रहते हैं, पहला एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस और तीसरा सबक्यूटेनियस टिश्यू। त्वचा की सबसे ऊपरी लेयर जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, कागज के टुकड़े जितनी मोटी होती है। एपिडर्मिस पर बाल और पोर्स यानी कि रोम छिद्र होते हैं। एपिडर्मिस की सबसे निचली लेयर में बेसल सेल्स मौजूद होते हैं। ये बेसल सेल्स टूटकर स्क्वेमस सेल्स बनते हैं जो केराटिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। यही केराटिन हानिकारक रसायन और इन्फेक्शन से त्वचा की रक्षा करता है। एपिडर्मिस के नीचे होती है त्वचा की सबसे मोटी परत जिसे डर्मिस कहते हैं। इसमें नर्व एंडिंग्स, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, मसल्स, ब्लड कैपिलरीज और डीप सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। तीसरी और अंतिम लेयर को सबक्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं। इसमें मुख्यतः वसा होती है और इसके अलावा क्यूटेनियस नर्व्स और ब्लड वेसल भी होती हैं। क्यूटेनियस नर्व्स ही स्किन से सेंसेशन लाने और ले जाने का काम करती है। सबक्यूटेनियस टिश्यू ही गर्मी कैद कर हमारे शरीर को इंसुलेशन प्रदान करता है और गर्मी को शरीर के अंदर रखता है। जहां तक त्वचा के रंग का सवाल है तो इसके पीछे मेलेनोसाइट्स नामक सेल्स का हाथ है जो कि एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। ये सेल्स मेलानोजेनेसिस प्रक्रिया के जरिए मेलानिन नाम का एक पिगमेंट बनाते हैं। जैसे ज्यादा चाय पत्ती डालने पर चाय का रंग काला हो जाता है, वैसे ही मेलानिन के ज्यादा बनने से स्किन भी डार्क हो जाती है। मेलानिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। भारतीयों में मेलानिन की मात्रा यूरोपियन से ज्यादा होने की वजह से हम अल्ट्रावायलेट रेज से होने वाले स्किन कैंसर से काफी हद तक बचे रहते हैं। हमारी स्किन शरीर के किसी और हिस्से के मुकाबले सबसे तेज रिप्लेस होती है। त्वचा की एपिडर्मिस लेयर में ऑयल ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, जिनमें से एक है सिबेशियस ग्लैंड। यही सिबेशियस ग्लैंड एक तरल पदार्थ का उत्पादन करते हैं जिसे सीबम कहते हैं, जो बाल और त्वचा का मॉइस्चर कंटेंट बनाए रखने में मदद करता है। गंदगी, अनुवांशिक कारणों या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई बार सेबम ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। यही सेबम जमा होकर मुहासे या पिंपल्स के रूप में त्वचा पर दिखाई देते हैं। सेबम के इस जमाव में बैक्टीरिया भी पैदा होने लगते हैं। जब बैक्टीरिया और सेबम त्वचा के सतह के नीचे रहते हैं तो वहाँ पर व्हाइट हेड्स दिखते हैं। त्वचा की सतह से बाहर निकलकर मेलानिन के साथ रिएक्ट कर ये जमाव ब्लैकहेड्स का रूप भी ले सकते हैं।
4: मुहासों का इलाज दो तरह से होता है, लगाने का भी है और खाने का भी है। एग्जामिनेशन जरूरी है ये देखने के लिए कि माइल्ड है या मॉडरेट है या सिवियर है। माइल्ड है जिसमें बोलते हैं सिर्फ कोमेडोन्स हैं, तो उसमें आपका लगाने का दवा जिसमें कई जेल्स आ जाते हैं, एंटीबायोटिक जेल्स हैं या बेंजोइल पेरोक्साइड जेल है या रेटिनॉइड जेल एक कैटेगरी आता है, वो जेल्स लगाएं। मॉडरेट में पस के दाने निकलते हैं जिसको पिंपल्स बोला जाता है कॉमन पार्लेंस में, उसके लिए एंटीबायोटिक्स खाने के लिए दिए जाते हैं और लगाने के लिए भी दवा दी जाती है।
3: एक्ने जैसे कॉमन डिसऑर्डर के अलावा त्वचा के कुछ और कॉमन डिसऑर्डर्स भी हैं, जैसे एक्जिमा जिसे डर्मेटाइटिस भी कहते हैं और सोरियासिस। एक्जिमा एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर रैशेज और लाल धब्बे दिखने लगते हैं। एक्जिमा की शुरुआत होती है सूजन और खुजली से। एक्जिमा के कारण त्वचा पर ब्लिस्टर्स या फफोले भी पड़ने लगते हैं। यदि एक्जिमा लंबे अरसे तक रहे तो त्वचा सूखी, पर्तीली और बदरंग भी हो सकती है। ये एलर्जी एसिड और अन्य हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से हो सकती है। कुछ धातुओं जैसे निकल से बने चश्मों के फ्रेम और बटन के संपर्क में आने पर भी कई लोगों को स्किन एलर्जी हो जाती है। एक्जिमा के मूल कारण और रैशेस के आकार और जगह के आधार पर एक्जिमा के प्रकार निर्धारित किए गए हैं। जैसे अटोपिक एक्जिमा, ये अमूमन उन लोगों को होता है जिनमें एलर्जी होने की जेनेटिक टेंडेंसी यानी आनुवांशिक प्रवृत्ति होती है। ये नियमित रूप से आता जाता रहता है। एक ही जगह बार बार खुजलाने और रगड़ने पर भी एक्जिमा हो सकता है। जहाँ एक्जिमा के पीछे बाहरी कारणों का हाथ है, वहीं त्वचा की एक ऐसी बीमारी भी है जिसकी मूल वजह जेनेटिक है। इस बीमारी का नाम है सोरियासिस। त्वचा की बाहरी लेयर एपिडर्मिस में कोशिकाओं के प्रोडक्शन और रिमूवल की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जब बेसल लेयर्स द्वारा निर्मित सेल्स का उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है, तब शरीर पर गठीले लाल रंग के पैचेस दिखने लगते हैं। इसी अवस्था को सोरियासिस कहते हैं। अधिकतर घुटने, कोहनी, पीठ, कूल्हे और सर, इन भागों पर सोरियासिस असर करता है। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है तो सोरियासिस का इलाज उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। सोरियासिस होने पर इलाज के लिए स्किन पर मलहम या क्रीम लगाई जाती है। यदि इनसे राहत न पहुँचे तो फोटोथेरेपी भी की जाती है। इसमें ज्यादातर प्रभावित क्षेत्र पर अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है। सोरियासिस के काफी बढ़ जाने पर डॉक्टर्स खाने की दवाएं और इंजेक्शन भी प्रिस्क्राइब करते हैं।
0: अरे बबलू, तुम ये लंगड़ाते हुए क्यों आ रहे हो?
1: देखो ना, जहाँ मुझे खुजली हो रही थी वहाँ कैसे घाव हो गए हैं। कोई इन्फेक्शन तो नहीं है?
0: ओ, मगर आपकी माने तो ये इन्फेक्शन वगैरह तो सब किताबी बातें हैं ना?
1: प्लीज कुहू, दर्द भी हो रहा है और जलन भी, देखने में भी कितना खराब लग रहा है, रोना आ रहा है मुझे।
0: अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी साफ कर दूंगी, ठीक हो जाएगा।
1: नहीं, और भी ज्यादा दर्द होगा। नहीं, मुझे
0: कुछ नहीं होगा बबलू। घाव कैसा भी हो साफ तो करना ही पड़ेगा ना, और मर्ज कैसा भी हो इलाज तो जरूरी है ना।
3: स्केबीज एक पैरासाइट इन्फेक्शन है जिसमें तेज खुजली होती है। ये बीमारी फैलाने वाले माइट स्किन के अंदर अपने को छुपा लेते हैं। इनके काटने से तेज खुजली होती है जो रात में अक्सर बढ़ जाती है। ये माइट्स बहुत छोटे होते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास से ही दिखाई देते हैं।
2: ये इन्फेक्शन इन्फेक्टेड व्यक्ति के कपड़ों और बिस्तर के इस्तेमाल से फैल सकता है। स्केबीज का इलाज क्रीम या लोशन से आसानी से हो जाता है, लेकिन मरीज के कपड़ों और बिस्तर के कपड़ों को उबालना जरूरी है, जिससे माइट्स मर जाते हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो माइट्स दोबारा इन्फेक्ट कर देंगे और किसी और को भी इन्फेक्शन लग सकता है। आइए अब बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन की। हमें से काफी लोगों ने रिंगवर्म का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल ये रिंगवर्म है क्या? इसके पीछे हाथ है टीनिया नामक फंगस का, जो हमारी त्वचा, बाल और नाखूनों में पनप सकता है। इसकी ग्रोथ गोलाकार स्वरूप लेती है, बीच में त्वचा नॉर्मल रहती है और इसके आसपास लाल, पथरीली और थोड़ी उभरी रहती है। इस कारण यह इन्फेक्शन रिंग जैसा दिखता है और यहीं से इसका नाम पड़ा रिंगवर्म। हालांकि हकीकत में त्वचा में कोई कीड़ा मौजूद नहीं रहता। ये बीमारी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। पैर के अंगूठों के बीच में, छाती, बांह और पांव पर अक्सर ये बीमारी असर करती है। इस फंगल इन्फेक्शन के होने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, ये किसी संक्रमित व्यक्ति को छूने से हो सकता है। दूसरा, फंगाई ज्यादातर नमी वाली जगहों पर, जैसे सार्वजनिक स्नान घर या शौचालय और स्टोरेज करने की जगहों में पनपती है। ऐसी जगहों से भी संक्रमण होने का खतरा रहता है।
5: देखिए, एंटी फंगल दवाइयाँ जो आती हैं वो दो तरह से आती हैं, एक तो क्रीम फॉर्म में आती हैं और एक टैबलेट फॉर्म में आती हैं। क्रीम फॉर्म के साइड इफेक्ट ये हो सकते हैं कि जहाँ पर भी क्रीम लगाई है वहाँ पे खुजली मचना, जलन मचना और कुछ तरह के दाने हो जाना, ये साइड इफेक्ट्स कई बार देखे जाते हैं। तो अगर आपको ये हो जाए तो पेशेंट को दवाई को रोक के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ओरल जो दवाइयाँ आती हैं टैबलेट्स के फॉर्म में, उसके साइड इफेक्ट्स में एलर्जिक रिएक्शंस होना वो बहुत कॉमन है, जिसके कारण से इसमें लाल चकत्ते पड़ जाना शरीर के ऊपर, या फिर पेशेंट को वॉमिटिंग हो जाना, उल्टी जैसा लगना, नौजिया लगना, पेट में दर्द होना, ये सब चीज़ें, कई बार भूख भी कम हो जाती है पेशेंट की। अगर ये सब हो जाए तो पेशेंट को दवाई रोक के फिर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
2: इलाज से बेहतर है बचाव। रिंगवर्म या टीनिया इन्फेक्शन से बचाव के लिए त्वचा को साफ रखें और नमी से बचा कर रखें। कुछ और आम बातें हैं जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। जब जरूरी ना हो तब जूते उतार दें, मसलन घर पर, ताकि पैरों को जरूरी हवा मिल सके। मोजे और अंडरवेयर रोजाना बदलना, खासकर गर्म मौसम में। नमी वाली जगहों पर, जैसे सार्वजनिक स्नान घर में, नंगे पाँव ना चलें। त्वचा पर होने वाले बॉयल्स या फोड़े हेयर फॉलिकल से होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बॉयल्स त्वचा पर पस युक्त इन्फ्लेमेशन का रूप लेते हैं। बॉयल्स के इलाज में पस को सुखाया जाता है, इसके लिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी करते हैं।

0: ब्रेक के बाद बबलू अपने इन टैटू वाले हाथों से आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता है।
1: टैटू बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गए तो
0: ज्यादा पढ़े लिखे होने का यही नुकसान है, हर चीज में इन्फेक्शन ही दिखता है।
1: छोड़िए दोस्तों, इसको कुछ समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। आइए अब बात करते हैं वायरल स्किन डिसऑर्डर्स की।
2: वायरल स्किन डिसऑर्डर्स की श्रेणी में आने वाले दो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं वॉट्स यानी मस्से और हर्पीस यानी खाज या दाग। वॉट्स एक किस्म की स्किन ग्रोथ है जिसके पीछे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV का हाथ है। वॉट्स शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, चेहरे, हाथ के पिछले भाग पर, पैरों के तलवे पर, मुंह के अंदरूनी भाग में और यहाँ तक कि जेनिटल एरिया में भी। वॉट्स कंटेजियस इन्फेक्शन है, यानी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। शारीरिक कॉन्टैक्ट या फिर इन्फेक्टेड व्यक्ति के तौलिए, कपड़े इत्यादि इस्तेमाल करने पर यह इन्फेक्शन फैल सकता है। काफी मामलों में वॉट्स कुछ महीनों में खुद ब खुद गायब भी हो जाते हैं, पर कई बार इनका इलाज दवाइयों या अन्य किसी ट्रीटमेंट पद्धति के जरिए ही करना पड़ता है। इलाज के कुछ कॉमन तरीके हैं रासायनिक, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड या कैंथराइडिन वॉट्स पर लगाना, या फिर लिक्विड नाइट्रोजन के माध्यम से वॉट्स को फ्रीज कर देना। इस पद्धति को क्रायोथेरेपी भी कहते हैं। कुछ केसेस में वॉट्स को स्पेशल तरीके से जलाया जाता है, जिसे कॉटराइजेशन भी कहते हैं। जेनिटल वॉट्स बेहद कंटेजियस होते हैं और इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की निगरानी में करना चाहिए।
3: वॉट्स टच करने से फैलते हैं, तो पेशेंट उस वॉट को बार बार अपने हाथों से ना छुए, और दवाई लगाने के बाद अगर क्रीम्स हैं तो अपने हाथों को साबुन से या पानी से अच्छी तरह धोए। दूसरी बात यह है कि वॉट्स, जेनिटल वॉट्स जो है, यौन संबंध करने से फैलते हैं। मतलब अगर किसी आदमी को जो वॉट्स हैं तो वो अगर यौन संबंध बनाता है तो दूसरे उसके पार्टनर को वॉट्स हो सकते हैं।
2: वायरस से होने वाली त्वचा की एक और बीमारी है हर्पिस। ये बीमारी दो तरह के वायरस से फैलती है। पहला वायरस है हर्पिस सिंप्लेक्स, जो ओरल कैविटी और जेनिटल को इन्फेक्ट करता है। हर्पिस सिंप्लेक्स कॉन्टेजियस होता है और अधिकतर ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। हर्पिस फैलाने वाला दूसरा वायरस है हर्पिस जोस्टर। ये वायरस एक ही नर्व को अपनी चपेट में लेता है। जहाँ जहाँ वो नर्व निकलती है उस जगह पर दाने निकल आते हैं। इसमें बहुत दर्द होता है, लेकिन ये कंटेजियस नहीं है। हर्पिस जोस्टर वायरस चिकन पॉक्स वायरस का ही एक किस्म है। इसके ट्रीटमेंट में कुछ एंटीवायरल दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन संपूर्ण रूप से ये अपने आप ही ठीक होता है, जिसकी अवधि 3 सप्ताह से लेकर 1.5 महीने तक हो सकती है। सीरियस इन्फेक्शन में दाने खत्म हो जाने के बाद भी दर्द 6 महीनों तक रह सकता है। ऐसे हालत में कुछ समय तक दर्द निवारक दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्कैल्प में होने वाली परेशानियां हैं डैंड्रफ। डैंड्रफ स्कैल्प की स्किन के ड्राई होने से होता है, जिसमें डेड स्किन के फ्लेक्स उतरने लगते हैं। डैंड्रफ एक हल्के फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसका इलाज क्रीम और लोशन से किया जाता है। हेड लाइस एक पैरासाइट है जिसे जू भी कहते हैं। ये सर के बालों में रहती है। इसके स्किन के अंदर छुपने से इचिंग और इन्फ्लेमेशन होती है। एलोपीसिया में बाल उड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा पैचेस में होता है। इसकी वजह इन्फेक्शन हो सकता है या कोई ट्रॉमा जिसमें हेयर फॉलिकल्स खत्म हो गई हो। लेकिन सबसे कॉमन एलोपीसिया, जिसे एलोपीसिया एरिएटा कहते हैं, के होने की वजह का पता नहीं चल पाया है। इलाज के लिए मेडिसिन और क्रीम के जरिए स्कैल्प के नरिशमेंट का ध्यान रखा जाता है। ज्यादातर मामलों में कुछ महीनों के बाद प्रभावित जगह पर बाल फिर से उगने लगते हैं।
4: अब बात ल्यूकोडर्मा की। इसमें मेलेनिन की कमी से स्किन पर व्हाइट पैचेस हो जाते हैं। शुरुआत में और जब ये बीमारी शरीर के कुछ अंगों तक सीमित होती है तो इसका पूरा इलाज संभव है, लेकिन अगर ये बीमारी बहुत अधिक अंगों तक फैल जाए तो इस रोग का पूरा निवारण कई बार संभव नहीं होता। लेकिन गौरतलब है कि ये छूत की बीमारी नहीं है और इससे व्हाइट पैचेस के अलावा शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। इसका इलाज मेडिसिन, क्रीम्स और फोटोथेरेपी से किया जा सकता है। इस इलाज के बाद मेलानिन का बनना बढ़ जाता है और स्किन का सामान्य रंग वापस आने लगता है। एल्बिनिज्म एक जेनेटिक कंडीशन है, जिसमें जन्म से ही शरीर में मेलानिन नहीं पाया जाता, इसलिए रंग सफेद होता है। त्वचा पर मौजूद बाल शरीर का सही तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। त्वचा को तीन लेयर्स में बांटा गया है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यूज। त्वचा में मौजूद मेलेनिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। एक्जिमा एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर रैशेज और लाल धब्बे दिखने लगते हैं। वॉट्स कंटेजियस इन्फेक्शन है और शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। हर्पीस की बीमारी दो तरह के वायरसेस से होती है, हर्पीस सिंप्लेक्स और हर्पीस जॉस्टर। स्कैल्प की स्किन के ड्राई होने से डैंड्रफ होता है, इसमें डेड स्किन के फ्लेक्स उतरने लगते हैं। एलोपीसिया में बाल उड़ जाते हैं, इसकी वजह इन्फेक्शन या ट्रॉमा हो सकती है जिसमें हेयर फॉलिकल्स खत्म हो गई हों। एलोपीसिया एरिएटा के होने की वजह का पता नहीं चल पाया है।
0: वाह कोकिला, क्या इलाज किया, आज मान गए तुमको, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे क्या बताओगी?
1: आगे वेल बबलू, समय हो गया है।
0: क्या बात करती हो कोकिला, अभी तो शुरू ही हुआ था। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे।
1: जी हाँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।

0: इस वक्त हमारे साथ हैं जाने माने सर्जन डॉक्टर आई के धवन। डॉक्टर धवन से हम बात करेंगे कैंसर के बारे में और खास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। डॉक्टर धवन, कैंसर की बीमारी के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन वो कैसे होती है, किस बीमारी को कैंसर कहा जाता है, इसके बारे में आप हमें बताइए।
1: ऐसे है कि बॉडी का जो नॉर्मल टिश्यू रिपेयर का सिस्टम या मैकेनिज्म है वो बड़ा रेगुलेटेड है, उसके रेगुलेटेड है और वो मतलब गलत नहीं होता, चलता रहता है। जैसे नेचर ने कहा है ऐसे ही रिपेयर सिस्टम होता रहता है। हर एक सेल मर जाता है, फिर दूसरा आ जाता है, पर एक किसी ऑर्डर में आता है, किसी नियम से आता है। पर जब ये नियम टूट जाता है, जब सेल्स पे कंट्रोल नहीं रहता है, वो अपने आप ही मल्टीप्लाई करते रहते हैं और ट्यूमर बनते जाते हैं, तो फिर हम उसको कैंसर कहते हैं।
0: डॉक्टर धवन, क्या ये बात सच है कि ट्यूमर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं?
1: ये बात सच है कि दो किस्म के ट्यूमर होते हैं, एक तो जो मैलिग्नेंट होते हैं और एक जो बिनाइन होते हैं। जो बिनाइन होते हैं वो तो 100% इजीली क्योरेबल होते हैं, और जो मैलिग्नेंट होते हैं वो हर एक जगह हर एक अंग के फर्क फर्क क्योर रेट्स होते हैं। और फर्क उनमें ये है, जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो सेल्स अपना रूप छोड़ते नहीं हैं, वैसे ही रहते हैं, थोड़ा सा ऑर्डर रहता है, डिसऑर्डरली नहीं होते। जो मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं वो अपना रूप छोड़ देते हैं, वो डिसऑर्डरली हो जाते हैं, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मल्टीप्लाई करते रहते हैं, ब्लड वेसल में चले जाते हैं, लिम्फैटिक्स में चले जाते हैं, जो अपनी कैप्सूल होती है उसको तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। सो ये फर्क है दोनों में।
0: डॉक्टर धवन, इस बीमारी के साथ स्टेजेस हैं कि स्टेज वन का है, स्टेज टू का है, तो कई बारी पता चलता है जब तक कि इसको व्यक्ति को कैंसर है और ये कहा जाता है कि आखिर स्टेज का पता चला, तो ऐसा क्यों होता है?
1: ऐसे है कि ये सच है कि किसी किसी ऑर्गन्स में कैंसर जितनी भी आप कोशिश कर लीजिए देर से महसूस होता है, पर जैसे जैसे मेडिकल साइंस आगे बढ़ती है तो हर एक अंग में यही कोशिश है कि कैंसर जल्दी पकड़ा जाए, उस स्टेज पे पकड़ा जाए जिस स्टेज पे उसका इलाज हो सके। एक तो बात यह है। दूसरा बात यह है कि बहुत ज्यादा जोर और एम्फेसिस है अपनी लाइफस्टाइल पे। जो फैक्टर्स कैंसर को प्रमोट करते हैं, जो कैंसर को बढ़ाते हैं, उनको अपनी लाइफस्टाइल से निकाल देना चाहिए, जैसे स्मोकिंग एंड टोबैको यूज।
0: डॉक्टर धवन, अमूमन ये माना जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बड़ी उम्र की महिलाओं को ही होता है, क्या छोटी उम्र की महिलाएं भी इसकी शिकार होती हैं?
1: सच है कि ब्रेस्ट कैंसर यंग महिलाओं में भी, छोटी उम्र की महिलाओं में भी होता है, पर इतना कॉमन नहीं है।
0: डॉक्टर साहब, महिलाओं को इसकी सही सही जानकारी रहे इसके लिए क्या करना चाहिए?
1: थोड़ी सी गलतफहमियां भी दूर करना जरूरी है। सबसे दुनिया भर में अच्छा सिस्टम जो डेवलप और मोस्ट इफेक्टिव सिस्टम जो डेवलप हुआ है कि औरतों को 50 साल की उम्र या 40 साल की उम्र की औरतों को ये सिखाना चाहिए कि अपना ब्रेस्ट को कैसे पैल्पेट करें या फील करें। हम लोग यही कहते हैं कि महीने में एक दफा जब आप नहा रहे हों, जब आपके पीरियड्स खत्म हो जाएं, पीरियड्स के बीच में, मतलब पीरियड्स के वक्त तो गांठें महसूस हो जाती हैं, पीरियड्स से पहले महसूस हो जाती हैं, पीरियड्स के बाद हफ्ता भर बाद आप अपना ब्रेस्ट नहाते वक्त, क्योंकि साबुन लगाएं ब्रेस्ट के ऊपर, फिर अपना हाथ उसके ऊपर लगाएं, तो गांठ जो हो वो अच्छी तरह महसूस हो जाती है। हमने देखा है कि जो अनपढ़, जिनको हम अनपढ़ कहते हैं औरतें, उन्होंने भी कभी रेडियो में सुना हो तो वो आते हैं, क्योंकि हमने रेडियो में सुना, तो हमने अपना ब्रेस्ट को फील किया तो हमें ये गांठ मज़। सो ये बहुत सबसे अहम बात है कि औरतों को सिखाना। दूसरी बात ये है कि 50 साल की उम्र के बाद स्क्रीनिंग या 40 साल की उम्र के बाद ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा है 15 या 20 औरतों में से 50 साल की उम्र के बाद एक को जरूर होगा ब्रेस्ट कैंसर, इतना इसका इंसिडेंस हाई है। तो इसलिए हर एक की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ना स्क्रीनिंग में थोड़ी सी गलतफहमी ये है कि मैमोग्राम करा लो तो स्क्रीनिंग हो गई, ये नहीं है। स्क्रीनिंग के दो भाग होते हैं, एक तो कोई डॉक्टर जो ब्रेस्ट कैंसर को देखते रहते हैं वो ब्रेस्ट को अच्छी तरह फील करें, और दूसरा एक साल में या दो साल में मैमोग्राम कराएं। सो ये दोनों भाग हो तब स्क्रीनिंग इफेक्टिव होती है, अगर एक ही भाग करें तो स्क्रीनिंग आधी इफेक्टिव होती है।
0: डॉक्टर धवन, अगर हम कामकाजी महिलाओं को देखें तो बच्चा होने के एक दो महीने के बाद से ही वो ऑफिस जाना शुरू कर देती हैं। ऐसे में बच्चे को दूध पिला पाना तो संभव नहीं है, इसका भी कोई असर होता है उनकी सेहत पर?
1: ये बिल्कुल कंसर्न है, एक तो ब्रेस्ट कैंसर के वजह से कंसर्न है और दूसरा बेबी के लिए भी कंसर्न है कि द बेबी डजंट गेट द मदर्स मिल्क, ही इज नॉट गेटिंग द बेस्ट न्यूट्रिशन और शी इज नॉट गेटिंग द बेस्ट न्यूट्रिशन, सो दोनों तरफ से कंसर्न है।
0: डॉक्टर धवन, आप हमारे स्टूडियो में आए और ब्रेस्ट कैंसर को लेकर इतनी सारी जानकारी आपने हमारे लिसनर्स को दी, हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे लिसनर्स को अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं तो जरूर बताइए।
1: सबसे अच्छा सिस्टम तो यही है कि अपना लाइफ स्टाइल अच्छा रखें। लाइफ स्टाइल में सबसे जरूरी चीज है कि टोबैको का इस्तेमाल या सिगरेट के रास्ते या तंबाकू खाने के रास्ते या नसवार रखने नाक में डालने के रास्ते, ये तो बिल्कुल बंद करना चाहिए, क्योंकि ना ही ये कई जगह कैंसर का रोग करता है। बाकी और लाइफस्टाइल, ओवरवेट जो लोग होते हैं उनको भी कैंसर का इंसिडेंस ज्यादा होता है, और खासकर ब्रेस्ट कैंसर के लिए महिलाओं को यही एडवाइस होगी कि दे शुड गेट देयर चिल्ड्रन अर्ली इन लाइफ, दे शुड ब्रेस्ट फीड देम फॉर अ ईयर, ईयर एंड अ हाफ और टू इयर्स, एंड दैट विल बी अ बिग बोनस, एंड दे शुड फील देयर ब्रेस्ट्स वंस अ मंथ, अ वीक और 10 days आफ्टर देयर पीरियड्स, एंड इफ दे नोटिस एनीथिंग रॉन्ग, कुछ गलत मिले तो फौरन अपने कंसल्टेशन करें।
2: रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: Hi friends, welcome to Jeete Raho once again.
1: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम
0: है। इसे क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बबलू?
1: ऑफ कोर्स, मुझे क्या हुआ है? एनीवेज, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस कोकिला एमबीबीएस। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ?
0: तुम्हें तो रातों रात ड्रास्टिक चेंजेस आ गए हैं।
1: हाँ, एक्चुअली लाइफ में पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि किसी के काम आने में कितना आत्मिक सुख मिलता है।
0: अच्छा,
1: एक्चुअली मेरे एक दोस्त को बहुत जरूरी काम से अचानक शहर से बाहर जाना पड़ गया, तो पूरे एक हफ्ते मुझे उसकी बूढ़ी दादी की देखभाल करने का मौका मिल गया। अभी मैं उन्हीं के पास से आ रहा हूँ। तुम्हें तो पता है ना कोकिला, वृद्धावस्था में पहुंच चुके लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? गठिया। दादी जी भी इसी की मरीज हैं।
0: ओ, तो ये बात है। और अगर मैं ठीक गैस कर रही हूं तो आज शायद तुम गठिया यानी आर्थराइटिस के बारे में विस्तार से जानना चाहोगे, राइट?
1: ऑफ कोर्स।
2: हर रोज ना जाने कितनी बार आप झुकते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, नाचते हैं। आप कभी नहीं सोचते आप ये सब इतनी आसानी से कैसे कर पाते हैं। सच मानिए, जब सब कुछ ठीक से चल रहा होता है तो आप चाहे जैसे अपने शरीर का इस्तेमाल करते रहते हैं, और इस लापरवाही का नतीजा निकलता है उफ, आह, आउच। हमें ये मोबिलिटी यानी गतिशीलता और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जॉइंट से। चलिए एक बड़ी मशीन के जरिए समझते हैं हमारे जॉइंट्स यानी जोड़ों की बनावट।
3: बड़ी बड़ी मशीनें भी हमारे जॉइंट्स की नकल करके बनाई गई हैं। मशीन ठीक से काम करे इसलिए इसकी रेगुलर ऑयलिंग की जाती है। ऑयलिंग नहीं की तो मशीन के जॉइंट्स घिस जाएंगे और काम ठप हो जाएगा।
2: ग्रीस के इस्तेमाल से मशीन के जॉइंट स्मूथली काम करते हैं। इस मशीन की तरह हमारे जॉइंट्स को भी ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है, और ये ऑयलिंग हमारे जॉइंट्स में नेचुरली होती है।
3: हमारे शरीर के जॉइंट्स को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है बॉल और सॉकेट जॉइंट्स, जैसे शोल्डर और हिप जॉइंट्स। दूसरा वर्ग है हिंज जॉइंट्स, जिनमें शामिल हैं एल्बो, नी और एंकल जॉइंट्स। बॉल और सॉकेट जॉइंट्स में जहां रेंज ऑफ मूवमेंट अधिक होती है, वहीं हिंज जॉइंट्स में रेंज ऑफ मूवमेंट लिमिटेड है।
2: इसको समझने से पहले आइए समझते हैं हमारे जॉइंट्स की संरचना। हमारे शरीर में दो हड्डियां जहां एक दूसरे से जुड़ती हैं, उनके जॉइंट्स पर एक नाजुक कवर होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। इस गद्देदार कार्टिलेज से जॉइंट्स का लचीलापन भी बना रहता है, जिससे जोड़ों को मोड़ने में आसानी होती है। हड्डियों का जोड़ एक कैप्सूल जैसी संरचना में सुरक्षित रहता है। इस कैप्सूल पर पतली टिश्यू की परतें होती हैं, जिसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं।

जॉइंट्स में ऑयलिंग का काम भी ये साइनोवियल मेम्ब्रेन ही करते हैं। दरअसल साइनोवियल मेम्ब्रेन एक चिकना फ्लूइड पैदा करते हैं जो जॉइंट्स में ऑयलिंग का काम करता है और हड्डियों को रगड़ से बचाता है और इसके साथ साथ कार्टिलेज और हड्डी को नरिशमेंट यानी पोषण देता है। अगर किसी वजह से कार्टिलेज घिस जाए या उसमें किसी तरह का बदलाव आ जाए तो जोड़ों में स्टिफनेस यानी अकड़न और इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होने लगती है, जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। जोड़ों को कई वजहों से नुकसान पहुंच सकता है और इन्फ्लेमेशन हो सकती है। कई बार आर्थराइटिस से जॉइंट्स की शेप ही बदल जाती है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और इससे बेहद दर्द भी होता है। गठिया या आर्थराइटिस का शाब्दिक अर्थ है जोड़ों की सूजन या इन्फ्लेमेशन। बुढ़ापे की दहलीज पर तो आर्थराइटिस जैसे हमारा इंतजार करते मिलती है। उम्र के साथ शरीर जर्जर होता जाता है, जोड़ों के सिरों की कार्टिलेज भी घिस जाती है। कार्टिलेज के घिसने से जॉइंट्स के जोड़ों में रगड़ से दर्द होता है। संतुलित आहार न लेने से शरीर में कैल्शियम की कमी से बोन की डेंसिटी यानी घनत्व कम हो जाता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। फैटी फूड खाने से शरीर का वजन बढ़ने लगता है, मतलब जोड़ों को ज्यादा और ज्यादा बोझ उठाना पड़ता है और एक वक्त आता है जब शरीर में हड्डियों के ये जोड़ जवाब देने लगते हैं। इसके अलावा कुछ और किस्म की आर्थराइटिस भी हैं, जो किसी भी उम्र के लोगों में पाई जा सकती हैं।

0: वेलकम बैक। एपिसोड के इस भाग में हम बात करेंगे आर्थराइटिस के टाइप्स की। हालांकि आर्थराइटिस बहुत से रूपों में शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन
1: कोकिला, मुझे अब तक एक बात समझ में नहीं आई, आखिर आर्थराइटिस होने की वजह क्या है?
0: बिल्कुल ठीक पॉइंट पर आए तुम बबलू। एक्चुअली एजिंग आर्थराइटिस की एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे रीजंस हैं जो आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी की बड़ी वजह बन सकते हैं।
2: आर्थराइटिस के ज्यादातर मामले क्रॉनिक होते हैं, यानी लंबे समय तक इस बीमारी से जंग लड़नी पड़ती है। जोड़ों में दो हफ्ते से ज्यादा दर्द या स्टिफनेस और सूजन का मतलब है जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेने की चेतावनी। हो सकता है आप आर्थराइटिस के निशाने पर हों। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं इस बीमारी की ज्यादा शिकार होती हैं। महिलाओं में ये बीमारी पुरुषों के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा पाई जाती है। समय पर इलाज से इस बीमारी पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। इस बीमारी के लक्षण कभी तो अचानक सामने आते हैं और कई बार सिम्टम्स लंबे समय में धीरे धीरे दिखाई देते हैं। आर्थराइटिस के प्रमुख लक्षण हैं जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न। लेकिन सिर्फ डॉक्टर ही तय कर सकता है कि आर्थराइटिस है या नहीं, और अगर है तो किस तरह की, और फिर तय किया जाता है ट्रीटमेंट प्लान। आर्थराइटिस वैसे तो कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर आर्थराइटिस 4 तरह से हड्डियों पर हमला बोलती है। पहला ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा गॉटी आर्थराइटिस, तीसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस और चौथा इन्फेक्टिव आर्थराइटिस। पहले बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। इसे बुढ़ापे की बीमारी भी कहते हैं। बुढ़ापे में जॉइंट्स भी बूढ़े हो जाते हैं। हड्डियों में कैल्शियम की कमी से बोन डेंसिटी यानी हड्डियों में मिनरल्स कम होने लगते हैं और हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है। कार्टिलेज भी सालों के इस्तेमाल से घिसती जाती है और बची खुची कसर कमजोर मसल्स पूरी कर देते हैं। वीक मसल्स जॉइंट्स पर पड़ने वाले दबाव को ज्यादा रोक नहीं पाते, जिससे कार्टिलेज रगड़ खाते हैं और घिस जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में शरीर के बड़े जॉइंट्स जैसे कंधे का जॉइंट्स, घुटनों का जॉइंट, हिप जॉइंट और रीढ़ की हड्डी पर यह बीमारी ज्यादातर असर डालती है। लगातार हड्डियों में रगड़ होने से जोड़ों में टूट फूट या रिसाव भी होने लगता है। कभी कभी तो कार्टिलेज असामान्य रूप से हड्डियों के किनारे पर बढ़ जाता है, जिसे बोनी स्पर्स कहते हैं। और अब बात करते हैं गाउटी आर्थराइटिस की। ये आर्थराइटिस हमारे मेटाबोलिज्म में होने वाली गड़बड़ी से पैदा होती है। मेटाबॉलिज्म में खराबी के चलते हमारे खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ये यूरिक एसिड जब किसी जॉइंट पर जमा हो जाते हैं तो वहाँ तेज दर्द होता है। इस आर्थराइटिस का असर ज्यादातर छोटे जॉइंट्स पर जैसे पैर और हाथ के अंगूठे पर होता है। अक्सर किसी पैर के अंगूठे के जॉइंट में बहुत तेज दर्द होता है, रोगी को पसीना आता है और शिवरिंग महसूस हो सकती है। जॉइंट के ऊपर की त्वचा बाद में काफी नाजुक और लाल हो जाती है। खाने पीने की कुछ चीजों से ये बीमारी बढ़ सकती है, जैसे कि अधिक शराब पीने से गाउटी आर्थराइटिस के पेशेंट्स में बीमारी और बढ़ सकती है। अब बात करते हैं इन्फेक्टिव आर्थराइटिस की। इन्फेक्शन की वजह से जॉइंट्स में सूजन होने लगती है और इसे इन्फेक्टिव आर्थराइटिस कहते हैं। अक्सर जो जॉइंट इस बीमारी का शिकार होते हैं वहाँ पहले कभी चोट लगी होती है, जिस कारण वहाँ जर्म्स इन्फेक्शन फैलाने में कामयाब हो पाते हैं। अगर समय पर इस पर काबू ना पाया जाए तो ये बीमारी लंबे समय तक परेशान कर सकती है।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आर्थराइटिस कितना गंभीर रूप धारण कर सकती है। आप लोगों को एक बात बता दूं, हम में से बहुत से लोग आर्थराइटिस को वृद्धावस्था में होने वाला रोग समझते हैं, जबकि ये बीमारी किसी भी उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले सकती है। और तो और, ये कोई एक बीमारी नहीं बल्कि 100 से अधिक बीमारियों का एक बड़ा समूह है। आइए देखते हैं क्या है आर्थराइटिस के सिम्टम्स और इस बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स क्या क्या फिजिकल एग्जामिनेशंस यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं।
1: आर्थराइटिस का एक ऐसा प्रकार भी है जिसकी वजह हमारे इम्यून सिस्टम में आई गड़बड़ी होती है। दरअसल हमारा इम्यून सिस्टम शरीर में आने वाले किसी भी फॉरेन पार्टिकल पर हमला करता है और उसे खत्म कर हमें रोगों से बचाता है। लेकिन कई बार हमारा इम्यून सिस्टम शरीर के किसी अंग को ही फॉरेन बॉडी मानकर उस पर हमला कर देता है। इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जब जॉइंट्स पर असर करता है तो इसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी के बाद जॉइंट कैविटी और साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। जॉइंट की इन्फ्लेमेशन से दर्द होता है, अकड़न पैदा होती है और जॉइंट के आसपास का एरिया गर्म और लाल हो जाता है। जैसे जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस का असर बढ़ता है, कार्टिलेज घिसती जाती है, कभी कभी हड्डियाँ आपस में फ्यूज होने लगती हैं। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि आर्थराइटिस केवल बुढ़ापे की समस्या है, पर ये रोग बच्चों और युवाओं को भी अपनी चपेट में ले सकता है। अगर सही समय पर इसके टेस्ट और ट्रीटमेंट नहीं कराए गए तो बच्चों को आगे चलकर चलने फिरने में भी दिक्कत हो सकती है। जुवेनाइल रिमेटॉइड अर्थराइटिस ऐसी ही एक आर्थराइटिस है जो बच्चों और युवाओं को शिकार बनाती है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस पर और बात करने से पहले जानते हैं ये बीमारी किस तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस से अलग है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस किसी भी उम्र के लोगों को शिकार बना सकती है। इस बीमारी का असर शरीर पर छोटे जॉइंट्स पर होता है, जैसे उंगलियों और अंगूठों के जॉइंट्स। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस बुढ़ापे की बीमारी है और इसका असर बड़े जॉइंट्स पर होता है, जैसे कंधे का जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट आदि। रिमेटॉइड अर्थराइटिस में शुरू से ही सूजन और दर्द होता है और ये समय के साथ बढ़ता जाता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन और दर्द काफी बाद में होता है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस में जॉइंट्स में दर्द अक्सर सुबह होता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में दर्द मूवमेंट करने से जॉइंट्स पर पड़ने वाले दबाव से होता है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस के डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। पेशेंट को दर्द कहां पर हो रहा है और दर्द कितना सीवियर है और कितने वक्त से है, ये अच्छे से समझा जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर दर्द वाली जगह की त्वचा, जोड़ और मसल स्ट्रेंथ का सही सही आकलन करते हैं। रिमेटॉइड अर्थराइटिस के डायग्नोसिस में एक खास तरह के ब्लड टेस्ट की भी मदद ली जाती है। दरअसल रिमेटॉइड फैक्टर, जिसे आर फैक्टर कहते हैं, एक खास तरीके का एंटीबॉडी प्रोटीन होता है जो कि रिमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट के ब्लड में पाया जाता है। हालांकि बीमारी की शुरुआत में ये आर फैक्टर एब्सेंट भी हो सकता है। इसके अलावा WBC और ESR टेस्ट के जरिए भी रिमेटॉइड अर्थराइटिस का डायग्नोसिस किया जाता है। ब्लड में सी रिएक्टिव प्रोटीन की मौजूदगी से इन्फ्लेमेशन की प्रेजेंस का पता चलता है, इसलिए सी रिएक्टिव प्रोटीन की मौजूदगी से भी RA की डायग्नोसिस में काफी मदद मिलती है। लेकिन ये टेस्ट रिमेटॉइड अर्थराइटिस होने के कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। इस टेस्ट से सिर्फ ये पता चलता है कि शरीर में इन्फ्लेमेशन प्रोसेस चल रही है। एक्सरे से रिमेटॉइड अर्थराइटिस के कारण हुई सूजन और जॉइंट्स को हुए नुकसान का आकलन किया जाता है। एक्सरे से सूजन काफी हद तक निर्धारित कर इलाज के निर्णय में डॉक्टर को आसानी होती है।
0: अब तो आप समझ ही गए होंगे, आर्थराइटिस बहुत से रूपों में शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सही ट्रीटमेंट एक सामान्य जीवन की संभावना को बढ़ा सकता है।
1: ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुख्य कारण हैं बढ़ती उम्र, ज्यादा वजन, असंतुलित आहार और व्यायाम की कमी।
2: व्यायाम करने से जो है, जो शरीर की मांसपेशियां हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, और जब शरीर की मांसपेशियां स्ट्रांग हो जाती हैं तो वो जोड़ों को आपस में घिसने से बचाती हैं। तो एक प्रकार से ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोकने के लिए और जल्दी उसको तकलीफ ना होने देने के लिए उसमें काफी फर्क पड़ जाता है। और मांसपेशियां अगर अच्छी होती है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी लेटर स्टेज में कम होती है। एक तो ये कि अपना वजन संतुलित रखें, और इस प्रकार का आपके जो खान पीन है उसमें इस प्रकार की है कि आपका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि नियमित रूप से व्यायाम कीजिए ताकि मांसपेशियां आपकी स्ट्रांग हो जाएं और वो जोड़ों को घिसने से बचाएं। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो कि अपना पोस्चर ठीक रखें, आपका बैठने का तरीका, आपका लेटने का तरीका या इस तरह की चीजें जो हैं उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगी।
1: गौटी अर्थराइटिस में चूंकि मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ होने से शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इसलिए इसे दवाइयों और खानपान में बदलाव कर काबू में किया जाता है। मरीज को शराब पीने से परहेज करना होगा और कुछ खाने की चीजों से परहेज करना होगा। गौटी अर्थराइटिस के पेशेंट्स को NSAID के अलावा कुछ खास दवाई दी जाती है, जैसे कि एलोप्रिनॉल और कॉल्चाइसिन। आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में पेशेंट को पेन और इन्फ्लेमेशन कम करने की नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी NSAID जैसे एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन दी जाती है। कुछ पेशेंट्स को स्टेरॉयड्स भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। जरूरत पड़ने पर जॉइंट्स में स्टेरॉयड्स के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट को कुछ एक्सरसाइज भी करने के लिए बताया जाता है। इन्फेक्टिव आर्थराइटिस में पेशेंट्स को NSAID दवाओं के अलावा एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में NSAID दवाओं के अलावा इम्यून सप्रेसेंट ड्रग दी जाती है। आर्थराइटिस के पेशेंट्स को हीट थेरेपी भी दी जाती है। हीट थेरेपी से रक्त का प्रवाह तेज होता है और मरीज की दर्द सहने की क्षमता भी बढ़ती है। आर्थराइटिस के बहुत बढ़ जाने पर कुछ पेशेंट्स को ऐसी डिवाइस इस्तेमाल करनी पड़ती है जिनसे जोड़ों को सपोर्ट मिलता है और जॉइंट्स मूवमेंट में दर्द कम होता है। इन डिवाइसेस की जरूरत तब पड़ती है जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है। कुछ अति गंभीर मामलों में डॉक्टर सर्जरी भी करते हैं। इन सर्जरीज में आती हैं नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। जॉइंट्स हमारे शरीर को मोबिलिटी यानी गतिशीलता प्रदान करते हैं। हमारे जॉइंट्स पर मौजूद नाजुक कवर को कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज से जॉइंट्स में लचीलापन आता है और मूवमेंट आसान होती है। कार्टिलेज के घिसने, उसमें बदलाव आने और इन्फ्लेमेशन होने को आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस को मोटे तौर पर चार श्रेणियों में बांटा गया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस बुढ़ापे की बीमारी है। ज्यादातर इसका असर बड़े जॉइंट्स जैसे कंधे और घुटने के जोड़ों पर होता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी उम्र के लोगों को अपना शिकार बना सकती है। ज्यादातर इसका असर शरीर के छोटे जॉइंट्स जैसे उंगलियों और अंगूठों के जॉइंट्स पर होता है। संतुलित भोजन, एक्सरसाइज और वजन को नियंत्रण में रखकर ऑस्टियोआर्थराइटिस को काफी हद तक काबू में रखा जा सकता है। आर्थराइटिस के पेशेंट का सामान्यतः NSAID और स्टेरॉयड से इलाज किया जाता है। कुछ अति गंभीर मामलों में डॉक्टर सर्जरी भी करते हैं, जैसे नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में NSAID के अलावा इम्यून सप्रेसेंट ड्रग दी जाती है।
3: कोकिला, आर्थराइटिस पेशेंट्स की पेनफुल लाइफ को देखकर दुख होता है, क्या हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं?
0: क्यों नहीं कर सकते, वही कर सकते हैं जो तुम कर रहे हो। यस, ह्यूमन सपोर्ट। दोस्तों, मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स तो अपना काम कर ही रहे हैं, मगर हम और आप भी आर्थराइटिस से जूझते लोगों की मदद कर सकते हैं। तो बस, बबलू जी की इस लाइफ के प्रति पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।
3: बाय।

हमारे देश में कृषि पर्यटन में काफी संभावनाएं हैं। देश में कुल 6.50 लाख गांव हैं। इसमें 14 करोड़ से ज्यादा किसान रहते हैं और इनमें लगभग 70% से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं। ऐसे में कृषि पर्यटन गांव में रहने वाले लोगों के लिए आय का अच्छा जरिया साबित हो सकता है। वैसे तो गांव की सुंदरता को रोजगार से जोड़ने के लिए कृषि पर्यटन की शुरुआत की गई, लेकिन कृषि पर्यटन शुरू करने के पीछे और भी कई कारण समझ आते हैं। जैसे कृषि जोत का आकार छोटा होना, युवाओं का शहर की तरफ पलायन और जलवायु परिवर्तन के कारण खेती में आने वाली परेशानियां, इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखते हुए कृषि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि पर्यटन खासकर उन शहरी लोगों के लिए अच्छा है जिनका बचपन आमतौर पर घर की चार दीवारी में ही बीत जाता है। वे अनाज, सब्जियां और दूध उत्पादन की प्रक्रिया को भी नहीं जानते। ऐसे लोगों को कृषि पर्यटन खेती के पारंपरिक तरीकों को देखने समझने का मौका देता है। कृषि पर्यटक स्थल पहाड़ी इलाकों में बनाए जा सकते हैं। अगर मैदानी इलाके में कृषि पर्यटक स्थल बनाना चाहते हैं, तो वहाँ की संस्कृति, पार्क और देसी तरीके से मिट्टी और बांस के बने आवास और खाने की सुविधा करनी चाहिए। कृषि पर्यटन स्थल बनाते समय कुछ जगहों को दृश्य स्थल में बदलकर वहाँ पर खेती के पुराने तरीकों और मशीनों का म्यूजियम बना सकते हैं। इसके अलावा कृषि पर्यटक स्थल पर आने वाले पर्यटकों के लिए खेती, बागवानी और पशु उत्पादन से जुड़े कामों का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। पिछले काफी समय में लोगों की आय भी बढ़ी है और घूमने का शौक भी बढ़ा है। ऐसे में आने वाले समय में कृषि पर्यटन बहुत बड़ा विकल्प बन सकता है, जो न सिर्फ प्रकृति की गोद में जाने का मौका देता है, बल्कि ग्रामीण आबादी को रोजगार भी देता है।

नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी रसोई में मौजूद साधारण दिखने वाला ड्रमस्टिक, जिसे सहजन भी कहते हैं, सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। ये सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि पोषण से भरपूर एक सुपर फूड है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ड्रमस्टिक के जबरदस्त फायदे, इसे

पाचन में सुधार करता है। ये फाइबर से भरपूर होता है जिससे पेट की समस्याओं जैसे गैस, अपच और कब्ज से राहत मिलती है। ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए यह बेहद फायदेमंद है क्योंकि यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। दिल की सेहत के लिए फायदेमंद, इसमें पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो ब्लड प्रेशर को संतुलित रखते हैं और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करते हैं। त्वचा और बालों के लिए लाभकारी, ड्रम स्टिक का सेवन करने से त्वचा चमकदार बनती है और बालों की ग्रोथ बेहतर होती है। ड्रम स्टिक का उपयोग कैसे करें? अब जानते हैं कि इसे अपनी डाइट में कैसे शामिल करें। सब्जी, ड्रम स्टिक को आलू, टमाटर और हल्दी के साथ मिलाकर स्वादिष्ट सब्जी बनाई जा सकती है। सूप, इसका सूप बनाने से आपको इसके पोषक तत्व पूरे मिलते हैं। पाउडर, ड्रम स्टिक की पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर बना सकते हैं जिसे स्मूदी या दूध में मिला सकते हैं। चाय, ड्रम स्टिक की पत्तियों की चाय भी बहुत फायदेमंद होती है। ध्यान देने योग्य बातें, दोस्तों हालांकि ड्रम स्टिक सेहत के लिए फायदेमंद है लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अत्यधिक सेवन से पेट में जलन या डायरिया हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। अगर आपको कोई एलर्जी हो तो पहले डॉक्टर से सलाह लें। तो दोस्तों ये थे ड्रम स्टिक के अद्भुत फायदे।

आप जानते हैं पपीता बहुत ही महत्वपूर्ण फल है। ये एक ऐसा फल है जो सबसे कम समय में फल उत्पादन देता है। इसके इसी गुण के चलते पूरे भारत में इसकी खेती बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है। लेकिन ऐसे क्षेत्र जहां पर गर्मी बहुत अधिक होती है और ठंड बहुत पड़ती है, उन क्षेत्रों में पपीते की खेती में तरह तरह की बाधाएं या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इनसे बचने के लिए हमारे पास विकल्प भी बड़े सीमित से हैं। लेकिन यह जानना आवश्यक है कि जो वर्तमान में मौसम चल रहा है, ये मानसून का समय चल रहा है, मानसून पूरे भारत में सक्रिय है, ऐसे में हम पपीते की खेती में क्या कर सकते हैं। पहले जानना यह आवश्यक है कि वो कौन कौन सी किस्में हैं जिनका उत्पादन करना चाहिए। पपीते में दो तरह की किस्में होती हैं, एक द्विलिंगी होती है, दूसरा उभयलिंगी होती है। द्विलिंगी किस्में ऐसी हैं जिनका नाम है, जैसे पूसा नन्हा है, पूसा ड्वार्फ है, पंत पपीता एक है, दो है, इस तरह की किस्में द्विलिंगी कहलाती हैं। इसमें नर अलग होता है और मादा अलग होता है। इस तरह की किस्मों को उत्पादन करने में एक अच्छी बात यह होती है कि इसमें जितने भी मादा पौधे होते हैं उनमें समान रूप से फूल भी आता है, फल भी आता है और उत्पादन अच्छा होता है, खास करके उत्तर भारत और मध्य भारत और पश्चिम भारत के क्षेत्रों में। लेकिन समस्या ये होती है कि आपके खेत में जो 100 पौधे होंगे मान लीजिए, तो उसमें से 50 पौधे नर के होंगे, जिनको आपको जिसमें से 40 आपको हटाने पड़ेंगे, सिर्फ 10 रखने पड़ेंगे, ताकि जो परागण और निषेचन की प्रक्रिया हो अच्छे से पूरी हो सके। इसके चलते होता क्या है कि जब हम एक हेक्टेयर के लिए पपीता लगाते हैं तो हमें एक गड्ढे में 2 से 3 पौधे लगाने पड़ते हैं, ताकि अधिक से अधिक पौधे हमें मादा मिले और 80 से 90% जो पौधे हों उसमें फल आए और केवल 8 से 10% पौधे नर के रहें। अगर नर के पौधे अधिक दिखाई पड़ते हैं तो उन्हें हमें हटाना भी पड़ता है। लेकिन उभयलिंगी किस्में जैसे सिंटा रेड लेडी है, अर्का सूर्या है, अर्का प्रभात है, ये ऐसी किस्में हैं जिनमें नर और मादा की समस्या नहीं होती है। इसमें दो तरह के पौधे होते हैं, या तो मादा होगा या उभयलिंगी होगा। उभयलिंगी जो है ये दक्षिण भारत के क्षेत्रों में या ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो होती है उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस करता है। अनुकूल तापमान अच्छा यही रहता है कि 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहे, तो पपीते की खेती बहुत अच्छे से हो सकती है। लेकिन उत्तर भारत के क्षेत्रों में और पश्चिम भारत में जो उभयलिंगी पौधे होते हैं, इसमें 2 से 3 तरह के फल होते हैं और मौसम के अनुसार फल का जो आकार है, चूंकि जो फूल आता है उसमें अंडाशय जो होता है उसका आकार बदलता है मौसम के अनुसार, इसीलिए परिणाम स्वरूप जो फल होता है उसका भी आकार बदलता है। इसलिए उन चीजों का ध्यान रख के ही किस्मों का चुनाव करें। अब आता है कि पौधे को किस समय लगाएं। पौधा जब भी आपको रोपाई करनी हो

पूरे भारत में अलग अलग मौसम है, लेकिन सामान्य रूप से दो मौसम प्रमुखता पूरे देश में एडाप्ट किया गया है या पालन किया जाता है। एक है कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में रोपाई करें, दूसरा है 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में रोपाई करें। हालांकि दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में दिसंबर के महीने में भी रोपाई करते हैं, लेकिन ऐसे क्षेत्र बड़े सीमित हैं जो तमिलनाडु या उसके आसपास के क्षेत्र हैं। अगर आपको 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में रोपाई करनी है तो पौध उससे करीब 2 महीना पहले तैयार करना होगा। जो मौसम अभी चल रहा है इसमें या तो आपने अपनी पौध तैयार कर रहे होंगे या तैयारी शुरू कर दी होगी। अगर आपको अक्टूबर के मध्य में रोपाई करनी है तो यथाशीघ्र उस पौध की तैयारी शुरू कर दें। अगर पौध आपकी चल रही है तो उसकी अच्छे से देखभाल करें। यह नेट हाउस या पॉली हाउस में हो तो बेहतर है, क्योंकि खुले में इस मौसम में जो विषाणु फैलाने वाले कीड़े होते हैं, खास करके सफेद मक्खी और माहू, इनकी प्रचुर संख्या उपलब्ध रहती है। इससे खुले में उनमें विषाणु का जो प्रकोप है वो पौधे की शुरुआत में ही काफी फैल जाता है, और जब आप इसकी रोपाई करेंगे तो ये तेजी से प्रकट होगा। उससे बचने का तरीका है कि हम इनको नेट हाउस या पॉली हाउस मंगाए। साथ ही साथ अधिक बारिश होने से पौधे के सड़ने की भी संभावना रहती है, उससे भी बचाव हो जाता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर पॉली हाउस है तो उसमें एग्जास्ट फैन या हवा अंदर से बाहर करने वाला अवश्य होना चाहिए, नहीं तो जब भी तापक्रम ऊपर हो जाएगा 37 डिग्री या 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा तो तना और जड़ सड़न रोग की समस्या नर्सरी में या पौधशाला में बढ़ जाएगी। एक बार आपकी पौध जब 6 से 8 सप्ताह की हो जाती है तो उसके हिसाब से आप उसकी रोपाई कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर आपको फरवरी और मार्च की रोपाई करनी है तो आपको पौध की तैयारी खास करके उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में अक्टूबर महीने में की जाती है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी के महीने में अंकुरण नहीं हो सकता। तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है तो अंकुरण नहीं होता, इसलिए हमें उसकी तैयारी पहले करनी पड़ती है। और दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक जो आपकी पौध है वो तैयार रहती है और कम तापक्रम के चलते नई बढ़वार नहीं होती है, पौध यथास्थिति में पॉली हाउसेज में बनी रहती है। बाद में हम उसी की रोपाई 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में करते हैं। अगर आपकी फसल पहले से लगी हुई है या फरवरी मार्च 2018 में आपने रोपाई करी है तो उस फसल में अभी फूल आ रहा होगा, नए फल लग रहे होंगे। सामान्य रूप से देखा यह जाता है कि जहां जहां उभयलिंगी किस्मों की प्रमुखता है उस क्षेत्र में इस मौसम में फल जो रुकता है वो कम, उसकी संख्या कम हो जाती है। खास करके उभयलिंगी पौधों में जहां पर जो उसका स्टिग्मा होता है वहां कोई ना कोई ऐसा इन्फेक्शन फफूद का हो जाता है, क्योंकि मौसम में आर्द्रता बहुत ज्यादा है और फफूद काफी फैला होता है। उससे बचने का तरीका ये किया है कि बीच बीच में 10 से 15 दिन के अंतराल पर हमें 1 ग्राम बॉबिस्टीन प्रति लीटर में जल में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। साथ ही साथ आप एक समस्या और देखते होंगे कि जो फल लग रहा है वो कुछ दिन के बाद गिर जाता है, फल गिरने की समस्या होती है। मूल रूप से उसका जो कारण यही होता है कि फल का निषेचन प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। उसको पूरा करने के लिए या कोई आपको रोग आया है फफूंद जनित, जो स्टिग्मा के हिस्से में आता है वहां से रोग आता है, तो उससे बचने का तरीका यही है कि बॉबिस्टीन की 1 ग्राम मात्रा को 1 लीटर जल में घोल के छिड़काव करें। साथ ही साथ जो अन्य हार्मोन होता है उसके 20 ppm की मात्रा को, मतलब 20 मिलीग्राम 1 लीटर जल में घोल के छिड़काव करेंगे तो ये जो हार्मोन से होने वाले फल गिरने की समस्या है वो कम हो जाएगी और जो आपके फूल आएंगे वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी के आएंगे, ताकि उनका परागण और निषेचन भी अच्छे से हो सके। यदि आपको किसी कारण से अन्य हार्मोन नहीं मिलता है बाजार में तो आप तमाम ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनकी मात्रा का ध्यान रखें, खास करके जिंक सल्फेट और बोरान है। आजकल तमाम निजी क्षेत्रों की कंपनियां ऐसे उत्पाद को लिक्विड फॉर्म में, तरल पदार्थ की मात्रा में भी बेच रहे हैं, जिनकी सभी लोगों ने एक ही मात्रा रखी है कि 2.5 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर जल में घोलकर छिड़काव करें तो उसमें जिंक सल्फेट भी मिल जाता है पौधे को, बोरान भी मिल जाता है और मॉलिब्डेनम भी मिल जाता है, कॉपर भी मिल जाता है, आयरन भी मिल जाता है। इन सारे के होने से जो फूल और फल बनने की प्रक्रिया है उसमें काफी सुधार होता है और फल गिरने की समस्या कम हो जाती है। दूसरी समस्या ये आती है इस मौसम में कि आप देखेंगे तरह तरह के विषाणु रोग आते हैं। एक जिसे पर्ण कुंचन रोग कहते हैं या लीफ कर्ल वायरस कहते हैं, वो बहुत ज्यादा फैलता है इस मौसम में। पहला ध्यान ये रखें कि खेत में कोई भी खरपतवार ना होने दें। दो कीड़े जैसे सफेद मक्खी और माहू, दोनों ही विषाणु फैलाते हैं। सफेद मक्खी पर्ण कुंचन या मरोड़िया रोग को फैलाती है।
और माहू जो है वो रिंग स्पॉट वायरस या पपीता रिंग स्पॉट वायरस, छोटे छोटे रिंग नुमा शक्ल बन जाती है पत्ते पे, पत्ते टेढ़े मेढ़े जाते हैं, उस रोग को फैलाता है। और दोनों को बचने का कोई सीधा तरीका नहीं है। एक तरीका यह है कि ये दोनों ही कीड़े जो फैलाते हैं रोग को, ये मूल रूप से पपीते के ऊपर रहते नहीं या उनके ऊपर इनका पोषण नहीं होता। ये आसपास की झाड़ियों में या खरपतवार के बीच में छुपे रहते हैं या आसपास की फसलों पर रहते हैं। तो पहला ध्यान यह देंगे आपके खेत में बिल्कुल भी खरपतवार ना हो, पानी ना रुकने पाए कहीं पर, जिसके चलते कि कहीं जड़ सड़न की समस्या हो जाए या तना गलन की समस्या हो जाए। तो खेत ऊंचा हो या अगर पानी रुकता भी है तो जल निकास की उचित व्यवस्था करें कि जैसे ही बारिश हो पानी निकाल दें। अब आई बात कि खाद एवं उर्वरक की। अगर खाद और उर्वरक आपके यहाँ पहले से पड़ा हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी पड़ा है तो आपको उसकी टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए। पपीते में सामान्य रूप से 8 से 10 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद हम डालते हैं जब हम पौध की रोपाई करते हैं, उससे ठीक एक हफ्ते पहले या दो चार दिन पहले। दूसरा है कि जो उर्वरकों की मात्रा है ये काफी आवश्यक है, क्योंकि नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम की आवश्यकता काफी बड़ी मात्रा में पपीते को होती है। और पपीता अपने आप में एक ऐसा फल है कि जिसमें एक ही समय पर नए पत्ते भी आते हैं, पौधे की बढ़वार भी होती है, फूल भी आता है, फल का विकास भी होता है और कुछ फल पकने को भी तैयार हो जाते हैं। ये प्रक्रिया साथ साथ चलती है, इसलिए नाइट्रोजन और पोटास की जो मात्रा है उसको हम बाकी की 3 से 4 बार अलग से डालते हैं। सामान्य रूप से 125 से 135 दिन के बीच में इसके फल पकने शुरू हो जाते हैं या पकने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कई बार तापक्रम में घटाव या बढ़ाव के चलते ये दिन घट और बढ़ भी सकते हैं। एक अच्छा तरीका यह है, आप कोई भी एक निडिल लीजिए जिसमें पहले से कोई इन्फेक्शन ना हो, उसको हल्का सा आप फल के ऊपर, जो फल आपको लगता है कि पुराना है बड़ा हो गया है और हल्का हल्का उसमें गाढ़ा हरा रंग है या हल्का पीला की तरफ जा रहा है, तो उसके ऊपर हल्का सा निडिल को छुआइए। अगर वहां से दूध निकलता है तो इसका मतलब फल बिल्कुल तैयार नहीं है तोड़ने के लिए या पकने के लिए। अगर दूध नहीं निकलता है, पानी हल्का सा पानी निकलता है और वो आपके फल की सतह पर ही रुक जाता है, गिरता नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका फल पूरी तरह से पकने के लिए तैयार है। ऐसे फल को तोड़कर आप बाजार में बेच सकते हैं। दूसरी एजेंसियां हैं, जैसे आप कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, दिल्ली के बाजार में फल आता है या गुजरात से आता है, छत्तीसगढ़ से आता है, ये सारे कच्चे फल ही दिल्ली तक आते हैं, कलकत्ता तक या मुंबई तक जाते हैं। वहां पे जो अलग एजेंसियां हैं वो इनको जो इथिलीन के चैम्बर्स होते हैं उनमें डाल के पका के फिर जो आसपास के बाजार में होते हैं वहां इनका विपणन करती है। किसी भी ऐसे रसायन का प्रयोग ना करें जिससे कि स्वास्थ्य पे जो भी उपभोक्ता है उसका विपरीत प्रभाव पड़े, खास करके कार्बाइड जैसी चीजों का बिल्कुल प्रयोग ना करें। और इथरल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कभी भी फल पका के उसको फिर बाजार के लिए ना जाएं, क्योंकि पपीते का फल बहुत नाजुक होता है, जब भी आप इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तो बहुत जल्दी इसमें नुकसान होता है। इसलिए कच्चे फल का ही विपणन करें, लेकिन वो फल जो पकने के लिए तैयार हो।

नमस्कार, आज का टॉपिक है मकोई और उसके बेनिफिट। दोस्तों, मकोई ब्लैक नाइट और नाइट शेड काकमाची और भटकोइया पिलपोटन भी कहते हैं। ये एक छोटा सा पौधा है जो भारतवर्ष के छाया युक्त स्थानों में हमेशा पाया जाता है। मकोई में पूरे वर्ष फूल और फल देखे जा सकते हैं। मकोई में शाखा युक्त 1.5 फुट तक ऊंची तथा शाखाओं पर उभरी हुई रेखाएं होती हैं। इसके पत्ते हरे, अंडाकार या आयताकार, दंतुर या खंडित, 2 से 3 इंच लंबे, 1.5 इंच तक चौड़े होते हैं। फूल छोटे, सफेद वर्ण रंग, बहिकक्षीय फूल दंडों पर 3 से 8 के गुच्छों में नीचे झुके होते हैं। मकोई का फल छोटे, चिकना गोलाकार, अपरिक्व अवस्था में हरे रंग के और पकने पर नीले या बैंगनी रंग के, कभी कभी पीले या लाल होते हैं। बीज छोटे, चिकने, पीले रंग के, बैंगन के बीजों की तरह होते हैं, परंतु बैंगन के बीजों से बहुत छोटे होते हैं। पकने पर फल मीठे रहते हैं। दोस्तों, अब बताता हूँ कि मकोई किन किन बीमारियों में फायदेमंद है। मकोई पंचांग, जड़, तना, पत्ता, फूल और फल के काढ़े का सेवन गठिया का दर्द, सूजन, खांसी, घाव, पेट फूलने, अपच, मूत्र रोग में फायदा पहुँचाता है। कान दर्द, हिचकी, जुकाम, आंखों के रोग, उल्टी और शारीरिक कमजोरी में भी लाभ होता है। इसके पत्ते एवं फल का सेवन से पेट का अल्सर ठीक होता है। इसके बीज भ्रम, बार बार प्यास लगने, सूजन और त्वचा रोग में फायदेमंद है। मकोई की प्रकृति डायूरेटिक होती है। अगर आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि किसी कारणवश आपको रात में नींद नहीं आती या फिर काफी डर लगने लगता है, तो मकोई का सेवन करना नियमित रूप से शुरू कर लें। इससे आपको चिंता आदि कम करने में भी राहत मिलती है। इसमें चिकित्सीय गुण होते हैं जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में मदद करते हैं। मकोई में फाइटोकेमिकल्स होते हैं और साथ में ही एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं, जिससे यूटीआई बार बार नहीं होता है। मकोई का सेवन करने से वेजिनल सेक्रेशन और यूरिन आउटपुट में इजाफा होता है। इससे शरीर के अंदर मौजूद सारे बैक्टीरिया बाहर आने में मदद होती है, जिस कारण सारे बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाते हैं और अगली बार यूटीआई होने का रिस्क भी कम हो जाता है। दोस्तों, अब बताता हूँ कि किस रोग में कैसे प्रयोग करें। मकोई के पत्ते, पान का पत्ते तथा हल्दी से पेस्ट बना लें। इसका लेप करने से पुराने घाव, चोट लगने से होने वाले घाव, रोम छिद्र की सूजन, मवाद वाले घाव, दाद, खाज, हर्पीज आदि, एंथेक्स आदि में लाभ होता है। मकोई के पके फल को मधु के साथ सेवन करें, इससे टीबी की बीमारी में फायदा होता है। मकोई फलों को पीसकर सुखा लें, इसे गर्म करके लेप के रूप में लगाएं। इससे शरीर के सभी अंगों में होने वाले सूजन में लाभ होता है। मकोई के सेवन से हमारी किडनी हेल्दी रहती है। अगर किसी को बार बार पेशाब आने की समस्या हो, किडनी एरिया में सूजन की समस्या हो, तो मकोई का रस या मकोई से बहुत अधिक लाभ होता है। ये फाइबर से भरपूर फल होता है, इसीलिए पेट को साफ रखने में मददगार होता है। मकोई फल खाने के साथ साथ 10 से 15 मिलीग्राम मकोई के अर्क को रोज पिलाने से किडनी में सूजन, किडनी के दर्द तथा किडनी रोगों आदि बीमारी में लाभ मिलता है। आजकल कैंसर की समस्या एक चिंता का विषय बन चुकी है। मकोई के फल में कैंसर रोधी गुण होते हैं। मकोई कैंसर सेल्स के डेवलपमेंट को रोकता है। ये ट्यूमर के निर्माण को रोकने के लिए भी लाभकारी बताया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में मकोई का सेवन प्रभावी हो सकता है। इसमें हाइपोग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके डायबिटीज को मैनेज करने के लिए जाने जाते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण कई घातक स्वास्थ्य समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। मकोई से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी नियंत्रित रहता है, जिससे हार्ट स्ट्रोक और हार्ट डिजीज का खतरा कम हो जाता है। पीरियड क्रैम्प्स में महिलाओं को दर्द और ऐंठन का सामना करना पड़ता है, जो बहुत असहनीय होता है। ऐसे में वह पेन किलर्स का सहारा लेती है। दर्द निवारक दवाइयों पर निर्भर होने की जगह आप इस शक्तिशाली जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर सकती है, खासकर मकोई बेल। मकोई फल में ब्लैक नाइट शेड होते हैं, जिनमें एंटीपायरेटिक एजेंट मिलते हैं, जिनको पेन किलर में उपयोग किया जाता है। यह जल्दी दर्द में राहत दे सकते हैं। लीवर तथा तिल्ली के रोगों के लिए मकोई स्वरस, भूमि आंवला स्वरस यथा पुनर्नवा स्वरस का सेवन अति उत्तम अकाट्य उपचार है। तो दोस्तों, है ना मकोई फायदेमंद आपके और हम सबके लिए

पपीता खाने के जबरदस्त फायदे। पपीता स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इसका सेवन न सिर्फ पाचन तंत्र को मजबूती देता है बल्कि ये मोटापे को कम करने में भी सहायक है। हर रोज पपीता खाने से कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। आइए जानते हैं इसके सेवन के फायदों के बारे में। पेट की बीमारी के इलाज में है पपीता लाभकारी। अगर आपको कब्ज की समस्या है तो रोजाना पपीते का सेवन करें, इससे पेट साफ होगा। आंखों की रोशनी बढ़ाने में पपीता लाभकारी। पपीते में विटामिन सी तो भरपूर होता ही है, साथ ही विटामिन ए भी पर्याप्त मात्रा में होता है। विटामिन ए आंखों की रोशनी बढ़ाने के साथ ही बढ़ती उम्र से जुड़ी कई समस्याओं के समाधान में भी कारगर है। हृदय संबंधी बीमारियों के इलाज में पपीता लाभकारी। पपीते में फाइबर, पोटेशियम और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इसलिए आपको रोजाना पपीते का सेवन जरूर करना चाहिए। पपीते का सेवन गठिया की बीमारी में भी फायदेमंद है। दरअसल इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी एंजाइम पाए जाते हैं, जो गठिया के कारण होने वाले दर्द को दूर करने में मदद करता है। एक अध्ययन के मुताबिक जो लोग नियमित रूप से पपीते जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं, उन्हें गठिया होने की संभावना ज्यादा होती है। मोटापे को कम करने में भी सहायक। एक मध्यम आकार के पपीते में 120 कैलोरी होती हैं। ऐसे में अगर आप वजन घटाने की बात सोच रहे हैं तो अपनी डाइट में पपीते को जरूर शामिल करें। इसमें मौजूद फाइबर्स वजन घटाने में मददगार होते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में पपीता फायदेमंद। पपीते में उच्च मात्रा में फाइबर मौजूद होता है, साथ ही ये विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है। अपने इन्हीं गुणों के चलते ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में काफी असरदार है। इसी तरह से पपीते के सेवन करने से और भी अनेक फायदे हो सकते हैं, जैसे डेंगू बुखार को ठीक करने में कारगर, लीवर को रखे स्वस्थ, इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार, त्वचा के लिए फायदेमंद और बालों के लिए भी फायदेमंद।

0: खुलबी के साथ बदलते भारत की शान।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। जब भी बात होती है किसी सफर की या फिर फैमिली पिकनिक की, तो ऐसे में मूंगफली की चर्चा ना हो ये बात अधूरी रह जाती है। सोंधी सोंधी मूंगफली का जब एक एक दाना मुंह में पड़ता है तो सफर का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। वही पिकनिक के रोमांच की बात करें तो इसमें भी वृद्धि हो जाती है। सर्दियों में तो मूंगफली को काफी पसंद किया जाता है। किसी को सफर में कच्ची मूंगफली पसंद होती है, किसी को भुनी हुई, किसी को रोस्टेड, किसी को गुड़ वाली पट्टी पसंद होती है। यानी मूंगफली एक, जायके अनेक। आज के कृषि विशेष में इसी के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर मूंगफली को लेकर क्यों है इतना क्रेज, कैसे इसकी खेती की जा सकती है, हमारे देश में लगातार कैसे इसकी खेती बढ़ रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की।

0: मूंगफली भारत की प्रमुख तिलहनी फसलों में से एक है। इसकी खेती देश के तकरीबन सभी राज्यों में होती है, लेकिन जहां उपयुक्त जलवायु होती है वहां मूंगफली की फसल बेहतर और दाने पुष्ट होते हैं। देश में आज बहुत से किसान अपनी परंपरागत खेती को छोड़ नकदी फसलों की खेती करने में लगे हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि पारंपरिक खेती में आमदनी अठन्ने और खर्चा रुपया जो होने लगा था। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि किसानों को अगर अपनी आमदनी बढ़ानी है तो मूंगफली की खेती एक मुनाफे की खेती जरूर साबित हो सकती है, क्योंकि ये रबी और खरीफ के बीच कम समय की फसल होती है, लेकिन अब इसकी खेती साल भर की जा सकती है। मूंगफली की खेती के लिए मिट्टी दोमट या बलुई हो तो सोने पर सुहागा माना जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो खेत की 4 से 5 बार की जोत करा लेनी चाहिए।
1: तो किसान की मूंगफली खेती जो है वो बलुई दोमट भूमि में अच्छी खेती होती है। इसके साथ साथ किसान हमारा अच्छा बीज TG37A और प्रजाति GG2 ICV11 तो ये प्रजातियों का चयन करता है और अच्छा उत्पादन ले रहा है। ये सारी प्रजातियां समर की हैं, समर ग्राउंडनट की हैं। मूंगफली हमारे इस क्षेत्र में धीरे धीरे अपना जो है क्षेत्र पर बढ़ा रही है। हमारे किसान भी खुश हैं कि मूंगफली की पैदावार 3.5 से 4 क्विंटल प्रति बीघे के करीब हमारे किसान भाई कर रहा है, तो निश्चित है कि 25 से 30 हजार रुपये प्रति बीघे मूंगफली हमारा किसान बेच रहा है। इसके बाद उसमें लागत बीज की अलावा आती है, बहुत ज्यादा नहीं आती है।
2: कृषि विज्ञान केंद्र पर हमारे मृदा वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र मैनपुरी पर मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर आर एन सिंह की नियुक्ति है और वो सॉयल टेस्टिंग लैब को संभालते हैं और जिले के काफी लोगों को जागरूक करते हैं, जिससे वो सॉयल का टेस्ट करा के उसी आधार पर फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करते हैं और उर्वरकों का सही संतुलन प्रयोग करते हैं। उनका बड़ा रोल है।
0: सूर्य की अधिक रोशनी और उच्च तापमान मूंगफली के पौधे की बढ़त के लिए अनुकूल माने जाते हैं। अच्छी फसल के लिए कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक माना गया है। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि खरीफ सीजन की फसल जून महीने के दूसरे पखवाड़े से लेकर जुलाई के दूसरे पखवाड़े तक मूंगफली की बुआई की जा सकती है। आइए जानते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान कैसे करते हैं मूंगफली की खेती।
3: मूंगफली जो है खेती हमारे पूर्वज लोग करते थे, लेकिन उतनी अच्छी पैदावार नहीं होती थी जो आज इस वक्त पैदावार हो रही है। ये सब कृषि विज्ञान की देन है। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र जाजपुर बंजारा में है। डॉक्टर लोग यहाँ आते हैं, बतलाते हैं कि ये फसल वो ये वो, उसी के आधार पर मैंने यहाँ मूंगफली लगाई और हर साल की अपेक्षा इस साल जो है प्रोडक्शन अच्छा दिखाई दे रहा है।
4: मूंगफली एक ऐसी फसल है जिसमें कम लागत लगती है लेकिन किसानों को अच्छी उपज मिलती है, यानी मुनाफा भरपूर होता है। सरकार भी इसकी खेती को काफी प्रोत्साहित कर रही है और प्रशिक्षण केंद्र भी खोले जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में हमारी इस रिपोर्ट में।
0: कम समय और कम लागत में भरपूर पैदावार होने के कारण यहाँ के किसान काफी खुशहाल हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार भी बड़े ही शिद्दत से काम कर रही है। देश के हर जिले में किसान सहायता केंद्र खोले गए हैं और वहाँ कृषि विशेषज्ञों की तैनाती भी की गई है, जो समय समय पर किसानों को महत्वपूर्ण सलाह देते रहते हैं। आइए जानते हैं यहाँ के किसान सरकार की व्यवस्था से कैसे लाभान्वित हो रहे हैं।
5: हम ग्राम हरियरपुर में, हमारे यहाँ मूंगफली का क्षेत्रफल लगभग 35,000 के हेक्टेयर के लगभग यहाँ पर मूंगफली का क्षेत्र होता है बहुत बड़े स्तर से। इसमें हम लोग जो मूंगफली करते हैं, इसमें हमारे जो है पानी 5-4-5 पानी में मूंगफली पककर तैयार होती है, जिसमें जो है लागत हमारी जो है बहुत कम है और इसका रेट बहुत अच्छा मिलता है। सुखाने के बाद हम लोग जो है मार्केट में ले जाते हैं, इसका जो उचित रेट मिलता है, जिससे हम लोगों को बहुत अच्छी फायदा होती है मूंगफली के।
6: खरीफ सीजन की भी उन्नतशील प्रजातियों को रिलीज करके गांव-गांव पहुंचाने की, जिले-जिले पहुंचाने की हम लोग प्रयास करते हैं। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र मैनपुरी में स्थापित है, यहां के भी वैज्ञानिक प्रचार प्रसार करने में हमारी इन प्रजातियों का काफी सहयोग प्रदान करते हैं।
7: जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं वो जन जन तक सहभागिता के साथ पहुंचे, इसके लिए सबसे पहले तो ये प्रयास किया गया कि जैसे पहले किसान जागरूक नहीं था, चूंकि ये धान की बेल्ट है तो पोस्टली किसान यहाँ धान गेहूं दो ही चीजें किया करता था। धीमे धीमे हम लोगों ने किसानों को जागरूक करना शुरू किया। प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर जाकर के जो हमारे कर्मचारी थे उन्होंने जाकर वहाँ कार्यशालाएं की, किसानों को प्रशिक्षित किया।
4: इसी के साथ ही यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जानेंगे कि मूंगफली का क्या है इतिहास, कहाँ से हुई इसकी शुरुआत और कैसे आज के समय में पूरे विश्व में इसका व्यापार हो रहा है। साथ ही आपको जानकारी देंगे मूंगफली के पोषक तत्वों के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहे कृषि विशेष।

0: कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज कृषि विशेष में हम बात कर रहे हैं मूंगफली की। मूंगफली एक तिलहन है, लेकिन इसके तेल का जायके के लिए इस्तेमाल आम आदमी की पॉकेट पर काफी भारी पड़ता है। विश्व भर में मूंगफली के उत्पाद काफी लोकप्रिय हैं और इसका व्यापार भी होता है। आइए अब आपको बताते हैं कि मूंगफली की शुरुआत कहां से हुई, क्या है इसका इतिहास, और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्यों इसे कहा जाता है आम आदमी का मेवा, यानी क्यों है ये पोषक तत्वों से भरपूर। तो आइए नजर डालते हैं अपनी इस रिपोर्ट पर।
2: मूंगफली का अंग्रेजी नाम पीनट है और इसका वैज्ञानिक नाम है आर्चीज हाइपोगिया। ये मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि करने वाली लेग्यूमिनोसी कुल की फसल मानी जाती है। मूंगफली की उत्पत्ति ईसा से करीब 1500 वर्ष पूर्व दक्षिण अमेरिका में बताई जाती है। फूड इतिहासकारों की माने तो मूंगफली को विश्व में सबसे पहले ब्राजील में उगाया गया। आज विश्व के 113 देशों में मूंगफली की खेती होती है। जिन देशों में मूंगफली की प्रमुखता से खेती होती है उनमें चीन और भारत के अलावा प्रमुख हैं नाइजीरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, सूडान, म्यांमार, चाड और अर्जेंटीना। चीन के बाद भारत मूंगफली की खेती में दूसरा स्थान रखता है और सर्वोत्तम क्वालिटी की पैदावार देता है। आंकड़े भी इस बात के गवाह हैं कि विश्व में मूंगफली की कुल पैदावार का 50% हिस्सा भारत और चीन पैदा करता है। दुनिया में मूंगफली की कुल उपज 4,40,41,913 टन के करीब है। इसमें अकेले भारत 68,57,000 टन मूंगफली की भागीदारी करता है। भारत में गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों में सबसे अधिक इसकी फसल उगाई जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा पंजाब की फसलें भी उम्दा होती हैं।
3: देखिए, इस समय अगर मूंगफली के बाजार को खास फोकस किया जाए तो खास तौर से यूपी की मंडी और गुजरात की मंडी पे यहाँ पर ज्यादा जो है वो अट्रैक्शन देखने को मिलता है और ज्यादातर इन मंडियों को देख करके ही बाहर की जगह और सभी मंडियों के रेट डिसाइड होते हैं। फिलहाल अभी अगर इस समय देखते हैं तो यूपी की मंडियों में काफी डोमेस्टिक लेवल पे जो छोटी छोटी मंडियां हैं उनमें भी काफी दामों में तेजी का दौर देखने को मिल रहा है और आगे आने वाले समय में चूंकि निर्यात की डिमांड यहां पर ज्यादा निकल कर देखने को मिल रही है तो उसका फायदा भी आगे आने वाले समय में किसान भाई बहनों को मिलता हुआ नजर आएगा।
4: और मूंगफली की खेती जो हमारे किसान भाई कर रहे हैं तो उनका मैंने अनुभव शेयर किया। मैंने कहा भाई मूंगफली की खेती, तो किसानों का भी ये जवाब आया और हमने भी यही बताया कि मूंगफली की खेती के दो फायदे हैं। एक तो इसकी पैदावार जो है बहुत अच्छी है और इसके मार्केट में इस समय रेट भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। मक्का की तुलना में ये करीब जो है 2-3 गुने रेट से जाती है, करीब 6,000 से 7,000 रुपये प्रति क्विंटल हिसाब से मूंगफली हमारे मार्केट में चल रही है।
2: अगर हम इसकी पौष्टिकता की बात करें तो मूंगफली में भी बड़े बड़े गुण हैं। पीनट का तेल अगर आप खाने में इस्तेमाल करते हैं तो स्वास्थ्य में लाभकारी होता है और ऊर्जा में वृद्धि करता है, शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होने देता। वहीं विटामिन B6, B9, बी कॉम्प्लेक्स, पेंटोथेनिक एसिड के अलावा एंटीऑक्सीडेंट का बहुत अच्छा सोर्स भी है जो कई तरह की बीमारियों में लाभदायक होता है।
4: मूंगफली एक ऐसी फसल है जिसमें प्रोटीन और इसमें ऑयल कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, अच्छी मात्रा में होता है, तो बहुत सारे इसमें फील्ड में इसका प्रयोग करते हैं और किसान हमारा जो है अच्छा मार्केट इसको आसपास मिल जाता है, इसको किसी प्रकार से इसमें बेचने की कोई समस्या नहीं हमारे किसानों को आती है।
3: मूंगफली और साथ में अगर आप ऑयल प्रोड्यूस करके उसको आप अगर निर्यात करते हैं तो दोनों में अच्छा खासा मार्जिन मिलता है और मार्जिन की बात की जाए तो लगभग 20% से ज्यादा का मार्जिन किसानों को यहाँ पर मिल सकता है। तो इस समय किसान भाई बहनों के पास दो ऑप्शंस मिलते हैं। पहला कि जो अपनी पैदावार को सीधे मंडी में बेच करके या फिर बाहर के निर्यात को यहाँ पर देखते हुए सरकार चूंकि निर्यात पे कई पॉलिसीज को बड़े ईज किया है जिसका फायदा जो है वो इस समय किसान भाई बहनों को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसान भाई बहन यहाँ से प्रोसेस करके जो है वो ऑयल को अगर प्रोड्यूस करके और उसको निर्यात करते हैं तो उसमें ज्यादा फायदा मिलता है। फिलहाल मूंगफली का तेल के दाम जो हैं वो काफी तेजी से बढ़े हैं। भारत में भी इसकी डिमांड बढ़ी है, जिसकी वजह से मूंगफली जो है वो इस समय एक अट्रैक्शन दे रहा है। आगे आने वाले समय में एक्सपोर्ट बढ़ने के और चांसेस हैं, तो ऐसे हालात में भारत के निर्यात को यहाँ पर सीधा सीधा फायदा किसान भाई बहनों को मिल पाएगा।
1: कृषि विशेष में अभी आपने जाना मूंगफली के पोषक तत्वों के बारे में। फिलहाल यहाँ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी मूंगफली से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाएंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज के कृषि विशेष में हम आपको बता रहे हैं मूंगफली के बारे में। चलिए बढ़ते आगे और अब आपको बताते हैं इसकी खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। जी हाँ, अगर हमारे किसान मूंगफली की अच्छी उपज प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यानी कौन से किस्मों का चुनाव करें, खेत की तैयारी कैसे हो, कीट और बीमारियों से फसल को कैसे सुरक्षित रखें। तो आइए देखते हैं मूंगफली की खेती पर हमारी अगली रिपोर्ट।
1: मूंगफली की उत्तम खेती के लिए जिन बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है, इनमें प्रमुख हैं भूमि एवं उसकी तैयारी, बीज की बुआई, खाद्य एवं उर्वरक, नीम की खली का सही इस्तेमाल, समुचित सिंचाई, निराई गुड़ाई एवं खरपतवार का नियंत्रण, फसल का सही चक्र, पौधों में लगने वाले रोगों का नियंत्रण, कीट नियंत्रण, सफेद लट की देखभाल, बीज का सही उत्पादन, कटाई एवं गहाई, और अंतिम है ऊपर से लिया जाने वाला आर्थिक लाभ।
2: सुड़ी की बीमारी लगती है और इसमें मूंगफली में भी छेदक, जैसे कोई बीमारी लग जात तो उसमें छेद कर दे तो वो अंदर मिट्टी जो है भर जाती है, वो बेकार हो जाती मूंगफली। तो उसके लिए जो है कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर लोग आते हैं, बताते हैं कि ये दवाई डालो, इससे शोधन करके ये लगाओ तो उसमें जो है बीमारी नहीं लगेगी।
3: दो सिंचाइयों की बहुत आवश्यकता होती है, एक तो पेक बनने के समय और फलियां बनने समय। उस समय जो है फ्लावरिंग स्टेज पे भी बहुत सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ किसान भाई हमारे जो है खरपतवार नाशी की समस्या थी उसके लिए मैजा थाइफर का प्रयोग भी किसान हमारा करता है, 10SL की जो वीडिसाइड है उसका भी प्रयोग करता है। तो इससे जो है खरपतवार की समस्या पे काफी रुकावट आई है और किसान हमारा खुश है।
0: अभी आपने जाना कि कैसे करें मूंगफली की खेती। चलिए बढ़ते आगे और अब आपको जानकारी देते हैं कि मूंगफली की और कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं। साथ ही ये भी आपको बताते हैं कि हमारे देश में किन किन क्षेत्रों में इसकी खेती होती है और विश्व पटल पर कैसे हमारा देश इसे निर्यात कर रहा है, कौन कौन से वो देश है जहाँ पर मूंगफली निर्यात की जाती है, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
1: मूंगफली की अच्छी और उन्नत किस्मों में RG 425 की 120 और 130, MA 10 की 125-130, M 548 की 120-126, TG 37A की 120-130 और G 201 की 110-120 किस्में शामिल हैं। देश में मूंगफली की खेती करने वाले किसानों के लिए ये गर्व की बात है कि साल 2020-21 के दौरान भारत ने 6.38 लाख टन मूंगफली का निर्यात किया और 5381 करोड़ रुपयों की अर्जन की। जिन देशों में भारत मूंगफली का निर्यात करता है इनमें इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, चीन, रूस, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल जैसे देश शामिल हैं। अगर आप कृषि विशेषज्ञों की राय लेकर मूंगफली की खेती करते हैं तो किसान भाइयों को तकरीबन 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आमदनी हो सकती है और किसानों की आय दोगुने से भी अधिक हो सकती है।
4: अगर देखा जाए तो भारत और चाइना सिर्फ दो ही ऐसी कंट्रीज हैं जो कि सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पाद करती हैं और जिसमें कि यहाँ पर भारत का निर्यात पिछले कंपैरिजन में अगर करें तो काफी तेजी से बढ़ा है। इस साल भारत जो है वो 6 लाख टन से कहीं ज्यादा का निर्यात कर चुका है और आने वाले समय में भारत की पैठ काफी अधिक बढ़ती जा रही है। खास तौर से यूपी या फिर गुजरात की मंडियों की बात करें तो वहां पर भी काफी तेजी से पैदावार के जो आंकड़े थे वो भी बढ़े हैं और इस समय अगर देखा जाए तो ओपेक कंट्रीज जो हैं उनसे काफी डिमांड इंडिया से निकलकर देखने को मिल रही है। इसीलिए यहां पर इंडोनेशिया, वियतनाम ये कंट्रीज सबसे ज्यादा मूंगफली का इम्पोर्ट भारत से कर रहे हैं।
0: तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष जिसमें हमने आपको जानकारी दी आम आदमी का मेवा यानी कि मूंगफली के बारे में, बताया आपको इसके पोषक तत्वों के बारे में भी और साथ ही जानकारी दी कि क्यों इसका क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है dd.krishivishesh@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 69A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। कृषि विशेष के नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द ठाट पर, जहां हम आपको बताते हैं प्राकृतिक औषधियों और जड़ी बूटियों के फायदों के बारे में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चमत्कारी औषधीय पौधे की जो देखने में सुंदर तो है ही, लेकिन इसके स्वास्थ्य लाभ भी कमाल के हैं। हम बात कर रहे हैं कैथारेंस रोजियस यानी सदाबहार के बारे में। तो चलिए जानते हैं इसके फायदे और उपयोग। दोस्तों जानते हैं कैथारेंथस रोजियस क्या है। व्हाट इज कैथारेंथस रोजियस? दोस्तों कैथारेंथस रोजियस, जिसे हम आम भाषा में सदाबहार कहते हैं, एक छोटा सा झाड़ीदार पौधा है जिसकी फूल गुलाबी, सफेद और बैंगनी रंग में खिलते हैं। ये मुख्य रूप से मेडागास्कर का मूल निवासी है, लेकिन अब भारत समेत दुनिया भर में उगाया जाता है। अब जानते हैं आयुर्वेद और औषधीय उपयोग या मेडिसिनल यूजेज इन आयुर्वेदा। दोस्तों सदाबहार सिर्फ सजावटी पौधा ही नहीं, बल्कि आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथी में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके पत्ते, फूल और जड़ें कई बीमारियों के इलाज में काम आती हैं। अब जानते हैं स्वास्थ्य लाभ या हेल्थ बेनिफिट्स। सदाबहार की पत्तियों में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसे पानी में उबाल कर पीने से डायबिटीज पेशेंट्स को फायदा होता है। कैंसर के इलाज में सहायक, हेल्प्स इन कैंसर ट्रीटमेंट। इसमें विनब्लास्टीन और विनक्रिस्टीन नामक यौगिक होते हैं जो कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने में मदद करते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा जैसी बीमारियों के इलाज में किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल्स हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो इस पौधे की पत्तियों को उबालकर पीने से आपको लाभ हो सकता है। यह हृदय स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। त्वचा रोगों में लाभकारी, बेनिफिशियल फॉर स्किन डिजीजेस। सदाबहार के पत्तों का पेस्ट बनाकर त्वचा पर लगाने से मुहासे, खुजली और फंगल इन्फेक्शन में राहत मिलती है। ये एक बेहतरीन प्राकृतिक स्किन ट्रीटमेंट है। घाव भरने में मदद करता है, हेल्प्स इन वूंड हीलिंग। इस पौधे का रस एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है और घाव को जल्दी भरने में मदद करता है। अब जानते हैं सावधानियां, प्रिकॉशंस। दोस्तों सदाबहार का उपयोग औषधीय रूप से करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसे अधिक मात्रा में न लें क्योंकि यह विषैला भी हो सकता है। कोई भी घरेलू उपचार अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। प्रेग्नेंट और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसके फूल गुलाबी, लाल, सफेद और बैंगनी रंग के होते हैं। कैथरेंस रोसियस के बारे में कुछ और रोचक तथ्य। कैथरेंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक से हुई है, जिसका अर्थ है शुद्ध फूल। रोजस का अर्थ है लाल। इस पौधे में लगभग 130 एल्कलॉइड होते हैं। विंका एल्कलॉइड का एक मुख्य स्रोत है। इसे पहले विंका रोसिया के नाम से जाना जाता था। रूपात्मक विशेषताएं, कैथेरेंथस रोजस एक बारहमासी छोटा शाक या उपझाड़ी, जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर तक होती है। तना सीधा, ढीला, लचीली लंबी शाखाओं वाला, बैंगनी या हल्का हरा होता है। पत्तियां सरल, फूली हुई, विपरीत, अग्रस्थलीय, डंठल युक्त, अंडाकार, अंडाकार, आयताकार, 4 से 10 गुना, 2 से 4 सेंटीमीटर चिकनी, रोमिल, आधार नुकीला या क्यूनिट, शीर्ष कुंद शीर्षाकार तथा पार्श्व तंत्रिकाएं 10 से 12 जोड़ी होती है। डंठल 1 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। पुष्प विशेषताएं, पुष्पक्रम पीछे की ओर या कक्षीय या अंतिम सायम या एकल युग्मित और लघु डंठल नुमा होता है। फूल का रंग गुलाबी, सफेद तथा नलीदार होता है। पराग कोशों के क्षेत्र में फूला हुआ कोरोला ट्यूब का गला रोयनदार होता है। पुंकेसर में 5 पुंकेसर होते हैं जो कोरोला ट्यूब में शामिल होते हैं। तंतु बहुत छोटे, अधिवृक्कीय होते हैं। पराग कोष वर्तिकाग्र के ऊपर एक शंकु जैसी संरचना बनाते हैं। जयांग में 2 अंडप होते हैं जो नीचे की ओर स्वतंत्र होते हैं, लेकिन वर्तिका क्षेत्र में संयुक्त होते हैं। अंडाशय 2 होते हैं, स्वतंत्र और एकल शैली, डम्बल कलंक के साथ। निषेचन के बाद अंडप अलग हो जाते हैं और 2 फल बनाते हैं जो लंबी रोमों की एक जोड़ी बनाते हैं। बीज छोटे आकार के व काले रंग के होते हैं। 1000 बीजों का भार 1.2 ग्राम होता है। तो दोस्तों यह था कैथारेंस रोजियस यानी
सदाबहार के फायदे और उपयोग के बारे में हमारा वीडियो।

अगर अपने भारत के शहरों में, भारतवर्ष के शहरों में अगर आप एक फलदार पौधा लगाना चाहते हैं वो तो आप जामुन लगाइए। जामुन जो है वो एवरग्रीन भी होता है, जामुन में घनत्व बहुत होता है, इसका जो हरियाली का इसकी जो क्षमता है, इसका क्राउन बहुत अच्छा होता है, बहुत ही प्यारा, बहुत तेज उगने वाला है, जल्दी कीड़ा नहीं लगता और नो नॉनसेंस पौधा है। इसको एक बार आपने लगा दिया, इसको आपने दो साल इसकी सेवा कर दी, पानी वानी अच्छा डाल दिया तो ये बहुत बढ़िया निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको कभी भी जिंदगी में इसको परवाह करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बढ़िया निकलेगा। जामुन मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जब देखिए बाकी जो हमारे जितने भी फलों के वृक्ष है ना वो छोटे साइज के रह जाते हैं, जैसे चीकू हुआ, फिर आप नींबू ले लीजिए, आप अमरूद ले लीजिए, आम जो है स्लो ग्रोइंग है, वो धीरे धीरे उगता है, तब तक जो है गाय भैंस बकरी उसको अटैक कर जाती है। जामुन एक ऐसा है, आप देखेंगे हम अपने एक्सपीरियंस से आपको ये चीज शेयर कर रहे हैं, मैक्सिमम सर्वाइवल हुआ उसका, गाय ने भी खाया, भैंस ने भी खाया, नीलगाय भी आके खा गई, उसको बकरी भी चर गई, लेकिन फिर भी वो इतना रॉबस्ट पेड़ है, जैसे पीपल का वृक्ष होता है ये उगता ही रहता है, उगता ही रहता है। अब जैसे यहां से भी बहुत जगह से इसकी प्रूनिंग हुई थी, ये देखिए यहां कोई काट के गया है, यहां काट के गया है, ये ब्रांच, ये वाली एक ब्रांच किसी ने काटी है, चॉप की है, फिर यहां से निकलना शुरू हो गया। तो इसकी जो ग्रोथ की क्षमता है, इसकी जो फैलने की क्षमता है वो बड़ी प्यारी है, इसीलिए मैं जामुन प्रेफर करता हूं शहरों के लिए भी, है ना। और इरिगेशन कैनाल्स हैं, आपकी जो मेड़े हैं फार्म्स में, जो खेतों में, आप वहां पर भी जामुन लगा सकते हैं। जामुन का जो फल है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है, आपको अगर आप उसको कमर्शियली भी करना चाहते हैं, मार्केट में भी उसको बेचना चाहें, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। पक्षियों के लिए बहुत अच्छा है, बंदरों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, गिलहरी बहुत अच्छी आती हैं, इंसेक्ट पॉपुलेशन बहुत आती है और फर्स्ट क्लास छाया आती है, इसमें बहुत ही ठंडी छाया है इसकी। तो जामुन का पेड़ आप जरूर लगाएं।

0: गाजियाबाद भारत की राजधानी से सटे ऊपरी गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में स्थित है। इसी जिले के गांव चोलस से आते हैं हमारे सफल किसान शिव कुमार, जो दूसरे किसानों के सामने मिसाल पेश कर रहे हैं, जिन्होंने साधारण खेती नहीं बल्कि ऑर्गेनिक यानी कि जैविक खेती और पशु पालन दोनों को एक साथ चुना। शिव कुमार जैविक खेती से मिले फल सब्जियों का सेवन करने वाले लोगों का भी ध्यान रख रहे हैं, साथ ही साथ मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। वो कैसे, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग करता हूं और नेचुरल फार्मिंग भी तो मैं अब से करने लगा हूं। पहले मैं जैविक खेती करता था। 2005-06 से मैं राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद के संपर्क में आया, जहां से ये केंचुए पालन मुझे सीखने को मिला और मैंने इनसे ट्रेनिंग लेकर के विधिवत तरीके से अपने यहां पर केंचुए पालन शुरू किया, जिससे मुझे केंचुए पालन के साथ साथ में वर्मी कंपोस्ट भी मिलता था और वर्मी वास भी मिलता था। इससे क्या हुआ कि जब मैंने अपने खेतों में विधिवत तरीके से अप्लाई किया तो मैंने वर्मी कंपोस्ट से कुछ किसानों को बेचा भी कि भाई इस विधि से हम जैविक पे आ सकते हैं, और जो हम जहरीली खेती कर रहे हैं, जो कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहे हैं या ये केमिकल फार्मिंग से पेस्टिसाइड से जो हम खेत में लगा रहे हैं, इससे हम लोगों को निजात मिल सकता है, जिससे हम जहर मुक्त भोजन ले सकते हैं।
0: आज भले ही शिव कुमार अपने गांव और आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बन रहे हों, लेकिन ये सब करना उनके लिए इतना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें मदद मिली गाजियाबाद के राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र से, जिनकी मदद और सही सलाह अपनाने के बाद शिव कुमार आज एक सफल किसान बनने की राह पर अग्रसर है। कैसे शिव कुमार और उनके जैसे हजारों लाखों किसान खेत की मिट्टी को बेहतर बना सकते हैं, बता रहे हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र के उप निदेशक जगत सिंह।
2: कुमार जी, वर्ष करीब 2005 से ही एक इनोवेटर के रूप में उभरे हैं और वर्ष 2014 से ये राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र से जुड़े। तो जब इनसे मेरी पहली बार मुलाकात हुई तो इनसे मुझे पता चला कि इनके खेत की मिट्टी का पीएच हाई है और खेत में मोटे मोटे ग्रेवल्स हैं, माने कैल्शियम कार्बोनेट के पत्थर हैं, जो निशानी है ऊसर भूमि की या हाईली सैलाइन एल्किली की। तो उसी समय से हमने इनको जैविक खेती के परिपेक्ष में दो तीन चीजें बताई थी कि एक तो कंटिन्यू आपको ग्रीन मैन्योर का इस्तेमाल करना है, पकी और पची हुई खाद का इस्तेमाल करना है, जहां जहां पे सैलाइन एल्कली के पैचेज हैं वहां पे गोबर डाल के और थोड़ा मीठा डाल के उसको गलाना है, और जहां पे ज्यादा खारी सॉइल है वहां की मिट्टी उठा के उसमें मीठी मिट्टी और गोबर डालना है। तो पहले बार में इन्होंने ये काम किया। दूसरी बार में हमारे केंद्र से कुछ कल्चर दिए जाते थे जो डिकम्पोज करने का काम करते थे। शिव कुमार जी ने उस कल्चर का अपने खेतों में प्रयोग किया और उस कल्चर के प्रयोग से जो खेत का जो सैलाइन एल्कली का जो नेचर था हाई पीएच, वो लो पीएच में कन्वर्ट हो गया, और साथ ही साथ जो खेत में 1.5 से 2 इंच मोटे पत्थर थे वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गए।
0: अब ये जैविक खेती है क्या जिससे हमारे सफल किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, जरा इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। जैविक खेती फसल उत्पादन की एक प्राचीन पद्धति है, जिसमें फसलों के उत्पादन में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसलों के अवशेष और प्रकृति में उपलब्ध कई तरह के खनिज पदार्थों के जरिए पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि ऐसी खेती में प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों को कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती पर्यावरण की शुद्धता बनाए रखने के साथ ही भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। जैविक खेती का मतलब एक ऐसी कृषि प्रणाली से है जिसमें फसलों के उत्पादन में रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाओं के स्थान पर जैविक या प्राकृतिक खादों का प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती को लेकर शायद हमारे सफल किसान शिव कुमार ये जानते हैं कि जिस तरह जैविक खेती बीते कुछ समय में लोकप्रिय हुई है, उसी हिसाब से आने वाला समय जैविक खेती का भी है, इसलिए उन्होंने जैविक खेती को चुना।
1: जैविक हर किसी को चाहिए और नेचुरल उत्पाद हर किसी किसान को, हर किसी उसको चाहिए जिनको खाना है, तो उसको लेकर के जितना मेरे पास में उत्पाद था उसे डिमांड अत्यधिक थी मेरी, तो इसलिए मैं बंसी गोल्ड पहले से लगा रहा था। बंसी गोल्ड गेहूं मैंने एमपी वाला गेहूं लगाया था, उसका उत्पादन बहुत अच्छा आया और उसकी जो हमारी पैदावार थी वो थोड़ी सी इससे कम थी, लेकिन जो हमारा खाने में बहुत अच्छी गुणवत्ता देता था एचडी 226, उसका विकल्प एचडी 3226 वैरायटी करके मुझे राष्ट्रीय नेशनल सीड कारपोरेशन से प्राप्त हुई। केवल 6 क्विंटल बीज मुझे मिल पाया था, तो मैंने विधिवत तरीके से अपने खेत में नवम्बर में यानी 17-18 नवंबर को मैंने इसको अपने खेत के अंदर लगा दिया था और इसको मैंने विजय सुपर सीडर से की, उसका सीड ट्रीटमेंट मैंने अपने जेल खाद से वही 1 चम्मच लेकर के और थोड़ा एक उसमें 1 लीटर पानी डाल करके और मैंने लगभग 3 क्विंटल गेहूं को पर्याप्त मात्रा में उससे बीज शोधन किया था और थोड़ा सा उसमें मैंने हल्का सा 250 ग्राम गुड़ घोल कर भी उसको मिला लिया था। उसका मैंने विधिवत तरीके से उसका उपचार किया और उपचार करने के बाद में जो मेरे पास में वर्मी कंपोस्ट था तो मैंने अपने उर्वरक के फर्टिलाइजर की जगह वर्मी कंपोस्ट अगले टापे में भर करके पिछले में सीड डाल करके और मैंने अपने सुपर सीडर से इन खेतों की बिजाई कर दी है और यील्ड शायद इस बार बहुत अच्छा आएगा सर, मुझे रेट बहुत अच्छा मिल रहा है।
0: शिव कुमार का मानना है कि गांव में खेतीबाड़ी आपसी सहयोग से की जाए तो काफी फायदा होता है और इससे आय में वृद्धि के साथ गांव का भी विकास होगा, तो वहीं सह फसली जैविक खेती पर सोने पर सुहागा का काम कर रही है जिससे शिव कुमार को 2 गुना लाभ हो रहा है। इस तरह सह फसली खेती करने से मेहनत मजदूरी के साथ साथ पानी खाद उर्वरक बीज और कटाई का खर्चा निकल आता है।
1: पहले जैसे हम खेती कर रहे थे अभी भी और अच्छे तरह से उसको खेती को कर रहे हैं, हम फसल चक्र में लेकर आए हैं। एक तो फसल चक्र से फायदा क्या है कि जो हमारा ये जो वीड है ये वीड अपने आप ही कंट्रोल हो जाता है फसल चक्र से। जैसे हमने अब तिलहन यानी तिलहन लगाया है तो तिलहन के बाद में फिर हमने इसके तिलहन के बाद में जैसे मक्का लगाया है, मक्का के बाद में हम और सब्जी वर्गीय यानी कद्दू वर्गीय फसल इस तरह से घिया तोरई ककड़ी खीरा ये इस तरह से ले रहे हैं और इससे जो है किसान भाई समझे कि इससे अत्यधिक बेनिफिट है। सब्जी से जो आदमी उस किसान को जो मिलता है उससे बहुत ज्यादा कुछ मिलता है।
0: इन फसलों में धान और गन्ना जैसी फसल मुख्य है। गन्ने के साथ सह फसली करने के एक नहीं कई फायदे हैं, जहां गन्ने की फसल को पकने में 10 से 12 महीने लग जाते हैं वहीं 60 से 90 दिनों में दूसरी फसलें पक जाती हैं। इस दौरान बीच बीच में सब्जियों और दलहनी फसलों की खेती करने से 2 से 3 महीनों में दूसरी फसलों की उपज से पैसे मिल जाते हैं। अच्छी बात ये भी है कि ऐसा कर हमारे सफल किसान अपनी जैविक खेती से दूसरे किसानों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

So today I am going to talk about, do we realize our own potential? See, we feel low sometimes. We feel less energetic. We feel lethargic. We feel demotivated. Our thought process go negative. तो क्या हम हर समय रियलाइज करते हैं कि हमारा पोटेंशियल क्या है? क्या मैं बस इसी सीमित दायरे में ही काम करना चाहती हूँ या मैं इस दायरे से बाहर भी निकलना चाहती हूँ? तो ये जो रियलाइजेशन है, एक लीडर को वो हमेशा अपने सामने ये क्वेश्चन रखना ही चाहिए, कभी भी इस क्वेश्चन को भूलना नहीं चाहिए। बहुत सारे प्रेशर्स आते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटीज आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, पर अगर ये क्वेश्चन हम अपने सामने हमेशा रखें कि डू वी रियलाइज आर ओन पोटेंशियल, बिकॉज अपने दायरे को हम लिमिट नहीं करें, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्हेन वी से दैट वी आर लीडर्स एंड वी वांट टू बिकम लीडर्स, इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना है। तो जो ट्रू लीडर्स हैं, दे लर्न टू राइज अबव देयर सर्कमस्टांसेस। कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, लीडर्स को अपने आप को ट्यून करना है उसके ऊपर उठने के लिए। कुछ बुरा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ गलत नहीं है, कुछ नहीं है। लीडर्स को हमेशा इंट्रोस्पेक्ट करना है और एनालाइज करना है। मैं आगे प्रेजेंटेशन में आपको इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगी। तो हमें हमेशा अपने जो सर्कमस्टांसेस है उससे ऊपर उठना है। दे डू नॉट अलाउ एडवर्सिटी टू डैम्पन देयर ड्रीम्स ऑफ मेकिंग इट बिग। जो लीडर्स है वो हमेशा विजनरी होता है, वो बहुत दूर अंदेशी होता है, वो दूर की सोचता है। तो जो भी एडवर्सिटी होती है, द सिचुएशंस अराउंड अस शुड नॉट लेट आर ड्रीम्स गो डाउन द ड्रेन। हमें अपने ड्रीम्स को अब बहुत ऊपर उठा के रखना है, एंड देन वी हैव टू राइज आर सेल्फ अबव द सर्कमस्टांसेस विच आर हैम्परिंग आर ड्रीम्स। ये हमेशा हमारी कोशिश होनी चाहिए और हमें करना भी है। वी हैव टू डू दैट। What happens at retreat centers? We provide opportunities to those who deprive themselves to learn under any circumstances. See, when I say that you are the leaders in the community, of course you are the leaders because you are the visionaries among those who even don't know themselves. आपको ये पता है ना कि आप उनके साथ काम करते हैं जिनको अपने बारे में भी नहीं पता वो क्या हैं, उनके अंदर कितना पोटेंशियल है, वो क्या कर सकते हैं। तो यू पीपल आर द विजनरीज फॉर देम, एंड द वुमेन डजंट रियलाइज द पोटेंशियल दे हैव। सो वंस दे कम टू द लाइब्रेरी, विच इज ऑफ कोर्स अ मैजिकल प्लेटफॉर्म फॉर देम, they want to learn stitching, they want to learn beauty and culture, they want to learn computers, they want to bring their children to the library. So many things they want to do together, but under adversities. घर के काम का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, नेगेटिविटी, हस्बैंड की लाइक यू नो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बच्चों का प्रेशर, बट they are also somewhere we have to make them leaders of their own life. So once given the chance, many women and girls have learned multiple skills. They have beliefs what they can do. And earlier, most of these women were having beliefs that they cannot do. Is it the truth? मेरा ये कहने का मतलब है कि जो औरतें आती हैं सेंटर पे, उनको पहले अपना पोटेंशियल नहीं पता था। वो ये सोचती थी कि ये सब कुछ हमारे लिए नहीं है, हम सीख ही नहीं सकते, हम टाइम ही नहीं निकाल पाए।

0: हमारे घर का इतना प्रेशर है, हमारे फैमिली का इतना प्रेशर है, बट इन सारी एडवर्सिटीज में से निकल कर वो सेंटर पे आए और उन्होंने सीखा। एक स्किल में रजिस्टर करने के बाद उन्होंने बहुत सारी और भी स्किल्स सीखने की जिज्ञासा रखी और वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं। तो क्या ये सच्चाई है? सच्चाई है ना, आप लोग सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये सब चीजें, राइट? सो इन अ वे व्हाट यू आर डूइंग, मैं आपको बता रही हूँ लीडरशिप क्या है और आप इनडायरेक्टली उनको भी बता रहे हो लीडरशिप क्या है। तो दे आर बिकमिंग द मास्टर्स ऑफ देयर ओन लाइफ, राइट? पहले तो वो यही सोचती थी कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पर सीखने के बाद उनके बिलीफ ही चेंज हो गए। तो वी नॉर्मली से दिस इज नॉट फॉर मी, हमेशा यही होता है कि दिस इज नॉट फॉर मी, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस, आई एम टू यंग टू लर्न और आई एम टू ओल्ड टू लर्न। ये चार सेंटेंस हमेशा जब हम पहली बार लोगों से बात करते हैं, कुछ भी काम करने के लिए, कुछ भी सीखने के लिए, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने सोसाइटी में, मेनी पीपल से कि दिस इज नॉट फॉर मी, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस टू डू, आई एम, मैं बहुत ही अभी यंग हूँ, बहुत लाइफ पड़ी है, मैं कभी भी कर सकती हूँ। या फिर हम कहते हैं कि हम अब बूढ़े हो गए, अब हमें क्या करना है ये करके, लाइफ तो चली गई, अभी क्या सीख के करेंगे। बट इट्स नेवर लेट, वी ग्रो अप बिलीविंग आर लिमिटेशंस और आर वीकनेसेस। हम अपनी पूरी जिंदगी हम उसी में निकाल देते हैं, अपनी सोच को छोटा रख के, लिमिटेशन में रख के, अपने दायरे को छोटा करके, और ये हमारी वीकनेसेस बन जाती हैं। आर बिलीव्स मेक अस लिमिट आर अचीवमेंट्स। और इसका क्या इफेक्ट होता है कि जो हमारी सोच है वो हमारी अचीवमेंट्स के आगे एक दीवार बन के खड़ी हो जाती है और हमारी जो अचीवमेंट्स है वो लिमिटेड हो जाती हैं। आप एग्री करते हैं जो मैंने ये चार पांच पॉइंट्स आपके सामने रखे? ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट्स रखे हैं जो हम करते हैं, मैंने उसी को प्रेजेंटेशन में डाला है। डू यू एग्री विथ मी? एनीबॉडी कैन अनम्यूट द माइक एंड से
1: जी, यस मैम, आई एम एग्री. यस
0: हाँ।
1: मैम.
0: हाँ, आपको पता है ना कि यही होता है जब औरतें, अब सबके सबकी आंखों के सामने एक मूवी चल रही है कि औरतें कैसी थी पहले, अभी सेंटर में आई, हम लोगों ने उनके साथ इंटरेक्ट किया, उनकी सोच बदल गई, और उनकी सोच बदलने के बाद अब वो मल्टीपल चीजें सीखना चाहती हैं। पर एक्चुअली में क्या होता है कि हम अपनी सोच को इतना लिमिटेड कर लेते हैं कि वो हमारी वीकनेस बन जाती है और हमारी अचीवमेंट के आगे रुकावट आ जाती है। आपने बहुत बहुत लोगों से सुना सुना होगा, मैं तो अपनी लाइफ में ये करना चाहता था पर मैं कर ही नहीं पाया, मैं कुछ और करना चाहती थी पर मैं इस प्रोफेशन में आ गई, मैं तो सर्विस करना चाहती थी पर फैमिली में मैं लाइक आई बिकेम अ हाउसवाइफ, मेरे को तो डॉक्टर बनना था पर मैं तो टीचर बन के रह गई। ये सब क्या नतीजे हैं कि हमने अपनी जो सोच है, जो हमारी बिलीव्स है, जो हमारा विश्वास है अपने ऊपर, आत्मविश्वास को कहीं ना कहीं एक लिमिटेड दायरे में कर लिया और वो हमारी वीकनेस बन गई और हमारी अचीवमेंट्स जो है वो लिमिटेड रह गई, राइट?
1: ही राइट मैम. एग्जैक्टली ऐसा, मतलब एक्सपीरियंस में पिछले 2 साल से कर रही हूँ. मेरे सेंटर पे जो लड़कियां आ रही हैं या वुमेन्स, तो वो कुछ इसी तरह का कुछ मेरे आगे सवाल रखती हैं कि हम तो ये बनना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ आकर उनको हमारे सेंटर पे इतना फायदा हुआ, उनको उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा हुआ और कुछ करने की क्षमता उनको यहाँ से मिली.
0: बिल्कुल बिल्कुल। और ये सबके साथ है, उन औरतों के साथ भी है, कहीं ना कहीं हमारे साथ भी हुआ है, कहीं
1: जी मैम, जी
0: ना
1: जी
0: कहीं हमारे साथ भी हुआ है। तो मैं यहाँ पे ये भी एक पॉइंट मेंशन करना चाहूंगी कि इट्स नेवर लेट। मैंने अपनी फर्स्ट प्रेजेंटेशन में ये एक सेंटेंस लिखा था कि टाइम को लिमिटेड मत समझिए, टाइम को बॉन्डिंग मत समझिए, कभी भी किसी भी टाइम पे आप सब कुछ सीख सकते हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे बताती हूँ, मतलब कि मैंने किसी बुक में पढ़ी थी, किसी फॉरेन कंट्री के बच्चे की स्टोरी है, पर मैं आपको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि एक बच्चा था, वो उसके घर में म्यूजिक बहुत चलता था, मतलब कि क्लासिकल म्यूजिक अगर वो सुन रहा है तो वो उसके पेरेंट्स बात करते थे, ये तबला है, ये तानपुरा है, ये हारमोनियम है, ये गिटार है। वो नेचुरली जब आप देखते हैं कोई म्यूजिक कंसर्न तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं तब गाना बजता है, राइट? ऐसे ही होता है ना। पर इंडिविजुअल बंदा जो सीखता है, वो एक बंदा एक इंस्ट्रूमेंट पे बैठ के सीखता है, राइट? कभी भी आप गाने के कोई भी प्रोग्राम देखिए तो ऐसे ही होता है। पर वो जब बच्चा छोटा था, उसने कहा कि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, दैट मीन्स विजुअली उसने वो देखा नहीं था कभी, उसने कहा कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स इकट्ठे ही बज रहे हैं और एक सिंगल आदमी बजा रहा है। और उसने अपने आप को इतना कमिट कर लिया वो सीखने के लिए, तो वो एक हाथ से तानपुरा बजा रहा है, दूसरे हाथ से हारमोनियम बजा रहा है, अपने गले में उसने गिटार डाली हुई है और अपने पैर से वो ड्रम बजा रहा है। उसने कभी ये सोचा ही नहीं था कि ये सब कोई इंडिविजुअल बजाते हैं। तो सी द काइंड ऑफ बिलीफ ही हैड, और वो वर्ल्ड क्लास म्यूजिशियन बना सिर्फ इसी प्रैक्टिस पे कि उसने अपनी जो सोच थी वो एक दायरे में नहीं रखी, उसको इतना बड़ा कर दिया कि मुझे तो सब कुछ ही सीखना है, और वो सब कुछ ही इंडिविजुअली करा। और क्या अकॉम्प्लिश करा कि पांच लोग जो पांच इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, वो अकेला ही पांच इंस्ट्रूमेंट्स बजा के ही बिकेम द वर्ल्ड रेनाउंड म्यूजिशियन। तो ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हमने करना क्या है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, इफ यू वॉन्ट टू चेंज द आउटकम इन योर लाइफ, यू नीड टू स्टार्ट बाई चेंजिंग योर बिलीव्स। वो स्टोरी बिल्कुल फिट हो रही है इस सेंटेंस से कि अगर हमें अपने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना है, आउटकम्स मतलब कि जो हम काम करते हैं उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, तो अगर वो हमने उसका दायरा बड़ा करना है तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा, उस दायरे को भी बड़ा करना होगा। A leader can help the team achieve its potential by constantly challenging the team members to do more, by stretching them and helping them break through their limitations and start believing in their abilities. ये sentence हमारे पे सब पे बहुत लागू करता है। कोई भी लीडर है, हम सब लीडर हैं, हम सब किसी ना किसी से कुछ ना कुछ काम करवाते हैं, राइट? और अगर हम अपनी टीम मेंबर्स को हमेशा चैलेंज करते रहें कि इससे आगे बढ़ना है, अभी आपने ए अचीव किया है तो ए प्लस बी अचीव करना है, फिर ए प्लस बी प्लस सी अचीव करना है। आप ट्रेनिंग्स में भी ऐसे करते हैं ना, आप 3 महीने के प्रोग्राम को वीकली डिवाइड कर लेते हैं और उसको एक एक हफ्ता सिखाने के बाद इसका 3 महीने का कोर्स कंप्लीट करते हैं, और उसके जो चैलेंजेस आते हैं, फॉर एग्जांपल बच्चा बीमार है, घर में कुछ काम है, खुद की तबीयत ठीक नहीं है, पर हम उसको मोटिवेट करते हैं कि नहीं, ये तो 3 महीने का कोर्स है, तुम्हें पूरा करना ही करना है, तुम जैसे मर्जी आओ। हम उसको काउंसिल भी करते हैं, हम उसको बोलते हैं कि यू रिजॉल्व योर इश्यूज पर डोंट लीव दिस ट्रेनिंग। तो हम क्या हेल्प कर रहे हैं उनको, हम उनकी लिमिटेशंस को ब्रेक करते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं कि यू कैन डू एंड यू मस्ट डू, राइट? यही आप कर रहे हैं। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि एक लीडर की क्वालिटी क्या होती है। तभी मैं बार बार बोलती हूँ कि आप सब लीडर्स हैं, सिर्फ आपको अपने अंदर जो लीडर छिपा हुआ है उसके पोटेंशियल को रियलाइज करना है, और यही टाइटल है मेरी स्लाइड का, डू वी रियलाइज आवर ओन पोटेंशियल। अब आप आज से कुछ भी करेंगे, पहले उसको रियलाइज करेंगे कि यस आई एम अ लीडर, मेरे को दूसरों की लाइफ चेंज करनी है, मुझे दूसरों में आत्मविश्वास बढ़ाना है, मुझे दूसरों को हेल्प करना है, काउंसिल करना है उनके चैलेंजेस को दूर करने के लिए। देखिए काउंसलिंग एक बहुत बड़ा कोर्स है। एक होता है कि मैं काउंसिल कर रही हूँ, काउंसलिंग होती है कि उस बंदे को उसी की बातें सुनकर उसको हेल्प करना अपना डिसीजन लेने के लिए, राइट। हम डिसीजन नहीं थोपते हैं काउंसलिंग में, हम काउंसलिंग में उसके साथ इस तरीके से बातचीत करते हैं, उसको उस पॉइंट पे लाते हैं कि वो अपने डिसीजन खुद ले, राइट। तो जो लीडर है वो भी कुछ हद तक ऐसे ही काम करता है। दूसरों के अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज छिपी हुई हैं, जो उनकी एबिलिटीज छिपी हुई हैं, उनको हम उभारने की कोशिश करते हैं और उनके पोटेंशियल को हम इंक्रीज करते हैं। पर वो हम तभी कर पाएंगे ना जब हम अपने पोटेंशियल को रियलाइज करेंगे कि वेयर डू वी स्टैंड, राइट। सो व्हेन यू आर नॉट एबल टू डू, योर माइंड गेट्स कंडीशन टू लुक फॉर डिफिकल्टी इन अपॉर्चुनिटी। देखिए सेंटेंस बहुत मीनिंगफुल है कि जब हम नहीं कर पाते हैं तो हम डिफिकल्टीज का बहाना बना लेते हैं। ओ मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, मेरे पास ये भी बहुत दूसरी प्रायोरिटीज हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने गोल को शिफ्ट कर देते हैं। हम अपने गोल में और अपने में एक बहुत बड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। हम अपने आप को एट्यून कर लेते हैं उन सारे इश्यूज को लेके, तो हम उस कार्यक्रम में अपॉर्चुनिटी ना ढूंढते हुए हम डिफिकल्टीज को मद्देनजर रखते हैं, अपने आगे रख लेते हैं और अपनी अपॉर्चुनिटी को गवा देते हैं, राइट। बट व्हेन यू आर एबल टू डू, योर माइंड लुक्स फॉर अपॉर्चुनिटी इन डिफिकल्टी। पर जब हम पूरे ऑड्स को, ऑडिटीज को और एडवर्सिटीज को रिजॉल्व करके हम कुछ अचीव कर लेते हैं तो उन्हीं डिफिकल्टीज में हमें अपॉर्चुनिटी नजर आती है। सो व्हाट इज दिस, इट्स ऑल माइंड्स गेम। ये पूरे आपके सोच का, आपके मन की एक गेम है, आपका थॉट प्रोसेस है, आपके अपने बिलीव्स हैं और आपका अपना कॉन्फिडेंस है। तो अब आप खुद ही मास्टर बन गए इन सारे 5 पॉइंट्स को सोचने के ऊपर। जब ये स्लाइड्स आपके पास आएंगी, आप इन 5 पॉइंट्स को बार बार पढ़िए और अपने आप को एनालाइज करिए, और जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं उनको भी एनालाइज करिए, और इन 5 पॉइंट्स को मद्देनजर रख के, हर इंडिविजुअल फर्क है, जो आपके पास सीखने के लिए आ रहा है आप उसी तरीके से उसको काउंसिल करिए, उसका मनोबल बढ़ाइए और उसको बोलिए कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। और लीडरशिप क्वालिटीज, इट्स नॉट ए एकेडमिक डिग्री। अब मैं क्यों बोल रही हूँ कि आप दूसरों के साथ काम करिए, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज करने से आती है। आप सोच लो, आप थीसिस पढ़ लो, आप जो मर्जी कर लो, पर जब आप प्रैक्टिकली नहीं इसको करोगे तो ये क्वालिटीज कहीं ना कहीं आपसे दूर जाती जाएंगी और आप इनको प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो लीडरशिप क्वालिटीज जो होती हैं वो डे टू डे प्रैक्टिस में लाने की जरूरत होती है। तभी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनके साथ प्रैक्टिकली आप ये सब करिए, आपकी अपनी लीडरशिप क्वालिटीज शार्पन हो जाएंगे। जब हम अनसक्सेसफुल होते हैं, राइट, बहुत ये मैं बिल्कुल आज बिहेवियर को लीडरशिप के साथ लिंक कर रही हूँ, तो हम क्या करते हैं कि हम दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। आप बच्चे से ले लीजिए, बच्चे के मार्क्स कम आते हैं ना, पेरेंट्स पूछते हैं इस बार मार्क्स क्यों कम आए, तो वो बच्चा ब्लेम किसको करता है, दूसरों को करता है, वो अपने आप को ब्लेम नहीं करता। वो कभी भी आपने उसके मुंह से ये नहीं सुना कि मैं नहीं पढ़ा जितना मुझे पढ़ना चाहिए था। वो कोई ना कोई और बहाने ढूंढेगा, दूसरों को ब्लेम करेगा। और ये फैमिली लाइफ में भी होता है, when we are unsuccessful, we tend to blame others, those who are around us, and find excuses for us. Is it true? कोई जवाब देगा, ये होता है सबके साथ या मेरे साथ ही होता है?
2: जी मैम बिल्कुल होता है, बच्चे भी यही करते हैं,
0: है ना?
3: वेरी वेरी वेरी वेरी ट्रू मैम.
0: हाँ, तो ये इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है. और इसमें हमें क्या करना है, परसिवरेंस इज द फोर्थ वर्ड अलोंग विद पैशन हंगर एंड डिसिप्लिन वी हैव टू ऐड. परसिवरेंस क्या होता है, एक चीज को बार बार करना, बार बार करना, वो इतनी बार करना कि वो आपकी हैबिट बन जाए. ये हमारी सोच पे भी मतलब कि हमें असर करता है, हमारी लैंग्वेज में भी असर करता है, हमारे बिहेवियर में भी असर करता है, हमारे एटीट्यूड में भी असर करता है, और हमारी प्रैक्टिस में भी असर करता है जो हम काम करते हैं. आप शुरू से देखिए, एक बच्चा है वो बहुत गंदा लिखता है, हैंडराइटिंग ये अच्छी नहीं है. हम उसको तरह तरह के हैंडराइटिंग बुक्स लाकर देते हैं कि इसकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाए, हैंडराइटिंग अच्छी हो जाए. हम प्रैक्टिस करवाते हैं हर एक चीज की. जब बच्चा बोलना सीखता है, हम उसको एक एक वर्ड दिन में 20 बार बुलवाते हैं. क्या करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं कि वो उसका लाइफ का एक पार्ट बन जाए. ऐसे ही जब हम बड़े होते हैं, हम ग्रो करते हैं, और अगर हमें अपने में लीडरशिप क्वालिटीज लानी है, तो लीडरशिप की क्वालिटीज जो है उनको हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना. और अगर हम नहीं सक्सेसफुल हो रहे, ये तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आपने आज एक अच्छा काम किया और आप लीडर बन गए, आपके बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे. पर अगर हम कॉन्टिन्यूसली ये सब करते जाएंगे, परसिवरेंस से करेंगे, परसिवरेंस रखेंगे, तो नो डाउट अबाउट दैट आपको अचीवमेंट मिलेगी, आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे. That is the mantra. So if you do that, success is sure to come. That means continued efforts to do something to achieve success. So यहाँ तक तो clear है बिल्कुल. ये तो बहुत ही practical session है आज जो मैं ले रही हूँ, because मैं बहुत ये इन सब चीजों पे stress करना चाह रही थी कि हम day to day life में हम कैसे अपनी leadership quality action में लेकर आए. राइट सो हम हमेशा हमारी लाइफ में सब गुडीज गुडीज नहीं होता है, दो वी एक्सपेक्ट कि सब अच्छा ही हो, बट हमें अच्छा करना है, अच्छा एक्सपीरियंस करने के लिए. ये बात जरूर याद रखिएगा, हमें अच्छा करना है, अच्छा एक्सपीरियंस. क्वालिटीज होती है कि हमें अपनी लाइफ में अच्छा ही करना है, सो दैट इन रिटर्न भी हमें अच्छा आए और हम सोसाइटी में दूसरों की हेल्प करें. तो देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू फील क्रश्ड, स्टैम्प्ड, और योर गोल और ड्रीम गोज डाउन द ड्रेन. ऐसे होता है ना, बहुत ही डिमोटिवेटेड होते हैं, हमने बहुत मेहनत से कुछ किया पर उसका कुछ फल नहीं आया. हम बोलते हैं कि हमारा गोल ही शैटर्ड हो गया, पता नहीं क्या हो गया. सेल्फ वर्थ, जो आपकी सेल्फ वर्थ है, जो आप कर सकते हैं, उसको इन फेलियर से कभी भी नीचे नहीं आने दें. एवरी टाइम यू रेज योर हेड एंड से अभी नहीं तो कल, इस समय नहीं तो अगले समय, कभी भी उसको नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें. ये लीडरशिप क्वालिटी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. रिमेंबर यू आर स्टिल द टेरिफिक पर्सन यू वर. जब आपने काम किया था, आपने यू वर द वेरी अमेजिंग पर्सनालिटी, पर अगर आपको सक्सेस नहीं मिली तो आप अपने आप को कभी भी डीमीन नहीं करिए. आप वही हो जो आप पहले थे, वही आप में पोटेंशियल है, वही आप में एनर्जी है. अगर अचीवमेंट आज नहीं मिली तो कल जरूर मिलेगी, ये विश्वास अपने माइंड में आप हमेशा बनाए रखिए. जस्ट बिकॉज समवन चूजेस टू क्रश यू, दैट डज नॉट चेंज योर वर्थ वन बिट. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. जब मैंने 10 स्केल फॉर्मूला बनाया था उसमें भी मैंने ये पॉइंट रखा था. एंड आई ऑलवेज टॉक टू मैनी पीपल ऑन दिस पॉइंट कि अगर कोई आपको डीमीन करता है, क्रश का मतलब वही है डीमीन करना, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बिहेवियर के अंतर्गत हम जीते हैं. That does not change your worth one bit. एक point भी आपकी worth पे उसका effect नहीं आना चाहिए. I can very well understand mind पे आता है, psyche पे आता है, but you attune your mind like that कि next moment you are so confident because you always realize your worth. You are a terrific person. You have all the qualities of leadership. So, apni self-worth ko kabhi bhi kam nahi hone dein. Never give up, never give up. Ye aapka mantra hona chahiye. Right? Aaj maine jitne bhi slides, maine kam slides banayi thi, par maine inko is tarike se design kara tha, ki ye jo aapki life ke saath directly link ho. अब हम थोड़ी सी होली बुक्स में लीडरशिप के बारे में क्या कहा गया उन क्वालिटीज को भी जान लेते हैं. राइट, हम जो भी होली बुक्स पढ़ते हैं या जो भी मॉरल बुक्स पढ़ते हैं उसमें ट्रूथफुलनेस एक फर्स्ट पॉइंट आता है. व्हेन वी आर ट्रू वी डू द एनवायरमेंट अराउंड अस आल्सो बिकम ट्रूथफुल. व्हेन यू आर पॉजिटिव your environment become positive, your body energies become positive, or jo aapke andar like what should I say though, jo feelings hoti hain wo bhi positive hoti hain, aur jo aap kaam karte ho wo bhi positive energy se karte ho, to end result bhi positive aata hai. Do good to others. Goodness grows and always come back. सब जानते हैं इस चीज को, right? Help others in difficult situations. Success lies in your own strength. Self-control बहुत जरूरी है. हमारे सामने बहुत सारी चीजें ऐसे आती हैं कि हम undue advantage उठा लें, हम undeserved credit ले लें, हम कहीं कुछ ऐसा गलत कर लें, पर जो लीडर होता है उसका सेल्फ कंट्रोल होना बहुत बहुत जरूरी होता है. डिफाइनिंग द गोल एंड योर ओन रिजोल्यूशन. गोल तो डिफाइन कर लिया पर अपने आप को कमिट नहीं करा तो हम गोल नहीं अचीव कर पाएंगे. सो डिफाइनिंग द गोल एंड योर ओन रिजोल्यूशन विल हेल्प टू अचीव द गोल. Adhere to the laws and regulations. ये बहुत important है क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं और हमें हर एक चीज का पता होना चाहिए कि एक जो human जो society है उसमें कौन से regulations हमें follow करने हैं, कौन से laws follow करने हैं, ये हमें knowledge होनी चाहिए. Lastly, good karmas do help to walk on the stairs of success. अगर हम अच्छे कर्म करते जाएंगे, अच्छे काम करते जाएंगे तो जो सामने सीढ़ियां हैं हमारे, हमारी जो वॉक है, जो हमने क्लाइम करना है सीढ़ियों को, वो सक्सेस की तरफ ही जाएगा, हम नीचे नहीं गिरेंगे. दैट्स ऑल आई जस्ट वांटेड टू से टुडे. आई होप यू को रिलेटेड ईच एंड एवरी वर्ड. आपने हर एक वर्ड को अपने साथ जोड़ा, अपनी कम्युनिटी के साथ जोड़ा जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, और इसको आप प्रैक्टिस भी करेंगे. राइट, थैंक यू सो मच.

0: कैसे हैं सभी लोग?
1: अच्छी हूँ मैं।
0: सब अच्छे हैं? सब सबकी फैमिलीज ठीक हैं? एवरीबडी इज डूइंग वेल। तो अभी का जो सेशन है ये सेवेंथ सेशन है। हमने अभी तक 7 सेशन करे हैं। हालांकि जो हमने सीरीज शुरू करी थी उसमें एक एक टॉपिक अभी बाकी है। बट व्हाट आई थॉट वाज कि प्रोबेबली वी कैन डू समथिंग व्हिच इज आल्सो रिलेटेड, व्हिच इज अ प्रिपरेशन फॉर अ जॉब इंटरव्यू। तो आज का सेशन मैंने उस तरीके से डिजाइन किया है। होपफुली ये हम सभी के लिए और हमारे जो बेनिफिशरीज जो इस ट्रेनिंग में आगे हमारे साथ जुड़ेंगे उनके लिए बेनिफिशियल हो। अभी तक जो हमने बात करी थी लाइफ स्किल्स की, आई एम श्योर आप अपने आगे बेनिफिशरीज के साथ वो सेशंस होस्ट कर रहे हैं। अगर कोई चैलेंज है, अगर कोई इश्यूज हैं, तो हम अलग से एक दिन एक सेशन कर सकते हैं, जैसे हमने पहले भी किया था, जिसमें कि हम कुछ क्वेरी है तो आपस में मिलके उसे सॉल्व कर सकते हैं। सो नॉट टेकिंग मोर टाइम ऑन दिस, मैं अपनी पीपीटी शेयर करती हूँ। अगेन एज आई सेड कि दिस इज अ लाइफ स्किल सेशन फॉर प्रोफेशनल्स, मतलब कि कोई जॉब करना चाहता है या कोई अपना काम करना चाहता है, तो ये लाइफ स्किल के सेशंस उन बेनिफिशरीज के लिए हैं जो कि जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, हायर स्टडीज के लिए तैयारी कर रहे हैं या इवन अपना कोई काम करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जिससे कि हम लोग दूसरे से अलग दिख सकते हैं। ये सेशंस उसके बारे में है। आज का जो सेशन है, आई जस्ट शेयर माय स्लाइड्स। तो जैसे कि हमने बताया कि आज का ये सेशन हमने ये रखा है कि अगर हमें सब आ गया, हम कॉन्फिडेंट भी हैं, हमें अपने बारे में पूरा पता भी है कि हमारी क्या क्या चीज हमें है और किस तरह के जॉब के लिए हम जा सकते हैं, क्या हमें कोई कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स का जॉब के लिए अप्लाई करना है या टेक्नोलॉजी में कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है या जो ट्रेनिंग हम हॉस्पिटैलिटी में दे रहे हैं उसका कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है या हम जो रेडियो और ऑडियो वीडियो एडिटिंग की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें हमें कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है, टैली की ट्रेनिंग है, टैली में जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो हमारे बेनिफिशरीज को अभी तक कुछ ना कुछ स्किल्स तो आई है, या तो हमारे सेंटर से उन्होंने वो स्किल ली है या फिर उनको पहले से वो आती थी या किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से उन्होंने वो स्किल को एक्वायर कर लिया। तो ये हम मान के चलते हैं कि हमारा जो बेनिफिशियरी है उसको या तो आता है या वो सीख रहा है या सीख रही है या सीखना चाहता है या सीखना चाहती है। लेकिन
1: हाँ
0: कई बार क्या होता है, स्किल आते हुए भी जो हमें आता है वो आते हुए भी हम अपनी बात कहने में हम डिलीवर नहीं कर पाते जब हम एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं। इंटरव्यू के लिए जब हम जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक हवा बना रहता है कि कोई सामने वाला मुझे इवैल्यूएट करेगा और मुझे इवैल्यूएट करेगा तो मुझे अपना बेस्ट प्रेजेंट करना है। तो वो एक जो डर बैठ जाता है हमारे दिमाग में या एक खौफ बैठ जाता है, उसकी वजह से कई बार हम लोग उतने अच्छे से अपना इंटरव्यू नहीं दे पाते या हम प्रेजेंट अपने आप को उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो ये सेशन के थ्रू एक कोशिश है जिसमें कि आपकी जो कला है या जो आपका जो स्किल है जिसके लिए आप अपीयर करने वाले हैं इंटरव्यू में, उसके साथ साथ आप अपनी पर्सनालिटी को या अपने हाव भाव को या अपनी बातचीत को रखेंगे तो वो कैसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। ये कुछ टिप्स हैं, ये कुछ प्रिपरेटरी पॉइंट्स हैं जिनको कि अगर हम एटलीस्ट अगर इनको हम करें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं हो सकती कोई इंटरव्यू में। पॉजिटिव होगी कि नहीं वो आपकी डिलीवरी ऑफ इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अगर कोई एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है तो मार्किंग सिस्टम होता है, मान लीजिए उसी जॉब के लिए 100 लोग अपियर कर रहे हैं, 200 लोग अपियर कर रहे हैं, 10 लोग अपियर कर रहे हैं, तो किस किन पॉइंट्स पे आपको बेटर मार्क्स मिल सकते हैं या एटलीस्ट आपके मार्क्स कट ना हो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं या आपका इम्प्रेशन डाउन ना हो जब आप एक इंटरव्यू पैनल में जाते हैं या वन टू वन जाते हैं। तो जॉब इंटरव्यू क्या होता है, कोई कोई बता सकते हैं? आज हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनमें से कभी किसी ने कोई इंटरव्यू दिया है? कोई मुझे वॉलंटियर कर सकता है कि इंटरव्यू क्या होता है, जॉब इंटरव्यू? बहुत सिंपल सी चीज है, हम लोगों ने सभी ने जॉब इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बिना तो शायद किसी को भी जॉब नहीं मिला होगा. आई हैव नेवर सीन एनीबडी, इवन टॉप पोजीशंस में तो मल्टीपल इंटरव्यू होते हैं, आठ आठ नौ नौ लेयर्स ऑफ इंटरव्यू होती है अगर एक टॉप पोजीशन पे किसी को रखा जा रहा है तो खास कर ये जॉब इंटरव्यू क्या होता है.
1: मैम
0: जी कौन बोल रहे हैं?
1: आकांक्षा, हेलो
0: जी आकांक्षा, आप कौन से सेंटर से हैं?
1: मैम,
0: हाँ जी आपकी आवाज आ रही है, आप कौन से सेंटर से हैं आकांक्षा? महाराष्ट्र.
1: महाराष्ट्र
0: जी बोलिए.
1: मैम, जॉब इंटरव्यू में इंटरव्यू इंटरव्यू भी रहते हैं, और वो बहुत से मतलब उस इंटरव्यू देने के लिए बहुत से लोग जाते हैं, वो इंटरव्यू हर एक से कुछ क्वेश्चन करते हैं, और वो जो इंटरव्यू होते हैं अपने क्वेश्चन के बेस पे जैसा उनको आंसर मिलता है वो उनमें से सेलेक्ट करते हैं कि किसको ये जॉब प्रोवाइड करना चाहिए, कौन इस जॉब के लायक है।
0: तो वो इंटरव्यू में क्या देखते हैं? जो जैसे अगर आप कोई इंटरव्यू ले रही हैं और मैं अपियर कर रही हूँ एक इंटरव्यू में, तो आप मेरे में क्या देखना चाहेंगे आकांक्षा?
1: मैम मैं ये देखना चाहूंगी कि जो जॉब मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, क्या आप उस जॉब को कर सकती हो, उस लायक हो या नहीं।
0: तो आप
1: इसलिए
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही.
1: अगर कोई फाइनेंशियल चीज हुआ तो मैं आपसे फाइनेंस के बारे में करके कुछ क्वेश्चन करूंगी एंड ऑल।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही. तो आप मुझे इवैल्यूएट करेंगी कि जो पोस्ट निकाली है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, मैं या मेरे साथ जो 10 लोग आए हैं उनमें से कौन इस पोजीशन के लिए बेस्ट सूटेड है, तो उस पोजीशन के लिए आप क्या क्या इवैल्यूएट करेंगे? आकांक्षा के अलावा कोई और भी बता सकता है. अब हमारे सामने एक केस है कि हम एक पोजीशन के लिए कैंडिडेट को इवैल्यूएट कर रहे हैं, ये जॉब इंटरव्यू होता है, इस ये जॉब इंटरव्यू का मकसद होता है. तो अब कोई बता सकता है कि एज ए इवैल्यूएटर आप क्या इवैल्यूएट करेंगे? आपके सामने मेरा सीवी रखा है, आप सीवी में पढ़ लीजिए कि मुझे मुझे क्या आता है, मैंने क्या किया है क्या नहीं करा. आप फिर जॉब इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं?
2: गुड आफ्टरनून मैम.
0: गुड आफ्टरनून जी.
2: मैम दिस इज निशा फ्रॉम वजीराबाद सेंटर.
0: नमस्ते निशा जी, कैसे हैं?
2: मैम बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं?
0: सब ठीक है, सब ठीक है. हाँ जी बताइए.
2: तो मैम आई थिंक जब जॉब इंटरव्यूज होते हैं तो सबसे पहले ना कॉन्फिडेंट लेवल चेक किया जाता है.
0: तो हमारे पास कॉन्फिडेंस है कि नहीं कि हम ये जॉब कर पाएंगे, हम कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं, ये एक मकसद होता है, क्योंकि सीवी में जो लिखा हुआ है वो एक्चुअली में आप कर भी पाएंगे कि नहीं, वो जज करने के लिए या वो इवेल्युएट करने के लिए इंटरव्यू किया जाता है. और कोई और किसी का कोई और पॉइंट निशा के अलावा?
3: हेलो मैम,
0: हाँ
3: रेनू
0: जी
3: बोल रही हूँ, ग्रेटर नोएडा सेंटर से.
0: नमस्ते रेनू जी, बताइए.
3: नमस्ते मैम. मैम अगर हम कभी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, मीन्स जो दो बातें भी हमने डिस्कस कर ली कि एक तो हम कॉन्फिडेंस देखते हैं, या आप एक कह रहे हैं कि एक रिज्यूमे में सब कुछ लिखा होता है, बट कभी जब हम लोग जाते हैं तो हमें क्या नॉलेज है, तो हम इंटरव्यूअर हमसे कहता है कि आप अपने आप मतलब अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा समरी या समराइज करके बताइए कि आप कैसे अपना ऑफिस को रन करते हैं, या हमने बताया जो भी हम इनको सिचुएशन देते हैं, कोई भी सिचुएशन दे सकते हैं हम उसमें कि हम ये हैं, हम ये हैं, ये है, तो फिर वो ये कह सकते हैं कि यार ठीक है आप हमारा ये पढ़ा है, हमारा बिल्कुल बेकार मैसेज आया, अब आप इसमें क्या नया कर सकते हो. तो एक यहाँ पर भी एक क्वालिटी जज की जा सकती है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, या आपके पास आप आइडिया इनोवेटिव आइडियाज आपके पास हैं कि नहीं है.
0: वेरी गुड.
3: और आई थिंक सो.
0: तो हमारी दो या तीन चीजें आ गई. पहला कि इवैल्यूएट करते हैं कि जो हमने सीवी में लिखा है वो हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा चेक करते हैं, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे इनोवेशन की जरूरत है, आप इनोवेटिव हैं कि नहीं, वो आपको अलग अलग सिचुएशंस में डाल के आपसे अलग अलग तरीके के सवाल पूछ सकते हैं और जज कर सकते हैं कि आप अगर एक सिचुएशन दी जाए तो उसमें आप किस तरीके से आप रिएक्ट करेंगे या काम करेंगे. वेरी गुड. सो नीता जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
4: यस मैम. गुड आफ्टरनून मैम.
0: गुड आफ्टरनून जी. कैसे
4: जी ने बताया कि कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक करते हैं, इसके अलावा मैम पर्सनैलिटी इंटरव्यू के द्वारा हम पर्सनैलिटी भी सामने वाले की देख सकते हैं, और अवेयरनेस अबाउट द जैसे कि सामने अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में कितना अवेयर है, स्पीकिंग एज वेल एज राइटिंग रिटन भी हम देख सकते हैं.
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. मुझे याद है हम दोनों ने मिलके ही हमारी जो स्कूल था प्री स्कूल का उसका एक इंटरव्यू किया था. तो हमने किन किन कैटेगरीज पे अपनी टीचर्स को इवैल्यूएट किया था. एब्सोल्युटली राइट, बच्चों के साथ काम करना है, उनकी राइटिंग स्किल कैसी है, उनकी पर्सनैलिटी प्लीजिंग है कि नहीं, और ये सब चीजें हम इंटरव्यू में ही जज कर सकते हैं. हम सीवी देख के नहीं जज कर पाते या फोन पे बात करके ज्यादातर नहीं जज कर पाते. तो इन सब पॉइंट्स जो सभी मेरे साथी हैं उन्होंने जो पॉइंट्स दिए हैं एब्सोल्युटली वैलिड पॉइंट्स, और भी बहुत लोग बहुत कुछ कहना चाह रहे होंगे, बट कहने का मकसद ये था कि इंटरव्यू एक बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव होता है. आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने जा रहे हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर करता है, आप दोनों इवैल्यूएट कर सकते हैं. अभी तक हमने जितने पॉइंट्स सुने हैं वो हमने यही सुने हैं कि एज अ कैंडिडेट आप में क्या क्या चीजें हैं, बट कैंडिडेट का भी ये राइट है कि वो पूछ सकता है या वो देख सकता है या वो देख सकती है, जज कर सकती है कि जिस एनवायरमेंट में वो काम करने जाने वाला है या जाने वाली है वो एनवायरमेंट उसको सूट करता है, उसकी पर्सनालिटी को सूट करता है कि नहीं करता. इट्स अ टू वे प्रोसेस. तो जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं कॉन्फिडेंट रहिए कि आप भी सिर्फ इवैल्यूएट नहीं होंगे, आप भी इवैल्यूएट कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें कि आप अप्लाई करने जा रहे हैं. कॉल सेंटर का जॉब है क्या, रात की ड्यूटीज लगेंगी, रात की ड्यूटीज क्या आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अच्छा कैसा एनवायरमेंट है वहां पे, सेफ्टी सिक्योरिटी है कि नहीं, अगर गर्ल्स जा रही हैं लेडीज जा रही हैं उनकी क्या सेफ्टी मेजर्स हैं. आपका भी पूरा हक बनता है कि आप देखें, इवैल्यूएट करें अपनी सूझबूझ से. सो इंटरव्यू इट्स अ मीडियम कि जो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म मतलब 6 महीने हो सकता है, साल हो सकता है, मेरे और मैम के जैसे जैसे 14-14 साल से हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो एक लाइफ टाइम हो सकता है. बट यू हैव टू इवैल्यूएट दैट दिस रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कम्फर्ट, कि आप एज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई और सामने वाला एज एन एम्प्लॉई, आप दोनों का मेल बैठता है एक पोजीशन के लिए जिसके लिए उन्होंने एडवर्टाइज किया. ये कहना बहुत आसान है, कहने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकली ये होता नहीं है. हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं, हम इंटरव्यू करने जाते हैं, हम ज्यादातर सवाल नहीं पूछ पाते हैं ये सोच के कि सामने वाला हमें बोलेगा कि रूड है या अपने आपको बताने क्या समझता है इतने सवाल पूछ रहे हैं. आप सवाल मत पूछिए, लेकिन ऑब्जर्व तो कर सकते हैं कि एनवायरमेंट कैसा है, लोग कैसे हैं, आप ऑब्जर्व करिए. बिकॉज अगर आप सेटिस्फाइड होंगे तभी आप लॉन्ग टर्म अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रख पाएंगे और आप अच्छा काम करेंगे जिसकी वजह से आपका एम्प्लॉयर भी खुश होगा और वो भी लॉन्ग टर्म आपको एसोसिएट कर पाएगा. वेरी वेरी बेसिक थिंग, बहुत ही बेसिक थिंग था. लेकिन जब हम जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तब हमें कैसे प्रिपेयर करना है, तो पहले कुछ वेरी बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि जब जॉब डिस्क्रिप्शन एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ है उसे अच्छी तरीके से, एक जॉब डिस्क्रिप्शन आता है, कोई एडवर्टीजमेंट होती है या कोई आपकी सहेली या आपकी कोई फ्रेंड है उन्होंने बताया होगा कि इस कंपनी में जॉब निकला है इसमें अप्लाई कर दो, या आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, मोबाइल पे आपके पास कोई अलर्ट आया होगा कि जॉब्स के लिए है. लेकिन वो उस जॉब की डिस्क्रिप्शन भी होती है, उस डिस्क्रिप्शन को पूरा डिटेल में पढ़िए. बहुत सारी कंपनीज काफी डिटेल में वो डिस्क्रिप्शन देती है कि किस तरह का जॉब होगा, कितने वर्किंग आवर्स होंगे, ट्रैवल रहेगा कि नहीं रहेगा, सेल्फ व्हीकल चाहिए कि नहीं चाहिए. कई कई जॉब्स ऐसी होती है जैसे कि कोई कुरियर कंपनी है या लॉजिस्टिक्स कंपनी है, वो पहले ही एडवर्टाइज करते हैं कि आपका सेल्फ व्हीकल होना बहुत जरूरी है. जैसे कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रॉब्ली रिटेल में है तो वो वर्किंग आवर्स पहले ही एडवर्टाइज कर देते हैं कि वर्किंग आवर्स हमारे 11 o'clock से 8 o'clock तक रहेंगे. जैसे कि मॉल हो गए या फिर कोई कोई ऐसी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिसमें कि उन्हें पर्टिकुलर स्किल चाहिए. तो आप अच्छे से जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़िए और इवैल्यूएट करिए कि आप उस क्राइटेरिया पे फुलफिल होते हैं कि नहीं होते हैं, और प्रिपेयर करिए अपने आप को कि जो जो क्राइटेरिया दे रखा है उसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे आंसर करेंगे. अगर क्वेश्चन है कि क्या आप एमएस एक्सेल जानते हैं, तो हाँ आप जानते हैं कि नहीं जानते, उस क्वेश्चन के ऊपर प्रिपेयर करिए. तो जब जॉब डिस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपकी वो स्किल जो है आपके अंदर है कि नहीं, और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो आपसे जब क्वेश्चन किया जाएगा आप आराम से उसका आंसर दे सकते हैं. आप हिंदी में, इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उसमें अपना आंसर दीजिए। बहुत जरूरी नहीं है आजकल की जॉब मार्केट में कि सिर्फ स्पोकन इंग्लिश स्पीकिंग को ही जॉब मिलेगा। तो जॉब्स ऐसी हैं जिसमें स्पोकन इंग्लिश की जरूरत है, आप खुद ही इवैल्यूएट कर सकते हैं कि वो उसमें अभी आप एलिजिबल हैं कि नहीं। बट जो भी बात कहें उसे अपने कॉन्फिडेंस से रखिए। जो पहला शब्द हमने इस सेशन में सुना था, कॉन्फिडेंस, बिकॉज इंटरव्यू में वो आपका कॉन्फिडेंस जज करना चाह रहे हैं और उनको फटाफट पता चल जाएगा ये रियल कॉन्फिडेंस है या ये मतलब एक शो, आप शो पुटअप कर रहे हैं या रियल में आप कॉन्फिडेंट है। ये हर किसी को आपके बात करने के तरीके से पता चल जाता है। उनकी वेबसाइट पे जाइए, मान लीजिए अमेजोन ने कोई जॉब निकाली है या फ्लिपकार्ट ने कोई जॉब निकाली है या सम वोडाफोन ने कोई जॉब निकाली, एयरटेल ने कोई जॉब निकाली, आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, जो जॉब लिखा हुआ है उसके बारे में पढ़िए कि जो लोग इन जॉब में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको कैसे, उनका कोई कभी कभी रिव्यूज होते हैं, स्टोरीज होती हैं, आजकल ब्लॉग्स भी बहुत सारे होते हैं। तो कहने का मतलब है थरो रिसर्च करिए। अगर आपको कोई बोलता है बस जाके अपना रिसीवी मत भेजिए, हाँ भाई तू जा रहा है ठीक है मेरा सीवी भी भेज दे उसमें, ऐसे नहीं। आपको प्रॉपरली उसके लिए प्रिपेयर करना होगा अगर आप रियल में चाहते हैं कि उस इंटरव्यू में आपको सक्सेस मिले। कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, ये आपको कई साइट्स पे मिल जाएंगे, आप चाहें तो हम एक सेशन भी कर सकते हैं टिपिकल क्वेश्चंस जो एक जॉब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब टेल मी अबाउट योर सेल्फ में कुछ लोग ना कहानी गढ़ने शुरू करते हैं, मैं छोटा था तो ये था मैं वो था। आपको प्रिस्ट में बताना है। गीता मैम ने कई बार वो एलिवेटर पिच के बारे में बात किया कि एक मिनट में हमें अपने बारे में बताना है कि मैं क्या हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है। कहानियां सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि किसी को याद ही नहीं रहेगा। अगर 100 लोग बैठे हैं, यू कांट एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू रिमेम्बर, बट वो एक ऐसी क्वालिटी जो आप में है, जो आप बताना चाहते हैं, आप उस पर फोकस करिए जो उस इंटरव्यू से रिलेटेड हो सकती है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस है आप अपने बारे में शॉर्ट में बताइए। इसको बार बार प्रिपेयर करिए, रिटन में लिखिए टेल मी अबाउट योर सेल्फ को, और इसको प्रैक्टिस करिए शीशे के सामने कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में। आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, क्या ऐसी मोटिवेशन है जो ये जॉब आप करना चाहते हैं। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं। आप अपने आप को यहाँ से 3 साल के बाद कहाँ देखते हैं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 3 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ। किसी भी जॉब में आप जाएंगे ये जरूर पूछा जाता है। सैलरी कितनी लेंगे, हम लोग हिचकिचा जाते हैं। कई कई जॉब में तो ऑलरेडी फिक्स्ड होता है पर फिर भी पूछते हैं कि आप सैलरी कितना लेना चाहेंगे। तो आप जब तक रिसर्च नहीं करेंगे कि इस तरीके की जॉब इंटरव्यू के लिए क्या क्या सैलरी है, क्या क्या पर्क्स हैं। कई बार क्या होता है जैसे कि कुरियर कंपनीज हैं, लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं, सैलरी कम होती है बट पर्क्स या रिलेटेड अलाउंसेस बहुत होते हैं। ट्रैवल का दे देते हैं या टेलीफोन का दे देते हैं क्योंकि कुरियर से रिलेटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इंश्योरेंस होती है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो हो सकता है वो सारी चीजें फ्रेशर लेवल पे शायद ना हो क्योंकि आपको शायद प्रोबेशन दिया जाएगा, 3 months का प्रोबेशन होगा, 6 months का प्रोबेशन होगा। जैसे मैंने बैंकिंग सेक्टर में स्टार्ट किया था तो मुझे 6 months का प्रोबेशन था। 3 months की इंटर्नशिप करने के बाद, उसी बैंक में 3 months की इंटर्नशिप करने के बाद 6 months का प्रोबेशन था, तो इफेक्टिवली मेरा प्रोबेशन 9 months का हो गया था। बट दैट्स देयर रूल। किसी भी फ्रेशर को वो बहुत अच्छे से इवैल्यूएट करके ही परमानेंट करते हैं। बट डोंट गिव अप। हमारी प्रोफेशनल जर्नी अगर हम 24 या 25 साल में शुरू करते हैं और हम 60 साल तक अगर काम कर रहे हैं, 70 साल तक काम कर रहे हैं, तो बहुत लंबी प्रोफेशनल जर्नी है। इसमें आप धीरे धीरे धीरे धीरे करके ही अपनी स्किल्स को ऊपर बढ़ा सकते हैं। अगर आप एकदम से चाहेंगे कि आपको सारी वर्क सारे सारे बेनिफिट्स मिल जाए तो आप हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेंगे। So know about the job, prepare yourself, prepare the basic question. लेकिन basic question prepare करके जाइए, लेकिन उसे जल्दबाजी में deliver मत करिए। अपनी pitch को, अपनी communication skill को, जो first session हमने पढ़ा था कि communication skill, उस पर practice, उस पर focus करिए कि आपको crisp रहना है, concise रहना है, clear रहना है, फिर भी अपनी बात कहनी है। हो सके तो अपने किसी फ्रेंड के साथ या अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन के साथ, या फिर सेंटर में अगर कोई लोग हैं या कोऑर्डिनेटर्स के साथ, आप मॉक इंटरव्यू करिए, अगर जो भी आपका सबसे नियर एंड डियर वन है उसके साथ आप मॉक इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू मतलब ये जो 5-10 क्वेश्चन हमने बोले, एक इंटरव्यू और बन जाए, एक इंटरव्यू ही बन जाए। कोशिश करिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप इंटरव्यू ही बनिए, आप इंटरव्यूअर मत बन जाइएगा। आप प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चन को, क्योंकि जब आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप खुद सोचेंगे कि शायद मैं इसमें और क्या ऐड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं इसमें और क्या बेहतर कर सकता हूँ, मैं क्या ऐड करूँ कि मेरा कहने का तरीका या मेरे कहना जो चाह रहा हूँ वो बेटर हो जाए। आप उसे रिकॉर्ड करिए, अपनी आवाज को सुनने की आदत डालिए, क्योंकि जब हम बोलते नहीं है, अपनी आवाज नहीं सुनते तो हमारा कॉन्फिडेंस नीचे ही रहता है। कभी आपने देखा टीचर्स में क्या कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि वो हर वक्त अपनी आवाज सुनने की आदी होते हैं, क्योंकि वो अपना प्रिपेयर करते हैं, लेसन प्लान्स प्रिपेयर करते हैं, वो अपने आप को हमेशा प्रिपेयर करके चलते हैं, उनके लिए कोई सरप्राइज एलिमेंट काफी कम रहता है। जब हम स्कूल्स में थे, कॉलेजेस में थे, हमने देखा हमारी टीचर्स क्या एकदम स्मार्ट और एकदम डिलीवरी करती हैं उसकी लेक्चर के जो भी टॉपिक होता है, प्रिपेयर्ड होती, क्यों? क्योंकि वो प्रिपेयर करके आते हैं। तो आप अपने आप को शीशे के सामने किसी फ्रेंड के साथ, मोबाइल पे आजकल तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं सेल्फ कैमरा से या कैमरा से खड़ा करके किसी जगह पे, आप आराम से उसे रिकॉर्ड करके खुद सुन सकते हैं, खुद देख सकते हैं कि कैसे आप बोल रहे हैं और वो कैसा दिख रहा है, कैसा लग रहा है। बहुत जरूरी है कि आप जहां इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसका लोकेशन पहले से ही ध्यान में रखें। अगर इंटरव्यू का टाइम 9 बजे है तो आप कोशिश करिए कि आप अपना घर से इंटरव्यू तक पहुंचने का डिस्टेंस पहले ही जान लें, ताकि आप टाइम से पहुंच पाए, ना टाइम से ज्यादा देर से, ना टाइम से बहुत पहले। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखिएगा, साथ में एक हैंकी या एक टॉवल साथ में रखिएगा, ताकि जब आप जाते हैं, गर्मी का टाइम में पसीना आ जाता है, तो आप 10 मिनट पहले ही पहुंच जा सकते हैं वहां पे। अपने आप को प्रिपेयर करिए, वहां पे कहाँ रेस्ट रूम्स हैं उनसे बात करिए, जो भी वहां पे सपोर्ट स्टाफ है उनसे पूछिए रेस्ट रूम्स कहाँ पे हैं, आप जाके अपने आप को क्लीन अप करिए, कोट करिए अच्छे से। और बहुत जरूरी है कि आप अपने क्लोथ्स, आप क्या पहनने वाले हैं इंटरव्यू के दौरान, हम इस पे भी आएंगे कि क्या पहनना चाहिए, जस्ट अ सजेशन, नो There is no right or wrong, but as a mature person, हमें किस तरीके से अपने आप को professionally शो करना चाहिए या कंडक्ट करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। बट पहले से आप तैयार करके रखिए, अगर उसे आयरन करना है आयरन करके रखिए, देखिए उसमें कोई बटन तो नहीं टूटा हुआ, कौन से चप्पले पहनना है, शूज पहनना है, पूरा एक दिन पहले प्रिपेयर करके रखिए, ताकि आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड हो। आप जब जाते हैं इंटरव्यू के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी बॉडी लैंग्वेज, इसके ऊपर भी अभी हम आगे स्लाइड्स पे बात करेंगे। हम बॉडी लैंग्वेज पे पहले कम्युनिकेशन के टाइम पे भी बात कर चुके हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है इस दौरान में जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं बॉडी लैंग्वेज। आप जो भी क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर रहे हैं ये मत करिएगा कि उसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड कर दी, जो ऑनेस्ट आंसर है जो आप कर सकते हैं उसी को आंसर करिएगा, क्योंकि सामने वाले बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो इंटरव्यूअर है, वो बहुत सालों से शायद उस पोस्ट पे बैठे हैं और वो फट से समझ जाएंगे कि आप सही कह रहे हैं या आप सिर्फ गप मार रहे हैं और ये चीज आप नहीं कर पाएंगी। तभी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल कमिटमेंट। आपको आता है नहीं आता है, आप सीख सकते हैं, आपके अंदर सीखने की कैपेबिलिटी है, बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी वेरी ऑनेस्ट इन द इंटरव्यू। तो हम अभी तक किसी का कोई सवाल या हम आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, सवाल हम एंड में भी ले सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने बॉडी लैंग्वेज की बात करी, अब बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम ना बोलते हुए भी, अभी तक तो हमने बात करी पिछले की 2 स्लाइड्स में कि आप जब बोले तो सही बोले, कॉन्फिडेंस से बोले, अपनी कम्युनिकेशन में जो पिच है उस पर ध्यान रखिए, अपने जो भी आप कहना चाह रहे हैं उसे प्रिपेयर करिए। लेकिन इंटरव्यू में जब हम जाते हैं, जब हम वेटिंग एरिया में बैठे होते हैं ना, तभी भी कई बार हम इवेल्युएट हो रहे होते हैं या हो सकता है कि लोग हमें देख रहे हो कि हम कैसे बैठे हैं, हम कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं दूसरे लोगों से जो हमारे साथ इंटरव्यू देने आए हैं. तो जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है या जो हमारे जेस्चर्स हैं जब आप इंटरव्यू के लिए देने जाते हैं, वो बहुत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉन्फिडेंस की हमने बात करी, लेकिन कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? हम जब नर्वसनेस अपने अंदर कम कर देंगे. नर्वसनेस कैसे कम करेंगे? जब हम प्रिपेयर करके जाएंगे. और प्रिपेयर कैसे करेंगे? उसकी बात हमने ऑलरेडी करी है. आप कॉन्फिडेंस रखिए कि आप उस इंटरव्यू के लिए सही कैंडिडेट हैं कि नहीं. रिसर्च करिए, अपने बारे में पॉइंट्स लिखिए, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं, आप क्यों, आप ही क्यों वो कैंडिडेट हैं जो इस जॉब के लिए अप्रोप्रिएट है, ये सब चीजें. तो ऑलरेडी आपकी नर्वसनेस काफी कम हो जाएगी. बट ये मत सोचिए कि यही 5 क्वेश्चन आएंगे. क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, बट जब आपने इन 5-6 क्वेश्चंस का आंसर दिया, कहीं ना कहीं आंसर इसी में ही छुपा होगा. आप एक पीसफुल माइंड से जाइए, एक इंटरव्यू है, कुछ नहीं होगा तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो आप गेन करके बाहर निकलेंगे. कुछ नए लोगों से आप बातचीत करके निकलेंगे, उनको ऑब्जर्व करिए कि और कैंडिडेट्स कैसे जो आए हैं वो कैसे अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं. तो कहने का मतलब ये है कि नर्वस होने का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि आपकी नर्वसनेस आपके हाव भाव में साफ दिख जाएगी, क्योंकि सामने वाले बहुत एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं. मैंने पहले भी बताया कि जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस करिए. कई वीडियोज हैं ऑनलाइन, उन वीडियोज पे आप प्रैक्टिस देख सकते हैं कि हम जो क्वेश्चन को पूछते हैं उनके आंसर किस तरीके से तैयार करें. मैंने कहा कि हम इस पे भी एक सेशन कर सकते हैं अगर हम सबका इंटरेस्ट होगा. तो कोई बता सकता है कि ये जो पिक्चर हम देख रहे हैं, इनमें मैंने ऑलरेडी वैसे कुछ इंडिकेशन दे दिया है, बट कोई डिस्क्राइब कर सकता है कि क्यों मैंने क्रॉस लगाया है? ये जो ब्लू शर्ट में जेंटलमैन बैठे हैं, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके ऊपर मैंने क्यों एक बड़ा सा रेड क्रॉस लगाया है? ऐसा क्या गलत है? उनके चारों फोटोज हैं, एक एक करके अगर आप बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इन चारों फोटो में, मुझे क्या, क्यों मैंने क्रॉस लगाया है इसके ऊपर, या अगर आपको सही लग.
2: हाँ जी मैम, आई थिंक इनकी सिटिंग पोजीशन ना करेक्ट नहीं है.
0: इनकी करेक्ट क्या होता है? व्हाट इज करेक्ट?
2: मैं अपना बैक स्ट्रेट करके बैठना, अपने दोनों आर्म्स अपने लैप में रखना, अपने लेग्स दोनों बिल्कुल स्ट्रेट और पास में रखना, इस तरह से आई थिंक दीज काइंड्स ऑफ सीटिंग सिचुएशंस और पोजीशंस आर करेक्ट.
0: करेक्ट हो सकता है. क्या होता है कि कई बार ही जैसे आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, 200 लोग आए हैं, 100 लोग आए हैं, वॉक इन इंटरव्यू है. आप कभी अगर गए हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए, मैं खुद गई हूँ वॉक इन इंटरव्यूज के लिए, तो 100-100 लोग होते हैं और वो टाइम दे देते हैं सुबह 9 बजे से और सभी लोग पहुंच जाते हैं. वॉक इन इंटरव्यू का मतलब है जो पहले पहुंचा उसका इंटरव्यू होगा, उसमें आपको कोई टाइम नहीं दिया जाएगा. जैसे रीड में अगर आते हैं तो आपको टाइम दिया जाता है, मैम आपको पर्सनली मिलती है, ऐसा नहीं होता हर जगह पे. ये होता है कि 100 पीपल आ गए, ठीक है, उनको 20-20 के बैच में डिवाइड कर देते हैं और फिर उनका एक ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं. ग्रुप डिस्कशन में से वो 5-6 लोग निकालेंगे हर एक ग्रुप में से, और 5-6 लोगों में से वो पर्सनल इंटरव्यू करेंगे और फिर पैनल डिस्कशन होगा. तो कई बार ऐसे लेयर्स क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि ये एचआर वालों का काम होता है. तो अब बहुत टाइम से आप बैठे हैं, आपको उबासी आ रही है और आप बोर हो रहे हैं, आप अपने पैरों के साथ फिडल करना शुरू कर रहे हैं, तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी. आप कितनी देर आराम से एक कॉन्फिडेंट नर्वस ना होके बैठे रह सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है. लेकिन जब आप जा रहे हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए या कुछ है, तो आप इंटरेस्टेड लगिए. अब ये जो लास्ट में फोटो है, ये कुछ फेक स्माइल लग रही है, कि ये फेक दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ. ये देखने वाले को साफ पता चल जाएगा कि ये फेक स्माइल है. उबासी ले रहे हैं, बोर ऐसे करके बैठे हैं, तो बोर हो गए, यानी कि वो इंटरव्यू देने आए हैं लेकिन वो बोर हो गया है. तो ये सब चीजें ना नेगेटिव इम्प्रेशन देती है. हो सकता है आते जाते आपका इंटरव्यू देख रहे हो, या आप सीसीटीवी लगा है उसमें वो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं.

फिडल करके ऐसे ऐसे पैर चलाते हैं कई लोग। कोशिश करिए ये ना हो, ये ना करें जब हम किसी वेटिंग एरिया में या जॉब इंटरव्यू के लिए या इंटरव्यू के सामने बैठे हैं। पेंसिल को कभी कभी मुंह में डाल लेते हैं, पेन पेंसिल को, ये सब चीजें अवॉइड करना चाहिए। तो पोस्चर, यानी कि जहां हम बैठे हैं हमारा पोस्चर प्रोफेशनल दिखना चाहिए। सो सिट स्मार्ट, सिट कॉन्फिडेंटली, एंड दिस कॉन्फिडेंस विल शो इन योर किसी ने चैट में कुछ लिखा है, जस्ट ये जो फोटो आप देख रहे हैं ना, ये लेडी की 8th रैंक आई थी, ये IAS का इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू पैनल में 4 लोग बैठे हैं, ये IAS का इंटरव्यू चल रहा है। आप इस लेडी की पोजीशन देखिए, कैसे वो बैठी है, ना तो ज्यादा झुक के बैठी है, ना तो ज्यादा ही अलर्ट बैठी है, कि एकदम अलर्ट भी नहीं बैठी है, बहुत कॉन्फिडेंस से। मैं जानती हूँ कि इनको बहुत प्रैक्टिस कराई जाती है, बट मैं ये दिखाना इसलिए चाहती थी कि इस तरीके का भी अगर प्रोफेशनल इंटरव्यू चल रहा है तो उसमें भी किस किस तरीके से वो अपने आप को तैयार करके गई होंगी, क्या उन्होंने पहना है, किस सिंपलिसिटी से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम किसी पैनल ऑफ इंटरव्यू में जाते हैं या इवन पर्सनल इंटरव्यू में जाते हैं। कई बार ये क्या होता है कि हम जो जो क्लोथ्स, मैंने कहा था कि आप अपना जो क्लोथ्स है, जो आप पहनने वाले हैं, आप पहले से डिसाइड करके रखिए। थोड़ा टाइम हम इस पे देना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल आजकल हम लोग कई चीजें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि प्रोफेशनल और पर्सनल थोड़ा डिफरेंट है। हम डोंट टेक मी रॉन्ग, बट कई बारी हम जिस तरीके के कपड़े पहन, चॉइस ऑफ क्लोथ्स कैन ऑल्सो डिटरमाइन समटाइम्स द काइंड ऑफ पर्सन वी आर। कंप्लीटली डू नॉट टेक मी रॉन्ग, सबको फ्री चॉइस है, फ्रीडम है, बट वो हमारी पर्सनल लाइफ में वो फ्रीडम है। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा प्रोफेशनली ड्रेस्ड अप होंगे तो चांसेस ये है कि एटलीस्ट इन द इंटरव्यू स्टेज आप अपने जो सिलेक्शन होगा वो आपके स्किल के बेसिस पे होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेल है, कोई आदमी या बॉय इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तो एक प्लेन टी शर्ट, चेक टी शर्ट, सॉरी प्लेन शर्ट, चेक शर्ट, अच्छी कलर में, नॉट वेरी ब्राइट येलो रेड, इन सबको अवॉइड करते हुए। हमने कलर थेरेपी पे कई सेशन करे हैं। कलर थेरेपी में भी बोला जाता है कि व्हाइट कलर, ब्लू कलर, अर्दी कलर्स जो है वो पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। कुछ जो बहुत ब्राइट कलर्स होते हैं ज्यादातर वो इन द आई लगते हैं और वो इतनी पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट। तो अगर आप चाह रहे हैं कि यू डोंट हैव टू बी फ्लैशी, आप में जो क्वालिटी है वो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, ना कि आपने जो पहना है, आपने क्या हेयर स्टाइल बनाया है, वो डिसाइड नहीं करेगा। तो अगर कोई मेल मेंबर जा रहे हैं, साफ प्रेस हुई भी है, नहीं प्रेस हुई भी, लेकिन साफ शर्ट, डिसेंट कलर में, बहुत ब्राइट ना हो, मतलब बहुत कुछ उस पे ज्यादा कुछ ना बना हो, क्योंकि आजकल तो फैशन की दुनिया में एवरीथिंग सेल्स। बेसिक ट्राउजर, कार्गोज मत पहन के जाइए, जीन्स मत पहन के जाइए। इट्स जस्ट अ सजेशन फ्रॉम माई साइड एज अ लिटिल बिट मोर मेच्योर पर्सन, जस्ट अ सजेशन। फ्लिप फ्लॉप्स मत पहन के जाइए, ओपन जो हमारे आते हैं आजकल, फ्लिप फ्लॉप्स आप जानते होंगे, चप्पलें जो होती है, चप्पलें तो बिल्कुल ही नहीं, क्या बोलते हैं उसको, सैंडल बोलते हैं, वो जो एक बकल के साथ आता है जिसमें आपका थोड़ा पैर दिखता है। तो मेल मेंबर्स के लिए ही होता है कि बारिश बहुत हो रही है, हम शूज नहीं पहन के जा सकते, अंडरस्टैंडेबल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल। बट नॉर्मल सिनेरियो में कोशिश करिए कि बंद जूते पहन के जाए, साफ हो जूते, चमकने नहीं बट साफ तो हो कम से कम। कंघी करके जाइए, तेल मत लगाइए, कुछ लोगों को तेल लगाने का आदत होता है तो मत लगाइए, कई बार सामने वाले को किसी चीज से एलर्जी होती है, इरिटेशन में हो सकती है। आप अपनी नेल्स क्लिप करके रखिए, साफ रखिए, क्योंकि जब आप बात करेंगे आपके हाथ जरूर दिखेंगे। जैसे मेरी बहुत आदत है हाथ को यूज करने की, ऐसे अगर किसी की आदत है तो प्लीज आप अपने नेल्स का साफ रखिए ध्यान से। तो ये हुई मेल मेंबर्स की बात, जस्ट अ सजेशन अगेन, प्लीज डू नॉट टेक मी रॉन्ग। फीमेल के केस में कोशिश ये करिए कि जो आप कपड़े पहन के जा रहे हैं, आप अगेन यू रिसर्च अबाउट द कंपनी, उनका कल्चर कैसा है, ट्राई एंड स्टिक टू क्लोथ्स दैट यू आर मोस्ट कंफर्टेबल।

0: कुर्ता है, साड़ी है, इवन अगर स्कर्ट्स आप पहन के जा रहे हैं उसकी लेंथ का ध्यान रखिए। कोशिश करिए बड़े बड़े झुमके नहीं पहन के जाने, बड़े बड़े झुमके हो। बहुत सूट भी अगर आप पहन रहे हैं तो प्लेन कॉटन का, आप देखिए वो आईएएस के इंटरव्यू के लिए आई है, उसने एक बेज कलर का सूट पहना है, मरून कलर का दुपट्टा है, ना तो कोई बड़े झुमके हैं ना तो कोई ज्वेलरी उसने पहनी है, क्योंकि वो चाहती थी, ये जो फोटो है इसकी बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि वो चाहती थी कि वो जो बोल रही है, जो उन्होंने सीवी में लिखा है, उस पे एम्फेसिस हो, उन चारों लोगों का जो इंटरव्यू करने उसको उनको बैठेंगे। अब देखिए चारों का ध्यान उसी तरफ है जो वो बोल रही है, किसी का भी ध्यान इधर उधर नहीं है। आपका हेयर स्टाइल जो है, मेन वुमेन गर्ल बॉय सभी का क्लीन एंड नीट होना चाहिए, बहुत बड़ा हेयर डू नहीं चाहिए, और मतलब बेसिक नीट एंड क्लीन आपका अटायर होना चाहिए। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा आप खुद ही कभी फंस जाएगा कुछ कान में और आप खुद ही परेशान हो जाते हैं। अगर कंफर्टेबल क्लोथ्स नहीं है तो हो सकता है गर्मी लग रही हो बहुत ज्यादा। ट्राई एंड नॉट टू वियर एनीथिंग लाइक अ पार्टी। आप किसी पार्टी में नहीं जा रहे, आप किसी प्रोफेशनल कंडक्ट में जा रहे हैं, तो उसी तरह बहुत ज्यादा मेकअप मत करके जाइए। बेसिक बेसिक जो चीजें हैं, आप लिप ग्लॉस लगा सकते हैं, बेसिक आप आईलाइनर लगा सकते हैं, बट बहुत मेकअप करके मत जाइए। इट डिस्ट्रैक्ट्स द अदर पर्सन फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग। दिस इज जस्ट सम टिप्स अबाउट दैट, अबाउट व्हाट यू कैन वियर। किसी और का कोई पॉइंट है तो वो आप लिख लीजिए, हम जरूर डिस्कस करेंगे। वी कैन कम बैक टू इट इन फ्यू मिनट्स। मैं टाइम देख रही थी कहीं मैं ज्यादा टाइम तो नहीं ले रही हूँ। अपना फोन जरूर से जरूर साइलेंट पे रखिएगा, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन रहता है। जैसे मैंने अभी अपना फोन चेक किया टाइम के लिए, तो ये जरूर करिएगा कि आप अपना फोन को डिस्ट्रैक्ट करें। सोशल मीडिया पिंग पिंग पिंग पिंग पिंग करता रहता है, कभी कभी हम बात कुछ करें टिंग टिंग की आवाज पीछे से आती है, प्लीज अवॉइड दैट। जब आप बात कर रहे हैं तो आप रिलैक्स्ड मैनर में डीप ब्रीदिंग के साथ पेशेंटली आप बात करेंगे, और अपनी पाम्स को हमेशा ओपन रहेंगे, क्योंकि अगर आप बात करते हुए ऐसे ऐसे करेंगे ना तो ऐसे लगेगा कि आप थोड़ा नर्वस हो रहे हैं, या कभी कभी हम ऐसे हाथ दबा के बात करते हैं, या दुपट्टा है तो दुपट्टे को दबा लेते हैं अपने हाथ में कि पीछे से कॉन्फिडेंस आ रहा है, हाँ आ रहा है आ रहा है, अवॉइड करिए। अगर पेन पेंसिल हमारे हाथ में होती है, कभी कभी हम अनकॉन्शियसली उसको चबाने लग जाते हैं। हो सकता है हम पैनल में बैठे हैं, 10 लोग हैं, और आपसे सवाल नहीं पूछा जा रहा, सवाल किसी और से पूछा जा रहा है, तो आप पेन चबा रहे हैं उतनी देर, या पेंसिल चबा रहे हैं उतनी देर, या फिर आपके हाथ में कोई पेपर है उससे आप वो, मेरी बहुत आदत है कि पेपर पे मैं वो छोटे छोटे छोटे छोटे कुछ ड्रॉइंग ऐसे करने लग जाती हूँ। तो इंटरव्यू के टाइम पे प्लीज वो अवॉइड करिए, ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन रहती है। अपना पैर मत हिलाइए, पैर हिलाना या फुट हिलाना, नोज पिकिंग करना कंप्लीटली नो, हम सभी को ये बातें पता है, बट कहीं ना कहीं जब हम नर्वस होते हैं तो ये एक नर्वस रिएक्शन हमारे हमारे पीछे से वो माइंड उसको कोशिश करता है कि हम किस तरह से वो नर्वसनेस को, कभी कभी बहुत लोग पानी बहुत पीते हैं इंटरव्यू में, फिर पानी बहुत पियेंगे तो वो भी एक शो है कि नर्वसनेस आ रही है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंस शो कर सकते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, आपको वो स्किल आती है क्योंकि आपने वो रिसर्च करी है कि इस जॉब को किस स्किल की जरूरत है, तभी आपने अपने आप को जॉब के लिए अप्लाई किया है। ड्रेस योर सेल्फ प्रॉपरली फॉर द प्रोफेशनल थिंग दैट यू आर गोइंग। यू आर नॉट गोइंग फॉर अ कल्चरल इवेंट, आप किसी शादी के लिए या किसी पार्टी के लिए नहीं जा रहे हैं। डोंट ड्रेस लाइक यू आर गोइंग फॉर अ मैरिज। पर्सनल लाइफ में आप कैसे भी ड्रेस करें, प्रोफेशनल में सर्टन बेसिक एटिकेट्स आर देयर, वी शुड फॉलो दोस थिंग। कई कई ऑर्गेनाइजेशन में यूनिफॉर्म भी होती है। आप ये आप तो सोचिए कि बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं जो जैसे मारुति में काम कर रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी होटल्स हैं जिनमें अपनी यूनिफॉर्म होती है, तो आप ये सोचिए कि उनका तो प्रोफेशनल, उनको अटायर मिलता है, उनको साड़ी ही पहनना होता है, मंडे को अलग, ट्यूजडे ऐसे अलग अलग कलर्स की साड़ीज मिलती है। तो आप ये देखिए जो वो इतना प्रोफेशनल अटायर को सीरियसली ले रहे हैं, तो आपको भी अपनी तरीके तरफ से कोशिश करना है। हम ये नहीं कह रहे कि बहुत अच्छे ब्रांड का शर्ट लेके जाओ या बहुत अच्छा क्वालिटी का सूट पहन के जाओ, बेसिक साफ नीट एंड क्लीन अपने आप को, क्योंकि ड्रेस ड्रेसिंग को मैंने देखा है बहुत लोग बहुत कैजुअली लेते हैं, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा टाइम इस पे स्पेंड कर रही हूँ। अगर अगर आपकी कम्युनिकेशन है वर्बली आप कर रही है, रिटन में भी कभी कभी लिखने को बोलते हैं। हम कभी कभी ना कुछ जब इंटरव्यू चल रहे होते हैं हम बोलते हैं कि ठीक है आप एक पैराग्राफ लिख के दे दीजिए, आप जिस भी भाषा में लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मराठी तेलुगु, आप उसमें लिख के दीजिए, बट क्लियर और क्रिस्प में लिख के दीजिए, ऐसे मत लिखिए, शॉर्ट में लिखिए क्या कहना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस करके जाइए उस चीज के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर से मैं कह रही हूँ कंपनी के बारे में एडवांस रिसर्च करके जाइए, वो कौन इंटरव्यू ले रहा है, कई बार HR के नाम दिए होते हैं वेबसाइट पे, तो आपको थोड़ा फेमिलियर हो सकते हैं, आप देख सकते हैं कि सारे जो HR के लोग हैं वो कभी कभी वेबसाइट पे लिखा होता है कि इंटरव्यू कौन लेंगे, तो जितना ज्यादा आप कंपनी के बारे में जानेंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा। ट्राई एंड रिमेन काम, प्रैक्टिस पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, बी पोलाइट बी कर्टियस टू द इंटरव्यूअर, क्योंकि उसका ये काम है। अगर वो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जैसे कि अभी सुनी किसी ने बताया था कि वो ऐसी सिचुएशन में आपको डालने की कोशिश करेंगे कि वो जज करेंगे कि अलग अलग सिचुएशन में अगर हम आपको डालते हैं तो आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, तो आप पोलाइट रहिए, कर्टियस रहिए। अगर कुछ नहीं आता तो आप कह सकते हैं आई एम अ गुड लर्नर, मैं जल्दी सीख लेता हूँ, ये मैं जल्दी सीख लेती हूँ, अगर आप सिखाएंगे, अगर मुझे कोई सिखाएगा तो मैं सीख लूंगा। बट आप हर क्वेश्चन के लिए ये नहीं बोल सकते, कोई ऐसी स्पेसिफिक स्किल जो आपको लगता है इस जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अगर आप कमिट कर रहे हैं कि आप सीख लेंगे तो जरूर सीखिए, ये नहीं कि सिर्फ सिर्फ कहने के लिए, जॉब एक्वायर करने के लिए नहीं, अगर आपने एक बार कमिटमेंट करिए तो आपको सीखना भी पड़ेगा। सो इफ यू डोंट नो द आंसर यू कैन से दैट आई डू नॉट नो अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग बट आई कैन डू द रिसर्च एंड गेट बैक टू यू, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ जाएंगे कि आप फिडल कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या आपको वाकई में पता है इस बारे में कि नहीं। अपनी रिज्यूमे की कॉपीज हैंडी रखिए जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर आपने ईमेल से भेज भी दिया है तभी भी आप अपनी इंटरव्यू की एक या दो कॉपीज करा के जाइए। आपके सर्टिफिकेट्स हैं, उन सर्टिफिकेट के ओरिजिनल भी कई बार लोग देखना चाहते हैं, एक अच्छा सा महंगा नहीं अच्छा सा फोल्डर खरीद लीजिए, फोल्डर में पॉकेट्स होती हैं, अपने सारे सर्टिफिकेट्स नीटली उन पॉकेट्स में रखिए, कोई पूछता है कोई मांगता है तभी उसे दिखाइए, बिकॉज आपने CV में ऑलरेडी लिख दिया है कि आपने कौन कौन से कोर्सेस करे हैं, आपका जॉब एक्सपीरियंस क्या है, कहीं पे वॉलंटियर किया है कि नहीं, वो आपने CV में ऑलरेडी कर दिया है। आप चाहें तो रेज्यूमे राइटिंग पे भी हम एक सेशन कर सकते हैं, बट ये चीजें आपने ऑलरेडी CV में लिख दी है, तो कोई सर्टिफिकेट अगर मांगते हैं या कभी कभी HR में जमा कराने पड़ते हैं तो आप कहेंगे अच्छा आज तो है नहीं मैं कल दे जाऊंगा या दे जाऊंगी, तो वो अवॉइड करिए, अननेसेसरली कोई जरूरत ही नहीं है, कौन फॉलो अप करेगा नहीं करेगा, हैंडी रखिए, कोई पूछता है तो वहीं पर उसकी कॉपी सबमिट करके आइए। अपना आई कांटेक्ट कभी भी लूज मत करिएगा अपने इंटरव्यूअर के साथ, हमेशा पोलाइटली चीयर, मतलब बहुत खुश नहीं, अभी हमने फोटो में देखा था कि वो आदमी कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा था, इस तरीके का फेस नहीं रखना, उदास नहीं रखना, खुश और कॉन्फिडेंट फेस रखना है। बट इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली अपनी जो स्किल है जिस इंटरव्यू के लिए हम अप्लाई करने जा रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी का है तो आप अपनी स्किल्स जो है ब्रशअप करके जाएंगे, टैली का इंटरव्यू है आप टैली की लेटेस्ट क्या क्या टेक्नोलॉजी चल रही है उसके बारे में रिसर्च करके जाएंगे, हेल्थ वर्कर्स की कोई नर्सिंग का कोई अपॉइंटमेंट निकला है आप नर्सिंग की अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं, आप आजकल कौन कौन सी बीमारियां चल रही हैं उनमें क्या क्या चीजें, अगर कोविड का टाइम अभी जैसे चल रहा है आप पूरी रिसर्च करके जाएंगे कि फर्स्ट वेव में क्या हुआ सेकंड वेव में क्या हुआ, आपको कोई डॉक्टर बनने को नहीं कह रहा बट जो एज ए नर्स एज ए असिस्टेंट आपको पता होना चाहिए फर्स्ट एड के बारे में, बेसिक दवाइयों के बारे में, आपको वो चीजें रिवाइज करके जानी है, तभी आप कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे और तभी आपका नर्वसनेस कम होगा। आप टीचर हैं, आप ब्यूटिशियन है, आप एक्सपर्ट अपेरल, किसी अपेरल कंपनी में आप जा रही हैं, आपको सिलाई आती है, आप बढ़िया एकदम फर्स्ट क्वालिटी की सिलाई करते हैं, आप अपने सैंपल साथ लेके जाइए, जो हम सैंपल रजिस्टर वो बनाते हैं आपका रजिस्टर उसको साथ लेके जाइए। अगर जैसे कि मैंने बताया अगर वो कुछ नहीं आता, यू कैन ऑलवेज से कि मुझे अभी नहीं आता, मैंने इस चीज की कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं दिया, लेकिन मैं एक फास्ट लर्नर हूँ, मैं ये सीख सकता हूँ, सीख सकती हूँ अगर मुझे सिखाया जाए। अपनी रेफरेंसेस, चाहे रेफरेंसेस का मतलब जो लोग आपके बारे में, आपसे हटके, क्योंकि मैं अपने बारे में बताऊं और मेरे बारे में कोई और बताए, थोड़ा फर्क पड़ता है। रेफरेंसेस उसको बोलते हैं जो आपके बारे में फीडबैक दे सके। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके टीचर्स हो सकते हैं। ज्यादातर फ्रेंड्स के रेफरेंसेस मत दिया करिए, कोई भी मेरे दोस्त से पूछ लीजिए, ऐसा नहीं होता। रेफरेंसेस की भी अपनी एक क्वालिटी होनी चाहिए, या तो वो आपके टीचर्स हो सकते हैं अगर आपने, या फिर कोई ऐसा प्रोफेशनल हो सकता है जो आपकी फैमिली में है, आप प्रेशर है लेकिन कोई प्रोफेशनल आपकी फैमिली में, फादर मदर को छोड़ के, इमीडिएट फैमिली को छोड़ के आप उनका रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आपने कहीं ऑलरेडी काम करा हुआ है, अगर आप सेकेंड थर्ड फोर्थ जॉब 10th जॉब के लिए जा रहे हैं, तो उस इंसान का रेफरेंस दीजिए जो आपको, जिसके साथ आपका कंडक्ट अच्छा है और वो आपके बारे में अच्छे रेफरेंस देंगे, और उनकी खुद की भी एक स्टैंडिंग होनी चाहिए। उन रेफरेंसेस को आप पहले से बता दीजिए कि आप इस जॉब के लिए जा रहे हैं, हो सकता है आपको इनसे फोन आएगा मेरे बारे में चेक करने के लिए। अगर आप फाइनल पोजीशन के लिए नहीं भी सिलेक्ट होते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक एक्सपीरियंस हुआ, आप जॉब इंटरव्यू में गए, आपको एक एनवायरनमेंट में पता चला कि आप किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, आप वापस घर आइए। आप नहीं सिलेक्ट होते तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर करिए। डोंट लूज योर हार्ट कि अगर एक इंटरव्यू में नहीं हुआ, 10 इंटरव्यू में नहीं हुआ, लेकिन एनालाइज जरूर करिए कि क्यों, मेरा क्यों नहीं हुआ। वो एनालाइज आप तभी कर पाएंगे जब आप पहले ही जितने स्टेप्स थे आप उन पे काम करेंगे। आप कंपनी के बारे में जानकारी लेंगे, आप अपनी स्किल्स को ब्रश अप करके चलेंगे, आप कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू में अपियर होंगे, एंड योर रेफरेंसेज आर गुड, आपकी अच्छी रेफरेंसेज होंगी, और आप मतलब बिल्कुल पोजीशन से अप्रोप्रिएट आपका स्किल होगा। ऐसा नहीं कि पोजीशन हेल्थ वर्कर्स के लिए आती है आपको सुइंग है और आप हेल्थ वर्कर्स के लिए देने चले गए, आती है आपको स्टिचिंग एंड सुइंग है, या स्टिचिंग एंड सुइंग अपेरल का कोई है, आता आपको ब्यूटिशियन का कोर्स है और देने चले गए आप स्टिचिंग एंड सुइंग के उसके लिए, तो वो मिसमैच हो जाएगा। टैली आपको आता ही नहीं, कभी आपने सीखा ही नहीं, तो आप इंटरव्यू देने चले गए, आप कभी भी सिलेक्ट नहीं हो सकते, चाहे आप कितना भी कॉन्फिडेंट हो जाएं, जितना भी अच्छे आप ढंग से अपने कपड़े पहन के चले जाएं, कितने भी अच्छे से आप इंटरव्यू से, आप ये नहीं कह सकते टैली आई विल लर्न ऑन द जॉब, आई एम अ फास्ट लर्नर। नो, दैट वॉज द स्किल रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। हाँ, उसमें वो बोले कि अच्छा आप टैली में कर लेते, क्या आप ईमेल राइटिंग आती है? अगर आपको ईमेल राइटिंग नहीं आती लेकिन टैली आता है तो आप बोल सकते हैं कि मेरे को बेसिक इंग्लिश आती है, ईमेल राइटिंग में सीख लूंगा। लेकिन मेरा ये सजेशन है कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो हम एज ए प्रोफेशनल, चाहे हमें 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, 0 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो हमें लगातार सीखते रहना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है। वो ऐसी स्किल्स हैं कि जैसे एमएस ऑफिस हो गया, एमएस ऑफिस क्यों हमेशा, क्योंकि इसमें नए नए वर्जन आते हैं, हर वर्जन के साथ कुछ ना कुछ नया टेक्नोलॉजी एड ऑन हो जाता है। ईमेल राइटिंग इज एन आर्ट, मतलब इस पे कितने कितने कोर्सेज लोग करते हैं, क्योंकि किस तरीके से आप ईमेल लिख सकते हैं जो दूसरे को कन्विंस कर सकता है आपकी बात को मानने के लिए। बेसिक इंग्लिश में ना डरना नहीं चाहिए। बेसिक इंग्लिश के कुछ वर्ड्स होते हैं, आप देखिए ज्यादातर लोग वही 50-60 वर्ड्स के अंदर अंदर ही बेसिक कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत, जैसे कि वो कहते हैं ना, जैसे कि जैसे शशि थरूर को आपने कभी अगर तो इंटरव्यू किसी ने देखा होगा, तो वो जिस लेवल की इंग्लिश, या सुधा मूर्ति जिस तरह की इंग्लिश यूज करते हैं, हमने उस इंग्लिश में बात नहीं, बेसिक चीज मैंने बोली आपकी समझ में आई, आपने बोली मेरी समझ में आई, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन, उस शब्द को कहाँ यूज करना है, वो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस ऐसी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन है और फ्री है, और आपको जॉब में हेल्प करेगी। ये जैसे ही आप अपने सीवी में डालते हैं, आपका आपका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है एज अ कैंडिडेट। सो दिस वॉज इट। आई डोंट नो इफ दिस इज यूजफुल और नॉट, बट आई थॉट, बहुत सोचा कि बहुत हैवी हो रहे थे वो सेशंस, तो हम कौन सा ऐसा कुछ टॉपिक पकड़ सकते हैं जो सबके सबके लिए जरूरी है. आप बेसिक कम्युनिकेशन स्किल अगर ले लेते हैं और इंटरव्यू स्किल ले लेते हैं तो भी हम एटलीस्ट किसी लेवल पे पहुंच सकते हैं. बाय, सब अपना ध्यान रखेंगे, कोरोना
1: Yes,
0: से बच
1: ma'am.
0: के रहेंगे.
2: Thank you so
0: तो
2: much,
0: बाय
2: ma'am.
0: बाय बाय.

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: गुड आफ्टरनून मैम।
1: गुड आफ्टरनून। सेशन के लिए सब तैयार हैं?
0: यस मैम।
1: आज का जो सेशन है बहुत ही सिंपल थॉट प्रोसेस मैंने लिया है। थोड़ा हटके मैं बात करूंगी आज काम के बारे में, तो लिंक करूंगी करूंगी, बट हम बेसिक्स ऑफ लाइफ से शुरू करेंगे कि हमारी लाइफ क्या है और हमें लाइफ के साथ कैसे डील करना होता है। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप एवरीबॉडी इज एबल टू जॉइन द सेशन वेल इन टाइम। मैं शुरू कर लेती हूँ, फिर बीच में कोई भी ज्वाइन करेंगे तो अपना हाथ खड़ा कर दें, तो फिर मैं रिपीट कर दूंगी कुछ पॉइंट्स, ठीक है? तो आज हम शुरू करते हैं बहुत ही एक बेसिक चीज से कि हम लोग सब, बर्थ होता है हमारा, है ना, और हम आज जो भी है यहाँ पे सबका किसी ना किसी टाइम पे बर्थ हुआ है और हमारी एक डेट ऑफ बर्थ भी है और ईश्वर ने हमें एक लाइफ दी है, राइट? और जो हमें लाइफ दी है ईश्वर ने, वो ही डिसाइड करता है कि हमें किस फैमिली में बर्थ लेना है, कौन सी फैमिली, कौन से पेरेंट्स हमें मिलेंगे, कौन से पेरेंट्स हमें पालेंगे, हम किस घर में रहेंगे, ये सब कुछ ऊपर से डिसाइड होकर आता है। पर भगवान हमें क्या देता है? एक जिंदगी, एक लाइफ। वो लाइफ को कैसे जीना है वो हमारे हाथ में होता है, बर्थ हमारे हाथ में नहीं है। अगर आप अच्छे से समझे इस बात को, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बर्थ हमारे हाथ में नहीं है पर लाइफ हमारे हाथ में है, और जिस तरीके से हमें अपनी लाइफ जीनी है वो हमें डिसाइड करना है। हमारे पेरेंट्स, कोई भी ऐसा पेरेंट नहीं है जो अपना बेस्ट अपने बच्चों को नहीं देता है ना। जो पेरेंट्स, और हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को बेस्ट देते हैं और एक लाइफ की डायरेक्शन भी दिखाते हैं कि किस डायरेक्शन में आप लोगों को जाना है, बट खाली 3% लोग हैं जो बर्थ के बाद अपनी लाइफ को बना सकते हैं। वो 3% जो लोग हैं, उन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपनी लाइफ में किया होता है, तभी वो अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से बना पाते हैं। 97% ऑफ द पीपल लिव अ कॉमन रूटीन लाइफ। हम लोग भी कॉमन रूटीन लाइफ ही जीते हैं। सुबह उठते हैं, दिनचर्या करते हैं, खाना बनाते हैं, ऑफिस आते हैं, ऑफिस का रूटीन का काम करते हैं। ज्योति, आपकी बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, मेरी स्क्रीन में आपके डिस्टरबेंस आ रही है। आप कभी आगे देखते हो, कभी पीछे, कभी इधर कभी उधर, तो मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है।
2: सॉरी मैम, वो थोड़ा सा ना बच्चे सिटिंग कर रहे थे 2 मिनट की, बस अब नहीं
1: नहीं,
2: करेंगे,
1: वो मेरी
2: कुछ
1: मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, जो मैं
2: नहीं।
1: थॉट प्रोसेस लेके बोलना चाह रही हूँ वो फिर हट जाता है दिमाग से, ठीक
2: मैम सॉरी
1: है? हाँ, तो
2: जी
1: 97% लोग जो हैं इस दुनिया में कॉमन रूटीन लाइफ जीते हैं, जो एक एक रूटीन है कि सुबह उठना है, रात को रात होती है, हम सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स हम नहीं दे पाते हैं, तो हमें एक सेटिस्फेक्शन भी मिल जाती है अपनी रूटीन लाइफ से और हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हाँ, हमने आज बहुत कुछ कर लिया अपनी लाइफ में। एट द एंड ऑफ द डे वी डिराइव अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑन व्हाट वी डू नॉर्मली, जो हमारी लाइफ इस पे डिपेंडेंट रहती है और इसके ऊपर आसपास घूमती है। क्लीनिंग हो गया, ईटिंग हो गया, अर्निंग लाइवलीहुड हो गया, स्लीपिंग हो गया, मेडिटेटिंग हो गया, एंड वी ऑल्सो टेक केयर ऑफ आर गुड हेल्थ एंड फैमिली रिलेशनशिप्स। तो मेरे हिसाब से ये एक रूटीन लाइफ है। जब तक हम इस रूटीन लाइफ में रहते हैं, हम सेटिस्फेक्शन डिराइव करते हैं अपनी लाइफ से, बट अगर हम कुछ हटके करने की सोचें तो हम बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो हम रूटीन लाइफ तो हर कोई जी रहे हैं, पर अगर हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लेते हैं अपनी लाइफ में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक स्टेटमेंट है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स। जो विनर्स होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो कोई डिफरेंट चीजें नहीं करते हैं, बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। वो डिफरेंटली करते हैं, चीजें सेम होती हैं लाइफ की। सबको पैसा चाहिए, सबको नॉलेज चाहिए, सबको एजुकेशन चाहिए, सबको बिजनेस चाहिए। एवरीथिंग इज द सेम, ऑलमोस्ट द सेम, बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो ये शिव खेरा की स्टेटमेंट है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स। वो कोई आसमान से कोई चीज तो उतरती नहीं है कि वो जो अलग से करते हैं, बट वो उन्हीं चीजों को डिफरेंट तरीके से करते हैं, तभी वो सक्सेसफुल हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स डालते हैं। हाउ यू डू थिंग्स डिफरेंटली, हम क्यों कैसे कर सकते हैं अलग से चीजें, वो कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। अभी तक सबको समझ में आ गया मैंने क्या बोला है?
2: यस मैम,
1: शिव खेरा की स्टेटमेंट मैं रिपीट कर रही हूँ, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। एंड हाउ दे डू थिंग्स डिफरेंटली, वो अपनी जो पावर्स हैं उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं। नॉर्मली जो हम रूटीन में काम करते हैं, हम अपने पावर्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि शायद हम ये नहीं कर पाएंगे, शायद ये मेरे बस का नहीं है, इट्स बियॉन्ड माई फैमिलीज डिसीजन, मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगी। तो हम अपनी जो पावर्स हैं, जो इंटरनल पावर्स हैं, हम उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। द क्वेश्चन इज नॉट व्हाट यू डू, बट आर फोकस शुड ऑलवेज बी व्हाट यू कैन डू। मतलब कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम ये करना चाहते हैं और हम ये कर रहे हैं, बट हम इसको कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं वो हमारे थॉट प्रोसेस में कभी कभी डेविएट हो जाता है। तो हमें छोटे छोटे स्टेप्स, मैं ये कोई बड़ी बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मैं कॉमन स्टेटमेंट बोल रही हूँ, तो हम बेबी स्टेप्स लेते हैं जब, तो हम बहुत बड़े अपने ड्रीम्स को रियलाइज कर सकते हैं। हम क्या सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी देना चाहूंगी कि हम सोचते हैं अच्छा आज मेरी सैलरी 5,000 है, अगर मैं 10,000 कमाना शुरू कर दूं तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। बट हमने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मैं 50,000 या 1,00,000 रुपया कमाने की अपना गोल सेट कर लूं और उसके वो गोल अचीव करने के लिए मैं कैसे चीजों को डिफरेंटली कर लूं, अगर वो प्लानिंग हम नहीं करते हैं, वो गोल सेटिंग हम अपनी लाइफ में नहीं करते हैं, तो हम एक रूटीन में ही रह जाते हैं। उस रूटीन से हटके हम अपने बड़े ड्रीम्स जो हम लेते हैं कभी कभी हम उनको रियलाइज नहीं कर सकते हैं। हमारे पास, सबके पास नॉलेज है, हम सब लोग नॉलेज गेन करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, और जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं वो सब रीड सेंटर से जुड़े हैं, और सबको नॉलेज दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, मेंटरशिप रोल प्ले करते हैं कोऑर्डिनेटर्स, और हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं। बट अगर हमारे पास नॉलेज है और अगर हम उसको सही ढंग से यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर भी हम अपने लिए रोड ब्लॉक्स बना रहे हैं, हम सक्सेसफुल बनने की सीढ़ी से कहीं अपने आप को पीछे लेके जा रहे हैं। और ये नॉलेज, इंफॉर्मेशन और गोल सेटिंग के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो है करेज। अगर मैं करेज नहीं रखती हूँ कुछ भी करने का, जो मैं अपनी नॉलेज को डिफरेंटली यूटिलाइज नहीं कर पाती हूँ और अपने पोटेंशियल को मैं हार्नेस नहीं कर पाती हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं अपने रूटीन वर्क से ऊपर नहीं उठ पाती। यहां तक सबको समझ में आ गया मैंने जो बोला कि हमें जीवन मिलता है, पर जीवन और जिंदगी में बहुत फर्क है। हम जीवन तो जीते हैं, पर जिंदगी को कैसे शेप देनी है वो हम नहीं सोच पाते हैं। हम एक छोटी सोच लेकर ही अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं, पर हम अगर अपनी लाइफ में बड़े गोल्स बनाएं, बड़ी सोच रखें, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया है कि 5,000 से 50,000 का सैलरी कैसे हमने कमानी है, या कैसे अपने बिजनेस में 5,000 से 50,000 कमाने हैं, अगर उसमें हम नॉलेज के साथ साथ हम अपना करेज भी मेंटेन रखें और अपने पोटेंशियल को भी हार्नेस करें, तो मुझे नहीं लगता कि हम कहीं पीछे हट सकते हैं। हमारे पास जो डेटा आया है पिछले साल का, जो हमने रियलाइज करा आज ये प्रेजेंटेशन, ये सेशन मैंने बहुत सोच समझ के रखा है, मोर देन 50% ऑफ द कम्युनिटीज विद होम वी हैव वर्कड और हमने उनको ट्रेन करा है, उनकी मंथली इनकम है 2,000 से 5,000 तक। अगर उनमें से कोई भी ये सेशन सुन रहा है तो उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि 2,000 और 4,000 की रेंज में कमाने से मुझे 20,000 और 25,000 की रेंज में कैसे पहुंचना है। कोई फर्क नहीं है, आपके पास सेंटर है, आपके पास सुइंग मशीन है, आपके पास ट्रेनर है, आपके पास आपने टाइम भी निकाला है सीखने के लिए, पर आपने वो जो मोटिवेशन है, जो करेज है, नॉलेज को इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करना है, कहीं ना कहीं वहां गैप। आप लोग सहमत है मेरी बात से, है ना? क्योंकि
2: जी
1: हम
2: मैम,
1: आपको सेटिस्फाई कर लेते हैं कि हाँ मेरी जरूरत जो है वो 4,000 में पूरी हो रही है, मेरे को ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है। यही सोच है सब लोगों की। कोई हाथ खड़ा करेगा? सो देट आई गेट द रिस्पॉन्स कि कितने लोग ये सोचते हैं और कितने लोग ये सोचते हैं कि मुझे कुछ हटके करना है जिससे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं। अगर हम ये सोचते हैं कि मुझे कुछ हटके करना है, मुझे कुछ डिफरेंटली करना है, तो हम अपनी लाइफ में नॉलेज, विजडम, करेज और पोटेंशियल का बैलेंस बना के रखते हैं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों के एग्जाम्पल दूंगी, मैं नाम नहीं लूंगी, जिन्होंने अपने लाइफ में रीड सेंटर के थ्रू बहुत आगे बढ़े हैं, अपनी एजुकेशन को भी आगे किया है, अपने मोटिवेशनल लेवल को भी आगे किया है, अपने करेज को भी आगे किया है, अपने पोटेंशियल को भी बढ़ाया है, बट समवेयर दे आर नॉट एबल टू डू द थिंग्स डिफरेंटली सो दैट दे कैन मीट विद देयर गोल्स, दे कैन रियलाइज देयर ओन ड्रीम्स। कहीं ना कहीं गैप आ रहा है। तो मुझे लगता है ये जो बेसिक स्टेटमेंट मैं कहना चाह रही थी वो सबको समझ में आ गई है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली जो अपना जीवन जीते हैं, हम घर पे, सोसाइटी पे, अपने ऑफिस पे, अपने नेटवर्क पे, अपनी फैमिली पे, अपने रिलेटिव्स पे ही फोकस रहते हैं, और हमारा जो छोटा सा दायरा बना हुआ है हम उस दायरे से कभी बाहर सोचने के लिए, हिम्मत करने के लिए नहीं निकल पाते हैं। मोस्टली लोगों के साथ ऐसे होता है। बहुत एग्जाम्पल्स और भी हैं जो अपने दायरे से बाहर निकल के मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, पर नॉर्मली 70%, जो मैंने पहले अपनी स्टेटमेंट में बोला था, 3% आगे बढ़ते हैं, 97% अपनी रूटीन में रह जाते हैं। वो इसलिए रह जाते हैं कि वो अपने घर की जिम्मेदारियों से, अपने समाज की जिम्मेदारियों से, अपने ऑफिस की जिम्मेदारियों से वो अपने दायरे से बाहर नहीं आ सकते हैं, और वो ही उनकी एक दुनिया बन के रह जाते हैं। और जब तक हम उस दुनिया से, उस वर्ल्ड से बाहर नहीं निकलेंगे, हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स नहीं डालेंगे, हम अपने ड्रीम्स को रियलाइज करने में कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपके ड्रीम्स ऐसे होने चाहिए कि आप आसमान में उड़े, उड़े तो बहुत अच्छी बात है, पर हाँ अपनी रूटीन के दायरे से बाहर आने के लिए अपने ड्रीम्स को प्लान करना चाहिए, अपने गोल सेट करने चाहिए, और कोई बुरी बात नहीं है अगर हम ड्रीम्स देखें कि आज अगर मैं इस जगह पे हूं तो मुझे 15 साल बाद किस जगह पे होना है, और अगर 15 साल बाद हमें किस जगह पे होना है अगर आज हम नहीं सोचते हैं, तो ये 15 साल ऐसे ही बीत जाएंगे, आपके गोल्स वहीं के वहीं रहेंगे, 15 साल बाद आप उसी पोजीशन पे रहेंगे, उसी दायरे में रहेंगे, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये मैं आपको बहुत क्लियरली बहुत साइंटिफिक स्टेटमेंट बता रही हूँ। मैं अपना भी एग्जाम्पल दे सकती हूँ। 30 साल पहले मैं पीएचडी नहीं थी, मैं बहुत लोअर पोजीशन से डायरेक्टर की पोजीशन पे आई हूँ, क्योंकि 30 साल पहले मैंने विजुअलाइज कर लिया था जब मैं टेबल के दूसरी साइड पे बैठी थी और मैंने कहा था मुझे तो इसी कुर्सी पे बैठना है जहां पे मेरे सामने बैठे, और वो सामने वाली कुर्सी पे आने के लिए मुझे जो मेहनत करनी थी मैंने वो करी। और ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी फैमिली को छोड़ा, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ा, मैंने अपनी एजुकेशन को छोड़ा, मैंने अपनी नॉलेज को इम्प्रूव नहीं किया, बट द ओनली थिंग विच मेड मी सिट ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल वॉज करेज। करेज बहुत जरूरी है हमारे में आना, जिससे हम अपने ड्रीम्स को रियलाइज कर सकते हैं। और हमें बहुत ये पहचान भी होनी चाहिए, सोच भी होनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ कंडीशंस कैसे क्रिएट करते हैं अपने लिए। लाइफ कंडीशंस क्या होती हैं, आज मैं आपको ये भी समझाऊंगी। लाइफ कंडीशंस होती हैं कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारे आसपास के लोगों की सोच, हमारे आसपास जो लोग हमें रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं आगे बढ़ने के लिए वो, और हमारी अपॉर्चुनिटीज जिनको हम ग्रैप नहीं कर पाते हैं, मे बी एनी ऑफ द रीजन। तो वो जो हमारी अपनी सोच है और जो हमारा अपना एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है, आज मैं पहले उसकी बात करूं। एक वर्ड है आपने सुना होगा, हेल्प, हम बहुत यूज करते हैं इस वर्ड को। आई एम लिविंग इन अ हेल, माई एनवायरमेंट इज वेरी नेगेटिव, मेरे आसपास लोग वो सोच ही नहीं रखते जो मैं अपनी सोच रखती हूँ। ये जो हेल वर्ड है, जो हम अपने ही दायरे में अपने ही कुएं में गिरते हैं, वो किस तरीके से गिरते हैं, सिर्फ अपनी सोच से। हम एक नॉर्मल सोच से हम ऊपर नहीं उठ पाते हैं, अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाते हैं। सबके साथ बहुत सारे हालात ऐसे होते हैं जिनसे हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है, जो हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, पर हमारे अंदर की सोच वो क्या है, वो हमारी है। वो सोच पे किसी का कोई अधिकार नहीं है। मेरे वर्ड्स पे आप जरूर एम्फेसाइज करें, जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो हमें कहता है, हमारे डायलेक्ट्स, हमारी लैंग्वेज, हमारी सोच को बदलता है। पर अगर हम अपनी सोच पे कंट्रोल रखें, कीपिंग इन व्यू द पॉइंट्स आई शेयर्ड इन माय फर्स्ट लाइफ, तो हम अपनी सोच के ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं। 97% ऑफ द पीपल जो अपनी लाइफ में रूटीन से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो हमेशा एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं उनको ब्लेम करते हैं। माई मदर इन लॉ इज लाइक दिस, माई हस्बैंड डजंट लिसन टू मी, मेरे घर का काम खत्म नहीं होता, मेरे पे बहुत प्रेशर है, मेरे पे बहुत टेंशन है। वो किसकी सोच है? वो हमारी सोच है। हमने वो सोच अपने ऊपर इतनी जबरदस्त उसको हावी होने दिया है, उस हावी होने के कारण हम अपना करेज लूज कर सकते हैं, हम अपनी नॉलेज के ऊपर धूल छोड़ देते हैं, हम अपने जो एक्शंस लेने हैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए उनको डाइल्यूट कर देते हैं। वो एक ही बहुत बड़ी चीज है जो हमारी सोच है, जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारी सोच के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है, मैं कोई अलग से नहीं हूँ, बट हाँ ये हमारे अपनी लाइफ में रूटीन में प्रैक्टिस करना है कि हम जितना अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को अपने ऊपर प्रेशर ना क्रिएट करने दें, उतना ही हम हमारे लिए अच्छा है। तो ये हेल वर्ड आपको समझ में आ गया, नेगेटिविटी, नेगेटिविटी फैक्टर्स जो हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। दूसरा है हंगर। हंगर क्या होता है? ग्रीन। हम हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स में कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि उसके पास ये चीज है, मेरे पास नहीं है। वी डोंट ट्राई टू लिव विद इन द मीन्स वी हैव, और हम कंपैरिजंस में उन सब चीजों को लेने की एक जिज्ञासा रखते हैं, हंगर रखते हैं, और उस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए हम गलत काम भी कर लेते हैं। हम अपनी ट्रांसपेरेंसी पे, अपना जो ट्रूथफुलनेस है इनसाइड आउट, उसके साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है हमारी लाइफ में, और हर कोई करता है ये। आई एम जस्ट ओपनिंग योर आईज ऑन दिस। हम कहते हैं कि हमें कोई नहीं देख, हम ये कर सकते हैं, बट अगर हम इनसाइड आउट एक ही हैं, हम फर्क नहीं हैं, तो हम इस जिज्ञासा से बाहर आ सकते हैं। तीसरा बहुत ही नेगेटिव पॉइंट, जो मैं रूटीन लाइफ की बात कर रही हूँ, वो एक और जो नेगेटिव पॉइंट है वो है एनिमैलिटी। एनिमैलिटी का मतलब होता है कि हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि हम दूसरों को प्रॉब्लम में देख के वी आर सेटिस्फाइड। चाहे हमारे से छोटे ऑफिसेस में भी यही होता है, रूटीन होता है कि मैनेजर अपनी जूनियर टीम के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट करता है कि वो फ्रस्ट्रेशन में इतना आ जाता है कि वो अपने करेज को भी डाउन कर लेते हैं, अपने एम्बिशंस को भी किल कर लेते हैं, अपने पोटेंशियल को भी रियलाइज नहीं कर पाता है। तो ये जो एनिमैलिटी है, एनिमैलिटी मीन्स नॉट गिविंग स्पेस टू एनीवन, और अपने जूनियर्स को जूनियर समझना और अपने आप को बड़ा समझना, ये जो रोल होता है जो मेंटरशिप के आगे बिल्कुल उसको धुआं डाल देता है, उसको किल कर देता है, जो हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, वो चीज हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोकती है। वो हमारी एक नेगेटिव पर्सनालिटी हो जाती। चौथा पॉइंट है एंगर। हमें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, हमारी लैंग्वेज फर्क हो जाती है, हम स्कोल्ड करना शुरू कर देते हैं दूसरों को, हम इतना नेगेटिव हो जाते हैं, हम इतना नेगेटिव लैंग्वेज यूज करनी शुरू कर देते हैं गुस्से में, और बहुत कुछ हम बोल जाते हैं जो असल में हमें नहीं बोलना चाहिए। तो वही होता है ना, गिव एंड टेक प्रोसेस। अगर हम नेगेटिविटी को एम्बाइब कर रहे हैं, हमारी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, हम एनिमैलिटी की पर्सनालिटी में जाते जा रहे हैं कि हम दूसरों को छोटा समझते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, और हमें छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, तो ये सारा कुछ मिला के हमारी पर्सनालिटी को नेगेटिव कर देता है। तो अगर हम ये छोटी छोटी चीजों को समझना शुरू करते हैं, अपने आप को रिफाइन करना शुरू कर दें, अपने आप को हम इस दायरे से बाहर ले आए, तभी हम करेज जो है हमारा, वो हमें अलाउ करेगा कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ के कुछ कर सकें। तो ये जो चार पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, और दो और हैं जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी इन द सेंस ऑफ नेगेटिव अप्रोच, और दूसरा रैप्चर है, ये भी ऑलमोस्ट सेम चीज है, जो मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि अगर हमारी सोच ही नेगेटिव है, हम अपने आप को बेचारा समझते हैं कि ये बेचारी है। इस वर्ड से मुझे बहुत ही नफरत। कोई बेचारा नहीं है इस दुनिया में, कोई बेचारी नहीं है। सिर्फ ये हमारी सोच है जो हमें एक पॉजिटिव दायरे में रहने से बाहर खींचती है। और ये एक यूनिवर्सल नेचर एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है। पर हमें अपने आप को स्थिर रखना है, हमें अपने आप को स्ट्रांग रखना है, हमें अपनी लाइफ को अपने हाथों में रखना है। चाहे हम जिस जरूरी नहीं है कि हम एक महीने में स्काई लिमिट तक पहुंच जाएंगे, नहीं, पर अगर हम ये अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं तो हमारे ये जो वैल्यूज हैं हमें लेकर जाएंगे। और अगर हम इन वैल्यूज को एक्सटर्नल सराउंडिंग से दबने नहीं दें तो हम अपनी लाइफ में राइज कर सकते हैं। और वो पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं? लर्निंग, जो आप लोगों को सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, रियलाइजेशन कि आप क्या अपनी लाइफ में कर सकते हैं, ट्रू इनसाइड आउट जो मैंने ह्यूमैनिटी के साथ लिंक करा था, अगर वो है और हम इसको अपनी लाइफ के एक पहलू बना लेते हैं, अपने मंत्रा बना लेते हैं और हम डिस्कवर करते हैं कि हम क्या अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। हम वी आर ऑलवेज एस्पायर्ड दूसरों को देख के जो अच्छा कर रहे हैं और सेल्फ रियलाइजेशन की भावना हमारे में आ जाती है विद प्योर प्योर, मतलब कि हमारी सोच बिल्कुल सही, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है हमें। इनडिस्ट्रक्टिबल हैप्पीनेस हम अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकते। तो मैंने शुरू कहाँ से किया? अपनी बर्थ से। लाइफ को कैसे हमने सही रास्ते पे लेके जाना है और सही रास्ते पे हमने अपनी नेगेटिविटी को कैसे रिमूव करना है क्योंकि हमारा स्मूथ पाथ रहे लाइफ का। और लर्निंग से, रियलाइजेशन से, ट्रूथफुलनेस से हमने अपनी लाइफ को कैसे हैप्पीनेस की तरफ टर्न करना है, मैं ये पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जब तक हैप्पीनेस नहीं है विद इन योर सेल्फ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस आते हैं। बट अगर आपके करेक्टरिस्टिक्स इन 5-6 मुद्दों पे डिपेंडेंट हैं तो आप बहुत जल्दी अपने आप को डेविएट कर लोगे दूसरी तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ। और जैसे ही आप पॉजिटिविटी की तरफ टर्न करोगे आपको करेज आएगा, आपको एहसास होगा कि हाँ मेरा लाइफ का गोल तो फर्क है, मैं क्यों इन सब चीजों में उलझी हूँ, मुझे इस उलझन से बाहर आना है। और मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। दो पॉइंट्स मैं और एक्सप्लेन करना चाहूंगी यहाँ पे कि हमें बहुत आदत होती है हम सेल्फ बूस्टिंग करते। मैं भी करती, मैं बहुत कभी कभी बोल देती हूँ, मैं अपनी फेस कर लेती हूँ, मैं अपने आप के बारे में दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को अच्छा साबित करती हूँ, जो नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों को भी उसी दायरे में देखना चाहिए जिस दायरे में हम हैं। अगर हम ये प्रैक्टिस ले लेते हैं, अपनी लाइफ का एक पैटर्न बना लेते हैं तो हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत ही आसानी से लेकर आ सकते हैं। हम कितने सच्चे हैं अपने लिए, ये एक एग्जामिनेशन है, सेल्फ एग्जामिनेशन है जो हमें हर रोज अपने लिए करना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं अपनी लाइफ में कि हम दूसरे के मुंह के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ हिम और हर वी आर हैविंग डिफरेंट फेस बट अंदर से हम उसके लिए नेगेटिव। तो ये ट्रूथफुलनेस जो है ये एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है अपनी अचीवमेंट्स में, इनविजिबली वो ब्लॉकेट क्रिएट कर देते। हम कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी ही लाइफ की, हम अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों पे डिपेंडेंट हो जाता है कि उसने ये नहीं किया मेरे लिए, इसलिए मैं आज नहीं इस लेवल पर पहुंच पाई। मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे को बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हम आम वुमेन से बात करते हैं अपने सेंटर्स पे, जो हमारे सामने आती हैं, पर हमने कभी उनको समझाया नहीं इस लेवल पे आके कि ये मुश्किलें तो सबके साथ हैं। अगर हम इन मुश्किलों से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। और उसके लिए क्या जरूरी है? अपना आत्मविश्वास, अपने पे बिलीव करना कि यस आई कैन डू। अपने जो अंदर अंदरूनी पोटेंशियल है उसको हम हिलने नहीं दें, उसको डगमगाने नहीं दें, और अपनी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखें और पॉजिटिव स्पिरिट्स रखें, तो हम हमारा जो आगे का रास्ता है वो बहुत ही रोशनी वाला हो जाएगा और हम अपने लाइफ के गोल तक पहुंच सकते हैं। गोल कोई भी हो, मैं पैसे का गोल नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, पर यस पैसा सबको चाहिए, पैसा सबको कमाना चाहिए, और हमारा रीड इंडिया का मिशन यही है कि हम सबको इस लेवल तक ले आए कि वो किसी के आगे भी औरत हाथ नहीं फैलाए और वो डिपेंडेंट नहीं हो। यही हमारा बेसिक मुद्दा है जिसको हम सपोर्ट करते हैं नॉलेज से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, विजडम से, और उसको हम ये सेशंस लेके मोटिवेट करते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ करना है। हमें नॉर्मली सपोर्ट नहीं मिलता है। आपको ये लगेगा कि मैम हवा में बातें कर रही है। मैं इसको फिर से दोहराना चाहूंगी कि हमें अपनी फैमिली से, अपनी फ्रेंड से सपोर्ट नहीं मिलता और हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। उस सिचुएशन में हमें क्या करना है? उस सिचुएशन में जो इनविजिबल पावर है उसके ऊपर फेथ रखनी है, उसके ऊपर विश्वास रखना है, और वो इनविजिबल पावर ही जो है, अगर आप सच्चाई के रास्ते में चल रहे हैं, और जो मैंने 6 डेविल्स की बात करी है जो आपकी पर्सनालिटी को अटैक करते हैं, अगर आप उनमें ट्रुथफुल हैं तो आपके रास्ते, मैं गारंटी से कहती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है कि बहुत खुल जाएंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो स्ट्रगल्स सबकी लाइफ में है, पर अपनी लाइफ को कैसे हमने डायरेक्शन देनी है वो हमारे हाथ में। मैं अपना ये सेशन बाद में हम डिस्कशन करेंगे, मैं हाफ एन आवर का सेशन रखती हूँ, और हाफ एन आवर आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू ऑल्सो। मैं एक छोटी सी स्टोरी से कंक्लूड करूंगी और फिर आप लोग कन्वर्सेशन करेंगे मेरे साथ। मैं कोशिश करूंगी आपके जो क्वेरीज हैं उनको आंसर करने के लिए। एक फिशरमैन था, वो सुबह सुबह अंधेरे में ही उठ के सी के शोर पे चला गया और वो अपनी तैयारी करने लगा कि आज उसने कहा कि मैं रोज जितनी मछलियां पकड़ता हूँ उससे मैं ज्यादा मछलियां पकड़ूंगा और मेरे परिवार के लिए मैं ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। अब वो अंधेरे में जब चला गया और उसको रेत में एक पैर के साथ टक्कर हुई किसी लिफाफे की, उसने वो लिफाफा अपने हाथ में उठा लिया और वो जाके शोर पे बैठ जाता है सी के, और अंधेरा होता है क्योंकि सूरज अभी रोशनी नहीं निकली होती, तो वो उसमें से उस पत्थर को एक एक को लेके वो सी में फेंकता जाता है। बाय द टाइम जब लास्ट पत्थर उसके हाथ में आता है तो सूरज की पहली रोशनी पड़ती है उस पत्थर के ऊपर, तो वो देखता है ये तो हीरा है, ये पत्थर नहीं है। तो वो रियलाइज करता है कि मैंने बहुत सारे पत्थर आधा घंटा बैठ के यहाँ पे सी में फेंक दिए जो हीरे थे, और मैंने उन हीरों को अपने हाथ से, अपने ही हाथों से उनको किल कर दिया, मैंने उनको पानी में फेंक दिया। तो वो अफसोस करता है कि मैंने ये जेम्स जो थे मेरे, मैंने पानी में फेंक दिए, पर पर मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि आप अपने जो जेम्स हैं, जेम्स ऑफ थॉट्स, आपकी सोच, आपके विजडम, आपकी नॉलेज, आपका रिलेशनशिप, आप इनकी इम्पोर्टेंस रियलाइज किए बिना आप उनको अपनी लाइफ से दूर मत करिए। जैसे ही ये आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपकी पॉजिटिव सोच बनी रहेगी और आप भी हीरे की तरह शाइन करेंगे, और ये जो जेम्स हैं आपकी लाइफ के, आपको आपकी लाइफ के गोल तक पहुंचाने में बहुत मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न?
2: मैम क्वेश्चन नहीं, लेकिन मैम बहुत बहुत मोटिवेशन है। सीरियसली इस टाइम हम लोगों को इसकी बहुत जरूरत थी। आई रियली फील वेरी हैप्पी कि बहुत सारी चीजें ऐसे जो बीच बीच में छूटने लग जाती हैं, वो रिवाइज होने के बाद हमें थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है।
1: तो ये बहुत एक सच्चाई है, बहुत कड़वी सच्चाई है जिंदगी की, और अगर हम इस कड़वे घूंट को पी लेते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ही एक डायरेक्शन वाली हो जाती है और हम भटकते नहीं हैं इधर उधर। किसी के कोई प्रश्न प्लीज?
0: मैम आपसे एक पर्सनली क्वेश्चन था कि आपने पीएचडी साइकोलॉजी में की हुई है।
1: नहीं, मैंने पीएचडी तो फैमिली वेलफेयर में की है, साइकोलॉजी में नहीं की है।
0: मैम अच्छा समझाते हैं आप लाइफ के बारे में।
1: अच्छा, ये एक्सपीरियंस से आता है, और जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम ऐसे माहौल में रहेंगे, जो मैं भी किसी से सीखती, हर कुछ तो आदमी लेके पैदा नहीं होता। तभी मैंने बर्थ और लाइफ के बारे में आपको डिफरेंस बताया है कि बर्थ इज समथिंग एल्स बट लाइफ इज समथिंग एल्स। ये सब कुछ जो है ये लाइफ के एक्सपीरियंस ही है।
3: हमारे सेंटर से ये कैंडिडेट है, ये कुछ शेयर करना चाहते
1: हाँ बोलिए।
4: हैं। हेलो मैम, गुड इवनिंग। माय नेम इज हाफिजा और हम यहाँ कंप्यूटर सीखने आते हैं। की मीटिंग हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी। आपने जो भी शेयर किया, जो बताया, वो सब तो बहुत अच्छा लगा। और आपने जो पॉइंट बताया उसमें तो बहुत ज्यादा ही अच्छे लगे। एक तो अपना गोल सेट करना चाहिए, और मतलब जो एनवायरनमेंट एक्सक्यूज होते हैं वो नहीं बनाना चाहिए कि हमारे आसपास के लोग हमें, मतलब माहौल अच्छा नहीं है या कुछ भी। मतलब अपना गोल सेट करना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए, और एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए, अपने गोल पर काम करते रहना चाहिए।
3: जैसे पढ़ाई वाला
4: जैसे पढ़ाई, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं हम तो कुछ करते ही रहे उस पर, यह नहीं सोचें कि हमें आगे करना क्या है या हम बनना क्या चाहते हैं। ये सब सोच कर रखना चाहिए, अपना गोल सेट करना चाहिए।
1: बिल्कुल, एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैंने बताई थी कि जो विनर्स होते हैं, जो जीतते हैं, वो चीजें अलग नहीं करते हैं, चीजें वही हैं पर वो डिफरेंट तरीके से करते हैं। कि अगर आपको पढ़ना है तो आम लोग 1 घंटा पढ़ते हैं पर आपको 3 घंटे पढ़ना है। अगर कंप्यूटर कोई 10, 1 घंटा आपको अगर सेंटर में मिल रहा

0: चीजों के ऊपर कंट्रोल कैसे करो, ठीक है। जब आप लिखना शुरू कर देंगे ना, तो आधी चिंता आपकी किस पे आ जाएगी, पेपर पे। अब जब आधी चिंता आपकी पेपर पे आ जाएगी, तो आपका माइंड फ्री हो जाएगा कुछ अच्छा सोचने के लिए, कुछ अच्छा करने।
1: मैम,
0: बस जी,
1: हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप एक खुद मोटिवेशन है, आपको देख के अपने आप ही एक अंदर से निकलता है उस चीज के लिए। सेशन तो है ही बहुत जरूरी, पर आपको कई बार शक्ल अगर याद भी कर लेते हैं या सामने भी आ जाती है, हम सोच भी लेना, तो आपसे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। आपको देख के ही, सोच के ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से होगी, और अपने लिए नहीं लोगों के लिए जो किया, एक अपना तो चलाया गया, लोगों के साथ इतने लोगों को चला रहे हो, साथ में इतने लोगों की फैमिली चला रहे हो, तो कैसे चला रहे हो, वो चीज बहुत बढ़िया है मैम सोचने के लिए। तो वही चीज एक छोटी सी कोशिश है।
0: तो ऑर्गेनाइजेशन चला रही है वो, मैं नहीं चला रही हूँ। पर हाँ, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, मैं कभी सोचती भी हूँ ना कि मुझे छोड़ के जाना है, तो आप सब लोगों की शक्लें मेरे सामने आ जाती है, मैं फिर कहती हूँ नहीं, मैं कंटिन्यू करूंगी।
1: मैम ऑर्गेनाइजेशन ठीक है चला रही है, पर आपके बिना जब तक एक घर तब तक नहीं चल सकता जिसमें जो कोई पावरफुल बंदा वहां पे ना हो, कोई भी चीज हो, तब तक कोई भी संस्था हो या कोई भी समाज हो आगे नहीं जा सकता। और वही मैं चीज मैं बहुत बार सोचती हूँ कि जब मैडम छोटे से लेके यहाँ तक ला सकती है, तो हम थोड़ा थोड़ा करें तो हम लोग कहाँ तक भी जा सकते हैं उस चीज के लिए जो आप लोग सोच
0: जो मैंने वैल्यूज की बात करी है ना,
1: रहे हैं।
0: नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की, वो क्रक्स है, वो एक
1: जी
0: दर्पण है हमारे लिए। अगर हम उस दर्पण पे, और हम उसको रोज साफ नहीं करेंगे, तो ये जो हमारे लाइफ के गोल्स हैं, हम उनको अचीव,
1: नहीं कर सकते मैम उनको हम लोग।
0: पर कि अगर जो, जैसे मैंने अपनी जॉब शुरू करी थी पहले, मैं वहीं पे रहती अगर मेरे गोल डिफाइन नहीं होते, है ना।
1: जी
0: हाँ, तो ये बहुत जरूरी।
1: थैंक यू मैम।
0: नमस्ते मैडम। नमस्ते
1: मैडम आपको तो हम हमेशा सुनते हैं, आपके विचार भी बहुत अच्छे रहते हैं और समझते भी बहुत है। हम अपने जीवन में उसका इस्तेमाल भी बहुत करते हैं, इसी वजह से हम सक्सेस भी है। मगर मैं अपने महिलाओं को जब समझाना चाहती हूँ तो समझ नहीं पा रही है। अगर आप एक बार भी सेशन ऐसा महिलाओं के लिए ले तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: तो आप महिलाओं को ज्वाइन कराइए, उनको सुनने दीजिए, और मैं ये रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी सब सब सेंटर्स पे। जो आप, जब महिलाएं काम कर रही होती है मशीन पे, आप ये रिकॉर्डिंग चला दें तो उनको सुनने दें, क्योंकि ये एक बार ही सुनने से नहीं आता। ये जो
1: जी
0: मैंने आपके साथ शेयर करा है, मैंने कम से कम 100 बारी अपनी लाइफ में पढ़ा होगा, और
1: यस
0: उसको ये आधे घंटे में एक्सप्लेन करना और वो लैंग्वेज को चुनना, दिस इज एन आर्ट। तो आप लोग भी उनको बार बार सुनाइए, बार बार सुनाइए, और देखिए फिर आपको अपने सामने ही बदलाव नजर आएगा।
1: 100%। थैंक
0: हाँ,
1: यू मैम,
0: रिकॉर्डिंग भेजेंगे हम सब, और
1: थैंक यू मैम।
0: आप मराठी में ट्रांसलेट कर लीजिए उसको, और मराठी में बताएं, ठीक है।
1: हिंदी भी समझती है महिलाओं को, लेकिन क्या होता है जो आपकी लैंग्वेज, आपका जो बोलने का तरीका है ना, वो हम लोग नहीं उसमें पिरो सकते अपने शब्द को, तो इसीलिए ऐसे थोड़ा सा अलग रहता है। आपका जो बोलने का तरीका है ना, वो बहुत ही अच्छा रहा, अट्रैक्टिव रहता है मैडम, रियली।
0: आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा।
1: थैंक यू मैम।
2: हेलो मैम।
0: हाँ जी, हेलो, नमस्ते।
2: मैम नमस्ते,
0: मैं
2: कैसे हो आप?
0: बिल्कुल ठीक हूँ।
2: मैम आपका मोटिवेशन बहुत बहुत अच्छा है। मेरी लाइफ में बहुत कभी कभी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, घर की प्रॉब्लम भी होती है, यहाँ पे मैं जॉब करती हूँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, कॉलेज में पढ़ाई चल रही है उसका बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। मोटिवेशन इंसान का होना बहुत जरूरी होता है, पढ़ाई भी बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाती, पढ़ नहीं पाते हैं। मैम आपने इतना अच्छा मोटिवेट किया है, थैंक यू सो मच सच में।
0: तो आप अब अपनी पढ़ाई खूबसूरती से, अच्छे से करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। प्रॉब्लम्स
1: ओके थैंक यू मैम।
0: तो आएंगी, आप प्रॉब्लम्स को नहीं रोक सकते हैं, पर प्रॉब्लम्स से बाहर कैसे निकल

0: है वो आपके हाथ में।
1: पर मैम
0: इतनी सच
1: सीरियसली, आपकी मोटिवेशन की ना हमें सच में बहुत जरूरत होती है। ऑनेस्टली मैम ऐसे लगता है जैसे आपने अभी हमें बताया ना कि हमें कभी कभी, मैं भी इतनी बार पढ़ी तो मुझे आज फर्स्ट टाइम फिर ऐसे फील आ रहा है। मैंने पहले आपका सेशन लिया था, उसके टाइम हम बहुत टाइम मोटिवेट रहे, एक्टिवली वर्क किया, उसके बाद फिर थोड़ा टाइम ऐसे हो जाता है कि आज ऐसा लग रहा था कि सीरियसली मैम लग के फिर
0: एनर्जी
1: दोबारा से री एनर्जाइज हो गए हम लोग। बहुत अच्छे से आगे इस पे कोशिश करेंगे
0: मैं कोशिश करूँ हर हफ्ते एक सेशन लेने का, तो
1: जी मैम, जी
0: वो
1: मैम,
0: जो मोटिवेशनल लेवल है वो बने रहना चाहिए। प्लीज
1: जी मैम, जी
0: बना
1: मैम, जी
0: रहे।
1: मैम, थैंक यू सो मच मैम।
0: थैंक
1: नमस्ते
0: यू।
1: फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने हमारे लिए जो कीमती वक्त निकाले है इसलिए हम आपका आभारी है। और आपने जो हमें लास्ट में जो स्टोरी कही कि जो हीरे थे वो पानी में बहा दिए और लास्ट में उसे जब रियलाइज हुआ कि एक ही हीरा बच गया। हमारे लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी आती रहती है, हमें उसको समझना चाहिए। लेकिन जब उसके पास एक ही हीरा बचा तो आपसे हमें ये सीख मिली कि एक उस हीरे से भी हम कुछ भी कर सकते हैं। ओ थैंक यू मैम, और आप बहुत मोटिवेट करती है हमारे काम करने के लिए, इसके लिए आपको थैंक यू कहते हैं। ऐसा सेशन आप ऑर्गेनाइज कर दीजिएगा जो हमें मोटिवेट करता है और कितना भी काम करने के लिए प्रेरित होता रहता है। थैंक यू मैम।
0: थैंक यू सो मच तुषार। और मुझे पता है कि पुणे का सेंटर बहुत अच्छा काम कर रहा है और आप लोग भी बहुत मोटिवेट करते हैं सब लोगों को, खाली मैं नहीं करती हूँ, आप लोग भी बहुत मोटिवेट करते हैं।
2: थैंक यू मैम, इतना आगे तक लाने के लिए, उस चीज के लिए और एक बढ़ावे के लिए दिल से रिस्पेक्ट है। कोशिश है, जो प्रॉमिस आपसे किया है उसको बिल्कुल पूरा करने की। बिल्कुल, गुरुजी ने चाहा तो बहुत जरूरी। थैंक यू मैम।
0: थैंक यू सुमन। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर टाइम एंड लिसनिंग टू मी।
1: नमस्ते मैम, आप जब जब ट्रेनिंग देते हैं तब तक तो हम बहुत ज्यादा मोटिवेट होते ही हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, कहने की बात नहीं है। बट जब ये ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो हम थोड़े से नीचे आ जाते हैं, लगता ही नहीं है कि कोई हमारे ऊपर है, या फिर हम ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, या फिर कोई देख रहा है हमारे काम को। तो जब जब आप हमें ट्रेनिंग देते हो तो फिर एनर्जी आ जाती है हमें काम करने के लिए। थैंक यू सो मच, और आप हर हफ्ते ये लीडरशिप का एक सेशन रखिए।
0: ठीक है जरूर सर।
1: गुड
0: हेलो,
1: आफ्टरनून,
0: गुड आफ्टरनून, कैसी हो? ठीक है।
2: आप कैसे मैम? मैम आपका सेशन मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है, लीडरशिप का, और आप बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हो मैम।
0: आप बस फिर उसको याद रखना अपनी जिंदगी में, देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गई तुम मोटिवेशन से, है ना?
2: जी
0: अब
2: मैं और आगे पहुंचना चाहती हूँ मैम।
0: आप पहुंचोगी, तुम 100% पहुंचेंगे। ठीक है। गुड
2: थैंक यू मैम। नमस्ते मैम।
1: इवनिंग
0: हाँ जी, क्या हाल है मीना?
2: मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी हो?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
2: आज मैं जो कुछ भी हूँ तो सब आपका ही सपोर्ट है, वरना मैंने सोचा नहीं कि मैं मेरी लाइफ में तीसरी बार भी घर बना लूंगी।
0: देखो बहुत अच्छी बात है, बहुत आगे बढ़ोगी तुम मीना, पीछे मुड़ के तुम देखने वाली नहीं हो अब, मुझे पक्का विश्वास
2: जी
0: है
2: मैम,
0: ना? हाँ, और गुंजन भी आगे बढ़ेगी बहुत।
2: जी मैम, अभी वैकेंसी निकली है तो गुंजन ने उसमें अप्लाई भी किया है अभी नर्सिंग की। जी,
0: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी।
2: और मैं कोशिश भी करती हूँ, जो आप सेशन ले रही हो तो जो महिला ट्रेनिंग में आती हैं उनको भी मैं लीडरशिप के बारे में कोशिश कर रही हूँ सेशन देने की भी।
0: बहुत अच्छी बात है, सब लोग करिए, जो मीना कर रही है, जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं वो अगले हफ्ते बिफोर आई टेक अनदर सेशन, आप प्लीज इस सेशन को रिपीट करिए अपने बेनिफिशियरीज के साथ,
2: जी मैम,
0: तभी इस सेशन का फायदा है, नहीं तो आप मोटिवेट होते जाएंगे वो बेचारे पीछे रहते जाएंगे, उनको अपने साथ लेके चलना है। ठीक है। थैंक यू सो मच।

0: सो अभी तक किसी को किसी सेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? लास्ट टू सेशंस जो हमने करे थे उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
1: मैम अंजुम का, जो कि स्टूडेंट है ब्यूटी की, उनका सवाल है, वो एक बार एक सवाल करना चाहती है। मैम आप प्लीज उनका आंसर दीजिए।
2: मैम अंजुम बोल रही हूँ। यस
0: आप टीवी के बारे में पूछना चाह रही हैं?
2: मैम, यस मैम।
0: क्या पूछना चाह रही है टीवी के बारे में?
2: मैम वो जो आपने कल बताया था ना, तो वो थोड़ा समझने क्लियर समझ नहीं आया। उसके लक्षण क्या है, उनके जैसे क्या कर सकते हैं उनसे बचने के लिए, थोड़ा क्लियर समझ नहीं आया।
0: टीबी जो है आपके फेफड़ों को इन्फेक्ट करता है जब हम खुली हवा में सांस लेते हैं, और टीबी के जो लक्षण होते हैं वो खांसी होती है लगातार 3 से 4 हफ्ते तक, उसके साथ अगर ब्लड आता है और चेस्ट में जकड़न होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती है, बहुत ज्यादा वेट लॉस हो जाता है, बुखार चढ़ना, थकावट होना, ये सब उसके लक्षण हैं। इससे कैसे बचा जाए कि आपके एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होनी चाहिए टीबी जैसी बीमारी से लड़ने के लिए, और घर में रहना है, अगर किसी को भी टीबी होता है उसको घर में रहना है, मास्क पहनकर रहना है, बार बार अपने हाथ धोने हैं, खांसते छींकते वक्त अपने मुंह को कवर करना है। टीबी जो है उसमें आपको जो दवाई दी जाती है टीबी अस्पताल से उसको पूरी लेनी है, उसका कोई डोज मिस नहीं करना है। अगर हम मिस करते हैं तो टीबी हमको ठीक नहीं होता है और फिर से हो सकता है, या बहुत टाइम लग सकता है उसको ठीक होने में, पर टीबी की दवाई कोई मिस नहीं करनी होती है। सिर्फ इसका जो डायग्नो मतलब आपके कैसे पता चलेगा अगर खांसी ज्यादा लंबे तक, महीना 2 महीना चल रही है, जकड़न भी है आपके फेफड़ों में और आपका सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप ब्लड टेस्ट करा सकते हो और चेस्ट एक्सरे करा सकते हो, जिससे आपको पता चलता है कि टीबी आपको है या नहीं। और ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इसकी मेडिकेशन है, जो आपको दवाइयां मिलेंगी उसको दवाइयों को लेना है, टाइम से टाइम लेना है, अपना अलग रहें, अपना अलग कमरे में जो भी टीबी का मरीज है उसको अलग कमरे में रखें, और उनके जो भी उनका देखभाल कर रहा है उनको भी सावधानी बरतनी है, कहीं इन्फेक्शन उन्हें ना हो जाए, इसलिए उन्हें भी सावधानी बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जिसका प्रश्न था उसको समझ आ गया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडोलेसेंस और प्यूबर्टी पे। एडोलेसेंस और प्यूबर्टी जो किशोर अवस्था जो स्थिति होती है, जो हर बच्चे के दौरान, हर बच्चे की जिंदगी में आती है, हर इंसान की जिंदगी में मैं बोलूंगी आती है, हम भी उस स्टेज से गए हैं जिसमें एडोलेसेंस और प्यूबर्टी की जो स्टेज होती है, जिसमें बॉडी में चेंजेस आते हैं, मानसिक स्थिति में चेंजेस आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो पीरियड होता है लाइफ का, ये बच्चा बच्चा नहीं रहता है और हम उसको बड़ा भी नहीं कर सकते, ये बच्चे और बड़ा होने के बीच का पीरियड होता है, जो हम कहते हैं 10 से 18 या 19 साल का पीरियड होता है। इसमें बहुत ज्यादा मानसिक और मानसिक चेंजेस होते हैं, और आपके हाव भाव में आपका बिहेवियरल चेंजेस भी बहुत ज्यादा हमें दिखने को मिलते हैं, हर हर किसी में देखने को मिलते हैं। तो इसके 3 स्टेजेस होते हैं, अर्ली, मिडिल और लेट। अर्ली की उम्र होती है 10 से 13 साल, मिडिल 14 से 16 साल, और लेट की होती है 17 से 19 साल की उम्र। तो अर्ली जो एडोलेसेंस होता है, अर्ली मतलब जल्दी जो आता है हमारा 10 से 13 साल की उम्र में आता है, इसमें मूड चेंजेस बहुत होते हैं, मतलब आपकी बच्चे के मूड चेंज बहुत होगा, बच्चा जो है अपनी चैलेंज अपनी इंडिपेंडेंट मांगता है, चैलेंजेस को फेस करता है, जो उसकी लाइफ में आते हैं चैलेंजेस उसको फेस करता है, फैमिली मेंबर्स लोगों से दूर जाना पसंद करता है, अपनी प्राइवेसी चाहता है कि उनके काम में कोई उसको डिस्टर्ब ना करे, उनके काम में कोई उसको बोले ना, तो ये सब चेंजेस दिखते हैं। अर्ली एडोलेसेंस में, फिर मिडिल एडोलेसेंस में क्या होता है, जब 14 से 15 साल की होता है, बहुत सारे प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल डिसीजंस ये लोग बच्चे लेना शुरू कर देते हैं, एंड इसमें बहुत ज्यादा ख्वाब भी लेने शुरू कर देते हैं। बहुत ऐसे ख्वाब होते हैं जो कभी पॉसिबल हो पाते हैं, कभी नहीं हो पाएंगे, और खासकर दोस्तों के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज्यादा शुरू करते हैं कि दोस्त कैसे हैं, उनके दोस्त दोस्तों के ऊपर एक्सपेरिमेंट है कि ये अच्छा है ये बुरा है। बहुत आपने सुना होगा कि बच्चे, आज मेरा ये नया दोस्त बना, कल वो आकर बोलेंगे कि नहीं आज मैं उससे नहीं बात कर रहा, उसने ये कर दिया तो आज मैं दूसरे दोस्त बन गया। तो दोस्तों पे एक्सपेरिमेंट रिस्क हो जाता है, किस संगति में वो जा रहे हैं, किस फ्रेंड से वो मिल रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा देखने की जरूरत होता है। खासकर ये स्टेज जो होती है लड़कों की या लड़कियों की, जो भी है, गलत संगति में जाकर गलत आदतें शुरू हो जाती हैं, ड्रग्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली ये स्टेज होती है। फैमिली के साथ लो, पेरेंट्स से दूर होना, पेरेंट्स से बातें छुपाना शुरू हो जाना, एक अपनी वैल्यू बनाना, किसी को कुछ ना बताना, शायद ये स्टेज आती है। फिर लेट एडोलेसेंस जो होती है, 17 से 18 या 19 साल, उसमें वो लोग प्लान करते हैं कि उनको बड़े होकर क्या बनना है, तो उस गोल की तरफ वो लोग पढ़ाई भी और अपनी सोशल जिंदगी भी उस गोल की तरफ लेकर जाते हैं। अपनी फिजिकल चेंजेस जो उनकी बॉडी में आए हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उनकी जो शारीरिक चेंजेस बॉडी में आए हैं उसको एक्सेप्ट कर लो। उसको एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है बच्चों का। और अपनी हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना और अपनी एडल्ट लाइफ की तरफ आगे बढ़ना, ये एक एडल्ट लेट एडोलेसेंस में होता है। अब हम प्यूबर्टी की बात करते हैं, जिसको हम किशोर अवस्था बोलते हैं। किशोर अवस्था क्या होती है कि हमारी जो शारीरिक चेंज बच्चों में दिखते हैं उसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं। प्यूबर्टी आपकी फिजिकल चेंजेस, आपकी शारीरिक चेंजेस बॉडी में जो होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसको हम शारीरिक चेंजेस को प्यूबर्टी बोलते हैं। जब एक बच्चा बॉर्न होता है और जब जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे ये चेंजेस हमें दिखने को मिलते हैं। कुछ के जल्दी आ जाते हैं, कुछ के लेट आते हैं। कोई जात नहीं देखी जाती, कोई रिलीजन नहीं देखा जाता, कोई नेशनैलिटी नहीं देखी जाती। हर बच्चे के, हर इंसान, दुनिया में जितने भी इंसान हैं, उनकी जिंदगी में ये चेंजेस हमें दिखने को मिलते हैं। लड़कियों में जो चेंजेस होता है, सबसे ज्यादा जो बड़ा चेंज है, वो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होना, पीरियड्स का शुरू होना 8 से 9 साल या 10 साल की उम्र में होता है। अब कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि लड़कियों को 12 से 13 साल की उम्र में भी पीरियड्स नहीं शुरू होते। ऐसा है, ये हर एक की अपनी अपनी एक बॉडी होती है। आपकी, आपको शरीर जो भगवान ने दिया है और मुझे जो शरीर भगवान ने दिया है, हम दोनों को अलग अलग शरीर दिया है। चाहे चीजें अंदर सेम हैं, पर जो अंदर की फंक्शंस हैं, आपकी मेटाबॉलिज्म, मेरा मेटाबॉलिज्म, आपकी इम्यूनिसिटी, मेरी इम्यूनिटी, बहुत फर्क करती है। तो हर किसी की बॉडी पे ये फर्क पड़ता है कि कब पीरियड शुरू हो रहे हैं और कब जल्दी हो रहे हैं या लेट में हो रहे हैं। बहुत सी लड़कियों को ये पीरियड्स 8-9 साल की उम्र, 10 साल की उम्र में हो जाते हैं, किसी किसी को 13-14 साल की उम्र में भी होते हैं। फिजिकल चेंजेस दिखती हैं, ब्रेस्ट का बढ़ जाना, मतलब चेस्ट बढ़ना, हेयर ग्रोथ होना, आपका फेस पे पिंपल्स होना, बॉडी ऑडर, शरीर से स्मेल आना, और क्रैम्प्स पड़ना, शरीर में दर्द होना, ये सब हमें दिखते हैं। हार्मोनल चेंजेस जब अंदर बॉडी में होते हैं तो ये सब चीजें हमें शरीर में दिखने को मिलती हैं। वेट में गेन होना भी एक मेजर शारीरिक चेंज है। प्यूबर्टी इन बॉयज क्या होता है, लड़कियों, लड़कों में क्या चेंजेस हमें दिखते हैं? आवाज जो है उनकी, वो भारी हो जाती है, उनके वेट गेन हो जाता है, उनके भी शरीर में एक्ने, पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, हेयर ग्रोथ, फेस पे हेयर ग्रोथ, दाढ़ी मूछें आनी शुरू हो जाती हैं, हार्मोनल चेंजेस दिखने हैं, शरीर में बॉडी ऑर्डर भी आना शुरू हो जाता है। तो ये लड़के लड़कियों में अलग अलग चेंजेस होते हैं, पर ये हर एक किसी की जिंदगी में आता है। अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है हर एक औरत को, हर एक लड़की को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है। आप सबको यही पता है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जब आती हैं तो एक औरत प्रेगनेंसी के लिए तैयार होती है, और ये हमारे हार्मोन्स इसको कंट्रोल करते हैं। बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो इसे कंट्रोल करते हैं, और हर महीने ये साइकिल आती है। किसी का 25 दिन का साइकिल होता है, किसी का 30 दिन का साइकिल होता है, कि उनको 30th डे पे ही आता है, किसी को आगे भी बढ़ जाता है। पर मैं यही सबको एडवाइस करूंगी कि अगर किसी को मेंसेस में प्रॉब्लम है तो गायनिक गायनेकोलॉजिस्ट जो होती हैं इसके लिए, उससे ही संपर्क कर कोई मेडिकेशन शुरू करें, अपने आप से कोई मेडिकेशन नहीं शुरू करें। अब मेंसेस जब पीरियड्स के दौरान हमें कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले जो हाइजीन होता है उसका ध्यान रखना है, और सैनिटरी नैपकिन्स, प्लीज सैनिटरी नैपकिन्स का बहुत ज्यादा ध्यान। आज भी बहुत सी औरतें जो हैं कपड़ा यूज करती हैं जिससे इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा साइज, कौन सा डिजाइन, और किस किस चीज आपको किस चीज कंफर्टेबल है, कौन सा सैनिटरी नैपकिन आपके लिए कंफर्टेबल है, उससे आपको उसी को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और फर्स्ट 2 डेज, पहले 2 दिन जो हैं, हमें 3 से 4 घंटे के बाद सैनिटरी नैपकिन को चेंज करना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि फर्स्ट 2 डेज बहुत ज्यादा फ्लो होता है, और जब फ्लो होता है तो बहुत गंदी स्मेल भी आती है बहुत लोगों के मुंह से। तो फिर हमें हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, इन्फेक्शन हमारे यूट्रस में ना जाए दोबारा से, उसको मेंटेन करने के लिए हम 3 से 4 घंटे के बाद अपने सैनिटरी नैपकिन्स को चेंज कर सकते हैं। और सैनिटरी नैपकिन्स को चेंज करने के बाद उसको रैप कर डस्टबिन में थ्रो करना है, न्यूज़पेपर में रैप कर डस्टबिन में थ्रो करें। मेक श्योर डस्टबिन जो है आपके रूम में ना हो, किचन में ना हो, ऐसी जगह हो जहां पर स्मेल उस सैनिटरी नैपकिन्स में से स्मेल किसी भी घर के अंदर ना आए। और जो फ्रेश पैड लगाकर अपने हाथों को, सैनिटरी नैपकिन लगाकर अपने हाथों को पानी से और साबुन से वॉश कर लेना है। ये हमें हाइजीन मेंटेन करनी है। साथ ही साथ हमें नहाना भी है, रोज नहाए, ल्यूकवार्म वाटर गुनगुने पानी से जरूर नहाए, लूज कपड़े पहने, जितना हो सके लूज कपड़े पहने, टाइट कपड़े ना पहने, रैशेस पड़ने का डर रहता है। और बहुत सारा पानी पीना है, 8 से 10 ग्लास पानी पिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक करें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जितना खाएंगे, आयरन खाएंगे, क्योंकि आयरन हमारे ब्लड में, ब्लड जो लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट करता है। अब हम बात करते हैं कि जब हम हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं, अगर हम हाइजीन नहीं रखते हैं तो हमें एक सबसे बड़ी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जो हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, जो सबसे बड़ी डिजीज हो जाती है, वो होती है यूटीआई इन्फेक्शन। यूटीआई इन्फेक्शन क्या है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इसको बोलते हैं। यूटीआई इन्फेक्शन होता है, ये एक बैक्टीरियल टाइप ऑफ इन्फेक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया कि सैनिटरी नैपकिन हर 3 से 4 घंटे के बाद हमें चेंज करना चाहिए। चाहे आप कॉटन का यूज करो, चाहे आप दूसरा कोई भी मटेरियल का यूज करो, यूटीआई इन्फेक्शन जो बहुत सेंसिटिव होते हैं लोग, जो बहुत जिनको बहुत ज्यादा जल्दी इन्फेक्शन होता है, तो उनको यूटीआई इन्फेक्शन होने का डर होता है। ये यूटीआई इन्फेक्शन क्या है? व्हेन जो बैक्टीरिया है वो आपके यूरिनरी ट्रैक में एंटर करता है, तो डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स से ही ये ठीक हो पाता है, और हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यूटीआई इन्फेक्शन में सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपको जितना हो सके पानी पीना है, ताकि यूरिन के थ्रू वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी से बाहर जाए। अगर हम पैड्स नहीं चेंज करेंगे तो बैक्टीरियल पैड में इन्फेक्शन, जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाएगा, और वो हमारे यूट्रस में जाकर इन्फेक्ट कर सकता है। और यूटीआई इन्फेक्शन जो है वो अगर हम हाइजीन भी नहीं मेंटेन करेंगे तब भी हो सकता है, तो इसलिए हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत लोगों का हेवी क्वेश्चन क्वेश्चन होता है, क्या यूटीआई इन्फेक्शन जो होता है वो इरेगुलर साइकिल, मतलब बहुत लोगों को साइकिल डिले होते हैं या बहुत टाइम के बाद होते हैं, ऐसा भी प्रश्न होता है। यूटीआई इन्फेक्शन और मेंस्ट्रुअल साइकिल का कोई लेना, मतलब आपस में लेना देना नहीं है। अगर आपने मिस किया है तो कहीं आपको स्ट्रेस है, एक एंजाइटी है, पर यूटीआई इन्फेक्शन से कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल का लेना देना नहीं है। बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेस या इमोशनल चेंजेस होते हैं तो हम लेट, हमारे जो पीरियड्स हैं वो लेट होने शुरू हो जाते हैं, तो हमें स्ट्रेस और एंजाइटी और इमोशनल, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस इस दौरान बहुत होते हैं, तो हमें अपने आपको स्ट्रेस नहीं करना है, एंजाइटी नहीं लेनी है, ताकि हम जो हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलरली होती रहे। क्या सिम्टम्स हमें दिखते हैं जब यूटीआई इन्फेक्शन होता है? बर्निंग सेंसेशन होता है जब आप यूरिन करेंगे, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, पेन होगा लोअर एब्डोमेन में, सडन मतलब एक अर्ज होती है यूरिन करने की पर आपको यूरिन नहीं आता है, और यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, इचिंग होती है बहुत ज्यादा उधर, तो ये सब लक्षण दिखते हैं। और इसका सिर्फ और सिर्फ यही यूटीआई का ट्रीटमेंट यही है कि हमें एंटीबायोटिक्स लेनी है और अपनी हाइजीन को मेंटेन करना है। अगर हम अपनी हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगे तो हम इन्फेक्शन, हमारा इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा और इट कैन बी डेंजरस, ये एक यूटीआई इन्फेक्शन डेंजरस भी हो सकता है। किसी को कुछ पूछना है?
1: हेलो मैम,
0: हाँ जी शशि जी।
1: मैम मेरी यहाँ पे काफी सारी गरिमा ग्रह में बहुत सारी लड़कियां हैं और ये
0: हाँ
1: सेशन आज का जो है बहुत अच्छा है मैम। और सभी लड़कियों के सवाल है वो वन बाय वन पूछना चाहती है मैम, उनके क्वेश्चंस के मैम आंसर वो क्लियर कीजिए प्लीज। मैम सबसे पहले पूछना चाह रही है अंजुम। हेलो मैम,
0: हाँ जी
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते।
1: मैं पूछना चाहती हूँ कि मैम हमारे जब पीरियड्स आते हैं ना, तो मतलब कमर इतने तेज दर्द होते हैं, तो उसका मतलब क्या कर सकते हैं?
0: देखिए जो पीरियड्स में पेन होता है, क्रैम्स आते हैं, ये एक नॉर्मल हर एक लड़की को होता है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, उसमें आप दवाई भी, मैं तो कहूंगी उसमें दवाई भी नहीं लेना चाहिए। ये जो पीरियड्स क्रैम्स या पेन होते हैं ये एक नॉर्मल बॉडी का साइकिल है, इसको हमें एक्सेप्ट करना है।
1: हेलो मैम। हाँ
0: हाँ
1: जी
0: जी
1: मैम, ऐसा होता है ना कि मतलब कई एक मतलब इस महीने मतलब पीरियड नहीं आता है 1 महीने तक, वो क्यों होता है ऐसा?
0: देखिए मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि अपनी अपनी शरीर है, अपना अपना बॉडी है, अगर मिस हुआ है पीरियड तो
1: हाँ मिस हो जाता है कई बार।
0: मिस हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना है, डॉक्टर से बात करनी है। आपका वो अगर ज्यादा मिस होता है तो अल्ट्रासाउंड होकर आपके जो
1: नहीं
0: प्रॉब्लम्स,
1: मैम, एक ही
0: हाँ
1: महीने
0: जी,
1: मतलब मिस होता है, उसके अगले महीने आ जाता है।
0: तो वो आपकी बॉडी का जो, हर एक की बॉडी अलग अलग होती है, मैंने बताया किसी को 15 दिन में भी दोबारा शुरू हो जाते हैं, किसी को 25 दिन में होते हैं, किसी को 30 दिन में होते हैं, किसी को 35 डेज में होते हैं। सो ये अपनी बॉडी पे डिपेंड होता है, पर अगर
1: डॉक्टर के
0: आप
1: पास जाना चाहिए?
0: इसको एक बार ही डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है।
1: ठीक, थैंक यू
0: हेलो
1: मैम। हेलो मैम,
0: हाँ
1: मैम
0: जी
1: आप कि इसमें हमें साफ सुथरा मतलब नहाना चाहिए, तो मैम
0: हाँ
1: हम
0: जी
1: बोलते हैं कि इसमें रोज नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि
0: नहीं
1: हम
0: नहीं
1: सरकार
0: आपको रोज नहाना है, रोज नहाना है, हाइजीन मेंटेन करना है, नहीं तो बीमारियां लग सकती हैं
1: बोलते
0: शरीर
1: हैं
0: में।
1: सर्द होने से वो फिर से ज्यादा हो जाता है।
0: ये सब बातें हैं, इनको प्लीज आप, मतलब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप रोज नहाए ऐसा नहीं है, सिर भी धो सकते हैं, रो काम तो सारे ही करने हैं, ऐसा नहीं है ना, तो नहाना तो चाहिए, रोज नहाना चाहिए और सिर भी धोना चाहिए।
1: अब मैम वो जब इस टाइम पर इचिंग होता है तो क्या हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए?
0: इस टाइम पे अगर आपको ईचिंग होती है तो इसका मतलब आप जो सैनिटरी नैपकिन्स यूज कर रहे हैं या आप अगर कपड़ा यूज कर रहे हैं तो प्लीज उसको बंद कर दें। अगर आप सैनिटरी नैपकिन को यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं वो आपको सूट नहीं कर रहे हैं, तो आप स्विच कर सकते हो सैनिटरी नैपकिन्स को। और हाइजीन मेंटेन कर कर रखना है क्योंकि यूटीआई इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं।
2: ओके मैम, मैम थैंक यू मैम। हेलो मैम।
0: हाँ जी
1: मैम अगला क्वेश्चन सोनी का है, जो थोड़ा सा पूछने में शर्मा रही है, तो मैं उसका क्वेश्चन मैं आपको मैं बता देती हूँ। मैम उनका क्वेश्चन है कि जैसे कपड़ा वो यूज कर रही हैं, उस टाइम पे वो धो के इस्तेमाल कर रही हैं, तो क्या उससे भी इन्फेक्शन का खतरा होता है?
0: शशि जी, सबसे पहले तो सोनी को बोलिए कपड़ा इस्तेमाल करना बंद कर दें,
1: ओके मैम।
0: क्योंकि कपड़ा धोकर इस्तेमाल करेंगे उससे तो 101% इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं।
1: ओके मैम।
0: तो कपड़ा नहीं इस्तेमाल करना है।
1: मैम वो बोल रही हैं कि पैड हम इस्तेमाल करते हैं, तो पैड से उन्हें थोड़ा सा जैसे जलन के टाइप में या रैशेज हो जाते हैं, तो
0: तो
1: वो
0: इसका
1: उसके
0: मतलब उनको जो सैनिटरी नैपकिन्स वो यूज कर रहे हैं वो उनको सूट नहीं कर रहा है। आप कॉटन बेस्ड सैनिटरी नैपकिन्स भी यूज कर सकते हैं।
1: हेलो मैम,
0: हाँ जी
1: गुड आफ्टरनून, मैं सरोज बोल रही हूँ मैम। क्या कहते हैं, मेरा तो पीरियड शुरू होता है ना, तो डेट से पहले ही हर बार ही आता है, 6 दिन 10 दिन पहले ही आता रहता है रेगुलर।
0: ये नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। 25 दिन की साइकिल होती है, लोग कहते हैं
1: लेकिन
0: महीने की साइकिल है पर
1: आता है।
0: 25 दिन
1: हेलो
0: की साइकिल है ये।
1: मैम,
0: हाँ जी
1: मैं मंजू शर्मा बोल रही हूँ। मैम मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हम बच्चों की मतलब प्रेगनेंसी के लिए कुछ यूज करते हैं, जैसे कॉपर्टी हो गया, जैसे मैंने फ्रीडम 5 यूज कर रखा है, तो मुझे ना डेट के दौरान मतलब काफी ब्लैडिंग होती है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं आप?
0: आपने जो भी ये यूज किया है तो उसके लिए आपने डॉक्टर से संपर्क किया है या डॉक्टर्स ने आपको एडवाइस किया है?
1: हाँ जी मैम, डॉक्टर से ही मैंने लगवाया था, तो प्राइवेट क्लिनिक से, तो मुझे और कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, बस डेट के दौरान ना पहले तो ब्लैडिंग कम होएगी, फिर उसके बाद अगर फ्लो बढ़ेगा तो मतलब लगातार मतलब 8-9 दिन तक चालू रह जाता है
0: ये
1: जी।
0: इसका एक साइड इफेक्ट है, मेजर साइड इफेक्ट है इसका, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। आप डॉक्टर से संपर्क, जिससे आपने लगवाया है या कराया है उससे आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत
1: जी
0: ज्यादा,
1: मैम,
0: इसका मेजर साइड इफेक्ट यही है कि मेंसेस बहुत ज्यादा, ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा होने लगता है,
1: हाँ जी हाँ जी, मुझे ब्लड फ्लो
0: पेन
1: ही
0: भी
1: ज्यादा
0: होता है
1: हो रहा है।
0: बहुत।
1: जैसे हाँ, पहले तो मेरा मतलब प्रॉपर्टी लगी थी सफदरजंग से, एम्स से, तो मतलब उसमें मेरे को क्या था कि बीपी की प्रॉब्लम, मतलब मोटापा बढ़ना और मतलब कई सारे साइड इफेक्ट थे, लेकिन मैंने वो हटवाया तो ये यूज करा है, तो इसमें मुझे और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी और चीज नहीं होता, बस यही होता कि डेट के दौरान पहले तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा दिखेगा 3-4 दिन तक, उसके बाद फ्लो बढ़ता है तो 10-11 दिन ले लेता, तो 5-6 दिन
0: तो ये
1: रहता
0: इसका
1: है।
0: साइड इफेक्ट है मैम, तो आप प्लीज डॉक्टर से संपर्क करें इसके बारे में।
1: जी मैम, एक बार डॉक्टर मैम ने मुझे दवाई भी दी थी, तो उससे भी कोई कमी नहीं हुआ, ये फिर मतलब वैसे ही है, सेम टू सेम
0: हाँ जी, ये जो
1: वैसे चलता है।
0: आप हम लोग ये IUD लगा लेते हैं, कॉपर्टी लगाते हैं, तो वो उससे ये साइड इफेक्ट्स शरीर में आते हैं।
1: मैम इसे आगे के लिए कोई दिक्कत हो सकती है, या फिर मतलब कोई जैसे ये साइड इफेक्ट है, इसे कोई कल को कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं होगी इसमें?
0: अब देखिए, ये अगर आपने लगवाया है ये साइड इफेक्ट से जरूर शरीर में तो कोई प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं, ऐसा तो
1: जी
0: नहीं है
1: जी जी
0: कि नहीं आएंगी, क्योंकि ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है तो एनीमिक भी हो सकते हैं
1: जी मैम,
0: आप।
1: पहले तो मतलब जैसे ब्लड पतला आता था डेट के दौरान, अब गाढ़ा गाढ़ा ब्लड आता है मैम मेरे को। ठीक
0: तो ये सारी साइड इफेक्ट्स ही हैं उसके।
1: है मैम, तो मैं उन्हीं मैम से फिर जाके मतलब कंफर्म
0: हाँ
1: करती
0: जी
1: हूँ।
0: डिस्कस कर
1: हाँ
0: लीजिएगा।
1: जी, उनसे डिस्कस करती हूँ। थैंक यू मैम।
0: थैंक्स।
1: हेलो मैम, मेरा नाम सुनीता है।
0: हाँ जी
1: मैम मेरी एज 25 साल है।
3: मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन मेरे पीरियड्स में बहुत मतलब पेन होता है, कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, सिर में ज्यादातर दर्द है, चिड़चिड़ापन रहता है मेरे।
0: क्योंकि हमारे शरीर में जो इस दौरान हार्मोनल चेंजेस हो रहे हो, हार्मोनल चेंजेस जो हो रहे होते हैं, वो हमारे शरीर में हमारे बॉडी में चेंजेस जो आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, किसी से
3: कमजोरी।
0: बात
3: हाँ
0: बात नहीं करना, पेन होना, ये एक आम है। ये हर हर औरत की जिंदगी में ये इस दौरान 6 दिन के दौरान जरूर होता है।
3: मैम, कमजोरी बहुत रहता है, थकान ऐसे थकी थकी से
0: हाँ
3: रहते हर
0: जी
3: टाइम।
0: हाँ जी, क्योंकि हमारे शरीर से बॉडी में से ब्लड लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से कमजोरी होती है। तो इसलिए आयरन हम लें, अच्छा
3: मैम
0: डाइट
3: खाने के लिए
0: लें,
3: क्या क्या इस्तेमाल करें इसमें?
0: प्रोटीन रिच डाइट जितना हो सके प्रोटीन खाएं, रोटी खाएं, दालों का इंटेक करें, अनार का जूस लें, अनार खाएं। आजकल तो अच्छा सैलेड आ रहा है, जो चुकंदर होता है वो ले सकते हैं। अच्छी अच्छी चीजें खानी चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए।
3: मैम परहेज क्या करें इसके लिए? मैम
0: परहेज ये है कि आपको स्पाइसी खाना नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, मिर्ची वाला नहीं खाना है, ऑयली खाना नहीं खाना है। ये सब परहेज हम कर सकते हैं।
3: थैंक यू मैम।
1: अगर सर में दर्द होता है तो पेन किलर लेना पड़ जाता है, तो इसमें ले सकते हैं क्या हम दवाई वगैरह?
0: हाँ जी, आप ले सकते हो, पर ज्यादा ना लें तो ज्यादा अच्छी बात है
1: मैम मेरा तो ऐसा
0: अपने।
1: होता पीरियड के दौरान कि मतलब 2-3 दिन लगातार हो जाता है सर दर्द, तो वो मुझे मतलब ड्यूटी पे आना पड़ता है तो पेन किलर, नाश्ते के बाद पेन किलर लेनी पड़ जाती है,
0: आप ले
1: क्योंकि
0: सकते
1: थोड़ा
0: हैं।
1: सर में प्रॉब्लम है ना, माइग्रेन की प्रॉब्लम है मेरे को, तो मेरे राइट साइड में नस में कुछ ड्रग क्लॉक बता रखा है, गांठ वगैरह नॉर्मल, तो उसके लिए मेरी दवाइयाँ चलती हैं। बट पहले मेरे को सर दर्द नहीं होता था, मतलब हर एज में अलग अलग रूल हुए हैं मेरे साथ। पहले जैसे पैरों में दर्द होता था, फिर कमर और पेट में दर्द हुआ, फिर जैसे शरीर में दर्द हुआ, टांगों में दर्द हुआ, मगर जो है ये अभी जो है कुछ टाइम से मेरे सर में दर्द शुरू रहने लग गया है, कि सर में बहुत दर्द हो जाता है मैम, मुझे 2-3 दिन तक पेन किलर लेनी पड़ जाती है लगातार, कभी तो रोज रोज लेना पड़ जाता है।
0: हाँ, ये माइग्रेन के पीछे ही है आपका। माइग्रेन
1: हाँ
0: में
1: जी
0: जब अटैक आता है तो फिर वो 2-3 दिन तक लगातार हमें पेन किलर्स लेनी पड़ जाती हैं।
1: जी जी और मैम
0: हाँ
1: सर ने मतलब डॉक्टर ने मुझे समझाया कि आपको ये नहीं सोचना कि अभी मेरा सर दर्द थोड़ा है, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, आपको जैसे ही दर्द शुरू हुए तो आपको दर्द की गोली लेनी ही लेनी है, तो मुझे
0: हाँ
1: तो वैसे
0: क्योंकि
1: लेनी पड़
0: माइग्रेन में
1: जाती है।
0: डॉक्टर्स यही कहते हैं कि अगर आपने दर्द की गोली नहीं ली तो फिर वो ब्रेन, मतलब सर बहुत तेज दर्द हो सकता है, तो ब्रेन
1: हाँ हाँ
0: स्ट्रोक
1: जी हाँ जी,
0: भी हो सकता
1: तो वो बोलते हैं कि फिर रोकना मुश्किल हो जाता है दर्द को,
0: है। हाँ
1: इसलिए
0: जी
1: आपको जैसे लगे कि मेरा सर दर्द हो रहा है तो आपको पेन किलर लेना ही लेना है। तो
0: जी हाँ जी हाँ जी, वो तो माइग्रेन में का है ही है, लेना ही है।
1: हाँ, तो मैं मतलब अगर डेट के दौरान ले रही हूँ मैम, इसका कोई वो तो नहीं होगा ना साइड इफेक्ट आगे को मेरे
0: नहीं
1: को?
0: नहीं नहीं नहीं
1: ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू।
2: नमस्ते मैम, मैं संगीता बोल रही हूँ। मैम मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 2-3 साल से ना, मैं पहले तो सही आती थी पीरियड से 4-5 दिन लगातार, लेकिन अब पिछले साल से 2 साल से ना मैं बस 2 ही दिन होती हूँ, तीसरे दिन मेरा पीरियड खत्म हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है मैम?
0: एज क्या है आपकी?
2: मैं 37 साल की हो गई मैम।
0: अच्छा,
2: जी
0: वैसे
2: मैम,
0: तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है तो आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं।
2: बस 2 दिन आता है मैम, पैरों में थकान, बहुत कटन, और फिर तीसरे दिन बंद।
0: हाँ जी हाँ जी,
2: ये 2 साल से हो रहा है मेरे साथ मैम।
0: ये हर किसी को होता है। देखिए, थकान, पैरों में दर्द, पीठ में दर्द, पेट में दर्द, हर किसी को होता है। बॉडी टू
1: बस
0: बॉडी
1: दोस्तों के लिए
0: डिपेंड
1: कहा
0: करता है।
2: था।
0: तो अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम्स हैं तो आप डॉक्टर से इसके बारे में संपर्क कर सकते हैं।
2: जी मैम, थैंक यू मैम।
4: किसी और को कुछ पूछना है?
1: नो मैम,
0: अनामिका, इफ नोबडी हैज एनी क्वेश्चन वी कैन कंक्लूड द सेशन.
4: श्योर मैम. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू ऑल.

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: ज्ञानवाणी लखनऊ प्रस्तुत करता है कार्यक्रम जीवी ऑनलाइन।
1: स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का एफएम 105.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी ज्ञानवाणी लखनऊ पर, और आज मैं ज्योत्सना हूं आपके साथ लेकर आपका अपना फोन इन कार्यक्रम बात पते की। श्रोताओं, युग परिवर्तन के साथ विचारों के मापदंड ही नहीं बदलते बल्कि रीति और नीतियां भी करवट ले जाती हैं। एक समय था जब स्त्रियों के विषय में कहा जाता था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन श्रोताओं, आज का युग ऐसा नहीं है। विधि की ये कैसी विडंबना है कि एक ही वृक्ष पर लगे दो पुष्पों में से जो एक अधिक सुरभित और सुरम्य होता है उसको अभिशाप समझ लिया जाता है, वहीं दूसरी ओर दूसरे को कष्टमय होते हुए भी वरदान। पुत्र के जन्म पर घर में तवे ढोलक और नपीरी बजने लगती है, लेकिन वहीं जब एक कन्या का जन्म होता है तो माता पिता के चेहरे पर उदासी की छाया क्यों छा जाती है। आज इन्हीं सब प्रश्नों को अपने मन में रखते हुए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है रीड इंडिया की कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर गीता मेहरोत्रा को, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं इग्नू के असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह जी। तो मैम, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपनी ज्ञानवाणी के स्टूडियो में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्ञानवाणी के स्टूडियो में। और अपने श्रोताओं को एक बार हम अपना विषय फिर से बता दें, हमारा आज का विषय है महिला सशक्तिकरण। तो अगर आप इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमें फोन कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0522-2987-847 यानी 0522-2987-847। और मैम, आज हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण पर। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न आपसे है वो ये है कि महिला सशक्तिकरण क्या है।
2: महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो ये कोई साइंस नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं लगता है महिला सशक्तिकरण का मापदंड करने के लिए। ये सबसे बड़ी बात जो इसके पीछे है, और मैं बहुत बार इस बात के ऊपर चर्चा भी करती हूँ कि ये हमारा अपनी सोच है, अपना एटीट्यूड है जो हमारे बिहेवियर में बदल जाता है, और हम अपने बिहेवियर को थोपने की कोशिश करते हैं समाज पे। तो अगर हमारी सोच बदल जाए, हमारा एटीट्यूड बदल जाए, हमारे एक्शंस बदल जाए और हमारा बिहेवियर बदल जाए तो हम इक्विटी की बात कर सकते हैं, हम बराबरी की बात कर सकते हैं, हम महिलाओं को उतना ही दर्जा दे सकते हैं जितना हम पुरुषों को देते हैं।
1: बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी बात। और मैम, जैसा कि हम महिलाओं को ढेर सारे नाम देते हैं, देवी, सती, सीता, दुर्गा, है ना, न जाने कितने सारे नाम दिए गए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि वर्तमान परिवेश में ये कहाँ तक चरितार्थ होता है?
2: माने तो भगवान, नहीं माने तो मिट्टी, है ना। बिल्कुल, ये तो हम बचपन से ही सुनते आए हैं। तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि अगर इंसान को दूसरे इंसान की इज्जत करनी आ जाए और उसकी रिस्पेक्ट करनी आ जाए तो ये जो अंतर है महिला और पुरुष में ये एकदम खत्म हो जाएगा।
1: बिल्कुल मैम, और जैसे प्राचीन काल में तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी और महिलाएं शास्त्रार्थ भी करती थी, हर क्षेत्र में वो थी, लेकिन वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति कह सकते हैं कि उसमें बहुत अंतर अब आ गया है, तो ऐसा क्यों हुआ है?
2: देखिए, मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात भी नहीं करूंगी और बहुत रिसर्च की बात भी नहीं करूंगी। जो हम कहते हैं कि प्राचीन काल में स्त्रियों के हाथ में शस्त्र थे, या जैसे झांसी की रानी की बात करें या कुछ और महिलाओं की बात करें, पर आप देखिए कि मदर टेरेसा भी थी। मदर टेरेसा के हाथ में कोई शस्त्र नहीं थे, पर मदर टेरेसा ने साइलेंटली कैसे औरतों को सपोर्ट किया और अपने कार्यक्रम करते हुए दिखाया, अपने जीवन की पूरी रचना के बारे में लोगों को बताते हुए बताया कि एक महिला भी इस लेवल तक पहुंच सकती है। तो मैं उसमें कहूंगी कि महिलाओं को अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और अगर रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती तो स्काई इज द लिमिट फॉर अ वुमेन, बहुत ऊंचा उठ सकती हैं वो, और अगर परिवार उनको सपोर्ट करे तो समाज भी कहीं पीछे हट जाता है।
1: बिल्कुल मैम। और लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि हमें महिला सशक्तिकरण जैसे दिवस मनाने की जरूरत पड़ी?
2: महिला सशक्तिकरण का दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम अपने समाज को बार बार बार बार रिमाइंड करें कि जो आपका इक्वल पार्टनर है, हकदार है इस समाज का, उनका राइट है अपनी जिंदगी जीने का, अपना इवन जन्म लेने का, जिंदगी जीने का, माँ बाप से उतना ही प्यार लेने का जितना हम बेटों को करते हैं, उनको भी उतनी ही एजुकेशन चाहिए जितना हम बेटों को देते हैं, उनको भी उतने अधिकार चाहिए। अगर मैं यहाँ पे रिसर्च की बात करती हूँ तो आज का युग जो है वो टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है और महिलाओं को वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। और आप देखिए अभी समय में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी, इंजीनियरिंग भी कर रही हैं और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनमें वो काम करती हैं, पर स्टिल अगर हम रूरल इंडिया की बात करें तो 48% जो हमारा पोर्शन है महिलाओं का, उसमें से मैं कहूंगी कि 40% भी उस लेवल तक नहीं है जो फुल्ली एजुकेटेड है और टेक्नोलॉजी में आगे अपने कदम बढ़ा रही हैं। तो ये जो फर्क हम देख रहे हैं आधुनिक समाज में और पिछड़े समाज में, इस गैप को भरने की जरूरत है। और जब हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और अगर हम इस गैप को नहीं समझेंगे, ये जो इतनी बड़ी विडंबना हमारे सामने आके खड़ी हुई है कि हम जब भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम खाली शहरों की बात करते हैं, हम गांव को भूल जाते हैं। और गांव में अगर महिला से आप चर्चा करें तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कितनी शक्ति है, कितनी उसकी सोच बड़ी है, पर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो जब हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और दिवस मनाने की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक रिमाइंडर देने की जरूरत है समाज को कि उन महिलाओं की तरफ भी देखिए जिनको कुछ अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती हैं। तो सोच और अपॉर्चुनिटी का आपस में बहुत गहरा तालमेल है, इस तालमेल को समझने की जरूरत है।
1: और मैम, महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है?
2: ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। और शिक्षा अपने में ही एक संपूर्ण, मैं बोलूंगी कि एक टॉपिक है, और सशक्तिकरण एक अलग है। हम कहते हैं कि महिला पढ़ जाएगी तो वो एम्पावर्ड हो जाएगी, पर ये बात नहीं है। बहुत सारी महिलाएं पढ़ के भी अपने परिवार में बहुत ही डिफरेंस महसूस करती हैं। और जब हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि सेक्स रेशियो महिलाओं की बच्चों की जो गर्ल चाइल्ड है उसकी बहुत कम है, और 2011 के जो आंकड़े हैं, आज हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है और मैं आंकड़ों के ऊपर अभी थोड़ी सी बात करना चाह रही हूँ कि जो हमारे देश में अलर्ट हुआ था कि 2011 में जब हमारी सेंसस हुआ और हमें पता चला कि चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारा जो गर्ल चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो बहुत ही डाउन है, और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हमारे सामने आए थे जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात एंड देवर अदर स्टेट्स आल्सो, पर उसमें क्यों गिरा हमारा सेक्स रेशियो? क्योंकि ये अर्बन एरिया में जो बहुत ही सक्षम थे, पैसे वाले थे और पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने एबॉर्शन अपना एक राइट समझ लिया था, जो बहुत ही गलत था। इसीलिए चाइल्ड सेक्स एबॉर्शन पे भी सरकार ने कानून बनाया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो गैप है ये पढ़ाई की वजह से आया। पढ़े लिखे लोगों ने भी बहुत सारे ऐसे ब्लंडर्स किए हैं जिसमें लड़कियों की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही कम हो गई, और उनको वो राइट भी नहीं मिला कि वो इस समाज में अपना जीवन व्यतीत कर सके, और उनके पैदा होने से पहले ही उनको एबॉर्शन से खत्म कर दिया गया।
1: बिल्कुल। और जैसा कि हमारे साथ सर भी हैं, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे इग्नू से जुड़ी हुई कुछ जानकारी कि इग्नू का एडमिशन सत्र कब से शुरू हो रहा है?
3: जी मैडम, इग्नू के अगर हम जुलाई 2021 सेशन की बात करें तो एट प्रेजेंट हमारे एडमिशन इस साइकिल के लिए ओपन है, और जिन लर्नर्स को इग्नू से यूजी प्रोग्राम, पीजी प्रोग्राम, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रोग्राम ज्वाइन करना हो तो उनके पास अवसर है कि वो 15 जुलाई तक ऑनलाइन मोड से फॉर्म्स भर सकते हैं। जो विश्वविद्यालय का लिंक है एडमिशन का, वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे है। तो कोई भी स्टूडेंट, अगर उसको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है या अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, नॉलेज को अपग्रेड करना है, तो वो इग्नू के प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकता है। और अभी बहुत सारे नए प्रोग्राम्स विश्वविद्यालय ने लॉन्च किए हैं, जैसे एमए इन उर्दू, एमए इन ज्योतिष और जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज पे तमाम कोर्सेज लॉन्च हुए हैं। फिर डेवलपमेंटल स्टडीज पे पीजी डिप्लोमा इग्नू ऑफर कर रहा है। सीएसआर में इग्नू कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में नया कोर्स हमारा लॉन्च हुआ है डिप्लोमा लेवल पे, और उर्दू लैंग्वेज में पीजी हम लोगों ने लॉन्च किया है। तो तमाम ऐसे कोर्सेज हैं जो मैं समझता हूं कि लर्नर्स के लिए काफी यूजफुल साबित होंगे, और जो डिस्टेंस मोड में अभी तक नहीं ऑफर हो रहे थे उनको विश्वविद्यालय डिस्टेंस मोड में ऑफर कर रहा है। कुछ पाठ्यक्रम हमारे खास तौर से सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑनलाइन मोड में भी इस समय ऑफर हो रहे हैं। तो जिन लर्नर्स के पास समस्या है कि वो डिस्टेंस से भी नहीं कर पाते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम घर बैठे अपनी पढ़ाई करें अपने स्मार्टफोन को यूज करते हुए, अपने लैपटॉप्स को यूज करते हुए, तो उनके लिए ऑनलाइन कोर्सेज जो इग्नू के हैं वो काफी अच्छा ऑप्शन है। तो मुझे लगता है कि लर्नर्स को समय नहीं गंवाना चाहिए और एडमिशन के लिए जो लिंक हमारा खुला है उसमें उसका लाभ उठाना चाहिए और अपना एडमिशन लेना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, और टर्म एंड एग्जामिनेशंस जो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गए थे
3: जी,
1: तो उसके बारे में सर।
3: जी, टर्म एंड एग्जामिनेशन हमारा जो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया था वो 3 अगस्त से शुरू होने वाला है। तो जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको इस एग्जाम में बैठने का अवसर मिलेगा।
1: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी जानकारी। और मैम, हम बात कर रहे थे महिला सशक्तिकरण की, तो इसमें आपने बताया कि शिक्षा की क्या भूमिका है, अब इसमें परिवार का क्या योगदान होता है?
2: सबसे बड़ा योगदान परिवार का है, और उससे बड़ा योगदान है कि जो मैरिड कपल है, हस्बैंड एंड वाइफ, और एक हस्बैंड को स्टैंड लेना है कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल बैन क्यों हुआ कि हमें स्क्रीनिंग नहीं करानी बच्चे की कि वो लड़की है या लड़का, जो सेक्स सेलेक्टिव स्क्रीनिंग है वो भी नहीं करानी, अबॉर्शन भी नहीं कराने, और जब परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं अगर उनकी सोच अभी नहीं बदली है, तो एक हस्बैंड और वाइफ मिलके अगर स्टैंड लेते हैं तो ये बहुत बड़ा स्टैंड है माइंडसेट को चेंज करने का। क्योंकि हम बहुत सारे अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजंस होते हैं जो हस्बैंड वाइफ मिलके डिसाइड करते हैं कि नहीं, हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और हमें ये स्टेप्स लेने हैं, तो क्यों नहीं इस संदर्भ में भी। और जब शिक्षा की बात है तो अब बहुत समय बदल गया है, बहुत परिवारों की सोच बदल गई है, यंग कपल्स की सोच बदल गई है। वो डिफरेंस है जो लड़की और लड़के की शिक्षा में, अभी मुझे शहरों में तो इतना नजर नहीं आता है, पर हाँ उसका बहुत बुरा हाल है गांवों में। गांवों में अगर हमने अभी भी इस चीज को नहीं पकड़ा और नहीं शिक्षा की तरफ पेरेंट्स की सोच बदली, तो ये गैप इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी के आने से, टेक्नोलॉजी उनके लिए एक ड्रीम है, एक सपना है, उसको हाथ से छूना भी उनके लिए बहुत दूर की बात है, और टेक्नोलॉजी को यूज करना तो आई थिंक मैं इसके बारे में पिछले 15 साल से चर्चा कर रही हूं, और अभी भी वो गैप एक ड्रॉप इन द ओशियन की लेवल पे फिल हुआ है, और उसमें भी ड्रॉप का जो साइज है वो डिफाइन करना मेरे लिए इतना मुश्किल है कि जस्ट अ सिंपल ड्रॉप। तो अगेन आई वुड से कि ये सब माइंडसेट की बात है, और जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो अपने पैरों पे खड़ी हैं आज, और अपने पैरों पे खड़े होके जब उनको मौका मिलता है कि वो अपने आप को इतना सक्षम समझती हैं कि वो अपने परिवार की देखभाल कर सकती हैं और उनके जो हस्बैंड्स हैं वो भी इस बात को समझते हैं, तो द ओनली थिंग इज दैट कि कैसे हम जो एक्सपीरियंसेस हैं, देखिए पीयर लर्निंग भी बहुत बड़ी एजुकेशन है हमारे देश में, और अगर एक महिला अपने एक्सपीरियंसेस दूसरी महिला के सामने शेयर करती है कि कैसे उसने अपने बच्चों की देखभाल की और अपने गर्ल चाइल्ड को उन्होंने हायर एजुकेशन दी और उसको हायर एजुकेशन का ये मतलब नहीं है कि ट्वेल्थ पास करा दी, हायर एजुकेशन की पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, डॉक्टर। तो ये सोच आस्ता आस्ता शहरों में तो बहुत सीख आ रही है, पर गांवों में सोच है, सपना है, पर उस सपना को पूरा करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो यहां तक तो हम पहुंच गए हैं।
1: बहुत अच्छी बात। और जैसे आपने कहा कि गांव में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो इसी तरह महिला सशक्तिकरण में स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ आप बताइए।
2: बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम सरकार भी चला रही है जहां पे वो स्किल डेवलपमेंट की बात करती है। और गुड़गांव में तो मैंने एक यूनिवर्सिटी भी देखी है जिस यूनिवर्सिटी का नाम ही स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है। और इग्नू जैसे भी ऐसे बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। और अगर मेरा आप एक्सपीरियंस जाने तो जिस संस्था की मैं कंट्री डायरेक्टर हूं, रीड इंडिया, हमने 30,000 से ज्यादा औरतों को सक्षम बनाया है लाइवलीहुड ट्रेनिंग पे, जो वो आज अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। और इससे आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन मैं ये जो भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको बताना चाह रही हूं कि लड़कियां, क्योंकि ये महिलाओं के लिए कार्यक्रम था, और मैं दावे से इस बात को कह सकती हूं कि 30,000 औरतों को अगर हमने सक्षम बनाया है तो 15,000 औरतें तो अपने पैरों पे आज खड़ी हैं, जिनका डिले इन मैरिज भी हुआ है। अभी 25 साल की लड़कियों ने भी शादी करने की थोड़ी सी रोक लगाई है, अपने पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज किया है, क्योंकि पहले हमने अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, तभी हम शादी करेंगे। तो डिले इन मैरिज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फर्टिलिटी ऑफ अ वुमेन, कि वो बच्चे नेचुरली सोच बनेगी कि कम पैदा करने हैं, और इतना प्रेशर नहीं होगा कि अगर कम बच्चे करने हैं, और लड़की भी चाहिए और लड़का भी चाहिए एक बैलेंस्ड परिवार के लिए, तो ये सोच अपने आप बदल जाएगी। तो शिक्षा का और रिलेशन जो है, जब हम एम्पावरमेंट का करते हैं तो इस तरह से हमें उनको कंपेयर करना है और लोगों को समझाना है।
1: बिल्कुल मैम। और जैसे कि भारतीय समाज में स्त्रियों की जो घटती संख्या है इस समय, उसके क्या दुष्परिणाम है?
2: देखिए

0: और पढ़ी, और बड़ी तो दिल्ली में हुई हूँ, पर आज के समय मैं हरियाणा में रहती हूँ, और हरियाणा में अभी भी सोच बदलने की बहुत बहुत जरूरत है, और उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है।
1: बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर देखा जाए तो जैसा कि आपने कहा कि शिक्षा बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, सही बात है, लेकिन शिक्षा बहुत ज्यादा रिलेटेड है इन सारी चीजों से, क्योंकि केरला में देखिए ज्यादातर लोग जो हैं एजुकेटेड हैं, तो वहां पे मतलब गर्ल चाइल्ड का रेशियो भी ज्यादा है ना, तो शिक्षा तो मैटर बहुत ज्यादा करती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि लोगों की जो सोच है ये कैसे, क्योंकि परिवेश, जो हमारा माहौल होता है, परिवेश होता है, वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर करता है। मान लीजिए आप किसी ऐसे परिवार में रह रहे हैं जो बहुत कंजर्वेटिव माइंड है, और लोग सोचते हैं कि नहीं, हमारे लिए बेटा इम्पोर्टेंट है, और पहले यही चाहिए, लड़की बहुत ज्यादा एजुकेटेड है लेकिन उसके ऊपर मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में एक लड़की को या एक स्त्री को क्या करना चाहिए?
0: मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं दोबारा से ये रिट्रेट
1: बिल्कुल
0: कर
1: मैम,
0: दूं बात, क्योंकि शिक्षा का अपना महत्व है, और जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं और हम उस एज ग्रुप को लेते हैं जो 35 to 55 है महिलाओं का, या हम 40 से 65 तक की महिलाओं की बात करते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में एम्पावरमेंट का मतलब भी नहीं समझा, उनको जो महिला सशक्तिकरण है उसके बारे में किसी ने बात भी नहीं करी, और ये मैं रूरल एरियाज की बात कर रही हूं, तो उस संदर्भ में मैं कह रही हूं कि अगर हम उनको इस बात के, उनके साथ बैठ के इस बात की चर्चा करें, और वो तो अब स्कूल भी नहीं गई हैं, एजुकेटेड ही नहीं है, तो मेरा ये कहने का मतलब है जो वर्ग एजुकेटेड नहीं है उनके साथ हम कैसे उनका माइंडसेट बदलें कि महिला को उतना ही दर्जा अपने परिवार में देना है जितना हम पुरुष को दे रहे हैं, तो वो चीज बातचीत करने पे आएगी, पीयर लर्निंग पे आएगी, और समाज में जब हम एक दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगे तभी आएगी। और यहाँ पे गैर सरकारी संस्थाएं बहुत ज्यादा काम कर रही हैं गांव में जाके लोगों के माइंडसेट चेंज करने के लिए। जहां पे मैं शिक्षा की बात कर रही हूँ, जब शिक्षा बहुत जरूरी है, ये तो मैं नहीं कह रही हूँ कि शिक्षा जरूरी नहीं है, पर शिक्षा अभी जो हमारी यंग जनरेशन आ रही है, जो आप कह रहे हैं कि चाइल्ड सेक्स रेशियो पढ़े लिखे लोग नहीं करते हैं, उसमें मैंने बोला कि वो भी करते हैं,
1: बिल्कुल मैम,
0: पर जो माइंडसेट वुमेन एम्पावरमेंट की बात है वो एजुकेशन का उसका डायरेक्ट लिंक है, वो तो है ही है, तभी समाज बदलेगा। पर हमारा समाज बटा हुआ है जहाँ पे 70% ऑफ, और हमारा जो पॉपुलेशन है अभी यूथ है, क्योंकि हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से निकल रहे हैं, जहां पे 65% यूथ है और हमारी 70% पॉपुलेशन गांवों में रह रही है, और जब तक हम यूथ का माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, यूथ को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे, यूथ के बिहेवियर में चेंज नहीं लाएंगे, तभी हमारा ये जो गैप है महिला सशक्तिकरण का, ये कम नहीं होगा।
2: जी मैम, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और आपकी जानकारी के माध्यम से हमारे श्रोता लाभान्वित हुए, और उन्होंने ये समझा कि हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच की आवश्यकता है, चाहे वो शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जागरूकता की बात करें तो जागरूकता भी इम्पॉर्टेंट है, और इसी तरह हमें समाज को भी सशक्त बनाना पड़ेगा, समाज में ये मैसेज देना पड़ेगा कि महिलाएं इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और उनके भी अपने अधिकार हैं, खासतौर से अगर हम रूरल सोसाइटी की बात करते हैं, और हमें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। और जहां तक रीड इंडिया के विषय में मैं जानता हूं, तो रीड इंडिया की जो अप्रोच है वो काफी मैं समझता हूं कि एक बैलेंस्ड अप्रोच है, जिसमें आप विभिन्न आयामों पर काम कर रहे हैं और विमेन एम्पावरमेंट के लिए प्रयासरत हैं। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आयाम रीड का जो है, रीड महिलाओं, जहां भी महिलाओं से रिलेटेड सेंटर्स हैं या स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करा रहा है, वहां पर लाइफ स्किल्स की चर्चा जरूर होती है, लाइफ स्किल्स के बारे में महिलाओं को बताया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो मैं चाहता हूं कि श्रोताओं को आप बताएं कि लाइफ स्किल्स क्या हैं और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है।
0: लाइफ स्किल्स तो एक जीवन को व्यतीत करने की शिक्षा है, और जब हम आम जिंदगी में, ये जो आपने आज महिला सशक्तिकरण की बात करी है या एजुकेशन की बात करी है, ये लाइफ स्किल्स के

0: एक आई शुड से दैट एक कॉइन के दो साइड्स हैं
1: जी.
0: हम एजुकेट तो कर देते हैं, एकेडमिक एजुकेशन दे देते हैं, पर बच्चों को कभी लाइफ स्किल्स के बारे में नहीं सिखाते हैं. जो संस्कार हैं, जो वैल्यूज हैं, वो उनको फैमिली से मिलती हैं, और फैमिली अगर उन संस्कारों को, उन कल्चर को पीछे ही छोड़ देती है तो वो लाइफ स्किल्स की बात समझते नहीं है दूर दूर तक. तो आज हमारे देश में जहां पे कल्चर इतना रिच है, आप कह रहे हैं कि औरतों के हाथ में शस्त्र थे और हमारी हिस्ट्री ये कहती है,
1: शास्त्र दोनों थे,
0: और अभी हमारी हिस्ट्री ये कह रही है, और पर आज के टाइम पे अगर हमारा कल्चर ही हमारी वैल्यू सिस्टम बनता है और वैल्यू सिस्टम ही हमारी लाइफ स्किल्स बनती है, तो कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर को पीछे छोड़ते आ रहे हैं, अपनी लाइफ स्किल्स को भूलते आ रहे हैं. तो आज स्कूल्स में, कॉलेजेस में क्यों हमें जरूरत पड़ रही है कि हम लाइफ स्किल्स के बारे में बात करें? और लाइफ स्किल्स क्या है? आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सनालिटी क्या होती है उसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है. और वो जानना, होलिस्टिक डेवलपमेंट कोई साइंस नहीं है, उसके पीछे लाइफ की, जिंदगी को, अपनी जिंदगी को कैसे जीना है उसकी शिक्षा दी जाती है. कैसे माँ बाप की इज्जत करनी है, कैसे एक महिला की इज्जत करनी है, कैसे अपनी बहन की इज्जत करनी है, कैसे अपनी पहचान बनानी है सोसाइटी में, कैसे अपने आप को सक्षम बनाना है शिक्षा के द्वारा और स्किल्स के द्वारा कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें. और इसके संदर्भ में मैं एक युवा पीढ़ी को ये भी मैसेज देना चाहूंगी कि उड़ान भरना तो बहुत आसान है, पर उड़ान की अगर डोर मजबूत नहीं है तो गिरना उससे भी आसान है.
1: जी, बिल्कुल.
0: तो
1: सही,
0: इस चीज को, अपनी जिंदगी की उड़ान संभाल के चलने से, संभाल के उड़ने से, वैल्यू सिस्टम से, स्किल से अगर हम चलें, तो मुझे लगता है कि हम अपने देश को सोने की चिड़िया कहने में बहुत दूर नहीं रहेंगे.
1: जी मैम, बहुत अच्छी बात कही आपने. और इस समय भारत सरकार इस विषय पे काम कर भी रही है. न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, और बहुत ही मतलब प्राइमरी सेक्शन से ही वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इम्पार्ट करने की बात है. और मैं समझता हूं कि आगामी एकेडमिक सत्र से ये चीजें शुरू भी हो जाएंगी, तो ये बहुत शुभ संकेत है. मुझे लगता है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी उसके मन में ये सारी चीजें नहीं होंगी और महिलाओं को वो समान मतलब बराबर का दर्जा देगी. मैडम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन फील्ड पे काम करती है, आपने महिलाओं को विभिन्न तरह की ट्रेनिंग्स दिलाई, उनको लाइफ स्किल्स के विषय में अवगत कराया है, और खासतौर से आपका जो मॉडल है रीड का, कम्युनिटी लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर का, तो वो भी एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट को फोकस करता है. तो मैम, मैं कुछ जानना चाहूंगा आपसे कि जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है महिलाओं का, कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग्स जो आप लोग दिलवाते हैं या सरकार दिलवा रही है, कहीं ना कहीं बहुत यूजफुल साबित होती है. तो आप अपने कुछ एक्सपीरियंस ऐसे शेयर करना चाहेंगी जहां पर आपने कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी दिलवाई और महिलाओं ने समाज में एक अच्छा काम किया, अपना एंटरप्राइज शुरू किया, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं.
0: जो रीड का मॉडल है, हम एक गांव में जाते हैं, बात करते हैं, सीधा कम्युनिटी के साथ बात करते हैं और कहते हैं कि रीड आपके लिए किताबें लेकर आ रहा है, कंप्यूटर्स लेकर आ रहा है, आपकी महिलाओं को कुछ स्किल्स की ट्रेनिंग देना चाह रहा है, क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? तो हम यहां पे एक कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर बना देते हैं. जो लोग संस्कारी हैं और इसके वैल्यू समझते हैं, विजनरी हैं, वो हमें कहते हैं ये हमारा घर खाली पड़ा है, आप इसमें बना दीजिए. और यहाँ पे हम सारे समाज को बुला के, जो हमारे गांव के लोग हैं, वो यहाँ पे आके इस सेंटर को चलाएंगे, लाइब्रेरी को चलाएंगे. तो ये प्रयास मैंने 2007 में शुरू किया था और आज 2021 है, अभी तक तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है. मैं जिस गांव में जाती हूँ उस गांव में मुझे बहुत ही सहानुभूति कह लीजिए या इज्जत कह लीजिए या रिस्पेक्ट कह लीजिए, वो मिलता है. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल भी देना चाहूंगी, रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर हैं हरियाणा के, उन्होंने जब देखा कि मैं मेवात में काम कर रही हूँ, और मैंने 2012 में या 2013 में उनको बुलाया एक हमारी लाइब्रेरी को इनॉग्रेट करने के लिए, तो उन्होंने तब से मुझे बोला कि मेरी हवेली खाली पड़ी है मेहंदीपुर गांव में, हरियाणा में, झज्जर में, तो आप उसको सेंटर बना दीजिए। और 2014 से उस हवेली में हम काम कर रहे हैं। तो जो विजनरी लोग हैं, जिनको पता है कि हाँ, अगर समाज ने हमें कुछ दिया है तो हमें, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज को कुछ वापस करें, तो वो लोग बहुत आगे बढ़कर आते हैं। और जहां तक कीर्ति जी आपने पूछा है कि महिलाओं ने कुछ किया है या नहीं किया, तो उत्तर प्रदेश का ही मैं एग्जांपल देती हूँ। हम एक कार्यक्रम चलाते हैं जो हम कहते हैं एम्बाइबिंग ग्रास वुमेन लीडर्स फ्रॉम द ग्रास रूट्स। वो हर हफ्ते हमारा कार्यक्रम आता है। आज भी 4 से 5 था, हमने महाराष्ट्र की एक लड़की को उस कार्यक्रम में बुलाया था। और यूपी से पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते में 2 महिलाओं को हमने प्रोग्राम में बुलाया था। और एक लड़की जो मुस्लिम लड़की है, फर्रा उसका नाम है, और आज वो 25 साल की है और वो कहती है मैंने अभी भी शादी नहीं करनी है। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। जहां वो 16 साल की थी, उसके पेरेंट्स शादी करना चाह रहे थे उसकी, आज वो 10वीं पास होने के बाद उसने कहा कि मैं ये कम्युनिटी लाइब्रेरी को चलाऊंगी और अपने गांव वालों को शिक्षित करूंगी। और उसने एक प्री स्कूल भी चलाया जिसमें 300 से ज्यादा छोटे बच्चे पढ़ते हैं। और सेंटर भी चलाती है जिसमें महिलाएं सिलाई सीखती हैं, ब्यूटी एंड वेलनेस का कार्यक्रम करती हैं, कंप्यूटर्स सीखते हैं बच्चे, और प्रोफेशनल कोर्सेस भी करते हैं। और जब पिछले हफ्ते मैं उससे चर्चा कर रही थी तो उसने कहा कि मैंने अपनी कमाई से अपने माँ बाप के लिए घर भी बनाया है, क्योंकि मुझे, मेरे पेरेंट्स कहते थे, जो समाज के लोग थे, कहते थे कि आप अपनी बेटी की शादी नहीं कर रहे हैं। तो हमारा घर इतना टूटा फूटा था कि हम रात को सोते थे तो पानी छत से गिरता था। तो मैंने अपने माँ बाप को समझाया कि आपका अगर दामाद घर में आएगा और पानी गिरेगा छत से, तो आपकी क्या इज्जत रहेगी। आज आपकी बेटी इतनी सक्षम है कि आपको घर बना के दे रही है, और कल को मैं शादी करती हूँ और दामाद आएगा तो आपको इज्जत की नजर से देखेगा। तो पहले मैं खुद सक्षम हूं, फिर मैंने अपने परिवार को सक्षम किया, फिर मैंने अपने छोटे बहन भाइयों को सक्षम किया, आज मैं शादी के लायक हूं और मैं शादी कर सकती हूं।
1: बहुत अच्छी बात मैम आपने बताई। और ये जो आपने एग्जाम्पल दिया, मैं समझता हूं कि हमारे युवा साथी इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, तमाम महिलाएं सुन रही होंगी, तो उनके लिए भी बहुत मोटिवेटिंग रहेगा ये। हाँ, और मैडम इसी क्रम में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपने कुछ सक्सेस स्टोरीज हमसे शेयर करी, आपने कमिश्नर साहब का एग्जाम्पल बताया, तो ये मॉडल रेप्लीकेट करें और महिलाओं के जो अधिकार हैं या महिलाओं से रिलेटेड जो तमाम सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं या आपका ऑर्गेनाइजेशन जो कार्यक्रम चला रहा है वो जनमानस तक पहुंचे, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए?
0: हम ये जितनी भी महिलाओं के प्रति स्कीम्स हैं
1: जी,
0: हम सारा अपने सेंटर के थ्रू महिलाओं को इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैं वाद का एक एग्जांपल देती हूँ कि महिलाएं तो खुद इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, उनके बच्चों की हायर शिक्षा के लिए सरकार पैसा देती है और 70 महिलाओं के अकाउंट में वो पैसे डाले कि वो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दें। और 70 से ज्यादा महिलाओं को सिलाई मशीन लेके दी सरकार के पैसे से कि वो अपने घर का कार्यक्रम चलाएं। और बहुत सारे ऐसे महिलाओं को पैसा भी दिया गया कि वो अपने बेटियों की शादी करें। तो स्कीम बताना एक बात है, पर स्कीम को प्रैक्टिकली लागू करके उनको बेनिफिट दिलाना ये अलग बात है। और बेनिफिट कौन दिलाएगा? वो समाज में जो लीडर्स हैं वो ही दिला सकते हैं। अगर हम सरकार के अगेंस्ट ही चलते रहेंगे तो हम कैसे महिलाओं को सक्षम बनाएंगे और कैसे हम उन तक ये जो कार्यक्रम है लेके जाएंगे? तो बहुत सारी ऐसी गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और मैं कहती हूं आज का ये युग है, आप सरकार जो भी कर रही है अच्छा कर रही है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी अच्छा कर रही हैं, बट आज का समय हमें फिर हिस्ट्री रिपीट कर रहा है। हमें एक गांव में एक पुरुष और एक महिला की जान पहचान, जो जान पहचान है उनकी पूरे गांव के साथ होनी चाहिए। और गांव उनकी जान पहचान एक परिवार के साथ होनी चाहिए। अगर वो उनके साथ खड़े हैं, उनकी सहानुभूति उनके साथ है और उनको सक्षम बनाते हैं, यही एक मैसेज है आज के युग में सक्षमता की बात करने का। कोई भी इंडिविजुअल लीडर, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये रोल प्ले नहीं कर सकती है उस हद तक जहां हम पहुंचना चाहते हैं। हम इतनी स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं, पर जो ज्ञानी हैं, जिनको नॉलेज है, जिनको टेक्नोलॉजी आती है, वो हैंड टू हैंड अपनी कम्युनिटी में, अपने समुदाय में उनका हाथ पकड़ के चलें, तभी इंडिया प्रोग्रेस कर सकता है।
1: जी मैम, और इस क्षेत्र में भी मैं समझता हूं कि सरकार काफी काम कर रही है। डिजिटल इंडिया की जो रूपरेखा है वो कहीं ना कहीं आपके इस विजन को सपोर्ट करती है। मैम, इसी क्रम में ये जानना चाहूंगा मैम कि जैसे अभी कोविड का समय आया और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं थे, मगर उन्होंने वेबिनार्स आयोजित करनी शुरू कर दी, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स आयोजित करनी शुरू कर दी, जूम ऐप और तमाम बहुत सारी एप्स ऐसी हुई जिसका ऊपर यूज करना शुरू कर दिया गया, तो टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ा और बहुत अच्छे से यूज किया जाने लगा। तो मैम, रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और उपयोगी कैसे साबित हो सकती है हम सभी लोगों के लिए, इसकी जानकारी हमें दो।
0: पांच चीजें हैं जो मैं पिछले बहुत सारे सालों से ये बोलती हूं सबको। एक तो एक्सेसिबिलिटी इज अ बिग गैप, क्योंकि एक्सेस नहीं होगा टेक्नोलॉजी को तो वो समझेंगे कैसे। फोन खरीदने के लिए भी अगर पैसे नहीं है तो हम कैसे बात करेंगे कि हम टेक्नोलॉजी को लेके जा रहे हैं गांव में, और शहरों में तो लोगों के पास पांच पांच फोन है बिकॉज दे कैन अफोर्ड। और अफोर्डेबिलिटी दूसरी बात है कि पैसा होना चाहिए खरीदने के लिए। तीसरी बात है एडेप्टेबिलिटी, जो हम पॉपुलेशन के वर्ग को अगर हम डिवाइड करें, यूथ के पास फोन है पर 30-40 उम्र से लेके 60 साल की उम्र तक टेक्नोलॉजी को यूज करना भी आना चाहिए। मैं यहाँ पे अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊंगी। मैं मलेशिया की कम्युनिटी लाइब्रेरीज में गई थी जहां पे ओल्ड पॉपुलेशन के लिए अलग से एक सेक्शन है, जहां पे वो ओल्ड पॉपुलेशन आती है, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता पर वो सीखना चाहते हैं, और वहां पे टाइम डेडिकेटेड किया हुआ है कि आप 2 घंटे आइए, हम आपकी क्लास लेंगे, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान देंगे और कैसे मोबाइल को यूज करना है, कैसे मोबाइल बैंकिंग को यूज करना है, ये सारी जानकारी भी हम उनको देंगे। तो कौन कर रहा है ये? लर्नेड पीपल आर डिवोटिंग देयर टाइम कि वो दूसरे लोगों को सिखाएं। तो टेक्नोलॉजी की लर्निंग भी एक बहुत बड़ी बात है इसमें। और पांचवा जो पॉइंट है जो मैं यहां पे सबसे जरूरी कहना चाहूंगी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, लर्निंग स्किल्स और उसकी कॉन्टिन्यूटी। उसकी कॉन्टिन्यूटी भी बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि पिछली टेक्नोलॉजी को सीखते ही वो डिप्लीट हो जाती है, और जब नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, क्योंकि इट्स अ मार्केट ट्रेंड, अगर हम मार्केट ट्रेंड को अलग कर लें और सिखाने की कला को अलग कर लें, तो मुझे लगता है कि जो मैंने 5 पॉइंट्स यहां पे बताया हम उनको बहुत अच्छे से लागू कर सकते।
2: बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छी आपने हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। और क्योंकि आज हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो क्या उससे जुड़े कुछ कानून हैं ऐसे जो आप हमारे श्रोताओं को बताएं? और जैसा कि समय भी है, बहुत कम रह गया है, तो एक बार अपने श्रोताओं को हम पुनः बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण पर, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर गीता मल्होत्रा को। तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिए, और अब तक जितने भी श्रोताओं ने सुना होगा वो अवश्य ही बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे। तो अब
1: मैं, आपने जो सवाल पूछा उसमें एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि अगर अपने प्रदेश सरकार की हम बात करते हैं, तो महिलाओं के लिए जो यूपी पुलिस है उसने काफी काम किए हैं, जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो विंग है, महिलाओं के लिए तमाम हेल्पलाइंस उन्होंने लॉन्च करी है, डायल 112, विमेन पावर लाइन 1090, तो इस तरह की हेल्पलाइंस हर स्टेट में है। तो अगर महिला इन हेल्पलाइंस को यूज करती है तो मैं समझता हूं कहीं भी जो क्राइम है उनके अगेंस्ट, वो अगर हो रहा है या नहीं, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति बन रही है, तो ये हेल्पलाइंस कहीं ना कहीं उनके लिए उपयोगी साबित होंगी और जो लीगल लिटरेसी की बात कर रही हैं आप या कानून से रिलेटेड जो भी सवाल आपने पूछा, तो मैं समझता हूं बहुत कम समय में इसका जवाब दे पाना मुश्किल है। तो वो लोग इस हेल्पलाइन से अगर हेल्प लेते हैं तो उनकी जो कानून के प्रति जो जिज्ञासा है या जानकारी वो करना चाहते हैं उनको जरूर मदद मिलेगी।
2: बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी आपने बात बताई।
0: ज्योत्सना जी, जब आपने कानून की बात करी है तो मैं एक मैसेज देना चाहूंगी।
2: जी मैम,
0: हम कानून की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? मैंने सबसे पहले कार्यक्रम में ये बोला है कि हमारा एटीट्यूड, हमारी सोच। एक महिला रात के 10 बजे के बाद सड़क पे अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती है, क्यों? कौन है समुदाय कौन बना रहा है, एक महिला और एक पुरुष? अगर पुरुष की सोच ठीक है तो महिला को डर की बात नहीं है। तो हमें सबसे पहले अपनी सोच बदलनी है। हमने समुदाय में ऐसी सुरक्षा लानी है महिलाओं के लिए कि उनको कानून की जरूरत ही नहीं पड़े। अगर हम कानून के पीछे भागते रहेंगे तो हम कानूनी शिक्षा के बारे में ही जानकारी दे पाएंगे, जो लाइफ स्किल्स हैं, जो हमने वैल्यू सिस्टम की बात करी है, जो कल्चर की बात करी है। मुझे लगता है कि मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड, और जो शिक्षा शुरू होती है वो परिवार से शुरू होती है। और अगर हम अपने बच्चों को ये सिखा दें कि एक लड़की और लड़का समान है, और अगर आपको समाज में इसका कहीं पे ये नजर आता है कि रिलेशनशिप क्या है, अगर उसको संभाल के आगे चलना है, तो उतनी नॉलेज तो पेरेंट्स भी दे सकते हैं।
2: बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छी आपने बात कही, और कुल मिला के बस यही है कि अगर हमें सशक्त होना है तो शिक्षित होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही साथ जरूरी है कि हमारे अंदर मानवीय मूल्यों का संचार हो, हमारे अंदर सभी सद्गुणों का संचार हो। और जैसा कि कहा, माँ पहली पाठशाला होती है बच्चों की, तो बिल्कुल ये एक माँ की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डाले। और सर, जैसा कि हम आज वेमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रहे हैं, तो इसमें इग्नू का क्या रोल है, इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को कुछ
1: जी इस, क्योंकि समय कम बचा है तो मैं बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा। ये जानकारी मैं खास तौर से अपने लर्नर्स को देना चाहूंगा जिन्हें एडमिशन लेना है, जो ऑलरेडी जिन्होंने एडमिशन ले रखा है। जैसा कि डॉक्टर गीता जी ने भी अपने फीडबैक के दौरान, अपने सेशन के दौरान बताया कि सबसे जरूरी है कि महिलाओं को उनके विषय में जो भी कदम उठाए गए हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो विश्वविद्यालय का भी ये प्रयास है कि जो भारत सरकार या राज्य सरकार जो महिलाओं को तमाम सहूलियतें दे रही हैं, तमाम योजनाएं उनके बेटरमेंट के लिए लागू हो रही हैं, उनके विषय में हम लोग बताएं। तो इसके लिए हम लोग तमाम अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उसमें ग्रामीण महिलाओं को सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि वो इग्नू के कार्यक्रमों में जुड़ें। इसके लिए हम लोग कम्युनिटी मीटिंग्स आयोजित करते हैं, और वहां पर हम लोग जो वहां उस समुदाय के जो नॉलेजेबल्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनको आमंत्रित करते हैं, और उनके द्वारा ये मैसेज देने का प्रयास किया जाता है कि शिक्षा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है जिससे जो है सोशल डेवलपमेंट किया जा सकता है, महिलाओं का उत्थान हो सकता है, महिला पुरुष मिलजुल के देश की उन्नति में, देश की प्रोग्रेस में समान रूप से भागीदार हो सकते हैं। तो ये हम लोग बताते हैं। और उसके बाद जो इग्नू द्वारा जो महिलाओं से संबंधित जो कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, जो उनके स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हमारे जो महिलाओं के लिए यूजफुल हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाती है। और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इग्नू फ्री ऑफ कॉस्ट संचालित कर रहा है, उसके विषय में जानकारी दी जाती है। और मैं समझता हूं 50-60% केसेज में लोग कन्विंस होते हैं और एडमिशन लेते हैं। महिलाओं के लिए हम लोगों ने स्पेसिफिक सेंटर्स भी बना रखे हैं जहां पर केवल महिलाएं ही पढ़ाई करती हैं, और उनसे संबंधित कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं जिससे उनका अध्ययन और जो उनके नॉलेज का लेवल है हम लोग उसको बढ़ा सकें। और जो वर्क प्लेस पे महिलाएं काम कर रही हैं, जो हमारी विमेन स्टूडेंट्स हैं, उनको सहूलियत मिले। तो जो भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस इस समय इम्प्लीमेंट कर रखी है, इग्नू उसको पूरा फॉलो करता है, वैसे ही सारे कानून जो है हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अपने क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों का ये प्रयास है कि महिलाओं को हम लोग ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करें, जैसे कि वो शिक्षित हो सकें और सशक्त हो सकें।
2: बिल्कुल सर, आपने आज बहुत ही अच्छी जानकारी दी और मैम हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं आपके कार्यक्रम का बहुत बहुत आई शुड से कि थैंक्स टू यू एंड डॉक्टर कीर्ति की जिन्होंने मुझे बुलाया। और मैं वैसे तो गुड़गांव में रहती हूँ, आज मैं लखनऊ में थी तो एक अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए अपनी बात कहने की। और मुझे लगता है कि जितने भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जो भी मैंने छोटी बात बोली अगर उसका अमल करेंगे तो मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट उनको जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो श्रोताओं, आज जो बात निकलकर सामने आई है वो यही है कि शिक्षा हमारे जीवन में सबसे बड़ा हथियार है। तो अगर आप शिक्षित होते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन सब के साथ, जैसा कि मैम ने बताया, मानवीय गुणों का होना बहुत जरूरी है। तो अपने बच्चों में ये संस्कार आप बचपन से डेवलप करिए कि बच्चे सुबह उठते ही करें सबसे पहले अपने ईश्वर का ध्यान, साथ ही साथ बड़ों का सम्मान करें और अपने बच्चों को एक अच्छा और नेक और सच्चा इंसान बनाएं, तो जीवन में हम सब प्रगति की ओर जरूर अग्रसर होंगे। और इसी के साथ इस प्रोग्राम को यहीं पे वाइंड अप करने की अनुमति दीजिए अपनी दोस्त ज्योत्सना को। लेकिन सुनते रहिए ज्ञानवाणी लखनऊ FM 105.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर, जहां कार्यक्रमों का सिलसिला रहेगा जारी रात्रि 10 बजे तक।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार।
1: ये वतन का राग।
0: किसी झील के ठहरे पानी में जो शांति होती है वो उनकी आंखों में थी। मुस्कुरा कर जागती एक सुबह में जो सादगी होती है वो उनके चेहरे पर थी। दूर तक फैले आसमान में जो धीरज होता है वो उनकी आत्मा में था। उनकी शालीनता अपनों को ही नहीं परायों को भी विमुग्ध कर देती थी। 5 फुट का छोटा सा कद और मात्र 39 किलो का वजन लिए चट्टान सा हौसला रखने वाला ये महान व्यक्तित्व था देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का, जिनके सामने बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी मुश्किल में पड़ जाती थीं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगलसराय में हुआ था। उनके पिता मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। मात्र 18 महीने की अल्पायु में ही उनके सर से पिता का साया उठ गया। मां राम दुलारी बच्चों के साथ अपने पिता के घर मिर्जापुर जा बसी। अपने ननिहाल में रहते हुए बालक लाल बहादुर ने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। कुछ समय के बाद उन्हें वाराणसी में चाचा के साथ रहने के लिए भेज दिया गया ताकि वे उच्च विद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर सकें। वे कई मील की दूरी नंगे पांव तय करके विद्यालय जाते, भीषण गर्मी, बरसात और ठंड में भी। कुछ बड़े होने के साथ ही आजादी के लिए देश में हो रहे संघर्ष में उनकी रुचि बढ़ने लगी। भारत में ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहे भारतीय राजाओं की महात्मा गांधी द्वारा की गई निंदा से वे अत्यंत प्रभावित हुए। शास्त्री जी जब केवल 11 वर्ष के थे तब से ही उन्होंने देश के लिए कुछ करने का मन बना लिया था। वे गांधी जी से केवल प्रभावित ही नहीं थे बल्कि वे उनके आदर्शों का पूरी तरह से अनुसरण भी करते थे। सादा जीवन उच्च विचार उन्हीं आदर्शों में से एक है जो शास्त्री जी के संपूर्ण जीवन में झलकता है। सन 1927 में उनकी शादी ललिता देवी से हुई तो दहेज के नाम पर एक चरखा और हाथ से बुना हुआ कुछ मीटर कपड़ा ही घर आया। खादी से उनका प्रेम आजीवन बना रहा। एक बार घर पर उनकी अलमारी से फटे पुराने कुर्ते निकाल दिए गए। उन्होंने वो कुर्ते वापस मांगे और कहा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये कपड़े काम आ जाएंगे। ऊपर से कोट पहन लूंगा तो ये फटे हैं, ये दिखाई नहीं देगा। उन कुर्तों को सहेजते हुए वो बोले, ये खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बीनने वालों ने, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए।

गांधी जी के विचारों का उन पर बहुत गहरा असर था। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद उन्होंने अपने नाम के साथ चला आ रहा जाति सूचक शब्द हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा लिया। संस्कृत भाषा में स्नातक स्तर की शिक्षा समाप्त करने के बाद वे भारत सेवक संघ से जुड़ गए और देश सेवा का व्रत लेते हुए यहीं से अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत की। स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। 1921 के असहयोग आंदोलन के समय उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी। परिवार के लोग नहीं चाहते थे कि वो उसमें शामिल हों, लेकिन शास्त्री जी अपना मन बना चुके थे और उनके संकल्प चट्टान की तरह दृढ़ हुआ करते थे। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ते हुए जब दांडी यात्रा की तो इस प्रतीकात्मक संदेश ने पूरे देश में एक तरह की क्रांति ला दी। लाल बहादुर शास्त्री भी विह्वल ऊर्जा के साथ इस संघर्ष में शामिल हुए। उन्होंने कई विद्रोही अभियानों का नेतृत्व किया। 1942 के दिन थे। भारत छोड़ो आंदोलन जोरों पर था। देश के बड़े बड़े नेता जेलों में थे। शास्त्री जी आंदोलन को चलाने के उद्देश्य से अज्ञात स्थान पर जा बैठे थे। सरकार शास्त्री जी की गिरफ्तारी करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी, पर शास्त्री जी का कहीं भी पता नहीं लग रहा था। आखिर एक दिन अचानक इलाहाबाद में ये खबर बिजली की तरह फैल गई कि शास्त्री जी चौक की सार्वजनिक सभा में उपस्थित होंगे और आंदोलन की रूपरेखा पर प्रकाश डालेंगे। पुलिस ने चारों ओर से नाकेबंदी कर दी। सरकार का प्रयास था कि वो सभा में उपस्थित होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिए जाएं, पर शास्त्री जी को सभा से पूर्व बंदी बनाना सरल काम नहीं था। शास्त्री जी सभा में पहुंचे और ओजस्वी शब्दों में गांधी जी और नेहरू जी का संदेश सुनाने लगे। कुछ ही क्षण बीते थे कि वे गिरफ्तार कर लिए गए। इनकलाब जिंदाबाद और शास्त्री जी जिंदाबाद के नारों से आकाश गूंज उठा। करो या मरो गांधी जी के इस नारे को शास्त्री जी ने बड़ी चतुराई से मरो नहीं मारो में बदलकर अप्रत्याशित रूप से क्रांति की दावानल को पूरे देश में प्रचंड रूप दे दिया था।

स्वाधीनता संघर्ष के दौरान शास्त्री जी ने कुल 9 वर्ष का समय ब्रिटिश जेलों में गुजारा। इस दौरान लाला लाजपत राय ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जो गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को आर्थिक सहायता देती थी। सोसाइटी की ओर से 50 रूपये प्रति माह शास्त्री जी को भी मिलते थे। एक बार जेल से शास्त्री जी ने पत्र लिखकर पत्नी से पूछा कि 50 रूपये समय से तो मिल रहे हैं ना, और क्या ये पर्याप्त हैं? ललिता शास्त्री का जवाब आया कि घर का खर्च तो 40 रूपये में ही चल जाता है, वो 10 रूपये बचा लेती हैं। शास्त्री जी ने तुरंत सोसाइटी को पत्र लिखकर कहा कि उनकी आर्थिक सहायता घटाकर 40 रूपये कर दी जाए, 10 रूपये किसी और जरूरतमंद को दे दिए जाएं। उच्च आदर्शों से भरा उनका ये आचरण आजीवन बना रहा। शास्त्री जी ने न केवल आजादी के पहले बल्कि आजादी के बाद भी भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया। स्वाधीनता के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस और परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। परिवहन मंत्री रहते हुए उन्होंने पहली बार महिला कंडक्टर्स की नियुक्ति की। पुलिस मंत्री होने के बाद उन्होंने भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछार का प्रयोग प्रारंभ करवाया। 9 जून सन 1964 को उन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो शास्त्री जी का लगभग 18 महीने का कार्यकाल बेहद कठिन किंतु अद्वितीय रहा। पूंजीपति देश पर हावी होना चाहते थे और दुश्मन देश पर आक्रमण करने के फिराक में थे। देश में जब खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ तो अमेरिका ने प्रतिमाह अन्नदान देने की पेशकश की। शास्त्री जी तिलमिला उठे। उन्होंने देश का आवाहन किया कि पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी ज्यादा खाओ और सप्ताह में एक शाम उपवास करो। हमें जीना है तो हम इज्जत से जिएंगे, वरना भूखे मर जाएंगे। और देश उनके साथ खड़ा हो गया। सन 1965 में अचानक पड़ोसी देश ने भारत पर हवाई हमला कर दिया। इस युद्ध में शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। सबका मनोबल बढ़ा और सारा देश एकजुट हो गया। पड़ोसी देश को करारी शिकस्त मिली। देश ने याद किया 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से दिए गए उनके पहले भाषण को, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत सम्मान और गौरव के साथ किसी भी देश से बातचीत द्वारा अपने विवाद हल करने को उद्यत है, लेकिन अगर कोई धमकी या तलवार के बल पर हमें झुकाना चाहेगा तो हम अपनी सारी शक्ति से उसका मुकाबला करेंगे। और ये उन्होंने कर दिखाया। ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर दस्तखत करने के बाद 11 जनवरी सन 1966 की रात में ही उनका असामयिक निधन हो गया। अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने देश की सेवा की। गांधी जी को दिया वचन था, नहीं किया धन का संचय, अपरिग्रह का पालन करके किया विजित मन का संशय, शक्ति और साधन का सम्यक जनहित में करते उपयोग, आजीवन अनिकेत रहे पर सिद्धांतों से न था वियोग। नमन उनके योगदान को, नमन उनके सीधे सादे सरल पर विराट व्यक्तित्व को।

0: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं पीडब्ल्यूडी कॉलोनी बदौली टोला रामपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरी फैमिली 5 मेंबर्स हैं, जिसमें मेरे पापा बैंड का काम करते हैं और वह बैंड में गाना गाते हैं। मेरे से छोटा एक भाई है और एक बहन है जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं और मेरी मम्मी हाउस वाइफ है। एक दिन इंडिया का स्टाफ मेरे गाँव में सर्वे करना आया, जहाँ इन्होंने हमें अलग अलग कोर्सेज के बारे में बताया। यहाँ आकर मैंने अपना कंप्यूटर कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराया और मैंने कंप्यूटर कोर्स की ट्रेनिंग कम्प्लीट करी। यहाँ आकर मुझ में काफी कॉन्फिडेंट भी आया और स्किल भी अच्छी हुई। पहले मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी और अब मैं लोगों से कम्युनिकेट भी कर पाती हूँ। एक दिन इंडिया के स्टाफ ने मुझे जॉब के बारे में बताया और मैंने होलीचार इंटर कॉलेज में जाकर अपना रिज्यूम लगाया और सर्टिफिकेट भी दिया। वहाँ उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था और इंटरव्यू में मैं क्लियरली पास हो गई थी। होलीचार इंटर कॉलेज में अब मैं एज अ कंप्यूटर टीचर जॉब कर रही हूँ। यहाँ मुझे 5,000 रुपये सैलरी मिलती है। मैं अपनी सैलरी से काफी खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रही हूँ और मेरी फैमिली भी मुझसे काफी खुश है। मैं रीड इंडिया को थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि इन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी है और मुझे एक अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी भी दी। रीड इंडिया का स्टाफ और रीड इंडिया को मैं अपनी तरफ से थैंक यू बोलना चाहती हूँ।
2: मेरा नाम आशा नाज है, मैं रामपुर यूपी के एक पटवाई नाम के गांव में रहती हूँ। मेरी उम्र 23 साल है और मैंने 2019 में अपना बीए पूरा किया था और बीए के साथ साथ मैंने स्पीकिंग, एंटिटी, नर्स, लाइब्रेरी और कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी ली है और क्राफ्टिंग एंड ड्राइंग मेरी स्पेशलिटी है। मेरी फैमिली में 5 मेंबर हैं, मेरे पापा, मम्मा, मेरे 2 भाई। मेरे पापा की टायर सेलिंग की दुकान है। मेरे घर में मेरे पापा और मेरे बड़े भाई कमाते हैं, जिसमें मेरा छोटा भाई और मैं पढ़ाई करते हैं। जैसे कि मैं एक पटवाई गाँव से हूँ जहाँ पे पढ़ाई को इतना महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन मेरा था कि मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे अपने ड्रीम्स खुद से पूरे करने हैं, अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स पूरे करने हैं, जिसके लिए मुझे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता जो फैमिली वाले अलाउ नहीं करते थे। फिर 2017 में मुझे पता चला कि हमारे पटवाई में रीड इंडिया नाम से एक सेंटर खुल रहा है जहाँ पे तरह तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं। मैं ओपनिंग में आई, मुझे अच्छा लगा, मैंने वहाँ पे कंप्यूटर और लाइब्रेरी में एडमिशन लिया। मैंने वहाँ पे लाइब्रेरी और कंप्यूटर की ट्रेनिंग ली। उसके साथ साथ मैं वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करती थी। मेरी फैमिली वालों को रीड स्टाफ पे बहुत भरोसा हो गया था। मैं अपना ज्यादातर टाइम सेंटर पर ही बिताया करती थी। फिर मुझे पता चला कि हमारे पटवाई में ही रीड इंडिया की तरफ से एक स्कूल भी खुल रहा है जहां पर टीचर की जरूरत है। फिर मैंने वहां पे इंटरव्यू दिया। वहां पे 15-20 लड़कियों का इंटरव्यू हुआ, जिसमें से थैंकफुली मेरा सिलेक्शन हुआ। वहां से मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला। तो थैंक यू सो मच रीड इंडिया मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज करने के लिए। थैंक यू सो मच।
3: आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम ईशा चौहान है, मेरी उम्र 40 वर्ष है। मैंने एमए बीएड किया है, मैं रामपुर ज्वाला नगर में रहती हूँ। मैंने बहुत सारे पर्सनल कोर्स किए हैं, जैसे कंप्यूटर, सिलाई, पार्लर, कम्युनिटी एलिमेंट्री का कोर्स किया है और कुछ मेरी हॉबीज भी हैं, जैसे बुक रीडिंग करना, डांस करना, क्राफ्टिंग। मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, मेरे हस्बैंड, 2 बेटे। मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जो अब रिटायर्ड हैं और मेरे हस्बैंड एक छोटी सी प्राइवेट जॉब करते हैं, टीचर हैं, जो कोरोना की वजह से उनकी जॉब छूट गई, तो मैं ही एकमात्र महिला हूँ अपनी महिला

परिवार में कमाने के लिए, और मेरे फैमिली की कमिट कंडीशन काफी बेटर नहीं है, और सब कुछ मेरी जॉब पे ही टिका हुआ है। जैसे मुझे पढ़ने का शौक था, मुझे पता चला कि आकापुर में एक लाइब्रेरी है, तो वहां मैं पढ़ने के लिए जाती थी, जैसे हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर और सारे सब्जेक्ट वहां से पढ़ती थी, अपनी स्टडी जारी रखती थी। तो वहां के स्टाफ ने मुझे बताया कि स्कूल ओपन हो रहा है, वहां पर रिक्वायरमेंट है टीचर की, मैंने अपना रिज्यूम लगाया, मेरा सिलेक्शन हो गया और वहां से मेरी लाइफ स्टार्ट होती है। मैंने वहां जाकर काफी सारे कोर्स करे, जैसे सिलाई, कंप्यूटर, पार्लर, कम्युनिटी एलिमेंट्री का कोर्स किया। मोस्टली एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स करने के बाद मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, मैं कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, मेंटेलिटी कैसी होती है बच्चों की, पेरेंट्स को कैसे डील किया जाता है, एक्टिविटी द्वारा बच्चों को कैसे डील करते हैं, पढ़ाते पढ़ाते उन बच्चों को कैसे खेल के द्वारा पढ़ाएं, शौक उनके कैसे, उनकी मेंटेलिटी को समझें, उनकी उनकी बातों को समझें, ये सब मैंने एलिमेंट्री एजुकेशन से सीखा है। और मेरे अब आगे ये लक्ष्य है कि मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनूं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूं, और इसके लिए मुझे रीड वाले भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू रीड इंडिया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।
1: हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन के अंदर। और आज का जो सेशन हमारा है वो बेसिकली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है। प्राइमली जो हम फोकस करेंगे कि जो बच्चे 10th के बाद में मेडिकल साइंस एज एन ऑप्शन लेते हैं तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं 12th के बाद।

ठीक है, वो या तो कोनेविटे जो डॉक्टर्स हैं एक टाइप से, जो मेडिकल प्रोफेशंस के लोग हैं, या फिर आपके जो बनिए हैं, बनिए मतलब कि जिसको हम कह सकते हैं कि जिनकी शॉप्स हैं एक टाइप से, तो उनका काम चल रहा है। बाकी तो देखो सभी के लिए किसी ना किसी टाइप से चैलेंज है। तो जो मेडिकल प्रोफेशन है एक बहुत नोबल प्रोफेशन है, क्योंकि यही एक ऐसा प्रोफेशन है जो एक तरह से नेक्स्ट टू गॉड है, कि भगवान के बाद अगर और कोई है तो हमारे लिए कौन होता है, डॉक्टर होता है, क्योंकि उसी का वही एक ऐसा है जो हमारी जान को बचा सकता है। तो ये एक चैलेंजिंग प्रोफेशन होता है, और बच्चे अगर मेहनत करें और उनका ठीक ठाक कोर्स में एडमिशन हो जाए तो बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं, राइट। अब देखिए, सबसे पहली बात जो मैं आपसे शेयर करूंगा कि ये मैंने लास्ट टाइम भी ये पीपीटी शेयर किया था, इस टाइप का एक इंट्रोडक्शन रिमार्क मैंने दिया था कि जनरली हमारे मन में ये होता है कि जो बच्चे मेडिकल या नॉन मेडिकल स्ट्रीम को ऑप्ट करते हैं तो वो किताबों में खोए रहते हैं, ठीक है। वो किताबों में खोना इसलिए पड़ता है कि अगर आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है, जिसमें पीएमटी है, आपका नीट का एग्जाम है, या इसके अलावा और भी कोई एंट्रेंस एग्जाम अगर आपको क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए आपको काफी मेहनत करनी रहती है, ठीक है, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। तो इसलिए जनरली माइंड में भी हमारे एक अप्रोच होती है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कि जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, 12th में पहली चीज तो क्या है कि जब आप मेडिकल साइड लेते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मतलब तीन सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं प्राइमरी। मेडिकल और नॉन मेडिकल में फर्क इतना ही है कि नॉन मेडिकल में आप मैथमेटिक्स एज ए मेन सब्जेक्ट आपका होता है, और वही अगर आप मेडिकल की बात करेंगे तो आपको बायोलॉजी पढ़ना रहता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपको लेना है, +1 +2 में आप पढ़ते हैं। मेडिकल साइड लेने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि 12th के बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो मेडिकल स्ट्रीम पर बेस्ड है, ठीक है, उन सब में जो एंट्रेंस एग्जाम है वो ऑलमोस्ट वही का वही है जो आप +1 +2 में पढ़ते हैं। मतलब आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एमबीए, होटल मैनेजमेंट, लॉ का एग्जाम देंगे तो आपको कोर्स के अलग चीजें पढ़नी पड़ेंगी, बट आप अगर नीट का एग्जाम देते हैं तो जो आपने +1 +2 में एज ए सब्जेक्ट आपने स्टडी किया है वही चीज आपको पढ़नी रहती है, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हमारा टारगेट है। आप देखेंगे ये बीच में एक इमेज के अंदर दिखा हुआ है, ऑप्शंस आफ्टर क्लास 12, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। पहले आपको मैं एक जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर हम इन डिटेल बात करेंगे एक एक बात के ऊपर। सबसे पहला जो मेडिकल साइड का, जो एक तरह से जो बच्चा मेडिकल साइड लेता है, तो एक सबसे ऊपर उसके मन में क्या होती है कि उसे एमबीबीएस करनी है, उसे मतलब डॉक्टर बनना है। सबसे पहली चीज जो है, कोई बच्चा जो मेडिकल साइड लेता है तो पहला एम, पहला लक्ष्य, पहला उद्देश्य उसका यही होता है कि उसे डॉक्टर बनना है, ठीक है। और डॉक्टर्स में भी सबसे टॉप पे एमबीबीएस आता है, जिसे आप देखते हैं किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके नाम के पीछे डिग्रीज लिखी होती है, एमबीबीएस है, एमएस है, एमडी है। तो एमबीबीएस एक तरह की बैचलर डिग्री होती है, ठीक है, आपकी सर्जरी एंड मेडिसिन के अंदर, राइट। और एमबीबीएस एक आपकी जनरल डिग्री है, उसके बाद फिर आप स्पेशलाइजेशन करते हैं, और स्पेशलाइजेशन में आप एमडी करते हैं आगे। फिर ये डिवाइड होता है कि आप किस चीज के डॉक्टर हैं, ठीक है। ऐसे ही जिन बच्चों का एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो पाता तो वो बीएमएस करते हैं, ये आयुर्वेदिक एंड मेडिसिन सर्जरी होती है, बीएमएस जिसका नाम होता है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी। तो बीएमएस जो डॉक्टर होते हैं वो बेसिकली आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, राइट। और उनका भी काम ऑलमोस्ट एमबीबीएस के इक्विवेलेंट होता है, बट कुछ एंगल्स पे हम कह सकते हैं कि एमबीबीएस ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, क्योंकि एमबीबीएस में पर्सन को सर्जरी करने का एक तरह से उसके पास में पे वो स्पेशलाइजेशन करता है। सिमिलरली होम्योपैथी के डॉक्टर भी होते हैं जिसको हम बीएचएमएस कहते हैं, दैट इज होम्योपैथिक एंड द मेडिसिन। यू हैव द बीडीएस भी होते हैं, आपके जो डेंटल साइंस से डॉक्टर होते हैं, जो आपके दांतों के डॉक्टर होते हैं, या बीएनवाईएस भी होते हैं, नेचुरोपैथी और योगिक साइंस। आप देखेंगे आज के टाइम में का ये एक्यूप्रेशर, फिजियो काफी ज्यादा स्कोप है। तो ये एक आपके पास में ऑप्शन होता है मेडिकल साइंस के अंदर, अगर आप मेडिकल साइंस में रहना चाहते हैं। और इन सब के लिए एक कॉमन एग्जाम है, आपको नीट का एग्जाम देना होगी। देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि 12th के बाद जो बच्चे अपने इन एक तरह से इन चीजों में करियर मेक करना चाह रहे हैं तो उनको नीट का एग्जाम देना। अभी मैं नीट के एग्जाम पे भी आता हूँ। सेकेंड होता है बेटे एलाइड।

0: मेडिकल सर्विसेज, अलाइड मेडिकल मतलब जिसको हम पैरामेडिकल भी कह देते हैं, इसमें बीएससी नर्सिंग टॉप पे रहता है। आप मानेंगे कि बीएससी नर्सिंग का इतना ज्यादा स्कोप है कि अगर किसी भी, वैसे तो आजकल पहले क्या होता था कि बीएससी नर्सिंग जो होती थी वो गर्ल्स के लिए होती थी, ठीक है, बट आज के समय में बीएससी नर्सिंग जो है उसमें बॉयज भी आ सकते हैं, मतलब बॉयज के लिए भी ओपन होती है। तो जिस बच्चे ने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है तो आप ये मान के चलिएगा 100% उसकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी लगेगी। उसके पीछे रीजन क्या है, आप देखिए, एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास अगर कोई डिपार्टमेंट में है तो कम से कम 10-12 नर्सेज उस डिपार्टमेंट में होती है, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया हुआ है तो आपके पास में बहुत अच्छा स्कोप है गवर्नमेंट जॉब लेने का। इसके साथ साथ आप बीएससी रेडियोलॉजी और मतलब काफी स्ट्रीम्स हैं जो आप एक तरह से पैरामेडिकल सर्विसेज में उसे हम कहते हैं, या फिर आप फार्मेसी कर सकते हैं, बी फार्मेसी, फार्मेसी डी फार्मेसी होती है, तो मतलब एक काफी ज्यादा स्कोप है अगर बच्चा मेडिकल साइंस में अपना करियर बनाना चाहे तो। देखिए एक चार्ट है, इसमें आप देखेंगे सबसे टॉप पे एमबीबीएस है, फिर आपका बीडीएस है, उसके बाद आपका बीपीटी है, फिजियोथेरेपी, बीएचएमएस है, होम्योपैथी। पहले तो आपको नाम भी, उसके मतलब भी पता होने चाहिए। आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, उसके बाहर नेम प्लेट लगा हुआ है रवि कुमार बीएचएमएस, तो आपको जैसे ही बीएचएमएस आपने पढ़ा तो आपको पता है भी ये होम्योपैथी का डॉक्टर है, ठीक है। उसके नाम के नीचे अगर आपका लिखा हुआ है बीएमएस लिखा हुआ है तो आपको पता है कि वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हर बच्चे को नॉलेज होनी भी चाहिए। जितना आपको नॉलेज होता है उतने ही आप अपना एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो ये एक सारे तरह से अलग अलग कोर्सेज हैं जो बच्चे के पास में 12th के बाद ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, राइट। तो ये मैंने आपको एक स्टार्टिंग में एक टाइप का ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताया है कि जो मेडिकल साइंस में क्या क्या चीजें अवेलेबल है। हम एक एक करके इन डिटेल बात करते हैं इन सब के ऊपर, और भी क्या क्या करियर्स हैं, क्या क्या स्कोप है 12th के बाद में, वो हम सारा डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। देखिए बेटे, ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो, अगर आपको मेडिकल साइंस में करियर बनाना है तो आज के समय में आपको नीट का एग्जाम देना है। मतलब नीट का एग्जाम होता है एट प्रेजेंट, जो एग्जाम का नाम है, हो सकता है जब आप एंट्रेंस एग्जाम दो तो उस टाइम पर नया पैटर्न हो, पर आज के टाइम पे जो है वो नीट का एग्जाम होता है। 3 आवर का आपका एग्जाम होता है, 3 घंटे का आपका पेपर होता है और 180 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। और नीट के एग्जाम में 3 सब्जेक्ट आपके आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है, जो भी आपने +1 +2 में पढ़ा है, सारी चीजें उससे रिलेटेड है, ठीक है। 720 मार्क्स का पेपर होता है, 180 क्वेश्चन आते हैं आपको। अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन लेना है तो भी नीट का एग्जाम आपको देना कंपलसरी है। तो एक चीज आप मान सकते हैं कि अगर आपको मेडिकल प्रोफेशन में अपना करियर बनाना है तो नीट का एग्जाम देना आपके लिए मस्ट है, ठीक है। अब 180 मार्क्स का जो पेपर आता है वो कैसे डिवाइडेड है, उसके बेटे 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट फिजिक्स का है 45 मार्क्स का, सेकेंड पार्ट केमिस्ट्री का है 45 आपके क्वेश्चंस आते हैं, और थर्ड होता है बायोलॉजी 90 क्वेश्चंस। मतलब बायोलॉजी का जो फोकस है वो नीट के एग्जाम में ज्यादा रहता है, ठीक है। एक चीज और मैं बीच में ऐड कर दूं कि बहुत बच्चे बेटे आप में से ऐसे होते हैं कि जो मान लीजिए मेडिकल साइंस से नहीं है, मेडिकल साइड से नहीं है, फिर भी उन्हें अलग अलग करियर्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। रीजन क्या उसके पीछे, अगर आप अपने टाइम में इन चीजों की प्रिपरेशन नहीं कर पाए तो कम से कम आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके आस पड़ोस में आपके रिलेटिव्स हैं, तो आपको आप किसी को एडवाइस कर पाएंगे। तो तभी मैं बार बार हमेशा कहता हूँ हर सेशन के अंदर कि आपको हर चीजों के बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है कि हम नहीं कर पाए, बट हमारे आने वाली जनरेशन जो है, आपके नोन के बच्चे हैं, उनको आप एक्सप्लेन कर पाते हैं अभी नहीं बेटे ऐसे तैयारी करनी है, स्कोप काफी है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सभी अपना इंटरेस्ट लेके समझे। तो 180 मार्क्स का पेपर रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जो +1 +2 में आपने पढ़ा है वहीं से आपका आना है सारा का सारा। थोड़ा एडिशनल प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, मार्केट में कई सारी बुक्स अवेलेबल है, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। तो मतलब आप नीट की अगर आप एक टारगेट करें तो और ये हार्ड वर्किंग काम है, ट्वेल्थ के मार्क्स की कोई वेटेज नहीं है। ट्वेल्थ में आपके कितने भी परसेंट मार्क्स हो, चाहे कम भी है, तो अगर आपका नीट का एग्जाम क्वालिफाई है तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन कंफर्म है, ठीक है। तो ये एक टारगेटेड एग्जाम है। और जितने भी मेडिकल साइंस के कोर्स हैं, चाहे आपको मैंने BHMS बताया, चाहे आपको मैंने MBBS बताया, चाहे आपको मैंने BMS बताया, तो सभी नीट से ही आपका एडमिशन लेंगे, सभी के सभी नीट से ही एडमिशन लेंगे। और जैसे BSc नर्सिंग है, ये सभी नीट के थ्रू एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो ये बेटे आपने टारगेट करना है, अगर आप आगे फ्यूचर में मेडिकल साइंस के प्रोफेशन में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और +1 +2 में आपके पास में मेडिकल साइड अगर है तो। अब जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में आपको मैंने जो मेडिकल प्रोफेशन के बारे में बताया, जिसमें आपको मैंने BMS BHMS बताया, ऐसे ही काफी लोग ऐसे हैं जो फार्मेसी में जाना चाहते हैं, फार्मेसिस्ट बनते हैं। आपके पास बी फार्मेसी का कोर्स होता है, जिसको हम बी फार्मा कहते हैं, 4 ईयर का कोर्स रहता है आपका, ठीक है। और बी फार्मा करने के बाद भी आपके पास में काफी स्कोप है, मैं आपको थोड़ा स्कोप। सबसे पहला क्या है कि बेटे फार्मेसी करने के बाद आप अपनी फार्मेसी की शॉप ओपन कर सकते हैं, लो इन्वेस्टमेंट में काम स्टार्ट हो जाता है। और आप देखेंगे आज के टाइम में फार्मेसी का स्कोप बहुत ज्यादा है। आप किसी भी केमिस्ट की शॉप पे चले जाइए तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे दवाइयां फ्री में मिल रही हैं, इतनी भीड़ रहती है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ द हैबिट्स, फूड हैबिट्स कह लीजिए या हमारा वर्क कल्चर कह लीजिए, कि उसमें हम अपनी हेल्थ पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। और हेल्थ पे ज्यादा ध्यान
1: नहीं, पता सिखाने का मन कर रहा है पर
0: क्या
1: अरे ब्रदर आज मेरे
0: हाँ जी, तो अगर हम हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर उसमें आपको मतलब आपको पैसा स्पेंड करना पड़ेगा हेल्थ के ऊपर। तो फार्मेसी जो है वो एक बहुत आसान जरिया होता है भी, आप उसके बाद अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं, आप एज ए MR का काम कर सकते हैं, जिसको हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। अगर आप आगे फ्यूचर में और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना चाहें, एम फार्मा करना चाहें, तो आप एम फार्मा भी कर सकते हैं। और एम फार्मा करने के बाद टीचिंग में, रिसर्च में, मतलब एक बहुत अच्छा स्कोप है फार्मेसी का। ऑल्दो MBBS के मुकाबले फार्मेसी की जो डिग्री को अगर हम MBBS से कंपेयर करें तो लो माना जाता है, बट अपने आप में फार्मेसी का स्कोप है। देखिए जितनी भी दवाइयां बनती हैं वो सब फार्मेसी वाले ही बनाते हैं, मतलब MBBS जो है ना, जो डॉक्टर है वो तो उसे प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। जो एक्चुअल में जो मेडिसिन बनाई जाती है वो फार्मेसिस्ट ही बनाता है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा स्कोप है। और आप इसको फ्यूचर में अगर जो बच्चे मतलब एक तरह से फार्मेसी में जाना चाहें तो बी फार्मा उन्हें करना रहता है। और दुनिया भर के कॉलेजेस हैं, आप मानेंगे फार्मेसी के इंडिया में काफी कॉलेजेस हैं, हर स्टेट में कॉलेजेस हैं, ठीक है। उसमें कुछ कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं या गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, और गवर्नमेंट कॉलेजेस में फीस काफी कम रहती है, तो बहुत ही कम पैसा स्पेंड किया आप अपना। एक बार मेन थिंग इज दैट कि आप अपनी नीट की प्रिपरेशन करेंगे, और नीट की प्रिपरेशन में जो लो स्कोरर्स होते हैं, जिनका एक तरह से MBBS या BDS में नहीं हो पाता है, तो फिर वो फार्मेसी की तरफ जाते हैं। ऐसे ही फिजियोथेरेपी एक आप ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम का प्रोफेशन है। आज भी जो फिजियो है, आज भी फिजियोथेरेपिस्ट की इनकम काफी ज्यादा होने स्टार्ट हो गई है। तो जैसे फिजियोथेरेपी है तो फिजियोथेरेपी में भी करियर अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है, आप अपना काम कर सकते हैं। हम ऐसे ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट को आप देखिए, अगर आप इफ यू स्टे इन दिल्ली और इन एनी प्लेस, तो वहां पर फिजियोथेरेपिस्ट मतलब एक सिटिंग के ही 1000 रुपए चार्ज कर लेता है, मतलब एक आधे घंटे के 500 से 1000 रुपए चार्ज कर लेता है। और फिजियोथेरेपिस्ट में अपना काम करना बहुत आसान है, वैकेंसीज काफी निकलती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं। और फिजियोथेरेपिस्ट में क्या करना रहता है, आपको BPT करना होता है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ठीक है। ये आपका 4.5 साल का कोर्स होता है, 4 ईयर आपका डिग्री है, और उसके बाद में 6 मंथ का आपका इंटर्नशिप होता है, ठीक है। फिर आप अलग अलग स्ट्रीम के फिजियोथेरेपी में स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं आगे, उसके अंदर अगर आप मास्टर डिग्री करें तो स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं, मतलब हाँ एक्चुअली क्या है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट में फी स्ट्रक्चर जो तो गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना, उनमें तो फीस बहुत ही नॉमिनल है, उनमें तो स्टाइफंड तक मिलते हैं, मतलब जो आपके जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें फीस काफी कम है। बाकी प्राइवेट कॉलेजेस में पर एनम फीस होती है 50,000-60,000 के आसपास एनुअल फीस रहती है, बट देखिए क्या रहता है कि प्राइवेट कॉलेजेस भी काफी हैं, बाकी इसके अंदर आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस भी होते हैं, तो एडवाइस यही किया जाता है कि अगर आप ऐसा कोई कोर्स करें तो गवर्नमेंट कॉलेज से करें ताकि आपको ज्यादा पैसा स्पेंड ना करना पड़े, राइट। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्कोप है फिजियोथेरेपी का, जिसको आप एज ए करियर बना सकते हैं। बीएससी फाइनल के बाद आपके डिप्लोमाज होते हैं। देखिए सर क्या रहता है कि आपके दो तरह के कोर्सेज होते हैं, जैसे जो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है वो तो एक तरह से 4 साल का आपका फिजियोथेरेपी का ही कोर्स है। इसमें क्या रहता है कि जो लोग 12th के बाद नहीं कर पाते वो बीएससी कर लेते हैं, तो बीएससी कर डिप्लोमेज होते हैं आपके, 2 ईयर का है डिप्लोमा, आपने 2 साल का फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा किया और उसके बाद फिर आपने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, तो वो भी ऐसे ऑप्शंस हैं, अवेलेबल हैं, दैट इज ऑल्सो इन द मार्केट। तो मैं अभी आगे स्लाइड्स के अंदर हम पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करेंगे तो उसमें कई सारे मैं बताऊंगा आपको ये डिप्लोमाज होते हैं जो आप 12th के बाद में या बीएससी के बाद में कर सकते हैं और उसके अंदर भी बहुत इजीली अपना करियर बनाया जा सकता है। इसके बाद जो बच्चे एक तरह से साइंस लेते हैं, मेडिकल साइंस लेते हैं, तो उनके पास में हाँ ये भी है, बीएससी के बाद में लेटरल एंट्री मिलता है बिल्कुल, अगर आप उसके अंदर बीपीटी करना चाहें तो आपको मतलब 1 साल का एडवांटेज हो जाता है। बिल्कुल अकबर जी बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, तो ऐसी आपके पास एक बहुत अच्छा स्कोप होता है वेटरनरी साइंस का, जिसको हम बीवीएससी कहते हैं, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, ठीक है। लास्ट ईयर तक तो इसका एग्जाम होता था, ऑल इंडिया प्री वेटरनरी टेस्ट होता है, AIPVT। ये बेसिकली जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, ठीक है, आप देखें इंडिया में जानवरों के डॉक्टरों का भी काफी स्कोप है। रूरल एरियाज की बात करें जिसमें गाय भैंस के डॉक्टर होते हैं, ठीक है, या अगर आप बहुत बड़े बड़े शहरों की बात कर रहे हैं तो डॉग्स हैं, कैट्स हैं, तो उनके डॉक्टर्स होते हैं, तो उसके लिए AIPVT का एग्जाम था लास्ट ईयर तक। इस बार तो नीट का ही एग्जाम लिया है क्योंकि बिकॉज ऑफ कोरोना, तो एक ही एग्जाम कर लिया। तो ये वेटरनरी साइंस होती है आपकी, ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि एक काउंसिल है, वेटरनरी काउंसिल है, उसमें आपका बीवीएससी होता है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, जिसमें जानवरों से रिलेटेड आपको जैसे आप MBBS करते हैं तो वो ह्यूमन से आपका डील करता है, तो वही आपका जो बीवीएससी है वो डील करता है एनिमल से। और काफी कॉलेजेस हैं इसके इंडिया में, असम में है, जोरहाट में है, बॉम्बे में है, ऐसे हिसार में भी आपके आसपास में, तो नंबर ऑफ कॉलेजेस आर देयर। जब आप कोई बच्चा एक स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड हो बीवीएससी के अंदर तो वो थोड़ा एक्सप्लोर करेगा तो उसे इंडिया लेवल पे काफी इंस्टीट्यूट मिलेंगे जो वेटरनरी के अंदर टीच करते हैं। और इसके अंदर भी गवर्नमेंट जॉब का काफी ज्यादा स्कोप है। रीजन क्या है कि रूरल एरियाज में एनिमल हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, आप देखेंगे हर गांव में एनिमल का हॉस्पिटल होता है, तो एनिमल का हॉस्पिटल है तो वहां पे डॉक्टर भी चाहिए, राइट। तो जो इसमें डॉक्टर होते हैं वो आपके बीवीएससी होते हैं, तो इस फील्ड में गवर्नमेंट जॉब का भी काफी स्कोप है। अगर आपने बीवीएससी किया हुआ है तो बहुत इजीली आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाता है, तो आपके इंटरेस्ट की बात है, तो ये भी एक स्कोप रहता है। अगर आप साइंस साइड आप ले रहे हैं तो आप वेटरनरी के अंदर भी अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके ये एक कोर्स स्ट्रक्चर है बीवीएससी का, जिसमें बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस कहते हैं। इसकी जो कोर्स फीस है, देखिए जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहां तो 5-10 हजार रुपए एनुअल फीस है, अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो 1 लाख तक फीस है उसके अंदर 1 साल का, और 5.5 साल का कोर्स है, और उसमें फिर आपकी जो सैलरी है अच्छी सैलरी मिल जाती है। मतलब ये मतलब एक टाइप से यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब ज्यादा रहती है, तो गवर्नमेंट जॉब में आप एज ए डॉक्टर ज्वाइन करते हैं तो जो एक तरह से डॉक्टर का स्केल रहता है तो वो स्केल रहता है, तो स्टार्टिंग में 5-1 लाख के आसपास आपका एनुअल सैलरी रहता है, पर धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होता जाता है। तो ये भी आप देख सकते हैं एज ए करियर, वेटरनरी साइंस को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। फिर बीएससी एग्रीकल्चर, ये भी एक ऑप्शन रहता है कि जिन बच्चों ने 12th में मेडिकल साइड लिया है, ठीक है, उनका अगर इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द एमबीबीएस और वेटरनरी साइंस तो वो बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इंडिया में कई सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स ऑफर करती हैं, जैसे आप हरियाणा में देखें तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार है, आप दिल्ली में देखें तो IARI है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं वहां पे आपकी पंत नगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, लुधियाना पंजाब से बिलोंग करते हैं तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो मतलब ऑलमोस्ट हर स्टेट में एक या एक से ज्यादा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, तो वो बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स ऑफर करती है, ठीक है। और बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स में भी अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हैं तो उसके बाद भी आप अपने कई सारे मतलब एक तरह से अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है, आप एक्सपोर्ट बिजनेस में जा सकते हैं, नर्सरी के बिजनेस में काम कर सकते हैं, एग्री क्लिनिक्स होती हैं, अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास में लैंड अवेलेबल है तो आप उसमें एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आज के टाइम में तो वैसे भी अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर, क्योंकि देखो जो फार्मर की जहां तक बात है ना, हमारे फार्मर जो हैं वो मतलब एक तरह से एजुकेशन कम है उनके अंदर, तो वो न्यू टेक्नोलॉजीज को न्यू चीजों के बारे में इतना अवेयर नहीं हो पाते, तो वो एक तरह से जो स्टैंडर्ड चीजें चल रही हैं उन्हीं पे ही काम करते रहते हैं, ठीक है। तो बीएससी एग्रीकल्चर अगर आप कर लेते हैं तो आपके पेरेंट्स अगर एग्रीकल्चर में है, खेती करते हैं, तो आप बहुत हद तक उन्हें एक तरह से एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें रहती है बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में। इसके साथ साथ काफी गवर्नमेंट जॉब्स भी निकलती है, आप देखेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की जॉब होती है, क्लास वन ऑफिसर होता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स होते हैं, आपके असिस्टेंट कंजर्वेटर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज आर देयर जहां पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाती है वो बीएससी एग्रीकल्चर मांगी जाती है, ठीक है। तो मतलब अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है तो इन सब गवर्नमेंट जॉब्स में भी आप जा सकते हैं, और आपको एक सिंपल एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है और उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाता है। और ऐसे ही आप इसमें रिसर्च में जाना चाहें तो मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं, जिसमें आप एमएससी एग्रोनॉमी, एमएससी सोयल साइंसेज, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, पैथोलॉजी, मतलब काफी बड़ा स्ट्रीम है ये। आप किसी एग्रीकल्चर, अगर आपने कभी किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाके देखा हो तो आप देखेंगे इतने अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो आप उसमें यू कैन गो फॉर द मास्टर डिग्री ऑल्सो, आप एमबीए भी कर सकते हैं एग्री बिजनेस के अंदर, ठीक है। आप देखेंगे एग्री बिजनेस का भी स्कोप काफी ज्यादा है, तो मैक्सिमम जितनी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है वो एमबीए इन एग्रीकल्चर भी ऑफर करती है, तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में आप एमबीए भी कर सकते हैं। तो इस तरह से स्कोप इज वेरी वाइड, डिपेंड करता है कि आपका कितना इंटरेस्ट है। बाकी एक चीज मैं फिर आपको यहां पर ऐड करूंगा कि प्लस वन प्लस टू में मेडिकल साइंस लेने का मतलब एमबीबीएस नहीं है, एमबीबीएस कतई नहीं है, एमबीबीएस तो उन बच्चों के लिए है जिनका वो टारगेट है, ठीक है। आप अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस आप और भी कई जगहों पर कई चीजों में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, और इन चीजों का भी अपना पूरा स्कोप है, ठीक है, वो इंटरेस्ट की बात हो जाती है। तो इन तो दैट इज अ वेरी मतलब हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा आपका स्कोप है एग्रीकल्चर का भी, बीएससी एग्रीकल्चर का। फिर कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। अब पैरामेडिकल कोर्सेज, पहले तो हम ये समझें कि पैरामेडिकल कोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं। देखिए आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं तो हॉस्पिटल में एक तो डॉक्टर है जो आपको ट्रीट करता है, फिर उसके साथ में उसकी असिस्टेंस के लिए नर्सिंग स्टाफ होता है, ठीक है। अब उसके बाद में आप देखेंगे और भी हॉस्पिटल में काफी लोग हैं, काफी लोग में क्या क्या है, आप देखेंगे एक फार्मेसिस्ट होता है जो आपको मेडिसिन आपको देता है, अगर आप लैब में जाएंगे आपको टेस्टिंग करवानी है तो लैब टेक्नीशियन आपको मिलेगा, अगर आपका एक्सरे होना है तो एक्सरे असिस्टेंट अलग से होगा, ऑपरेशन अगर आपका होना है तो एनेस्थीसिया जो एक तरह से आदमी को बेहोश करता है वो अलग से होगा। तो इस तरह से मतलब काफी बड़ा पैरामेडिकल स्टाफ होता है किसी भी गवर्नमेंट, एक तरह से किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो ज्यादा आगे टाइम वेट नहीं कर सकते, या जो एक तरह से हम ये कहें कि दे आर नॉट गुड इन स्टडीज, तो उन्हें ये लगता है ठीक है एमबीबीएस करना तो हमारे बस की बात नहीं है, तो चलो हम मेडिकल प्रोफेशन में रहना चाहते हैं, तो आप उनकी बजाय आपने और कोई कोर्स कर लिया। तो उसमें सबसे पहला कोर्स आपका होता है जीएनएम का, जिसको हम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कहते हैं, जीएनएम का कोर्स होता है। आप देखते हैं आपके आसपास में एएनएम और जीएनएम के कोर्स किए जाते हैं, तो ये 3.5 साल का कोर्स होता है ट्वेल्थ के बाद में, ठीक है। तो इसमें आप एडमिशन सकते हैं ले, इसमें काफी प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं एएनएम और जीएनएम के लिए, और काफी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। तो उसमें क्या रहता है कि आपने अगर जीएनएम का कोर्स कर लिया तो गवर्नमेंट वैकेंसीज भी आती हैं, ये ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू स्टाफ नर्स होता है, जैसे आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है ऑलमोस्ट उसके इक्वलेंट ही है, क्योंकि इसके बाद भी आपको नर्सिंग जॉब मिलती है। अगर आपने जीएनएम का कोर्स किया हुआ है तो इसके बाद आपको जो जॉब टाइप मिलेगी वो आपको नर्सिंग टाइप जॉब मिलेगी, ठीक है। तो आप देखिए इतने प्राइवेट हॉस्पिटल्स ओपन होते जा रहे हैं, और आजकल के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो किसी होटल से कम नहीं है, ठीक है। मतलब आप देखेंगे आज ऐसे जो हॉस्पिटल्स ओपन हो चुके हैं कि जैसे आपका मैक्स हॉस्पिटल है, वेदांता है, और ऐसे दुनिया भर के हॉस्पिटल्स हैं जहां पर मतलब एक तरह से इट्स लाइक ए 5-स्टार होटल्स। तो वहां पर काम करने का मजा अपना ही है, चाहे आप मतलब इफ यू आर नॉट MBBS कोई बात नहीं, उससे नीचे भी अगर आप काम कर रहे हैं तो एक वे ऑफ लिविंग है। और आजकल हॉस्पिटल्स काफी ठीक ठाक सैलरी भी पे करते हैं, तो ये एक आपके पास में स्कोप रहता है। ऐसे ही आप एनेस्थीशियन असिस्टेंट का कोर्स कर सकते हैं, 2 मंथ का कोर्स रहता है, बट इसमें स्कोप थोड़ा कम है। मैं यहाँ एक बहुत ज्यादा टाइम लगाऊंगा, ये MPSW का कोर्स होता है। ये बेटे ये आप मान के चलिएगा, ये एक ऐसा कोर्स है MPSW का कोर्स जो है, एक तो वो 10th बेस पे होता है, एक तो उसका जो एडमिशन होता है 10th बेस पे होता है। हर स्टेट के अंदर, किसी भी स्टेट में आप चले जाओ, एक स्टेट हेल्थ इंस्टीट्यूट होता है। जैसे हरियाणा का जो है वो रोहतक में है, ठीक है। यहां पर मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग होती है, जिसको हम MPSW कहते हैं। आप जैसे बेटे गांव से बिलोंग करते होंगे, आप में से काफी बच्चे, तो आप देखते हैं कि गांवों में मलेरिया एक टाइप से जो वर्कर होते हैं, ठीक है, पहले उन्हें मलेरिया वर्कर कहा जाता था, तो वो MPSW होते हैं। अगर आपने MPSW का कोर्स किया हुआ है तो आपकी 100% गवर्नमेंट जॉब लगेगी, क्योंकि इतनी ज्यादा वैकेंसी निकलती है, तो एक साथ वैकेंसी निकलती हैं, ठीक है। जब भी वैकेंसी आती है तो पुराने जिन्होंने कोर्स किया होता है सबकी जॉब लग जाती है। तो MPSW का वर्कर का कोर्स होता है, हेल्थ वर्कर का कोर्स होता है, 18 महीने से 2 साल का कोर्स होता है 10th के बाद में, बट इसमें गवर्नमेंट जॉब लगने का स्कोप ज्यादा रहता है। ऐसे ही आपका FMSW होता है, फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का कोर्स रहता है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे, और 10th बेस पे एडमिशन और मार्क्स बेस्ड एडमिशन है। कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, आपको सिंपल मार्क्स आपके जो 10th में आए हैं उसके बेस पे आपका एडमिशन होगा, बट थोड़ा एक्सप्लोर करने वाली बात है। बहुत बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जिनको इन चीजों का पता ही नहीं है, उन्होंने कभी ट्राई नहीं करके देखा, ठीक है। बट अगर ये है कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी हो और आप थोड़ा एक्सप्लोर भी करो, जैसे आपकी 10th हो गई तो आप थोड़ा पता करिए कि ये इंस्टीट्यूट कहां पर है। हरियाणा का तो मैं आपको सकता हूं बता, हरियाणा का रोहतक में इंस्टीट्यूट है और ये आपका PGI के अंदर ही है, ठीक है। तो यहां पर आपका कोर्स रहता है MPSW का। ऐसे ही आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट का कोर्स होता है। आप देखो बेटे, आप जैसे ही हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो डॉक्टर आपके टेस्ट लिख देता है, भी आपका ब्लड टेस्ट लिख दिया, ये कराओ वो कराओ। तो वो टेस्ट करने वाले कौन लोग हैं? वो टेस्ट करने वाले लेबोरेटरी टेक्नीशियन होते हैं, जिसे हम LT कहते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन। लेबोरेटरी टेक्नीशियन का भी 2 साल का कोर्स रहता है 12th के बेसिस पर, और LT के भी प्राइवेट और गवर्नमेंट काफी आप देखेंगे इंस्टीट्यूट्स हैं। और अगर आपने LT का कोर्स किया हुआ है तो आप अपनी लैब ओपन कर सकते हैं सबसे पहली चीज, या आप किसी लैब में काम कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में आपने किसी लैब में काम किया, किसी भी एक तरह से लेबोरेटरी में आपने वर्क किया, और उसके बाद फिर आप अपना भी एक तरह से ये जो लैब का अपनी लैब ओपन कर सकते हैं, जिसको हम LT कहते हैं, लैब टेक्नीशियन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और लैब टेक्नीशियन का भी देखिए, जितने ज्यादा हॉस्पिटल्स होंगे, जितने ज्यादा डॉक्टर्स होंगे, उतने ही ज्यादा पेशेंट्स आएंगे, ठीक है। उतने ज्यादा पेशेंट्स आएंगे तो उनके उतने ही ज्यादा टेस्ट होंगे। अब जब टेस्ट होंगे तो टेस्ट तो लैब टेक्नीशियन ही करेगा, LT करेगा, तो LT करेगा, तो LT का भी स्कोप काफी ज्यादा है। आप देखेंगे गांवों में जो LT होते हैं, मतलब बहुत लोगों को मैं ऐसा जानता हूं जिन्होंने एक सिंपल LT का कोर्स किया, लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया, और उसके बाद उनको थोड़ा बहुत नॉलेज था, जैसे कि उनका इंटरेस्ट था, तो उन्होंने थोड़ी बहुत मेडिसिन के नाम याद कर लिए, थोड़ा देख लिया अभी बुखार है तो ये दवाई देनी है, ये हो गया तो ऐसे करना है, और कुछ उन्होंने साथ साथ कुछ एक टाइप से जो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड चीजें सीख ली, और उन्होंने गांव में अपनी क्लिनिक ओपन कर रखी है। बढ़िया काम चलता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं, मतलब हर चीज का स्कोप है, वो डिपेंड करता है कि आपने उसमें कितना एक्सप्लोर करेंगे। सिमिलरली एक्स-रे असिस्टेंट की वैकेंसीज होती है, तो उसमें भी कोर्स रहता है आपका, ऑपरेशन थिएटर का भी कोर्स रहता है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का। जैसे आप देखते हैं अभी जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है, तो ऑपरेशन करते समय उसके चारों तरफ काफी लोग होते हैं जो डॉक्टर को इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, या उसके साथ साथ काफी चीजें ऐसी हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो ऑपरेशन करने से पहले जो करनी पड़ती है, तो उसके लिए ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट होता है, जिसको हम OTA स्टाफ कहते हैं। तो ये काफी कोर्सेज हैं, मतलब जो आप डिप्लोमा या एज ए सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। और जिनको करने के बाद में मेडिकल प्रोफेशन में कहीं ना कहीं आप अपना एक प्लेस बना सकते हैं, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिले, चाहे आपको गवर्नमेंट सेक्टर में मिले, बट आप कहीं ना कहीं अपना एक एक अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं बार बार यही कहूंगा आपको कि मेडिकल लेना, क्योंकि बहुत बच्चे मैं देखता हूं प्लस वन प्लस टू में वो दे टेक द मेडिकल साइड, पढ़ने में ज्यादा अच्छे नहीं होते, तो इसका मतलब पढ़ने में अगर ज्यादा अच्छे नहीं है तो एमबीबीएस में तो नहीं हो पाएगा, बहुत क्लियर सी बात है। फिर ऐसा नहीं, फिर वो क्या करते हैं कि उन्होंने जो मेडिकल साइड लिया बिल्कुल छोड़कर फिर वो बीए में एडमिशन ले लेंगे, तो ऐसा नहीं। मतलब आप बीए में एडमिशन लेने की बजाय आप कुछ एक्सप्लोर करके देखो, कुछ और कोर्सेज के बारे में जान के देखो, कि एमबीबीएस नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आप और ऐसा कोर्स कर लीजिए जिसके बाद कुछ ऐसा प्रोफेशनल कोर्स जो मैंने आपको इतनी सारी कोर्सेज के बारे में बताया, तो इसमें से आप कोई भी कोर्स करते हैं तो जिन कोर्सेज में जॉब्स निकलती हैं तो आप कोई ऐसा कोर्स कर लेंगे तो आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाएगी, और दूसरा अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करना चाहें तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। जो बीएमएस मैंने आपको बताया कि आयुर्वेदिक होता है, मैं पहले आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसमें एमडी भी होती है। मतलब देखिए क्या है कि जितने भी आपके जो कोर्सेज हैं, आपने एमबीबीएस किया चाहे आपने बीएचएमएस किया चाहे आपने बीडीएस किया, सभी में मास्टर डिग्री भी होती है। तो मास्टर डिग्री में थोड़ा और स्पेशलाइजेशन होती है, तो वो जो ज्यादा स्पेशलाइजेशन है उसमें आप आगे जा सकते हैं, तो वहां से आपको काफी एडवांटेज होता है। फिर इसके बाद मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं करा, जितने कोर्सेज की हमने बात करी आपने इसमें से कुछ भी नहीं करा, तो फिर आप ट्वेल्थ मेडिकल साइड के बाद में आप बीएससी कर सकते हैं, सिंपल बीएससी जिसको हम जनरल बीएससी कहते हैं, या बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं। बीएससी ऑनर्स स्पेशलाइज हो जाती है, केमिस्ट्री ऑनर्स आपने किया, आपने फिजिक्स ऑनर्स किया, और बीएससी जनरल में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं। और बीएससी करने के बाद अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो आप टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं। मैंने आपको पीछे भी बताया था, हमने एक पूरा अलग से सेशन लिया था कि टीचिंग प्रोफेशन का क्या स्कोप है, कैसे कैसे उसमें आप अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। तो उसमें क्या है कि बीएससी करने के बाद में एटलीस्ट टीजीटी के लिए अप्लाई हो जाते हैं, मतलब आपने बीएससी किया उसके बाद बीएड कर लिया, तो बीएड करने के बाद एट्थ क्लास तक के स्कूल में आप बहुत इजीली पढ़ा सकते हैं, ठीक है, और साइंस पढ़ाया जाता है आपके, आप साइंस पढ़ा सकते हैं। और आप देखिए बीएससी करने के बाद तो आप प्लस वन प्लस टू लेवल तक की साइंस भी इजीली पढ़ा सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो, क्योंकि आप अपनी जो मास्टर डिग्री है वो साथ साथ करते रहिए, बीएससी किया है आपने, एमएससी किया, बीएड किया, वो ठीक है, बट क्या होता है कि जब आपने बीएससी कर ही लिया है तो एटलीस्ट प्राइवेट में इधर उधर आप कोचिंग में पढ़ा सकते हैं, उसके बाद एक टाइप से गवर्नमेंट जॉब का भी स्कोप तो है ही, हमेशा ही रहा है कि मैंने आपको बताया था कि आपने बीएससी किया हो चाहे आपने बीकॉम किया है चाहे बीए किया है, अगर आप एसएससी बैंकिंग में इंटरेस्टेड हैं, एसएससी बैंकिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये एक तरह की आपकी मास्टर डिग्री है, तो मतलब एक तरह से ये आपकी बैचलर जो डिग्री है वो इक्विवेलेंट है। तो आप ऐसा नहीं, बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो बीएससी कर लेते हैं और बीएससी करने के बाद में वो एसएससी बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं और वो एग्जाम्स देते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपके पास में है। एक चीज हो रहा है यहाँ पर कि बीएससी करना मतलब हार्ड वर्किंग काम है, ऐसा नहीं जैसे आप, जैसे आप लोग बीए करते हैं, बीए में आपने बहुत ही लाइट सब्जेक्ट आपने ले लिए, आपने हिस्ट्री ले लिया, सोशियोलॉजी ले लिया, तो वो बहुत लाइट सब्जेक्ट है। बट अगर आप बीएससी करते हैं तो बीएससी इजी नहीं है, आपको उसमें पढ़ना पड़ता है केमिस्ट्री फिजिक्स, एक बहुत काफी मेहनत वाला काम है। पर यह है कि एक बार साइंस में आपकी कमांड हो जाए तो कम से कम ट्वेल्थ लेवल तक के बच्चे को भी अगर आप एज ए कोचिंग भी पढ़ाना स्टार्ट करें तो भी आपकी काफी इनकम है। मतलब स्कोप हर चीज का है, थोड़ा सा इंटरेस्ट और पढ़ने की बात होती है। मैं आपको बताता हूँ, आप किसी भी शहर में हो, हर शहर में आप देखेंगे कि साइंस के काफी टॉप टीचर्स होते हैं, आप उनके अगर क्वालिफिकेशन देखेंगे तो उन्होंने बीएससी या एमएससी किया होता है, ठीक है। बट अगर आप उनके पास पढ़ने वाले बच्चों की लाइन देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि लाखों में इनकम है उस। तो एक तरह से आप किसी भी फील्ड में जाइए, उसको तो अच्छे ढंग से करना, वही आपको एक अच्छे करियर की तरफ लेके जाता है। तो ये कहना हम बहुत बच्चों से सुनते हैं, कई बच्चे आप भी आपस में बात करते होंगे भी बीए बीएससी करना क्या करना, बट ऐसा नहीं है। अच्छे ढंग से की हुई हर चीज, एक अच्छी इंटेंशन से की हुई, हार्ड वर्क से की हुई का हमेशा स्कोप रहता है। मास्टर डिग्री कर सकते हैं, उसके बाद आप जो पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या एक तरह से कॉलेज कैडर के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती हैं, वो मैंने आपको एक अलग से सेशन में पूरा एक्सप्लेन किया है कि आपको उसके बाद नेट का पेपर क्वालिफाई करना रहता है, सीएसआईआर कंडक्ट कराती है, तो दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। तो ये सारे स्कोप आपके पास में है, ठीक है। और अगर आप इसके बाद भी आपको लगे भी कुछ नहीं करना, तो बेटे प्राइवेट स्कूल तो है ही अपना, प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ा ही सकते हैं, बीएससी एमएससी करने के बाद में आपको जॉब लग जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी बीएससी एमएससी के बेसिस पर वैकेंसीज आती हैं, लेबोरेटरीज में आप काम कर सकते हैं। तो ये एक मेडिकल साइंस का एक मोटा मोटा, ये मैंने आपको अलग अलग चीजों के बारे में बताया। तो आप लास्ट में ये जरूर समझ सकते हैं कि बीएससी अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं एसएससी बैंकिंग के थ्रू, तो आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन हो, चाहे बीए आपने किया, चाहे आपने बीएससी किया, चाहे आपने बीकॉम किया, वो सब इक्विवेलेंट है। बट कुछ प्लेसेस पर टीचिंग में साइंस के टीचर की डिमांड हमेशा ज्यादा होती है। रीजन क्या है? क्योंकि साइंस टेक्निकल सब्जेक्ट है, अगर आपकी साइंस में कमांड है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जॉब लग ही जाएगी। मतलब अगर आपको गवर्नमेंट में नहीं मिल पाई तो प्राइवेट सेक्टर में तो आप काम कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये एक मतलब ये सारा स्कोप जो है ये साइंस स्टूडेंट्स के लिए ये स्कोप आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है। अब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बीच में एक दो बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, तो मैंने एक तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे एक्सप्लेन कर दिए आपको। अब हम आपके एक एक करके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, क्योंकि इसमें साइंस फील्ड से रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चंस आपके मिले काफी। तो आई एक्सपेक्ट कि आपके जो दो क्वेश्चंस हैं आप अपने चैट बॉक्स के अंदर या वैसे आप पूछ सकते हैं।
2: सर, फार्मास्यूटिकल्स के गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज में कितने बेनिफिट?
0: देखिए क्या होता है कि हर मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर, हर हॉस्पिटल के अंदर फार्मासिस्ट की वैकेंसीज आती हैं। पहली चीज, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, आप कभी चले जाइए, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट होते हैं, हर पीजीआई में फार्मासिस्ट होते हैं, तो उन सब की वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है। हाँ, ये है कि क्वांटिटी उतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि देखिए एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2 से 3 फार्मासिस्ट होंगे, क्योंकि फार्मासिस्ट का काम क्या है कि अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो उनका काम होता है कि मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे आगे जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है वो जाके फार्मेसी से लेते हैं, तो ये एक जो मेन काम होता है फार्मासिस्ट का। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या पीजीआई में, इन सब में काफी वैकेंसीज निकलती हैं इनकी, पहली चीज। सेकेंडली क्या होता है कि बीए आपने अगर बी फार्मेसी किया हुआ है तो इंडिया में जो ड्रग इंस्टीट्यूट है, मतलब कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो फार्मेसी के इंस्टीट्यूट है, जो ड्रग इंस्टीट्यूट है जहां पर रिसर्च की जाती है या क्लिनिकल रिसर्च की जाती है, तो वहां पर भी फार्मेसी की वैकेंसीज आती है। तो वहां भी आप एज ए फार्मेसिस्ट काम कर सकते हैं, या अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो फिर प्राइवेट सेक्टर में आप अपना एक तरह से यू कैन ओपन योर ओन केमिस्ट शॉप ओपन कर सकते हैं, या एमआर का वर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारा स्कोप रहता है फार्मेसिस्ट। हम मनोज जी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इफ यू वांट टू ओपन ए क्लिनिक इन रूरल एरिया, तो देखिए क्या होता है कि एमबीबीएस के अलावा आप बीएमएस, बीएचएमएस, कोई भी आपने डिग्री किया हुआ है तो आपने क्लिनिक ओपन कर सकते हैं उस चीज से रिलेटेड, ठीक है। जैसे अगर आपने बीएमएस किया हुआ है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक में किया हुआ है, तो भी आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। या उसका एक तरीका क्या रहता है कि मान लीजिए अगर आपने ये चीजें नहीं की हुई है तो फिर आप कोई भी डिप्लोमा कर लीजिए पैरामेडिकल कोर्स करके। देखिए ऑल्दो पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद में क्लिनिक, मतलब एक तरह से आप एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है, एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, पर क्या रहता है कि आपने पैरामेडिकल कोर्स कर लिया और आपको फील्ड की अच्छी नॉलेज है, राइट। तो आपने जैसे मान लीजिए एक्यूप्रेशर और एक टाइप से जो फिजियोथेरेपी में आपने किया हुआ है, तो आपने उसके नाम से क्लिनिक ओपन किया, पर पेशेंट्स तो हर तरह के आएंगे आपके पास में। देखिए क्या होता है ना, जो एमबीबीएस डॉक्टर है वो एंटाइटल्ड है, अपने नाम के नीचे स्पेसिफाई कर सकते हैं ये फील्ड के पेशेंट मेरे पास आएंगे। आपने कोई और कोर्स किया, फिजियोथेरेपी का कोर्स किया, फिजियोथेरेपी की क्लिनिक ओपन करी, और इनडायरेक्टली आप उस वहां पर एज ए क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं, उसी के अंदर ही इनडायरेक्टली आप काम कर सकते हैं। आप देखेंगे बहुत केमिस्ट ऐसे हैं जो जो आपके डॉक्टर का काम है ना वो केमिस्ट्री कर देता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज बेटे आपको पेट में दर्द है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? एक तरीका तो क्या है कि आप पहले एक चाहिए एक, अगर आप किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहले तो आपको 500 रुपए की आपकी पर्ची काटेगा, फिर आपकी बात पूछेगा आपसे, फिर आपको मेडिसिन देगा, ठीक है। और मैं आपको एंश्योर कर रहा हूं, अगर कोई आपको बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है ना, अगर आप किसी केमिस्ट के पास भी चले जाइए और केमिस्ट को बता दीजिए भी मुझे ये प्रॉब्लम है, तो केमिस्ट अपने आप आपको वो मेडिसिन दे देगा। 99% चांसेस में जो मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी है 500 रुपए लेने के बाद में वही मेडिसिन केमिस्ट आपको देगा 99% केसेस के अंदर, ठीक है। तो मतलब वो केमिस्ट क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली डॉक्टर का काम कर रहा है।
3: जैसे A&M करना हो तो प्लस वन या प्लस टू में साइंस जरूरी है या आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं? फिर
0: देखिए क्या रहता है कि A&M और GNM के लिए तो साइंस जरूरी है, मतलब तो साइंस रहेगी आपकी A&M के कोर्स के लिए, तो 12th में साइंस होना चाहिए आपके पास, इसमें मतलब 12th साइंस होना चाहिए इसमें। ओनली MPSW के अंदर साइंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये आपने अगर 10th किया हुआ है, क्योंकि उसमें तो कोई स्ट्रीम नहीं होता है, तो उसमें आप बिना किसी स्ट्रीम के आप कर सकते हैं MPSW। बाकी में काफी कोर्सेज में साइंस की रिक्वायरमेंट होती है आपकी।
3: जैसे सर प्राइवेट कॉलेज में करवाते हैं सर, जो वो होते हैं ना आर्ट्स वाले उनको भी करवाते हैं A&M?
0: जो GNM का कोर्स है ना उसमें तो साइंस चाहिए, A&M में नहीं। देखो इसमें भी दो कोर्सेज आपके, एक आपका GNM है और एक आपका A&M है। A&M में बिना साइंस के भी हो जाता है, बट जो GNM है वहां साइंस चाहिए आपको।
3: जी सर मैं A&M की बात कर रहा था।
0: हाँ जो A&M में हो जाएगा वो हो जाएगा, बट तो ये मतलब क्या है ना कि जैसे जैसे आप इनडेप्थ जाएंगे ना तो अलग अलग आगे इनडेप्थ होते, उसमें अलग अलग डिवीजन होता जाता है। ऐसी जो CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ये देखिए ये जो सारी चीजें है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये प्राइमरी आपकी IT वर्क है। IT मतलब हम ये करें कि जो बैकएंड से आपकी वो रहती है, सपोर्ट रहती है, ठीक है। उसमें तो आपके कोर्सेज होते हैं तो उसमें आप काम कर सकते हैं। उसमें जनरल आपने BA BCOM किया हुआ है, BSc किया हुआ है, आपने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, या आपको एक तरह से IT से रिलेटेड आपकी बैकग्राउंड है, तो ये काफी वैकेंसीज होती हैं। कहना देखिए हमारे इंडिया में क्या है कि दो तरह की जॉब्स हैं प्राइवेट सेक्टर में, एक वो जॉब्स हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है, और सेकंड जॉब्स हैं जो स्पेशलाइज्ड नहीं है। हाँ, जो कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज और एसेंशियल ड्रग स्टैंड फॉर CMS एंड ED कोर्सेज, देखिए क्या रहता है ना, ये सब आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में नंबर ऑफ एरियाज आर देयर जो मेडिकल साइंस से रिलेटेड है। हम तो एक जनरली MBBS या नर्सिंग की बात करते हैं, बट उसके अलावा भी कई तरह की वैकेंसी होती हैं, तो ये भी कोर्सेज होते हैं अलग अलग आपका। जैसे एक टाइप से जो असेंशियल ड्रग का कोर्स है तो उसमें उन्हीं फील्ड्स में जॉब मिल जाता है आपको, बट क्या है कि ना इनके स्कोप ज्यादा नहीं है, स्कोप मतलब की वैकेंसीज कंपेरेटिवली कम होती है, ठीक है, वैकेंसीज कम होती है, तो इसलिए फिर जॉब्स अपॉर्चुनिटी उतनी ज्यादा नहीं हो पाती और उतने फेमस कोर्सेज नहीं होते हैं। ये थोड़ा देखा जाता है, बाकी जॉब्स तो देखिए है ही, आप देखिए हर सेक्टर में अगर कोर्स है तो उसका कुछ ना कुछ स्कोप भी है। एट द एंड हम एक बात कह सकते हैं, अगर भी कोर्स किया ना, चाहे आपने कितना भी, चाहे आपने 6 महीने का या साल का भी किया है तो उसका कहीं ना कहीं स्कोप है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जॉब आपको मिल जाती है। डाइटिशियन का कोर्स आप कर सकते हैं, कोई भी बैकग्राउंड आपका है तो उसके बाद आप कर सकते हैं। तो वहां भी आप देखते हैं जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सभी हॉस्पिटल्स के अंदर डाइटिशियन की वैकेंसीज होती हैं, आप अपना काम भी कर सकते हैं उसके अंदर। तो मतलब हेल्थ का जो फील्ड है दैट इज ऑलवेज द ग्रे एरिया, हमेशा ही जॉब्स हैं इसके अंदर इन द फील्ड ऑफ द हेल्थ। तो थोड़ा सा एक तरह से आगे बढ़ के काम करने वाली बात है, बाकी स्कोप है हेल्थ का हमेशा से। ठीक है, क्या है कि फार्मेसी करने के बाद में ना इंडस्ट्री में क्या रहता है कि थोड़ा सा जैसे आप MR की जॉब करते हैं या कोई भी टाइप की जॉब करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको 15,000 से 20,000 रुपए मिल जाते हैं, बट इसमें धीरे धीरे आपकी इंप्रूवमेंट हो जाती है। मतलब देखो थोड़ा टाइम लगता है, ये फील्ड वो नहीं है कि आपने आज ही आपने अपना फार्मेसी किया और पहले दिन ही आपको 1,00,000 रुपए की जॉब मिल गई, बट ये है कि आप देखेंगे 2-3 सालों के अंदर अंदर आप काफी ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। हाँ, फार्मेसिस्ट आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी ओपन कर सकते हैं। उसमें क्या है, देखिए आपने अगर बी फार्मेसी किया हुआ है उसके बाद एम फार्मा आपने किया हुआ है, देखिए क्या होता है ना कि जो बिजनेस मतलब आपने इंडस्ट्री ओपन करने में, तो आपने अगर बी फार्मेसी भी किया हुआ है तो बी फार्मेसी भी अपना एक तरह से फार्मेसी ओपन कर सकता है, जिसमें वो स्टार्टिंग में जो ड्रग्स मतलब हम ये कहें कि जो मेडिसिन होती है स्मॉल, जो आपकी मेडिसिन है जहाँ इन्वेस्टमेंट कम है वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों ने ऐसा किया हुआ है, बट उसमें भी कंपटीशन है, आपको स्टार्टिंग में यू नीड सम इन्वेस्टमेंट इन दैट, आपको उससे जो एसोसिएटेड जो सॉल्ट परचेज करने रहते हैं, फिर आप अपना काम कर सकते हैं। तो मतलब जो फार्मेसी में कुछ भी करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपकी बी फार्मेसी है। आपने एक बार बी फार्मेसी कर लिया तो आप ऑलमोस्ट फार्मेसी से रिलेटेड हर काम करने के लिए एंटाइटल है। तो टीचिंग का तो स्कोप ऑलमोस्ट हर फील्ड में, जैसे आपने अगर बी फार्मेसी किया है एम फार्मा कर लो तो एम फार्मा करने के बाद में यू कैन बिकम द टीचर। आपने एमबीबीएस किया, आपने एमडी कर लिया तो असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं। तो हर फील्ड में, क्योंकि कोई भी फील्ड है जहां कोर्सेज है तो उन कोर्सेज में पढ़ाने वाले टीचर भी चाहिए होंगे, तो उससे रिलेटेड जिन्होंने हायर क्वालिफिकेशन ली हुई है तो अपना उसमें एज ए करियर दे कैन मेक देयर करियर। देखिए ट्वेल्थ में अगर आर्ट्स आपके पास है और आप मेडिकल साइंस में जाना चाहते हैं ना, तो आप जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। मतलब आप फिजियोथेरेपी हो गया, ठीक है, या इस तरह के जो है उनमें आपको, क्योंकि देखिए जो जनरली जैसे एमबीबीएस बीएमएस बीएचएमएस वो तो सब ट्वेल्थ में आपके मेडिकल साइंस पर उसके बेसिस पर है, ठीक है। आप डाइटिशियन का कोर्स कर सकते हैं, उसमें कोई स्ट्रीम की फाउंडेशन नहीं है, ठीक है। तो मतलब इन कोर्सेज में आप जा सकते हैं, बाकी जो कोर मेडिकल कोर्सेज हैं उसमें तो आपको ट्वेल्थ में मेडिकल साइड होना चाहिए। बट उसके अलावा जैसे लैब टेक्नीशियन का कोर्स है वो आप कर सकते हैं, वहां पर आपको ट्वेल्थ में नहीं है। आप जो मैंने आपको एमपीएसडब्ल्यू के बारे में बताया था, जो हेल्थ वर्कर होते हैं वो कोर्स आप कर सकते हैं, वहां पर आपको प्लस वन प्लस टू में स्ट्रीम का कोई वो नहीं है। तो ये थोड़ा और भी इन डिटेल आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अभी एक तो पहली देखो दो चीजें हैं, एक तो ये कि आपको ये स्पेसिफाई होना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्योंकि जो मेडिकल साइंस जो है वो बहुत वाइड है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप थोड़ा ये देखिए जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं स्पेसिफिकली, फिर उसमें आप थोड़ा एक्सप्लोर करके देखिए, क्योंकि काफी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो उसके उनको करने के बाद में आप अपना उस फील्ड से रिलेटेड काम कर सकते हैं।
4: ठीक है सर, मेरे ख्याल में और कोई क्वेरी नहीं है किसी का।
0: थैंक यू।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महिपाल और मेरे साथ हैं आज आशा।
1: श्रोताओं, मेरा भी आपको प्यार भरा नमस्कार।
0: हम अपने कार्यक्रम से नए जुड़े दोस्तों को भी बता दें कि इस कार्यक्रम में हम खासकर उन विषयों पर बात करते हैं
1: जो हमारे समाज और स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं।
0: तो आशा, आज हम कौन से विषय पर चर्चा करने वाले हैं?
1: महिपाल, हमारे देश में ऐसे कई ऑटिस्टिक बच्चे हैं जिनके सपने भी बहुत हैं, वह रिश्ते भी बनाना चाहते हैं पर बना नहीं पाते। उनका दुनिया को देखने का अपना ही तरीका है।
0: आज हम अपने कार्यक्रम में ऑटिज्म विषय पर ही बात करेंगे।

0: दोस्तों, ऑटिज्म एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें बच्चे अलग ढंग से अपने आप में खोए रहते हैं और चीजों के प्रति उनका अलग तरह का लगाव होता है। कई बार पास बुलाए जाने पर भी वे कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं।
1: साथ ही वे दूसरे बच्चों के साथ मेलजोल और खेलने में कठिनाई महसूस करते हैं। भय, संकट या वास्तविक खतरों की समझ से अनजान होते हैं।
0: आशा, ऑटिज्म की अक्सर मानसिक असंतुलन या बीमारी से तुलना की जाती है, लेकिन ऑटिज्म के लक्षण और इलाज पूरी तरह से अलग होते हैं।
1: दोस्तों, यह लक्षण बचपन में ही दिखने शुरू हो जाते हैं और फिर ये सारी जिंदगी रहते हैं, लेकिन बच्चा देखने में आम बच्चों की तरह ही दिखता है।
0: आशा, कई बार देखा जाता है कि ऑटिस्टिक बच्चे और उनके परिवार वालों को कई सामाजिक मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है।
1: आप बिल्कुल सही कह रहे हो महिपाल। ऑटिस्टिक बच्चों को आम बच्चों से अलग रखा जाता है, चूँकि इन बच्चों के विकास का मापदंड दूसरे बच्चों से अलग होता है और इनकी विकासात्मक असमर्थता के कारण ही इन्हें समाज हीन दृष्टि से देखता है
0: और इस कारण उनके परिवार वाले काफी चिंतित और मायूस हो जाते हैं।
1: ऐसे में ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चे के माता पिता के सामने चुनौतियों की कमी नहीं होती।
0: दोस्तों, ऐसे ही एक माँ से हमने बात करी जिनका नाम है पूनम।
2: मेरे बेटे को बहुत थोड़ा सा है ऑटिज्म, मतलब उसका ऑटिज्म डायग्नोज हुआ है माइल्ड ऑटिज्म, तो इसलिए उसका सिर्फ स्पीच इफेक्ट हुआ है और कुछ एक उसका व्यवहार में जो कुछ अलग है दूसरों से। तो इसके लिए क्या होता है, कई बार जैसे लोग हैं सोचते हैं कि ये बच्चा ऐसे है और ठीक दिख रहा है, लेकिन इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, इस तरह से उसका व्यवहार अलग सा क्यों है, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है उस टाइम पर कि इस बच्चे के साथ एक प्रॉब्लम है। लेकिन और मेरे बच्चे का जो सामाजिक व्यवहार है वो उसको सिखाने में मुझे काफी वक्त लगा उसको।
1: दोस्तों, हमारे साथ शिखा जी भी हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं।
2: मेरे बेटे को जब डायग्नोसिस मिला था वो 4 साल का था, वो स्कूल जाता था, तो वो स्कूल की अगर मैं बात करूं तो मुझे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। टीचर्स की लगातार कंप्लेंट्स आती थी, प्रिंसिपल ने मुझे कई बार बुलाया कि आपका बेटा ये नहीं करता, उसका जॉइंट अटेंशन में प्रॉब्लम है, क्लास में लेट जाता है और दूसरे बच्चों को पुश करता है, इस तरह की दिक्कतें थी। वो उसको समझ नहीं पा रहे थे कि वो इस तरह क्यों करता है। जैसे ही उसका जब डायग्नोसिस मिला मुझे, तो मैंने बिल्कुल भी देर नहीं करी और मैंने खुद को अपने आप को ट्रेन करना शुरू करा और उसको समझने के लिए मैंने काफी बुक्स पढ़नी शुरू करी ऑटिज्म रिलेटेड, और काफी लोगों से मिलके और जो लोग इसके बारे में ज्यादा जानते हैं उनसे बात करना शुरू किया, ट्रेनिंग करना शुरू करा। और उसके बाद मैंने देखा, जब मैंने स्कूल वालों से जाके मिली, उनको बताया, उनको डिस्क्लोज करा कि ये प्रॉब्लम है, इसीलिए मेरे बेटे को ये चीजें फेस करनी पड़ी है, तो फिर मुझे जो पॉजिटिव रिस्पांस मिला स्कूल वालों की तरफ से, वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो इसलिए जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, डायग्नोसिस बहुत जरूरी है और एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। जिस दिन आप अपना बच्चे को जैसा है उसी तरीके से एक्सेप्ट कर पाएंगे, सोसाइटी भी एक्सेप्ट करने में कोई देर नहीं करेगी। जरूरत सिर्फ ये है कि आपको भी कदम बढ़ाना है, और आप कदम बढ़ाएंगे तो सोसाइटी अपने आप रिस्पॉन्स पॉजिटिव देना शुरू करेगी।

0: ऑटिस्टिक बच्चे का अभिभावक होना अपने आप में एक चुनौती है।
1: श्रोताओं, इस बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है शुभांगी वैद्य।
2: मेरा खुद का बच्चा ऑटिस्टिक है और मैंने अपने शोध के दौरान कई ऐसे परिवारों से बात की है जिनके बच्चों को ऑटिज्म डायग्नोज हुआ है, और इन सारे अनुभवों के दौरान मुझे ये बात देखने को मिली है कि ऑटिज्म के बारे में लोगों की जानकारी बहुत सीमित है। हमारे बच्चों के कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो लोगों को बहुत विचित्र टाइप के लगते हैं। मिसाल के तौर पर हाथ फड़फड़ाना, एक जगह पे गोल गोल घूमना, खुद से बातें करना, बिना किसी वजह हंसना या रोना, और इसकी वजह से पेरेंट्स भी काफी हद तक मायूस हो जाते हैं। वो अपने बच्चों को कहीं पब्लिक प्लेसेस में लेके जाना ही पसंद करते हैं क्योंकि उनके अंदर ये एक एहसास होता है कि लोग हमारे बच्चे को देख रहे हैं, हंस रहे हैं, जजमेंट पास कर रहे हैं, उसको पागल के नाम से मतलब आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और ये पेरेंट्स के लिए बहुत अधिक डिप्रेसिंग एक्सपीरियंस होता है। और जब तक पेरेंट्स और बच्चों के साथ रहने वाले लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि जो हमारा बच्चा है वो जैसा भी है वो पहले हमारा बच्चा है, इस एक्सेप्टेंस तक आने में नेचुरली टाइम लगता है। ये कहना बहुत आसान है लेकिन इस बात को अपने डे टू डे लाइफ में इसका अनुकरण करना ये बहुत मुश्किल होता है। एक और बहुत अहम मुद्दा जो ये है कि बच्चे का जो केयर है, बच्चे की परवरिश, और सिर्फ बचपन में नहीं उम्र भर, जीवन भर जो बच्चे का केयर है ये पूरी तरह से परिवार के ऊपर निर्भर है, और परिवार के अलावा और ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जो ऐसे मतलब डिसेबल्ड लोगों की सहायता करता है या उन्हें सपोर्ट देता है। हम लोगों के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, इसका जिम्मा कौन लेगा?

0: आशा, कल मैं एक किताब पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ कैसे समझौता करते हैं। उस किताब में एक माँ ने लिखा है कि साज की अगर एक तार भी टूट जाए तो संगीतकार उसे छोड़ता नहीं, बल्कि उसे और भी सुंदर तरीके से बजाता है।
1: इसी संदर्भ में मुझे एक पिता द्वारा अपने बेटे के लिए लिखी बात याद आ गई है। उन्होंने अपने बेटे पर लिखा है कि बेशक मेरा बेटा कुछ दूसरे बच्चों की तरह नहीं कर पाता, पर वो मुझे पूरी सहानुभूति प्यार देता है और अपनी जिंदगी की परिस्थिति से जूझता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरा बेटा ही मेरा हीरो है।
0: श्रोताओं, ऑटिज्म एक ऐसी आजीवन रहने वाली जटिल विकासात्मक असमर्थता है जिससे आज भारत में लगभग 20 लाख लोग प्रभावित हैं।
1: और महिपाल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑटिज्म लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में 4 गुना ज्यादा पाया जाता है।
0: दोस्तों, इस विषय पर और अधिक बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंदु जैसवाल, जो एक्शन फॉर ऑटिज्म ओपन डोर स्कूल के एजुकेशन डायरेक्टर हैं। इंदु जैसवाल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, इसका क्या उद्देश्य है?
2: ऑटिज्म जो है ये एक काफी कॉमन विकार है, परंतु इसके बारे में सिर्फ इंडिया में ही नहीं, सारे विश्व में देखा जाए तो ज्यादा जानकारी नहीं है। तो इसीलिए हम मनाते हैं वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, लेकिन इसको डे न कह के इसको वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे का नाम दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज के दिन हम ज्यादा से ज्यादा जागरूकता जो है, अवेयरनेस जो है ऑटिज्म की, क्रिएट कर सके, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है। ये एक बहुत कॉमन कंडीशन है, परंतु इसके बारे में नॉलेज बहुत कम है।
0: इंदु जी, क्या ऑटिज्म वंशागत है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है?
2: कई परिवार हैं जिनमें एक से अधिक बच्चे पाए जाते हैं जिनमें ऑटिज्म है, या कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जिनमें कुछ लक्षण ऑटिज्म से मिलते जुलते हो, परंतु आज तक ये सिद्ध नहीं हुआ कि ये पारिवारिक है। बहुत अनुसंधान चल रहा है, रिसर्च बहुत चल रही है, और ये माना जा रहा है कि ऑटिज्म जो है किसी एक कारण से नहीं होता, ये कॉम्बिनेशन होते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और हाँ, शायद उनमें से एक कारण पारिवारिक भी हो सकता है।
0: इंदु जी, माता पिता को कैसे पता लगेगा कि उनके बच्चे को ऑटिज्म है?
2: ये कई बार बहुत कठिन होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो सामान्य बच्चों की तरह लगता है, क्योंकि उसमें कोई, उसको देखने में कुछ अटपटापन दिखता नहीं है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस आम बच्चों की तरह होती है। जब बच्चों की उम्र होती है बात करने की, लोगों से संपर्क बनाने की, रिलेशनशिप्स बनाने की, तब पेरेंट्स नोटिस करते हैं, माता पिता ये देखते हैं कि उनके बच्चों के व्यवहार कुछ अजीब से हैं। जैसे जब उसे नाम से पुकारा जाए तो वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता, माता पिता को ऐसा लगता है कि वो सुन ही नहीं रहा, परंतु वो म्यूजिक तो सुनता है और दूसरी आवाजों के प्रति भी वो संवेदनशील होता है। फिर अपना नाम सुन के वो एक रिएक्शन या एक रिस्पॉन्स क्यों नहीं देता। उसके बाद आंख मिलाकर संपर्क बनाने में, जिसे हम आई कांटेक्ट कहते हैं, उसमें इन बच्चों को दिक्कत आती है। अपनी उम्र के दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने में, उनके साथ खेल में उनको परेशानी होती है, और माता पिता देखते हैं कि 1-1.5 साल का बच्चा हो गया, 2 साल का भी हो गया, खिलौनों से वो नए नए खेल नहीं रचा पा रहा, वो एक बहुत ही, जिसको हम बोलते हैं रूढ़िबद्ध, एक स्टीरियोटाइप्ड मैनर में खेल रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे माता पिता थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं, और इस उम्र तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा बोलने भी लगेगा, और यहाँ पे वो बोल भी नहीं पाता, या बोलता है तो बहुत अटपटे ढंग से बोलता है। तो लगभग 2 साल की एज पे आकर माता पिता थोड़े से अवेयर होते हैं कि शायद बच्चा थोड़ा अलग है।
0: इंदु जी, क्या ऑटिज्म को रोका जा सकता है?
2: ऑटिज्म कोई बीमारी

0: पहली चीज तो ये है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को ऑटिज्म है उसकी उसे मंद बुद्धि भी होगी. हो सकता है कि उसकी जो इंटेलिजेंस है वो उसकी उम्र के और लोगों की तरह हो. जो मुख्य दोनों चीजों में फर्क है वो ये है कि जब किसी को मंद बुद्धि होती है तो उसका जो इंटेलिजेंस होता है, और यहां बोल सकते हैं उसकी जो डेवलपमेंट होती है, उसका विकास हर एरिया में एक ही तरह से अफेक्टेड होगा. आपके पास एक 10 साल का बच्चा है और जिसका मानसिक विकास अभी 4 साल पर चल रहा है, तो उसका सभी कुछ, उसका उठना बैठना, बात करना, अपने शरीर का इस्तेमाल करना, बोलना, उसका सामाजिक व्यवहार, सब कुछ 4 साल के लगभग होगा. परंतु ऑटिज्म में हम कहते हैं एक बहुत ही उतार चढ़ाव वाली डेवलपमेंट होती है. बच्चे के विकास में हम देखते हैं कि कई बार ये देख कि उसकी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उसकी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह ही होती हैं, जैसे कि उसने उठना बैठना चलना सही एज में स्टार्ट किया है और वो अपना शरीर सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है. कुछ उसके कौशल ऐसे भी हो सकते हैं जो उसकी उम्र से बहुत अधिक भी हो. बहुत से ऐसे ऑटिस्टिक व्यक्ति हैं कि जिनमें बहुत ही गणित के बहुत ही गुण होते हैं, वो मल्टीप्लिकेशंस और नंबर्स में बहुत स्किल होती है उनकी. तो कुछ उनके ऐसे स्पेशल स्किल भी हो सकते हैं जो उनकी एज से बढ़कर हों. और जैसे हमें मालूम ही है कि कम्युनिकेशन में और सामाजिक व्यवहार में उनके जो कौशल हैं वो बहुत कम रहते हैं अपनी एज से. तो मेन फर्क दोनों चीजों में ये है कि जहां मानसिक मंदता होने से बच्चे का विकास एक ही तरह से, हम बोलते हैं एक इवन तरह से वो अफेक्टेड है, लेकिन ऑटिज्म में उसकी डेवलपमेंट ऊपर नीचे होती है. और इससे कई बार उनके साथ काम करने वाले जो लोग हैं, उनके जो माता पिता हैं, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इसका लेवल है क्या.
1: इंदु जी, ऑटिस्टिक बच्चों को जीवन की मुख्य धारा में किस हद तक शामिल किया जा सकता है और उनके लिए कौन से विशेष प्रावधान हैं?
0: कोई भी बच्चा हो जिसे किसी भी प्रकार की परेशानी हो, चाहे वो ऑटिज्म हो या कुछ और हो, हम जानते हैं कि आजकल UNCRPD और सर्व शिक्षा अभियान और इन सभी चीजों के अंतर्गत पूरी कोशिश की जा रही है कि इन्हें मुख्य धारा में जितना शामिल किया जा सके कोशिश करनी है. परंतु ये स्थिति हम लोग पूरी तरह यहाँ पहुंचने में काफी समय लगाएंगे. और हर एक बच्चा जिसे ऑटिज्म है वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस दिखा सकता है और उसे मुख्य धारा में हम लोग शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसे कुछ सपोर्ट जरूर चाहिए होगा इस समाज में एडजस्ट करने के लिए. हम जानते हैं कि कितना कठिन है समाज में एडजस्ट करना. जो चीजें हम लोग इतनी आराम से कर लेते हैं वो बुनियादी चीजें भी इन बच्चों को सिखानी पड़ती हैं. तो उनको एक, हम जो बोलते हैं कि साथ साथ एक और प्रोग्राम चाहिए होता है जो उन्हें हेल्प करता है मुख्य धारा में बने रहने के लिए. और स्पेशल प्रावधान इन बच्चों के लिए है. ये बड़े दुख की बात है कि अभी ये खाली मेट्रोज में ही उपलब्ध हैं और छोटे शहरों में अभी भी ऑटिज्म की ही जानकारी नहीं है. इन बच्चों को सिखाने के तरीके अलग होते हैं. इनको हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा विजुअल्स की हेल्प से सिखा सके और इनकी ट्रेनिंग में जितना हम भाषा लैंग्वेज प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर सके उतना अच्छा होगा.
1: इंदु जी, सरकार की ओर से क्या इस दिशा में कोई प्रयास किए जा रहे हैं?
0: जी हाँ, हाल ही में ऑटिज्म से प्रभावित व्यक्तियों के लिए एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, पहले काफी दिक्कत थी सर्टिफिकेट कोई बना नहीं पा रहे थे कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए असेसमेंट का, तो अब पिछले साल इनके लिए एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी मिल रहा है. और उस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के आधार पर काफी जो ऑटिस्टिक व्यक्ति हैं उनको सुविधाएं भी मिल रही हैं, जैसे कि इनकम टैक्स में रिबेट मिलना. और दूसरी चीज है कि अगर ये कोई लाइक यात्रा पे जा रहे हैं, रेल यात्रा पे जा रहे हैं, तो उसमें कंसेशन मिल पाना. नेशनल ट्रस्ट में ऑटिज्म एक डिसेबिलिटी के रूप में इसको रिकग्निशन मिला है. रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ऑटिज्म के लिए टीचर ट्रेनिंग का कोर्स चला रही है. तो इस प्रकार से काफी कुछ हो रहा है. कुछ संस्थाएं जो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए स्कूल चला रहे हैं उनके प्रोग्राम्स को

0: थोड़ी बहुत सहायता भी मिलती है सरकार से, तो इस दिशा में कार्य शुरू तो हुआ है, लेकिन क्योंकि हम देखते हैं कि नंबर्स बहुत हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ऑटिज्म है, तो और भी सुविधाओं की जरूरत है, लेकिन प्रयास अभी आरंभ हुए हैं।
1: इंदु जी, ऑटिज्म के लिए कोई हेल्पलाइन है जिनसे लोग जानकारी प्राप्त कर सकें?
0: ये जो अर्थ आस्था नाम से एनजीओ है, नेशनल ट्रस्ट की हेल्पलाइन इनके संस्था से चलती है, इसका नंबर है 011-264-66-250, और एक बार और दोहराती हूँ, 011-264-66-250, ये है नंबर अर्थ आस्था का। इसके अलावा और भी कई संस्थाएं हैं जो ऑटिज्म के लिए काम कर रही हैं। एक्शन फॉर ऑटिज्म का नंबर लिया जा सकता है, ये दिल्ली में है, और इनका फोन नंबर है 011-40-54-0991, और इन नंबर्स पे फोन करें तो जरूर सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
1: इंदु जी, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं ये कहना चाहूंगी कि ऑटिज्म जो है ये एक काफी, जो हम बोलते हैं कि व्यापक स्थिति है, कि बहुत हम लोग देखते हैं कि हर 150 में से एक व्यक्ति में कुछ न कुछ ऑटिज्म के लक्षण होते हैं। हालांकि ये जो आंकड़े हैं ये हिंदुस्तान से नहीं, हमारी कंट्री में नहीं मिले हैं, क्योंकि कभी कोई ऐसा सर्वे ही नहीं हुआ, कोई डेटा ही नहीं कलेक्ट हुआ, अब ये सब काम शुरू हो रहे हैं। तो जब ये कॉमन डिसऑर्डर है तो बहुत जरूरी है कि लोगों में इसकी जागरूकता हो, ताकि जिन लोगों को ऑटिज्म है वो भी हमारी सोसाइटी में आराम का जीवन व्यतीत कर सके, और दूसरे लोगों की तरह इसकी इसमें हर चीज में शामिल हो सके, और जो उनकी कैपेबिलिटीज हैं, जो वो कर सकते हैं, उसका वो पूरा योगदान हमारे समाज को दें और उस समाज का एक हिस्सा बन के रहें। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के दिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितनी अवेयरनेस, जितनी जानकारी ऑटिज्म की दे सके हम दें।
1: इंदु जी, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी, हमें और हमारे श्रोताओं को बहुत उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: दोस्तों, इंदु जी से हमने ऑटिज्म के बारे में जाना कि यह क्या है और किस तरह से ऑटिस्टिक लोग भी जिंदगी की मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं।
1: आशा सरकार के साथ बहुत सी गैर सरकारी संस्थाएं भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, जैसे एक्शन फॉर ऑटिज्म, तमन्ना, राजकुमारी अमृत कौर चाइल्ड स्टडी सेंटर, स्कूल ऑफ होप, आसमान आदि ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो इस विषय पर कार्य कर रही हैं।
0: दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ऑटिज्म एक आजीवन रहने वाली जटिल विकासात्मक असमर्थता है,
1: पर प्रारंभिक निदान और उचित प्रशिक्षण द्वारा महत्वपूर्ण प्रगति और विकास देखे जा सकते हैं।
0: ऑटिस्टिक बच्चे भी अपने आप में बहुत सारी काबिलियत रखते हैं, पर वे अपनी काबिलियत को साबित करते हैं तो इनके माता पिता के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती।
1: दोस्तों, ऑटिस्टिक लोगों की काबिलियत को पहचानते हुए उनके खास गुणों को समाज के साथ जोड़ना जरूरी है। दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। दोस्तों, अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशा और महिपाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आज के बिहार में जीरादेई अभी भी एक छोटा सा स्टेशन है, लेकिन यहाँ के लोग शान से अपने सपूत को याद करते हैं जिसने जीरादेई को बहुत बड़ा बना दिया है। गांव के इस घर में राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। पिता बाबू महादेव प्रसाद खुद भी बड़े विद्वान थे, लिहाजा राजेंद्र प्रसाद को पर्शियन, उर्दू, हिंदी और अंकगणित पढ़ाने की जिम्मेदारी गांव के मौलवी जी को सौंपी गई। इसके बाद छपरा में पढ़ाई, शुरुआत में शिक्षक के तौर पर काम किया, लेकिन दिल कानून पढ़ना चाहता था। राजेंद्र बाबू कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज पहुंचे और कानून में डॉक्टरेट की डिग्री गोल्ड मेडल के साथ पूरी की। 97 साल पहले के भारत में ये डिग्री कुछ लोगों के पास ही होती थी। वकालत शुरू कर दी, लेकिन उन दिनों देश दीवाना था महात्मा गांधी का, जो अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़े हुए थे। राजेंद्र बाबू ने वकालत को ठोकर मार दी और चंपारण में नील किसानों के लिए चलाए गए गांधी जी के सत्याग्रह से खुद को जोड़ लिया। 1934 आते आते वो मुंबई के कांग्रेस अधिवेशन में पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। 5 साल बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो एक बार फिर पार्टी ने राजेंद्र बाबू को कमान सौंपी। लेकिन देश के इतिहास में दो अवसर आजादी से पहले ऐसे भी आए थे जब राजेंद्र बाबू ने अपनी भूमिका साबित की थी। 1946 में जब ये तय हो गया कि अंग्रेजों को जाना ही पड़ेगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में अंतरिम सरकार बनी और जिन 12 मंत्रियों ने अंतरिम सरकार में शपथ ली उनमें राजेंद्र बाबू भी थे। उन्होंने खाद्य और कृषि मंत्री के तौर पर शपथ ली। ये वो दौर था जब देश के अगले रूप रंग की तैयारी शुरू हो गई थी। देश को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत थी। राजेंद्र बाबू को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। ये जिम्मेदारी उन्होंने तब तक निभाई जब तक कि देश को चलाने के लिए एक नया संविधान नहीं बन गया। इसके बाद भी उनकी भूमिका खत्म नहीं हुई। चुनाव तो हुए नहीं थे, लिहाजा देश को एक राष्ट्रपति भी चाहिए था और एक बार फिर जरूरत महसूस हुई राजेंद्र बाबू की। 24 जनवरी 1950 को सबकी सहमति से उन्हें भारत का पहला अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया। इसके बाद जब 1952 में चुनाव हुए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर राष्ट्रपति चुने गए। यही नहीं, 1957 में उन्हें एक बार फिर देश की बागडोर सौंपी गई। इस तरह पूरे 12 साल राजेंद्र बाबू देश के इस शिखर पद का मान बढ़ाते रहे। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद ही कोई दूसरा कभी तोड़ पाए। जब वो राष्ट्रपति पद पर थे तो साल में करीब करीब 6 महीने वो देश का सफर रेल से करते थे। उनकी खास रेल छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकती थी और वो आम आदमी से बतियाया करते थे। क्या आज आप इसकी कल्पना भी कर सकते हैं? राष्ट्रपति के तौर पर 12 साल तक काम करने के बाद राजेंद्र बाबू ने खुद राजनीति से संन्यास ले लिया। उन्होंने तय किया कि वो पटना में रहेंगे और दिल्ली के रामलीला मैदान में उनका विदाई भाषण हुआ। इस समारोह में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। देश तो क्या, दुनिया में भी इस तरह का कहीं उदाहरण नहीं मिलता।
1: उसके लिए आप चाहे बधाई दीजिए या जो चाहे कीजिए, पर जितने त्रुटियां हुई हैं उन सबको क्षमा भी कीजिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्कार। आज का हमारा जो सेशन है जिसमें हमारा जो फोकस रहेगा वो एक तरह से जो पुलिस में जॉब्स होती हैं आपकी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर उससे एसोसिएटेड है, ठीक है। वैसे तो हमने इससे पहले डिफेंस का या और भी कई टाइप के जो गवर्नमेंट जॉब्स को हमने पहले भी कवर किया है, तो आज का जो सेशन है वो प्राइमरी पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। उसमें चाहे आपकी ए क्लास जॉब्स है आईपीएस की, चाहे आपकी इंस्पेक्टर की, सब इंस्पेक्टर की या कांस्टेबल की, तो हम उस तरह की जॉब्स के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा जो लेटेस्ट में रिसेंट में जहां जहां पर ये वैकेंसीज निकली हुई है तो उसमें ये देखेंगे भी उसमें क्वालिफिकेशंस क्या क्या मांगी हुई है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, तो वो सारी चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। देखिए, अब अभी से पहले अगर मैं सेशंस की बात करूं तो हम काफी बहुत टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं जिसमें हमने हर तरह की जो गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। और ये सारा इंफॉर्मेशन आपको, अगर इतना सारा इंफॉर्मेशन अगर है आपके पास में अलग अलग कोर्सेज के बाद अलग अलग कोर्सेज के बारे में, तो आप अपना करियर एक तरह से चूज कर सकते हैं। अगर आप 10th में है, 12th में है या बीए बीकॉम बीएससी जो भी आप कर रहे हैं, तो आपकी बिल्कुल राइट एज है एक करियर ऑप्ट करने की। और करियर ऑप्ट करने से पहले अगर आपको अलग अलग चीजों के बारे में पता है, अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में पता है, रास्तों के बारे में पता है, तो आप अपनी मंजिल सेट कर सकते हैं भी आपको इस लाइन में जाना है, और उसके बाद फिर आप उसे अचीव भी कर सकते हैं। चलिए, हम आज के सेशन से स्टार्ट करेंगे जिसका हमारा टारगेट है स्टेट पुलिस जॉब्स। देखिए, जनरली क्या होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो स्टेट वाइज वैकेंसीज आती है। इसमें मतलब आपका हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल कम है, क्योंकि स्टेट का डिपार्टमेंट रहता है पुलिस डिपार्टमेंट, तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो उस स्टेट में वैकेंसीज आती है। जो आपके बड़े बड़े स्टेट्स हैं जैसे यूपी है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, तो वहां पर जब भी वैकेंसी आती है तो हजारों की क्वांटिटी में आती है, मतलब बहुत ज्यादा वैकेंसी आती है, कंपटीशन भी उतना ज्यादा ही होता है, ठीक है। तो पुलिस ऑफिसर वैसे तो देखिए आप मान के चलिए एम होता है सबका, ठीक है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर की एक तरह से बड़ी प्रेस्टिजियस जॉब है, क्योंकि पावर तो है ही है इसमें, पावर के साथ साथ पैसा भी है, सैलरी भी आपकी ठीक ठाक होती है, और प्लस में आप हर तरह से मतलब अपने आप को एक पावरफुल फील करते हैं, ठीक है। और पुलिस में अगर आप हैं तो आसपास में भी आपकी एक टाइप से हम कह सकते हैं कि रिस्पेक्टफुल जॉब हो जाती है। तो बच्चों का एम होता है कि उन्हें पुलिस में जाना है, बट पुलिस में जाने के लिए हमें एक टाइप से जो फिजिकल फिटनेस आपकी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप चाहे कोई भी एग्जाम दें, चाहे आप सब इंस्पेक्टर का दें, चाहे आप इंस्पेक्टर का दें, चाहे आप कॉन्स्टेबल का दें, या आप अगर आईपीएस के लिए भी अप्लाई करेंगे तो वहां भी आपको जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है वो आपको पास करने रहते हैं, जो भी इनका फिजिकल रहता है वो आपको क्वालिफाई करना रहता है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं एक ये जो आपने अगर स्क्रीन पे देखे हिंट करूं आपको मैं, तो ये अलग अलग तरह की जॉब्स है। जैसे आप देखेंगे सबसे ऊपर जो है वो एसपी, जिसको हम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं, ये एक तरह से आईपीएस ऑफिसर होते हैं, ठीक है, जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री रहती है। आपको ध्यान हो मैंने स्टार्टिंग में आपका सेशन लिया था जिसमें आपको मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में बताया था कंप्लीट कि, और ये एक तरह से सिविल सर्विसेज का ही पार्ट होता है, जो हमारा आईएएस का एग्जाम होता है उसी में ही आपकी आईपीएस की सर्विसेज होती है, जो एक टाइप का कैडर होता है आईपीएस का, इंडियन पुलिस सर्विसेज का। तो आज के सेशन में उसमें मैं बात करूंगा पूरा। ऐसे ही असिस्टेंट कमिश्नर या डीएसपी होते हैं, देखिए जो डीएसपी होते हैं ये बेसिकली स्टेट वाइज वैकेंसी आते हैं, मतलब जो आईपीएस है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है। वही अगर हम डीएसपी की बात करें तो ये स्टेट वाइज वैकेंसी आती हैं, क्योंकि जो स्टेट सिविल सर्विसेज है, जैसे आप हरियाणा में देखते हैं तो एचसीएस है, हरियाणा सिविल सर्विसेज है, ऐसी राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है आपका पीसीएस है, तो उसमें क्या होता है कि डीएसपी की वैकेंसी होती है, जो एक तरह से आपका डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, तो उसका भी पैटर्न ऑलमोस्ट आईएएस के पैटर्न का ही होता है, बट वो स्टेट वाइज वैकेंसीज होती है आपकी। फिर सब इंस्पेक्टर, एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और सबसे नीचे कांस्टेबल, ठीक है।
तो जो कॉन्स्टेबल होता है वो एक तरह से एंट्री पॉइंट है। अगर आप पुलिस में बिल्कुल एक टाइप से अगर आपकी भर्ती लोअर एंड से हुई है तो आप कॉन्स्टेबल ज्वाइन करते हैं, और ये जितने भी वैकेंसीज हैं चाहे वो एएसआई की है, चाहे वो पुलिस हेड कॉन्स्टेबल की है, चाहे वो कॉन्स्टेबल की है, वो सारी आपकी स्टेट लेवल वैकेंसीज होती है। ठीक है, वो स्टेट लेवल आपके रिक्रूटमेंट एग्जाम होते हैं और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। अब जो लोअर वैकेंसी है चाहे वो कॉन्स्टेबल है चाहे पुलिस हेड कॉन्स्टेबल है, तो 12th बेसिस पर होती है इनकी जॉब ज्यादातर। ठीक है, तो एज भी इनकी 25 ईयर तक होती है, आप परे जो है 25 साल तक ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरली स्टेट वाइज आती है वैकेंसी, तो साल दो साल में एक बार वैकेंसी जरूर आती है। जैसे अभी आपने देखा हो कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई थी कॉन्स्टेबल की, 5000 प्लस वैकेंसी आई है। ठीक है, तो जब भी आती है काफी ज्यादा क्वांटिटी में आती है, साल दो साल में एक बार वैकेंसी आती है इनकी। ठीक है, उसके लिए 12th क्लास आपकी मिनिमम एज है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो आज के सेशन में हम इन सब पर्टिकुलर जॉब्स के बारे में बात करेंगे, पेपर में क्या क्या आता है इनकी, ठीक है, क्या पैटर्न होता है। तो सबसे टॉप पे जो पहले एक बार मैं इनके बारे में और आपको एक्सप्लेन कर दूं, जैसे हम यहां पर अगर देखें, हाँ मतलब पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल से भी पोस्ट, बिल्कुल वो क्या रहता है, देखिए पुलिस डिपार्टमेंट में जब भी वैकेंसीज आती हैं तो वैकेंसीज आपकी दो तरह से फिल की जाती हैं। एक तो वैकेंसी होती है जिसकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है, और सेकंड वैकेंसी होती है जो आपकी प्रमोशनल होती है। जैसे मान लो 100 वैकेंसीज अगर आई है तो 100 में से 60-70 वैकेंसी होती है जो डायरेक्टली एग्जाम से लिए जाते हैं बच्चे, और 20-30% ऐसा होता है जो एक तरह से प्रमोशनल होता है। तो दोनों तरीके से वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, तो ये हमारी अलग अलग पोस्ट है जो पुलिस डिपार्टमेंट में रहती है और जिसके बेसिस पे आप पुलिस डिपार्टमेंट में एज ए जॉब कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ये बात क्लियर है बेटे। सबसे लोअर पे पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी होती है, उसके बाद हेड कांस्टेबल है, फिर एएसआई है, फिर आपकी एसआई हो गया, फिर इंस्पेक्टर है, फिर आपका डीएसपी है, और सबसे ऊपर आपका एसपी होता है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब देखिए, जब हम एसपी की बात करते हैं, जिसके लिए हमारा जो कैडर होता है, जो ए क्लास आपकी सर्विस होती है, इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है, जिसे हम आईपीएस कहते हैं, आईपीएस आपका एक तरह से आपको सिविल सर्विसेज का पेपर देना होता है, आईएएस का एग्जाम आपको देना है। और सिविल सर्विसेज के एग्जाम के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया था कि इसकी जो मिनिमम एज है 21 ईयर है, 21 ईयर की एज से आप अपना एग्जाम दे सकते हैं, 32 ईयर तक आपका एज रहता है। और इसमें आपको जो एग्जाम रहता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं आपके। फर्स्ट पार्ट आपका प्रिलिमिनरी होता है, सेकेंड आपका मेंस होता है, और उसके बाद फिर हमें इंटरव्यू अपियर करना रहता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन रहती है आपकी ग्रेजुएशन। एक बात और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका सिविल सर्विसेज का पेपर होता है उसमें ग्रेजुएशन में आपको कोई भी स्ट्रीम आपकी हो, किसी भी स्ट्रीम से आपने बीए बीकॉम बीएससी किया हो, और उसके साथ साथ आपने मार्क्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि आपका बीए बीकॉम बीएससी में कितने मार्क्स है, वो कहीं मैटर नहीं करेगा। हाँ ये है कि आप पास होने चाहिए उसके अंदर। अब ये जो आईएएस का एग्जाम होता है, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, जनरली मई के मंथ में होता है। अभी आपने रिसेंट में यू हैव हर्ड इनटू द न्यूज कि अभी 5 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, क्योंकि कोरोना के कारण मई का एग्जाम एक्सटेंड हो गया था, तो प्री का एग्जाम अभी अक्टूबर में हुआ है। और फॉर्म्स जो निकलते हैं आपके फेब मार्च में फॉर्म निकलते हैं आईएएस के एग्जाम के, ठीक है, तो उसमें आपको पहले प्री का पेपर देना है। जो प्रिलिमिनरी का पेपर है उसमें आपके 2 पेपर रहते हैं अलग अलग। एक पेपर आपका एप्टीट्यूड का रहता है जिसको हम सी सेट कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, और सेकंड पेपर जो आपका रहता है जनरल स्टडीज का, जिसमें आपके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और जीएस आप कह सकते हैं कि 10th to 12th लेवल तक का सारा जो जीएस है, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके रहते हैं। और अगर आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो फिर आप मेंस के लिए अपियर करते हैं, ठीक है, तो जिसका जो सेकंड स्टेज होता है वो आपका मेंस होता है, मेन एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन एक तरह से डिस्क्रिप्टिव होता है इसमें, और इसमें हमारे पेपर्स होते हैं, जैसे आपका लैंग्वेज का टेस्ट रहेगा, इंग्लिश का पेपर रहेगा, एशे राइटिंग है,
आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, जनरल स्टडीज का एग्जाम रहेगा। तो ये आपको मैंने पहले भी जब मैंने आईएएस के बारे में आपको बताया था तो वहां मैंने आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बताया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं। तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चूज करना रहता है, चाहे आपने वो अपना यू हैव स्टडीड इन द ग्रेजुएशन, या फिर आपको किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, चाहे वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, तो कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चूज करना रहता है और मास्टर डिग्री लेवल तक उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसके बेसिस पे मेंस का एग्जाम रहता है। तो मेंस का जो एग्जाम रहता है वो रिटन टेस्ट रहता है, आपको लिखना होता है, और मेंस का जो रिजल्ट आ जाता है तो फिर उसके बाद आपको थर्ड स्टेज में जाना होता है जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं, ठीक है। बट आईपीएस के लिए यहां पर आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है इन इंडियन पुलिस सर्विसेज के लिए। अगर आप आईएएस के लिए जा रहे हैं तो वहां आपका कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता, बट आईपीएस में होता है। और ये जो कैडर आपको मिलता है जब आप आईएएस का फॉर्म फिलअप करते हैं सिविल सर्विसेज का, तो उस टाइम पर आपसे ऑप्शन मांगा जाता है, आपसे च्वाइस मांगी जाती है अभी आप किस उसमें अप्लाई करना चाहते हैं। वहां आपको प्रेफरेंस फिल करनी होती है, तो जिस प्रेफरेंस जिस ऑर्डर में आप अपनी फिल करेंगे उसी के हिसाब से ही आपको कॉल किया जाता है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो मतलब अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो वैसे सबसे टॉप पे तो आपका इंडियन पुलिस सर्विसेज आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि अगर आप आईपीएस के थ्रू आते हैं तो आपकी स्टार्टिंग पोस्टिंग ही आपकी एसपी की पोस्टिंग होती है। और अगर हम एसपी की बात करें, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब किसी भी जिले की सारी जो कानून व्यवस्था है, या हम ये कहें कि सारी पुलिस जो है वो एसपी की गाइडलाइंस पे काम करती है, ठीक है। तो एसपी एक तरह से हम ये कह सकते हैं जिले का सबसे ऊंचा पुलिस ऑफिसर होता है। तो अगर आपकी स्टार्टिंग ज्वाइनिंग एसपी से हो जाती है तो आप ये मान के चलिए कुछ ही सालों में आप बहुत ऊंची पोस्ट पे जाएंगे। तो टारगेट तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों का इंडियन पुलिस सर्विस ही होता है और होना भी चाहिए, पर उसके लिए उतनी ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये टारगेट बनाना आसान है बट ऐसे टारगेट्स को अचीव करने में आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है, अपने आपको मतलब अपना काफी हार्डवर्क करके स्टडीज में फोकस करना पड़ता है। बट ये है कि एक बार आप ऐसा कोई एग्जाम क्वालिफाई कर दे तो उसके बाद फिर आपका लाइफ बहुत ही सेट हो जाता है, एक अच्छी लाइफ में आप अपने आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला था आईपीएस के बारे में। फिर ऐसे ही आपकी एएसआई एसआई की वैकेंसी आती है, मतलब सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है। यहां जैसे मैंने अभी रिसेंट में आंध्र प्रदेश में वैकेंसीज आई है, एपीपीएससी ने वैकेंसीज निकाली है, आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने, तो 123 सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आई है, ठीक है, जिसका फॉर्म जो फॉर्म निकला था 24 सितंबर को निकला, और फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है वो 6 नवंबर है, तो आप लोग भी फिल कर सकते हैं। सॉरी ये अरुणाचल प्रदेश की है, सॉरी मैं पढ़ नहीं पाया, अरुणाचल प्रदेश की। तो इसमें क्या रहता है, देखिए चाहे वो किसी भी स्टेट की हो, क्योंकि ये वैकेंसीज आपकी सब इंस्पेक्टर की होगी या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो है ये एक तरह से स्टेट वाइज वैकेंसीज आती है, ठीक है, और मतलब क्वांटिटी में 100+ जनरली वैकेंसीज होती है, डिपेंड करता है कि स्टेट कितना बड़ा है। इनमें रिजर्वेशन भी रहता है आपका, जनरल कैटेगरी का, शेड्यूल्ड कास्ट का, ट्राइब का, अदर बैकवर्ड क्लासेस का, तो वो सारी चीजें इसमें ध्यान दी जाती है। अब इसमें देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मतलब जो एसआई एएसआई, क्योंकि ये सारी एक ही आपकी जो कैटेगरी होती है, इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, रिटन एग्जाम, सबसे पहला आपका रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम के बाद फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड का टेस्ट होता है, और उसके बाद एंड्योरेंस टेस्ट, का मतलब क्या है कि आपका एक टाइप से मेंटल चेकअप, ये सारी चीजें होती हैं। हाँ, इसमें देखिए स्पेशल कोटा तो नहीं होता है, जैसे आप जैसे हरियाणा में वैकेंसी निकली, सपोज हरियाणा में एसआई की वैकेंसी निकली, तो उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि यू मस्ट बी सिटीजन ऑफ हरियाणा, ऐसा नहीं, बाहर के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, पर जनरली क्या रहता है कि जो पेपर इस तरह का आएगा, जैसे मान लो हरियाणा में अगर पेपर है तो उसमें हरियाणा जीके का फोकस ज्यादा रहेगा, तो उसमें प्रॉब्लम क्या रहती है कि बाहर का बच्चा अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे ही जैसे आपका महाराष्ट्र है, साउथ इंडिया है, तो वहां पर क्या रहेगा, जब भी वैकेंसीज आएंगी तो उसमें आपसे जो लोकल लैंग्वेज वहां की है,
वो आपसे मांगेंगे। जैसे महाराष्ट्र में मान लीजिए वैकेंसी आती है तो आपको लिखा होगा कि 10th क्लास तक आपने मराठी पढ़ी होनी चाहिए। अब देखिए ये बात तो क्लियर है कि हमारा हरियाणा पंजाब का तो कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसने मराठी पढ़ी हो। हाँ मतलब देखिए उसमें कॉन्स्टेबल में होता है, मतलब जैसे क्या रहता है ना, जो पीएस जो जो वैकेंसी आपकी पीएससी के थ्रू आती है ना, देखिए जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू वैकेंसी आती है ना, उसमें कहीं कोटा नहीं होता। मतलब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ग्रुप ए और ग्रुप बी, ग्रुप ए और ग्रुप बी की वैकेंसीज में कोई कोटा नहीं होता, उसमें स्टेट के लिए अलग से स्टेट का नहीं होता रिजर्वेशन। बट जो ग्रुप सी और डी की वैकेंसीज होती है वहां स्टेट का थोड़ा बहुत रोल प्ले किया जाता है, क्योंकि ग्रुप ए और ग्रुप बी तो आपकी ऑफिसर वैकेंसीज है। अब ये आपकी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है तो सब इंस्पेक्टर ग्रुप बी में आता है, तो ग्रुप अगर बी में आता है तो फिर उसका, अब जैसे मैं बहुत बच्चों को हम जानते हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस में लगे हुए हैं या जो दिल्ली पुलिस में है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। आप देखेंगे दिल्ली पुलिस के अंदर 80% बच्चा जो है वो हरियाणा से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये बड़ा होता है, इफेक्ट होता है इस चीज का। हाँ कोटा होता है बट उसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, मतलब उसमें कोटा आपका इस तरह का तो होता है कि आपका एस टीज का है बैकवर्ड क्लासेस का है, तो ये सारी चीजें उसमें होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो उसके कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स नहीं है। मैंने यहाँ इसलिए इनकी मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा कि आपको ये पता हो कि मतलब क्या क्या चीज चाहिए। देखिए जैसे क्या है कि 165 सेंटीमीटर एंड एपीएसटी, मतलब भी आप इन जनरली चाहे हम हरियाणा की बात करें चाहे हम कहीं की वैकेंसी की बात करें, तो मेल के लिए कम से कम 165 सेंटीमीटर की हाइट मांगते हैं और फीमेल के लिए 157 की। बाकी ये स्टेट वाइज वेरी भी करता है। तो उसमें देखिए कुछ पैरामीटर्स हैं। पहली पैरामीटर आपका होता है बेटे हाइट, तो जिन बच्चों की हाइट कम है तो वो आप मान सकते हैं भी पुलिस सर्विसेज में, इस तरह की एएसआई में, या आप ये जैसे हम कॉन्स्टेबल की बात करें तो वहां पर जॉब मिलना मुश्किल है। सेकेंड होता है बेटे चेस्ट, भी चेस्ट हाइट के अकॉर्डिंगली आपकी मेजरमेंट होती है। फिर उसमें हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है, उसके लिए आपका स्पेसिफाइड होता है कि हाई जंप इतना होना चाहिए आपका, लॉन्ग जंप इतना होना चाहिए, और उसके अंदर एक टाइप से रनिंग भी होती है, अभी इतने सेकंड में आपने इतना मीटर करना है। तो ये सारी चीजें इसमें मैटर करती है। तो अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिए कि आप किसी भी पोस्ट के लिए जाना चाहे, अगर कांस्टेबल हो या सब इंस्पेक्टर हो, तो आपको अपने फिजिकल पे काफी ध्यान देना पड़ता है, उस पर आपको ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी पुलिस के एग्जाम के अंदर फिजिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब तो आजकल पहले टेस्ट होता है, नहीं तो पहले क्या हुआ करता था, आज से कुछ साल पहले फिजिकल होता था फिर टेस्ट लिया करते थे, उसमें काफी बच्चा रिमूव हो जाता था, ठीक है। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। जैसे मैं अभी आपको बता ही रहा था कि अभी रिसेंट में दिल्ली पुलिस ने कांस्टेबल की वैकेंसीज निकाली थी, मेरे हिसाब से आप लोगों में से काफी बच्चों ने उसको फॉर्म को फिलअप भी किया होगा। कई बच्चों ने जो कांस्टेबल का वैकेंसी निकला था, 5846 वैकेंसी आई है कांस्टेबल की, आपने फॉर्म भी फिलअप किया होगा जो उस क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं। तो इसका एग्जाम अब कब होगा, नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा इसका, ठीक है। और कांस्टेबल की जो वैकेंसीज आई हैं इसमें आप देखेंगे तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर दिया हुआ है, भी आपका पहले टेस्ट होगा, ठीक है, टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई है कि पहले क्या होता था कि जनरली पुलिस के जो टेस्ट होते थे वो आपके पेपर पेंसिल बेस्ड होते थे, बट ये जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का जो टेस्ट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और जो नवंबर दिसंबर में होगा आपका। और अब देखिए इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि टेस्ट में क्या आता है, क्योंकि पहली स्टेज तो आपकी टेस्ट है, अगर आपका टेस्ट ही क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर सेकंड स्टेज के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा। तो पहली चीज तो आपके लिए क्या है कि आपको टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा जो भी कांस्टेबल का टेस्ट है। तो यहां मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि ये तो मैं आपको दिल्ली के स्ट्रक्चर की बता रहा हूं, वही अगर आप यूपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो हर जगह पर ऐसे ही पैटर्न है। वैकेंसीज आती हैं, वैकेंसीज के बाद टेस्ट होता है, पहले एक तरह का आप ये कह सकते हैं रिटन एग्जामिनेशन होता है। अब उसमें भी डिपेंड करता है स्टेट वाइज, ठीक है। जैसे अभी पहली बार यहां पर जैसे ऑनलाइन टेस्ट है दिल्ली के अंदर, ठीक है,
तो अब जो टेस्ट होगा उसमें देखिए क्या क्या आता है। ये टेस्ट का पैटर्न गिवन है, 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट रहेगा, जिसमें जनरल नॉलेज 50 मार्क्स। तो मतलब जीके का एक बहुत बड़ा रोल है, और जीके भी आप ये मान के चलिए जिसमें स्टैटिक जीके का मतलब है कि वो सब्जेक्ट जो बच्चे 10th क्लास तक पढ़ते हैं, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारी चीजें आती हैं पहली चीज। फिर उसके बाद में रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग के अंदर अभी मैं इसका कोर्स भी बताऊंगा अभी क्या क्या है इसके कोर्स में। फिर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें आपकी टेस्ट में आती हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में प्रिपरेशन कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली अगर आप पुलिस की बात करें, तो आपको जीके में कमांड बनानी पड़ेगी, करंट अफेयर्स पे काफी फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 100 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा जो दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की वैकेंसीज है। सिलेबस को अगर हम देखें तो रीजनिंग सेक्शन में नॉन दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की वैकेंसीज है। सिलेबस को अगर हम देखें तो रीजनिंग सेक्शन में नॉन वर्बल ज्यादा आता है। मतलब मैंने आपको पीछे भी बताया था कि रीजनिंग को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है वर्बल पार्ट होता है, सेकंड होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल सेक्शन जो होता है वो एक तरह से पिक्चर बेस होता है, जिसमें आप देखेंगे कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं विजुअलाइजेशन के होते हैं, विजुअल मेमोरी के होते हैं, एनालॉजी टाइप होता है, ठीक है। कई सारे टॉपिक्स हैं, आप कोई भी बुक उठा लीजिए नॉन वर्बल रीजनिंग की, या कोई भी एक जनरल बुक रीजनिंग की अगर आप फॉलो करते हैं। वैसे तो हम तो यही एडवाइस करते हैं कि अगर आपने 12th किया हुआ है या 11th में अगर आप है, मतलब 10th के बाद से आपको रीजनिंग की कोई ना कोई बुक लेके उसे सॉल्व करना चाहिए। रीजनिंग बहुत ही आसान टॉपिक होता है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है, और एक बार अगर आपने रीजनिंग के टॉपिक किए हुए हैं फिर आपका एक प्रैक्टिस है उसमें, मतलब आप प्रैक्टिस करते रहिए धीरे धीरे धीरे धीरे, तो आप उसमें काफी इंप्रूव कर जाते हैं और उसमें स्पीड आपकी काफी इंप्रूव हो जाती है। चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है, कुछ भी एनी एग्जामिनेशन, रीजनिंग उसमें आता ही आता है। चाहे आप रेलवे की बात करें, चाहे हम किसी गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें या पुलिस की बात करें, तो रीजनिंग प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो रीजनिंग में तो आपको मेहनत करनी भी चाहिए, और ये आसान होता है इसलिए इजिली किया भी जा सकता है। ऐसी न्यूमेरिकल एबिलिटी है। अब ये हम किसी भी सरकारी नौकरी की बात करें तो यही चैप्टर्स हैं, ये अर्थमेटिक है, नंबर्स है, ये 5 से 6 चैप्टर्स होते हैं आपके। ये चैप्टर्स आपने प्रिपरेशन करनी होती है। जैसे कॉन्स्टेबल की वैकेंसी है तो लेवल कम आता है, वही अगर और कोई एग्जामिनेशन हो तो उसमें लेवल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बट चैप्टर्स तो आपके सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको तैयार करनी है। अब आपके साथ एक बहुत बड़ा फायदा क्या है कि जैसे अभी कमलेश सर बता भी रहे थे कि हमने ई स्टडी प्रोग्राम जो लॉन्च किया हुआ है रीड इंडिया के साथ में, तो उसमें देखिए हमने मैथ्स का, रीजनिंग का, हिंदी मीडियम में स्पेशली, क्योंकि हमारे पास बहुत बच्चा ऐसा है जो हिंदी मीडियम में है आप में से, कि जो आपका राजस्थान से है, चाहे उत्तर प्रदेश से है, जो बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ है, तो उसमें हमने हिंदी मीडियम के, मैथ्स के, रीजनिंग के, आप देखेंगे उसमें पूरा मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम में आपको गिवन है। चाहे कोई भी चैप्टर आपको परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, रेशियो है, वो सारी चीजें आपको हमने ई स्टडी प्रोग्राम के थ्रू प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप उसे अगर रेगुलरली यूज करते रहते हैं, हमने सारा जीके प्रोवाइड किया हुआ उसके ऊपर, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो वो आपके पढ़ने के ऊपर है कितना आप उसे यूज करते हैं, वीडियोज को कितना आप देखते हैं। उसके अलावा भी आजकल तो आप एक टाइप से YouTube को यूज कर सकते हैं। YouTube के माध्यम से आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहें, हर सब्जेक्ट पे आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाते हैं हर टॉपिक के ऊपर। थोड़ा आपको फोकस करने वाली बात रहती है, क्योंकि चीजें बहुत कुछ है। आप देखेंगे पिछले 12 से 13 क्लासेस के अंदर हमने अलग अलग स्ट्रीम्स के बारे में बात किया, ठीक है।

0: इन सब स्ट्रीम्स को सुनने के बाद में आपको ये तो फील हुआ भी चीजें बहुत कुछ है, नंबर ऑफ कोर्सेज आर देयर, कई तरह की जॉब्स आती हैं, कई तरह की वैकेंसीज आती हैं, तो हमें उन वैकेंसीज में उन जॉब्स में अगर अपनी सीट पक्की करनी है तो उसके लिए हमें रिटन टेस्ट की तैयारी करनी है सबसे पहली चीज, क्योंकि बिना टेस्ट के तो कोई आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएगा। ठीक है, तो ये मैथ्स के आपके बेसिक टॉपिक है, ये आपको जरूर तैयार करने हैं। इसके साथ साथ कंप्यूटर का भी कुछ पेपर आता है इसमें 10 मार्क्स का, जिसमें कंप्यूटर के फंडामेंटल्स होते हैं, थ्योरी टाइप क्वेश्चंस होते हैं, एक्सेल का, वर्ड का, कम्युनिकेशन इंटरनेट का, वर्ड प्रोसेसिंग का। ठीक है, तो उसमें अगर आपने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है और कुछ कंप्यूटर की आपने बुक स्टडी कर रखी है तो आप मल्टीपल च्वाइस में बहुत आसानी से उनके क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं अगर आप दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल का पेपर दे रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही 100 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, नेगेटिव मार्किंग होती है हमेशा। देखिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उसका सबसे बड़ी उसमें खासियत यही है कि नेगेटिव मार्किंग उसमें होती है, तो आप अपनी ओर से तुक्के नहीं लगा सकते। तो अगर आपका पहला स्टेज क्वालिफाई हो जाता है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो उसके बाद में उसके जो भी आपके जो कट ऑफ आएंगे उसके बेसिस पे आपका सेकेंड स्टेज के लिए सिलेक्शन होगा। और आप जनरल मान के चलना जैसे 100 मार्क्स का पेपर है तो कट ऑफ इसका 65 से लेकर 75 के बीच में रहेगा। जनरली इस तरह के एग्जाम में 65 से 75 मार्क्स अगर आपका स्कोर हो जाता है तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका पहला स्टेज आपका क्वालिफाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आता है फिजिकल टेस्ट। अब ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि पुलिस के अंदर जितने भी एग्जाम है ना, चाहे वो किसी लेवल का है, ठीक है, डिपेंड करता है भी क्लास ए एग्जाम आईपीएस का जो है उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड कम होते हैं क्योंकि वो आपका ऑफिसर क्लास है। उसके बाद बी क्लास हो चाहे सी क्लास हो, उनमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स का काफी बड़ा रोल रहता है। जैसे ये मैं आपको जो दिल्ली पुलिस का है वो बता रहा हूं, मेल कैंडिडेट के लिए 30 ईयर्स तक के अगर आपकी एज है, वैसे तो 25 ईयर एज होती है, बट उसमें क्या है कि कुछ पोस्ट ऐसी होती है जो डिपार्टमेंटल होती है फिल, या अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है, 5 साल का 4 साल का, वो जो भी एक तरह से वो जो भी इनका पैरामीटर होता है। तो आप ये मान के चलिए कि 1600 मीटर आपने 6 मिनट्स में पूरे करने हैं। ठीक है, अब आप ये देखो भी आपकी स्पीड मतलब एक तरह से एक टाइप से जो रनिंग की स्पीड कितनी है कि 1600 मीटर आप 6 मिनट में पूरा कर पाए। लॉन्ग जंप आपकी 14 फीट की होती है, हाई जंप आपकी 3 फीट 9 इंच की है। तो ये दिल्ली पुलिस के लिए है, और जनरली हमारे पास जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं या आपके नॉन में भी जो अभी पहली बार ट्राई करेंगे तो जिनकी एज 25 ईयर से कम है तो ये पैरामीटर उन्हें पूरा करना है। फीमेल्स के लिए भी थोड़ा पैरामीटर में चेंज होता है कि 1600 मीटर जो है 8 मिनट में पूरे करने होते हैं, लॉन्ग जंप 10 फीट का होता है, हाई जंप 3 फीट का होता है। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं कि ये जो कांस्टेबल की वैकेंसीज या एसआई या एएसआई की वैकेंसीज मेल्स के लिए होती है, फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं इसमें। ठीक है, तो वो भी आपकी अलग से वैकेंसी आती है। तो आपको दो चीजों पर ध्यान रखना है, पहला टेस्ट आपने क्वालिफाई करना है, बिना टेस्ट क्वालिफाई करे आपको जो हमारा सेकेंड स्टेज है उसके लिए नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, तो जब आप सेकेंड स्टेज क्वालिफाई कर देते हैं जिसमें आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट या फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जब पूरा हो जाता है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है। ठीक है, जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें एक तरह से आपके सारे जो टेस्ट किए जाते हैं, आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब ये देखा जाता है कि कोई ऐसा डिसीज तो आपको नहीं है, तो मेडिकल टेस्ट के लिए दे हैव द मेडिकल बोर्ड और वो आपका टेस्ट करता है। और फाइनल स्टेज आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है। ये तीनों स्टेज क्वालिफाई करने के बाद में जो भी डॉक्यूमेंट आपने प्रेजेंट किए हुए हैं 12th के, क्योंकि 12th के बेसिस पर वैकेंसी है तो 12th के डॉक्यूमेंट लगेंगे वहां पर। अगर आपका ग्रेजुएशन के बेस पर है तो आपके वो डॉक्यूमेंट्स प्लस में कोई स्पोर्ट्स कोटा है या कोई आपकी जो कैटेगरी है उसका कोई भी जो डॉक्यूमेंट आप प्रेजेंट करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की जाती है और इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो आप देखिए इस पूरे प्रोसेस के अंदर कहीं भी इंटरव्यू नहीं है, पूरे प्रोसेस में कहीं भी इंटरव्यू नहीं है और सारी स्टेजेस आपकी क्वालिफाइंग है, सारी स्टेजेस आपकी क्वालिफाइंग है। जैसे पहली स्टेज आपकी टेस्ट है तो टेस्ट क्वालिफाई किया तो आपको किसी अप्रोच की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड स्टेज आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है, तो वो आपको जो भी पैरामीटर्स गिवन है उसके बेसिस पे आपने करना है। और अगर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई हो जाता है तो फिर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपकी जॉब लग जाती है। तो थोड़ी सी मेहनत चाहिए, थोड़ा फोकस चाहिए, ठीक है, तो उसके बाद इन चीजों को क्वालिफाई किया जा सकता है। जैसे हम बहुत बच्चों को जानते हैं जो गाँव से बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, वो अगर फिजिकली फिट है, फिजिकली एंड्योर है, ये टेस्ट पास कर सकते हैं, पर उनकी प्रॉब्लम क्या है कि उनका पेपर क्वालिफाई नहीं होता। हाँ, तो मतलब ये तो आपको हर चीज पर ध्यान रखना है। हम मेरिट लिस्ट निकलते हैं इसकी पूरी की पूरी, जब आपके सारी टेस्ट हो जाते हैं तो मार्क्स ऐड होकर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, उसके अकॉर्डिंगली आपका फिर सिलेक्शन होता है। ऐसे ही जैसे मैंने आपको हरियाणा पुलिस के बारे में बताया, दिल्ली पुलिस के बारे में बताया, ठीक है, क्योंकि ये तो स्टेट वाइज वैकेंसीज है, ठीक है। आप मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हिंदी स्पोकन पीपल है, आप हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कुछ स्टेट्स में थोड़ा ये है भी, स्टेट वाले बच्चे को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ये हमेशा ही होता है, बट फिर भी ऐसी बात नहीं है कि हम ये कहें कि स्टेट का बच्चा लगता है। बाहर के लोगों का भी ज्वाइनिंग तो होता है, वो डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने हैं, कितने टेस्ट आपने क्वालिफाई किया है उसके बेसिस पर, ठीक है। और जो दिल्ली पुलिस में तो वैसे भी बाहर के लोग ज्यादा हैं, अगर हम स्पेसिफिकली दिल्ली स्टेट की बात करें तो दिल्ली स्टेट के लोग तो काफी कम है, हरियाणा के, यूपी के, बिहार के तो काफी लोग हैं जो दिल्ली पुलिस में है। ऐसे ही रेलवे में भी वैकेंसीज आती हैं, रेलवे पुलिस फोर्स जिसको हम आरपीएफ कहते हैं, उसमें भी कॉन्स्टेबल की वैकेंसी आती है। हाँ, पैरामिलिट्री फोर्सेस इंडिया लेवल की हैं बिल्कुल, जो पैरा मैंने पीछे आपको बताया था, जब मैंने आर्मी के बारे में बताया था आपको, मैंने सीआरपीएफ का एक्सप्लेन किया था, तो वो आपकी इंडिया लेवल का टेस्ट होता है, बट जो आरपीएफ का टेस्ट होता है, रेलवे पुलिस फोर्स की वैकेंसी आती है, वो आपकी जोन वाइज आती है। उसमें थोड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये रेलवे जो है ना, वो आपका जोन में डिवाइडेड है, ठीक है, तो जो जोन अलग अलग है वो अपनी वैकेंसी अलग से निकालते हैं, ऑल्दो एक सेंट्रलाइज फॉर्म निकलता है, पर सेंट्रलाइज फॉर्म के बाद में वैकेंसी जो होती है वो आपकी जोन वाइज होती है, ठीक है, हर साल वैकेंसी नहीं आती है, साल दो साल में एक बार आरपीएफ की वैकेंसी आती है, तो वो भी काफी ज्यादा क्वांटिटी में आती है, क्योंकि रेलवे अपने आप में एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है। और आप देखेंगे कि रेलवे में इंडिया में इतने स्टेशन हैं, सभी स्टेशन में पुलिस चौकी होती है, उनका रेलवे पुलिस फोर्स होती है, ट्रेन में भी पुलिस आती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो आरपीएफ के उसमें आता है, रेलवे पुलिस फोर्स के अंदर आता है। इसका भी जो प्रोसीजर है बिल्कुल सेम है, मतलब उसी पैटर्न पे रहता है। इसमें आपका पहले टेस्ट होता है, और टेस्ट जो होता है वो हमारा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, चार सब्जेक्ट उसमें आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट, फिर उसके बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट हो गया, जिसमें हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग, तीन चीजें जनरली होती हैं। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन है, और फिर उसके बाद ट्रेनिंग होती है। तो इनका प्रोसेस भी ऑलमोस्ट जैसे पुलिस का, जनरल पुलिस का प्रोसेस है, चाहे किसी स्टेट की हम बात करें, उसी पैटर्न पे रेलवे पुलिस फोर्स का भी, कॉन्स्टेबल का सेम पैटर्न पे रहता है, ठीक है। तो ये सारा एक स्ट्रक्चर है। अब कहने का मतलब क्या है कि देखिए, अगर आप पुलिस फोर्स में जाना चाहते हैं, अगर आप पुलिस फोर्स में जाना चाहते हैं तो आपको दो चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो आपको अपनी हाइट देखनी है, पहले आपने ये देखना है भी फिजिकल स्टैंडर्ड क्या आप पूरे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी बच्चे की हाइट कम है तो फिर क्लियर है भी, अगर हाइट कम है तो वो फिजिकल स्टैंडर्ड पूरे नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो फिर उसे पुलिस में जॉब लेने का सपना लेना ही नहीं चाहिए, पहली चीज, ठीक है। दूसरा क्या होता है, सेकेंड थिंग इसमें क्या है कि फिर अगर आपकी हाइट और चेस्ट और हम ये कहें कि ये सारी चीजें उसके स्ट्रक्चर में है, फिर आप अपनी बात करिए कि उसके बाद में फिर आपको अगर पुलिस फोर्सेज में जाना है तो टेस्ट की और फिजिकल टेस्ट की दोनों की तैयारी आप साथ साथ रखो। मैं आपको बताता हूं, जैसे अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम है तो आप हरियाणा में या दिल्ली के आसपास के एरियाज में बहुत बच्चे ऐसे हैं जो एक टाइप से इसकी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं लग के, ठीक है, बट उनको फिर उसके साथ टेस्ट की प्रिपरेशन भी करनी है, ठीक है। अगर टेस्ट क्वालिफाई नहीं होगा तो आप कितने भी स्पोर्ट्समैन हो, कितना भी फिजिकल आपका हो, तो वो बात नहीं बन पाएगी। तो दोनों चीजों पे आपने ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ये टारगेट मेक करके करने वाली बात है, तो आप दो तीन स्टेट्स की पुलिस फोर्सेज में अपना ट्राई कर सकते हैं और थोड़ी सी मेहनत की जाए तो क्वालिफाई भी किया जाता है। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आर्मी का कोई भी भर्ती है या आर्मी के थ्रू किसी भी टाइप की रिक्रूटमेंट है तो वो भी आप उसको टारगेट कर सकते हैं साथ साथ, जिससे आपके चाहे आर्मी में हो जाए चाहे आपका पुलिस में हो जाए तो दोनों पे आपका फोकस हो सकता है। बाकी जितने भी हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं तो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में फिजिकल टेस्ट नहीं होता, बाकी में तो सब आपका टेस्ट प्री मेंस का स्ट्रक्चर रहता है, ओनली आर्मी और पुलिस में आपका ये सारा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको आज के सेशन में पुलिस फोर्सेज के बारे में बताया जिसको आप टारगेट कर सकते हैं अगर आपने ट्वेल्थ किया हुआ है, क्योंकि कांस्टेबल की वैकेंसीज के लिए तो ट्वेल्थ ही मांगा जाता है और एएसआई या सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी के लिए आपको ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, ठीक है।
1: आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम चांद खान है, मैं राजस्थान के दौसा जिले के सिकराय तहसील के गिजगढ़ गांव का रहने वाला हूँ, जहाँ पर रेड इंडिया का सेंटर है गिजगढ़ ज्ञान केंद्र के नाम से है। सबसे पहले मैं आपको गिजगढ़ के बारे में बताता हूँ कि यह गांव पहाड़ियों से चारों तरफ से घिरा हुआ है, 100 से अधिक पुराने मंदिर हैं, इसकी आबादी करीब 15,000 के करीब है। यहाँ के लोग गाँव से शहरों की ओर पलायन कर रहे थे रोजगार के लिए, तभी एक गिजगढ़ गाँव में रेड इंडिया संस्था आई जो 8 मार्च को आई थी, जिससे लोगों को रोजगार में काफ़ी सहायक रही क्योंकि लोगों ने वहाँ पर उनको हुनर सिखाया गया, स्किल सिखाया गया। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ आप लोगों को कि मैं कहीं भी नहीं जाता था, ना ही मैं किसी से बात किया करता था। आज मेरे अंदर इस संस्था के अंदर मुझे काफ़ी सीखने को मिला, मैंने काफ़ी ट्रेनिंग्स में जैसे हेल्थ कैंप है, रेडियो ट्रेनिंग है, मोबाइल वाणी है, ताराक्षर, इनमें काफ़ी पार्टिसिपेट किया मैंने और यूथ ने, तो मैंने बहुत कुछ सीखा और आज मैं इस संस्था में काम कर रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पर एक वॉलेंटियर था और आज मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। इस संस्था के कार्य में हमारे सेंटर कोऑर्डिनेटर चंद्रप्रकाश जी का भी बहुत सहयोग रहा है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इस संस्था के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पर जो स्किल वगैरह है उनके बारे में बताता हूँ मैं आपको। लाइब्रेरी के अंदर हमारा सबसे पहला पार्ट आता है लाइब्रेरी सेक्शन। लाइब्रेरी के अंदर काफ़ी यूथ, काफ़ी बच्चे आया करते थे पढ़ने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की और आज वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। कंप्यूटर सेक्शन के अंदर बच्चों ने कंप्यूटर सीखा, स्किल सीखा कंप्यूटर का, आज वो प्राइवेट जॉब कहीं पर कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं। ब्यूटी पार्लर है, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, ECD है, तो इन सब के अंदर काफ़ी हुनर सीखा और आज वो खुद कमा रहे हैं। ECD सेक्शन में बच्चों को पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था, फ्री सिखाया जाता था उन बच्चों को, उसके बाद में स्कूल में एडमिशन दिलाया जाता था। जो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम थे जैसे कि ऑर्गेनाइज किए गए थे रेड इंडिया द्वारा गिजगढ़ गाँव में, हेल्थ कैंप है, रेडियो प्रोग्राम है, होटल मैनेजमेंट है, ताराक्षर है, किसान मोबाइल है, हैंडीक्राफ्ट है और हैंडलूम ट्रेनिंग है। जैसे हेल्थ कैंप के अंदर गांव में काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया जो हेल्थ कैंप लगाया गया था, रेडियो प्रोग्राम के अंदर काफ़ी यूथ ने पार्टिसिपेट किया, होटल मैनेजमेंट में काफ़ी बच्चों ने सीखा और आज वो वर्क कर रहे हैं, तारा अक्षर में जो महिलाएँ साइन सिग्नेचर करना तक नहीं जानती थी, अंगूठा लगाती थी, उन महिलाओं को पढ़ाया और उन महिलाओं को सिखाया। किसान भाइयों के लिए किसान मोबाइल वाणी का एक प्रोग्राम चलाया गया था, हैंडीक्राफ्ट का प्रोग्राम महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई थी और आज महिलाएं जॉब वर्क कर रही हैं और काफ़ी इनकम भी कर रही हैं। हैंडीक्राफ्ट है तो हैंडीक्राफ्ट के अंदर जॉब वर्क करके ही कमा रही हैं। हैंडलूम ट्रेनिंग दी गई थी औरतों को, तो हैंडलूम के अंदर कपड़ा बनना सिखाया गया था, तो औरतों ने कपड़ा बनना सीखा और खुद इनकम जनरेट कर रही है। स्टिचिंग, ब्यूटी पार्लर, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इनके अंदर काफ़ी स्किल सीखा औरतों ने और आज औरतें खुद कमा रही हैं, खुद खुद की इनकम जनरेट कर रही हैं, खुद का घर खर्च चला रही हैं। जो हमारा रोज़गार का प्रोग्राम था वो गांव से शहरों की ओर लोग जा रहे थे रोज़गार के लिए, वो रुक गए और काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला और इसमें काफ़ी गरीब परिवारों को सहायता मिली। उसके बाद हमारे पास भारतीय वॉलमार्ट के वर्क आया था बैग्स का, तो जिन औरतों ने हमारे पास स्किल सीखा था उन लोगों को वह वर्क दिया गया। उन लोगों ने काफ़ी पैसा किया, इनकम किया इस भारतीय वॉलमार्ट में। 10,000 से अधिक लोगों को ट्रेनिंग रेड इंडिया संस्था द्वारा दी गई है। रेड इंडिया संस्था द्वारा स्किल सिखाया गया था औरतों को, औरतों में काफ़ी स्किल हुआ। जो औरतें घर से नहीं निकलती थी, जो औरतें घर तक ही सीमित थी, उन औरतों ने ट्रेनिंग ली और आज खुद की शॉप खोल रखी है घर के अंदर मार्केट में। जो औरतें शॉप नहीं खोल पा रही, वो औरतें आस पड़ोस के कपड़े सिलकर इनकम जनरेट कर रही है। जैसे मैं कुछ नहीं जानता था और मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ आकर, और आज मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। हमारे सेंटर कोऑर्डिनेटर चंद्र प्रकाश जी का इसमें बहुत सहयोग रहा। धन्यवाद रेड इंडिया, धन्यवाद गीता मैम।

0: पिछले 5 सेशन कैसे लगे सबको? मेरे को बताएं, कोई फीडबैक दें कि पिछले 5 सेशन कैसे लगे। किसी के कोई सुझाव, कोई सजेशन, कोई कुछ शेयर करना चाह रहे हैं?
1: जी, मैं चंद्रप्रकाश बोल
0: हाँ जी चंद्रकर जी।
1: रहा हूँ। ये 5वां सेशन बहुत बढ़िया है मैम। और इसमें खास बात तो इसमें दो पॉइंट मुझे ज्यादा रहे। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी और ये चैलेंज। यदि जिम्मेदारी और चैलेंज दोनों है तो मैम अपने आप ही अपने आप आदमी कवर कर सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी, देखिए उसमें कोई भी एक थिन लाइन की भी वो नहीं आनी चाहिए कि नहीं ये मेरा काम नहीं है, राइट?
1: हाँ,
0: Right?
1: दूसरा
0: वो
1: चैलेंज है
0: हर
1: तो
0: एक के लिए बहुत जरूरी है। वेरी गुड। चैलेंजेस तो अभी आज के सेशन में मैं यही बताऊंगी कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम
1: बिल्कुल
0: चैलेंजेस को कैसे कम कर सकते हैं। वो खाली सोच है हमारी, उसके ऊपर आज हम फोकस करेंगे। और फिर भी अगर हम नहीं हैंडल कर पा रहे हैं और कोई ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने आ जाती हैं, और
1: जी।
0: रीड कोई अकेला तो नहीं है, चंद्रप्रकाश जी अकेले तो है नहीं रीड में। रीड में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई ना कोई सोल्यूशन होगा उस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए। तो द ओनली थिंग इज दैट वी हैव टू कॉम्युनिकेट इफेक्टिवली, कि हमारी कॉम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए हम लोग शाई फील नहीं करें अपने चैलेंजेस को शेयर करने के लिए। ये फर्स्ट स्लाइड का, फर्स्ट सेशन का थर्ड या फोर्थ स्लाइड है जिसमें मैंने कहा था कि हम आइसोलेशन में कुछ नहीं कर सकते हैं। जब मैंने वो स्टोरी सुनाई थी टी बैग वाली, तो हम आइसोलेशन में तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो अगर आज कोई चैलेंज है राजस्थान में, तो शायद महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, मे बी बिहार, और कहाँ कहाँ हम प्रेजेंट है, किसी के पास तो कोई सोल्यूशन होगा,
1: बिल्कुल नहीं।
0: राइट? हाँ, तो हमारा जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है ना, अभी एट प्रेजेंट हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने साइलोज में काम कर रहे हैं, हर सेंटर अपने साइलो में काम कर रहा है। और थोड़ा बड़ा है थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम सारे लोग इकट्ठे जुड़ते हैं और हम बात करते हैं। और कम्युनिकेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन, सी बहुत जरूरी है। हेल्दी का मतलब है कि हम इकट्ठे मिलके, यू यू कैन रियली, आई एम अमेज्ड कि कितनी स्ट्रेंथ है।

0: बनी रहे, बीच में डिस्टरबेंस नहीं आनी चाहिए कोई। तो एनीबडी एल्स?
1: हेलो, गुड आफ्टरनून मैम, कैसी
0: गुड आफ्टरनून फरा।
1: हैं मैम?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ फरा। अभी तो तुम तो बहुत अच्छी एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आई हो, तुम तो मेरी जगह पे
1: नहीं
0: आके सेशन ले सकती हो।
1: नहीं जी,
0: हाँ
1: अभी मुझे जो पूरे सेशन में ज्यादातर सबसे अच्छा टॉपिक लगा था वो पैशन आपका, कि हमें हर काम करने के लिए एक हमारे अंदर पैशन होने बहुत जरूरी है। जब भी अगर हमारे अंदर पैशन होगा तभी हम उस काम को आगे तक कर पाएंगे। पैशन नहीं होगा, जुनून नहीं होगा उस काम के प्रति, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कहेंगे कि ये सब हो
0: बिल्कुल
1: जाएगा, नहीं हमें नहीं करना है। तो हमें उसके प्रति एक पैशन होना हमारे दिमाग के अंदर, हमारे अंदर बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। पैशन के साथ हंगर भी होना बहुत जरूरी है उस काम को करने के लिए। पैशन तो है, जुनून है, पर जुनून को एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए वो भूख भी होनी चाहिए कि मैं कौन कौन से एक्शन को करूं जिससे मैं अपने मकाम पर पहुंच सकूं।
1: बहुत
0: बहुत
1: अच्छा, थैंक
0: बढ़िया फरा।
1: यू
0: कोई एक
1: मैडम।
0: सिंगल लर्निंग आप अपनी 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में से शेयर कर सकते हो? क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड नहीं करी है, देखो मैंने आप लोगों को स्पॉन्सर किया था, तो आप एक लर्निंग शेयर कर दो प्लीज।
1: यस मैम, मैंने उसमें सबसे जो अच्छा सीखा है, जो सबसे बढ़िया टॉपिक सीखा है, कि खुद के लिए जानना कि खुद को किस तरीके से, हम कभी भी अपने लिए नहीं सोच पाते। हम हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं कि हम जैसे पेरेंट्स के लिए, भाई बहन के लिए, अदर किसी काम के लिए, लेकिन हम खुद को कभी नहीं जान पाते कि हमें खुद के लिए भी कोई एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज मैंने उसमें ये सीखी है कि हमें खुद के बारे में लिखना बहुत जरूरी है। जितना भी हम दिन भर में काम करते हैं उसको हम लिखें जरूर, चाहे वो कुछ भी काम हो, उसको हम अपना एक आदत बना लें लिखने का। जैसे हमारा खाने खाने का एक आदत है, चाय पीने की सुबह मॉर्निंग में एक आदत है, तो लिखने की भी हमें अपने अंदर एक आदत बना लेनी चाहिए कि जो भी काम हम दिन भर में करते हैं उसको हमें लिखना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लिए, और खुद को
0: बिल्कुल
1: जानना
0: बिल्कुल
1: बहुत जरूरी है। यस मैम,
0: बिल्कुल। ये फरा, ये जो लीडरशिप के सेशंस हैं, ये हम खुद को ही तो एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, अंदर हमारे अंदर कितनी शक्ति
1: यस मैम,
0: है। हाँ, और ये शक्ति को जानने के लिए जब हम शक्तिशाली होंगे तो हम दूसरों को शक्तिशाली बनाएंगे ना। तो अगर हमारा थॉट प्रोसेस क्लियर होगा, हमारी लर्निंग क्लियर होंगी, हमारा वे ऑफ वर्किंग क्लियर होगा, हम पैशनेबल होंगे काम करने के लिए, तो तभी हम दूसरों को भी एम्पावर कर पाएंगे, है ना। और लिखने की आदत तो बहुत अच्छी है, ये हमें लिखना भी चाहिए हमारी लर्निंग्स। ये मैंने कहीं पहले भी ये बोला हुआ है और मैं खुद लिखती हूँ।
1: यस
0: मैंने ये
1: मैम,
0: बोला था, मुझे याद है कि अगर आप सब लोग लिखना शुरू कर दो तो कितनी सारी किताबें हम पब्लिश कर सकते हैं रीड की लाइब्रेरीज में रखने के लिए। जो नई जनरेशन आ रही है वो पढ़े कि आप लोगों ने काम कैसे किया, राइट। तो
1: यस
0: ये बहुत बहुत जरूरी है लिखना। जो हमने लिखना शुरू किया है आप लोग भी लिखिए, बिकॉज हर एक की कम्युनिटी फर्क है, हर एक के लोग फर्क हैं, हर एक का चैलेंज फर्क है। और अगर हम काम को देखें, चलो रीड मॉडल तो सबका कॉमन है, बट जो आप प्रोडक्शन यूनिट चला रहे हैं, जो आप स्किल्स दे रहे हैं वो वेरी कर रहे हैं, है ना।
1: यस
0: जो आप
1: मैम,
0: चंद्र प्रकाश जी वीविंग सिखा रहे हैं, सरा जरी सरदोजी सिखा रही है, कहीं और पे कुछ और चल रहा है, तो इसको प्लीज आप डॉक्यूमेंट करिए। ये एक आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो होगी, ये एक लर्निंग बाइबल होगा दूसरों के लिए जिन्होंने ये चीज करी नहीं है, है ना।
1: यस मैम,
0: और आप आपकी जनरेशन में अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो जो नेक्स्ट पीढ़ी आएगी वो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेगी, समझेगी कि कैसे किया था, राइट।
1: यस मैम, यस मैम, बिल्कुल
0: हाँ,
1: राइट।
0: तो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ, फिर बीच बीच में हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो
1: ओके
0: सवा
1: मैम,
0: तीन हो
1: थैंक
0: गए।
1: यू मैम, ओके।
0: हाँ, तो हम आज तो हम स्टोरीज ही डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारी स्टोरीज मैं डिस्कस करूंगी यहाँ पे आज। और मैं स्क्रीन को थोड़ा नीचे कर रही हूँ। हाँ, पहली स्टोरी हम आज एक बात करते हैं कि एक गांव था, उसमें एक मॉन्स्टर रहता था। हिम्मत करके एक गांव का आदमी जाता है मॉन्स्टर को किल करने के लिए तलवार लेकर। तो मॉन्स्टर क्या करता है, उससे दुगनी बड़ी तलवार लेकर उसको मार देता है। बहुत लोग डर जाते हैं।

फिर थोड़े दिन के बाद, क्योंकि दिमाग में तो वो मॉन्स्टर, और वो बोलते हैं इस मॉन्स्टर को हम खत्म करते हैं और फिर हम मतलब कि अच्छे से रहे. तो दूसरा आदमी कहता है, अच्छा तलवार से तो मरा नहीं, मैं इसको जला के ही आ जाता हूँ. वो उसको जलाने जाता है तो मॉन्स्टर अपने मुंह से फायर बॉल्स निकालना शुरू कर देता और उस आदमी को जला देता. अब जब ये दो इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो गांव वालों के पास जो सोच है, आप देखिए इस कहानी को अपनी सोच, अपनी एटीट्यूड, अपनी परसेप्शन से जोड़िए. अब वो गांव वाले बहुत ही घबराए हुए कि अब हम इस मॉन्स्टर को कैसे खत्म करें. तो एक दिन एक बच्चा कहता है कि मैं मॉन्स्टर के सामने जाना चाहता हूँ. वो गांव वाले बहुत हैरान कि ये बच्चा मॉन्स्टर के सामने कैसे जाएगा, बच्चा मर गया तो मुझे जाना है. तो गांव वाले लोग वो लेके आए मॉन्स्टर के सामने. तो मॉन्स्टर के सामने वो चाहे कि कोई तलवार होनी चाहिए, कोई बंदूक होनी चाहिए, कोई लाठी होनी चाहिए. वो बेचारा तो एप्पल खा रहा था, तो उसके हाथ में एप्पल था, वो एप्पल लेके मॉन्स्टर के सामने चला गया और मॉन्स्टर के सामने अपना हाथ खोल के मॉन्स्टर को एप्पल दे देता है कि तुम खा लो. तो मॉन्स्टर वो एप्पल खा लेता है. अब मॉन्स्टर क्या करता है कि अपनी जो मुट्ठी है वो बच्चे के सामने ऐसे करता है. तो लोग बड़े डर जाते हैं कि ये मुट्ठी से तो ये बच्चे को कुचल ही देगा, बच्चा छोटा सा है, मॉन्स्टर तो इतना बड़ा. तो जब वो उसकी मुट्ठी खुलती है तो लोग, गांव वाले लोग इतने हैरान हो जाते हैं, उसमें से उससे भी बड़े दो एप्पल वो बच्चे के सामने देता है और बच्चे को ऑफर करता है. बच्चा खुशी खुशी अपने दोनों हाथों से वो दोनों एप्पल उठा लेता है. तो वो ना मॉन्स्टर और बच्चे की आपस में दोस्ती हो जाती है. मॉन्स्टर बच्चे की तरफ देखे, परसेप्शन उसी समय बदल जाती है कि क्या हम क्यों सोच रहे थे मॉन्स्टर को मारने के लिए. मॉन्स्टर तो हमारे लिए ब्लेसिंग है, उसने तो हमारे बच्चे को देखो दो सोने के पॉट दे दिए जूस भर के, और हम तो सोच रहे थे कि हम इसको मार दें. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ, मोस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स अपीयर एज दे डू बिकॉज ऑफ द वे वी लुक एट दैम, राइट. हमने कभी ये नहीं सोचा कि मॉन्स्टर के साथ जाके बात कर लें या उससे पूछ लें या वो क्या चाहता है हम लोगों से उसके बारे में जानने. पर वो बच्चे ने उसको फ्रेंडली एटीट्यूड दिखाया और वो बच्चे के साथ फ्रेंड हो गया. हम पता क्या करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, मेरे बच्चे भी वो करते हैं, मैं भी करती हूँ, मेरी फैमिली में भी होता है, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी होता है, ऑफिस में भी होता है. हम ना नेगेटिव बात बोलने की आदत बना लेते हैं, ये नहीं हो सकता, ये कैसे होगा. तो ये स्टोरी मैंने पर्पसली सेलेक्ट करी थी ये सोचने, ये बताने के लिए कि हमारे एटीट्यूड पे, हमारी सोच पे बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं. और जो मैं आपको बता रही थी कि हम घर पे किसी से भी पूछते हैं, कोई बाहर से आया है, तो एक तो ये होता है कि हम बहुत थक गए. और मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, मैंने कभी भी कितने भी थके हुए हूँ मैं कभी नहीं बोलती हूँ मैं थक गई, बिकॉज मेरे लिए ये नेगेटिव वर्ड्स हैं. अब अगर आप थक गए हो और अगर आप किसी को बोल रहे हो कि आप थक गए हो, वो क्या करेगा आपको. देखिए आप हेल्प तो कुछ नहीं है, जो आपका काम है वो आपको करना ही है. सिंपथी गेन करोगे ना, तो क्या आप सिंपथी लेने के लिए अपनी पर्सनालिटी को ग्रो कर रहे हो. नेवर. कोई भी घर में आता है आप उनसे पूछो, नॉर्मली आपको ये आंसर मिलेगा, हाउ वाज द डे, पूछोगे आज का दिन कैसा था, बहुत ही स्ट्रगल स्ट्रगलफुल था या कुछ. हमेशा नेगेटिव सोचने को मिलता है, पॉजिटिव बहुत रेयर मिलता है. जब बहुत ही अच्छा पॉजिटिव लेते हैं हम कभी नहीं बोलते कि आई एम सो थैंकफुल टू ऑलमाइटी कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा निकला और आई एम बैक होम. आई एम जस्ट गिविंग यू टू कंट्रास्ट एग्जाम्पल्स कि हाउ
आर डे टू डे कम्युनिकेशन हैपन्स एंड जो हम बोलते हैं, जो हमारे अराउंड अनसीन एनवायरनमेंट है वो उसको कैप्चर कर लेता है और आपको वही वापस आता है। तो ये हमारे ये स्टोरी का बहुत अच्छा मॉरल है सीखने के लिए कि हम कभी भी, कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम कभी भी कोई नेगेटिव बात नहीं बोले अपनी डे टू डे लाइफ में। नहीं है कि नेगेटिव बात होती नहीं है, नेगेटिव बात होती है, आपको काम को भी देखना है, आपको प्रोग्रेस को भी देखना है। तो नेगेटिविटी यू कैन नेम देम एज चैलेंज और नेगेटिविटी वट एवर इट इज, बट द वे ऑफ एक्सप्रेशन इज कि हाउ वी हैव टू यूज द वर्ड्स फॉर कम्युनिकेशन, बिकॉज जो नेचर है वो हमारी बात को, हमारे वर्ड्स को कैप्चर करती है जो हम समझते नहीं है, और वही हमारे पे वापस रिफ्लेक्शन आता है। अभी हम एक दूसरी और स्टोरी पढ़ते हैं। एक इंजीनियर था, उसने आर्मी ज्वाइन कर ली, और वैसे तो आर्मी में नेशनल डिफेंस एकेडमी से बच्चे आते हैं जो बहुत ही रिग्रेस ट्रेनिंग के बाद ज्वाइन करते हैं आर्मी, उनकी सिलेक्शन होती है। तो एक दिन कमांडर ने सबको बोला, इंक्लूडिंग दिस इंजीनियर हु ज्वाइन द आर्मी, कि आज संडे है और आज हम 10 मील भागेंगे। वो बच्चे तो नॉर्मल था उनके लिए जो एनडीए पास करके आए थे, पर जो ये इंजीनियर था उसके लिए तो इट वाज अ न्यू थिंग, और उसने बोला कि आई एम वेरी एंथुजियाज्म टू रन। वो 2 किलोमीटर ही भागा होगा कि उसकी टांगों ने जवाब दे दिया और वो थक गया। अब क्या हुआ, कमांडर ने उसको क्या बोला, द कमांडर केम नियर टू द इंजीनियर एंड सेड, अर्लियर यू वर रनिंग विद लेग्स, नाउ रन विद द पावर ऑफ माइंड। इट वॉज अ वेरी वेरी पावरफुल सेंटेंस। आई एम को रिलेटिंग विद वॉट आई सेड अर्लियर कि जो हम बोलते हैं उसका कभी कभी इतना बड़ा उसका असर हो जाता है, पर अगर हम पॉजिटिव बोले तो। कमांडर ने उसको क्या बोला, हे इंजीनियर रन रन, बिकॉज पहले तो तुम अपनी टांगों से भाग रहे थे, अब अपने माइंड की पावर से भागना शुरू करो। और वो सेंटेंस इंजीनियर के दिमाग में इतना रेजोनेट हो गया कि वो 10 माइल्स वो भाग गया। तो इसका क्या मतलब है कि वो सेंटेंस इतना पावरफुल था कि उसने उसमें, मतलब कि उसकी माइंड को इतना पावरफुल बना दिया कि उसने 10 माइल भाग लिया। अब इसका आगे हमने क्या सीखा इस स्टोरी से, ही रैन ए मॉडेस्टली सक्सेस। दूसरी स्टोरी आई है कि पहली वाली स्टोरी में वो सेंटेंस इतना पावरफुल था जो मैंने लिंक किया पहले वाले स्टोरी से कि जो हम बोलते हैं वही हमें वापस मिलता है। अब हम जब किसी को कुछ बोल रहे हैं तो हमें भी अपनी लैंग्वेज में वो सुधार करना चाहिए कि हम किसी को डिमोटिवेटेड लैंग्वेज नहीं बोले, हम किसी को नेगेटिव नहीं बोले, हम हमेशा सबको एनकरेज करें। एंड यू एज लीडर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू प्रैक्टिस दिस लैंग्वेज कि जिससे आप सबको मोटिवेट करते रहो। अब ये तीसरी स्टोरी है, एक कर्नल था, स्टोरी ऑफ ए कर्नल। वो अपना एक रेस्टोरेंट चलाता था और चिकन की जो डिशेस है वो बहुत वैरायटी में प्रिपेयर करता था, पर वहाँ पे एक फ्लाईओवर बन गया तो उसका जो रेस्टोरेंट था वो बंद हो गया। अब वो नेचुरली सबको पैसा चाहिए तो वो कमाना चाहता, तो उसने कहा कि मैं अपनी जो रेसिपी है ये मैं बेच देता हूँ रेस्टोरेंट्स को और मैं सिखा दूंगा जाके, और इट विल बी माई अर्निंग। तो उसने 1,000 कॉल करे, किसी ने उसकी रेसिपी नहीं ली। करता रहा करता रहा, और जब उसने 1,000 कॉल करने के बाद एक रेस्टोरेंट ओनर ने उसकी रेसिपी लेने के लिए तैयार हो गया। एंड दिस गेव

0: की अपील पर लोगों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया। बोस घर में नजरबंद कर दिए गए। इस दौरान उन्होंने नाटकीय ढंग से वहां से निकलने की योजना बनाई। उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली ताकि अंग्रेज उन्हें पहचान न सकें और वे पठान के वेश में घर से निकल गए। 19 जनवरी 1941 की रात बोस पहले बिहार गए, वहां से पेशावर के रास्ते काबुल, मॉस्को और रोम होते हुए आखिरकार जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में उनकी मुलाकात हिटलर से हुई। उन्होंने बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की।
1: दिस इज सुभाष चंद्र बोस स्पीकिंग टू इंडियंस इन ईस्ट एशिया। माय कंट्रीमैन इन ईस्ट एशिया, व्हाइल आई एम इन टोक्यो, आई डिजायर टू एड्रेस अ फ्यू वर्ड्स टू यू एंड आई हैव नो डाउट दैट यू विल गिव देम ड्यू कंसीडरेशन।
2: बोस 1943 में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए निकल गए और आजादी का संघर्ष जारी रखा। आजाद हिंद फौज को उन्होंने नया रूप दिया। नेताजी ने गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद के नाम पर आजाद हिंद फौज की रेजिमेंट के नाम रखे। आजाद हिंद फौज में एक रेजिमेंट ऐसी भी थी जिसमें केवल महिलाएं थीं। इसका नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया। नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज में युद्धबंदी और हजारों आम नागरिक शामिल हुए। बोस जापानी सेना की सहायता से ब्रिटिश साम्राज्य से लड़कर भारत को आजाद कराना चाहते थे। जब ब्रिटिश सेना ने मलय प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया तो बोस ने समर्पण न करने का फैसला किया और सोवियत संघ के समर्थन के साथ मंचूरिया से लड़ाई जारी रखने की योजना बनाई। मंचूरिया जाते समय ही उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बोस के मृत्यु के बारे में विवाद है।
0: माना जाता है कि नेताजी का अंतिम संस्कार किया गया और उनकी अस्थियां टोक्यो के रेकोजी मंदिर में रखी गईं। हालांकि इस बारे में भी विवाद है कि मंदिर में रखी अस्थियां नेताजी की हैं या नहीं। इसके कारण कई तरह की धारणाएं बनी और माना गया कि शायद सुभाष इस हादसे में बच गए हों। गांधी जी ने नेताजी को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन नेताजी की आवाज आज भी लोगों के दिलों में देशभक्ति का संचार कर देती है।
1: आई डू नॉट नो हाउ मेनी ऑफ अस हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द कमिंग बैटल विल सर्वाइव टू सी इंडिया फ्री, बट वेदर वी सर्वाइव और नॉट, वेदर वी इंडिविजुअली लिव टू सी इंडिया फ्री और नॉट, वी आर कॉन्फिडेंट दैट इंडिया शैल बी फ्री।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।
1: आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि करियर्स इन मैनेजमेंट, कि जो मैनेजमेंट का फील्ड है जिसमें बच्चे बीबीए करते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए करते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो आज के इस सेशन में हम इस फील्ड से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, क्या क्या एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं एमबीए एंट्रेंस में, और किस टाइप से एमबीए होती है, कितने साल की होती है, ट्वेल्थ के बाद क्या ऑप्शंस हैं, ग्रेजुएशन के बाद क्या ऑप्शंस हैं, इसके साथ साथ इनके एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या आता है, एंट्रेंस सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, क्योंकि जैसे आपको मैंने एलएलबी में बताया था कि ओनली एग्जाम आपको अपियर करना है, वही अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम के साथ साथ आपका पर्सनैलिटी टेस्ट भी रहता है, इंटरव्यू है, जीडी है, ग्रुप डिस्कशन है, केस स्टडी है, तो काफी चीजें रहती है। तो मैनेजमेंट के से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जो जो और इसमें एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, तो आज का हमारा सेशन जो है वो इस चीज से रिलेटेड रहेगा।

ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसमें देखें भी, जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे आगे जो आता है कि वाई एमबीए, क्योंकि एमबीए होता है आपका मेंबर मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपकी डिग्री का नाम है। भी जो कोई बच्चा, जो भी किसी बच्चे को अगर मैनेजमेंट में अपना करियर बिल्डअप करना है तो वो जनरली एमबीए करता है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एमबीए से कैसे आप अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि एमबीए एक ऐसा स्ट्रीम है कि अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हैं तो आपका ग्रेजुएशन के बाद में 2 ईयर का कोर्स रहता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हैं तो कॉलेज से ही कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है आपका, और बहुत अच्छी सैलरीज है। मतलब अगर हम सैलरीज वाइज बात करें तो मैनेजमेंट प्रोफेशन में मैक्सिमम पेड प्रोफेशन होता है, मैक्सिमम सैलरीज आपको मिलती है, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद में आप अपना भी वर्क कर सकते हैं, अपना भी काम कुछ ना कुछ बिल्डअप कर सकते हैं। तो एमबीए में काफी एडवांटेजेस हैं, एक तो सैलरीज का बहुत अच्छा एडवांटेज है, सेकेंड क्या है कि आप अपने हिसाब से कंपनीज चेंज कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में काम करना है, जिस पर्टिकुलर सेक्टर में आप जाना चाहते हैं उसी सेक्टर में आप वर्क कर सकते हैं, फिर आप अपना वर्क भी कर सकते हैं। तो इस तरह से काफी एडवांटेज रहते हैं एमबीए करने के। बट यहाँ भी जो मेजर बात यही है कि आप कोई भी डिग्री करें, जैसे हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो हम IITs की बात करते हैं, अभी हमारा अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो। लॉ के बारे में आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि नेशनल लॉ स्कूल्स हैं। सिमिलरली जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट के अंदर आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अब IIMs आर द टॉप कॉलेजेस, और आज के समय 21 IIMs है इंडिया के अंदर, ऑलमोस्ट हर स्टेट में 1 IIM। देखिए हरियाणा में है तो IIM रोहतक में है, आप अगर यूपी में जाएंगे तो लखनऊ है। ठीक है, तो इस तरह से ऑलमोस्ट हर स्टेट में 1 IIM इज देयर, और जल्दी ही जितने भी स्टेट्स हैं सभी में IIM हो जाएंगे। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अपना टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, टॉप कॉलेजेस हैं, उसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं काफी ज्यादा, और आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सभी में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, तो वहां से आप एमबीए कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी से अगर आप एमबीए करते हैं तो फीस स्ट्रक्चर इज वेरी लेस, फिर प्लेसमेंट में भी इफेक्ट रहता है, बट प्राइवेट में जो आपके जो कॉलेजेस हैं तो वहां पर प्लेसमेंट काफी अच्छी है। तो इस तरह से एमबीए में आप बहुत इजीली, मतलब हम कहते हैं कि ना बहुत जल्दी आप अपने को सेट कर सकते हैं, अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इन सब बातों पे डिस्कस करेंगे। जैसे हम एमबीए की बात करते हैं तो ये सारे नाम हमारे सामने आ जाते हैं, अभी मैट है, कैट है, सीमैट है, स्नैप है, इरमा है, एनमैट है, ICET है। तो मतलब ये हम सब के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। ये जो मैंने एग्जाम्स के नेम लिखे हैं, कौन सा एग्जाम है, किसका क्या मीनिंग है, ठीक है, आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। मान लीजिए आप नहीं कर रहे हैं एमबीए, बट आपके फैमिली में आगे कोई आपका छोटा भाई बहन है या कोई आस पड़ोस में है जो आपसे करियर गाइडेंस के लिए आपके पास आता है, तो कम से कम आपको इन चीजों के बारे में पता होगा, तो आप उन्हें बहुत इजिली एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इन सब एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करेंगे आज के सेशन के अंदर। सबसे पहले थोड़ा आपको मैं ये बताऊं कि जो मैनेजमेंट होती है, जैसे एमबीए होती है, तो एमबीए में किन किन सेक्टर्स में आपको जॉब्स मिलती है, क्योंकि ये सारी स्ट्रीम्स हैं। ये जो यहाँ स्क्रीन पे आप देखेंगे, एमबीए फाइनेंस में होता है, मार्केटिंग में है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में है, इंटरनेशनल बिजनेस में है, रूरल मैनेजमेंट में है, सप्लाई चेन में, एग्री बिजनेस, मतलब ये सारी अलग अलग आपकी स्ट्रीम्स हैं। तो इन सभी, आप जब एमबीए करते हैं तो आपको किसी एक स्ट्रीम में स्पेशलाइजेशन करना होता है, और जनरली आप जिस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन आप करते हैं उसी स्ट्रीम के अंदर आपका करियर बिल्डअप होता है, उसी स्ट्रीम में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आप अपने इंटरेस्ट, देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं के करके थोड़ा बहुत आपको इन डिटेल बताऊं, जैसे फाइनेंस है, एमबीए इन फाइनेंस में एमबीए करते हैं, तो फाइनेंस जो लोग करते हैं बैंकिंग के अंदर, स्टॉक मार्केट कंपनीज के अंदर, ट्रेडिंग कंपनीज के अंदर उनको जॉब मिल जाता है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर, तो अगर आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट है, आपको अगर फाइनेंशियल ट्रांस या पैसे, आपके फाइनेंशियल की जो चीजें हैं
इफ यू आर इंटरेस्टेड दैट आप एमबीए इन फाइनेंस कर सकते हैं. सेकेंड वन इज मार्केटिंग, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है और आपको सेल्स में जाना अच्छा लगता है, लोगों से मिलना, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना, तो एमबीए मार्केटिंग की जा सकती है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है कि जैसे कंपनीज में या आपके कितने भी एनजीओ जो कंपनीज में एचआर मैनेजर होते हैं, एचआर मैनेजर का बेसिकली वर्क क्या है, रिक्रूट करना, ट्रेनिंग्स कराना लोगों की अपने एम्प्लॉयज की, सो दैट वो अपने आप को अपडेट कर सके टू द करंट पैटर्न. तो ये एचआर का वर्क रहता है. तो उनकी सैलरी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो सारा एचआर करता है. ठीक है, तो आप एचआर में भी कर सकते हैं. इंटरनेशनल बिजनेस में, फॉरेन कंपनीज में आप जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जो रिलेटेड चीजें हैं ये आप इंटरनेशनल बिजनेस में सीखते हैं. रूरल मैनेजमेंट में भी एमबीए होता है. आप देखेंगे एनजीओस के अंदर जो रूरल सेक्टर में वर्क करते हैं तो काफी लोग ऐसे आते हैं आजकल जो रूरल मैनेजमेंट में वर्क कर, जिसमें रूरल सेक्टर के अंदर कैसे मार्केटिंग की जाए, हाउ टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट. तो मतलब ये बहुत बहुत बड़ा स्ट्रीम है. मतलब हम जनरल सेंस में हम कह देते हैं कि मैं एमबीए कर रहा हूँ, बट एमबीए इज नॉट ए स्मॉल थिंग, ये बहुत बड़ा डोमेन है. ठीक है, तो ये इन सभी डोमेन्स में, एग्री बिजनेस है, हेल्थ केयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, या इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप में भी आप एमबीए कर सकते हैं. तो इट्स अ वेरी ह्यूज डोमेन और करियर अपॉर्चुनिटीज में काफी ज्यादा है. बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अच्छे कॉलेज से एमबीए करना, क्योंकि जब आप अच्छे कॉलेज से एमबीए करते हैं तो एक तो आपको वही कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाता है सबसे पहली चीज. और स्टार्टिंग में आप जहां भी आप ज्वाइन करते हैं तो दो चार पांच सालों के अंदर अंदर आप अपने आप को एक एस्टेब्लिश कर लेते हैं. तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एमबीए करने में कि कॉलेज च्वाइस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप देखते हैं आपको काफी लोग ऐसे मिलेंगे कि एमबीए में स्कोप नहीं है. बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि एमबीए में स्कोप नहीं है. तो वो जितने भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि जैसे स्कोप नहीं है, तो उनका प्रॉब्लम क्या है कि वो उन कॉलेज से उन्होंने एमबीए किया हुआ है जहां पर प्लेसमेंट उनको नहीं हो पाया. ठीक है, तो इसलिए क्योंकि कॉलेज भी काफी ज्यादा है. तो सेम इंजीनियरिंग की जैसी पोजिशन एमबीए की भी है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना आपके लिए टारगेट होता है. तो हम सारी बात करेंगे आज कौन कौन से अच्छे कॉलेज है, उनके लिए आपको कौन कौन से एग्जाम्स अपियर करने हैं. तो ये हमारा आज के सेशन का एजेंडा है. तो अब तक तो काफी बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया और मैंने इंट्रोडक्शन पूरा आपको दे दिया है कि आज हम क्या अंडरस्टैंड करने वाले हैं आज के सेशन के अंदर. अब देखिए, पहले मैं थोड़ा सा आपको एमबीए के स्कोप के बारे में बताऊं भी कैसे कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज आपकी रहती है. अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में वर्क करना चाहते हैं, तो एमबीए इसके लिए एक सबसे अच्छा फॉर्म है. एमबीए करते ही आपको कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब्स मिल जाती है, प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर सकते हैं. अच्छा कॉलेज है तो आपको कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है, उसमें फिर आपको अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, एचआर में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में आपको प्लेसमेंट मिलता है. और फिर आपको उन्हीं जिस कंपनी में आपने वर्क करना स्टार्ट किया फिर आप उसमें धीरे धीरे काम भी कर सकते हैं. फार्मेसी की बात करेंगे पूरा कि हम लोग एक क्वेश्चन है जैसे मनोज जी का, तो हमने एक कंप्लीट सेशन आपका शायद नेक्स्ट टू जो नेक्स्ट सेशन है उसमें कल से डिस्कस करेंगे, तो वहां पर हम फार्मेसी के बारे में बात करेंगे. अभी आज का जो सेशन है वो हमारा मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो उसमें भी आते हैं फार्मेसी में, एंड में आपको मैं बताऊंगा. तो जैसे क्या है कि ये इन सब स्ट्रीम्स में आपको एक बार जॉब मिल जाए उसके बाद में बहुत जल्दी आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं. ठीक है, तो ये एक एमबीए की अपॉर्चुनिटी रहती है. सेकेंडली, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं. जैसे जितने भी बैंक्स हैं, सभी बैंक्स में, सभी इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी आती है. जैसे आईबीपीएस, मैंने आपको जब आपको मैंने गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बताया था तो आपको मैंने बताया था कि जैसे बैंक्स होते हैं तो बैंक्स के अंदर आपके बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर की वैकेंसीज होती हैं, इसके साथ साथ क्लैरिकल की, ऐसे ही बैंक्स में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसीज होती हैं जिसके लिए एमबीए इज द क्वालिफिकेशन. तो बैंक्स है आपकी, सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके साथ साथ इंश्योरेंस कंपनीज है, इन सब में
स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसीज आती हैं, तो जिसमें आपको भाई मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स को आपने स्टडी करना है, तो उसके बाद आप उनमें भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसे ही आप एमबीए के बाद टीचिंग स्ट्रीम में भी जा सकते हैं अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है। तो जैसे जिन कॉलेजेस में एज ए बीबीए पढ़ाया जाता है या एमबीए के जो कॉलेजेस हैं, तो आप उसमें एज ए टीचर भी वर्क कर सकते हैं, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके लिए सेम प्रोसेस है, आपको नेट का पेपर क्वालिफाई करना है, ठीक है, क्योंकि जो नेट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं साथ साथ, ठीक है। तो काफी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो एमबीए ऑफर करते हैं, तो उनमें कहीं भी आप एज ए टीचर काम कर सकते हैं, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, या जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर आपके मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में यू कैन वर्क एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो काफी ज्यादा स्कोप है, मतलब ये आप एज ए प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी कर सकते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट जॉब भी आपको मिल सकती है, उसके साथ साथ आप एज ए टीचर, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप वर्क कर सकते हैं। तो ये सारा स्कोप है एमबीए करने के बाद में। एमबीए में एक सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या है, जैसे आपको मैंने लॉ के बारे में बताया था कि जो एलएलबी है वो आपकी बैचलर डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं होती, जबकि मैनेजमेंट एमबीए जो है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। तो इसके बाद आपको मास्टर डिग्री करने की नीड नहीं है, ये इक्वलेंट टू एमकॉम, एमए के इक्वलेंट इसे कंसीडर किया जाता है। तो कहीं भी ऐसी वैकेंसी जहां पर आपको मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है, तो आप वहां पर एमबीए यूज कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज इक्वलेंट टू द मास्टर डिग्री। तो ये मतलब काफी ज्यादा स्कोप हो जाता है। अब वैसे और एंट्रेंस में क्या क्या आता है, तो हम उन चीजों के बारे में समझेंगे। अब देखिए एमबीए में जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इस चीज को, क्योंकि आप देखिए आप कुछ भी करिए, आप किसी भी एग्जाम में जाए, चाहे आपने एसएससी का एग्जाम दिया, चाहे आप और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम आप देते हैं, आप एमबीबीएस के लिए देते हैं, लॉ के लिए देते हैं, तो सभी एग्जाम्स के अंदर ओनली आपका एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। ओनली एक ही स्टेज होती है, उसमें आपका टेस्ट लिया जाता है। एंट्रेंस टेस्ट के अंदर आपकी जहां भी मेरिट बनेगी उसके अकॉर्डिंगली आपको एडमिशन मिलता है। वही मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स का प्रोसेस बिल्कुल अलग है। इसमें क्या होता है कि पहले तो आपको टेस्ट अपीयर करना पड़ता है, जिसको हम एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं, ठीक है। वो आपका ऑनलाइन भी है, कंप्यूटर बेस्ड भी है, जैसे जो टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स है, कैट का एग्जाम जिसे हम कहते हैं, कॉमन एडमिशन टेस्ट, अभी बताऊंगा सभी एग्जाम्स के बारे में। तो कुछ एग्जाम्स हमारे ऐसे हैं जो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड हैं, और सम एग्जाम्स आर देयर जो पेपर पेंसिल है। तो आप पहले स्टेप के अंदर आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद में आपका स्कोर आता है, उसके बेसिस पे आपको सेकेंड स्टेज के लिए कॉल किया जाता है। अब सेकेंड स्टेज क्या होती है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्स के बारे में पहले बात किया उनमें कहीं भी सेकेंड स्टेज नहीं है, सभी में ओनली एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। मैनेजमेंट में क्या है कि टेस्ट के बाद में आपको पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट होता है, जिसे हम पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं। आप पर्सनैलिटी टेस्ट में इंटरव्यू आपका होता है, इंटरव्यू में आपसे अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके स्किल्स चेक की जाती हैं, और इंटरव्यू में एक मेजर टारगेट जो रहता है इंटरव्यूअर का, वो ये अंडरस्टैंड करना रहता है कि आप एमबीए करना क्यों चाहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू डू एमबीए, ठीक है, व्हाई डू यू वांट टू गो इन द प्राइवेट सेक्टर। उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक की जाती है, इंग्लिश में कमांड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अच्छा एमबीए आपको अगर अच्छे कॉलेज से एमबीए करना है तो सेकेंड स्टेज में योर कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश मस्ट बी गुड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और वैसे भी आगे फ्यूचर में आप कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपको एक तरह से हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेजेस के अंदर यू मस्ट बी परफेक्ट। तो पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट के अंदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है। उसमें अलग अलग तरह से कई सारे एक्टिविटीज भी रहती है, जैसे यू ऑल नो अबाउट द जीडी, जिसे हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि वन टॉपिक इज गिवन टू द ग्रुप, 12 टू 13 स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, और एक टॉपिक उन्हें दे दिया जाता है और उन्हें उस टॉपिक पे डिस्कस करना होता है, 15 टू 20 मिनट्स इज गिवन टू देम,
और उसके बाद फिर वो जैसे जैसे बच्चे उसमें बोलते हैं तो उनके बेसिस पर कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल चेक की जाती है, कैसे आप स्पॉन्टेनियस आंसर कर रहे हैं, वेदर यू कैन स्पीक इन द ग्रुप और नोट, तो ये सारी चीजें चेक की जाती है। तो पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एमबीए में एडमिशन लेने के लिए और उसके बाद में वर्क करने में भी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी पॉजिटिव अप्रोच, सभी वेरी ऑल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाई वर्किंग, ठीक है। तो ये एक एमबीए का सिलेक्शन प्रोसेस है। अब आप समझेंगे कि जैसे ये सारी चीजें कैसे बिल्डअप की जाए, क्या क्या है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अभी, ये सारे टॉप एमबीए एग्जाम्स, जैसे सबसे बीच में आप देखेंगे कैट लिखा हुआ है, सीएटी। ये आप मानिए कि जैसे इंजीनियरिंग में आप जेई का पेपर देते हैं और आप एम्स के लिए, मतलब आप पीएमटी के लिए नीट का पेपर देते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट के लिए हम कैट का एग्जाम देते हैं, जो कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है कैट। आजकल आप देखेंगे, कल भी, यस्टरडे दैट वाज इनटू द न्यूज, क्योंकि कैट ने इस साल कुछ पेपर पैटर्न चेंज किया है, नवंबर के मंथ में एग्जाम होता है अगले साल के एडमिशन के लिए। तो दिस इज कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट, टॉप एमबीए कॉलेजेस के लिए एग्जाम रहता है ग्रेजुएशन के बाद में। अब एमबीए में भी आपकी दो स्टेजेस हैं, आप ट्वेल्थ के बाद भी एमबीए कर सकते हैं या आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। ट्वेल्थ के बाद अगर आप एमबीए करते हैं तो 5 ईयर प्रोग्राम रहता है, 5 साल की डिग्री आपकी रहती है, जिसमें पहले 3 ईयर आप बीबीए करेंगे, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और लास्ट के 2 ईयर्स में आप एमबीए करते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और वही अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करना चाहें तो फिर आपका 2 ईयर का प्रोग्राम रहेगा, ठीक है। तो उसमें अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, जैसे स्नैप लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपका सिम्बोसिस का एग्जाम है, ठीक है, इरमा है, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, अगर आप एनजीओ सेक्टर में काम करना चाहते हैं, सोशल सेक्टर में काम करना चाहते हैं, तो इरमा इज एट द टॉप, सबसे अच्छा कॉलेज है। ऐसे ही आपका जीमैट, अगर आप इंडिया से बाहर जाके एमबीए करना चाहते हैं तो आप जीमैट का एग्जाम देते हैं। तो ये अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, ठीक है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप फ्यूचर में मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहें। तो सबसे टॉप पे आपका कैट का एग्जाम रहता है। अब देखिए, इसमें मैंने आपको बताया जैसे ट्वेल्थ के बाद और ग्रेजुएशन के बाद दो स्टेजेस आपकी रहती हैं जिसमें आप एमबीए कर सकते हैं। तो पहले मैं ट्वेल्थ के बाद बताऊं भी कैसे कैसे आप कर सकते हैं, क्या एंट्रेंस एग्जाम आपको देना रहता है। ट्वेल्थ के बाद सबसे टॉप में जो एग्जाम्स रहते हैं वो आईपी मैट का एग्जाम रहता है, जिसको हम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट कहते हैं, आईपीएम। इसमें दो ही टॉप के मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर है और सेकंड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक। मतलब टू कॉलेजेस, टू आईआईएम्स आर देयर, जो आपको ट्वेल्थ के बाद 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमबीए प्रोग्राम ऑफर करते हैं, आईआईएम रोहतक एंड आईआईएम इंदौर, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि आपके वही सिलेक्शन प्रोसेस सेम है, फिर टेस्ट होगा पहले आपका, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। ट्वेल्थ के बाद ही आपका एग्जाम होता है मई के मंथ में, जैसे अगर आप अभी ट्वेल्थ में हैं तो नेक्स्ट ईयर मई के मंथ में आपका एग्जाम रहेगा। और इन एग्जाम्स में जो टॉपिक्स हैं वो कॉमन है, सभी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में वही चीज रहती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम मैथमेटिक्स कहते हैं, सेकेंड आपका वर्बल एबिलिटी, और थर्ड वन इज योर लॉजिकल रीजनिंग। तो ये मतलब 3 सेक्शंस आते हैं आपके हर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। वो आपका डिग्री ऑफ डिफिकल्टी चेंज हो सकता है, कैट में लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज्यादा है, कुछ एग्जाम्स में लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम है, बट आपको वही कॉमन टॉपिक्स प्रिपेयर करने रहते हैं। और सेकेंड इज योर पर्सनल इंटरव्यू, जो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के अंदर। तो 12th के बाद अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो उसमें आईपीएम का एग्जाम आप अपीयर करते हैं। इसके साथ साथ आपका डीयू जेट, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से, क्योंकि वहां एमबीए तो 12th के बाद नहीं है, वहां आपका 12th के बाद में अब बीबीए और बीएमएस है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है, तो उसके लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं। जैसे वैसे तो आपको पता है कि डीयू में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो 12th के मार्क्स के बेस पर होता है, बट जनरली मैनेजमेंट एग्जाम्स में 12th के मार्क्स नहीं है, मैनेजमेंट एग्जाम में वो एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, जिसको हम डीयू जेल कहते हैं।
ऐसे ही सिम्बोसिस का पेपर होता है, पुणे का एससीटी जिसे हम कहते हैं, ट्वेल्थ के बाद आपका गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी सीईटी का एग्जाम रहता है, नरसिम्हन जी बॉम्बे में एडमिशन लेने के लिए एनपैट का एग्जाम रहता है, मतलब ये सभी मैनेजमेंट एग्जाम्स हैं जो ट्वेल्थ के बाद होते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर आप ट्वेल्थ के बाद 5 ईयर एमबीए करना चाहें या 3 ईयर बीबीए करना चाहें, आपको एग्जाम्स को टारगेट करना है, और जो टेस्टिंग एरिया इज द सेम, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में भी करंट अफेयर्स का रोल काफी ज्यादा है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये एक ट्वेल्थ के बाद एमबीए करने का आपके पास में ऐसे ऑप्शन रहता है। फिर बात आती है, मान लो आपने ट्वेल्थ के बाद एमबीए नहीं किया, आप ट्वेल्थ के बाद आपने अपना ग्रेजुएशन किया, तो ग्रेजुएशन के बाद अब आपको एमबीए में जाना है, एमबीए करना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया जैसे कैट का एग्जाम होता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट, ये मतलब एक तरह से मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम इन इंडिया इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, इसे टफेस्ट एग्जाम भी कहा जाता है, क्योंकि बाकी एंट्रेंस एग्जाम में तो आपको एंट्रेंस पेपर देना है बस, बट कैट में एडमिशन लेने के लिए तो आपको पहले एंट्रेंस देना है, उसके बाद में फिर आपको स्टेज टू क्लियर करनी है। अब इसमें कौन कौन से कॉलेजेस हैं, ये कॉमन एग्जाम होता है, मतलब इसमें कैट के अंदर 100+ कॉलेजेस हैं, और वो सभी कॉलेजेस अपना एक सिंगल कॉमन एग्जाम लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जितने भी हैं, 21 IIMs आर देयर, वो सभी कैट के थ्रू एडमिशन लेते हैं। ऐसे ही FMS दिल्ली है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ये एक तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो MBA डिपार्टमेंट है उसे FMS कहते हैं, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ठीक है। तो वो भी कैट के थ्रू स्कोर लेती है। ऐसी MDI है गुड़गांव, आप अगर गुड़गांव में रहते हैं तो इसमें चौक से थोड़ा आगे जाएंगे तो MDI इंस्टीट्यूट आता है मेन हाईवे के ऊपर, तो दैट इज मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये भी एक टॉप MBA कॉलेज है, MDI जिसे हम कहते हैं, MDI गुड़गांव में। IMI है इन दिल्ली, SP जैन बॉम्बे में है, ये सब कॉलेजेस के नेम्स है। तो ये सभी जो कॉलेजेस है ये कैट का स्कोर लेते हैं, कॉमन एडमिशन टेस्ट, आपने सिंगल टेस्ट दिया, और सिंगल टेस्ट देने के बाद में आपका जो भी रिजल्ट आता है, स्कोर आएगा, उसके बेसिस पर अगर आपकी इन किसी भी इंस्टीट्यूट से कॉल आता है इंटरव्यू के लिए, फिर आप इंटरव्यू में अपियर करते हैं, वहां पर इंटरव्यू और GD रहता है आपका, उसके बाद में आपके दोनों मार्क्स एड करके फाइनली सिलेक्शन किया जाता है। तो ये सारे एग्जाम्स आप अपियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे आपको मैंने बताया कि और भी एग्जाम्स हैं जिसमें

आज का जो हमारा सेशन है वो आपके ट्वेल्थ के बाद कुछ आपके जो प्रोफेशनल कोर्सेज है ना उनके बारे में आज हम बात करेंगे। अभी से पहले हमने इन पे बात नहीं किया, अभी तक हमने मेडिकल के बारे में बात किया, नॉन मेडिकल के बारे में देखा, बीबीए एमबीए आपको मैंने बताया। आज का जो सेशन हमारा है उसमें हम होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, एफडीडीआई एक तरह से जो फुटवेयर डिजाइनिंग, मतलब इस तरह के जो प्रोफेशनल कोर्सेज है जो बच्चे ट्वेल्थ के बाद अपीयर करते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड आई होप आपको कई ऐसी चीजों का पता चलेगा, कई ऐसे कोर्सेज का आपको आइडिया हो पाएगा जो इन फ्यूचर आप अगर नहीं भी कर पाए तो आपके छोटे भाई बहन जो है या हमारे और जो लोग हैं जो अभी टेंथ क्लास में है, इलेवेंथ में है और आगे वो फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल सेशन है आज का हमारा। देखिए जो हम बात करेंगे करियर गाइडेंस, करियर गाइडेंस आफ्टर ट्वेल्थ क्लास, ठीक है। वैसे तो हमने ट्वेल्थ क्लास के बाद होने वाले बहुत तरह के एग्जाम्स के बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 12 सेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो उन 12 सेशन में हमने कई तरह के एग्जाम्स के बारे में बात किया। ये आप सबको पता है कि ट्वेल्थ के बाद लाइफ में कंफ्यूजन आ जाता है, एक बार तो ऐसा कंफ्यूजन होता है कि अब क्या किया जाए, ठीक है। उसमें कई बार पेरेंट्स प्रेशर भी होता है, फैमिली प्रेशर भी है, या हमारे साथ के जो बच्चे हैं उनका प्रेशर भी होता है कि उन्होंने किसी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन ले लिया तो हमको भी कहीं ना कहीं एडमिशन तो चाहिए, तो हम कई बार उनको देखम देखा एडमिशन ले लेते हैं किसी भी कोर्स में और बाद में फिर हमें फील होता है कि नहीं वो हमारी लाइन नहीं थी। तो कन्फ्यूजन ट्वेल्थ के बाद जनरली सभी के सामने आता है और वही बच्चा कामयाब हो पाता है जो उस कन्फ्यूजन को दूर करके और एक सही जो निर्णय ले वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसे चीजों के बारे में अवेयरनेस हो, ठीक है। तो आज जो मेरी बात करने का जो मेजर पोर्शन है, देखिए लॉ के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, बीबीए के बारे में आपको मैं पहले हम सेशन में हम बात कर चुके हैं, तो आज हम होटल मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं, जैसे जो मीडिया चैनल्स वर्क करते हैं, रिपोर्टर्स हैं, एंकर्स हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, ठीक है, आज उनके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ फैशन डिजाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कैसे अपना एग्जाम लेते हैं और कब एग्जाम होता है, ठीक है। इसके साथ साथ फुटवेयर डिजाइनिंग के बारे में बात करेंगे, तो ये आज के सेशन का हमारा इंपॉर्टेंट एजेंडा रहेगा कि और इन सब कोर्सेज को आप ट्वेल्थ के बाद ऑप्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, काफी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा जिनकी आप थोड़ी सी तैयारी करके अपना अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो फीस स्ट्रक्चर काफी कम है। और दूसरा क्या है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें रिजर्वेशन भी है, अगर आप एससीज एसटीज या बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपको फिर उसमें रिजर्वेशन भी मिल जाता है और फीस स्ट्रक्चर भी कम है। तो आज के जो है सेशन उसमें पहला टॉपिक जो मैं लूंगा, पहला एरिया और जो मैं लूंगा दैट इज होटल मैनेजमेंट, ठीक है। देखिए जनरली हमारे मन में अभी तक क्या रहता था कि होटल मैनेजमेंट का मतलब हमारे माइंड में ऐसा आता है कि हम किसी होटल में एज ए वेटर वर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं। होटल मैनेजमेंट एक बहुत ही वाइड स्ट्रीम है, ठीक है, और इसमें थोड़ी सी मेहनत करके आप अपना अच्छा करियर बना सकते हैं, पहली चीज। और

काफी वाइड एरिया रहता है, ठीक है, मतलब नाम होटल मैनेजमेंट है बट जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपकी काफी इंडस्ट्रीज में है। आप देखते हैं एयरलाइंस के अंदर भी काफी बड़ा स्टाफ होता है, तो उसमें मैक्सिमम बच्चे जो है वो होटल मैनेजमेंट से लिए जाते हैं। स्टार्टिंग सैलरी थोड़ी कम रहती है, 10 to 15,000 से स्टार्टिंग होता है, बट आप बहुत जल्दी 2-4 साल काम करने के बाद में आप काफी अच्छी ग्रोथ पा लेते हैं होटल मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। क्या क्या करियर्स हैं, आप अपना काम कर सकते हैं, अपना खुद का होटल ओपन कर सकते हैं, कोई आप फूड जंक्शन ओपन कर सकते हैं, सबसे पहली चीज एंटरप्राइज बिल्डिंग है। सेकंड, आपको जॉब मिल सकती है होटल्स के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, और ऐसे ही आप किचन मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं, मतलब एक अच्छा एरिया है होटल मैनेजमेंट का। अब मेरा कंसर्न जो है वो ये आपको समझाना है कि अगर आप अपने अगर लाइफ में होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो 12th के बाद ही आपको एडमिशन लेना होता है, ठीक है। मतलब बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, एम तो उनका होता है कि वो होटल इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता चल पाता कि होटल मैनेजमेंट में जाने के लिए आपका 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है, और फॉर्म आपको अप्रैल में ही एग्जाम हो जाता है। जैसे मार्च में आपके 12th के एग्जाम खत्म होते हैं, अप्रैल एंड में होटल मैनेजमेंट का एग्जाम होता है, ठीक है, और इसके जो पेपर का नाम है वो NCHMCT है, मतलब नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, JEE का एग्जाम होता है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है। इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है, IHM। जैसे हम अलग अलग फील्ड्स की बात करते हैं, हमने आपको मैंने आपको IIT के बारे में बताया था, आपको मैंने IIM के बारे में बताया, आपको मैंने एम्स के बारे में बताया था, तो ऐसे ही अगर हमें होटल मैनेजमेंट में जाना है तो हमें IHM में जाना होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में एक एक IHM जरूर है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ऑलमोस्ट सभी स्टेट में 1 IHM इज देयर, और IHM में जो होता है एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है जो आपने 12th के बाद देना है, ठीक है, और वो जो एग्जाम ऐसा आता है जिसमें आपका जो एलिमेंट्री टॉपिक्स होते हैं, जैसे हमने हर तरह के एग्जाम्स में हम बात करते हैं जिसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, GK है, इंग्लिश है, ठीक है, और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं होटल मैनेजमेंट के जो फिर अपना इंटरव्यू और GD भी कंडक्ट कराते हैं। जो IHM है उसमें ओनली टेस्ट आपका होता है और टेस्ट के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है IHM के अंदर। 3 साल का कोर्स रहता है, ठीक है, और उसमें आपको BSc मिलती है, BSc की डिग्री मिलती है होटल मैनेजमेंट के अंदर, और उसके बाद आपको मतलब वैसे तो कैंपस प्लेसमेंट भी हो जाता है, जहां से भी आपने किया है वहां के आसपास जो होटल्स हैं तो उसमें कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है, और 2-4 सालों में फिर आप अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट कर सकते हैं, किसी बड़े होटल में ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप IHM का पेपर दे सकते हैं 12th के बाद। ये कुछ कॉलेजेस के नाम है, जैसे IHM दिल्ली है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है, मुंबई में है, मुरादाबाद में भी है, भोपाल है, ग्वालियर है, दुर्गापुर है, मतलब ये कुछ जो टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया के उनके नाम है IHM के, ठीक है, और एक ही एंट्रेंस एग्जाम है, कोई अलग से कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। तो 12th के बाद ही आपको अगर आप होटल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो 12th के बाद ही आपको टारगेट करना पड़ेगा। इसमें जो डिग्रीज है आपकी BHM का डिग्री होता है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट का, BA इन होटल मैनेजमेंट भी है, BBA भी होटल मैनेजमेंट में है, आप इसमें मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं, क्योंकि होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में जो टीचर टीच करते हैं तो उनकी मास्टर डिग्री होती है, मास्टर्स इन होटल मैनेजमेंट होता है, ऐसे ही आप टूरिज्म होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। तो मतलब स्कोप ज्यादा है, थोड़ा सा उसको सीरियसली अगर वर्क किया जाए तो, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा था होटल मैनेजमेंट, ऐसे ही फैशन डिजाइनिंग। अब जो फैशन डिजाइनिंग है आप देखते हैं काफी बच्चों का एम होता है, ठीक है, कि फैशन टेक्नोलॉजी में हमें जाना है 12th के बाद, इसमें भी एडमिशन 12th के बाद में है। अगर हम 12th के बाद मिस कर जाते हैं तो फिर हमें ग्रेजुएशन के बाद एक तरह से डिप्लोमा कोर्सेज देखने पड़ते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होते हैं। अगर 12th के बाद ही एडमिशन हो जाए हमारा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 3-4 साल का आपका कोर्स रहता है और उसके बाद फिर प्लेसमेंट हो जाती है। तो फैशन डिजाइनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे टॉप कॉलेज की बात जो होती है वो NIFT है, नेशनल

0: इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, मतलब इंडिया में जैसे हर लाइन के कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे आपको मैंने होटल मैनेजमेंट में बताया तो IHM है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है, ऐसे ही अगर हम फैशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो फैशन टेक्नोलॉजी में जो कॉलेजेस हैं वो हमारा NIFT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जो सबसे टॉप पे आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसका पेपर ना 12th के बोर्ड के एग्जाम से पहले ही हो जाता है। मतलब देखो इस टाइम तो COVID-19 के कारण सभी पेपर आपके डिस्टर्ब हो रखे हैं, अदरवाइज अगर हम एक रेगुलर शेड्यूल की बात करें तो फैशन टेक्नोलॉजी का पेपर जो होता है वो जनवरी में हो जाता है आपका, ठीक है। तो मतलब अगर बच्चों को पहले से ही पता है तो वो इनकी तैयारी करके अपने 12th के साथ साथ ही, जैसी 12th पूरी होगी उनको साथ साथ ही एडमिशन मिल जाता है। कोई भी जो फैशन टेक्नोलॉजी का आपका पेपर है, जैसे NIFT होता है, तो उसमें आपके दो पेपर रहते हैं मेन। पहला आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये आपके कॉमन टॉपिक आते हैं। फिर आपका क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट होता है जिसे हम CAT कहते हैं। अब ये क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट क्या है, इसमें आपकी क्रिएटिविटी देखी जाती है, आपकी ड्रॉइंग कैसी है, पेंटिंग कैसी है, क्योंकि उसमें आपका ड्रॉइंग टेस्ट आता है, ठीक है। तो और वैसे भी आपको पता ही है कि अगर आप फैशन टेक्नोलॉजी में, फैशन डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसमें आप में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ड्राइंग पे आपकी कमांड होनी चाहिए, नए नए आइडियाज आने चाहिए आपको, तो उसका टेस्ट रहता है आपका जिसका नाम होता है CAT, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या होता है, इसमें अंडर ग्रेजुएट मतलब जो आपके ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी होते हैं, इसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी होते हैं, ठीक है। फैशन टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं कि ओनली आपने फैशन डिजाइनिंग की बात करनी है, इसमें बहुत स्ट्रीम्स हैं। जैसे आप देखेंगे ये मैंने अलग अलग कोर्सेज के नाम लिखे हैं जो NIFT ऑफर करता है, जैसे बैचलर इन डिजाइनिंग है फैशन डिजाइन में, लेदर डिजाइन में, टेक्सटाइल में, निटवियर में, ठीक है, फैशन कम्युनिकेशन में, अप्रैल प्रोडक्शन में, तो ये सारे कोर्सेज हैं, ठीक है, जो NIFT ऑफर करता है 12th के बाद। और ऐसे ही अगर आपने 12th के बाद मान लीजिए नहीं आप एडमिशन ले पाए तो ग्रेजुएशन के बाद भी आप देख सकते हैं, तो उसमें फिर आपके पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होते हैं, जैसे MDES है, मास्टर ऑफ डिजाइन है, मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब काफी कोर्सेज अवेलेबल है, और जो बच्चे इस लाइन में जाना चाहते हैं तो वो इन इन में से किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आप बैचलर डिग्री से करिए, चाहे आप उसके बाद मास्टर में जा सकते हैं, जो NIFT ऑफर करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। और अगर हम NIFT की बात करें तो ये एक जगह नहीं, मतलब इंडिया में कई जगह पर इसके इंस्टीट्यूट हैं। NIFT आपका दिल्ली में भी है, बेंगलोर में भी है, चेन्नई में भी है, पटना में है, गांधीनगर में है, हैदराबाद में है, इसके अलावा और भी काफी प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, MET नोएडा है, पर्ल अकेडमी है, सिम्बायोसिस का है, तो मतलब काफी इंस्टीट्यूट है, चाहे आप उसमें प्राइवेट कॉलेजेस में भी है इसके अंदर, और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट कॉलेजेस जिसमें आपको मैंने बताया NIFT, और NIFT जो है वो एक तरह से ऑटोनोमियस वर्क करता है और अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम लेता है। तो अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हैं इस लाइन में जाने के लिए, या आपके आसपास में कोई बच्चा जाना चाहता है इसके लिए, तो जब 12th में आप हैं तो उसी में ही आपने जनवरी में आपका, मतलब आप ये कह सकते हैं कि नवंबर के आसपास फॉर्म निकलते हैं और जनवरी में एग्जाम हो जाता है, जिसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है NIFT के लिए, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि प्राइवेट कॉलेजेस भी काफी ज्यादा है, थोड़ा सा ये हमें ध्यान देना पड़ता है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक डोमेन में जाना चाहते हैं तो हमें अपनी एबिलिटी भी देखनी चाहिए, चाहे हमारी योग्यता उसके लिए है या नहीं है, ठीक है। जैसे जो बच्चा फैशन टेक्नोलॉजी वाली लाइन में जाना चाहता है तो थोड़ा ये जरूर देखे कि वो क्रिएटिव माइंड है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो आपको नए नए डिजाइन के बारे में सोचना, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तो वही आपको फिर आगे लाइन पे अच्छे करियर ऑप्शंस आपके बन जाते हैं। अगर मैं इसमें करियर ऑप्शंस की बात करूं तो एक तो आपको देखो प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जॉब्स मिल जाती हैं, क्योंकि आप देखेंगे आज के टाइम में फैशन इंडस्ट्री अपने आप में टॉप पर है, रोज नए नए अपैरल्स आते हैं, नए नए टाइप के डिजाइन आते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आप वर्क कर सकते हैं। फिर इसमें सेल्स मार्केटिंग में भी काम रहता है काफी ज्यादा, उसके साथ साथ आप अपना भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जितने कोर्सेज है ना, ये एंटरप्राइज बिल्डिंग के लिए ज्यादा है। मतलब आप देखेंगे कि इसमें आपने अगर कोई भी, जैसे पहले आपको मैंने होटल मैनेजमेंट के बारे में बताया या फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में है, तो इसमें आप बहुत जल्दी अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। और आजकल तो ई मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग है कि इंटरनेट के थ्रू आप कहीं से बैठ के कहीं का सामान बेच सकते हैं, ठीक है, बस क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। तो थोड़ी सी मेहनत हो, थोड़ी सी चीजें आपको क्लियर हो, तो आप बहुत इजीली अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं फैशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी। फिर जर्नलिज्म, देखिए जर्नलिज्म भी फ्यूचर का करियर है। आज भी आप देखिए, आप किसी भी शहर से आप बिलोंग करते हैं चाहे, तो आप देखते हैं हर शहर में न्यूज़पेपर्स होते हैं, हर शहर में आजकल मीडिया चैनल्स भी आपके बन गए हैं। जैसे एक तो आपके वो चैनल्स हैं जो नेशनल चैनल्स होते हैं, फिर स्टेट लेवल पे भी काफी चैनल्स आ गए हैं, और आजकल फेसबुक या यूट्यूब के थ्रू लोकल लेवल पे भी काफी लोगों ने अपने मीडिया चैनल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो जब जहां भी मीडिया की बात होगी वहां पर जर्नलिज्म की बात रहती है, जिसे हम कॉमन सेंस में मास कम्युनिकेशन कहते हैं। कि अगर आपको जर्नलिज्म में कुछ भी करना है तो आप क्या करते हैं, मास कम्युनिकेशन का कोर्स करते हैं, ठीक है। अब उसमें ट्वेल्थ के बाद भी ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास में, अगर ट्वेल्थ के बाद नहीं तो आप अपना ग्रेजुएशन के बाद में मास्टर्स इन जर्नलिज्म या मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको जर्नलिज्म के बारे में बताऊंगा कि जर्नलिज्म में क्या क्या स्कोप है और कहां कहां पर आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, ठीक है, और उसमे कैसा एग्जाम होता है और क्या क्या स्किल आपके अंदर चाहिए इनमें करियर बनाने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा भी, जैसे एक जर्नलिस्ट होता है, देखो आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि उसमें पहले हम अपने आप को देखते हैं, अभी हमारे अंदर क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, क्या हमारे पास में उस फील्ड के लिए जो स्किल चाहिए, जो योग्यता चाहिए, जो कैपेबिलिटी चाहिए, क्या वो हमारे अंदर है या नहीं है, ठीक है। तो एक अच्छा जर्नलिस्ट बनने के लिए पहले तो कुछ चीजें हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए, अगर वो आपके अंदर है तो फिर आप इस कोर्स में जाएं तो आप अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। राइटिंग स्किल आपकी अच्छी हो, रिसर्च की आदत हो आपको, कोई भी बात है तो आप उसके अंदर तक जाने की ट्राई करें, ठीक है। कंप्यूटर स्किल्स हो आपको, टाइपिंग आती हो, इंटरनेट स्किल्स आपकी अच्छी हो, आपको कुछ सर्च करना है तो नेट पे आप सर्च कर पाए इनडेप्थ जाके, इंटरव्यू लेने की स्किल अच्छी हो आपकी। देखिए आप कभी भी किसी जर्नलिस्ट की बात करेंगे तो जर्नलिस्ट को क्या होता है कि अलग अलग सवाल पूछने पड़ते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे उतने ही उनको चीजों के बारे में ज्यादा पता चलेगा, ठीक है। तो आपको लोगों को इंटरव्यू लेना आपको आना चाहिए भी, कैसे कौन कौन सी बातें पूछी जाए ताकि उनसे पूरा चीजों के बारे में पता चल पाए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल, बोलने की क्षमता हिंदी में, इंग्लिश में, या आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, ताकि आप बहुत इजिली लोगों के साथ में संवाद पैदा कर सके, कम्युनिकेशन बना पाए, अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर पाए राइटिंग में भी और बोलने में भी। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की मीडिया में जाना चाहते हैं। अगर आप प्रिंट मीडिया में जाना चाहते हैं तो आपको लिखने की एबिलिटी होनी चाहिए, अपनी बात को आर्टिकल फॉर्म में लिखने का आप में योग्यता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो, क्योंकि आप देखेंगे कि जो जर्नलिस्ट होता है उसकी मैक्सिमम न्यूज जो है वो एक तरह से पॉलिटिक्स के बारे में होती है, क्योंकि लोकल लेवल पे या नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अगर है तो आप भी एक अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। फिर हमें ये देखना है कि जर्नलिज्म में क्या क्या कोर्सेज होते हैं। आप ट्वेल्थ के बाद में ग्रेजुएशन कर सकते हैं जर्नलिज्म के अंदर। जैसे आपने ट्वेल्थ किया तो वैसे तो आप ट्वेल्थ के बाद जैसे बीए करते हैं, तो आजकल आप देखेंगे कई कॉलेजेस हैं इंडिया में काफी जगह पर जो आपको जर्नलिज्म में बीए कराते हैं। बीए इन जर्नलिज्म जिसे हम कहते हैं, ये आपकी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होता है। तो इसमें लोकल लेवल पे भी आपके आसपास जो यूनिवर्सिटीज है उसमें भी जर्नलिज्म का कोर्स आपको मिल सकता है, नहीं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई कॉलेजेस में जर्नलिज्म का कोर्स है, तो जिसमें आपका बीए इन जर्नलिज्म है, ठीक है, या आपका मास मीडिया इन जर्नलिज्म है, या कम्युनिकेशन इन जर्नलिज्म है। तो इस तरह से ये अलग अलग कोर्सेज के नाम है जो सभी में एक ही तरह की आपकी टीचिंग रहती है जो आपको एक अच्छा मीडिया रिपोर्टर बनने में हेल्प करती है। और दूसरी बड़ी चीज कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपको ट्वेल्थ के बाद आपने नहीं एडमिशन लिया था, तो आप मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं जर्नलिज्म में, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सभी में एक जर्नलिज्म डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, तो उसमें आप एमए इन जर्नलिज्म कर लेते हैं, एक एंट्रेंस एग्जाम रहता है, आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना है और उसके बाद में आपका जर्नलिज्म में एडमिशन हो जाता है, ठीक है। अब स्कोप क्या है, स्कोप भी काफी वाइड है, मतलब जर्नलिज्म का जो स्कोप है काफी वाइड स्कोप है, जैसे आप एज ए एडिटर काम करते हैं न्यूज़पेपर में, कार्टूनिस्ट भी काम कर सकते हैं, कई लोगों की जो डिजाइनिंग स्किल काफी अच्छी होती है तो आप देखते हैं हर न्यूज़पेपर में कार्टून्स बने होते हैं, आप एज ए फोटो जर्नलिस्ट भी काम कर सकते हैं, प्रूफ रीडर, ठीक है, राइटर है, एंकर है, रिपोर्टर है, कॉलमनिस्ट है, स्पेशल रिपोर्टर है, मतलब फील्ड बहुत वाइड है। जैसे किसी भी फील्ड की हम बात करें तो उसमें एक ऐसा स्टिक नहीं कि आपने ये कोर्स किया तो उसके बाद एक ही जॉब है, नहीं, काफी तरह की जॉब है, डिपेंड करता है कि आपकी स्किल कैसी है और दूसरा आपको स्टार्टिंग कहाँ मिली है, किस इंडस्ट्री में किस जगह पर आपको स्टार्टिंग मिली है, उसके हिसाब से आप अपना करियर बना सकते हैं। पर आज के टाइम में आप सभी जानते ही हैं कि जो जर्नलिस्ट होता है, जो पत्रकार होता है, उसकी एक अपनी ताकत है, मीडिया की अपनी ताकत है, आप सबको पता है कि मीडिया चौथा स्तंभ है। अभी कई केसेस में, जैसे हाथरस का केस था या और भी काफी केसेस ऐसे हुए हैं जहां मीडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, अगर मीडिया वहां नहीं होता तो आप ये मान के चलिए कि शायद वहां पर केस वहीं खत्म हो जाते, मतलब उतना ज्यादा स्ट्रिक्टर एक्शन नहीं हो पाता। तो मीडिया एक अपना रोल प्ले करता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। आप देखेंगे जैसे अभी जो रिया चक्रवर्ती वाला केस है तो वहां पर मीडिया ने काफी नेगेटिव रोल प्ले किया, तो मतलब हर तरह की बातें हैं, पर ये कुल मिला के ये है कि एक अच्छा आपका करियर है, ब्राइट करियर है, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए और अगर आप में स्किल सेट है, और मेन थिंग तो ये है कि बोलने की स्किल सेट होनी चाहिए, अगर आप में बोलने की क्षमता है और आपकी एक्सप्रेशन एबिलिटी है तो इसमें भी बहुत अच्छा करियर आप बना सकते हैं। इसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें एंट्रेंस में क्या क्या आता है वो मैं आपको बता दूं। जनरली क्योंकि आजकल बहुत कम जगह पर ऐसा है कि जहां एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, आपका बीए बीकॉम में तो आपके ट्वेल्थ बेस पे ही एडमिशन होता है, पर उसके अलावा आप किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की बात करेंगे तो सभी प्रोफेशनल कोर्सेज में हमें कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम देना रहता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने आपको आज, जैसे आपको मैंने होटल मैनेजमेंट के बारे में बताया या हमने फैशन डिजाइनिंग के बारे में बात किया, तो इन सब में एंट्रेंस एग्जाम ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है, ठीक है, मतलब उसमें आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आता है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, ये कुछ आपकी बेसिक चीजें आती हैं जिनको आप मतलब ट्राई कर सकते हैं और जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। इंडिया में जो टॉप कॉलेजेस की अगर हम बात करें जर्नलिज्म के, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है दिल्ली के अंदर, सबसे टॉप पे इसका नाम आता है IIMC के नाम से, इसको हम आई स्क्वायर एम स्क्वायर भी कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। इसके अलावा जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन है, आपका सिम्बोलिसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, माइका है, मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म BHU है, पुणे है, ठीक है, भारतीय विद्यापीठ है, तो मतलब काफी कॉलेजेस है, ये तो मैंने कुछ कॉलेजेस के नाम लिखे हैं, पर अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि इसमें तो अभी जो जितने बच्चे हमारे पास पर है तो उसमें कोई हो सकता है एक या दो ही बच्चे इंटरेस्टेड होंगे इस तरह के कोर्सेज के अंदर, पर अगर आप थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में काफी नंबर ऑफ कॉलेजेस आर देयर जो जर्नलिज्म में डिग्री ऑफर करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद फिर आप अपना एज ए करियर स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है इसके अंदर कि मतलब बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड नहीं करना पड़ता। कई बार क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स या हमारी कुछ फैमिली समस्याएं, फैमिली प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर पाते अपनी पढ़ाई के ऊपर, तो इसमें कई कॉलेजेस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर काफी कम फीस में आप अपना पूरा कोर्स कर सकते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं कि अगर आप मास्टर्स करते हैं जर्नलिज्म के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी से तो मतलब बहुत ही नॉमिनल फीस पे आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। हाँ, दिक्कत वहां पर है जहां किसी प्राइवेट कॉलेज से अगर कोर्स करेंगे तो वहां थोड़ी फीस ज्यादा है, बट अगर हम किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो कम फीस में एडमिशन हो जाता है और करियर आप अपना बना सकते हैं। जर्नलिज्म का एक दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप अपने आप में पावरफुल भी फील करते हैं। जैसे हम लॉयर्स की बात करते हैं तो लॉयर भी क्या होता है कि एक अपने आप में पावरफुल फील करता है, ठीक है, क्योंकि पाव से पता है कि उसकी क्या ताकत है। तो ये सारे फायदे हैं आपके जर्नलिज्म में अगर आप इस फील्ड में जाना चाहे तो। ऐसे ही आजकल एक नया स्ट्रीम भी काफी फैशन में है, फुटवेयर डिजाइनिंग का, ठीक है। इसमें इंस्टीट्यूट है फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, FDDI जिसे हम कहते हैं, फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। देखिए आप जो शूज डालते हैं, चप्पल डालते हैं, ठीक है, उनकी जो डिजाइनिंग है, ठीक है, उसमें जो मटेरियल लगा हुआ है उसके लिए एक अलग से कोर्स होता है और उसके बाद आपको उसी इंडस्ट्री में जॉब्स मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपका फुटवेयर डिजाइनिंग का कोर्स रहता है, ये भी काफी डिमांड में है, बहुत बच्चे मतलब इसकी तरफ भी जाते हैं क्योंकि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत आपको मिल जाती है। क्योंकि आप देखेंगे कि ऐसी कोई भी चीज जो हम डे टू डे रूटीनली यूज करते हैं, ऐसी कोई भी चीज जो एवरीवन यूजेस, तो उसमें उसकी डिमांड ज्यादा है। जैसे किसी भी पर्सन की अगर हम बात करें तो वो पैरों में चप्पल या जूते तो उसे डालने डालने हैं, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आपके फॉर्मल शूज है, इनफॉर्मल शूज है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल है, फुटवेयर जो डिजाइनिंग है ये भी एक तरह का फैशन डिजाइनिंग का पार्ट है और इसमें काफी जो एक तरह से जो क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज लेके आते हैं शूज के लिए, ठीक है। और इसमें मतलब नंबर ऑफ जितने फैशन हाउसेज है, आपकी जो नंबर ऑफ फुटवेयर ब्रांड्स है, तो वहां पर आपको जॉब्स मिलती है। उसमें कई तरह के एरियाज हैं, ठीक है, जैसे आपका स्पोर्ट्स वियर के लिए अलग है, फुटवेयर के लिए अलग है, भी टाइप ऑफ फुटवेयर में क्या क्या होता है, ठीक है, उसके फिर उनकी डिजाइनिंग करना, कस्टमर से कम्युनिकेशन करना, सप्लायर से कम्युनिकेशन करना, स्केच करना, जो भी मान लीजिए किसी ने नया टाइप का शू सोचा है तो उसकी डिजाइनिंग प्रिपरेशन करना, तो मतलब ये काफी वाइड वो है, ठीक है। तो ये FDDI का प्रोग्राम रहता है। इसमें क्या रहता है कि 12th में आपके पास में कोई भी स्ट्रीम अगर है, चाहे आपने कॉमर्स लिया हुआ है, चाहे आर्ट्स है, चाहे मेडिकल है, चाहे नॉन मेडिकल है, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने कोई भी आपके पास में डिग्री है तो आप उसमें 12th के बाद एडमिशन ले सकते हैं। इसका एक अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है FDDI के लिए, ठीक है, और उस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका एडमिशन हो जाता है। इसमें जनरली आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम रहता है, ठीक है, जिसमें डिप्लोमाज भी है अवेलेबल है और इसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी रहते हैं FDDI मतलब इन फुटवेयर डिजाइनिंग। ये इतना है जरूर कि अगर आप इस कोर्स में जाते हैं तो मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज है, क्यों आप देखेंगे मार्केट में इतने टाइप के मतलब फुटवेयर कंपनीज है, ठीक है, मैंने कुछ नाम लिखे हैं जैसे एडिडास है, कैंपर है, क्रॉक्स है, नाइका है, प्यूमा है, बाटा है, स्केचर्स है, फ्लैक्स है, मतलब मार्केट में इतनी सारी शू कंपनीज है और ये जितनी भी शू कंपनीज है ये सभी शू कंपनीज जो है वो FDDI से ही बच्चों को रिक्रूट करती है, चाहे उन्हें चैनल में बच्चे चाहिए, चैनल मतलब सेल्स एंड मार्केटिंग में चाहिए, या उन्हें प्रोडक्शन एक्टिविटी में चाहिए, या डिजाइनिंग में चाहिए, ठीक है। तो वो उसमें क्या रहता है कि जब आपको पता है कि इतनी सारी इंडस्ट्री में इतनी सारी कंपनीज है तो फिर एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो जाती है। आप एक देखिए आप किसी भी, चाहे आप छोटे या बड़े किसी भी सिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं, हर सिटी के अंदर मतलब जिसको हम एक चप्पल जूते की शॉप की बात करें तो काफी बड़ी क्वांटिटी में होती है, ठीक है, और हमें जो दिखता है, हमें तो ओनली शॉप दिखती है, बट आप कभी शॉप के पीछे जाके देखिए कि उनका जो सामान आता है कहाँ से सप्लाई होता है, कहाँ से वो लेके आते हैं, नए नए टाइप के डिजाइन आते हैं, तो सेल्स में, मार्केटिंग में तो काफी ज्यादा स्कोप होता है अगर थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए तो। FDDI से भी आप अपना डिग्री कर सकते हैं 12th के बाद में। तो इस तरह से मतलब चीजें तो बहुत हैं। अब देखिए इसमें ये कुछ कॉलेजेस हैं जो कराते हैं, NIFT नवी मुंबई भी आपको FDDI मतलब एक तरह से ये कोर्स कराती है, ठीक है, और आपका नोएडा में इंस्टीट्यूट FDDI का, रोहतक में भी है, YMCA फरीदाबाद में भी इसका एक आपका ब्रांच है, तो मतलब है काफी कॉलेजेस है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की बात है। देखिए सबसे पहली चीज होती है इंटरेस्ट बनाना, मैं इसलिए हम बहुत कोर्सेज के बारे में बात करते हैं आपके साथ में, उसका रीजन एक यही होता है कि आपको जब तक किसी चीज के बारे में अवेयरनेस नहीं होती, आपको किसी चीज के बारे में जब तक पता नहीं होता, तब तक हम उसके बारे में कुछ भी अपना लाइफ के बारे में सोच नहीं पाते। अब जैसे आपको मान लीजिए आपको 5-6 नई चीजें पता चली, पहले पता चलेंगी तभी तो आप उसके बारे में सोचेंगे भी हाँ मुझे उसमें कैसे तैयारी करनी है या कौन सा मुझे एग्जाम देना है। ठीक है, तो ये इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है अलग अलग चीजों के बारे में पता करना। ऐसे ही गर्ल्स के लिए एयर होस्टेस का भी एक अच्छा स्कोप रहता है। एयर होस्टेस मतलब हम ये बात नहीं कर रहे कि जो एरोप्लेन्स के अंदर ही, मतलब जिन गर्ल्स ने एयर होस्टेस का कोर्स किया हुआ है उसके बाद वो किसी होटल्स में एज ए रिसेप्शन पे वर्क कर सकती हैं या और भी काफी एरियाज में वर्क कर सकती हैं। और देखिए आजकल तो अभी कुछ टाइम मतलब आफ्टर कोरोना के बाद तो जो आपकी ट्रैवलिंग एजेंसी है या एक तरह से जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें काफी प्रॉब्लम आ रही है अभी आज के टाइम में। बट अगर हम जनरल बात करें, पहले बात करते कोरोना से पहले की, तो कोरोना से पहले आप देखेंगे कि टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री काफी बूम पर है। आप किसी भी शहर में चले जाओ, मतलब आप आज के समय में आप किसी भी सिटी में चले जाइए, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, उसमें आपको होटल मिलते हैं, अच्छे अच्छे होटल्स मिलते हैं, रेस्टोरेंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो वो इसलिए है क्योंकि मतलब अब लोग इन चीजों पे भी पैसा स्पेंड करते हैं। तो करियर इन एयर होस्टेस के बारे में हम करेंगे डिस्कस। ये बेसिकली गर्ल्स के लिए होता है, मतलब दैट इज प्राइमली फॉर द गर्ल्स। उसकी कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स है और किस किस तरह की जॉब्स होती है इसमें। तो एयर होस्टेस में सबसे पहली चीज होती है प्लेजेंट डिस्पोजिशन, मतलब अपीयरेंस। ठीक है, तो इसमें आपको स्टीवर्ड की जॉब मिल जाती है, एयर होस्टेस की जॉब मिलती है, और एयर होस्टेस के पास में कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे टू ग्रीट एवरी पैसेंजर, उनको गाइड करना, उनकी सीट पे बिठाना, ठीक है, कोऑर्डिनेट करना सिक्योरिटी के साथ में। तो मतलब काफी सारे काम होते हैं जो आप देखते हैं अगर आप एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं तो वो एयर होस्टेस वो सारे काम करती हैं। और यही इसमें देखो, अगर जो फीमेल है उसे हम एयर होस्टेस कह देते हैं, वही अगर मेल है तो वो स्टीवर्ड का पोस्ट कह देते हैं उसे, मतलब वी कॉल इट एज ए स्टीवर्ड। ठीक है, तो इन जनरली ये दैट फील्ड इज प्राइमरली फॉर द फीमेल्स। अब देखिए इसमें क्या क्या स्किल्स चाहिए। स्किल्स मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए आप में, यू मस्ट हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड, पेशेंस होना चाहिए लॉन्ग वर्किंग आवर्स का, इसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल, लैंग्वेज, ठीक है, प्लेजेंट वॉइस, पॉजिटिव एटीट्यूड, गुड फिजिक, मतलब काफी चीजें हैं एयर होस्टेस के लिए जो क्वालिटीज आप में होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी अपीयरेंस, 18 से 26 ईयर तक का एज है इसमें मिनिमम, 12th क्लास आपने किया होना चाहिए। उसके बाद कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हैं जो आपको एयर होस्टेस का कोर्स कराते हैं। हाइट जनरली 157.5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, ठीक है, अनमैरिड है, परफेक्ट आईसाइट है, गुड हेल्थ है, ठीक है, फेयर टू क्लियर कम्प्लेक्शन है, मतलब कुछ एक रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी एलिजिबिलिटी है एयर होस्टेस के लिए। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जैसे आपने नाम सुना होगा आपके एरिया में फ्रैंक सिंह का फेमस इंस्टीट्यूट हुआ है जो एयर होस्टेस की ट्रेनिंग कराता है, लाइव वेल है, एप्टिमा एयर होस्टेस अकेडमी है, पैसिफिक एयरवेज है, तो काफी अकेडमीज हैं जो ये कोर्स कराती हैं। ठीक है, इसमें आपका जो केबिन क्रू ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी होता है। तो इसमें करने के बाद में आपको एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एयरपोर्ट्स पे या जो आपकी एरोप्लेन कंपनीज है या होटल्स में आपको इजिली जॉब मिल जाता है। यस, बिल्कुल अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं एयर होस्टेस में भी। इसमें भी जैसे आप अगर आप करते हैं तो उसमें कई सारे स्ट्रीम्स हैं, अलग अलग नंबर ऑफ ब्रांचेज आर देयर, तो वो से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये एक एरियाज है, मतलब एट द एंड ऑफ द डे पॉइंट ये है कि हम जब भी अपना करियर चूज करें तो करियर चूज करते समय हम ऑप्शंस के बारे में सोचें। आप देखिए, आप चप्पल खरीदने जाते हैं, अपने कपड़े खरीदने जाते हैं, तो आप शॉपकीपर के पास जब आप जाते हैं तो उसमें आप क्या कहते हैं उसे, अलग अलग टाइप के आप डिजाइन देखते हैं, उसके बाद कोई एक फाइनल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पर है, जब हम अपने करियर के बारे में बात करें तो करियर के बारे में जब हम अपने करियर के बारे में फैसला लें, सोचें हमें क्या करना है, तो वहां भी हमें उतनी ही मेहनत से, उतने ही मतलब उतने ही अलग अलग करियर्स को एनालाइज करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमें क्या स्किल है, क्या हमारी स्किल उस करियर के लिए ऑप्टिमम है या नहीं है, तो उसके बाद ही हमें कोई फैसला लेना चाहिए कि किस फील्ड में जाके हम अपना करियर बनाएं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे लिए एक अच्छा करियर बनाने में काफी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो ये हमारा आज का था सेशन, जिसमें हमने ये आफ्टर ट्वेल्थ के बाद में जो इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो हमने पहले डिस्कस नहीं किए थे, तो आज हमने इनके बारे में डिस्कस किया है।
1: स्वच्छ देश के लिए अनमोल संदेश, सरदार इंदरजीत सिंह सिद्धू, पद्मश्री 2026।

0: ఎందుకు చేయండి, అయితే పంచే సంవత్సరాలు తల్లి ఎన్వైరన్మెంట్ కో సాబు రే బోల్ పవన్ గురు వాణి పితా మాతా తర్త మహత్ అప్పని మాతా పర్ కుచ గందగీ ఫేలే తో సబ్సే బురా ఇన్సాన్ హమ్సే కోయి నహీ శర్మదా కమ్ తా కూడా ఫలానా ఇజ్జత్ మాన్ దా కమ్ కూడా సంభాలనా ఆర్ లోగ్ కూడా ఫలాన్ చే శర్మ నీ కర్తే సఫాయీ కర్మ చే శర్మ కర్తే
1: యే హై పంజాబ్ పులీస్ కే రిటైర్డ్ డీఐజీ ఇందర్జీత్ సింగ్ సిద్ధూ जिन्हें चंडीगढ़ के लोग रोज सड़कों की खुद सफाई करते देखते हैं। 6 जून 1938 को पंजाब के संगरूर जिले के एक फौजी परिवार में जन्मे इंदरजीत सिंह सिद्धू को विरासत में मिले थे देश प्रेम और अनुशासन। एक मेधावी छात्र रहे इंदरजीत सिंह सिद्धू 1961 में पंजाब पुलिस में शामिल हो गए। अपनी कर्तव्य निष्ठा एवं निस्वार्थ सेवा से इन्होंने राष्ट्रपति पुलिस मेडल भी प्राप्त किया। ये जहाँ भी जाते सफाई की जिम्मेदारी सहजता से अपने कंधों पर ले लेते।
2: शादियों में जाना तो कभी वो डिस्पोजेबल कप्स में लोग बस पी के ऐसे ही फेंक देते थे, यूजली उनको बोलते थे कि इसको उठा के डस्टबिन में फेंको भाई, यहाँ पे क्यों रखा है। दैट इज हिज नेचर, शुरू से ऐसे ही है।
1: 1996 में सेवानिवृत्ति के बाद इंदरजीत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ आ गए। इंदरजीत सिंह सिद्धू ने देखा कि एक समय में देश का सबसे सुनियोजित माना जाने वाला शहर स्वच्छता में भारत के सर्वोच्च 10 शहरों में भी नहीं गिना जा रहा है। उनके लिए ये बेहद खेदपूर्ण था क्योंकि उन्होंने चंडीगढ़ में घर नहीं बनाया था, उन्होंने चंडीगढ़ को घर बनाया था। इंदरजीत सिंह सिद्धू ने बेझिझक रास्तों की गंदगी को अकेले ही नियमित रूप से साफ करना शुरू कर दिया।
0: धीरे धीरे यह बात बढ़ती गई, कूड़ा उठाने के लिए ज्यादा टाइम लगा लिया, शहर के लिए कम। अल्टीमेटली हुआ कि मैंने शहर तो बिल्कुल बंद कर दी, सिर्फ कूड़ा उठाना याद रह गया।
1: एक रिटायर्ड डीआईजी को सड़कों पर खुद सफाई करते देखना लोगों को अटपटा लगा। किसी ने उपहास किया तो कोई चौंक गया।
2: मेरे दोस्त हैं अभी आते हैं मिलने के लिए, तो वो कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे नेबरहुड में ना हो तो हम तो इधर ही फेंक दें। अब हमें जो लगता है कि आपके फादर उठा रहे हैं तो हम इधर फेंकते नहीं।
1: इन्हें कूड़ा उठाते देख हाथों में दस्ताने पहनने की सलाह देने तो कई आए, मगर हाथ बटाने के लिए कोई नहीं आया। पर ये बिना किसी दिखावे या हिचकिचाहट के सफाई को अपना कर्तव्य समझ कर करते रहे हैं।
0: मैं ये सड़कें और ये पार्क ये पब्लिक प्लेसेस साफ करने की कोशिश करता हूँ ताकि बाकी लोग भी देख लें कि भाई ये खाली हाथ से काम कर रहा है, हम भी लग जाए इनके साथ और पब्लिक प्लेसेस को साफ कर दें।
2: लेकिन जब पद्मश्री मिला है तो वही लोग जो मुझे बोलते थे कि ये क्या कर रहा है, व्हाट इज योर डैड डूइंग, उनका एटीट्यूड में चेंज मैंने देखा है। मैं आई रियली प्राउड ऑफ हिम।
1: सरदार इंदरजीत सिंह सिद्धू, पद्मश्री 2026, कोटि कोटि नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आपका स्वागत है आज के सेशन में। आज का जो सेशन है वो रेलवे में जॉब्स के ऊपर सेशन है कि रेलवेज में जो रेलवे डिपार्टमेंट है, आप सब जानते ही हैं कि इंडिया में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, मैक्सिमम मतलब इतना बड़ा एम्प्लॉयर है कि इतने एम्प्लॉयर्स हैं रेलवेज के अंदर कि जो एक किसी कंट्री की पॉपुलेशन के इक्वलेंट है, ठीक है, क्योंकि इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है काफी बड़ा है। कोई मुझे आप में से ये बता सकता है कि इंडिया में पहली बार ट्रेन कब चली थी? एनीवन आउट ऑफ यू? हाँ, 1853 में ट्रेन चली थी पहली बार, ठीक है। और आप देखेंगे कि इंडिया की डेवलपमेंट में रेलवे का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। आप देखेंगे, आप किसी भी कॉरिडोर पे चले जाइए, बहुत ही लो प्राइस में ट्रेन जो है वो आपको एक तरह से ट्रैवलिंग के लिए या जो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इतने स्टेशन हैं, हर स्टेशन पे स्टाफ है, तो मतलब रेलवे के अंदर बहुत ज्यादा एम्प्लॉय लोग किए जाते हैं, तो एक रेलवे सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। तो आज के सेशन में हम यही समझेंगे कि रेलवे जो एम्प्लॉयर है सबसे बड़ा, तो उसमें किस किस टाइप्स की जॉब्स होती हैं और उन जॉब्स के लिए कौन कौन से एग्जामिनेशन होते हैं, किस लेवल पे होते हैं, तो वो हम आज के सारे सेशन में डिस्कस करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक थोड़ा बहुत ये बताऊं भी क्या क्या चीजें हैं रेलवे के अंदर। अभी तो हम रेलवेज मतलब हम इंडियन रेलवेज जानते हैं। रेलवेज के अंदर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, मतलब चारों ग्रुप्स के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जॉब्स प्रोवाइड करता है। आपको ध्यान हो, मैंने आईएएस की क्लास जब लिया था यूपीएससी का, कैसे यूपीएससी का प्रिपरेशन किया जाए, तो उसमें आपको मैंने इंडियन रेलवे सर्विसेज के बारे में बताया था। तो रेलवे में आप देखेंगे आईआरटीएस, आईआरपीएस, आईआरएएस, ईएससी, ये सारी उनकी फुल फॉर्म्स हैं। तो ये मतलब इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग। रेलवे पुलिस फोर्स है, रेलवे स्टोर सर्विसेज है, रेलवे मेडिकल सर्विसेज है, रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स है, मतलब इतने डिपार्टमेंट्स है रेलवे के अंदर, तभी ये एक तरह से हम ये कहते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, ठीक है। तो ये हमारा आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव रहेगा, भी कैसे आप इसमें जा पाए, कैसे आप इसमें जॉब्स ले पाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी रेलवेज की ऑटोमेटिकली तैयारी हो जाती है, मतलब कोई अलग से आपको प्रिपरेशन करने की नीड नहीं है। आप चाहे एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो रेलवे में भी एग्जाम पैटर्न जो है ऑलमोस्ट सेम रहता है। बट रेलवे में दो टाइप की इंपॉर्टेंट जो डिवीजन किया जाता है, एक रहता है टेक्निकल जॉब्स के लिए और सेकेंड रहता है नॉन टेक्निकल जॉब्स के लिए। जो टेक्निकल जॉब्स हैं, उन टेक्निकल जॉब्स में जनरली जो क्वालिफिकेशंस बच्चे की मांगी जाती हैं, उसमें इंजीनियरिंग या उसने डिप्लोमा किया होना चाहिए। और वही अगर हम नॉन टेक्निकल जॉब्स की बात करेंगे, तो नॉन टेक्निकल जॉब्स में 12th या आपके ग्रेजुएशन के बेसिस पर वैकेंसीज निकलती हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस कैडर में, किस ग्रुप में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये रहा कि जो बच्चे भी गवर्नमेंट जॉब की प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो रेलवेज में जब भी वैकेंसीज निकले तो आप उनको जरूर अप्लाई करिए, क्योंकि रेलवेज में जोन वाइज भी वैकेंसीज आती है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, देखिए आप जानते हैं कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, ऐसी बॉम्बे का मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, जयपुर का है, तो जहां जहां मेट्रो जा रही है तो वो भी एक तरह से रेल कॉरपोरेशन है, तो उनमें भी काफी तरह की वैकेंसीज आती है। तो मतलब अगर आपका रेलवेज में जाने का इंटरेस्ट है तो आप इन सभी वैकेंसीज को परस्यू कर सकते हैं, आपको ये सारा ध्यान रखना पड़ेगा। अब सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि इंपॉर्टेंस क्या इन चीजों की, भी हम जैसे बात कर रहे हैं कि रेलवेज में जॉब्स काफी ज्यादा होती हैं, तो ये जो गवर्नमेंट जॉब्स रेलवेज की होती है उसका फायदा क्या है, थोड़ा मैं इस चीज पे बात करूंगा आज की क्लास में, फिर हम अलग अलग टाइप की वैकेंसीज पे आते हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो चीज होती है ना कि जब हम कभी भी गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है वो आपकी रहती है जॉब सिक्योरिटी और एज वेल एज जॉब सेटिस्फेक्शन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। आप देखिए, आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो जॉब सिक्योरिटी का एक कंसर्न रहता है। वहीं अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो जॉब सिक्योरिटी इज ऑलवेज देयर। इसके साथ साथ काफी फायदे होते हैं, मैं एक एक करके सबकी बात करूंगा कि जॉब सेटिस्फेक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक फिक्स टाइम ओवर है आपका, ठीक है। दूसरा, जेन्युइन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन,
देखिए आज के टाइम में अगर आप के मन में ये है कि मुझे आई वॉन्ट टू सर्व द नेशन, आई वॉन्ट टू सर्व द कंट्री, तो आप किसी भी जगह जहां भी आप काम कर रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी जॉब पे, तो अगर आप अपना काम पूरा कर दें तो ये एक तरह से दैट इज सर्विस टू नेशन है। इसके साथ साथ रेलवेज बहुत बड़ा सिस्टम है, तो इंडिया में रेलवेज है 17 जोन्स है, तो उसमें डिविजन है, फिर तो आपको मौका मिलता है हर जगह जाके काम करने का, ट्रांसफरेबल जॉब रहती है, ठीक है। इसके साथ साथ जो सैलरी है वो आपकी कलीग के साथ सेम रहती है, ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है तो उसे ज्यादा सैलरी मिल जाएगी, जिस कैडर में आपने ज्वाइन किया है उसी कैडर में आपकी सैलरीज मिलती है और एक सेम लेवल पे इंक्रीज होती है। तो ये मतलब बहुत ज्यादा चीजें हैं जो रेलवेज में आपको हेल्प करती हैं, आपको काफी नंबर ऑफ फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। तो मतलब एक तरह से फिर इंश्योरेंस है आपका, मेडिकल प्रॉब्लम में दे हैव द हॉस्पिटल्स, तो एक काफी ज्यादा चीजें हैं जो आपको असिस्ट करती हैं, एक तरह से अट्रैक्ट करती हैं फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स जो आप रेलवेज में ट्राई कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले जो बात करूंगा बेटे, जो आजकल आप में से काफी बच्चे तैयारी भी कर रहे होंगे एनटीपीसी के, ठीक है, 2019 के अंदर रेलवेज ने एनटीपीसी, जिसका नाम होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, अब ये एनटीपीसी आपका नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन नहीं है, ये आपका नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज है। मतलब जैसे रेलवेज में मैंने आपको पहले ही बताया कि जॉब्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, एक आपका टेक्निकल जॉब्स है और सेकंड नॉन टेक्निकल जॉब्स है। तो ये रेलवेज में 2019 में वैकेंसीज आई थी जिसमें 37,000 की अप्रोक्सीमेट जॉब्स आई थी, अभी एग्जाम भी है उसका, दैट इट इज नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जिसको हम कहते हैं। तो इसमें नॉन टेक्निकल जॉब्स हैं, तो नॉन टेक्निकल जॉब्स हैं तो उसमें क्या है कि आपकी कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो 12th के बेसिस पर है उसके अंदर, और कुछ जॉब्स आपकी ऐसी है जो ग्रेजुएशन के बेसिस पर है, और कुछ जॉब्स में डिप्लोमा मांगा गया है, तो उसमें बेसिकली ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, कमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर, सीनियर टाइम कीपर, तो ये काफी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं जो एनटीपीसी के अंदर है, और एनटीपीसी का आगे एग्जाम भी है। और आप देखेंगे कि ये जो 35,000 वैकेंसीज थी, इन 35,000 वैकेंसीज के लिए 2 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया हुआ, मतलब आप देखिए, मतलब 1.5 से 2 करोड़ लोगों ने इन जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी, अब इसमें एग्जाम है, अब एग्जाम जो है, हाँ अभी ये बता रहे हैं कि नवंबर में एग्जाम होगा, तो वो स्टेज वाइज है, उसमें 3 स्टेजेस है। पहली स्टेज जो है आपकी, वो आपकी है एनटीपीसी पैटर्न जो है, फर्स्ट स्टेज है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एक तो आपका ये, और जिसको हम प्रिलिमिनरी कहेंगे, प्रिलिम स्टेज है। सेकेंड स्टेज है मेन्स, ठीक है, फिर उसके बाद टाइपिंग और स्किल टेस्ट है, कुछ जॉब्स में टाइपिंग भी मांगा हुआ है, तो उसमें एक स्किल टेस्ट या टाइपिंग जॉब, जैसे आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसमें क्या है, जैसे इसकी सेकंड स्टेज है मेंस की, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट है कुछ पर्टिकुलर जॉब्स में, जैसे आपने जिस कैटेगरी में अप्लाई किया हुआ है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन है। अब हमारे लिए सबसे पहला सवाल ये है कि जो प्रिलिमिनरी का एग्जाम है उसमें क्या आएगा, क्या उसका पेपर पैटर्न है, वो हम समझेंगे। कंप्यूटर बेस्ड है, ये आप मान के चलिए, मतलब आप ये कह सकते हैं कि COVID-19 का ये इफेक्ट मान लो, या पहले भी काफी एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड हो चुके थे, अब COVID-19 के बाद में तो आप देखिए, मान के चलिएगा कि कोई भी एग्जाम आप दें, चाहे आप किसी भी लेवल का दें, वो ऑलमोस्ट कंप्यूटर बेस्ड ही आपका रहेगा। अब देखो, जैसे ये एग्जाम पैटर्न क्या है, जो RRB NTPC है स्टेज वन और स्टेज टू का, पहले हम स्टेज वन की बात करेंगे। स्टेज वन में आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे, और वो 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है, जिसमें मैथमेटिक्स है 30 क्वेश्चंस है 30 मार्क्स के, और फिर इंटेलिजेंस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, ठीक है। 90 मिनट का टाइम आपको मिलेगा और 100 क्वेश्चंस आपने करने हैं, 100 मार्क्स के आप करेंगे। मैथमेटिक्स जो है वो मैथमेटिक्स है जो जनरल आप 10th स्टैंडर्ड तक आप पढ़ते हैं, ठीक है, और 10th स्टैंडर्ड तक के जो टॉपिक्स हैं जिसमें नंबर सिस्टम है,
आपका मतलब अर्थमेटिक है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे बेसिक टॉपिक्स हैं, मैं उन पे बात करूंगा। ऐसे ही जनरल इंटेलिजेंस के टॉपिक्स हैं, ऐसी आपके जनरल अवेयरनेस इसमें वेटेज ज्यादा है, जिसमें आपको स्टैटिक जीके जिसको हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, ये सारी चीजें आपकी रहेंगी। ठीक है, तो ये आपको मतलब ये सारी चीजें इसमें रहेंगी, राइट। अब देखो इसकी तैयारी आप कैसे करें, उसमें मैं आपको बताता हूं। जैसे जो बच्चे रीड इंडिया के ई स्टडी प्रोग्राम के साथ में कनेक्टेड हैं, तो आप देखेंगे बेटे आपको अगर आईडी पासवर्ड मिला हुआ है, मेरे हिसाब से जितने बच्चे यहां पर हैं, जितने भी लोग हैं, सबको जरूर हमारे प्रोग्राम के साथ में कनेक्टेड है। तो वहां पर हमने दो कैटेगरी बना रखी है गवर्नमेंट जॉब्स की, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। ठीक है, अब रेलवे का जो पेपर है वो हिंदी मीडियम में भी होगा और इंग्लिश मीडियम में भी होगा, वही क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में रहेगा। तो आपके पास में दो कैटेगरीज हैं जिसमें हमने वीडियोस आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, अब अगर आप उसको यूज करते हैं, चैप्टर वाइज यूज करते हैं, क्योंकि उसमें तो हमने एसएससी बैंकिंग के हिसाब से सारे चैप्टर कवर किए हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि कुछ कंसेप्चुअल चैप्टर्स, कुछ बेसिक चैप्टर्स आप एक एक करके वहां से अगर स्टडी करेंगे तो आपको काफी ज्यादा एडवांटेज होगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पर ऐसा टाइम तो है नहीं कि आप कोचिंग ज्वाइन करिए कहीं जाकर। ठीक है, तो अगर आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी है, लैपटॉप या फोन से आप यूज करते हैं, तो आपको सारे वीडियोस वहां से मिल जाएंगे, और मार्केट से आप कोई भी एनटीपीसी की बुक परचेज कर सकते हैं मार्केट से, और चैप्टर वाइज आप अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम अपनी ओर से जैसे आपको हेल्प कर सकते हैं इसके अंदर तैयारी करने के अंदर। अब देखिए मैथमेटिक्स में क्या है, क्या मैथमेटिक्स में आपसे पूछा जाएगा, तो मैथमेटिक्स के अंदर हमारे जनरल टॉपिक्स हैं जिसमें नंबर सिस्टम है, डेसिमल, फ्रैक्शन, बहुत बेसिक टॉपिक जो आप 6th, 7th, 8th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है, एलिमेंट्री अलजेब्रा है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन है, स्टेटिस्टिक्स है। तो आप देखेंगे ये सभी चैप्टर्स हमने कवर किए हुए हैं हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। तो जैसे जैसे आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसे वैसे आप इसे कर सकते हैं, और जल्दी हम उसमें बाइलिंगुअल वाला भी ऐड करने वाले हैं। मैं उसमें हम मतलब एक टाइप से बाइलिंगुअल वाला कोर्स भी ऐड करने वाले हैं। बाइलिंगुअल मतलब कि आपको समझा हमने हिंदी में रखा है, बट जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो हम इंग्लिश में अप्लाई कर रहे हैं, तो जल्दी हम उसे भी ऐड करने वाले हैं, काम चल रहा है, तो जल्दी उसे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए मैथ्स का इसमें सिलेबस है। फिर आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है। देखिए रेलवे में रीजनिंग की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, स्पीड आपको मेंटेन करनी रहती है। एडवांस मैथ आप कहिए कि देखो एडवांस मैथ में ज्योमेट्री मेंसुरेशन है, अलजेब्रा है, स्टेटिस्टिक्स है, ये कुछ पोर्शंस हैं। ज्यादा रेलवे का जो ज्यादा फोकस जनरली जो रहता है वो अर्थमेटिक पे रहता है, बाकी अभी कुछ ऐसा सेग्रीगेट नहीं किया इन्होंने, क्योंकि कई सालों बाद पेपर हो रहा है। मतलब जैसे अगर हम रेलवेज की बात करें तो इतनी ज्यादा वैकेंसीज रेलवे कई सालों के बाद में निकाल रहा है, पहली चीज। और दूसरा क्या है कि पहले जो पेपर हुआ करते थे वो जोन वाइज होते थे, जोन वाइज में भी उसमें आपका पेपर पेंसिल बेस्ड रहता था, तो अब पहली बार ये ऑनलाइन होगा। और देखिए कई सारे वो बनेंगे, मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कई स्लॉट्स में जाके पेपर होगा। तो ये है कि आप तैयारी करिए, अलजेब्रा ज्योमेट्री पढ़ना चाहिए, एलिमेंट्री भी पढ़ लेंगे वो भी काम चल जाएगा। मतलब इसमें बहुत इनडेप्थ, जैसे हम एसएससी मेंस के लिए तैयारी करते हैं काफी ज्यादा उसमें टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं, तो इसमें ये है कि अगर आप एलिमेंट्री अलजेब्रा जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन की सॉल्विंग है, तो ये भी अगर आप कर लेंगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा और आप उससे अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी रीजनिंग का सेक्शन जो है आप देखेंगे बहुत ही जनरल से टॉपिक्स है रीजनिंग के अंदर, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, एनालिटिकल रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग, कुछ ग्राफ, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें हैं। और आप देखेंगे अगर आप थोड़ा सा हमारा ई स्टडी प्रोग्राम यूज करें, जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने उसमें सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। मतलब इसमें आपको कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं मिलेगा जो उसमें हमने वहां पर कवर नहीं किया हुआ है। और अगर आपको कोई टॉपिक नहीं भी मिलता है तो आप अपने सेंटर कोऑर्डिनेटर के थ्रू हमारे पास अगर कोई मैसेज आता है कि सर ये टॉपिक उस पर नहीं अवेलेबल है, तो हम उस पर जल्दी ही वीडियो बना के उसे अपडेट कर देते हैं।
अभी तक वैसे ऐसा कोई मैसेज आया नहीं है, मतलब ऐसी कोई हमारे पास कोई ऐसा फीडबैक नहीं आया है कि सर ये टॉपिक ऐड करा दीजिए। बाकी हम तो चाहेंगे आपसे कि कमलेश जी के पास में ऐसा पहुंचे और फिर हम उसे ऐड करें, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जनरल अवेयरनेस में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका 40 मार्क्स का पेपर जो है वो जनरल अवेयरनेस का आएगा, इसमें करंट अफेयर्स पिछले 6 से 8 महीने का, ठीक है, उसके लिए आप कोई भी मंथली मैगजीन कवर कर सकते हैं, फिर स्पोर्ट्स इवेंट्स, ठीक है, मतलब हम तो ये कहेंगे अगर आप 10th लेवल तक का एनसीईआरटी पढ़ पाए तो उससे अच्छी बात कुछ भी नहीं है। मैंने पहले भी आपको समझाया था जब आपको मैंने स्टार्टिंग में गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताया था, अभी कैसे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें, तो वहां पर आपको मैंने इस बात के बारे में बताया था कि 10th क्लास तक का जो एनसीईआरटी है, चाहे आपका मैथमेटिक्स का है, चाहे आपका एसएस का है या आपका साइंस का है, तो ये 3 सब्जेक्ट का अगर आप एनसीईआरटी भी कर लेंगे तो जीएस का पेपर आपका बहुत इजीली कवर हो जाता है। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइंस टेक्नोलॉजी, यूएन, ये सारी चीजें 10th क्लास तक आपको मिल जाती है। या अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप कोई भी जीके का बुक खरीद सकते हैं या रीड की लाइब्रेरीज में आप देखते हैं, अगर आप जाते हो, आजकल तो चलो कई सेंटर में शायद नहीं ओपन होंगी पर पहले जैसे आप जाते थे तो सेंटर्स पे लाइब्रेरी के अंदर जीके की काफी बुक्स अवेलेबल है, तो आप उन बुक्स को भी यूज कर सकते हैं। या आप उपकार पब्लिकेशन की या अरिहंत पब्लिकेशन की कोई भी जीके की बुक आप खरीदिए, उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं। थोड़ा सा मेहनत करने वाली बात है, थोड़ा टाइम लगाने वाली बात है, अगर आप थोड़ा टाइम लगा लेंगे तो आप ये प्रिपरेशन इजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एनटीपीसी का प्री का पेपर ऐसा होगा, तो प्री के पेपर में आपको जैसे मैंने बताया कि 3 ही सेक्शन रहेंगे, मैथ्स 30 मार्क्स का, फिर आपका रीजनिंग का 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चंस, और ऐसे ही जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस, तो ये 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा एनटीपीसी का प्री का। फिर जिन बच्चों का प्रिलिमिनरी क्लियर हो जाएगा फिर वो मेंस का पेपर देंगे। अब मेंस का जो पेपर है ऑल्दो सब्जेक्ट मेंस में भी सेम है, वही आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और थर्ड इज जनरल अवेयरनेस, ठीक है। अब मेंस में क्या होगा, मेंस में लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्वेश्चंस का, या क्वांटिटी ज्यादा हो गई। जैसे प्री में आपको 100 क्वेश्चंस 90 मिनट्स में करने थे और मेंस में वही आपको 120 क्वेश्चंस जो है 90 मिनट्स में करने हैं, तो बेटर है कि अगर आपको जॉब चाहिए चाहिए तो आप प्री और मेंस की तैयारी एक ही लेवल पे होती है, सेम तैयारी आपकी, सेम सब्जेक्ट आपके प्री और मेंस के अंदर, ठीक है। तो आप उन्हीं को डेप्थली पढ़िए ताकि आपकी मेंस की प्रिपरेशन भी हो जाए, ठीक है। तो ये आपका सीबीटी 2 है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया जैसे स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट का मतलब क्या है कि जो टाइपिंग टेस्ट है वो रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब आपकी एनटीपीसी के अंदर है, ठीक है। और मतलब आज के टाइम में आप देखिए कि जिन बच्चों ने आप में से एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि कोरोना के कारण पिछले 4 से 5 महीनों में जो बच्चे पहले तैयारी कर भी रहे थे तो एक तरह से उनकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। जैसे पहले तो क्या था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे थे, क्लासरूम चलती रहती थी, तो अभी क्या है कि बिकॉज ऑफ दैट काफी टाइम से बच्चे क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे एक ही लेवल पे हैं, ठीक है। जब आप एक ही लेवल पे हैं तो आप अगर आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दें, और होपफुली नवंबर में एग्जाम है, नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा, तो अभी वो भी एक तरह से एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि रीजन क्या है कि इतने ज्यादा बच्चों का एग्जाम कराना सिंपल टास्क नहीं होता। आप देखिए 1.5 से 2 करोड़ बच्चों का एनटीपीसी का पेपर होगा, तो इट्स नॉट सिंपल थिंग, तो उसमें आपको हो सकता है आगे भी एक्सटेंड हो जाए, बट आप अपनी तैयारी अभी से करना स्टार्ट करिए। और उसका मेथड बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि आपके बेसिक टॉपिक्स हैं, ये वही टॉपिक्स हैं जो हर एग्जाम में आते हैं। आप देखिए एक बहुत बड़ी चीज क्या है कि इंग्लिश इसमें नहीं है, आप सबको पता ही है कि इंग्लिश में तो हम वैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो इंग्लिश सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो एनटीपीसी में इंग्लिश कहीं भी नहीं है, तो उसमें इट्स बेटर कि आप मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस इन तीनों सेक्शंस को टारगेट करके अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। और जिन बच्चों ने टाइपिंग टेस्ट की कैटेगरी में अप्लाई किया हुआ है उनसे एक्सपेक्टेड है कि वो बेटे अपनी टाइप टेस्ट की प्रैक्टिस साथ साथ करते रहें, क्योंकि काफी टाइम, कई बार ऐसा होता है कि टाइप टेस्ट जब आपका सारी स्टेजेस क्वालिफाई हो जाती हैं तो टाइप टेस्ट में हम आके अटक जाते हैं,
तो वो भी एक रेगुलर प्रैक्टिस का काम होता है और टाइपिंग तो आपको हेल्प ही करती है, तो वो आप उसे कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद में अगला पॉइंट जो हमारे पास है, ये रेलवेज में नॉन टेक्निकल जॉब्स भी आती हैं। नॉन टेक्निकल जॉब मतलब जैसे SCRA है, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस का रहता है, या इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर जिसको हम IRSME कहते हैं, ठीक है। तो जैसे रेलवे बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, मतलब उसमें आप देखेंगे कि इंजन बनने से लेकर ट्रेन की फंक्शनिंग तक, या आप देखें कई बार इंजन में प्रॉब्लम आती है, ट्रेन के चलने में प्रॉब्लम आती है, कोच फैक्ट्रीज होती हैं, तो काफी बड़ा एरिया है। तो उसमें SCRA एक बहुत बड़ा, एक तरह से हम ये कह सकते हैं स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस की वैकेंसीज आती हैं, ठीक है। SCRA जो होता है उसमें 12th क्लास में साइंस मांगी जाती है। तो मैं आपको एक चीज यहां पर ऐड कर दूं, जो बच्चे रेलवेज के टेक्निकल जॉब्स में जाना चाहते हैं, ठीक है, टेक्निकल जॉब्स में जाने के लिए उनके लिए 12th में नॉन मेडिकल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और या उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है जिसमें मैकेनिकल का डिप्लोमा की काफी ज्यादा वैकेंसी रहती है, इलेक्ट्रिकल की काफी वैकेंसी रहती है। आप देखेंगे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स अलग चीज है और इलेक्ट्रिकल अलग चीज है, तो जिन लोगों ने इलेक्ट्रिकल में किया हुआ है तो उनकी रेलवेज में काफी वैकेंसीज निकलती है, ठीक है। बट उसके लिए यही है कि आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि आजकल वैकेंसीज काफी कम होती हैं और एप्लीकेंट्स काफी ज्यादा होते हैं, तो वो तभी आप उस कंपटीशन को अगर आप क्वालिफाई कर पाएंगे तभी आपका जॉब लग पाता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में रेलवेज में काफी ज्यादा स्कोप है। रीजन क्या है कि जॉब्स भी काफी निकलती हैं और उसके बाद सैलरीज भी आपको काफी मिलती है इसके अंदर, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है या इसके अलावा डिप्लोमाज किए हुए हैं। तो आप थोड़ा सा रेलवेज की साइट पे अगर आप ध्यान रखें, जैसे जैसे वैकेंसीज निकलती हैं तो आप उसे अप्लाई करिए, चाहे वो किसी भी जोन में निकले, क्योंकि रेलवे में जोन के हिसाब से वैकेंसीज आती हैं, 17 जोन्स हैं, ठीक है। तो उसमें कई बार जैसे हम रहते हैं नॉर्थ जोन के अंदर, तो जैसे साउथ के जो जोन्स हैं उनका हमें पता ही नहीं चलता वैकेंसीज कब निकली। तो थोड़ा सा अगर आप बहुत सीरियस हैं रेलवे की तरफ, तो आपको हर तरह के जोन में किस टाइप की वैकेंसीज है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना रहता है। ऐसे ही रेलवे में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज निकलती हैं, जिसको हम RRB JEE कहते हैं। जो RRB है वो बेसिकली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है। अगर हम RRB की बात करें तो RRB जो है इस प्राइमली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। तो रेलवेज में जो वैकेंसीज निकलती हैं वो RRB कंडक्ट कराता है। तो ये मैंने कुछ वैकेंसीज डाली हैं, ये 2019 में निकली थी, 13,000 के अप्रोक्सीमेट वैकेंसीज आई थी, जिसमें जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसी केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, ठीक है। तो मतलब जिसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे मांगी हुई थी, BTech, BE, ठीक है, या इंजीनियरिंग में डिग्री मांगी हुई थी जो कंसर्न फील्ड से है, तो ये सारा आपसे, मतलब ये सारी चीजें आपको चाहिए, मतलब वैकेंसीज आती रहती हैं, ठीक है। तो कई बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने BTech किया होता है और उनका मन होता है कि वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करें, तो उस केस में वो रेलवे के बारे में सोच सकते हैं। बस थोड़ी दिक्कत ये रहती है कि हम इस चीज पे ध्यान नहीं दे पाते, तो इसलिए कई बार काफी जॉब्स हम अप्लाई नहीं कर पाते। तो आप रेलवेज को टारगेट कर सकते हैं, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है या आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो RRB एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है आपकी जॉब्स के लिए। ऐसे ही रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी भी आती है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक हम जिन वैकेंसीज की बात कर रहे हैं वो वैकेंसी जो है हमारी, वो ग्रुप ए, वो हमारी जो ग्रुप बी और सी की वैकेंसीज है। ऐसे ही रेलवे में आपकी ग्रुप डी की वैकेंसीज भी आती है। जो ग्रुप डी से हमारा मतलब होता है कि असिस्टेंट वर्कशॉप, ठीक है, या एक तरह से आपके असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, लोको शेड होते हैं, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल। तो ऐसी आपके जैसे ट्रैक मशीन जो होती है, जैसे ट्रैक होती है, ट्रैक के ऊपर काम लोग करते हैं, तो ग्रुप डी की वैकेंसीज भी आती हैं रेलवेज में। हाँ, इसका एग्जाम भी अभी नहीं हुआ, आगे होगा। ये 2019 में फॉर्म निकला था और 1 लाख के आसपास वैकेंसीज आई थी, 1,03,769 वैकेंसीज आई थी, ठीक है। तो इसका एग्जाम भी आगे होगा, अभी कुछ इसके बारे में

वैकेंसीज आती हैं वो आप मतलब एक तरह से रेगुलर वैकेंसीज नहीं है, जैसे हम देखते हैं कि एसएससी है चाहे आपका बैंकिंग है तो उसमें रेगुलर वैकेंसी है, हर साल के बाद फॉर्म निकलेगा। रेलवेज में आती हैं तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज आती है, लाखों में वैकेंसीज आती हैं, तो उसमें जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अपना उसमें स्थान बना सकते हैं उन वैकेंसीज के अंदर, ठीक है। और मतलब पेपर में जो आएगा वो सेम है, मैथमेटिक्स आएगा आपका 10th लेवल तक का, रीजनिंग आपकी आएगी, जनरल इंटेलिजेंस आएगी और उसके साथ साथ आपका जीके आएगा। तो ये तीन सेक्शंस में आप अपना रेगुलर कमांड बनाते चलिए ताकि आप फ्यूचर में इनकी प्रिपरेशन कर सके और अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सके। देखिए रेलवे में ग्रुप ए की पोस्ट में इंटरव्यू होता है, देखो ग्रुप सी और जो डी पे तो कोई इंटरव्यू नहीं होता। आप देखिए जो एनटीपीसी में जितने भी वैकेंसीज निकली है उसमें कहीं भी इंटरव्यू की बात नहीं की गई है, स्किल टेस्ट की बात की है। मतलब मैंने आपको जैसे अभी बताया कि एनटीपीसी में आपके टाइपिंग टेस्ट का इशू है, जैसे कुछ वैकेंसीज के ऊपर टाइपिंग टेस्ट है। रेलवेज में जो ग्रुप ए की वैकेंसी होती है जो आपकी आईएएस के थ्रू आती है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है, वो मैं बताऊंगा एंड में आके, तो उसमें इंटरव्यू आपका होता है जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। अदरवाइज ग्रुप बी ग्रुप सी और ग्रुप डी में रेलवेज के अंदर कोई इंटरव्यू नहीं है। पहले इंटरव्यू हुआ करते थे, एक टाइम ऐसा भी था कि जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी हुआ करती थी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू, बट आज के टाइम में डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं होता है। आज के टाइम में आपका टेस्ट के बाद फिर आपका स्किल टेस्ट रहता है और जो ग्रुप ए की वैकेंसीज है उनमें आपका इंटरव्यू रहता है। इसके बाद आपका मेट्रो रेलवे रिक्रूटमेंट है, चाहे वो जयपुर में है, मैंने आप बताया, चाहे आपका दिल्ली में है, दिल्ली मेट्रो है। कुलदीप तंवर 10वीं कैसे पास करें इसका तो हमारे पास कोई सलूशन नहीं है, ये तो पढ़ना पड़ेगा तभी पास हो पाएगा। हमने तो अपनी ई स्टडी प्रोग्राम के थ्रू वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, उसमें मैथमेटिक्स के तो है ही सारे, तो पढ़ के ही पास होती है। बाकी आजकल तो 10th पास करना बहुत ही आसान है, आप बिना किसी समस्या के पास कर सकते हैं, सरकार ही पास कर देती है मतलब ज्यादातर तो। हाँ हम बात कर रहे थे बेटे जो मेट्रो रेलवे रिक्रूटमेंट है, जितने भी जहां जहां पर मेट्रो बनती जा रही है सभी जगह पे मेट्रो की रिक्रूटमेंट होती है और उसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल जॉब्स आती हैं। तो अगर आपने रेलवे की प्रिपरेशन कर रखी है तो आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं या कुछ मेट्रो की जॉब्स जो पिछले साल दो साल में निकली हैं वो मैं शेयर कर रहा हूं ये बताने के लिए कि ऐसी ऐसी जॉब्स आती हैं। जयपुर मेट्रो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अलग से है, मतलब हर जहां मेट्रो बन रही है उनका अलग से रिक्रूटमेंट बोर्ड है, ठीक है, और उस रिक्रूटमेंट बोर्ड की वो अपनी वैकेंसीज निकालते हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट है, ठीक है, इसमें स्पोर्ट्स कोटे की भी काफी वैकेंसीज होती हैं। आप देखिए अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो रेलवे में स्पोर्ट्स कोटे की काफी वैकेंसीज होती हैं, चाहे ग्रुप ए में है, चाहे ग्रुप बी में है, चाहे ग्रुप सी में है, तो हर ग्रुप में मतलब स्पोर्ट्स कोटे की वैकेंसीज होती हैं, तो वो भी टारगेट की जा सकती हैं। और मैंने पहले ही आपको बताया कि जोन वाइज वैकेंसीज आती हैं तो हमें हर जोन पे ध्यान रखना रहता है। डीएमआरसी के अंदर वैकेंसीज आई थी लास्ट ईयर जिसमें मैनेजर इंजीनियर फायर इंस्पेक्टर, मतलब आपने अगर एमबीए किया हुआ है, डिप्लोमा है, सीए है, एलएलबी है, सीए है, मतलब हर तरह की जॉब्स निकलती हैं, ठीक है। तो आपको अपना कंटिन्यूएशन में रखिए तैयारी, और अगर आप प्रिपरेशन कंटिन्यूएशन में रखेंगे तो नॉन टेक्निकल जॉब्स जो आते हैं, अगर आपकी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है तो कम से कम नॉन टेक्निकल जॉब्स को तो आप टारगेट कर सकते हैं। तैयारी जो गवर्नमेंट जॉब्स की है वो सेम है। ऐसे ही ईस्ट कोस्ट रेलवे रिक्रूटमेंट है, मुंबई मेट्रो रेलवे रिक्रूटमेंट है, इसके साथ साथ आप देखेंगे आईआरसीटीसी है रेलवे का जो कैटरिंग सर्विसेज है, तो उसमें भी अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है किसी एग्रीकल्चर से रिलेटेड फूड साइंस से रिलेटेड तो उसमें भी उनकी वैकेंसीज आती हैं, क्वालिटी कंट्रोल में वैकेंसीज आती हैं, राइट। तो रेलवे इसलिए बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है इंडिया में क्योंकि रेलवे में इतनी सारी विंग्स है रेलवे की और उनमें अलग अलग वैकेंसीज आती है। तो ये तैयारी आपके लिए है, ठीक है। इसके बाद फिर मैं लास्ट में आऊंगा कि आपको मैंने ग्रुप ए के बारे में जैसे हम बात करते हैं, देखिए ये अभी तक मैंने आपको जितना बताया

0: ये आपको मैंने ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के बारे में बताया, ठीक है। फिर ग्रुप ए भी होता है रेलवे में। ग्रुप ए मतलब जो हम आईएएस के थ्रू आते हैं, आपका जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में हमने एक सेशन लिया था कि यूपीएससी की कैसे प्रिपरेशन किया जाए। तो अगर आप ग्रुप ए में जाना चाहते हैं तो आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना रहता है, ठीक है, जिसको हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। तो उसमें आपका पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, जिसे हम प्री का एग्जाम कहते हैं, जिसमें आपके दो पेपर होते हैं। अभी जैसे आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा हो तो कल ही एग्जाम था, मतलब ऑन संडे इट वाज द प्री पेपर, प्री का पेपर था, कल ही पेपर था प्रिलिमिनरी का। तो उसमें आपके दो पेपर रहते हैं, पहला आपका जनरल स्टडीज का पेपर रहता है 2 आवर्स का, और सेकंड आपका सी सेट का पेपर रहता है, जिसे हम एप्टीट्यूड पेपर कहते हैं। अब जनरल स्टडीज में आपका इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स का एग्जाम रहता है 2 आवर्स का। ऐसी आपका सी सेट का पेपर रहता है, जो एक तरह से एप्टीट्यूड पेपर है। अगर आपका प्रिलिमिनरी क्वालिफाइड होता है तो फिर आप मेंस का एग्जाम देते हैं। मेंस का पेपर सब्जेक्टिव होता है, जिसमें आपके 10 पेपर्स होते हैं टोटल। कंपल्सरी पेपर है एक इंग्लिश का और एक इंडियन लैंग्वेज का। इसके साथ साथ 2 एसेज के पेपर होते हैं, 4 जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं, और 2 पेपर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं, ठीक है। मतलब ये भी एक तरह से पैटर्न है अगर आप ग्रुप ए के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो रेलवेज में हर तरह की वैकेंसीज है। ग्रुप ए कैटेगरी में वैकेंसी है, ग्रुप बी कैटेगरी में वैकेंसी है, ग्रुप सी में है और ग्रुप डी में है। तो आप अपने लेवल के अकॉर्डिंगली आप उसमें वर्क कर सकते हैं, जैसा आपका लेवल है उसी हिसाब से आप उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक बात और मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा कि आप में से जितने बच्चे टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने डिप्लोमा कोई किया हुआ है या उन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो वो जरूर रेलवे को टारगेट करिए। आप उसमें थोड़ा देखिए भी आपने किस स्ट्रीम में किया हुआ है और उस स्ट्रीम में रेलवे में किस किस तरह की वैकेंसीज आती हैं। तो अगर आप उनको भी टारगेट कर लेंगे तो होपफुली आपकी कहीं ना कहीं सेटलमेंट रेलवे में अच्छी हो सकती है। फिर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको पीछे बताया भी था। हो सकता है आगे आने वाले समय के अंदर रेलवे जो है, जैसे प्रिलिमिनरी का जो पेपर है, वो आगे आने वाले समय के अंदर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू कंडक्ट कराए। तो उसमें क्या है कि अभी जो आप, जैसे अभी हम एनटीपीसी में प्री का पेपर देंगे तो वो प्री का पेपर नहीं होगा आपका, तो वो आपका एनआरए का जो स्कोर है उसी के बेस पे हो जाएगा। तो अभी तो एनटीपीसी का एग्जाम होगा, बट हम बात कर रहे हैं आगे की। हाँ नहीं, जो रेलवे का एग्जाम है वो एसएससी कंडक्ट नहीं कराता, रेलवे का अलग से बोर्ड है, आरआरबी कहते हैं जिसे हम लोग, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। रेलवेज के जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपके टेक्निकल हैं, चाहे वो आपके नॉन टेक्निकल हैं, तो वो सभी एग्जाम्स जो है वो आरआरबी कंडक्ट कराता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कंडक्ट कराता है, ठीक है। और जो आपके लेवल 1 एग्जामिनेशन है, जिसको हम ग्रुप ए कहते हैं, तो ग्रुप ए के जो एग्जाम्स है वो फिर आपका यूपीएससी कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो हो सकता है आगे आने वाले समय के अंदर जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अपना पेपर कंडक्ट कराएगी, तो उसमें आपका रेलवे का जो प्रिलिमिनरी अभी जो होगा वो आगे उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो एंड में बात सारी इतनी सी है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब को टारगेट कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आज का सेशन हमारा स्पेसिफिकली रेलवे का था, तो हमने रेलवे से रिलेटेड जॉब्स के बारे में बात किया। हाँ, रेलवे में इतना डिफरेंस है कि इंग्लिश का पेपर अभी तक नहीं आता, अभी तक वो मैथ्स, रीजनिंग और जीके, तो 3 सेक्शंस आपके रहते हैं। इंग्लिश उसमें नहीं आता है रेलवेज के अंदर, बट जब एनआरए के थ्रू हो जाएगा तो आप मान के चलिएगा जो एनआरए का एक जनरल पैटर्न है, वही पैटर्न फॉलो होगा ऑल ओवर इंडिया में, राइट। तो ये चीज आपने ध्यान देनी है अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसके अलावा रेलवे में काफी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसीज आती हैं, वो डिपेंड करते, देखिए उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते कि अगर आपका कोई लिंकेज है रेलवे के अंदर, कोई आपके पेरेंट्स या आपके कोई फैमिली में कोई लोग रेलवेज में काम करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी रेलवे काफी वैकेंसीज निकालता है। तो उनको फिर वो थोड़ा इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिल जाए तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अभी आज के समय में तो रेलवे एक तरह से मैक्सिमम जॉब्स जो परमानेंट जॉब्स ही निकालता है, बाकी रेलवे का प्राइवेटाइजेशन पे काफी बड़े सेक्शन रेलवे के ऐसे हैं, जिनको धीरे धीरे प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो वो प्राइवेटाइजेशन का एक सबसे बड़ा लॉस यही है कि वो परमानेंट वैकेंसीज नहीं आएंगी, तो दैट वुड बी अ लॉस इन रेलवे। ठीक है, तो बेटे दैट इज फ्रॉम माय साइड, ये मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया कर दिया है रेलवे में टेक्निकल नॉन टेक्निकल की अलग अलग तरह की जॉब्स का। अब आप जो भी इसमें क्वेरी पूछना चाहें कुछ भी रिलेटेड किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं, तो मैं आपकी किसी भी क्वेरी का जो रेलवे से रिलेटेड है उसका हम आंसर करेंगे। बाकी हम इससे पहले एक टाइप से जो गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर चुके हैं, पूरी एक पूरे सेशन के अंदर हमने एसएससी बैंकिंग का कंप्लीट बात किया था, और उससे पहले हम एक बार आईएएस की बात भी कर चुके हैं। तो अब ये रेलवे एक स्पेशल सेक्टर था जिसको हमने टच नहीं किया था। रेलवे में आर्मी ट्रेन होती है, उसमें भी भारतीय प्रक्रिया रेलवे करती है। हाँ मतलब हाँ, वो क्या है कि वो रेलवे की अलग अलग डिवीजन है, जैसे आरपीएफ भी होता है, आप सबको पता है रेलवे पुलिस फोर्स है। अब आरपीएफ की वैकेंसीज आती हैं, बट इनमें दिक्कत क्या है कि ये कई कई सालों में वैकेंसीज आती है, ये नॉर्मल वैकेंसीज नहीं है। देखो जैसे आप देखें भी एसआई की वैकेंसी आती है दिल्ली में, दिल्ली पुलिस की तो साल दो साल में वैकेंसीज आती है, रेलवे पुलिस फोर्स की कई कई सालों में वैकेंसीज आती है। ठीक है, जब आती है तो उसमें फिर पूरा प्रोसेस होता है उसमें। जी सर,
1: हेलो।
0: हाँ जी, जी सर।
1: दिनेश जी, मेरा एक क्वेश्चन है
0: सर। आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा या मतलब माइक को पास लेके बोलेंगे। हाँ जी,
1: अब आ रही आवाज?
0: हाँ अब आ रही है सर। हाँ जी
1: दिनेश जी, मेरा रेलवे से बहुत ही खास नाता है, इसलिए मेरा एक क्वेश्चन है।
0: जी सर,
1: इस सीआरए का जो है स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस का है, शायद उसमें जो मैंने थोड़ी जो मैंने पीपीटी देखा है, शायद उसमें जो उसमें शायद इन लोगों को भी थोड़ा सा बताना है कि एससीआरए की एग्जाम जो होती है बहुत टफ होती है। एक जब आप देखेंगे आईआईटी लेवल का, क्योंकि एससीआरए रेलवे कंडक्ट करवाती है वो, और ये फोर इयर्स मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के जो बच्चे प्लस टू पास करके जाते हैं फर्स्ट क्लास इनका होता है वो अप्लाई करते हैं। प्लस इनका इसमें थोड़ा सा ये है कि क्राइटेरिया इनका बहुत ही डिफरेंट होता है, मतलब उनका तो जिनका रिटेन तो होता है ये जिस तरह आईटी का होता है, बट सीट सिर्फ बहुत कम होती है इसमें अवेलेबल।
0: सर एक्चुअली क्या है ना, ये स्पेशलाइज्ड हो गया ना थोड़ा सा, वो तो उसमें अब इंस्टीट्यूट के नाम है, जैसे आपका बिट्स मिश्रा है वो उसमें सीट है, तो थोड़ा सा वो तो प्रॉब्लम रहता है सर उसमें। बट ये है कि एक मतलब बच्चे तैयारी तो करते ही है। बाकी स्कोप तो है सर, देखिए अब बहुत लोग जाते हैं। अब ये है कि अगर एससीआरए में मान लो नहीं भी गए, तो फिर भी काफी रेलवे में आपकी टेक्निकल जॉब्स तो रेलवे में काफी आती हैं। आपने कहीं से डिप्लोमा डिग्री कुछ भी किया हुआ है,
1: ये लोग करके निकल सकते हैं।
0: हाँ तो मतलब आपने कहीं से भी कुछ किया हुआ है, तो उसके बाद रेलवे मतलब मेरे हिसाब से इंडिया में अगर हम किसी भी एक टाइप से जो गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, तो इंजीनियरिंग की सबसे ज्यादा जॉब्स रेलवे में ही आती है। इनसे ज्यादा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतनी जॉब नहीं निकाल पाता।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर मैंने सर ये भी देखा सर, नॉर्थ जोन में तो सर कम ही, लेकिन साउथ जोन वाले बहुत रेलवे का निकालते हैं।
0: बिल्कुल सर, साउथ देखोगे, हैदराबाद साउथ जोन, और आपका सर जो एक तरह से जैसे बिहार वाला एरिया जो है, मतलब वो जो जोन उसमें जोन आते हैं वहां, तो मतलब बहुत वैकेंसीज आती है और बहुत बच्चा तैयारी करता है, बहुत ही रेगुलर तैयारी करता है। हमारे यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चे कम मिलेंगे, बट भाई अगर आप बिहार साइड में चले जाएं तो बहुत बच्चा आपको ऐसा मिलेगा कि जो स्पेशली रेलवे की ही तैयारी कर रहा
1: है। वो तो है।
0: जोन वाइज भी काफी वैकेंसी, मतलब ये है कि अगर रेलवे के पैटर्न पे प्रिपरेशन किया जाए, थोड़ा सा इंटरेस्ट हो गए किया जाए, तो मतलब वैकेंसी बहुत है जी। और किसी का कोई क्वेरी, कोई भी बच्चा आप में से, एनी थिंग यू वॉन्ट टू आस्क?
1: जो लोग बैंक का प्रिपरेशन करते हैं उसे तो मिलता जुलता है रेलवे, जो भी जो
0: हाँ मिलता जुलता है बिल्कुल। जो आपकी रीजनिंग आती है बैंकिंग में वही ऑलमोस्ट वही टाइप की है, मैथ्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है, और जो आपका बस थोड़ा सा एक आपको जो जीके के पोर्शन में थोड़ी मेहनत करनी रहती है रेलवे में, क्योंकि उसमें आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस पे काफी फोकस है, मतलब साइंस का फोकस रहता है ज्यादा। हाँ बिल्कुल, रेलवे का मेडिकल डिपार्टमेंट भी होता है, उसमें भी जैसे आपको मैंने पिछले क्लास में हमने उसके बारे में बात किया था, मेडिकल के बारे में बात किया था, तो उसमें डायरेक्ट वैकेंसीज आती हैं, डॉक्टर्स की वैकेंसीज आती हैं, स्टाफ नर्स की वैकेंसीज आती हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं रेलवेज के अंदर। रेलवे के अपने हॉस्पिटल्स भी हैं, डिस्पेंसरीज भी हैं, तो मतलब हर तरह की वैकेंसीज रेलवे निकालता है, तो इस तरह से टारगेट किया जा सकता है रेलवेज को। और कुछ पूछना चाहे कोई भी? स्टडी प्लान सर देखो वैसे तो बहुत बेसिक्स आया है कि मतलब आप एनटीपीसी के लिए ना देखिए कोर्स आपका डिफाइंड है, चैप्टर्स आपके फिक्स्ड हैं, आप कोई भी एक पहले स्टार्टिंग स्टेज पर अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आप कोई भी एक लेकर ना स्पेसिफिकली एनटीपीसी की बुक ले लें, चैप्टर वाइज आप क्वेश्चन करते चलिए, चैप्टर वाइज जैसे आपने आज कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया तो आपने कोडिंग डिकोडिंग के सारे क्वेश्चन कर लिए, ऐसी एक एक चैप्टर करके करते चलिए, बस ये है कि कोर्स कंप्लीट करने में रहिए, जैसे नवंबर में एग्जाम है अगर तो ये हमारा टारगेट हो कि नवंबर मंथ तक हम एक बार सारा कोर्स कर पाए, क्योंकि जनरली एग्जामिनेशन में यही होता है कि कुछ चैप्टर्स बच्चे छोड़ जाते हैं और वही उसी में से क्वेश्चन मिल जाते हैं उसे तो वो कर नहीं पाता है। तो अकबर जी कोई स्पेसिफिकली पोर्टल्स की बात करें उसका सर एक क्या है कि काफी आजकल तो पोर्टल्स हैं आपके जहां पर अपडेट होते रहते हैं, ठीक है, बाकी उसमें एक चीज आप ऐसा कर सकते हैं कि गूगल में अलर्ट में डाल सकते हैं कि जॉब्स डाल दिया जॉब्स इन रेलवेज, तो उसमें क्या है कि इंडिया में कहीं भी रेलवे की कोई भी वैकेंसी निकलेगी तो उसका आपको मेल आ जाता है वीकली, मतलब हर रोज आपको मेल आता रहता है, तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे आपके गूगल में ऑप्शन होता है अलर्ट का ऑप्शन होता है तो गूगल अलर्ट पे आप अपना जॉब्स इन रेलवेज अलर्ट में डाल सकते हैं, या काफी आजकल साइट्स ऐसी हैं जो फ्री जॉब अलर्ट करती हैं तो उसमें तो आप इजिली मतलब जॉब्स के बारे में पता किया जा सकता है।

अरंडी चौड़े पत्तों का छोटे कद वाला पौधा होता है जो प्राकृतिक रूप में जन्म लेता है। यह पौधा भारत में आम पाया जाता है। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है जो औषधीय रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके पत्ते भी औषधीय रूप में बहुत काम आते हैं। यहाँ अरंडी के पत्ते, बीज और तेल से जुड़े फायदे बताए जा रहे हैं, जिसे अपनाकर आप कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अरंडी की जड़ 20 ग्राम को 400 मिलीलीटर पानी में पकाएं। जब यह 100 मिलीलीटर शेष बचे तो इसे पिलाने से त्वचा संबंधी रोगों में लाभ होता है। अरंडी के तेल की मालिश करते रहने से शरीर के किसी भी अंग की त्वचा फटने का कष्ट दूर होता है। ऐसे बच्चे जिनके सिर पर बाल नहीं उगते हो या बहुत कम हो, या ऐसे पुरुष स्त्री जिनकी पलकों व भौहों पर बहुत कम बाल हो, तो उन्हें अरंडी के तेल की मालिश नियमित रूप से सोते समय करना चाहिए। इससे कुछ ही सप्ताह में सुंदर, घने, लंबे, काले बाल उगने लग जाएंगे। सिर पर अरंडी के तेल की मालिश करने से सिर दर्द की परेशानी दूर होती है। अरंडी की जड़ को पानी में पीसकर माथे पर लगाने से भी सिर दर्द में राहत मिलती है। अरंडी का तेल थोड़े से चूने में फेंटकर आग से जले घावों पर लगाने से वे शीघ्र भर जाते हैं। अरंडी के पत्तों के रस में बराबर की मात्रा में सरसों का तेल फेंटकर लगाने से भी यही लाभ मिलता है। यदि मल त्यागने में कठिनाई का अनुभव हो तो अरंडी के तेल को दूध के साथ देने से लाभ होता है। अरंडी का तेल गर्म पानी के साथ देना चाहिए या फिर अरंडी का रस शहद में मिलाकर बच्चों को पिलाना चाहिए। इससे बच्चों के पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। अरंडी के पत्तों का रस रोजाना 2 से 3 बार बच्चे की गुदा में लगाने से बच्चों के पेट के कीड़े मर जाते हैं। अरंडी के तेल में कपूर का चूर्ण मिलाकर दिन में 2 बार नियमित रूप से मसूड़ों की मालिश करते रहने से पायरिया रोग में आराम मिलता है। पत्ते पर थोड़ा चूना लगाकर तिल पर बार बार घिसने से तिल निकल जाता है। अरंडी के तेल में कपड़ा भिगोकर मस्से पर बांधने से मस्से मिट जाते हैं। अरंडी का तेल लगाने से जख्म भी भर जाते हैं और इसको मस्सों पर लगाने से मस्सा ढीला होकर गिर जाता है। अरंडी के तेल को सुबह और शाम 1 से 2 बूंद हल्के हाथ से मस्से पर मलने से 1 से 2 महीनों में मस्से गिर जाते हैं। अरंडी के बीज की मींगी को दूध में पीसकर रोगी को पिलाने से गर्दन और कमर दोनों जगह का दर्द चला जाता है। 10 ग्राम अरंडी की जड़ को छाछ के साथ पीसकर पिलाने से उल्टी और दस्त बंद हो जाते हैं। अरंडी के पत्तों का क्षार 3 ग्राम, तेल एवं गुड़ आदि को बराबर मात्रा में मिलाकर चाटने से खांसी दूर हो जाती है। अरंडी के तेल की 10 बूंदों को रात को सोते समय पानी में मिलाकर सेवन करने से कब्ज की बीमारी में लाभ होता है। एरंड का तेल 30 ग्राम को गर्म दूध में मिश्री के साथ पीने से कब्ज दूर हो जाता है। 1 कप दूध में 2 चम्मच एरंड का तेल मिलाकर सोते समय पिलाएं। इससे पेट की कब्ज नष्ट हो जाती है। चोट लगकर खून आने लगे, घाव हो तो एरंड का तेल लगाकर पट्टी बांधने से लाभ होता है। एरंड के पत्ते पर तिल का तेल लगाकर गर्म करके बांधने से चोट से सूजन एवं दर्द में लाभ होता है। एरंड के पत्ते पर सरसों और हल्दी गर्म करके मोच वाले स्थान पर लगाएं और पत्ते को उस पर रखकर पट्टी बांध दें। अरंड के बीज की गिरी 10 ग्राम काले तिल 10 ग्राम दूध में पीसकर हल्का गर्म करके मोच पर बांध दें। अरंडी के तेल की 2 चम्मच मात्रा को गर्म दूध में मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। जय हिंद।

गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं बेटे आप सभी? यू आर ऑल वेलकम इन अवर टुडे सेशन. आज का बेटे हमारा जो सेशन है, इट्स ए करियर काउंसलिंग सेशन फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स. स्पेसिफिकली हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स को टारगेट करेंगे इस करियर काउंसलिंग सेशन के अंदर. हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट करियर ऑप्शंस के, उसमें प्रोफेशनल कोर्सेज, एकेडमिक कोर्सेज, इसके अलावा कुछ ऐसे जनरल ऑप्शंस जो ओपन है स्पेसिफिक टू कॉमर्स स्टूडेंट्स. आई दिनेश मिगलानी वेलकम ऑल ऑफ यू इन अवर क्लासेस. वी हैव वेबसाइट www.examtv.in. हम बेटे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कराते हैं. लेट अस स्टार्ट विद द टुडे सेशन, दैट इज कॉमर्स स्टूडेंट करियर काउंसलिंग. बेटे जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में आज भी काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेडिकल, नॉन मेडिकल की तरफ जाते हैं, और जनरली पेरेंट्स ये मानते हैं जिन बच्चों की 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो वो उनको मेडिकल या नॉन मेडिकल स्ट्रीम में एडमिशन कराते हैं डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के लिए. पर ट्रेंड चेंज हो चुका है. आज पेरेंट्स कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर भी करियर ऑप्शंस की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं अपने बच्चों के लिए. कॉमर्स एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें हर स्टैंडर्ड का बच्चा, बिलो एवरेज, एवरेज या हम कहें कि हाई आईक्यू लेवल स्टूडेंट अपना करियर बिल्डअप कर सकता है, क्योंकि काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर. तो बेटे हमने अपने ऑप्शंस को डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा बीबीए, एमबीए, लॉ, उसके साथ साथ एनडीए, जो हर कॉमर्स का स्टूडेंट अपीयर कर सकता है. फिर हम अपने कोर्सेज में बात करेंगे बेटे, जो स्पेसिफिक कॉमर्स के बच्चे ही आ सकते हैं, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरीशिप, एक्चुरियल साइंस, इसके साथ साथ बीकॉम, बीए इकोनॉमिक ऑनर्स, क्या स्कोप है इनके, या लास्ट में हम गवर्नमेंट जॉब्स की भी बात करेंगे कि वाइल डूइंग यूर बीकॉम आप बेटे साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन. सबसे पहले मैं यहां डिस्कस करूंगा बेटे आईपीएम, जो आजकल काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट. वैसे तो अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद कैट का एग्जाम दिया जाता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ज्वाइंटली कंडक्ट करवाते हैं. आज से 10 इयर्स एगो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर हैज स्टार्टेड 5-year इंटीग्रेटेड एमबीए. अभी 2 साल पहले आईएम रोहतक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक ने भी 5-year इंटीग्रेटेड एमबीए का प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जो आईपीएम के नाम से जाना जाता है. आईपीएम के लिए आपको आईपी मैट का एग्जाम अपियर करना रहता है, जो एक ऑनलाइन टेस्ट है. आईएम रोहतक, आईएम इंदौर दोनों सेपरेट टेस्ट कंडक्ट कराते हैं. दोनों के सिलेबस में कुछ पार्ट सिमिलर है, कुछ पार्ट डिफरेंट है. मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, ये रोहतक और इंदौर दोनों के एग्जाम में पूछा जाता है. आईएम रोहतक में मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश के अपार्ट फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. तो ये 3 सेक्शंस में आपका पेपर रहेगा. एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद में आपको सेकंड स्टेज में अपीयर करना रहता है, जिसे हम पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट कहते हैं. उसमें ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज रहता है, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, राइट? तो जो स्टूडेंट 12th के बाद ही अच्छे मैनेजमेंट कॉलेज में जाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको ये लगता है कि एमबीए ही करना है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो आईएम रोहतक एंड आईएम इंदौर का रहता है. इसके साथ साथ आप बेटे अगर एमबीए में, क्योंकि कई और भी यूनिवर्सिटीज हैं जो 5-year एमबीए ऑफर करती हैं, बट टॉप कॉलेजेस की बात करें तो आईएम इंदौर एंड आईएम रोहतक. फिर उसके बाद सपोज आपका एमबीए में एडमिशन नहीं होता, आप बीबीए, बीएमएस के बारे में भी सोच सकते हैं. ये आपके बैचलर कोर्सेज होते हैं, जो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जो 3-year के प्रोग्राम रहते हैं,
और इनको करने के बाद आप एमबीए कर सकते हैं, या अगर अच्छे कॉलेज से आपने बीबीए बीबीएस किया है तो बेटे 3 ईयर के बाद ही आपकी अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है। तो अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उसमें सबसे टॉप पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम आता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट के नाम से पेपर कंडक्ट कराती है, जिसे हम जेएटी कहते हैं, जैट डीयू जैट कहते हैं। इसमें बीएमएस बीएफआईए बीबीए प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जिसमें शहीद सुखदेव कॉलेज, केशव महाविद्यालय एंड नंबर ऑफ अदर कॉलेजेस आर देयर। ये अपना एक ज्वाइंट एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। 12th में मैथमेटिक्स होना चाहिए आपके पास में कॉमर्स के अंदर। इसके साथ साथ जो इसका एंट्रेंस एग्जाम रहता है उसमें 4 सेक्शंस पे फोकस होता है। मैथमेटिक्स जिसमें 10th लेवल एज वेल एज 12th लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्बल एबिलिटी, इसके साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। डीयू जैट एग्जाम के अंदर आपकी फर्स्ट स्टेज के साथ साथ आपके 12th के मार्क्स की भी वेटेज रहती है, तो फाइनल मेरिट जो बनता है उसमें आपका टेस्ट के मार्क्स प्लस 12th के मार्क्स की वेटेज दोनों को ऐड करके मेरिट बनाई जाती है। सिमिलरली सिम्बोसिस पुणे के मैनेजमेंट कॉलेज में भी बीबीए के प्रोग्राम है, एससीटी के नाम से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें पुणे नोएडा हैदराबाद 3 सेंटर्स पर बीबीए ऑफर की जाती है। इसके साथ साथ आप एनपैट नारसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टडीज मुंबई और बेंगलोर के कैंपस में बीकॉम ऑनर्स, बीएससी इकोनॉमिक ऑनर्स, बीएससी फाइनेंस, इस तरह के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं जो इक्विवेलेंट टू बीबीए है। तो आप देखते हैं 12th के बाद काफी बच्चे ऐसे हैं जो बीबीए बीएमएस या 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमबीए के लिए प्रिपरेशन करते हैं। इन सब में प्रिपरेशन का एडवांटेज क्या रहता है कि एंट्रेंस एग्जाम जो है उसमें आपके 12th के सब्जेक्ट्स का कोई रोल नहीं है। अगर आप अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडीज में इफ यू आर नॉट गुड तो नो प्रॉब्लम, आपको जो भी एंट्रेंस एग्जाम है वो एक तरह से मल्टीपल च्वाइस पेपर रहता है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है, और कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें क्वेश्चंस जो है वो मैथमेटिक्स रीजनिंग इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से एसोसिएटेड है। तो अगर आप 10th के बाद से ही इन एग्जाम्स को टारगेट करें, इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, डेली कुछ टाइम स्पेयर करें, हम भी अपने वेबसाइट के थ्रू काफी कोर्सेज ऑफर करते हैं बहुत ही लो प्राइस के ऊपर, तो आप बेटे हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.examtv.in, जहां आईपीएम का प्रोग्राम हम ऑफर करते हैं। इसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट के बाद बेटे नेक्स्ट आई स्पेंड सम टाइम ऑन लॉ। आजकल पहले तो बेटे माना जाता था कि आर्ट्स का स्टूडेंट ही लॉ में जाता है, बट ऐसा नहीं है। आज के टाइम में मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बेटे क्लैट की प्रिपरेशन करते हैं। क्लैट मतलब कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ये प्राइमरी एनएलयूज कंडक्ट कराती हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। जैसे बेटे आप इंजीनियरिंग में आईआईटीज का नाम लेते हैं, अगर आपको एमबीबीएस करना है तो एम्स का नाम रहता है। सिमिलरली अगर आपको लॉ करना है तो क्लैट इज द टॉप मोस्ट एग्जामिनेशन। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज 21 एनएलयूज इंडिया में ज्वाइंटली कंडक्ट कराती हैं इस एग्जाम को, जो मई मंथ में होता है। इसके साथ साथ कुछ और कॉलेजेस भी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस एलसेट का स्कोर लेते हैं, एनएलयू दिल्ली, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली एआईएलटी का स्कोर लेती है। सिमिलरली पुणे में जो लॉ कॉलेज है सिम्बोसिस, दे कंडक्ट देयर एग्जाम इन नेम ऑफ एससीटी। जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं इन सब का एग्जाम पैटर्न मोर और लेस इज सेम, वर्बल एबिलिटी इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, स्मॉल पोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स, वेरी लिटिल पोर्शन, लीगल एप्टीट्यूड जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर, इसके साथ साथ जर्नल स्टडीज जिसमें आपके स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लैट
में 150 क्वेश्चंस आते हैं, सिमिलरली AIELTS में भी 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। एक सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि क्लैट के अंदर आपके 12th के मार्क्स की कोई वेटेज नहीं है, आपको ओनली एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है, और अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं तो बेटे विदाउट गिविंग एनी वेटेज टू योर 12th मार्क्स या कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होता, ओनली आपका एंट्रेंस के बेस पर आपका एडमिशन होगा, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। क्योंकि NLU's में जैसे आपका मैनेजमेंट कॉलेज में MBA करने के बाद आपकी अच्छी प्लेसमेंट होती है, सिमिलरली टॉप NLU's जिसमें NLU बेंगलोर, NLU हैदराबाद, NLU भोपाल, जोधपुर, लखनऊ, इस तरह की नंबर ऑफ टॉप NLU's आर देयर, तो अगर आप इनमें कहीं भी आपका लॉ में एडमिशन हो जाता है तो 5 ईयर के बाद में यू इजिली गेट कॉरपोरेट प्लेसमेंट्स या आपको लॉ फर्म्स में डायरेक्ट जॉब मिल जाती है, अच्छी सैलरी में जॉब मिल जाती है। तो जो स्टूडेंट लॉ के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो बेटे बीकॉम होना, कॉमर्स में एडमिशन लेने का मतलब ये नहीं कि वो लॉ नहीं कर सकते, लॉ भी उनके लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहता है। तो प्लस वन से ही आपको बेटे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और इसके बाद आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। हम अपनी वेबसाइट www.examtv के थ्रू क्लैट का कोर्स ऑफर करते हैं, इसके साथ साथ हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज भी आते हैं क्लैट के, तो बेटे आप उनको भी देख सकते हैं एट ए वेरी मिनिमम प्राइस। इसके बाद एक बहुत बड़ा मिथ रहता है कि बेटे जिस बच्चे ने कॉमर्स ले लिया तो वो डिफेंस में नहीं जा सकता, ये भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली NDA को यहां इंक्लूड किया है। NDA मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी। NDA में 3 स्ट्रीम्स है बेटे, एक आपकी आर्मी है, सेकंड एयरफोर्स है, थर्ड नेवल है। एयरफोर्स और नेवल एकेडमी के लिए 12th में नॉन मेडिकल होना एसेंशियल है, बट आर्मी के लिए आप बेटे कॉमर्स आर्ट्स के स्टूडेंट भी हो सकते हैं, ये भी कोई एसेंशियल नहीं कि 12th में आपके पास में मैथमेटिक्स हो, बट एंट्रेंस एग्जाम में 12th के मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए मैथ्स होना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो बेटे अगर आपका NDA में जाने का इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स बैकग्राउंड अगर आपकी है तो यू डोंट नीड टू वरी, आप NDA का एग्जाम अपीयर कर सकते हैं। या मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा बेटे कि क्वालिफिकेशंस क्या है और NDA एग्जाम में क्या क्या आता है। NDA एग्जाम की क्वालिफिकेशन जो है एज लिमिट है 16 से 18.5 ईयर्स तक का। जनरली जब आप 12th क्लास में होते हैं सितंबर के मंथ में एग्जाम होता है, 12th अपीयर जिस साल आप कर रहे हैं उस साल, तो आप वो एग्जाम दे सकते हैं। फिर बेटे नेक्स्ट एग्जाम इसका आपका अप्रैल में होता है और फिर नेक्स्ट सितंबर में, तो 2 से 3 बार आप अटेम्प्ट दे सकते हैं NDA का। NDA भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन होता है, बट कई बार पेरेंट्स अनअवेयर होते हैं या बच्चों को इस बात का पता ही नहीं होता कि कॉमर्स का स्टूडेंट भी NDA का एग्जाम दे सकता है। NDA का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो बेटे 2 पार्ट्स में आता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो रहता है उसमें आपका 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स है और पेपर 2 600 मार्क्स का पेपर रहता है, पेपर 2 जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जनरल इंग्लिश 200 मार्क्स एंड जनरल स्टडीज 400 मार्क्स। जनरल स्टडीज में आपके 10th स्टैंडर्ड तक के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इसके साथ साथ साइंस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहते हैं, और जनरली 10th क्लास तक तो आपने GS पढ़ा ही होता है, तो ऐसी बात नहीं है, आप थोड़ी सी प्रिपरेशन अगर करें तो NDA भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। NDA में ही आपकी स्टेज 1 होती है, स्टेज 2 के लिए आपको SSB क्वालिफाई करना रहता है। SSB में भी 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज द स्क्रीनिंग जो डे 1 पर होती है आपकी। स्क्रीनिंग में क्वालिफाई होने के बाद आपका स्टेज 2 स्टार्ट होता है, 4 डे का इंटरव्यू रहता है। नंबर ऑफ टेस्ट आर देयर, हमने एक अलग सेशन बनाया हुआ है कि SSB में क्या क्या इंक्लूड है, तो बेटे आप हमारे YouTube चैनल से उसके बारे में देख सकते हैं। NDA के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है बेटे आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल। ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो आपको सिखाई जा सके,
एनडीए का आपकी एनडीए में जो टेस्ट किया जाता है आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी, आपकी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, तो उसके लिए अलग अलग टेस्ट बने हुए हैं। तो आप एनडीए भी एक अच्छा ऑप्शन सोच सकते हैं बेटे, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। बट ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स आप जरूर रखिए अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, एनडीए के अंदर जाना चाहते हैं तो, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद बेटे अब मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा कि सपोज मैं इन कोर्सेज में नहीं जाना चाहता, बीबीए एमबीए नहीं करना चाहता, लॉ नहीं करना चाहता, मैं जनरल एकेडमिक कोर्सेज की तरफ जाना चाह रहा हूं, मेरा इंटरेस्ट जो है एकेडमिक कोर्सेज में है। प्रॉब्लम क्या है, देखिए हम क्यों जनरली बच्चा अवॉइड करता है कि बीकॉम बीए इकोनॉमिक ऑनर्स ना करे, रीजन क्या है कि पेरेंट्स ये चाहते हैं बेटे कि ट्वेल्थ के बाद वो एक ऐसी ट्रैक में एडमिशन ले ले कि उसके बाद फिर उसे सोचना ना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बेटे एमबीए किया तो क्लियर है, आपका एमबीए करोगे, एमबीए के बाद आप जॉब करोगे, मतलब आपका एक लाइन सेट हो गया। आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एडमिशन लिया ट्वेल्थ के बाद, सीपीटी का एग्जाम दिया, अभी मैं सारे एग्जाम्स की बात करूंगा, तो उसमें क्या है कि आपने अगर सीएम एडमिशन ले लिया तो क्लियर है बेटे, पेरेंट्स को एक बात लाइन क्लियर है बच्चे ने सीए ही करनी है। आपने सीएस किया तो पेरेंट्स के माइंड में क्लियर है भाई सीएस ही करेगा। अगर आप बीकॉम बीए इकोनॉमिक ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स बीकॉम पास किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो थ्री इयर्स के बाद में फिर से आपके आगे सेम क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट नेक्स्ट। इसलिए थोड़ा पेरेंट्स अवॉइड करते हैं, ट्राई किया जाता है कि बच्चा ट्वेल्थ के बाद ही किसी प्रोफेशनल लाइन में एंटर कर जाए सो दैट फोर फाइव इयर्स के बाद ही कैन गेट द जॉब। अब बेटे जो बच्चे इन कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले पाते या काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका टारगेट होता है कि इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज से आपने बीकॉम ऑनर्स करना है, बीए इकोनॉमिक ऑनर्स में एडमिशन लेना है, जिसमें श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, लेडी श्रीराम कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, नंबर ऑफ कॉलेजेस आर देयर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना मतलब आपको ट्वेल्थ में मार्क्स बहुत अच्छे चाहिए, प्योरली मार्क्स बेस्ड एडमिशन है तो इसलिए ट्वेल्थ में मार्क्स की परफॉर्मेंस मैटर करती है। और अगर आप डीयू की बात करें नॉर्थ कैंपस के अंदर तो 98%+ मार्क्स पे ही बीकॉम में एडमिशन होता है, हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, मिरिंडा हाउस, खालसा कॉलेज, डीआर कॉलेज, नंबर ऑफ कॉलेजेस आर देयर इन नॉर्थ कैंपस। सिमिलरली साउथ कैंपस में वेंकटेश्वरा कॉलेज, नंबर ऑफ कॉलेजेस आर देयर। आप जब एडमिशन लेने की बात करेंगे तो आप बेटे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस, किस कॉलेज में लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रहा। पर बहुत इंपॉर्टेंट ये है बेटे कि बीकॉम या बीए में एडमिशन लेना मतलब तीन साल के बाद आपके आगे फिर वही क्वेश्चन है व्हाट नेक्स्ट। जनरली फिर वहां भी बच्चा ऑप्शन देखता है, काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बीकॉम करने के बाद में एमबीए की प्रिपरेशन करते हैं, कैट का एग्जाम देते हैं, काफी स्टूडेंट्स एमकॉम परस्यू करते हैं, नेट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं जिनको टीचिंग लाइन में जाने का इंटरेस्ट है, एमकॉम के बाद बीएड करते हैं, स्कूल लेवल टीचिंग में आप एंटर कर सकते हैं। तो एक तरह से पॉइंट ये यही है कि बेटे अगर आप थ्री ईयर के बाद में आपको फिर सोचना पड़ेगा व्हाट नेक्स्ट, राइट। लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी करते हैं, अभी मैं डिस्कस करूंगा उसके बारे में भी, ठीक है। तो ये बेटे आपके पास में डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। हाँ, टॉप कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो रहा है बीकॉम के अंदर तो प्लेसमेंट्स भी अच्छी हैं, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स करने के बाद से ही आपकी अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है, बट वो कुछ सेलेक्टेड ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अगर हम जनरल स्टूडेंट्स की बात करें तो उन्हें बीकॉम के साथ साथ आगे के लिए प्लानिंग करना पड़ता है पहले से ही कि आगे वो क्या करेंगे। इसके बाद बेटे अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी स्ट्रीम्स के बारे में जो स्पेसिफिकली कॉमर्स स्टूडेंट ही ऑप्ट करता है, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरीशिप, एक्चुरियल स्टडीज, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉमर्स स्टूडेंट के लिए स्पेसिफाइड स्ट्रीम्स हैं। सबसे पहले मैं एक्चुरियल साइंस के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। एक्चुरियल साइंस एक नया स्ट्रीम है, अभी भी काफी बच्चे इस स्ट्रीम में नहीं जाते,
आप देखेंगे अपने आसपास में, आपको बहुत कम स्टूडेंट्स मिलेंगे जो एक्चुरियल साइंस में कुछ कोर्स कर रहे हैं। एक्चुरियल बेसिकली स्टडी ऑफ इंश्योरेंस होता है, रिस्क फैक्टर को स्टडी करना। आप देखिए बेटे, जितनी इंश्योरेंस पॉलिसीज बनती हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ केयर में है, बिजनेस में है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, तो उसमें रिस्क फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये सारा काम जो होता है, ये एक्चुरीज का वर्क होता है, वो प्रोफेशनल्स होते हैं इस फील्ड के। एक्चुरीज का जो पैटर्न है, उसके लिए बेटे ट्वेल्थ के बाद आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, एक्चुरियल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। मैथमेटिक्स मस्ट होता है ट्वेल्थ में, ठीक है। उसके बाद बेटे टेस्ट क्वालिफाई होने के बाद आप एक्चुरियल इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाता है। बॉम्बे में इंस्टीट्यूट है, बाकी दिल्ली में इसकी ब्रांच है। इसमें आपको टोटल 15 पेपर क्वालिफाई करने होते हैं, जिसमें आप एक बार में दो पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आप ये मान के चलिए बेटे, अगर आपके 4-5 एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाते हैं, तो आपको इजीली जॉब मिल जाती है एज एन एक्चुरी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप एक ठीक ठाक अर्निंग अपनी कर सकते हैं। तो जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है ज्यादा आगे स्पेंड करने के लिए, क्योंकि मैंने पहले जिन कोर्सेज की बात करी जिसमें एमबीए, बीबीए या हमने लॉ की बात करी, तो वो बेटे वो कोर्सेज हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर काफी हाई है। और हम कई बार देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स के पास फाइनेंशियल कैपेसिटी इतना नहीं होता कि हमें वो प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ा सके, पर बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, दे वांट टू डू समथिंग, तो उनके लिए एक्चुरियल साइंस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत ही कम फीस में सेल्फ स्टडी रिक्वायर्ड है, आपको बेटे सेल्फ स्टडी करनी है, पेपर क्वालिफाई करते चलिए। आज भी आप अगर नेट पे सर्च करके देखें द मोस्ट पेड प्रोफेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो आपको पता चलेगा बेटे एक्चुरी जो है वो मोस्ट पेड प्रोफेशन है यूएसए के अंदर। इसके साथ साथ इंडिया में चेन्नई एक सेंटर है इंश्योरेंस कंपनीज का, मैक्सिमम जॉब्स जो जनरेट होती हैं बेटे साउथ इंडिया में एक्चुरीज की जॉब जनरेट है चेन्नई के अंदर। बट एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप 7-8 एग्जाम्स भी क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आप 1 लाख पर मंथ की जॉब इजीली आपको मिल जाता है, और जो एक बहुत बड़ा बहुत मुश्किल टारगेट नहीं होता। थोड़ी प्रॉब्लम इसमें यह है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट कम है, आप सर्च भी करेंगे नेट पे भी सर्च करने बैठेंगे तो आपको बहुत ही कम इंस्टीट्यूट मिलेंगे जो एक्चुरियल साइंस से रिलेटेड, एक्चुरियल स्टडी से रिलेटेड पढ़ाते हैं। इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूं बेटे, अगर आपका इंटरेस्ट एक्चुरियल साइंस में जाने का है, क्योंकि इसके जो सब्जेक्ट्स हैं स्टेटिस्टिक्स से मैच करते हैं, तो आप बीए स्टेटिस्टिक्स ऑनर्स कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बीए स्टेटिस्टिक्स ऑनर्स में एडमिशन लेते हैं, उसके साथ साथ एक्चुरियल स्टडीज को फॉलो करते हैं। इसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी सदाबहार प्रोफेशन कॉमर्स के बच्चों के लिए। पहले तो यही माना जाता था बेटे जिस बच्चे ने कॉमर्स में एडमिशन लिया है, मतलब उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनना है, ठीक है। इसलिए इसको मैंने सबसे बाद में रखा है, क्योंकि ये सब बच्चों को ऑलरेडी पता ही होता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सीए जो है वेरियस डोमेन में काम करता है, जैसे ऑडिट है, टैक्सेशन है, इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंस है। सीए के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, उसके बाद बेटे सीपीटी का एग्जाम रहता है। सीपीटी मतलब कॉम्पिटेंसी प्रोफेशनल टेस्ट। सीपीटी टेस्ट में कुछ पेपर सब्जेक्टिव है, कुछ ऑब्जेक्टिव है। कॉमर्स का बच्चा ही अपीयर कर पाएगा, क्योंकि अगर आपके पास में कॉमर्स नहीं है, सीपीटी के अंदर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन, तो ये 4 सब्जेक्ट्स का पेपर रहता है। तो अगर आपके पास में कॉमर्स नहीं है, तो बेटे अकाउंटेंसी, बिजनेस ये आपको पढ़ना पड़ेगा दोबारा से। तो जनरली एडवाइजेबल यही रहता है कि कॉमर्स स्टूडेंट जो है उसने +1 +2 में ये सारे कोर्सेज किए होते हैं, अकाउंटेंसी उसने पढ़ा रहता है, तो ऑलमोस्ट सेम टू सेम आपका सीपीटी के एग्जाम में रहता है। तो थोड़ी सी प्रिपरेशन से आप सीपीटी क्वालिफाई कर सकते हैं। सीपीटी एक तरह का फर्स्ट स्टेप है, आप ये कह सकते हैं कि सीपीटी इज एन एंट्रेंस गेट। आप एंटर कर जाएंगे, आपका सीए में एडमिशन हो जाएगा। सीए में स्टेजेस हैं बेटे, सबसे पहली स्टेज आपकी आईपीसी है, इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जिसे हम कहते हैं। इसमें आपको
टू ग्रुप्स क्वालिफाई करने होते हैं, एक बार में दे सकते हैं या आप दोनों ग्रुप्स को एक बार में भी दे सकते हैं, आपकी च्वाइस है। आईपीसी स्टेज वन क्वालिफाई होने के बाद थ्री ईयर की आर्टिकलशिप रहती है आपकी। थ्री ईयर आर्टिकलशिप के साथ साथ आप आईपीसी फाइनल की प्रिपरेशन भी करते हैं, सीए फाइनल जिसे हम कहते हैं, और थ्री ईयर आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के बाद आप सीए फाइनल का एग्जाम दे सकते हैं, और एक बार आपका सीए फाइनल के एग्जाम क्वालिफाई हो जाए तो यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आप देखेंगे बेटे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है, पर्सनल प्रैक्टिस कर सकते हैं आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज के टाइम में टैक्सेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है जीएसटी आने के बाद, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का स्कोप हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। इसके साथ साथ बैंक्स में जॉब्स मिल जाती हैं, प्राइवेट कंपनीज में जॉब्स मिल जाती हैं सीए की, तो ये काफी ज्यादा स्कोप है। आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी ट्राई कर सकते हैं, पीएसयूज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की वैकेंसीज आती हैं। और आप ये मान के चलो बेटे कि अगर आपका रैंक अच्छा है सीए के अंदर तो टॉप कंपनीज में बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है। तो कॉमर्स स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में तो उनका फर्स्ट टारगेट है ही है, ये वो अपना प्लान कर सकते हैं। इसके बाद बेटे कंपनी सेक्रेटरीशिप, सीएस भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। जनरली जो बच्चे सीएस में एडमिशन लेते हैं तो सीएस के साथ साथ बेटे वो एलएलबी भी करते हैं, ड्यूअल क्वालिफिकेशन हो जाती है। कंपनी सेक्रेटरीशिप जो है ये आईसीएसआई इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ट्वेल्थ के बाद इसमें सीएस फाउंडेशन का कोर्स होता है, ये एक तरह का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है सीएस फाउंडेशन, सीएस करने के लिए सब्जेक्टिव पेपर रहता है, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स भी हैं उसमें और कुछ आपके जनरल सब्जेक्ट जैसे आपका मैथमेटिक्स है। सीएस फाउंडेशन क्वालिफाई होने के बाद आप बेटे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम लेते हैं, एग्जीक्यूटिव कोर्स, उसके बाद आपकी 15 मंथ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहती है, फिर बेटे आप प्रोफेशनल प्रोग्राम कोर्स देते हैं, तो इस तरह से आप एक सीएस बन जाते हैं कंपनी सेक्रेटरीशिप। बेसिकली सीएस का जो काम क्या रहता है कि जितने भी कंपनीज हैं उनको कैसे अपनी कंप्लायंसेज करनी है कंपनी लॉ के अंडर, तो ये सारा सीएस का वर्क रहता है। तो बेटे अगर आपने सीएस के साथ लॉ भी किया हुआ है तो आप एज ए प्रैक्टिसिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा स्कोप है, हार्ड वर्किंग है, थोड़ा सेल्फ स्टडी ज्यादा रिक्वायर्ड है और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आर गुड इन द सीएस ऑल्सो। तो ये बेटे कुछ वो एग्जाम्स थे जो मैंने आपको बताए जो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली। फिर काफी स्टूडेंट्स आज के टाइम में ऐसा भी है जो प्राइवेट सेक्टर में वर्क नहीं करना चाहता बट बीकॉम में एडमिशन लिया है, तो बेटे उसके बाद वो सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकता है। जनरली गवर्नमेंट जॉब मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। अगर हम एक दो एग्जाम्स को छोड़ दें जिसमें एसएससी सीएचएसएल जो ट्वेल्थ बेस पर एग्जाम है, अदरवाइज मैक्सिमम एग्जामिनेशन की जो क्वालिफिकेशन है दैट इज आफ्टर ग्रेजुएशन। या मैंने लिस्ट ऑफ एग्जाम्स दिया है जिसमें हमने अलग अलग गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के बारे में बात करी है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज जिसे हम कहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर, एलआईसी आईबीपीएस आरबीआई। एक टाइम पर तो ये माना जाता था कि कॉमर्स का जो स्टूडेंट है वो बेटे बैंक में जॉब्स के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट होता है, बट आज के टाइम में आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है बैंक पीओ का एग्जाम रहता है, उसमें मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स सभी टाइप के स्टूडेंट आते हैं। हाँ ये जरूर है कि आपको कॉमर्स बैकग्राउंड है तो आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट में कई एरियाज में हेल्प हो जाती है। तो ये दिस द लिस्ट ऑफ द एग्जाम। अब थोड़ा सा टाइम बेटे मैं आपको, वैसे तो हमने अलग अलग सेशंस में सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कैसे करें, बैंक पीओ के एग्जाम में क्या रहता है, एसएससी एग्जाम में क्या रहता है, हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू आप अलग अलग सेशंस देख सकते हैं जिसमें हमने बहुत ही एलाबोरेटली एक एक एग्जाम को कवर किया है ताकि स्टूडेंट्स उस एग्जाम के बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले पाए। मैं इन ब्रीफ आपको बताऊं, जितने भी आपके गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स हैं मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर आपको बेटे टू स्टेजेस में पेपर रहता है। फर्स्ट आपकी प्रिलिमिनरी स्टेज जिसे हम स्टेज वन कहते हैं,
और जो पेपर पैटर्न है बेटे उसमें फोर सब्जेक्ट्स पे आपको कमांड बनानी है, चाहे आप बैंक पीओ का एग्जाम दें, चाहे आप एलआईसी का एग्जाम दें, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दें, मतलब किसी भी टाइप का जो गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन है उसमें आपको मैथमेटिक्स 10th स्टैंडर्ड तक का मैथमेटिक्स जिसमें अर्थमेटिक्स एल्जब्रा ज्योमेट्री ये सारी चीजें आपने पढ़नी रहती है, इसके साथ साथ रीजनिंग वर्बल एबिलिटी इंग्लिश जिसे हम कहते हैं इंग्लिश ग्रामर वोकैबुलरी ये सारी चीजें आपको करनी है, और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स बिजनेस अफेयर्स इसके साथ साथ आपकी जनरल स्टडीज में स्टैटिक जीके जिसे हम 10th स्टैंडर्ड तक की जीके कहते हैं जिसमें आप बेटे हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी ये सारे सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं। तो एक तरह से कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास में ये सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि जब बेटे आप प्लस वन में एडमिशन लेते हैं उस टाइम पर आपकी प्रेफरेंसेस डिफरेंट होती हैं। काफी स्टूडेंट कॉमर्स इसलिए ऑप्ट करते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स चाहते हैं अभी वो कॉमर्स लें, या कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं बेटे जिनको ये लगता है कि दे आर नॉट गुड इन स्टडीज तो मेडिकल नॉन मेडिकल चलाना उनके लिए मुश्किल है तो दे गो फॉर कॉमर्स। बट जब आप कॉमर्स में एडमिशन ले लेते हैं प्लस वन में तो आपको बेटे ये जरूर सोचना चाहिए कि आप किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। आज का टाइम जो है वो कॉम्पिटिशन का टाइम है, आप जितनी जल्दी अपनी स्ट्रीम फाइनलाइज करेंगे जितना टारगेटेड एफर्ट करेंगे उस पर्टिकुलर करियर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। तो इसलिए सबसे ज्यादा आपसे एक्सपेक्टेड क्या है कि बेटे ट्वेल्थ के बाद, ट्वेल्थ मैं तो कहता हूं कि प्लस वन से ही, अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है तो बेटे आप कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को उस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करिए कि आगे सीए में आपको हेल्प हो सके। आपको अगर बीबीए एमबीए में जाना है तो बेटे आप प्लस वन से ही आईपीएम एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, एप्टीट्यूड अपना बिल्डअप करिए, लैंग्वेज पे कमांड बनाइए सो दैट आप ट्वेल्थ के बाद अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर सके। आपको लो में जाना है तो क्लैट की प्रिपरेशन करिए। तो मतलब प्लस वन में एडमिशन लेने के बाद आपको थोड़ा ये डिसाइड जरूर करना चाहिए आप एक्चुअल में कॉमर्स के अंदर किस पर्टिकुलर स्ट्रीम में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। वैसे तो आप लाइफ में किसी भी स्टेज में किसी भी करियर में अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिन लोगों ने बहुत लेट एज में वर्क करना स्टार्ट करा बट डेडिकेशन से काम किया, बहुत जल्दी उन्होंने सक्सेस की बुलंदियां पाली ऊंचाइयां पाली। बट फिर भी जितना जल्दी आप अपने टारगेट को सेट करके उसको चेंज करना स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो दिस इज एंड टू अवर सेशन बेटे। हम डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के, पेनड्राइव कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज थ्रू अवर वेबसाइट examtv.in जिसमें हम बेसिकली कैट आईपीएम क्लैट और एसएससी के कोर्सेज ऑफर करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं या स्क्रीन पे हमारे नंबर शेयर हुए हैं उस पे आप बेटे बात कर सकते हैं किसी भी टाइप की एंक्वायरी के लिए रिगार्डिंग योर करियर। थैंक यू वेरी मच।

भारत की आजादी की पहली लड़ाई 1857 में लड़ी गई थी, लेकिन शायद कम ही लोगों को मालूम होगा कि 1857 से करीब 77 बरस पहले भारत की एक रानी थी जिसके युद्ध कौशल और बहादुरी ने न सिर्फ अंग्रेजों से लोहा लिया बल्कि उनको परास्त कर कई बरसों तक राज किया। हम बात कर रहे हैं शिवगंगा की रानी वेलु नाचियार की, जिनको आज भी तमिलनाडु के लोग वीर मंगई या बहादुर रानी के नाम से जानते हैं। 3 जनवरी 1730 तमिलनाडु के रामनाथपुरम के राजा के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। राजा और रानी ने प्यार से इस कन्या का नाम वेलु रखा। बचपन से ही वेलु न सिर्फ अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थी बल्कि इन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी और बिना हथियारों के युद्ध में भी महारत हासिल थी। वेलु अपनी मातृभाषा के साथ अंग्रेजी, फ्रेंच और उर्दू में भी पारंगत थी। 16 बरस की आयु होते होते वेलु के लिए सुयोग्य वर की खोज शुरू हुई। राजा और रानी को उनके लिए शिवगंगा के राजा मुथुवडुगनाथ पेरिया के रूप में जीवन साथी मिला। करीब 20 वर्षों तक रानी वेलु और राजा पेरिया ने शिवगंगा पर राज किया। इसी बीच वेलु ने एक सुंदर कन्या विलच्ची को भी जन्म दिया, लेकिन खुशियों के ये पल ज्यादा दिन नहीं चल सके। सन 1772 में अरकोट के नवाब मोहम्मद अली खान वालजा और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिलकर शिवगंगा पर हमला किया। भीषण युद्ध चला और राजा की हार हुई। रानी वेलु से पति और शिवगंगा दोनों छिन गए। उन्हें अपनी दुधमुही बच्ची की जान बचाने के लिए जंगलों में भागना पड़ा। रानी वेलु को संरक्षण मिला डिंडीगुल के विरुपची में, जहां इन्होंने गोपाला नायकर के संरक्षण में करीब 8 बरस बिताए। इतने दिन रानी अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगी रही। इस बीच इनकी मुलाकात टीपू सुल्तान के पिता और मैसूर के सुल्तान हैदर अली से हुई। कहते हैं रानी वेलु ने उनसे शुद्ध उर्दू में बात की थी, जिससे प्रभावित होकर हैदर अली ने न सिर्फ इनकी मदद की बल्कि इनको अपनी बेटी की तरह माना। इस तरह अब वेलु के पास न सिर्फ एक मजबूत साथी था बल्कि मरुदू भाइयों और उदयाल जैसे शक्तिशाली सिपहसालार भी। अगले 8 वर्षों तक वेलु नाचियार धीरे धीरे अपने खोए हुए इलाके वापस पाने में लगी रही, और एक दिन वो भी आया जब वो अपने किले के सामने खड़ी थी। ये साल था 1780। रानी को मालूम था कि इस किले को भेदना आसान नहीं है, लेकिन इनके पास उस मुश्किल का तोड़ था। इन्होंने अपनी कमांडर कुइली के साथ मिलकर एक योजना बनाई। योजना ये थी कि किले के अंदर विजयदशमी को प्रवेश किया जाए, जब आम दिनों के विपरीत किले में आने जाने पर उतने प्रतिबंध नहीं होते थे। कमांडर कुइली ग्रामीण औरतों के भेष में किले के अंदर प्रवेश कर गईं, और जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को कुछ समझ में आता वो उन पर कहर बनकर बरसने लगी। इस बीच अपने गुप्तचरों की मदद से कुइली को अंग्रेजों के गोला बारूद के भंडार का पता चला। उनके पास बस यही मौका था। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर मंदिर के दिए में जलने वाला घी लगाया और आग लगाकर बारूद के भंडार में घुस गई। जबरदस्त विस्फोट हुआ और इसी धमाके के साथ शिवगंगा पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। लिखित इतिहास

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज का जो हमारा सेशन है, एक बार मैं इंट्रोड्यूस कर दूं भी किस टॉपिक पे हम बात करेंगे और उसके साथ साथ उसके अलावा भी किस पॉइंट पे फोकस करेंगे। देखिए, आज का जो हमारा सेशन है वो प्राइमली करियर्स इन एग्रीकल्चर के ऊपर है। ठीक है, मतलब जो लोग एग्रीकल्चर के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उससे रिलेटेड हमारा सेशन है। और एग्रीकल्चर में आपकी कुछ डोमेन्स है, मतलब एक तो वो बच्चे हैं जो एक तरह से एग्रीकल्चर रिसर्च में जाना चाहते हैं, ठीक है। सेकंड, वो बच्चे हैं जो एक तरह से उन्होंने अपना 10th 12th के बाद वो अपनी खेती करना चाहें, ऑर्गेनिक फार्मिंग है या और भी ऐसी ऐसी डोमेन्स हैं जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। मतलब वो आपकी डायरेक्ट एग्रीकल्चर नहीं है, उसमें आप कुछ प्रोफेशनली एग्रीकल्चर जैसे हॉर्टिकल्चर है या और भी कई तरह की खेती है जो आप कर सकते हैं। तो इन सब बातों पे हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे और लास्ट में फिर हम थोड़ा ये भी बात करेंगे, क्योंकि हमारी जो सीरीज ऑफ सेशंस है तो हम अप्रोक्सीमेटली आज हमारा मतलब अब ऑलमोस्ट ज्यादातर जो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, अब एक दो सेशंस हो रहे हैं इसके अंदर, तो हम थोड़ा सा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम प्रिपरेशन की बात करते हैं बार बार, तो सब्जेक्ट वाइज भी डिस्कस करेंगे आज के सेशन में कि जैसे आप जनरल स्टडीज की बात करते हैं जीएस की, तो कैसे जीएस के लिए प्रिपेयर किया जाए, वो भी एक हमारा टारगेट है आज की सेशन के अंदर। ठीक है, तो पहले तो मैं बात करूंगा बेटे एग्रीकल्चर के ऊपर कि अगर आप एक एग्रीकल्चर में प्रोफेशनल डिग्री लेना चाहें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है, और उसके साथ साथ फिर उसका स्कोप क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि बच्चों को स्कोप के बारे में नहीं पता होता, इसलिए वो उस फील्ड में नहीं जाते। मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि जिन बच्चों के पास में 12th में मेडिकल साइड होती है, देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एग्रीकल्चर भी एक तरह की साइंस है, इसमें भी आपको 12th में आपके लिए मेडिकल साइड होना चाहिए, आपके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके मेन सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी आप एग्रीकल्चर के किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो क्या रहता है कि इंडिया में काफी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको बीएससी ऑफर करती हैं, बीएससी इन एग्रीकल्चर, ठीक है, ये एक तरह से 4 ईयर का प्रोग्राम होता है 12th के बाद में, जिसमें आपको एग्रीकल्चर साइंस या उससे जो रिलेटेड जो डिसिप्लिन है उनके बारे में टीच किया जाता है। ठीक है, ये मतलब हम नाम में खुद कहते हैं एग्रीकल्चर कहते हैं, बट ये डोमेन काफी वाइड है। इसमें एग्रीकल्चर के अंदर आप प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, सोयल साइंस, मतलब ये जो खेती की बात करते हैं कि आप जब भी एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में सोयल प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, फिर उसके बाद जो उसमें आप सीड डाल रहे हैं दैट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर जो फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स डाल रहे हैं कैसे आप उसे डील करते हैं, तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर आपको सभी डोमेन्स के बारे में टीच किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर जो मेथड्स होते हैं, जैसे कुछ मेथड्स हमारे ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर आपके मेथड्स हैं या नई नई चीजें ऐड हो रही हैं, आप देखें आज के टाइम में एग्रीकल्चर एक तरह से प्रोफेशन के तौर पर सामने आया है, तो उसमें ये सारी चीजें आपको जब आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं तो वहां पर आपको ये सारी चीजें टीच की जाती हैं। ठीक है, डोमेन बहुत अच्छा है, स्कोप भी काफी ज्यादा है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप देखिए इंडिया में आज भी एग्रीकल्चर सबसे अगर हम

जीडीपी की बात करें तो आज भी एग्रीकल्चर का रोल काफी ज्यादा है और बहुत इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड है। ठीक है, आप मतलब चाहे आपकी क्लोथ इंडस्ट्री है, ठीक है, चाहे आपकी बेवरेज इंडस्ट्रीज है, मतलब ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड है, तो स्कोप इज वेरी वाइड। अब देखिए इसमें क्या है, ये क्या इसका स्ट्रक्चर है, 4 ईयर प्रोग्राम है जैसे मैंने आपको पहले बताया, और बीएससी एग्रीकल्चर का जो एडमिशन प्रोसेस है बेसिकली एंट्रेंस बेस पर है। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो आपके 12th के मार्क्स के बेस पे भी एडमिशन देते हैं, क्योंकि ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज में टीच किया जाता है। ठीक है, तो उसमें जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है वहां पे ये प्राइमरी कोर्स रहता है, तो जनरली इसमें एंट्रेंस एग्जाम बेस है। ठीक है, इसमें 12th की जो मिनिमम कंडीशन है 50% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट आपके पास हो, मतलब हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि मेडिकल साइड होना चाहिए आपके पास में। फीस जो आपके स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज है वहां फीस काफी कम है, ज्यादा फीस नहीं है, मतलब कम मतलब जितना आप बीए बीएससी करते हैं उतना ही फीस आपको पे करना रहता है। ठीक है, बट सैलरीज आपको मिलती है, मतलब आप अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है और वहां पर कंपनीज भी आती हैं, आपको अलग अलग तरह की जॉब ऑफर करती हैं, जैसे ये मैं आपको कई तरह के जॉब प्रोफाइल्स बताऊं। सबसे पहला स्कोप जो एग्रीकल्चर का आता है वो एग्रीकल्चर ऑफिसर का आता है, जो एक तरह से आपकी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है। प्लांटेशन मैनेजर की वैकेंसी होती है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की होती है। मैं इन सबके बारे में इन डिटेल आपको भी बताऊंगा किसका क्या क्या स्कोप है। और काफी प्राइवेट कंपनीज भी है, मतलब बहुत प्राइवेट कंपनीज है जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स में, फर्टिलाइजर्स में, सीड्स में, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रही है, फिर उसकी प्रोसेसिंग में, तो काफी इंडस्ट्रीज हैं, काफी प्राइवेट कंपनीज हैं जो उसमें डील करती हैं, तो वो आपको हायर करती हैं, वहां आपको इजिली जॉब मिल जाता है, तो स्कोप इज वेरी वाइड। ठीक है, अब इसमें आप इसके अलावा देखिए, तो मैंने एक जनरल बात करी भी, आप ऐसे जॉब्स कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है तो आप अपना एक तरह से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप बीएससी एग्रीकल्चर किया है, अगर आपके पास में लैंड है अपनी, या बहुत लोग तो क्या करते हैं कि दे टेक द लैंड और उसके बाद उस पर अपनी खेती करते हैं प्रोफेशनल टाइप से, आजकल जो डिमांड चल रही है उसके अकॉर्डिंगली, जिससे कि उनको काफी अर्निंग हो सके। आप अपना अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यू कैन एस्टेब्लिश द नर्सरी। देखो आप देखेंगे अगर जितने बड़े बड़े शहर हैं, चाहे दिल्ली है, गुड़गांव है, तो यहाँ पे लोगों ने नर्सरी बना रखी है, छोटी छोटी प्लेसेस के ऊपर, मतलब जो छोटे छोटे आपके पौधे होते हैं जिससे आप अपने घरों में पौधे उगाते हैं, तो दे हैव मेड द नर्सरी। आप मानेंगे नहीं, गुड़गांव के अंदर एक आपको तुलसी का पौधा चाहिए छोटा सा, तो मेरे हिसाब से 200 से 250 रुपए का छोटा सा आपको गमला मिलेगा जिसको आप पोर्ट में डाल के यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब आपको, मतलब स्कोप है, थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। देखिए अगर आप अपना बिजनेस करते हैं, आपकी टू टाइप्स की जॉब्स होती हैं, एक आपकी व्हाइट कॉलर जॉब है, आपने सेल्स में काम किया, मार्केटिंग में काम किया, आपने गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब किया। ठीक है, सेकंड होता है जहां आपको थोड़ी मेहनत करनी रहती है, मेहनत मतलब कि आपको अपने हाथ से काम करना है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मेहनत करना रहता है यहाँ पर आपको। बाकी आप यू कैन ऑल्सो मेक द कंसल्टेंसी, जो बिजनेस भी कर सकते हैं, तो ये काफी वाइड स्कोप है बीएससी एग्रीकल्चर का, और आप इसमें हायर स्टडीज में भी जा सकते हैं। जैसे देखिए आप कोई भी जो डिग्री करते हैं, देखिए आप में से बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे कि जो सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं कि उन्हें एग्रीकल्चर में अपना करियर बिल्डअप करना है। ठीक है, एग्रीकल्चर मतलब एज ए एकेडमिक। ठीक है, तो पर आपको नहीं करना, तो कम से कम आपके परिवार में और बच्चे हैं उनको भी अगर प्रोफेशंस के बारे में पता चले तो वो भी अपना स्कोप बना सकते हैं। देखिए क्या रहता है कि आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया, ऐसा नहीं इसके बाद आप अपनी स्टडीज भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, स्टडीज कंटिन्यू में क्या आप एमएससी कर सकते हैं। अब जब आप एमएससी करते हैं तो एमएससी में क्या होता है कि आपको अब थोड़ी सी डोमेन स्पेसिफिक हो जाएगा, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर तो वाइड कोर्स है। ठीक है, अगर हम एमएससी एग्रीकल्चर करते हैं तो स्पेशलाइजेशन हो जाता है,
सोयल साइंस में एमएससी होती है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी होती है, इकोनॉमिक्स में है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में है, प्लांट साइंस में है, फिजियोलॉजी में है। तो मतलब आपकी अलग अलग आप स्ट्रीम्स में डोमेन्स में एमएससी कर सकते हैं। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहें तो एमएससी करने के बाद फिर आपको नेट का पेपर क्वालिफाई करना है, वो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। जैसे आप बीए करने के बाद अगर आपको टीचर बनना है तो आपको एसटेट सीटेट क्वालिफाई करना है, अगर आपको लेक्चरशिप में जाना है तो आपको नेट का पेपर क्वालिफाई करना रहता है। तो सेम यहाँ पर है, एग्रीकल्चर में भी बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आपने बीएससी के बाद में एमएससी किया हुआ है तो एमएससी के बाद में फिर आपको नेट का पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप एज ए लेक्चरर जितने भी एग्रीकल्चरल कॉलेजेस हैं वहां पर आप एज ए लेक्चरर अपने बन सकते हैं। काफी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस आर ऑल्सो देयर, तो वो उन सब में आप अपना स्कोप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बीएससी एग्रीकल्चर को ऐसे हम अंडरस्टैंड करते हैं। फिर ऐसा नहीं कि प्राइवेट में ही स्कोप है एग्रीकल्चर का, आपका गवर्नमेंट में भी काफी स्कोप है, काफी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं जिसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो बीएससी एग्रीकल्चर ही माना जाता है, बीएससी एग्रीकल्चर उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और देखिए इंडिया में अगर हम बात करें तो मतलब एक साल में कोई बहुत ज्यादा कॉलेजेस नहीं है जो बीएससी एग्रीकल्चर ऑफर करते हैं, और जबकि जॉब अपॉर्चुनिटीज भी उसके हिसाब से ही निकलती है। जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की जॉब होती है एडीओ, ये आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी आती है, हर स्टेट में आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर होता है हर एक ब्लॉक के अंदर, जिसका काम अपने एरिया में एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है। इसके अलावा एक्सटेंशन ऑफिसर्स होते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप अपना हॉर्टिकल्चर में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके केन ऑफिसर हैं, कंजर्वेटर हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, मतलब काफी गवर्नमेंट जॉब्स की भी वैकेंसीज आती हैं जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो आपका बीएससी एग्रीकल्चर होता है, राइट। तो प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट फील्ड में भी एग्रीकल्चर का काफी स्कोप है। मैं कुछ कॉलेजेस आपको बताता हूं जहां से आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पीएयू, मतलब बहुत टॉप पे नाम आता है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। आपका जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है जबलपुर के अंदर। जैसे आपका पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हरियाणा में, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार है, ठीक है। ऐसी पालमपुर में है हिमाचल प्रदेश के अंदर। श्रीनगर में भी शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस है। आपका मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है। तो मतलब पूरे इंडिया में हम देखें तो ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। मतलब एक एक तो ऑलमोस्ट हर स्टेट में है। ये मैंने कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज की बात की है, बट एटलीस्ट वन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो ऑलमोस्ट सभी स्टेट में है, ठीक है। और उसका आपका ट्वेल्थ में, जैसे आप ट्वेल्थ पास करते हैं, जिस साल आपने ट्वेल्थ का एग्जाम दिया है, और उसके बाद फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, और एंट्रेंस एग्जाम अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आपका बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन भी हो जाता है। तो ये एक आपके लिए टारगेटेड कॉलेजेस रहते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो अपना एग्जाम लेती है, दे टेक द एग्जाम इन द ग्रुप, क्योंकि एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेजेस एक से ज्यादा होते हैं। जैसे आपका बीएचयू है, वो अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है। आंध्र प्रदेश में एपी ईएमसीटी का एग्जाम होता है, जो एग्रीकल्चरल फार्मेसी, मतलब ऑलमोस्ट हर स्टेट अपना एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कराती है, और जो बच्चे भी उसमें जाना चाहें उनको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और उसके बाद उनका एडमिशन होता है। छत्तीसगढ़ है, ठीक है, और भी आप देखिए आपका ओडिशा है, हरियाणा में भी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है, पंजाब में होता है, उत्तराखंड में होता है। तो मतलब हर स्टेट में इनके अपने अलग अलग एग्जाम होते हैं जो एक तरह से कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। मैं बात कर रहा था बेटे जॉब्स कहाँ कहाँ है इसमें। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है, तो एग्रीकल्चर ऑफिसर भी आपकी एक टाइप की गवर्नमेंट जॉब होती है और काफी अच्छी सैलरी आपको मिलती है इसके अंदर। और इसका मेन काम क्या रहता है कि जिस एरिया में एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्टिंग है उस एरिया के फार्मर्स को एडवाइस करना भी कैसे वो अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं। आप देखेंगे आज के टाइम
में गवर्नमेंट का काफी फोकस है एग्रीकल्चर के ऊपर, क्योंकि इंडिया अगर सेल्फ सफिशिएंट है एग्रीकल्चर के अंदर तभी वो पूरे वर्ल्ड के साथ हम देखें भी हम बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं, हमें रेवेन्यू भी मिलता है एग्रीकल्चर से, तो जितनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी उतना ही लोगों को भी फायदा है। आज जैसे आप लोगों में से काफी लोग काफी बच्चे ऐसे होंगे जो फार्मिंग बैकग्राउंड से डील करते होंगे, मतलब उनके परिवार में एग्रीकल्चर से डील करते हैं, तो आप जैसे देखते हैं कि कॉस्ट बढ़ रही है पहले के मुकाबले, बट प्रोड्यूस उतना नहीं, उतनी प्रोडक्शन नहीं हो पाती, या प्रोडक्शन है तो उतना प्राइस नहीं मिल पाता। तो जो फार्मर है उसे आज के हिसाब से, क्योंकि अभी जो फार्मर है हम देखेंगे अगर हम गांवों की बात करें तो फार्मर जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब वो आज भी जो फार्मर है वो अपने ट्रेडिशनल सोर्सेज यूज करता है, ठीक है, उसकी एजुकेशन कुछ हद तक है बट उसे टेक्निकल एजुकेशन नहीं है। आप देखिए आप कितने ऐसे किसानों को जानते हैं जिनको एग्रीकल्चर की टेक्निकल एजुकेशन है, जैसे आप इंजीनियर बनते हैं, आप जॉब करते हैं, कोडिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उससे पहले आप 3 से 4 साल का आपने पहले इंजीनियरिंग किया होता है, आप डिप्लोमा करते हैं, उसके बाद ही आप उससे रिलेटेड काम करते हैं। बट आप कभी सोच के देखिए कि हमारे इंडिया में जो एग्रीकल्चर एज ए प्रोफेशन है उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो उसमें प्रोफेशनली ट्रेंड है, जिन्होंने उसमें प्रोफेशनली ट्रेनिंग किया हुआ है, तो आप पाएंगे कि मतलब कोई भी नहीं है, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर में कुछ ट्रेनिंग लिया हुआ है और ट्रेनिंग लेने के बाद में फिर उन्होंने खेती करा। हम एग्रीकल्चर खेती करते हैं क्योंकि हमारे को परिवार से लैंड मिली है और हम उसी पे अपना खेती करना स्टार्ट कर देते हैं, सेम प्रोसेस पे जिस पे हमारे पेरेंट्स ने एग्रीकल्चर किया उसी पैटर्न के ऊपर ही। प्रॉब्लम क्या है कि हम कभी भी प्रोफेशनली ट्रेन नहीं है उसके अंदर, तो थोड़ा सा अगर आप ये जो बच्चे जिनकी खेती है ऑलरेडी फैमिली के अंदर, तो अगर वो बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं, अगर वो बीटेक एग्रीकल्चर करते हैं, तो उनको काफी फायदा हो सकता है, उसको अच्छा और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। बाकी जॉब्स अपॉर्चुनिटी तो है ही, मतलब अगर आपको फार्मिंग नहीं भी करनी है तो फिर आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया जैसे ये सारी जॉब्स जो है ये एक तरह की जो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स है, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट की जॉब आती है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का जॉब होता है, टेक्नीशियन का जॉब होता है, तो ये मतलब हर स्टेट में स्टेट वाइज वैकेंसीज निकलती हैं और उसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपका एग्रीकल्चर इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन, बीएससी एग्रीकल्चर आपका होना चाहिए और जिसके बेस पे फिर आप वहां पर अप्लाई करते हैं। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, प्लांट ब्रीडर है, सीड टेक्नोलॉजिस्ट है, मतलब वो अलग अलग आपकी डोमेन्स है, जिस पर्टिकुलर डोमेन में आपने काम किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंगली फिर आगे वैकेंसी आती है और उसमें आप फर्दर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मतलब स्कोप अच्छा है एग्रीकल्चर का, बीएससी एग्रीकल्चर का, अगर आपने 12th के अंदर अगर आपके पास में साइंस साइड है और आप एमबीबीएस पीएमटी या फार्मेसिस्ट में नहीं जाना चाहते तो आप बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में सोच सकते हैं, ये एक अच्छा लाइन है, करियर आपका बन सकता है। आप देखेंगे बेटे आजकल कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो बीटेक भी कराती हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, जैसे एक तो बीएससी एग्रीकल्चर है, कुछ यूनिवर्सिटीज है जो बीटेक भी कराती हैं, उसमें क्या है कि 12th में आपके पास में मैथ्स भी होना चाहिए, मैथ्स कम बायोलॉजी, तो आप बीटेक एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो बीटेक एग्रीकल्चर में थोड़ा आपको एडवांटेज क्या हो जाता है अगर आपने बीटेक एग्रीकल्चर किया है, तो उसमें क्या है जैसे कुछ आपके जो इक्विपमेंट्स इंजीनियरिंग है, जैसे एग्रीकल्चर में जो इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, ट्रैक्टर्स हैं, और भी बहुत चीजें, जब आप खेती करते हैं तो काफी तरह के इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, तो उनसे रिलेटेड काम हो जाता है, फील्ड एप्लीकेशन है आपका, इंजीनियरिंग इरिगेशन है, तो ये काफी स्कोप हो जाता है बीटेक एग्रीकल्चर का। बस मेन थिंग है कि वो स्कोप सारा आपका एग्रीकल्चर के अंदर ही है, ठीक है। तो जो मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में भी, आज का हमारा जो सेशन है उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, क्योंकि एग्रीकल्चर कोई ऐसा बहुत बड़ा, हम ये कहें कि बहुत बड़ा डोमेन नहीं है, अगर हम बात करें एज ए प्रोफेशनल एजुकेशन की, मतलब प्रोफेशनली तो अगर आपको एग्रीकल्चर में अपनी एजुकेशन इंक्रीज करना है तो आपको पहले बीएससी करना है, ठीक है, उसके बाद फिर अलग अलग स्कोप आपके बनते हैं, ठीक है। फिर इसमें एक चीज और मैं आपको ऐड करूं,
नहीं देखिए आजकल क्या है कि आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सुना होगा सब बच्चों ने,